0: ने अगले प्लान का सरप्राइज देते हुए सीधे कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उनका मिशन है।
1: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या है राहुल का सरप्राइज प्लान?
2: कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आपको सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे।
1: 5 दिन विरोध प्रदर्शन, 6ठे दिन इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा। जंतर बंतर पर ही विरोध प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन की नई कसम।
3: नरेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे थे। हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए बहुत कुर्बानी देना होगा। हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे।
4: ज्ञानेश कुमार एक ऐसा माफिया है जिसने पूरे सिस्टम का अपराधीकरण किया।
1: विपक्ष का ज्ञानेश हटाओ मार्च जारी रहेगा, लेकिन सरप्राइज के साथ।
5: आते जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके चुनाव को प्रभावित किया है और वोट चोरी का काम किया, घृणित काम किया।
6: वोट चोरी करता है, संघर्ष का जगह का चोरी करता है।
1: पहले सीईसी के खिलाफ शिव की बारात, अब नए प्लान पर चर्चा। 5 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि क्या राहुल फिर से सरप्राइज देंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर को जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, उसमें विपक्षी एकता भी दिखी और सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी। पिछले कई दिनों का पैटर्न ऐसा ही था कि पहले राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लंच किया, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया। 13 अक्टूबर को भी जब राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया तो सबको लगा कि क्या फिर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई नया प्लान है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को शिव का तांडव और शिव की बारात का नाम दिया और सबको शिव की बारात में आने के लिए कहा, सबने सोचा क्या फिर से चाय के बाद विरोध प्रदर्शन का प्लान है। लेकिन जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चाय पर चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राहुल गांधी ने विपक्ष के ज्ञानेश हटाओ मार्च पर एक और सरप्राइज दिया।
2: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एंड गोल तक जाएगी। कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइजिंग रहे। मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
1: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद सरकार ने जंतर मंतर को आधिकारिक धरना प्रदर्शन स्थलों की सूची से ही हटा दिया। जी हाँ, न तो सरकार ने जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को सीजेपी को विरोध प्रदर्शन करने दिया और न ही आगे जंतर मंतर को धरना स्थल रहने दिया, और अब इंडिया गठबंधन ने कसम खाई है कि वो जंतर मंतर को वापस धरना प्रदर्शन के लिए लेकर ही रहेंगे।
3: ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा जरूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं, और ये डर इनका दिखाता है कि जंतर मंतर को जो है अब प्रोटेस्ट जहां होना चाहिए था, जो होता रहा है, जिसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसको बदल करके जो है दिल्ली के बॉर्डर पे जो है कर दिया गया है।
7: It has truly been revealed that the people who have actually committed treason against the people of this country is the BJP and the people who have facilitated this treason. The Election Commission of India and the CEC, Ganesh Kumar, needs to go.
6: Inka khilaf hamara sangharsh aage jata hai. Aur jo sangharsh karne ke liye ek designated jagah tha Jandar Mandir. Inka chori bhi karta hai.
8: We will not stop until Mr. Ganesh Kumar is removed and criminal proceedings are launched not just against Mr. Ganesh Kumar but against all the election officials of the Election Commission who have supervised elections in Haryana, Maharashtra, Bengal and Bihar.
1: अभी तक तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन वाले वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे. अब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए भी एकता और ताकत दिखाने के लिए उतर पड़े हैं.
3: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी, अमित शाह और मोदी जी के इशारे थे.
4: मोदी और शाह ने इस देश को डरा कर धमका कर रखा था, अब डरने की बारी उनकी है.
1: आपको बता दें कि भले ही आज राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की छात्र विंग NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर उतरे. दिल्ली के कनॉट प्लेस में NSUI के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया. जबकि यूपी के वाराणसी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने उतरे.
9: लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया ज्ञानेश कुमार ने.
10: एक ऐसा तानाशाह चुनाव आयोग है जो एक बराबर मिलकर जनता को, लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहा है.
1: इसके अलावा पटना में लेफ्ट की छात्र विंग आयशा ने ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक लिया. लेकिन इस दौरान जब आयशा के छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो वो वज्र वाहन की चाबी लेकर ही भाग गए.
11: पटना में आज SIR को लेकर लेफ्ट छात्र संगठनों का आज प्रदर्शन था, बखूब बवाल हुआ. लेकिन एक फिर से बिहार में एक अनोखी तस्वीर, अनोखी घटना सामने आई है. ये वज्र वाहन है जहां पर छात्रों को डिटेन करके इसमें रखा गया था. और बड़ी बात यह है कि इस वज्र वाहन की गाड़ी की चाबी लेकर
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर अटैक किया. वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर करारा जवाब भी दिया.
12: SIR तो 24 के बाद चालू हुआ. आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारी. आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है. फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते. पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो. मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है. आपकी वहां कोई रीच नहीं है. देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है. आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी. उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए.
0: बीजेपी JNU और महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है. बीजेपी की महिला सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की. सड़कों पर भी इस मुद्दे पर बीजेपी की ओर से जोरदार हंगामा या प्रदर्शन देखने को मिल रहा.
13: सियासत का यह दूसरा मोर्चा है. कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम के खिलाफ यह गुस्सा फूटा है जहां उनके निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं. JNU से बर्खास्त किए गए बिमोल अकोइजम के खिलाफ बीजेपी महिला सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की.
14: मांग हमारी वही थी कि जो डॉक्टर बिमोल है उनके अगेंस्ट प्रूवन है कि 11 महिला बच्चियों को उन्होंने सेक्सुअली हैरेस किया और उनको निकाल दिया गया जेएनयू से, लेकिन आज भी वो एमपी बने हुए हैं और उनको एमपीशिप की बर्खास्त किया जाए और उनको हटाया जाए।
13: इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल पर जेएनयू की 11 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अकोइजाम जेएनयू में प्रोफेसर थे, वहां की 11 छात्राओं ने उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर इल्जाम लगाए। तमाम आरोपों के बाद जेएनयू ने आंतरिक जांच बिठाई, उस जांच में अकोइजाम पर तमाम आरोप सही साबित पाए गए। उसी रिपोर्ट के आधार पर जेएनयू ने 9 अक्टूबर को उन्हें प्रोफेसर पद से हटा दिया। उसके दो दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR भी दर्ज करा दी गई।
15: एक इंटरनल कमेटी ने गिल्टी पाया 11 छात्राओं की कंप्लेंट पर बिमल अकोइजम के खिलाफ, जितनी भी एलिगेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट की थी उनमें सच्चाई पाई और इसीलिए उनको नौकरी से बर्खास्त करा, उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी।
13: उधर अंगोमचा बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं।
16: No, this is nothing but harassment. They know that once this kha panchayat style of doing by JNU, if it is challenged in a court of law, the court will take notice of the complete disregard for norms and rules and regulations. So they are trying to drag it to court, which will not also not stand. And I have said before, if you go into the merit of the case, in itself also people will get exposed. What is this so-called harassment allegations?
13: बहरहाल बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार सड़कों पर उतरी हुई है, जहां अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली में वोट चोरी को लेकर इंडिया गठबंधन और CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठा दिए। आरोप यही है कि SIR के बावजूद वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। फर्जी वोटरों को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है।
1: यूपी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। SIR और वोट चोरी के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया दावा किया गया है। दावा यही है कि उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। सवाल यही है कि SIR के बाद फर्जी वोटर कहां से आए।
17: देखिए, उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया शुरू हुई, समाजवादी पार्टी के PDA प्रहरी ने लगातार सजगता से SIR पे नजर रखी और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में वोट कटने का काम हुआ, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी थी, भाजपा बेचैन थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान था कि 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट कट गए, चिंतित थे। लेकिन उसके बाद जब फॉर्म 6 और फॉर्म 7 आया तो भाजपा की साजिश, चुनाव आयोग की साजिश के कारण लगातार उत्तर प्रदेश में फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके लगातार वोटर्स को बढ़ाया जा रहा है।
1: समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। दावा यही है कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों के नाम पड़ताल के दौरान मिले हैं। समाजवादी पार्टी के आरोप पर BJP ने पलटवार किया है।
18: देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आता है या चुनाव होता है तो ये लोग अपने हार का कारण पहले ढूंढ लेते हैं कि जब हम हारेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो फिर हारेंगे तो बोल देंगे कि हम वोट में गड़बड़ी थी इसलिए हार गए। कभी ABM को बता देते हैं कि जो है ABM के कारण हम हार गए। तो इस तरह से ये अपनी हार का पहले से भूमिका तैयार कर रहे हैं।
1: दरअसल बीते कुछ दिनों से 16 लाख वोटर बहाए जाने के दावे सोशल मीडिया पर किए गए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिडवा सफाई दे चुके हैं। दावा किया है कि फेक वोटरों को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर एक्शन लिया गया है और लिया जाएगा, लेकिन इसे लेकर भ्रामक झूठ भी फैलाया जा रहा है।
19: SIR के बाद हमारे पास कई ज्ञापन आए थे राजनीतिक दलों के, उसमें गलत नाम काटने का नहीं था, किसी समुदाय विशेष का काटने का शिकायत नहीं थी। शिकायत थी डुप्लीकेट नामों की और जहां जहां डुप्लीकेट पाए गए उनका बकायदा डिलीशन किया गया है। कुछ का जो अब आएगी शिकायत उनके भी जांच होगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत और ज्ञापन हमारे पास आया और अनअटेंडेड या बिना इंक्वायरी के हमने रखा है।
20: एक बात तो साफ है, एक तरफ दिल्ली में चुनाव आयोग को लेकर घमासान शुरू हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अब कहीं भी मौका नहीं चूक रहे हैं जहां चुनाव आयोग से सवाल किए जा सके। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: पंजाब से एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई जहां नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाजसेवी को सरेआम गोली मार दी गई, जिसने एक बार फिर चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति को तेज कर दिया।
13: पंजाब के मानसा में फेसबुक लाइव में बहस के दौरान ये गोलीकांड की तस्वीरें हैं। जिसमें नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर सामाजिक मुहिम चलाने वाले मशहूर नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर छोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छोटा केमिस्ट की दुकान पर नशा बेचने का आरोप लगाते हुए फेसबुक लाइव कर रहे थे। इसी दौरान केमिस्ट वाले ने उन्हें गोली मार दी और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले को आपसी रंजिश से जोड़ रही है।
5: रंजिशन इस व्यक्ति ने जो है उस पे फायरिंग करके जो है इस घटना को अंजाम दिया है।
13: वहीं परविंदर सिंह छोटा के परिवार का कहना है कि ड्रग्स के खिलाफ उनकी मुहिम के चलते छोटा की हत्या की गई।
21: नशा कौन वो पंजाब सरकार ने विजय सिंगले वर्गे मंत्री ने।
13: मामले में एक बार फिर पंजाब में नशे पर सियासी बहस तेज हो गई है।
22: नशिया नु रोकण वास्ते संघर्ष कर रहा सी, सरकार नाल लड़ाई लड़ रहा सी, सरकार ते नशा बेचण वाले उन्हों बार बार दबा रहे सी, लेकिन अज आखर नु उस दे गोलियां मार के मार दिता है। बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है, सरकार वास्ते डुब के मरने वाली गल है।
23: गोलियां मार के कतल किया गया, उन्हें एक बार फिर पंजाब दे विच माड़े लॉ एंड ऑर्डर की जिहड़ी तस्वीर है वो देश के सामने रख दी। वह व्यक्ति जिहड़ा 5-6 साल तो नशियां दे खिलाफ जहाद खड़ा करके बैठा सी।
24: अभी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी, कोई भी व्यक्ति जो कानून अपने हाथ में लेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
13: घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस हत्या के पीछे क्या वजह है इसे लेकर पुलिस की जांच जारी है। इस हत्याकांड के विरोध में मानसा में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। परविंदर छोटा के समर्थकों की ओर से मानसा के 12 हाटा चौक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। विरोध के चलते बाजार भी बंद कर दिया गया है। वहीं इस मामले में परविंदर छोटा के अलावा 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सऊदी अरब के प्रिंस इन दिनों सीक्रेट बंकर में छिपने को मजबूर हैं। खबर यह है कि प्रिंस सलमान को अपनी जान का खतरा है। प्रिंस के डर का कारण कोई और नहीं बल्कि हूती विद्रोही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हूतियों के हमले के बाद से ही प्रिंस सलमान अंडरग्राउंड हैं, कई दिनों से सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए।

0: क्या सऊदी पर ईरान कर सकता है हमला? सऊदी पर हूतियों के हमले के पीछे का खेल। बंकर में छिपे सऊदी प्रिंस के डर की वजह। हूतियों के साथ ईरान, सऊदी अरब परेशान। ईरान की सीधी धमकी, जमीनी सेना है तैयार। क्या हूती बहाना है, सऊदी अरब है निशाना।
1: We've suffered greatly from this ideology these past 30.
0: Middle East ko paigham, Iran ka mind game. अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत का दावा कतर ने किया, लेकिन वार्ता के बीच सऊदी अरब पर हूतियों के हमले के पीछे ईरान का माइंड गेम है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि सऊदी अरब के बहाने अब ईरान ट्रंप पर लगातार दबाव बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका का दांव अमेरिका के खिलाफ चल दिया है।
2: Unwavering, I will never allow Iran to have a nuclear weapon. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. They absolutely refused. That was a big mistake. Then in Operation Midnight Hammer, the U.S. military obliterated their nuclear program beneath mountains of rubble. And again, I urged Iran to make a deal, and again, they refused. The regime continued building a vast missile and drone stockpile that threatened the security of every American service member in the region.

हमले तब हुए जब अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर थे, मतलब बातचीत की आड़ में ईरान पर निशाना साधा गया। ठीक यही दाव अब ईरान ने चल दिया है। पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत के दौरान सऊदी पर हूती ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रहे हैं। ऐसे में अब शांति समझौते को लेकर अमेरिका पर बड़ा दबाव है। ये वही दबाव है जिसके चलते हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से ट्रंप ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। दूसरी तरफ शाही महलों में रहने वाले सऊदी के प्रिंस सलमान यानी MBS सीक्रेट बंकर में छिपने को मजबूर हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हूतियों के हमले के डर से मोहम्मद बिन सलमान इन दिनों गुप्त बंकर में अंडरग्राउंड हैं। प्रिंस सलमान की लोकेशन को गुप्त रखा जा रहा है। प्रिंस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासतौर पर प्रिंस सलमान की सुरक्षा में स्पेशल गार्ड्स के दस्ते को तैनात किया गया है, क्योंकि हूतियों की मिसाइल की जद में रियाद है। वही रियाद जहां सऊदी का एयर डिफेंस सिस्टम हूतियों की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। सुरक्षा कारणों से प्रिंस सलमान को सार्वजनिक तौर पर बाहर न जाने की सलाह दी गई है। बड़ी बात यह है कि आखिरी बार बीते मंगलवार को सार्वजनिक तौर पर प्रिंस सलमान नजर आए थे, मतलब प्रिंस सलमान पर भी हमला हो सकता है। ये खतरा उस वक्त बढ़ गया जब सऊदी अरब पर भीषण हमलों के बावजूद हूतियों के समर्थन में ईरान खुलकर खड़ा हो गया। पड़ोसी देशों को धैर्य और ठोस भाईचारे की नीति पर चलना चाहिए। ऐसे समझौते ईरान को रोक नहीं पाएंगे। सऊदी अरब को तुर्की और पाकिस्तान उसी तरह सुरक्षा नहीं दे पाएंगे जैसे अमेरिका नहीं दे पाया। सऊदी अरब अपनी नीतियां बदले ताकि दूसरों के आगे अपनी सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाना न पड़े। हमने भी पाकिस्तान और तुर्की को लेकर कई अफवाहें सुनी हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सच न हो। इस क्षेत्र के देशों को अच्छी तरह पता है कि यमन में किसी भी तरह की दखल अंदाजी खतरनाक रुख अख्तियार कर सकती है। इस मामले में मक्का रक्षा समझौते का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईरान ने सिर्फ हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं खींची, बल्कि ये भी संकेत दिए हैं कि अगर सऊदी पर हूतियों के हमलों के बाद अमेरिका ने फिर से हमले शुरू किए तो ईरान जमीनी स्तर पर मिडल ईस्ट के देशों में घुसपैठ कर सकता है। अगर अमेरिका नए हमले शुरू करता है तो हम पड़ोसी देशों में सेना भेज सकते हैं। अब की बार ईरानी सेना की तैयारी कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने की है। मिडल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी मुल्कों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब के तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। UAE के अहम ठिकानों के साथ साथ क्षेत्रीय डेटा सेंटर और इंटरनेट केबल भी निशाने पर हैं। सऊदी अरब और UAE के ठिकाने ईरान के हिट लिस्ट पर हैं, लेकिन ईरान ने ये साफ नहीं किया है कि किन देशों के खिलाफ अपनी जमीनी सेना को उतार सकता है। मतलब साफ है कि ईरान ने अमेरिका के साथ साथ मिडल ईस्ट के देशों तक अपना बारूदी पैगाम पहुंचा दिया है। ईरान की धमकी के बीच हूतियों ने भी अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। अगर अमेरिका यमन के खिलाफ आक्रामकता में शामिल होता है तो हम जवाबी कार्रवाई के फैसले पर विचार नहीं करेंगे, बल्कि अमेरिका और क्षेत्र में उसके सभी हितों को निशाना बनाते हुए त्वरित और करारा जवाब देंगे। कहीं नहीं अगर सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान हमारे खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा अभी सऊदी अरब के साथ किया जा रहा है। ईरान और हूतियों की धमकी का असर है कि सऊदी अरब ने इजराइल की तरफ से सैन्य मदद की पेशकश को ठुकरा दिया है। दरअसल हूतियों के खिलाफ सैन्य मदद का प्रस्ताव इजरायली सरकार की तरफ से सऊदी अरब के प्रिंस सलमान को भेजा गया था। इजरायली अखबार हारेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कहने पर इजराइल ने सैन्य मदद का प्रस्ताव रखा था। नेतन्याहू की तरफ से अमेरिका की मध्यस्थता में ये संदेश मोहम्मद बिन सलमान को भेजा गया। प्रस्ताव में हूतियों के खिलाफ इजरायली सेना को शामिल किए जाने की बात कही गई। इस पर रियाद ने साफ कर दिया है कि वो इसराइल की मदद नहीं चाहता है। प्रिंस सलमान को डर है कि इसराइल की मदद लेने से सऊदी की जनता में नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। जैसे ही सऊदी अरब ने इजरायली सैन्य मदद को ठुकराया, वैसे ही इसराइल के खिलाफ ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरानी सांसद ने दावा किया कि हूतियों के बहाने ईरान पर इसराइल हमले का मौका तलाश रहा है, लेकिन ईरान पर इसराइल ने हमला किया तो इसराइली परमाणु सेंटर पर तबाही मचना तय है। नेतन्याहू 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले ईरान पर हमला कर सकते हैं। इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाकाम रहा तो दूसरे रास्ते खोजे जा रहे हैं। अगर ईरान पर बमबारी की जाती है तो जवाबी कार्रवाई की संभावना है और इसराइल के दिमोना एटमी सेंटर को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह

0: तैयार है। बड़ी बात यह है कि फ्लाई दुबई कांड के बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान को कटघरे में खड़ा किया था। ट्रंप ने तो यहां तक दावा किया था कि हाईजैक की कोशिश के पीछे ईरानी साजिश थी। ट्रंप के इसी आरोप के बाद सऊदी अरब पर हुतियों ने अपने हमले तेज कर दिए, क्योंकि ये हमले ईरान की युद्ध नीति का हिस्सा हैं। अमेरिका या इसराइल दोबारा हमला करें, उससे पहले ही ईरान ने अपना बारूदी पैगाम ट्रंप तक पहुंचा दिया। यही वजह है कि सऊदी पर हुतियों के हमले के बावजूद अमेरिका मौन है, पाकिस्तान चुप है और कोई भी देश हुतियों के खिलाफ सैन्य एक्शन की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: कौन है माता भुवनेश्वरी? क्या है माता भुवनेश्वरी का पूजा विधान? माता भुवनेश्वरी की पूजा से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में पलटी नाव, 14 लोगों की गई जान। सीएम ने रेस्क्यू के दिए निर्देश। पीएमओ ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। विपक्षी प्रदर्शन को लेकर के गृहमंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार। बोले कहा एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे राहुल, 2029 में भी करारी हार के लिए रहे तैयार। इंडिया गठबंधन पर चाय की चर्चा के बाद बोले राहुल शाह, ज्ञानेश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना मकसद। खड़गे तेजस्वी संजय राउत ने भी सीसी पर किया तीखा वार। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। यौन उत्पीड़न में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद के खिलाफ हल्ला बोल, राष्ट्रपति से भी गुहार। अरुण मुरुगन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ने की मांगी अनुमति। कहा तमिलनाडु में करूंगा काम, संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू से की मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। देश और दुनिया की हर खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, दुर्भाग्यपूर्ण खबर। बिहार के हाजीपुर में नाव पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई है। बीती रात ये हादसा हुआ है, गंगा नदी में नाव पलट गई जिससे यह हादसा हुआ है। इस हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। बीती रात यह हादसा हुआ जब नाव जा रही थी, तमाम लोग उसमें सवार थे और उसके बाद ये नाव गंगा नदी में पलट जाती है। 14 लोगों के मारे जाने की अब तक पुष्टि हो चुकी है। सोचिए न जाने कितने परिवारों की खुशियां उजड़ गईं इस हादसे के बाद। हालांकि बगल में जब ये नाव गुजर रही थी उसके बगल में एक और नाव गुजर रही थी और उसके बाद जैसे ये नाव डूबने लगी दूसरी नाव में सवार जो लोग थे वो मदद के लिए आगे आने लगे। हाजीपुर की ये घटना है उसके बाद और इस हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से क्या कहा गया था आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं।
1: 8:30 बजे के रात में ये घटना हुई है, दुर्घटना है जिसमें सूचना मिली कि एक छोटी सी नाव थी, प्राइवेट नाव है जिसमें 20 बच्चे ट्रैवल कर रहे थे, बगल के गांव में भोज खाने के लिए जा रहे थे और उसी क्रम में वो पलट गई है और उसमें अभी तक के कुल 7 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है जो कि NMCH भेजे गए हैं, स्टेबल है और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो लोग हैं वो सभी बच्चे हैं, 15 साल के 25 साल से कम के, जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि पहले से ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कितने लोग थे। लगातार ये रेस्क्यू मिशन बार बार जारी रहेगा, कल भी जारी रहेगा। SDRF की टीम यहाँ पर उपस्थित है, लोकल गोताखोरों की मदद से भी रेस्क्यू किया जा रहा है।
0: तो ये तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है, हाजीपुर के इस नाव हादसे पर उन्होंने दुख भी जताया, शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की गई हैं। सोचिए कि भोज से ये नाव लौट रही थी, तमाम सारे परिवार जो अपने घरों की ओर जा रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने दुख जताया। 4-4 लाख रुपए बिहार सरकार की ओर से मदद का सहायता राशि का ऐलान किया गया है पीड़ितों के परिवारों के लिए। और जैसे यह हादसा हुआ उसके बाद लोगों में काफी गुस्सा था, हालांकि राहत बचाव कार्य के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और इस घटना के बाद तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं आपको भी सुनवाते हैं।
2: आज बेहद दुखद खबर आ रही है मेरे विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से। अभी हम दिल्ली में थे और आप सब लोग जान रहे हैं कि दिल्ली में इलेक्शन कमिश्नर जो CEC हैं ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट चल रहा है जिस हिसाब से वोट की चोरी हुई है, फर्जी चुनाव हुए। आज पता चला अभी थोड़ी देर पहले हमको इस घटना के बारे में, जो राघोपुर दियारा क्षेत्र में रामपुर शमशंद में ये घटना हुई है। कुछ बच्चे नाव से भोज खाने के लिए गए थे, वापस लौटते दौरान जो है नाव पलटने से काफी लोगों की जाने गई हैं, लगभग संख्या 30 लोगों की बताई जा रही है, ज्यादातर बच्चे हैं उसमें। 14 अब तक जो है लाशें बरामद की गई है, 6 को जो है रेफर किया गया अस्पताल में और 3 जो है वो सुरक्षित है। हमारी जिलाधिकारी से भी बात हुई है, आपदा विभाग के जो सचिव हैं उनसे भी बात की गई है और हमने आग्रह किया है कि ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू टीम जो है भेजा जाए, एनडीआरएफ के लोग हों, एसडीआरएफ के लोग हों। और कल हम पटना आ रहे हैं और पटना आते ही हम जो है राघोपुर जाएंगे। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। इस दुख के घड़ी में हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मदद करे। ये रात का टाइम है, रात के टाइम में ये घटना हुई है और अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चल रहा है और लगातार हम अपने लोगों को भी घटनास्थल पर भेजे हैं ताकि जायजा लिया जा सके। लोगों को इस दुख के घड़ी में कम से कम जो सहयोग हो सके वो हम लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस नाव में कुल 20 लोग सवार थे। नाव जैसे भोज करके अपने घर की ओर लौट रही थी, बीच में डूबने लगी। 3 लोगों को बचा लिया गया लेकिन उस समय चीख पुकार और इस हादसे के बाद लोगों में गुस्सा।
3: बिहार के हाजीपुर में राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के पास गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक कुछ बच्चे भोज में शामिल होकर नाव से लौट रहे थे, तभी नाव नदी में पलट गई। हादसे में 14 लोगों के शव बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है। 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि 3 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। इस हृदय विदारक हादसे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी शोक जताया है। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को राहत बचाव कार्य तेज करने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए इस हादसे की जानकारी मिलते ही तेजस्वी यादव ने वैशाली के जिलाधिकारी से बात की। हादसे में बच्चों की मौत पर उन्होंने दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
2: कुछ बच्चे नाव से भोज खाने के लिए गए थे, वापस लौटते दौरान जो है नाव पलटने से काफी लोगों की जाने गई हैं, लगभग संख्या 30 लोगों की बताई जा रही है, ज्यादातर बच्चे हैं उसमें। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। इस दुख की घड़ी में हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मदद करें।
3: हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों तक तत्काल राहत पहुंचाने, घायलों को बेहतर इलाज देने और उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: और राघोपुर से हमारे सहयोगी रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, 14 लोगों की मौत हुई है, पता चल पाया हादसे की वजह क्या थी, कैसे घटना हुई है?
4: देखिए आशुतोष, जो जानकारी अब सामने आ रही है वो ये है कि जिन 14 लोगों की मौत हुई है इस पूरी घटना में, उसमें से अधिकतर या मैं कह सकता हूँ लगभग सभी जो हैं वो बच्चे हैं और सबकी उम्र लगभग 10 से 14 साल की उम्र के तमाम बच्चे हैं। और जो जानकारी ये है कि बीती शाम ये लोग पास के ही एक गांव में श्राद्ध का भोज खाने के लिए गए हुए थे और नाव पर कोई ज्यादा लोग नहीं थे, यानी कि केवल बच्चे ही थे जो 20-25 की संख्या में थे और एक नाविक ही था केवल। और इसीलिए जो मरने वालों में जो तमाम लोग शामिल हैं उसमें सब बच्चे ही हैं। 6 लोगों को जो है उसमें से निकाला गया है, उनका इलाज चल रहा है पटना के NMCH में और 3 लोगों को जो है सुरक्षित बचाया भी गया है। और जो एक जानकारी ये भी आ रही है कि संभवतः जो लोग कह रहे हैं कि बीच से गंगा नदी में जब नाव थी तो उसी दौरान नाव जो है वो फट गया बीच से और उसके बाद वो ये हादसा हुआ जिसमें ये बड़ी घटना घटी है, और उसके बाद घटना के बाद जैसे ही प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलाया गया रात भर, जो है लोग गोताखोर जो है वो और लोगों को खोजने की कोशिश भी करते रहे। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोग अभी भी लापता हैं, हालांकि लेकिन फिलहाल अभी जिस बात की पुष्टि है कि 14 लोगों की इसमें जान चली गई है। और क्योंकि तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है और चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र के अंदर ही आता है, तो ये तमाम नेता भी जो है आज दिन भर जो है दौरा करेंगे, आएंगे यहाँ पर जानकारी लेने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रात के वक्त आशुतोष देखिए नाव का परिचालन बंद होता है नदियों में, और गंगा नदी में भी शाम के बाद आप परिचालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन तो परिचालन कैसे चल रहा था, कैसे क्यों हो रहा था, इसमें क्या लापरवाही है, ये भी एक सवाल है और ये भी एक कह सकते हैं जांच का विषय है कि आखिर किन परिस्थितियों में रात के वक्त छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो 10 से 14 साल की उम्र के थे उनको लेकर जो है नाव का परिचालन अगर हो रहा था तो इसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही हो सकती है। हालांकि अब इसकी भी जांच जो है वो करवाई जा रही है। आशुतोष
0: ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम जानकारी के लिए, आप इस पर नजर बनाए रखें। 14 लोगों की दर्दनाक मौत, सोचिए कि रात में जहां नाव चलने पर प्रतिबंध है उसके बावजूद ये सब हो रहा है, और वे नाव कितनी सुरक्षित होती हैं वो इस हादसे ने बता दिया। बहरहाल रुक करेंगे अगली खबर का। एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है दिल्ली से, जंतर मंतर पर कल हुए CJP के प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, और FIR के बाद CJP के नेता सौरभ दास, आशुतोष रांका, अजिंक शिंदे को प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया गया है, एहतियातन हिरासत में उन्हें दिल्ली पुलिस ने ले लिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को CJP लीडर JDU दफ्तर के दरवाजे को फांद कर जंतर मंतर जा पहुंचे थे। ये वो तस्वीरें जंतर मंतर जो कि इस समय सुरक्षा के घेरे में है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जंतर मंतर को बतौर धरना स्थल केंद्र सरकार ने डीनोटिफाई कर दिया है, और इस सब के बावजूद उन्होंने कहा था वी विल रीक्लेम जंतर मंतर, यानी जंतर मंतर हम फिर से जाएंगे, और उसके बाद CJP के नेता वहां पहुंच भी गए। और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब वो JDU के दफ्तर के बैरिकेड को पार करते हैं, निकलते हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में लेती है और ट्रेस पासिंग का केस दर्ज कर लेती है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, JDU दफ्तर पहले ये कैसे पहुंचे? रास्ता तो जंतर मंतर का दो ही तरफ से एंट्री का है और वो किले में तब्दील है। दूसरा, एहतियातन कस्टडी में लेने के बाद आगे क्या, क्योंकि पहले भी कस्टडी में ली गई थी, उन्होंने बेल बॉन्ड भरा और छूट गए।
5: देखिए, सबसे पहले तो जब ये पहुंचे तो ये जो बैक साइड की जो जनपथ लेन है आशुतोष, जनपथ लेन में ये एंट्री करते हैं, और जनपथ लेन में किरण भवन से पहले ये कुछ रिहायशी इलाके है अंदर की तरफ, जो एक छोटे से गेट से, एक लोहे का छोटा सा गेट है उससे जनपथ लेन से जुड़ता है। अब चूंकि अंदर कई सारे घर हैं, एक पॉलिटिकल ऑफिस है, तो वो छोटा गेट परमानेंट लोगों की आवाजाही उधर से होती रहती है, और खास तौर से जब फ्रंट का पूरा हिस्सा बंद है तो लगातार वो गेट खुला रहता है, आमतौर पर उसके खुलने और बंद होने का कुछ टाइम था। ऐसे में उस गेट पर बहुत सिक्योरिटी नहीं थी, और ये सभी लोग शायद इन्होंने अच्छे से इस इलाके की देखी की थी, वहां पर पहुंचते हैं, वीडियोग्राफी शुरू करते हैं, उस गेट से अंदर होते हैं, और फिर रिहायशी इलाके के अंदर से होते हुए ये सामने उस गेट से पहुंचते हैं जो इस इलाके को, जो अंदर का पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है और जहां पे ये रिहायशी इलाके हैं, उसको क्रॉस करके ये गेट को कूदते हुए ये जंतर मंतर की तरफ पहुंच जाते हैं। अब इसी वजह से जब पुलिस ने इनको डिटेन किया तो डिटेन करने के बाद इनके ऊपर ट्रेस पासिंग का केस लगाया गया। फिर उसके बाद देर रात तक जानकारी मिली कि इन तीनों लोगों के अलावा जो बाकी प्रोटेस्टर्स थे, सौरव, आशुतोष और इनके एक दोस्त अजिंक, इनके अलावा जो बाकी प्रदर्शनकारी थे उन सभी को रात में छोड़ दिया गया था, और उसके बाद इन तीनों लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी रात में, और उस FIR में सबसे पहले जिस बात का जिक्र था वो यही था ट्रेसपासिंग का, क्योंकि वो जो इलाका था वो आम इलाका नहीं था, मतलब कोई रास्ता नहीं था उधर से आप जिधर से आए और उसके बाद फांद के आप जंतर मंतर पे पहुंचे, तो इसलिए ये केसेस लगे इनके ऊपर, और अब जो जानकारी है इनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कोर्ट में क्या होगा आशुतोष, ये तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि पुलिस किस तरीके की दलीलें कोर्ट के सामने रखती है। जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए, लेकिन एक एक जानकारी हम आपसे और भी लेना चाहेंगे हिमांशु, क्या इन्हें आज वापस जो है अदालत के सामने ले जाया जाएगा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने, और दूसरा पुलिस क्या गिरफ्तारी करना चाहती है या सिर्फ एहतियातन कस्टडी रखेगी?
5: नहीं, एहतियातन कस्टडी है आशुतोष, ये एहतियातन कस्टडी है जो हमारी बात हुई है पुलिस सोर्सेज से, जो हमें जानकारी मिली है, ये एहतियातन इन्हें गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद कोर्ट में तो पेश करना ही है। और देखिए, हो सकता है पुलिस की कुछ देर बाद ही कोर्ट में इनको पेश कर दे, किसी जो ACM कोर्ट होता है वहां पर इनको पेश कर दे, जो लीगल टीम है उनको भी इन्फॉर्म किया जाएगा, जो इन तीनों लोगों की लीगल टीम है बाकायदा उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा, वो लोग भी वहां पर पहुंचेंगे और दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील कोर्ट के सामने रखेंगे। जी
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। तो CJP के नेता जंतर मंतर पहुंचे, वहां से उन्हें हिरासत में ले लिया गया और अब उन्हें जो है आज अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर अटैक किया है, वोट चोरी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर करारा जवाब दिया है।
6: SIR तो 24 के बाद चालू हुआ, अब जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे, आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है, आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी, उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए।
0: गृहमंत्री अमित शाह की ओर से प्रतिक्रिया राहुल गांधी के उस बयान पर आई जब उन्होंने कहा कि CC ज्ञानेश कुमार और गृहमंत्री अमित शाह को वो नहीं छोड़ेंगे। इंडिया ब्लॉक के नेताओं को चाय पार्टी पर बुलाया और उसी चाय पार्टी में चेतावनी भी दी, जिसके बाद जवाब आता है गृहमंत्री अमित शाह की ओर से। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राजीव रंजन सिंह की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी राहुल गांधी के चुनाव आयोग संबंधी आरोपों पर निशाना साधा गया। पीयूष गोयल ने दावा किया कि कांग्रेस अपने पुराने फैसलों और चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों की नियुक्तियों का रिकॉर्ड उसके मौजूदा आरोपों से मेल नहीं खाता।
7: SIR की वजह से कांग्रेस केरल में जीती, क्योंकि ये सब डुप्लीकेट नाम, मरे हुए लोगों के नाम, जो लोग वहां से शिफ्ट हो गए वो नाम निकल गए, तो कोई मैल प्रैक्टिस होने की संभावना नहीं थी केरल में। ये शशि थरूर जी का दावा है, रमेश चेन्नीथाला जी ने खुद कहा कि SIR की वजह से ही आज कांग्रेस जीत पाई है केरल में, और केरल के मुख्यमंत्री स्वयं श्री VD सतीशन जी ने SIR की तारीफ की है। अधीर रंजन चौधरी जी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ करी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव उन्होंने अच्छी तरीके से लड़ाए, ईमानदार व्यवस्था से लड़े गए, और जो गलत काम ममता बैनर्जी जी करती थी उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने भी किया और इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। अब उनकी खुद की पार्टी बेबुनियाद और झूठे वोट चोरी के दावे ला रही है।
0: इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।

0: है माता भुवनेश्वरी? क्या है माता भुवनेश्वरी का पूजा विधान? माता भुवनेश्वरी की पूजा से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
2: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

जम्मू में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूबे नजर आए। आरएसपुरा के धान के खेतों में बारिश से फसल को नुकसान पहुंचा है। कटाई से पहले फसल बर्बाद होने से किसान परेशान हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पंजाब के फाजिल्का में अनाज मंडी में पानी भरने से धान की फसल भीग गई। पानी के बीच अपनी उपज बचाने के लिए किसान मशक्कत करते नजर आए। दिल्ली के किशनगढ़ में रामलीला मैदान में पानी भरने से मंच और कलाकारों का सामान भीग गया। वहीं नोएडा के सेक्टर 95 अंडरपास में पानी में फंसी कार से लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकलना पड़ा। सभी लोग सुरक्षित बताए गए। हिमाचल में बारिश के बाद मौसम साफ होने के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। बारिश ने किसानों की फसल से लेकर शहरों की व्यवस्थाओं तक को प्रभावित किया है। अब नजरें राहत, मुआवजे और जल निकासी के इंतजामों पर हैं। आज तक ब्यूरो।

0: दिल्ली के जंतर मंतर पर 13 अक्टूबर को प्रदर्शन मामले में सीजेपी नेताओं पर एक्शन। एफआईआर के बाद अब पुलिस ने सौरभ दास, आशुतोष राका समेत 3 को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया। विपक्षी प्रदर्शन को लेकर अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे राहुल, 2029 में भी करारी हार के लिए रहे तैयार। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, शाह ज्ञानेश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना मकसद, खड़गे तेजस्वी संजय राउत ने भी सीसी पर तीखा हमला किया। और कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चाकू से हमले की कोशिश का आरोप, आरोपी महिला को पुलिस ने डिटेन किया, डोला से इन्हें दर्ज कराई पुलिस में शिकायत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। 5 दिन विरोध प्रदर्शन करने के बाद राहुल गांधी के घर चाय पर चर्चा होती है। करीब 2 घंटे की इस बैठक के बाद जब राहुल और इंडिया गठबंधन वाले ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ज्ञानेश कुमार के साथ साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर रोक लगाने वाली जो आदेश है उसके खिलाफ भी सब गरजे। एक सुर में सब ने कहा कि सरकार जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल से नहीं हटा सकती। इसके अलावा राहुल गांधी ने अगले प्लान का सरप्राइज देते हुए यह भी कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उनका मिशन है।
1: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या है राहुल का सरप्राइज प्लान?
2: कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे।
1: 5 दिन विरोध प्रदर्शन, 6ठे दिन इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा, जंतर मंतर पर ही विरोध प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन की नई कसम।
2: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे से हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए बहुत कुर्बानी देना होगा, हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे।
3: ज्ञानेश कुमार एक ऐसा माफिया है जिसने पूरे सिस्टम का अपराधीकरण किया।
1: विपक्ष का ज्ञानेश हटाओ मार्च जारी रहेगा लेकिन सरप्राइज के साथ।
4: आते इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके चुनाव को प्रभावित किया है और वोट चोरी का काम किया, घृणित काम किया।
5: वोट चोरी करता है, संघर्ष का जगह का चोरी करता है।
1: पहले सीईसी के खिलाफ शिव की बारात, अब नए प्लान पर चर्चा। 5 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि क्या राहुल फिर से सरप्राइज देंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर को जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, उसमें विपक्षी एकता भी दिखी और सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी। पिछले कई दिनों का पैटर्न ऐसा ही था कि पहले राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लंच किया, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया। 13 अक्टूबर को भी जब राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया तो सबको लगा कि क्या फिर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई नया प्लान है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को शिव का तांडव और शिव की बारात का नाम दिया और सबको शिव की बारात में आने के लिए कहा, सबने सोचा क्या फिर से चाय के बाद विरोध प्रदर्शन का प्लान है। लेकिन जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चाय पर चर्चा के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राहुल गांधी ने विपक्ष के ज्ञानेश हटाओ मार्च पर एक और सरप्राइज दिया।
2: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एंड गोल तक जाएगी। कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं
6: कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइजिंग रहे। मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
7: 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद सरकार ने जंतर मंतर को आधिकारिक धरना प्रदर्शन स्थलों की सूची से ही हटा दिया। जी हाँ, न तो सरकार ने जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को सीजेपी को विरोध प्रदर्शन करने दिया और न ही आगे जंतर मंतर को धरना स्थल रहने दिया। और अब इंडिया गठबंधन ने कसम खाई है कि वो जंतर मंतर को वापस धरना प्रदर्शन के लिए लेकर ही रहेंगे।
2: ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा जरूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं। और ये डर इनका दिखाता है कि जंतर मंतर को जो है अब प्रोटेस्ट जहां होना चाहिए था, जो होता रहा है, जिसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसको बदल करके जो है दिल्ली के बॉर्डर पे जो है कर दिया गया है।
8: It is truly, it has truly been revealed that the people who have actually committed treason against the people of this country is the BJP and the people who have facilitated this treason. The Election Commission of India and the CEC, Yanesh Kumar, needs to go.
5: Inka khilaf hamara sangharsh aage jata hai. Aur jo sangharsh karne ke liye ek designated jagah tha Jantar Mandir. Inka chori bhi karta hai.
9: We will not stop until Mr. Gyanesh Kumar is removed and criminal proceedings are launched not just against Mr. Gyanesh Kumar but against all the election officials of the Election Commission who have supervised elections in Haryana, Maharashtra, Bengal and Bihar.
7: अभी तक तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन वाले वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। अब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए भी एकता और ताकत दिखाने के लिए उतर पड़े हैं।
2: ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी, अमित शाह और मोदी जी के इशारे।
3: मोदी और शाह ने इस देश को डरा कर धमका कर रखा था, अब डरने की बारी उनकी है।
7: आपको बता दें कि भले ही आज राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की छात्र विंग NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर उतरे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में NSUI के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जबकि यूपी के वाराणसी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने उतरे।
10: लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया ज्ञानेश कुमार ने।
11: एक ऐसा तानाशाह चुनाव आयोग है जो एक बराबर मिलकर जनता को, लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहा है।
7: इसके अलावा पटना में लेफ्ट की छात्र विंग आयशा ने ज्ञानेश हटाओ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक लिया। लेकिन इस दौरान जब आयशा के छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो वो वज्र वाहन की चाबी लेकर ही भाग गए।
12: पटना में आज SIR को लेकर लेफ्ट छात्र संगठनों का आज प्रदर्शन था, बखूब बवाल हुआ। लेकिन एक फिर से बिहार में एक अनोखी तस्वीर, अनोखी घटना सामने आई है। ये वज्र वाहन है जहां पर छात्रों को डिटेन करके इसमें रखा गया था। और बड़ी बात यह है कि इस वज्र वाहन की गाड़ी की चाबी लेकर के जो छात्र हैं वो भाग गए हैं। ये तस्वीर देखिए, और इस वजह से इस गाड़ी को जो है यहीं पर लगाया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये वज्र वाहन है और यहाँ पे जो गाड़ी की चाबी थी उसको लेकर के छात्र फरार हो गए हैं।
7: बंगाल में भी ममता बनर्जी की पार्टी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी ने अपने बयानों में सिर्फ ज्ञानेश कुमार नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम लिया और कहा कि वो उनको नहीं छोड़ेंगे। पलटवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत है, 2029 का चुनाव भी हारेंगे।
13: एसआईआर तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए।
0: तो बीजेपी की ओर से जवाब सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह ने नहीं दिया बल्कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राजीव रंजन सिंह भी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस और राहुल गांधी के चुनाव आयोग संबंधी आरोपों पर निशाना साधा। गोयल ने दावा किया कि कांग्रेस का अपने पुराने फैसलों और चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों की नियुक्तियों का रिकॉर्ड उनके मौजूदा आरोपों से मेल नहीं खाता।
14: एसआईआर की वजह से कांग्रेस केरल में जीती, क्योंकि ये सब डुप्लीकेट नाम, मरे हुए लोगों के नाम, जो लोग वहां से शिफ्ट हो गए वो नाम निकल गए, तो कोई मैल प्रैक्टिस होने की संभावना नहीं थी केरल में। ये शशि थरूर जी का दावा है। रमेश चेन्नीथाला जी ने खुद कहा कि एसआईआर की वजह से ही आज कांग्रेस जीत पाई है केरल में, और केरल के मुख्यमंत्री स्वयं श्री वीडी सतीशन जी ने एसआईआर की तारीफ की है। अधीर रंजन चौधरी जी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ करी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव उन्होंने अच्छी तरीके से लड़ाए, ईमानदार व्यवस्था से लड़े गए, और जो गलत काम ममता बैनर्जी जी करती थी उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने भी किया और इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। अब उनकी खुद की पार्टी बेबुनियाद और झूठे वोट चोरी के दावे ला रही है।
0: बड़ी खबर आ रही है बिहार के हाजीपुर में। नाव पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई है। गंगा नदी में नाव पलटने से यह हादसा हुआ है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। और आपको सुबह की ताजा तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। जो लापता है उनकी तलाश भी चल रही है। बिहार के हाजीपुर में बीती रात यह हादसा हुआ है। भोज से लौट रहे थे, नाव में 20 लोग सवार थे, 3 को बचा लिया गया था, अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन इस हादसे में 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है गंगा नदी के ऊपर। और जिस समय ये हादसा हुआ रात के समय, जहां पर नाव का संचालन पूरी तरह से बंद होता है, ये सुबह की ताजा तस्वीरें हैं। लोग वहां पर हैं, प्रशासन मौजूद है वहां पर, राहत बचाव कार्य, जो लोग लापता हैं उनकी तलाश वहां की जा रही है।
15: बिहार के हाजीपुर में राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के पास गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक कुछ बच्चे भोज में शामिल होकर नाव से लौट रहे थे, तभी नाव नदी में पलट गई। हादसे में 14 लोगों के शव बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है। 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि 3 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। इस हृदय विदारक हादसे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी शोक जताया है। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को राहत बचाव कार्य तेज करने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए इस हादसे की जानकारी मिलते ही तेजस्वी यादव ने वैशाली के जिलाधिकारी से बात की। हादसे में बच्चों की मौत पर उन्होंने दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
16: कुछ बच्चे नाव से भोज खाने के लिए गए थे, वापस लौटते दौरान जो है नाव पलटने से काफी लोगों की जाने गई हैं। लगभग संख्या 30 लोगों की बताई जा रही है, ज्यादातर बच्चे हैं उसमें। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। तो दुख की घड़ी में हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मदद करें।
15: हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों तक तत्काल राहत पहुंचाने, घायलों को बेहतर इलाज देने और उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।

0: क्या लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से पहले उसे टॉर्चर किया गया था? क्या मौत से पहले शिवा के शरीर को सिगरेट से दागा गया था? क्या यही जुल्म, यही टॉर्चर शिवा की मौत की वजह बना? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये गंभीर आरोप खुद शिवा शर्मा की मां रंजना की ओर से लगाया गया है। इन सनसनीखेज आरोपों के बीच लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत का मामला अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया है, ये हाई प्रोफाइल केस, रसूख, ब्लैकमेलिंग और एक बड़े सिंडिकेट का खतरनाक कॉकटेल दिख रहा है जिसका शिकार युवा कारोबारी शिवा शर्मा बना। इस पूरे जाल को लेकर जो जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पता ये भी चला है कि शिवा की मौत के बाद भी श्रद्धा और उसके साथियों ने परिवार वालों को सही जानकारी नहीं दी, काफी देर तक इस पूरे केस को छुपाने की कोशिश करते रहे। पुलिस को अंदेशा है कि घटना के बाद मेडिकल कॉलेज से निकलते ही आरोपियों ने आपस में संपर्क साधा और एक सोची समझी साजिश के तहत शहर से फरार हो गए। पुलिस श्रद्धा दुबे और उसके कनेक्शन की पड़ताल कर रही है। इस बीच उसके कई बड़े नेताओं से संपर्क की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या किसी ने लखनऊ से फरार होने में श्रद्धा की मदद की। जांच के बीच पुलिस को श्रद्धा को लेकर कई और जानकारियां भी मिली हैं। पता चला है कि श्रद्धा को शुरुआत से ही ग्लैमर वर्ल्ड का शौक था। उसके पति ने हैदराबाद से उसे एक्टिंग का कोर्स करवाया जिसके बाद वो लखनऊ आकर मॉडलिंग करने लगी। यहाँ रसूखदार और हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क बढ़ते ही उसने पति को छोड़ दिया और यहीं बस गई। पुलिस अब श्रद्धा के पुराने मुकदमों, उसके बैंक खातों के लेन देन और संदिग्ध संपर्कों की कड़ियां जोड़कर पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने में जुट गई है।
1: महंगाई का दबाव हो, दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता हो या फिर ब्याज दरों को लेकर चिंता, इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत आम आदमी की खपत है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय परिवारों का खर्च अर्थव्यवस्था को लगातार सहारा दे रहा है। दरअसल अप्रैल जून तिमाही में जहां भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की रफ्तार से बढ़ी है, वहीं इस दौरान प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 7.1% का इजाफा हुआ है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में निजी खपत की ग्रोथ 6.8% थी। यानी एक साल पहले के मुकाबले घरेलू खपत की रफ्तार बढ़ी है और ये बढ़ता खर्च भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खास है, क्योंकि आम आदमी की बढ़ती खरीदारी से बाजार में मांग बढ़ने के साथ उत्पाद से लेकर सप्लाई और कारोबार की पूरी चेन को भी फायदा मिलता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कंज्यूमर की जेब से निकला पैसा दुकानदार की कमाई बनता है। दुकानदार के ऑर्डर बढ़ने से कंपनियों का उत्पादन बढ़ता है और फिर इसी पूरी प्रक्रिया में सप्लाई, ट्रांसपोर्टर और छोटे कारोबार भी जुड़ते हैं। यानी कंज्यूमर स्पेंडिंग इकोनॉमी में मांग पैदा करने का काम करती है, इसीलिए आने वाले त्योहारी सीजन को भी कंज्यूमर डिमांड के लिए अहम माना जा रहा है। त्योहारों पर परिवार कपड़े, मिठाई, पूजा सामग्री, सजावट और दूसरी चीजों पर अतिरिक्त खर्च करते हैं। जन्माष्टमी जैसे त्योहारों की तैयारियों में अभी से बाजार में इसका असर दिखाई दे रहा है। यानी त्योहारों पर होने वाला खर्च केवल कुछ दिनों की बाजार की रौनक नहीं है, इस खरीदारी का पैसा छोटे दुकानदारों, कारीगरों और स्थानीय कारोबारियों तक भी पहुंचता है। जब मांग बढ़ती है तो इन छोटे कारोबारियों को ज्यादा सामान तैयार करने, ज्यादा ऑर्डर लेने और ज्यादा लोगों को काम देने का मौका मिलता है। यानी कंज्यूमर स्पेंडिंग की रफ्तार बढ़ने का सीधा फायदा MSME और छोटे कारोबार के बड़े नेटवर्क को मिल सकता है। हालांकि इस पूरी तस्वीर में महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है। जरूरी सामान की कीमतें बढ़ने पर परिवार की आय का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों में चला जाता है और गैर जरूरी खरीदारी के लिए पैसा कम बचता है। लेकिन अभी उपलब्ध आंकड़े ये जरूर बताते हैं कि हाउस होल्ड कंजम्पशन भारतीय ग्रोथ स्टोरी का मजबूत आधार बना हुआ है। ऐसे में ये त्योहारी सीजन इस खपत को कितना और बढ़ाता है, इस पर बाजार और अर्थव्यवस्था दोनों की नजर रहेगी। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: कौन है माता भुवनेश्वरी? क्या है माता भुवनेश्वरी का पूजा विधान? माता भुवनेश्वरी की पूजा से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में भारत रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का विश्वास देता है। इस साल अप्रैल जून क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है और यह ग्रोथ मजबूत नींव पर खड़ी है। 12-13 साल पहले भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4% से भी अधिक था। पिछले साल यह घटकर लगभग आधा प्रतिशत यानी 0.61% रह गया है। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $700 बिलियन से अधिक है। हमारा बैंकिंग सिस्टम अनेक देशों में सबसे मजबूत स्थिति में है। साथियों, इसी मजबूती का परिणाम है कि भारत की सॉवरेन रेटिंग्स अपग्रेड की जा रही है।

शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए विदेशी नागरिकों की हर चाल काफी मायने रखती है। ये निवेशक जब बाजार में पैसा लगाते हैं तो खरीदारी को सपोर्ट मिलता है, लेकिन जब लगातार बिकवाली करते हैं तो बाजार पर दबाव बढ़ जाता है। भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर के शुरुआती 6 दिनों में विदेशी नागरिकों ने भारतीय शेयर बाजार से 44,166 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इसके साथ ही 2026 में उनकी कुल बिकवाली 3,00,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। NSDL के आंकड़ों के मुताबिक 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से 3.04 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। 2025 में ये निकासी 1.66 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं सितंबर 2026 में विदेशी निवेशकों ने

अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में भारत रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का विश्वास देता है। इस साल अप्रैल जून क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है और यह ग्रोथ मजबूत नींव पर खड़ी है। 12-13 साल पहले भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4% से भी अधिक था। पिछले साल यह घटकर लगभग आधा प्रतिशत यानी 0.61% रह गया है। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $700 बिलियन से अधिक है। हमारा बैंकिंग सिस्टम अनेक देशों में सबसे मजबूत स्थिति में है। साथियों, इसी मजबूती का परिणाम है कि भारत की सॉवरेन रेटिंग्स अपग्रेड की जा रही है।

0: शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए विदेशी नागरिकों की हर चाल काफी मायने रखती है। ये निवेशक जब बाजार में पैसा लगाते हैं तो खरीदारी को सपोर्ट मिलता है, लेकिन जब लगातार बिकवाली करते हैं तो बाजार पर दबाव बढ़ जाता है। भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर के शुरुआती 6 दिनों में विदेशी नागरिकों ने भारतीय शेयर बाजार से 44,166 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इसके साथ ही 2026 में उनकी कुल बिकवाली 3,00,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। NSDL के आंकड़ों के मुताबिक 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से 3.04 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। 2025 में ये निकासी 1.66 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं सितंबर 2026 में विदेशी निवेशकों ने 35,861 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे, जबकि जुलाई में 20,200 करोड़ और अगस्त में 29,631 करोड़ रुपए का निवेश किया था। यानी जुलाई और अगस्त में खरीदारी करने वाले विदेशी निवेशक सितंबर से फिर बिकवाली की तरफ मुड़ गए हैं। भारतीय बाजार से इतनी बड़ी रकम निकालने की एक बड़ी वजह भारत के बाहर निवेश के दूसरे विकल्पों का आकर्षक होना है। महंगा कच्चा तेल, मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर ऊंचा रिटर्न विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयरों से पैसा निकालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका की 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर 5.2% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। वहीं महंगे कच्चे तेल से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका है। उधर एशियाई बाजारों में AI कंपनियों के शेयरों की तेजी भी विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रही है। विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना अपने आप में इस बात का संकेत नहीं है कि भारतीय बाजार में कोई बड़ी कमजोरी आ गई है। दुनिया भर में निवेशक बेहतर रिटर्न के मौके तलाश रहे हैं। हालांकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच भारतीय बाजार को घरेलू निवेशकों से सहारा मिल रहा है। फिलहाल माना जा रहा है कि विदेशी निवेशकों की वापसी के लिए कच्चे तेल की कीमतों में नरमी खास रोल निभाएगी। वहीं अमेरिकी बॉन्ड पर रिटर्न घटने से भारतीय शेयरों की तरफ पैसा लौटने की संभावना है। भारतीय कंपनियों के शेयर आकर्षक कीमतों पर मिलने से भी विदेशी निवेश बढ़ सकता है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और भारत में गिरावट के बीच सीधा रिश्ता होने के बावजूद हर गिरावट की वजह केवल विदेशी निवेशक नहीं होते। जानकारों के मुताबिक निवेशकों को बाजार की चाल समझने के लिए कंपनियों के नतीजे, शेयर की कीमत और वैश्विक हालात पर भी नजर रखनी चाहिए। आदित्य राणा, आज तक।
1: दिल्ली पुलिस, तुम लट्ठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
2: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
3: डोंट ट्विस्ट।
1: क्या हुआ?
3: डोंट ट्विस्ट।

दिल्ली के जंतर मंतर पर 13 अक्टूबर को प्रदर्शन मामले में सीजेपी नेताओं पर एक्शन। एफआईआर के बाद अब पुलिस ने सौरभ दास, आशुतोष राका समेत 3 को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया। विपक्षी प्रदर्शन को लेकर अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे राहुल, 2029 में भी करारी हार के लिए रहे तैयार। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, शाह ज्ञानेश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना मकसद, खड़गे तेजस्वी संजय राउत ने भी सीसी पर तीखा हमला किया। और कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चाकू से हमले की कोशिश का आरोप, आरोपी महिला को पुलिस ने डिटेन किया, डोला से इन्हें दर्ज कराई पुलिस में शिकायत। एक बड़ी खबर आ रही है, इसमें राजधानी दिल्ली के मौजपुर इलाके से रेस्टोरेंट के किचन में आग लग गई। बीती रात करीब 10:30 बजे यह हादसा हुआ था। आग लगने के बाद लोग जान बचाने के लिए रेस्टोरेंट की पहली मंजिल से कूदते नजर आए। जानकारी के मुताबिक सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन रात 10 बजे जब यह हादसा हुआ, रेस्टोरेंट का किचन था, देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं, और कैसे जान बचाने के लिए जो एग्जिट इलाका सबसे पास का था वहां से लोग कूद रहे थे, और ये संभवतः पहली मंजिल है उस रेस्टोरेंट की। और उसके बाद देखिए किसी ने कपड़े भी लटकाए हैं, कोशिश की है कि एक दूसरे की मदद की जाए, और समय रहते इसके पहले देखिए एक तरफ लपटें उठती उससे पहले धुआं था, और जब तक लपटें उठती उसके पहले लोगों ने बचाने की एक दूसरे की कोशिश की, जो आसपास नीचे लोग थे वो भी मदद के लिए आए, और एक के बाद एक उन्होंने पहली मंजिल से छलांग लगाई एक दूसरे को। लोग ये देखे कपड़े भी लटकाए गए ताकि जो लोग छलांग नहीं लगा सकते उनको निकाला जाए, और समय रहते इसके पहले पूरा रेस्टोरेंट आग की लपटों में कैद होता, लोगों को वहां से निकाल लिया गया सुरक्षित बाहर, और इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी। और आइए अब देखते हैं भाग्य चक्र पंडित शैलेंद्र पांडे के साथ।

देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज 10 महाविद्या के चौथे स्वरूप की बात करेंगे जिनका नाम है माता भुवनेश्वरी। माता भुवनेश्वरी कौन है, इनकी महिमा क्या है और इनकी कृपा से कौन सा वरदान मिलता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन बुधवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं माता भुवनेश्वरी की। माता भुवनेश्वरी कौन है और इनकी महिमा क्या है? देखिए, माता भुवनेश्वरी 10 महाविद्या का चौथा स्वरूप है। जो तंत्र की देवी की 10 महाविद्या हैं, उसमें चौथा स्वरूप माता भुवनेश्वरी का है। ये सृष्टि के नियंत्रण का और उच्च चेतना का प्रतीक है। ये सारी सृष्टि को, सारी सृष्टि के गुणों को नियंत्रित करती हैं। और माता भुवनेश्वरी को संपूर्ण सृष्टि, आकाश, पाताल, पृथ्वी, इन सब का स्वामी माना जाता है। ये चार भुजाओं वाली देवी हैं और कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता भुवनेश्वरी का तेज सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इनका तेज सर्वाधिक माना जाता है। सृष्टि को नियंत्रित करने के लिए और सृष्टि पर अधिकार बनाने के लिए माता भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। अगर आप सृष्टि पर नियंत्रण करना चाहते हैं, सृष्टि को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको किसी न किसी रूप स्वरूप में माता भुवनेश्वरी की पूजा करनी होगी। माता भुवनेश्वरी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार की समस्या हल होगी, किसी मंगल कार्य में व्यस्त रहेंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि मां भुवनेश्वरी की उपासना करने के नियम क्या हैं, मां भुवनेश्वरी के उपासना की सावधानियां क्या हैं। सामान्य रूप से इनकी पूजा दो प्रकार से की जाती है, एक तंत्र पूजा और एक सामान्य पूजा। माता भुवनेश्वरी की सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन तंत्र पूजा बिना गुरु के निर्देश के नहीं की जा सकती। माता भुवनेश्वरी की तंत्र पूजा कठिन है और गुरु के गाइडलाइन में, गुरु के निर्देश में ही करना चाहिए। माता भुवनेश्वरी की उपासना पुष्प से, गंध से यानी सुगंध से और प्रकाश से, ज्योति जलाकर, दीप जलाकर इनकी पूजा की जाती है। उच्च पद प्राप्त करने के लिए और सृष्टि पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। हर महीने की पूर्णिमा को या शुक्रवार को आप अलग से माता भुवनेश्वरी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको राजनीति में उच्च पद चाहिए या आपको प्रशासन में उच्च पद चाहिए तो जीवन में उच्च पद प्राप्त करने के लिए, बड़ी सफलता के लिए, पद और प्रतिष्ठा के लिए माता भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माता भुवनेश्वरी पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, करियर में लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, देवी को हरी इलायची अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

सिंह राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

का लाभ होगा, परिवार की समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न शशि प्रकाश जी ने हमें लिखा है और शशि प्रकाश जी हमें पटना बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 नवंबर 1976। जन्म का समय रात में 10:35। जन्म स्थान है छपरा बिहार। शशि प्रकाश जी लिख रहे हैं कि परिवार में भाई के साथ प्रॉपर्टी को लेकर मुकदमा चल रहा है और ये चाहते हैं कि आपसी सुलह समझौते से मामला हल हो जाए, तो कब तक हल हो सकेगा? शशि प्रकाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से भाई के साथ प्रॉपर्टी का मामला आपसी सुलह समझौते से हल हो जाएगा। अगले 3 महीने के अंदर उसकी संभावना दिखाई दे रही है। थोड़ी शांति और धैर्य बनाए रखिए। जनवरी के पहले पहले ये मामला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। रोज सुबह शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार को गुड़ का दान करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि माता भुवनेश्वरी की सामान्य पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, नवरात्रि का समय तो बड़ा ही उपयुक्त समय है। नवरात्रि के समय में या पूर्णिमा या शुक्रवार को इनकी पूजा करें। स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके आसन पर बैठिएगा। उनके सामने एक बड़ा सा घी का दीपक जलाइएगा। जितना प्रकाश हो उनकी पूजा करते समय उतना उत्तम होगा। इसके बाद यथाशक्ति जितना संभव हो 1 माला 3 माला 11 माला इस फटिक की माला से उनका मंत्र जप करिएगा। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। इस मंत्र का जप करिएगा। अगर आप ज्योति ध्यान करना जानते हैं, अगर आप तेज स्वरूप के साथ ध्यान करना जानते हैं तो तेज स्वरूप के साथ या ज्योति ध्यान करना लाभकारी होगा। माता का ध्यान प्रकाश में या प्रकाश के साथ करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। देखिए, बहुत सारे लोग माता भुवनेश्वरी को और माता त्रिपुर सुंदरी को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों के स्वरूप और दोनों के वरदान में अंतर है। माता त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की देवी हैं और माता त्रिपुर सुंदरी ऐश्वर्य, समृद्धि और संपन्नता देती हैं। माता भुवनेश्वरी नियंत्रण देती हैं, शासन देती हैं, उच्च पद देती हैं और जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाती हैं।
तो जिनको जीवन में ऐश्वर्य और समृद्धि चाहिए उनको माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करनी चाहिए, और जिनको राजनीति में, प्रशासन में, जीवन में उच्च पद चाहिए, जो दुनिया को, देश को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको माता भुवनेश्वरी की पूजा करनी चाहिए। आगे नवदुर्गा के चौथे स्वरूप की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

नहीं रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, जल्दबाजी में काम करने से बचिएगा। देवी को हरी इलायची अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, मानसिक समस्या हल होगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन खर्च पर ध्यान दें। परिवार में अशांति से बचें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज चतुर्थी तिथि है तो आज नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की उपासना की जाएगी। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की महिमा क्या है आइए जानते हैं। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में चतुर्थी तिथि को माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। हल्की हंसी के द्वारा इन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसीलिए इनको माता कूष्मांडा कहा जाता है। और इनको कूष्मांड यानी कुम्हड़ा अर्पित किया जाता है, इसलिए भी इनका एक नाम कूष्मांडा है। इनकी पूजा से बुद्धि, वाणी और प्रखरता की शक्ति जीवन में मिलती है। ज्योतिष में बुध नामक ग्रह माता कूष्मांडा से नियंत्रित होता है, तो जब आप नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा करते हैं तो बुध संबंधी समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। माता की पूजा हरे रंग की वस्तुओं से करना चाहिए। हरी इलायची, हरा फल, हरे फूल, हरी मिठाई से माता कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। और नव दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा को आज पूजा में मालपुए का भोग लगाना चाहिए। अगर आप चतुर्थी तिथि पर माता कूष्मांडा की पूजा करते हैं तो इससे आपका अनाहत चक्र मजबूत होता है। आप अपने मन और अपनी भावनाओं को बड़ी आसानी से कंट्रोल में ला सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर
कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

होगा, मानसिक चिंता दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, करियर में परिवर्तन के योग हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, खान पान में सावधानी रखें, देवी को हरी इलायची अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो रंग होगा आपके लिए पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूजा उपासना में अगर बत्ती के बजाय धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, सामान्यतः अगर बत्ती में बांस की तीलियां होती हैं और बांस को जलाना शुभ नहीं माना जाता, बांस को जलाने से लेड नामक पदार्थ निकलता है जो स्वास्थ्य को बहुत नुकसान करता है। अगर लकड़ी की तीलियों की अगरबत्ती हो तो आप जला सकते हैं, अन्यथा बिना तीलियों वाली धूप बत्ती जलाना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1,

योग बन रहे हैं। नंबर 4, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, संपत्ति का लाभ होगा। नंबर 7, संतान पक्ष की उन्नति होगी। नंबर 8, चोट चपेट से सावधान रहें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में माता दुर्गा को हरी इलायची अर्पित करिएगा। आपके स्वास्थ्य की और आपके मन की चिंताएं दूर होंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें अंजलि शर्मा ने लिखा है और अंजलि हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 3 अक्टूबर 1982। जन्म का समय शाम के 5:55। जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर। ये कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, तो क्या हमारी शादी चल सकेगी या विवाह टूट जाएगा। अंजलि, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी के टूटने की कोई संभावना नहीं है और जो अभी गड़बड़ स्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये स्थितियां मई 2027 के बाद से बेहतर हो जाएंगी। आने वाला समय काफी अच्छा हो जाएगा, तो थोड़ा धैर्य और शांति बनाए रखिए। वैवाहिक जीवन आपका बचेगा भी और बेहतर चलेगा भी। एक पीला पुखराज लग

आहार को प्रातः धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरा धनिया खाकर घर से जाएं, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, हरी इलायची खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने पास हरा रुमाल रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो गणेश जी की आरती करके जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई

लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा, मकर राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा मेष राशि के लोगों को, बेवजह का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंता बढ़ सकती है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज चतुर्थी तिथि है, रिक्तता तिथि है, इसलिए आज नया और शुभ कार्य ना करें। आज माता दुर्गा की, देवी की उपासना हरे वस्तुओं से करें तो बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

बिहार के वैशाली में गंगा में पलटी नाव, हादसे में 14 लोगों की मौत और 6 की हालत गंभीर। नाव हादसे में मरने वाले सबसे अधिक बच्चे। पुलिस के मुताबिक श्राद्ध का भोज खाने जा रहे थे, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर डीएम का किया घेराव, पुलिस ने समझाकर शांत कराया। नाव हादसे में मरने वाले बच्चों की उम्र 6 से 15 साल के बीच, अस्पताल में शवों के पास बिलखते रहे परिजन। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना। वैशाली नाव हादसे पर सीएम सम्राट ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया, घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए। राघोपुर नाव हादसे पर तेजस्वी यादव ने दुख जताया, बोले मेरे विधानसभा क्षेत्र में बेहद दुखद घटना हुई, मैं अभी दिल्ली में हूं, आज पटना लौटूंगा। हादसे पर चिराग पासवान ने भी गहरा दुख जताया, बोले मासूम बच्चों की मौत की खबर हृदय विदारक है। राहुल गांधी का सीसी ज्ञानेश के इस्तीफे की मांग को लेकर के राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान, इंडिया गठबंधन राज्यों तक तेज करेगा विरोध। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद राहुल गांधी ने कहा, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना मकसद। राहुल गांधी को अमित शाह का जवाब, कहा एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे राहुल। अमित शाह ने कहा 2029 में भी करारी हार के लिए तैयार हैं राहुल गांधी, देश की जनता को मोदी पर भरोसा है। केसी वेणुगोपाल का अमित शाह पर तंज, बोले 2029 तक पद पर बने रहने की चिंता करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों से बचने का आरोप लगाया। पवन खेड़ा ने शाह पर पलटवार करते हुए पूछा, ज्ञानेश कुमार पर इतना भरोसा क्यों है, क्या 2029 तक पद पर रहेंगे, सीईसी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पीयूष गोयल ने कांग्रेस के मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, एसआईआर गलत तो इनके सभी 6 मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, जहां जीते वहां एसआईआर सही, जहां हारे वहां गलत कैसे। सीसी पर राहुल के आरोप को पीयूष गोयल ने बताया बेबुनियाद, कहा कांग्रेस चुनाव आयुक्तों को बनाते थे राज्यपाल, मंत्री, नेता, विपक्ष से पूछे 10 सवाल। राहुल गांधी पर हमला बोलते पीयूष गोयल ने कहा, बचकानी हरकत कर रहे, चुनाव आयोग ने हमेशा ईमानदारी से काम किया। खड़गे ने दावा किया, इंडिया गठबंधन के अभियान को व्यापक समर्थन मिला है, वोट चोरी की कथित साजिश का पर्दाफाश करने के लिए तैयार रहे लोग। तेजस्वी यादव ने सीसी ज्ञानेश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, मोदी शाह के इशारे पर लोकतंत्र कुचलने और वोट चोरी की साजिश रची गई। तेजस्वी ने कहा, लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है, इस प्रोटेस्ट से दिल्ली को बदल दिया है। संजय राउत ने सीसी ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि माफिया पूरे सिस्टम का प्राधिकरण कर दिया। सुप्रिया सुले ने भी इंडिया गठबंधन को लेकर के कहा कि सब एक ताकत से एकजुट है, अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रहेगी। ऐसा छात्र नेता नेहा बोरा का बीजेपी पर निशाना, बोली सीसी ज्ञानेश कुमार ने इस्तीफा, विपक्षी एकजुटता जरूरी है। दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट मामले में एफआईआर दर्ज हो गया, सौरभ दास, आशुतोष समेत अन्य पर केस दर्ज, जेडीयू दफ्तर में घुसने की शिकायत पर ट्रेसपासिंग का आरोप। अभिजीत दीक्षित का बड़ा बयान, कहा उन्हें लगता है कि जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहेगा और यह बंद हो जाएगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर आपका कल दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन, सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर रद्द करने की मांग। एल मुरुगन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ने की अनुमति मांगी, कहा तमिलनाडु में काम करूंगा, संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू से मुलाकात की। बीते दिन कनॉट प्लेस में एनएसयूआई का प्रदर्शन हुआ, सीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर अचानक पहुंचे थे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। मुंबई प्रदर्शन हिरासत के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा बयान, कहा ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं दे सकते, पुलिस कार्रवाई के विशेष मामलों पर सबूत मांगे। सुनेत्रा पवार के पैनल का सोमेश्वर चीनी मिल चुनाव में क्लीन स्वीप, सभी की सीटों पर जीत, विरोधी पैनल का खाता भी नहीं खुला। महाराष्ट्र में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, छत्रपति संभाजीनगर में 23,35,000 रुपए का 12,382 किलो संदिग्ध मिलावटी तेल जब्त। मुंबई में डोमिनोज समेत 3 फूड आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड किए गए, जांच में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, वेज नॉनवेज खाना एक ही फ्रीजर में मिला। डीयू में 5,889 करोड़ की लागत से बनेंगे हॉस्टल, 21,895 विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा मिलेगी। सीएम योगी आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे, संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षक और स्नातक महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी कल बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, कानून व्यवस्था और एयर शो की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक आज थामेंगे बीजेपी का दामन, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी शामिल होंगे। प्रयागराज में गरीबों को मिलेगा अपना पक्का आशियाना, तीक के गढ़ में बनेगा पद्म आवास, मुख्यमंत्री योगी जल्द कर सकते हैं भूमि पूजन। प्रयागराज के चकिया में अतीक के घर के पास 602 फ्लैट की आवासीय सोसाइटी बनाई जाएगी, पीडी की टीम ने जमीन का निरीक्षण किया, साफ सफाई कराई गई। कश्मीर में जुमे की नमाज के खुतबों को लेकर के बवाल हो चुका है, वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव पर एनसीपीडीपी का बीजेपी पर एजेंडा थोपने का आरोप, कहा धार्मिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं। पंजाब में परविंदर चोटा हत्याकांड में मानसा में लोगों का धरना प्रदर्शन जारी, इंसाफ की मांग पर अड़ा परिवार। परिवार से बातचीत करने पहुंचे एसएसपी मानसा, भारी रोष के बीच सहमति न बनने पर धरनास्थल से लौटे। कल पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, कैमरे में कद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। परविंदर झूठा हत्याकांड विरोध में कल पंजाब बंद का ऐलान, कानून व्यवस्था पर घिरी भगवत मान सरकार, कांग्रेस का धरना और बीजेपी ने किसी दिया जांच का।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी। गुरेज में पीर बाबा इलाके में बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से दमकल विभाग की गाड़ी सड़क से फिसली। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में पुलिस ने जतकुसी में फंसे चार बाइकर्स का रेस्क्यू किया। सूचना मिलने पर बचाव दल ने केरल के बाइकर्स को सुरक्षित बाहर निकाला। कश्मीर के भूतपथरी इलाके में ताजा बर्फबारी से पहाड़ों का नजारा बदला। सफेद बर्फ से ढकी वादियां आकर्षण का केंद्र बनी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम का मिजाज बदला। तापमान गिरने से ठंड बढ़ी है। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ गुलमर्ग। बर्फबारी के बीच पर्यटकों की मौज मस्ती भी दिखाई दी। कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला है, क्योंकि मैदानी इलाकों में बारिश तो सोनमर्ग की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी, जिससे ठंड भी बढ़ी है। कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। देश में पहली बार ग्लेशियर झील पर स्वदेशी अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया। दो घंटे पहले मिलेगी बाढ़ की चेतावनी। 8 करोड़ का सिस्टम महज 61 लाख में तैयार। राजकोट के गिरीश बुग्गा को रिकॉर्ड होल्डर मिनीचर आर्टिस्ट कैप्टन स्मिथ मच्छर के लिए बनाई गई दुनिया की सबसे छोटी हनुमान चालीसा।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
3: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
4: इट्स अ माई वे।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: How's the hostel? Settled?
7: Yes, ma'am. It's really
6: nice. कोई आ रहा है क्या?
8: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
6: मयंक, for real?
8: One carat for my one true love. Natural diamond, real love, solitaires to reignite your new season of love.
9: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
10: मेरे पास एक आइडिया है।
9: क्या?
10: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
11: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
12: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
13: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
11: कौन सी बनानी है?
14: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
15: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
16: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
17: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
18: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
19: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
18: क्या?
19: इनकी राय।
2: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
16: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
16: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
11: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
8: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
11: असली शहद, असली स्वाद।
3: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
14: AU Savings Account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest, वो भी हर महीने।
5: Money, money, money, money, every month.
10: सोच बदलो और बैंक भी।
18: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
6: ये है एक लेगेसी।
4: You know, designs कितने? लाख से भी ज्यादा डोर
7: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
1: एक परिवार, अटूट भरोसा।
9: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
13: अब पर वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
10: मेरे पास एक आइडिया है।
9: क्या?
10: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
0: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
11: I have one. एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
12: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
13: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
15: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
4: तो कौन सी बनानी है?
17: एकदम सॉलिड।
4: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
17: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
13: आई लाइक दिस ओनली।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: क्या लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से पहले उसे टॉर्चर किया गया था? क्या मौत से पहले शिवा के शरीर को सिगरेट से दागा गया था? क्या यही जुल्म, यही टॉर्चर शिवा की मौत की वजह बना? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये गंभीर आरोप खुद शिवा शर्मा की मां रंजना की ओर से लगाया गया है। इन सनसनीखेज आरोपों के बीच लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत का मामला अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया है, ये हाई प्रोफाइल केस, रसूख, ब्लैकमेलिंग और एक बड़े सिंडिकेट का खतरनाक कॉकटेल दिख रहा है जिसका शिकार युवा कारोबारी शिवा शर्मा बना। इस पूरे जाल को लेकर जो जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पता ये भी चला है कि शिवा की मौत के बाद भी श्रद्धा और उसके साथियों ने परिवार वालों को सही जानकारी नहीं दी, काफी देर तक इस पूरे केस को छुपाने की कोशिश करते रहे। पुलिस को अंदेशा है कि घटना के बाद मेडिकल कॉलेज से निकलते ही आरोपियों ने आपस में संपर्क साधा और एक सोची समझी साजिश के तहत शहर से फरार हो गए। पुलिस श्रद्धा दुबे और उसके कनेक्शन की पड़ताल कर रही है। इस बीच उसके कई बड़े नेताओं से संपर्क की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या किसी ने लखनऊ से फरार होने में श्रद्धा की मदद की। जांच के बीच पुलिस को श्रद्धा को लेकर कई और जानकारियां भी मिली हैं। पता चला है कि श्रद्धा को शुरुआत से ही ग्लैमर वर्ल्ड का शौक था। उसके पति ने हैदराबाद से उसे एक्टिंग का कोर्स करवाया जिसके बाद वो लखनऊ आकर मॉडलिंग करने लगी। यहाँ रसूखदार और हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क बढ़ते ही उसने पति को छोड़ दिया और यही बस गई। पुलिस अब श्रद्धा के पुराने मुकदमों, उसके बैंक खातों के लेन देन और संदिग्ध संपर्कों की कड़ियां जोड़कर पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने में जुट गई है।
1: दिल्ली पुलिस, तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
2: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
3: डोंट ट्विस्ट।
1: क्या हुआ?
3: डोंट ट्विस्ट लप से।
1: हर आदमी में
3: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखिए।
2: कितना घटिया था यार।
3: लप लप लप।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि 8 बजे क्या है खास, दिखाएंगे कि कैसे गंगा की लहरों ने छीनी 14 जिंदगियां।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Look what I can do.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: तेरा प्यार प्यार प्यार रूंगटा बार सर एक बार दो तुम ठुमका लगाने पर
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रूंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?
7: मेरा रुतबा है मेरा।

0: what I can be.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: एक दो, श्राम।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
3: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
4: I love it, absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
5: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
4: क्या?
5: इनकी राय।
6: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
7: अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में भारत रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का विश्वास देता है। इस साल अप्रैल जून क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है और यह ग्रोथ मजबूत नींव पर खड़ी है। 12-13 साल पहले भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4% से भी अधिक था। पिछले साल यह घटकर लगभग 0.5% यानी 0.61% रह गया है। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $700 बिलियन से अधिक है। हमारा बैंकिंग सिस्टम अनेक देशों में सबसे मजबूत स्थिति में है। साथियों, इसी मजबूती का परिणाम है कि भारत की सॉवरेन रेटिंग्स अपग्रेड की जा रही है।
8: पंजाब सरकार ने कहा कि किसान का दाना ना लेंगे, कि पंजाब सरकार दाना ना लेगी?
9: पंजाब सरकार से किसानों की ये नाराजगी बद इंतजामी की वजह से है। बेमौसम बारिश में किसानों की मेहनत डूबी तो किसानों का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया।
8: बोरियां देखो, बोरियां उत्तों पानी जा रहा है
10: जी।
8: बोरी कौन तुलाएगा? शैलर वाला तुलाएगा? आरजे की करेगा, जिमीदार की करेगा? देखो, कल ही इलेक्शन कल ही मंडी पहले बंद की हुई थी, साढ़े यार्ड पास कर दो, मंडी च जगह नहीं हैगी, मंडी नुकसान बहुत हो रहा है। असि किसानों के फायदे यार्ड बनाए ने, ना कि आधे फायदे। जे किसान की फसल रुलनी है तो सरकार जगह आप इंतजाम करे ना।
9: पानी के ऊपर तैरते हुए धान को समेटने की ये नौबत नहीं आती अगर मंडी में पानी की निकासी का सही इंतजाम होता, लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश में किसानों के सपने बह गए।
11: पर जो ये पानी की निकासी नहीं हुई ना, इसके लिए हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। 50 किलो माल है वो, देखो ये बोरी अपनी है, ये भी हाँ ये बोरी अपनी है, वो भी अपनी है, वो भी है, कुछ उधर साइड के पास पड़ा है जी। अब देख लो आपके सामने ही है, बहुत नुकसान। 6 महीने खेती की है जी, अब ये हाल है, अब क्या हाल है देखो।
9: पंजाब में बेमौसम की बारिश ने एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी की भी पोल खोल दी, जहां बेमौसम बारिश से बचाने तक के इंतजाम नहीं है। नतीजा, खुले आसमान के नीचे रखी धान की बोरियां भीग गईं। आपको धान की बोरियों पर दिख रहा ये तिरपाल भी किसानों ने लगाया है, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि किसान अपनी फसल पूरी तरह से बचाने में नाकाम रहे।
12: तुम्हें पता ही है, बहुत हालत खराब है।

0: ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਢੇਰੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜਨਾ ਹੀ ਵੜਨਾ ਹੈ।
1: ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕਾ ਯੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚ ਸਕਤਾ ਥਾ ਅਗਰ ਤੈਅ ਵਕਤ ਪਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਧਾਨ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਤੀ। ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਯੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਧਾਨ ਕੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਟੌਤੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 3 ਸੇ 5 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਧਾਨ ਕਾਟਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਨਾ ਪੜ ਰਹਾ ਹੈ।
2: ਗੁਲਮਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੀ।
1: मंडी में किसानों की मेहनत पानी में जाने के सवाल पर खन्ना मार्केट कमेटी के सचिव कमलदीप सिंह मान रहे हैं कि उन्होंने तो बारिश से फसल को बचाने के निर्देश पहले ही दे दिए थे।
3: मेरे वालों आड़तियों मुलाजमान नूं ते अपने सिविल विंग के अधिकारियों लिखती ते जवानी तौर पर पहले ही हिदायतां कीतियां हुई सन, उन्हां वालों ये प्रबंध पुख्ता तौर पर किए हुए।
1: पंजाब जैसा हाल हरियाणा में भी दिखा। अंबाला में बारिश का पानी अनाज मंडी में भर गया, धान की बोरियां पानी में डूब गई, किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। अंबाला में किसानों का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन्हें नुकसान हुआ है।
4: रात सारी रात नहीं बैठे रहे, जगह नहीं थी, फिर आरती ने जगह मड़वाई, फिर दोपहरा बरसात है 10 बजे
5: भिजगी,
4: हटका सारी लेबर पड़ेगी दोबारा।
6: नुकसान
4: तो काफी है।
1: किसान कह रहे हैं कि मंडी में सरकारी लापरवाही ने बर्बाद कर दिया, वहीं मंडी बोर्ड की तरफ से अब नालियां साफ करवाई जा रही हैं।
7: मंडी में जल भराव है, उसमें हमने कर्मचारी लगाए हुए हैं, जो भी नालियों में कहीं जीरी का कबाड़ वगैरह फंसा हुआ था उसको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसान को की जीरी ना गिली हो और जो माल बोरियों में पैक है वो भी गिला ना।
1: इसे कहते हैं सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटना। पंजाब और हरियाणा में किसान परेशान हैं, बारिश में उनका धान डूब गया और जिनकी जिम्मेदारी है वो अब आगे सब ठीक करने का दावा करते फिर रहे हैं। सवाल ये है कि किसान अब इस दावे का क्या करें।

0: त्योहारों की खुशियों के बीच आम आदमी की जेब पर महंगा झटका लगा है। इसकी वजह आरबीआई एमपीसी की तरफ से बढ़ाया गया रेपो रेट है, जिससे लोन की ईएमआई बढ़ने की आशंका है। आरबीआई ने करीब 3.5 साल बाद ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। इसके साथ ही पॉलिसी रुख को न्यूट्रल से बदलकर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कर दिया है, यानी जरूरत पड़ने पर आगे भी ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। दरअसल महंगाई दर लगातार आरबीआई की 4% के सुरक्षित लक्ष्य से ऊपर बनी हुई थी। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक को रेट बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 25 basis points to 5.5%. Consequently, the STF rate stands adjusted at 5.25% and the marginal SFF and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%.
0: इस फैसले का सीधा असर आपकी हर महीने जाने वाली ईएमआई पर पड़ेगा। अगर बैंक भी इसी तरह ब्याज दर बढ़ाएंगे तो 50 लाख के 20 साल के होम लोन पर ब्याज दर 8.5% की जगह 9.25% हो सकती है। इससे ईएमआई करीब 800 रुपए बढ़कर 42,200 रुपए हो जाएगी। हालांकि बैंक एफडी पर भी आगे से ज्यादा ब्याज का फायदा मिलने की संभावना है। इसी के साथ आरबीआई ने महंगाई और ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ा दिया है।
1: With headline CPI inflation expected to average almost 5.8% in the next three quarters, including this, and core inflation projected at 4.4% for this financial year. Real GDP growth for this year is projected at 7.1%, with Q2 at 7.2%, Q3 at 6.9%, and Q4 at 6.8%.
0: साफ है कि ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी आगे भी जारी रह सकती है, जिससे कर्जदारों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाने वालों को बैंकों से ज्यादा रिटर्न का तोहफा मिल सकता है। आदित्य केराड़ा, आज तक।

बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में नाव पलटी, अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि, मरने वालों में कई बच्चे शामिल। सीएम सम्राट चौधरी ने दिया 4-4 लाख रुपए का मुआवजा, प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया। दिल्ली में जंतर मंतर पर 13 अक्टूबर को प्रदर्शन मामले में सीजेपी नेताओं पर एक्शन, एफआईआर के बाद पुलिस ने सौरभ दास, आशुतोष राका समेत 3 को एहतियातन गिरफ्तार किया। विपक्षी प्रदर्शन को लेकर अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे राहुल, 2029 में भी करारी हार के लिए तैयार रहें। पंजाब के मानसा में ड्रग्स एक्टिविस्ट परमिंदर छोटा मर्डर केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान के सालासर से पकड़ा गया कैमरे पर फायरिंग करने वाला शूटर। और कोलकाता में ममता बनर्जी पर चाकू से हमले की कोशिश का आरोप, आरोपी महिला को पुलिस ने डिटेन किया, डोला सेने दर्ज कराई पुलिस में शिकायत।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 8 बजे हैं और इस खास बुलेटिन सुपर 8 में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें होंगी। आपको बताएंगे कि बिहार में हुए नाव हादसे पर अपडेट दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, कैसे बच्चों की मौत पर टूटा गमों का पहाड़। दिल्ली रेस्टोरेंट में भी आपकी खबर दिखाएंगे और खबर मानसा से भी, जहां एक एक्टिविस्ट की हत्या को लेकर के हम आपको अपडेट भी बताएंगे। खबर सियासी जगत की भी बताएंगे कि कैसे राहुल की टी पार्टी में विपक्ष ने रणनीति और क्या रणनीति बनाई है। जेएनयू में 11 छात्राओं के यौन शोषण के आरोपों से घिरे कैसे कांग्रेस के सांसद, ये भी खबर आपको दिखाएंगे। और साथ ही खबर कश्मीर में हो रही बर्फबारी की भी दिखाएंगे। और इस बुलेटिन में सबसे पहली खबर बिहार के हाजीपुर से, जहां गंगा नदी में नाव पलटने से दर्दनाक हादसे में 14 बच्चों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक सभी मरने वाले बच्चे एक ही गांव के हैं। हादसे के दौरान वे सभी नाव से बगल के गांव में भोज खाकर लौट रहे थे। नाव पर 20 से 25 लोग सवार थे शुरुआती जानकारी के मुताबिक, और इन सभी में ज्यादातर बच्चे ही नाव पर सवार थे। इस मामले में 14 बच्चों की मौत हो गई है। 6 लोगों को रेस्क्यू के बाद अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 अन्य लोग भी अब सुरक्षित बचा लिए गए हैं। अभी भी हालांकि कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे इलाके में चला रही है। बीती रात की हादसा, ये तमाम सारे बच्चे जो थे नाव पर बैठ करके बगल के गांव में भोज के लिए गए थे, भोज से वापस लौट रहे थे, और तब जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक नाव बीच से फटने लगी, उसमें पानी भरने लगा, नाव डूबने लगी और बगल में एक और नाव जा रही थी, जिससे जो लोग थे वो पानी में कूदे। उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक ये कोशिश होती, एक तो रात का समय था और रात के समय इस इलाके में नाव के ऑपरेशन पर, खासकर ये देसी कंट्री मेड नाव है जिनमें मोटर भी नहीं होती है, इन नाव के ऑपरेशन पर भी रोक है। और ये सोचिए कि सभी बच्चे एक ही गांव थे और आज उन परिवारों में गम का माहौल है। उनके आंगन में जिन बच्चों की किलकारी गूंजती थी, वो खेलते कूदते थे, आज उस आंगन में उन बच्चों के शव आए हैं। तो न जाने कितने गांव के इस परिवार ने अपने चिराग खो दिए, उनके चिराग बुझ गए। जान गंवाने वाले सभी बच्चे एक ही गांव के थे। पीड़ित परिवारों का रो रोकर बुरा हाल है। वहां से और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता रोहित सिंह।
1: हम इस वक्त मौजूद हैं राघोपुर के ही रामपुर श्यामचंद गांव में, जहां पर ये घटना बीती रात तकरीबन 8 बजे घटी है, जब श्राद्ध का भोज खाने के लिए एक नाव पर ये तमाम बच्चे जो है वो सवार होकर दूसरे गांव गए थे। और जो जानकारी है कि वापसी के दौरान नाव पलट गई और उसके बाद नाव पर जो सवार तकरीबन 20 से 25 लोग थे, उसमें से 14 लोगों की मौत हो गई और उसमें से लगभग सभी जो हैं वो 10 से 14 साल के मासूम बच्चे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त इस गांव में चीख पुकार मचा हुआ है और तमाम जो लाश है उनको पानी से निकाला जा चुका है बीती रात, और प्रशासन कल रात से ही यहां पर आकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है और उस नाव को भी जो है वो नदी से निकाल लिया गया है। लेकिन किन परिस्थितियों में ये घटना घटी है, वो बेहद कह सकते हैं वो परेशान करने वाली ये कह सकते हैं तस्वीर है, जब आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। और इस घटना में 14 मासूम बच्चों की तो मौत हुई है, साथ ही साथ 6 जो है वो घायल भी हैं, उन्हें भी अस्पताल में रखा गया है इलाज के लिए और 3 लोगों को जो है वो सुरक्षित निकाला गया है।
0: ये छोटे छोटे बच्चे जो हंसते खेलते घरों को लौटते थे, वो मातम का माहौल है। रोहित सिंह हमारे सहयोगी उस जगह पर मौजूद है जहां यह हादसा हुआ बीती रात। सीधे रोहित के पास आपको लिए चलते हैं। रोहित, अभी हाल फिलहाल में इस पूरे इलाके में बाढ़ भी थी, गंगा का जलस्तर था, कितनी मुश्किलें राहत बचाव कार्य में आ रही हैं और कितने बच्चे अभी भी लापता हैं?
1: नहीं आशुतोष, देखिए अभी हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये घटना घटी है। आप मेरे पीछे ये जो आप नदी देख सकते हैं, दरअसल यही गंगा नदी का एक छोटा हिस्सा है और सामने जो आप वो गांव देख रहे हैं, आपको हम नदी के पार मात्र आप कह सकते हैं 100 से 150 मीटर की ये पूरी दूरी है इस नदी की, अभी पार करके वहीं पर श्राद्ध का भोज खाने के लिए ये बच्चे गए हुए थे और वहीं से जब वापस आ रहे थे तो इसी दौरान यहाँ पे बीच नदी में ये हादसा हुआ है जिसमें 14 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। और मैं जिस नाव पर इस वक्त हूँ मौजूद, ये दरअसल वही नाव है जो दुर्घटना ग्रस्त हुआ है कल रात में, और थोड़ी देर पहले इसको SDRF की टीम ने पानी से जो है वो निकाल भी लिया है। और आप इस नाव की स्थिति देखिए, नाव देखने से ही जर्जर स्थिति में नजर आ रहा है। और स्थानीय लोगों का दावा है, स्थानीय नेताओं का दावा है, जो ये एक सरकारी नाव है और उसमें आप देखिए इसमें बैठने की ज्यादा जो है वो लोगों की जगह नहीं है, 8-10
0: लोग देख पा रहे हैं। रोहित, आखिर वो हिस्सा जो नाव का था उसमें दरार कहां से आई थी जिसकी वजह से पानी में डूबी, क्या आप वो हिस्सा देख पा रहे हैं नाव में जिसकी वजह से नाव पानी में बैठी?
1: बस वही मैं आपको बता रहा हूं। तो आप देखिए पहले ओवरलोडिंग का मामला बनता है कि किस तरीके से छोटे से नाव में जहां 10 लोग ही बैठ सकते हैं वहां बताया गया कि 20-25 लोग जो है सवार थे। अब दूसरी बात देखिए, ये नाव किस हालत में जर्जर है, ये आप देखिए इस नाव में इतना बड़ा छेद, आप देखिए आप ये देख सकते हैं नाव में इतना बड़ा जो है दरार आप नजर आ रहा है। और क्योंकि जब ओवरलोडिंग हुई होगी तो जाहिर सी बात है नाव का ये हिस्सा जो है जो टूटा हुआ है, जो इतना बड़ा छेद है, तो पानी इसके जरिए भी नाव के अंदर प्रवेश किया और उसके वजह से जो है अचानक स्थिति जो है वो काफी खराब हो गई। और जब नाव के अंदर पानी भरा होगा तो जाहिर सी बात है छोटे बच्चे थे 10-14 साल के, तो वहां पर एक तरीके से कहें तो हड़बड़ी की स्थिति हो गई होगी, इधर उधर बच्चे भागने लगे होंगे और उसी दौरान उस आपाधापी में ये नाव पलट गई। और उस घटना में जो है सभी बच्चे जो उस वक्त डूब गए थे, लेकिन कुछ बच्चों को निकाला गया है, लेकिन इस घटना में 14 मासूम बच्चों की जो है वो मौत हो गई है। और आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल अब इस नाव को तो निकाल लिया गया है, और क्योंकि गांव के ही सब बच्चे थे और 14 के 14 बच्चे एक ही गांव के थे, तो जाहिर सी बात है गांव में चीख पुकार चित्कार जो है वो मचा हुआ है। और इस नाव की स्थिति पर आप देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। हमारी बात पूर्व इस इलाके के जो विधायक है बीजेपी से सतीश राय, उन्होंने भी बताया कि इस बात की तस्दीक की कि ये सरकारी नाव है और काफी साल से ये नाव जो है वो दिया गया था इस इलाके में परिचालन के लिए, लेकिन इसका शायद रखरखाव ठीक से नहीं किया गया और जिसकी वजह से जो है इस तरीके का जो है सुराख आप देख सकते हैं, बड़ा बड़ा सुराख जो है यहाँ पे इसमें आपको नजर आ रहा है। और इसीलिए शायद संभवतः ये घटना घटी कि एक तरफ तो ओवरलोडिंग,
0: ठीक है रोहित, आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं ये सिर्फ आंखें नहीं खोलती हैं बल्कि ये बताती हैं कि बिहार में ऐसे न जाने कितने हादसे उन इलाकों में जहां पर लोग अभी भी एक गांव से दूसरे गांव आने जाने के लिए नाव पर निर्भर हैं। ये नाव नहीं है, ये आपकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, एक छेद भी हो नाव डूबने लगती है। यहां आपने देखा हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट दिखाई कि ये वो देसी नाव है जो सरकार ने मुहैया कराई है जहां पूरा हाथ आर पार ले जा सकते हैं। सोचिए अगर ये डूबे होंगे उस समय क्या कितना दर्दनाक वो हादसा। अगली खबर का दिल्ली के मौजपुर इलाके से खबर आ रही है जहां रेस्टोरेंट के किचन में आग लग गई। बीती रात करीब 10:30 बजे हादसा हुआ। इस दौरान लोग जान बचाने के लिए रेस्टोरेंट की पहली मंजिल से कूदते हुए नजर आए। जानकारी के मुताबिक सभी लोग सुरक्षित हैं। जैसे ही यहां पर आग लगी चारों ओर धुआं भरने लगा और लोग इससे पहले वहां पर आग की लपटें पूरे रेस्टोरेंट को चपेट में लेती, लोग संभल गए, सजग रहे और उसके बाद तुरंत ही बालकनी के हिस्से में आए। और देखिए वो तस्वीरें हैं, रात को 10 बजे जो लोग सक्षम थे वो वहां से कूदते हुए नजर आए। उसके बाद कुछ लोगों ने मदद के लिए वहां से कपड़ा लटकाया ताकि उसमें जो महिलाएं थी उनको किसी तरह उसे निकाला जा सके। ये देखिए, और नीचे भी जो स्थानीय लोग थे वो भी मदद के लिए पहुंच गए। रेस्टोरेंट में आग के बाद गनीमत की बात ये रही कि किसी की जान नहीं गई, कोई घायल नहीं हुआ। लेकिन आपको याद हो दिल्ली कैसे दावानल बनती गई, सबसे पहले एक होटल में चपेट में आई जहां पर विदेशी नागरिक थे वो जलकर खाक हो गए, एक इमारत थी जो जमींदोज हो जाती है, हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे वो उसकी चपेट में आते हैं। और अब ऐसे न जाने कितने रेस्टोरेंट हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं अगर समय रहते लोग मदद के लिए नहीं पहुंचते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। अगली बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब के मानसा में एक एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह होटा की हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुख्य आरोपी का नाम अश्विनी है जिसे पुलिस ने राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर मानसा में जबरदस्त गुस्सा है। बीती रात प्रदर्शन के बीच SSP परिजनों से मिलने पहुंचे लेकिन इंसाफ की मांग कर रहे परिजनों ने साफ कह दिया सिर्फ इंसाफ चाहिए। इसके बाद SSP मौके से लौट गए। मानसा में परमिंदर की हत्या के बाद माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। और जैसे ही लोग नाराजगी में लौट, ये वो दुकान है जहां पर दुकान के मालिक ने गोली चलाई थी, नाराज लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ की। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को काफी संघर्ष करना पड़ा, इलाकों में लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन अब उस आरोपी अश्विनी को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर गुवाहाटी से, एक महिला से बैग छीनने की कोशिश की गई और इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने महिला को करीब 50 मीटर तक घसीटा। ये पूरी वारदात वहां आसपास के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। महिला पैदल जा रही थी और तभी बदमाशों ने उसका बैग छीनने की कोशिश की, काफी दूर तक महिला को घसीटा और उसके बाद आरोपी मौके से भाग गए। ये देखिए वो तस्वीरें भी आई हैं, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे। महिला जा रही थी गुवाहाटी में और बाइक पर दो लोग सवार हैं, पीछे बैठा जो शख्स है वो बैग छीनने की कोशिश करता है। ये देखिए ये महिला जा रही है अपने गंतव्य की ओर और अचानक बाइक सवार आते हैं, स्कूटर स्लो किया, उसने झपट्टा मारा, बैग छीनने की कोशिश की, महिला वहां गिर जाती है। लेकिन उसने जब बैग नहीं छोड़ा तो लगभग 50 मीटर तक उस महिला को घसीटा और उसके बाद जब वो सफल नहीं हुए तो बाइक सवार भागने में कामयाब हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी तस्वीरों को लेकर के जांच कर रही है, आरोपियों की तलाश की जा रही है।

0: और अब खबर दिल्ली में मचे सियासी एसआईआर के घमासान की, क्योंकि राहुल गांधी के आवास पर इंडिया ब्लॉक ने चाय पर चर्चा की। बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि देश में लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है, ये लड़ाई अलग अलग नहीं है बल्कि एक आंदोलन है। तो राहुल गांधी के अलावा विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने भी एक सुर में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन कैसे होगा वो बाद में बताया जाएगा, लेकिन जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होगा विपक्ष अपना संघर्ष जारी रखेगा और इस संघर्ष में पूरा विपक्ष एक साथ है। इन दो तस्वीरों को देखिए कि चाय पर चर्चा के लिए सबसे पहले आपको याद हो सुप्रीम कोर्ट तक मार्च की, वहां पर याचिका दाखिल की और उसके बाद चाय पर चर्चा अगले दिन बुलाई गई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो चाय पर चर्चा में इंडिया ब्लॉक के जितनी पार्टियां वो शामिल हुए सबने एक साथ एक मत होकर यह तय किया कि आंदोलन, यानी अब आंदोलन दिल्ली में नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी होगा, अलग अलग राज्यों में भी उसे ले जाएगा। देखिए चाय पार्टी को तस्वीरें भी हैं, आपको एमएवे भी दिखाई दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं, तेजस्वी यादव भी दिखाई दिए। तो इंडिया ब्लॉक के तमाम गठबंधन, यानी कोशिश क्या है, मंशा ये है कि यह संदेश दिया जाए कि इंडिया ब्लॉक में एकजुटता है। एकजुटता इसलिए क्योंकि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हैं और वहां पर भी एकजुटता का संदेश दिया जाएगा, यानी एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश एक सियासी समीकरण भी बना रही है।
1: देखिए मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैंने परसिवियरेंस शब्द यूज किया कि ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 3 महीने बाद, 3 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो 1 साल, नहीं तो 2 साल, ये रुकने वाली नहीं, ये एंड गोल तक जाएगी। कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि फिर आप को सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइजिंग रहे। मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
0: इधर राहुल गांधी आक्रामक हुए तो उधर जवाब आया गृहमंत्री अमित शाह की ओर से। अमित शाह ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला। शाह ने विपक्ष के मार्च पर सवाल उठाते हुए कहा कि 14 पार्टियों के 8,000 कार्यकर्ता जुटाने से कोई जनता की आवाज नहीं बन जाता। एसआईआर के विरोध को उन्होंने राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ योजना करार दे दिया। शाह ने कहा राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस की हालत लगातार खराब हो रही है। उन्होंने गुजरात में कांग्रेस की हार पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि 2029 में भी बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज करेगी।
2: एसआईआर तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए।
0: तो हमला, जवाब, फिर हमला। तो अमित शाह ने राहुल गांधी पर जब पलटवार किया तो कांग्रेस ने फिर जवाब दिया। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने बीजेपी के 2029 में जीत के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर निशाना साधा है।
3: आते बहुमत लाते लाते 50-60 साल लग गए, फिर क्या कहें हम। ये अजीब सी टिप्पणी है साहब कि कांग्रेस कई राज्यों में इतने सालों से, भाई आप तो देश में कितने सालों तक नहीं थे, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। फिर कहते हैं 29 भी हम जीतेंगे, क्यों इतना भरोसा है ज्ञानेश पर, और ज्ञानेश रहेगा 29 तक। ये चुनाव आयोग जिस तरह से चल रहा है हम चलने देंगे 29 तक, कि इतना भरोसा, हमारी बात साबित करते हैं ये बात कहकर, तो वो कि 29 में भी हम जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हो साहब, सड़क पे तो निकल कर देखो, गुस्सा तो देखो लोगों का आकर, हटाओ पुलिस और आकर देखो गुस्सा।
0: एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है दिल्ली से, जहां जंतर मंतर पर कल हुए सीजेपी के प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज कर ली और अब सौरभ दास, आशुतोष राका और अजिंक्य शिंदे को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है, एहतियातन हिरासत में लिए जाने का। आपको बता देते हैं अक्टूबर यानी मंगलवार को सीजेपी लीडर जेडीयू दफ्तर के दरवाजे को फांद गए, जंतर मंतर पहुंच गए। ओसी मामले में शिकायत के आधार पर ट्रेस पासिंग का केस दर्ज हुआ है। सीजेपी की ओर से भी जानकारी दी गई है कि इन सबको जब एहतियातन हिरासत में ले लिया गया है तो अब से थोड़ी देर बाद इन्हें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के पास ले जाया जाएगा। तो उनकी जो लीगल टीम है सीजेपी की, वो भी यहां पर पहुंच रही है। अजिंक्य शिंदे, सौरभ दास, आशुतोष राका, इन तीनों के साथ इनके तमाम जो सहयोगी, वो तस्वीरें भी आ रही हैं। जंतर मंतर जो कि पूरी तरह किले में तब्दील है, वहां ये तीनों आखिर पहुंच गए और अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।
4: अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो एक रूल बुक से चल रही है और वो रूल बुक ये है कि उनको ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, वो लॉ को साइड में रखते हैं और उस रूल बुक को फॉलो करते हैं। आज भी हमने देखा कि कैसे जब ये सारे लोग जंतर मंतर पर गए हैं सिर्फ तिरंगा फहराने के लिए, वो फहराने के लिए उनको डिटेन करा गया, 24 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं, उनको किसी भी लॉयर से नहीं मिलने दिया, उनको क्यों अरेस्ट डिटेन करके रखा है उसके ग्राउंड्स नहीं बताए, अभी जब अरेस्ट करा है तब उन्होंने ग्राउंड्स बताए हैं ऑफ अरेस्ट।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: How's the hostel? Settled?
3: Yes, Mom, really nice.
2: कोई आ रहा है क्या?
4: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
2: मयंक, फॉर रियल?
4: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिडाइज टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।
5: यार ड्रिल करना पड़ेगा।
6: ड्रिल? नहीं नहीं, ओनर से पूछना पड़ेगा।
7: इसका नाम क्या रखेंगे?
8: ये भी ओनर से ही पूछ लेते हैं।
9: अरे भाई साहब, कब तक ओनर के डर में रहेंगे? शान से अपने घर में रहिए ना, विद कैनरा होम लोन।

0: Look what I can do.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview. Look what I can
2: do. Yaar, loan bhool gaya. Maddie, suggest a good bank, na?
3: Ujjivan Small Finance Bank.
2: Small Finance Bank?
3: Small. Working capital loan,
4: home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
5: There's nothing small about it.
6: Ujjivan, nothing small about us.
7: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो ठुमका लगाने बस
8: मेरे पास एक आइडिया है
7: क्या
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
9: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
10: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है
11: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है
9: कौन सी बनानी है
12: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
13: Money, money, money, money, every month.
14: सोच बदलो और बैंक भी.
15: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं.
16: गोल्डी लाए हैं fresh lock technology, जो रखे मसालों को हर समय fresh.
17: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
18: Itne payment apps were safe, kaun sa?
19: To switch to Beam. Ekdam safe aur bharosemand. Rewards bhi milte rehte hain. Pao 40 rupees ka cashback, 40 rupees se zyada ki pehli payment par. Beam app se karo pay.
20: It's a my way.
21: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं
22: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम
23: आई लव इट एब्सोल्युटली अमेजिंग तुम एक काम करो तुम मिठाई ऑर्डर कर लो
24: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
23: क्या
24: इनकी राय
25: नई सोच की नींव में हम हर नई उम्मीद में हम गैलेंट निर्माण का रियल हीरो
26: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर बेबाक है मेरा सिग्नेचर सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप
27: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा और देश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो
28: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना वहाँ खाया शहद पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा अरे कश्मीर क्यों जाना कश्मीर ही यहाँ आ गया
29: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद लायन कश्मीर हनी
28: असली शहद असली स्वाद
30: In association with Canara Bank, together we can.
31: Anmol Biscuits, Swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
32: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
33: Rajasthan ki siyasat ka sabse bada manch. Jahan hogi yuvaon ke man ki baat aur milega yuvaon ke har sawal ka jawab. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर

0: दिल्ली की सियासत में ये दूसरा मोर्चा है। कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी की महिला मोर्चा ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कांग्रेस सांसद की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी रहे। इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम पर जेएनयू की 11 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अकोईजाम जेएनयू में प्रोफेसर थे। वहां की 11 छात्राओं ने उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर इल्जाम लगाए। तमाम आरोपों के बाद जेएनयू ने आंतरिक जांच बिठाई। इस जांच में अकोईजाम पर तमाम आरोप सही साबित पाए गए। उसी रिपोर्ट के आधार पर जेएनयू ने 9 अक्टूबर को प्रोफेसर पद से उन्हें हटा दिया। उसके दो दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR भी दर्ज करा दी। दिल्ली पुलिस का FIR दर्ज करते ही कांग्रेस सांसद के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस पर हमला बोला।
1: हमारे 9 अक्टूबर को 2026 को बिमल अकोईजाम जो कांग्रेस के सांसद हैं उनके खिलाफ बहुत संगीन सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों में तथ्य पाए गए और इसीलिए जेएनयू की इंटरनल कमिटी ने उनको तुरंत नौकरी से बर्खास्त करा। बहुत अजीब बात है कि इस पर चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी जी भी, माननीय प्रियंका गांधी जी भी, खड़गे जी भी और माननीय सोनिया गांधी। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट नहीं करा। इसीलिए मैं आज पूछना चाहती हूँ उनसे, राहुल गांधी जी, क्या स्मैश द पेट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला है, केवल एक पॉलिटिकल रेटोरिक है?
0: बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं पर हमले के आरोप भी लगाए। जेएनयू के प्रोफेसर रहे कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम के खिलाफ सियासी संग्राम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी जगहों से गिरफ्तारी की मांग उठी है, लेकिन कांग्रेस अपने सांसद पर लगे गंभीर आरोप और दर्ज FIR को लेकर अब तक तमाम आरोपों को लेकर चुप है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: मैं पहले से ये कहता आ रहा हूँ कि राहुल गांधी भले ही संविधान दिखा रहे हैं, लेकिन उनका प्लान, उनकी मोडस ऑपरेंडी दूसरी है। संविधान सामने करके जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करना, उनके बारे में लोगों के मन में प्रश्न तैयार करना, लोगों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं से उड़ जाए, इस प्रकार की व्यवस्था तैयार करना, इस व्यवस्था को तैयार करके अराजकता एनार्की और फिर एनार्की लाकर लोगों के मन में यह भावना तैयार करना कि संविधान ने तैयार की हुई डेमोक्रेटिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमको न्याय नहीं दे सकती, और फिर ये सारी व्यवस्था को जो साम्यवादी व्यवस्था है, कम्युनिस्ट व्यवस्था है, उस व्यवस्था की ओर ले जाना, इस प्रकार का डिजाइन ये राहुल गांधी ने तैयार किया है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बिहार के वैशाली में गंगा में नाव पलटी हादसे में 14 लोगों की मौत और 6 की हालत गंभीर। नाव हादसे में मरने वालों सबसे अधिक बच्चे, पुलिस के मुताबिक सभी श्राद्ध का भोज खाने जा रहे थे। SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन इलाके में जारी है। हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर DM का घेराव किया। पुलिस ने समझाकर शांत कराया। नाव हादसे में मरने वाले बच्चे की उम्र 6 से 15 साल के बीच है। परिवार और पूरे गांव में मातम पसरा है। PM मोदी ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और 50,000 घायलों को सहायता देने का ऐलान किया गया है। BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। वैशाली नाव हादसे पर सीएम सम्राट ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। राघवपुर नाव हादसे पर तेजस्वी यादव ने दुख जताया। बोले, मेरे विधानसभा इलाके में बेहद दुखद घटना हुई है। मैं अभी दिल्ली में हूं, आज पटना पहुंच रहा हूं। हादसे पर चिराग पासवान ने भी दुख जताया। बोले, मासूम बच्चों की मौत की खबर हृदय विदारक है। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। लोगों ने जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल की खिड़की से छलांग लगाई। समय रहते आग पर काबू पाया गया। बड़ा हादसा टल गया। लोगों को जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर कूदना पड़ा। फिलहाल आग लगने के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। मामले से संबंधित विभाग की जांच और आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। स्थानीय लोगों ने भी जान बचाने के लिए लोगों की मदद की। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसे के बाद फिर बिना फायर NOC चल रहे रेस्टोरेंट पर सवाल उठे हैं। उधर फिश पॉइंट के पास फायर NOC थी या नहीं, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। राहुल गांधी का CC ज्ञानेश के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान। इंडिया गठबंधन राज्यों तक तेज करेगा विरोध। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को नहीं छोड़ेंगे। लोकतंत्र को बचाना हमारा मकसद है। राहुल गांधी को अमित शाह का जवाब, कहा SIR के बहाने घुसपैठिया बचा रहे हैं राहुल। अमित शाह ने कहा 2029 में भी करारी हार के लिए तैयार रहे राहुल। देश की जनता को मोदी पर भरोसा है। KC वेणुगोपाल का अमित शाह पर तंज। बोले 2029 तक पद पर बने रहने की चिंता करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों से बचने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शाह पर पलटवार करते हुए पूछा, ज्ञानेश कुमार पर इतना भरोसा क्यों, क्या 2029 तक पद पर रहेंगे CEC? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, SIR गलत है तो इसके सभी 6 मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। जहां जीते वहां SIR सही और जहां हारे वहां गलत कैसे। CEC पर राहुल के आरोपों को पीयूष गोयल ने बताया बेबुनियाद। कहा, कांग्रेस चुनाव आयुक्तों को राज्यपाल मंत्री बनाती थी। नेता विपक्ष से 10 सवाल भी पूछे। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि बचकानी हरकत कर रहे हैं राहुल। चुनाव आयोग ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। खड़गे ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन के अभियान को व्यापक समर्थन मिला है। बोले, वोट चोरी कथित साजिश का पर्दाफाश करने के लिए लोग तैयार हैं। तेजस्वी यादव का CC ज्ञानेश कुमार पर बड़ा आरोप। बोले, मोदी शाह के इशारे पर लोकतंत्र को चलने और वोट से चोरी की साजिश रच रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है। इस प्रोटेस्ट ने दिल्ली को बदल दिया है। संजय राउत ने CC ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला। बोला, बोले माफिया है, पूरे सिस्टम का अपराधीकरण कर दिया। सुप्रिया सुले का ऐलान, इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से एकजुट है। संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली से गांव-गांव तक जारी रहेगा आंदोलन। आईसा के छात्र नेता नेहा बोरा का बीजेपी पर निशाना। बोली, CC ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें, विपक्षी एकजुटता जरूरी है। संविधान और मतदाता अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट मामले में FIR दर्ज की गई है। सौरभ दास आशुतोष समेत अन्य पर केस दर्ज। JDU दफ्तर में घुसने की शिकायत पर ट्रेसपासिंग का आरोप। अभिजीत दिपके का बड़ा बयान। कहा, उन्हें लगता है कि जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहेगा और ये बंद हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर आपका कल दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन। CC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR रद्द करने की मांग। एल मुरुगन ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी, केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ने की अनुमति मांगी। कहा, तमिलनाडु में काम करूंगा। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू से मुलाकात की। बीते कल कनॉट प्लेस में NSUI का प्रदर्शन। CC के इस्तीफे की मांग को लेकर अचानक ही पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। मुंबई प्रदर्शन में हिरासत के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा बयान। कहा, ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं दे सकते, पुलिस कार्रवाई के विशेष मामलों पर सबूत मांगे। सुनेत्रा पवार के पैनल का सोमेश्वर चीनी मिल चुनाव में क्लीन स्वीप हुआ है। सभी 21 सीटों पर जीत हुई। विरोधी पैनल का खाता भी नहीं खुला। महाराष्ट्र में FDA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्रपति संभाजीनगर में 23,35,000 रुपए का 12,000 किलो संदिग्ध मिलावटी तेल जब्त किया है। बीड में भी प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ पकड़े गए। मुंबई में डोमिनोज समेत 3 आउटलेट फूड सस्पेंड हुए हैं। जांच में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया। वेज और नॉनवेज खाना एक ही फ्रिज में मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5,000 करोड़ की लागत से बनेंगे हॉस्टल। 21,000 विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा मिले। यूपी CM योगी आज 2 दिवसीय दौरे पर बनारस पहुंचेंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षक स्नातक महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। वाराणसी दौरे पर CM बाबा काल भैरव काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। कानून व्यवस्था और एयर शो की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक आज थामेंगे BJP का दामन। राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी शामिल होंगे। प्रयागराज में गरीबों को पक अपना आशियाना मिलेगा। माफिया अतीक के गढ़ में बनेगा पद्म आवास। मुख्यमंत्री योगी जल्द करेंगे भूमि पूजन। प्रयागराज के चकिया में अतीक के घर के पास 602 फ्लैट की आवासीय सोसायटी PDA की टीम ने जमीन का निरीक्षण किया। साफ सफाई शुरू हो गई है। कश्मीर में जुमे की नमाज के खुतबों के मुद्दे पर बवाल हुआ है। वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव पर NCPDP का BJP पर एजेंडा थोपने का आरोप। कहा, धार्मिक मामलों में दखल बर्दाश्त। पंजाब में परविंदर छोटा हत्याकांड में मानसा में लोगों का धरना प्रदर्शन जारी। इंसाफ की मांग पर अड़ा है परिवार।
परिवार से बातचीत करने मानसा के एसएसपी पहुंचे, भारी रोष के बीच सहमति न बनने पर धरनास्थल से वापस लौटे। पंजाब में नशे की आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कैमरे में कैद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी, राजस्थान से गिरफ्तार। परविंदर हत्याकांड के विरोध में पंजाब बंद का ऐलान, कानून व्यवस्था पर घिरी भगवंत मान सरकार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। गुरेज में पीर बाबा इलाके में भी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से दमकल विभाग की गाड़ी सड़क से फिसल गई। गुरेज में पुलिस ने जतकुशी में फंसे चार बाइकर्स को रेस्क्यू किया। सूचना मिलने पर बचाव दल ने केरल के बाइकर्स को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। बूटपथरी इलाके में भी ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे पहाड़ों का नजारा बदल गया। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम का मिजाज बदल गया, तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ गुलमर्ग, बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने मौज मस्ती की। कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला है, मैदानी इलाकों में बारिश, सोनमर्ग की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी। सोनमर्ग में बर्फबारी से ठंड भी बढ़ी है, कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट। देश में पहली बार ग्लेशियर झील पर स्वदेशी अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया है, 2 घंटे पहले बाढ़ की चेतावनी मिलेगी। राजकोट के गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मिनिएचर आर्टिस्ट कैप्टन स्मिथ मच्छर के लिए बनाई दुनिया की सबसे छोटी हनुमान चालीसा। देहरादून के विकास नगर में बेकाबू ट्रक साइबर कैफे में घुसा, भागकर लोगों ने जान बचाई, बड़ा हादसा टल गया। इंदौर के कैफे के बाहर दो पक्षों में जमकर मारपीट, 20 सड़क चले लात घूंसों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चोरी के टेम्पो ट्रैवलर का इंदौर में आतंक, कई वाहनों को टक्कर मारी, ऑटो चालक आरोपी घायल। गुरुग्राम के फारूक नगर में बस की टक्कर से ट्रैक्टर के 2 टुकड़े, ड्राइवर घायल। घटना के वक्त बस में 35 से 40 सवारियां मौजूद थी। जयपुर जिला परिषद चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर बेटा फूट फूट कर रोया, मां का टिकट कटने पर छलका दर्द पूर्व पार्षद बेटे का। मोगा के स्कूल में छात्रों के विवाद ने तूल पकड़ा, दो परिवारों के बीच जमकर मारपीट, प्रिंसिपल को भागकर बचानी पड़ी जान। पटना में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूटपाट, हथियार के नोक पर वारदात को अंजाम दिया। मेरठ के अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। राजस्थान में दीपावली से पहले बड़ी साजिश नाकाम, श्रीगंगानगर बॉर्डर पर ड्रोन से गिराए गए हथियार और विस्फोटक बरामद, हो गिरफ्तार। नोएडा की पॉश सोसाइटी में 1.5 करोड़ की चोरी, 2 फ्लैटों के लॉक काटकर सोना, 2 किलो चांदी कैश ले उड़े चोर। अलवर में एटीएम लूट की वारदात, रस्ते से बांधकर उखाड़ने की कोशिश नाकाम, बदमाशों ने कैमरे पर लगाया काला स्प्रे। जयपुर में अवैध ब्लास्टिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ, महेशवाड़ी पहाड़ी ढह गई, मलबे में दबे 2 मजदूर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मेरठ में नीला ड्रम कांड में आज होगा सजा का ऐलान, बेटी से मिलने को बेचैन है मुस्कान। झांसी में कार की टक्कर के बाद सड़क पर बर्जी बेल्टें, कई लोगों ने युवक को घेर कर पीटा। बेगूसराय में महिला डॉक्टर पर एसिड अटैक, पड़ोसी दुकानदार गिरफ्तार, महिला सुरक्षा पर सवाल। लुधियाना में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार का कहर, कार और मोटरसाइकिल को टक्कर मारी गई, एक नौजवान की मौत, सारा एक्सीडेंट पीछे आ रही कार के डैशबोर्ड में रिकॉर्ड हुआ। थाने के दीवा में भीषण आग लगी, ऑटो रिक्शा समेत 22 दोपहिया वाहन जलकर खाक हुए। ग्रेटर नोएडा के जहांगीरपुर में दिनदहाड़ युवक की हत्या का सीसीटीवी सामने आया, दौड़ा दौड़ा कर मारी थी गोलियां। उन्नाव में दीवार के विवाद, महिलाओं को लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा, सीसीटीवी में कैद, घटना 4 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भाई ने मोबाइल छीन स्कूल जाने को कहा तो 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया लड़का।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

अक्टूबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।

रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

समस्या हल होगी, किसी मंगल कार्य में व्यस्त रहेंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कर्क राशि, करियर में लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, देवी को हरी इलायची अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

लाभ होगा, परिवार की समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जल्दबाजी में काम करने से बचिएगा। देवी को हरी इलायची अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, मान

मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

रखें, धन खर्च पर ध्यान दें, परिवार में अशांति से बचें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, करियर में परिवर्तन के योग हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, खान पान में सावधानी रखें, देवी को हरी इलायची अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग होगा आपके लिए पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो थमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो

0: Black and Blue. Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
4: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
5: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
6: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
5: क्या?
6: इनकी राय।
7: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेट निर्माण का रियल हीरो।

0: जिस वक्त सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के हिंगोली में अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल थे, उस वक्त सीजेपी के बाकी के नेता दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में धरने की परमिशन मांगने पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस को अपनी चिट्ठी सौंप दी, लेकिन चिट्ठी सौंपने के बाद जब वो बाहर आए तो प्रशासन को सीधे सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया।
1: 24 घंटा टाइम ले लीजिए, लेकिन बॉल इज इन योर कोर्ट। आप बताइए किस दिन लोग डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर आ सकते हैं। फुल कोऑपरेशन के साथ पीसफुल तरीके से लोग गैदर होंगे एंड प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट तो जरूर होगा।
0: लेकिन अब मसला बदल गया है। सीजेपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन जंतर मंतर को डिनोटिफाई कर दिया गया, मतलब अब जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल नहीं रहा, मतलब सीजेपी वाले जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए 3 जगह निर्धारित कर दी हैं। ये जगह हैं रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड और पुराड़ी मैदान। अब मसला ये है कि इन तीनों ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल तो बना दिया गया, मगर 2 मैदानों में कार्यक्रम चल रहा है। रामलीला मैदान में रामलीला की तैयारी चल रही है, सीबीडी ग्राउंड में रामलीला की तैयारी हो रही है। बचा बुराड़ी का मैदान, जहां बारिश के बाद फिलहाल कहीं कहीं पानी भरा हुआ है। अब सवाल ये है कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कहां करेंगे। आज तक ब्यूरो।

0: दिल्ली के जंतर मंतर पर अब धरना नहीं, रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन मुश्किल। अगले ढाई महीने तक बुकिंग फुल और फीस भी लाखों पार। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर अब इतिहास बन गया है, क्योंकि जंतर मंतर को डीनोटिफाई कर दिया गया है। मतलब अब जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल नहीं रहा। सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए तीन जगह निर्धारित कर दी हैं। ये जगह हैं रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड, पुरानी मैदान। अब मसला यह है कि इन तीनों ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल तो बना दिया गया, मगर दो मैदानों में कार्यक्रम चल रहा है। रामलीला मैदान और सीबीडी ग्राउंड में भी रामलीला की तैयारी हो रही है। बचा भुराड़ी का मैदान, वहाँ बारिश के बाद फिलहाल कहीं कहीं पानी भरा हुआ है।
1: हम जिस रामलीला मैदान पर हैं, इस समय नवरात्रि के चलते आप देखेंगे कि यहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है। इस तरफ स्टेज लगा हुआ है और ठीक इसके पीछे यहाँ पर देखिए सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही मेला लगा हुआ है। कारोबार मेले का और लोगों के बचपन की यादें ताजा हो जाती है। इस रामलीला मैदान का अपना बहुत इतिहास रहा है। इस रामलीला मैदान ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, लेकिन अब इसे एक आंदोलन धरना प्रदर्शन स्थल घोषित किए जाने को लेकर के व्यापारी चिंता जता रहे हैं, स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है और ऊपर से जंतर मंतर को जिसकी एक अपनी पहचान रही है कि वहां पर धरने प्रदर्शन होते थे जिसकी वजह से सरकार सत्ता तक आवाज पहुंचती थी, उसको लेकर के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते आवाज उठाते हैं, वो भी नाराज।
2: साथियों, आप सभी जानते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं, करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा

0: सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के इस दौर में भारत में 500 मिलियन से अधिक यूट्यूब यूजर्स हैं, 500 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। हमारे यहां अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: जबरदस्त हंगामा बरपा है, ये है कांग्रेस का युद्ध अपने ही विरुद्ध। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं, कोई किसी को धक्का मार रहा है, कोई किसी पर जूता चला रहा है, मारपीट का फुल माहौल है। बता दें कि हाथापाई यूपी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय के समर्थक और कांग्रेस की पार्षद ममता चौधरी के समर्थकों के बीच हो रही है। दरअसल यहां पर यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा को आना था, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष आए उसके पहले पूर्व अध्यक्ष अजय राय अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंच गए। बताया जा रहा है कि अजय राय के समर्थकों ने कहा कि अध्यक्ष जी के लिए रास्ता दीजिए, जिस पर पार्षद ममता चौधरी ने पूछ लिया कौन अध्यक्ष। बस इसी बात पर समर्थकों में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि ममता चौधरी पर जूता फेंका गया है। इस बवाल के बाद कांग्रेस के सांसद अजय राय से पूछ रहे हैं कि हुआ क्या। लेकिन जिन लोगों ने ये बवाल देखा, सुनिए वो क्या कह रहे हैं।
2: कुछ दो तीन लड़के तो थे भैया, लेकिन अभी हम आपके ही कैमरे से उनको छानेंगे, देखेंगे वो कौन लोग थे। जहां तक है वो भाजपा के ही लोग थे, अजय राय जी के साथ किसी तरह अंदर आ गए थे और अजय राय जी का भी नाम खराब कर रहे हैं।
3: इधर महिलाएं सब लेके दोनों लोग के स्वागत में खड़ी थी, दोनों लोग में, तो उनके आदमी कहे कि आप लोग थोड़ा रास्ता जीत दीजिए, तो इसी पे ममता जी कही कि रास्ता दिए तो हैं, जाएं ना, हम लोग कहां चले जाएं। और कुछ एक शब्द और क्या बोली हमें नहीं ध्यान है, तो उस पर अध्यक्ष जी कहे कि ए ममता पार्षद होश में बात करिए।
1: 27 में यूपी में चुनाव है, और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश के नेता अगर खुद में ही लड़ते रहेंगे तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार तुम्हारा तरीके से
2: लप लप लप।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

रोक और हिदायत के बावजूद जंतर मंतर पर जबरन घुसने की वजह से सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष राका को 5 दिन की जेल। बेल बॉन्ड तोड़ने के मामले में दिल्ली की कोर्ट ने भेजा तिहाड़ जेल। बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में पलटी नाव, अब तक 14 की मौत की पुष्टि, मरने वालों में एक ही गांव के बच्चे शामिल। सीएम सम्राट चौधरी ने दिया 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। मुंबई में नाला सपारा इंपीरियल हाइट्स इमारत में लगी आग से 2 महिलाओं की मौत, 6 अस्पताल में भर्ती, दम घुटने से गई दोनों महिलाओं की जान। विपक्ष की चाय पार्टी में लोकतंत्र बचाने की कसम खाने वाले राहुल गांधी को अमित शाह का चैलेंज, 2029 में भी करारी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस, घुसपैठियों को बचा रहे हैं राहुल गांधी। पंजाब के मनसा में ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर जोटा मर्डर केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान के सालासर से पकड़ा गया कैमरे पर फायरिंग करने वाला शूटर।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी, लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर। चाय पर चर्चा के बाद अब क्या है राहुल गांधी का आगे का प्लान, हाई टी के बाद अगली रणनीति पर क्या बोले राहुल, कुछ ही देर बाद आपको दिखाएंगे। आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के 3 विधायक, यूपी की इस बड़ी खबर पर होगा फोकस। दीवार फांदकर जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश करने वाले सीजेपी नेताओं पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरभ दास और आशुतोष जाका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। दरअसल बेल बॉन्ड तोड़ने के आरोप में दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, दोनों को तिहाड़ जेल भेजा जा रहा है। रोक के बावजूद कल जंतर मंतर में घुसने की कोशिश उन्होंने की थी। दिल्ली पुलिस ने सौरभ दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को कल हिरासत में ले लिया था। फिर बाद में बताया गया कि दोनों की एहतियातन गिरफ्तारी हुई है। थोड़ी देर पहले तीनों को SEM कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सौरभ दास और आशुतोष रांका को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुना दिया है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ये न्यायिक हिरासत बढ़ भी सकती है क्या 5 दिन की?
1: देखिए, फिलहाल तो 5 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में यानी न्यायिक हिरासत में दोनों को भेजा गया है, आशुतोष और सौरभ दास को। इन्होंने बार बार BNS की धारा 163 का उल्लंघन किया और ये रिपीट ऑफेंडर हैं, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। इस वजह से इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जबकि इनका एक साथी है अजिंक्य, वो उससे पीस बॉन्ड भरवाया जा रहा है और पीस बॉन्ड भरवाने के बाद उसको रिलीज किया जाएगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कल ये जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, जबकि वहां पर जो BNS की धारा 163 लागू है, किसी तरह के प्रोटेस्ट की मनाही है वहां पर, और नई दिल्ली के जो हालात है उसके बावजूद भी ये JDU पार्टी का जो दफ्तर है उसके परिसर से अंदर दाखिल हुए हैं। JDU पार्टी का जो गेट है उसको जंप किया है और उसके बाद ये जंतर मंतर पर पहुंचे थे, जहां से सभी को हिरासत में लिया गया। कल इस मामले में ट्रेसपासिंग की FIR दर्ज हुई और उसके बाद इन सभी को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया, एहतियातन अरेस्ट की गिरफ्तारी की गई। उसके बाद SEM की कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जहां पर पुलिस ने बताया कि आशुतोष और सौरभ दास ये रिपीट ऑफेंडर है, लगातार BNS की धारा 163 का उल्लंघन कर रहे हैं, लिहाजा इन दोनों को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बहुत मुमकिन है कि इस मामले में अब CJP आने वाले वक्त में नियमित जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट का भी रुख।
0: ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच CJP के वकील क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए।
2: दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि इन्होंने जो इनका बॉन्ड था उनका वायलेशन किया है, इनका उनका प्रेजम्पशन है कि ये फिर से ऐसा कर सकते हैं और जो इन्होंने किया है वो कानून का उल्लंघन है, 163 का उल्लंघन है। उनके हिसाब से पहली बार एक प्राइवेट, किसी उनका कहना है कि पब्लिक बॉडी पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया गया है विदाउट प्राइवेट कंप्लेनेंट फाइलिंग द कंप्लेंट। दिल्ली पुलिस ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया है और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेके और जिस केस के रेफरेंस में या जो उसके लिए सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, जो बताया गया है कि कनॉट प्लेस में उसमें सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, उसको यहाँ पे यूज करते हुए, इसका मिसयूज करते हुए अपनी पावर अथॉरिटी का 5 दिन की जेसी में भेजा है।
0: अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है और जहां तक CJP के वकील कह रहे हैं कि पावर का मिसयूज हो रहा है, किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है?
1: देखिए, ये जो बचाव पक्ष के वकील होते हैं वो अपने बचाव के लिए जो तमाम तरह की दलीलें देते हैं और अदालत में जाहिर सी बात है जो SEM की कोर्ट है वहां पर ये दलील दी गई होगी, लेकिन जो SEM की कोर्ट है उसने तमाम ग्राउंड देखे, दिल्ली पुलिस की दलील को माना और इसी वजह से 5 दिन की न्यायिक हिरासत में आशुतोष और सौरभ दास को भेजा है। जो दिल्ली पुलिस का बयान है, दिल्ली पुलिस का तो यही बयान है कि, और जो तस्वीरें भी वीडियो खुद डाला था CJP ने, जिसमें ये गुपचुप तरीके से जो JDU का परिसर है, चूंकि जंतर मंतर के पास पड़ता है, वहां से ये दाखिल होते हैं, उसके बाद गेट जंप करके वहां पर नारेबाजी करते हैं, उसके बाद पुलिस इनको हिरासत में लेती है, तो ट्रेस पासिंग का मामला है। उसके अलावा देखिए नेहा, लगातार दिल्ली पुलिस लगातार एफआईआर दर्ज करी है एक के बाद एक, जिसमें सीजेपी, आम आदमी पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है, उसको लेकर एक नहीं मल्टीपल एफआईआर दर्ज है, 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, मैं 20 का संख्या कम बता रहा हूं, लेकिन 2 अक्टूबर से अब तक 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है। और एक एफआईआर कल जो इन्होंने वीडियो डाला था उस पर हो गई। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये रिपीट ऑफेंडर है, लगातार जो बीएनएस की धारा है 163 का ये उल्लंघन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनको पकड़ा गया था, जिसमें इनको पीस बॉन्ड भरवाकर इनको रिलीज किया गया, और उसके बाद फिर ये जंतर मंतर पर पहुंच गए और वहां पर बीएनएस की धारा
0: ठीक
1: 163 का उल्लंघन किया गया। इस वजह से दोनों को न्यायिक
0: ठीक है,
1: हिरासत
0: बहुत
1: में
0: बहुत
1: भेजा
0: शुक्रिया
1: गया।
0: इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर जो कि बिहार से आई है। एक दर्दनाक खबर है, यहां पर वैशाली जिले के गंगा नदी में नाव पलटने से 14 बच्चों की मौत हो गई है। हादसा वैशाली जिले के राघोपुर का है। यहां पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है। जानकारी के मुताबिक नाव हादसे में जान गंवाने वाले सभी बच्चे एक ही गांव के हैं। हादसे के दौरान वो सभी नाव से बगल के गांव में श्राद्ध का भोज खाकर लौट रहे थे। नाव पर 20 से 25 लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। गंगा नदी से 6 लोगों को रेस्क्यू के बाद अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 अन्य भी सुरक्षित बचा लिए गए हैं। अब भी कुछ लोगों की लापता होने की खबर है, जिनकी तलाश में एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, क्या वजह रही हादसे की? नदी में उफान ज्यादा था या फिर लापरवाही?
3: नहीं, देखिए, ये जो गंगा नदी की धार है ना, ये मुख्य धारा नहीं थी, बल्कि गंगा नदी की एक छोटी धारा थी, उसमें ये घटना घटी है। और महज जो एक जगह से दूसरी नदी पार करके जो जाने की दूरी थी, जहां पे वो लोग बच्चे गए थे, वो केवल 100-150 मीटर की दूरी जो है वो नदी पार करने की थी, जिस दौरान ये घटना घटी। और जो बात सामने आ रही है नेहा, कि दो बड़ी वजह है इस घटना के पीछे, क्योंकि ये जो नाव जो थी, जो स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं और कुछ स्थानीय नेता दावा कर रहे हैं कि ये सरकारी नाव थी, जो काफी जर्जर स्थिति में थी, और हम लोगों ने उस नाव का जायजा लिया तो वाकई में वो नाव की हालत बहुत खराब थी, जिसमें मुश्किल से 8-10 लोग ही बैठ सकते थे। लेकिन बताया जा रहा है कि कल उस वक्त इस नाव पे 20 से 25 लोग सवार थे, तो ओवरलोडिंग तो था ही इस नाव पे। दूसरी तरफ ये नाव इतनी जर्जर थी कि नाव के नीचे एक बहुत बड़ा सुराख भी था, यानी बहुत बड़ा छेद भी था, और क्योंकि नाव में वजन ज्यादा था तो पानी जो वो छेद का हिस्सा जो है वो पानी के नीचे गया, और बहुत जल्दी से गंगा का पानी जो है उसने नाव में प्रवेश किया, उसके वजह से नाव डगमगाने लगी। और फिर क्योंकि अधिकतर उसमें जो नाव पर सवार थे वो बच्चे थे, तो फिर आनंद फानंद में इधर उधर भागने की कोशिश किए होंगे, और इस आपाधापी में ही नाव जो है वो पलट गई, जिसमें 14 मासूम बच्चों की मौत हो गई है और 6 बच्चों का इलाज जो है बताया जा रहा है वो चल रहा है अस्पताल में, और 3 को सुरक्षित निकाला जा चुका है। और हम जिस जगह पर हैं आज, उस गांव में पूरी तरीके से मातम पसरा हुआ है। जब 14 लाशें पड़ी हुई हम लोगों ने भी देखी थी, जाहिर सी बात है सब मासूम बच्चे, 10 से 14 साल के बच्चे थे, तो कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला भी सामने आ रहा है। और किस तरीके से रात में नाव का परिचालन हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर किन परिस्थितियों में रात में इस नाव का परिचालन हो रहा था।
0: मैं लौटूंगी आपके पास। विधानसभा क्षेत्र ये तेजस्वी यादव का है, किस तरीके से इस पूरे हादसे पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, सुनिए।
4: हमारी जिलाधिकारी से भी बात हुई है, आपदा विभाग के जो सचिव हैं उनसे भी बात की गई है, और हमने आग्रह किया है कि ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू टीम जो है भेजा जाए, एनडीआरएफ के लोग हों, एसडीआरएफ के लोग हों। और कल हम पटना आ रहे हैं, और पटना आते ही हम जो है राघोपुर जाएंगे। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। इस दुख के घड़ी में हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मदद करे।
0: और जान गंवाने वाले सभी बच्चे एक ही गांव के थे, जहां पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। वहां से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता रोहित सिंह।
3: हम इस वक्त मौजूद हैं राघोपुर के ही रामपुर श्यामचंद गांव में, जहां पर ये घटना बीती रात तकरीबन 8 बजे घटी है, जब श्राद्ध का भोज खाने के लिए एक नाव पर ये तमाम बच्चे जो है वो सवार होकर दूसरे गांव गए थे। और जो जानकारी है कि वापसी के दौरान नाव पलट गई, और उसके बाद नाव पर जो सवार तकरीबन 20 से 25 लोग थे, उसमें से 14 लोगों की मौत हो गई, और उसमें से लगभग सभी जो है वो 10 से 14 साल के मासूम बच्चे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त इस गांव में चीख पुकार मचा हुआ है, और तमाम जो लाश है उनको पानी से निकाला जा चुका है बीती रात, और प्रशासन कल रात से ही यहां पर आकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, और उस नाव को भी जो है वो नदी से निकाल लिया गया है। लेकिन किन परिस्थितियों में ये घटना घटी है वो बेहद कह सकते हैं वो परेशान करने वाली ये कह सकते हैं तस्वीर है, जब आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरे गांव में मातम छाया हुआ है, और इस घटना में 14 मासूम बच्चों की तो मौत हुई है, साथ ही साथ 6 जो है वो घायल भी हैं, उन्हें भी अस्पताल में रखा गया है इलाज के लिए, और 3 लोगों को जो है वो सुरक्षित निकाला गया है।
0: और अब अगली खबर का रुख करेंगे, ये पंजाब के मनसा से खबर आ रही है जहां पर एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या मामले में मुख्य आरोपी अश्विनी कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अश्विनी कुमार को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कल से मानसा में धरना प्रदर्शन हो रहा था, आरोपी की दुकान पर तोड़फोड़ हुई थी और अब मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है।
5: पंजाब के मानसा की ये तस्वीरें हैं। नशे के खिलाफ मुहिम चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या से लोग गुस्से में हैं। ये तोड़फोड़ उस मेडिकल स्टोर में हुई है जिसके मालिक पर परविंदर सिंह झोटा की हत्या का आरोप लगा है। गुस्साए लोगों ने मानसा तिकोनी चौक पर लगे आम आदमी पार्टी के पोस्टरों को भी फाड़ दिया। परविंदर को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर परविंदर का परिवार तिनोकी चौक पर धरने पर बैठ गया। परविंदर के नशा विरोधी मुहिम में शामिल उनके साथी भी इस धरने में शामिल हुए। परिवार ने साफ कर दिया, जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक परविंदर का अंतिम संस्कार नहीं होगा। परविंदर के परिवार को मनाने के लिए देर रात SSP मानसा वैभव चौधरी भी पहुंचे। परविंदर के पिता से बयान दर्ज कराने को कहा लेकिन परविंदर के पिता ने बयान दर्ज कराने से साफ इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारियों के रोष को देखते हुए SP को वहां से वापस लौटना पड़ा। बाद में मीडिया से बात करते हुए मानसा के SSP ने साफ कहा कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
6: दो राय ना रखी जावे, कोई भी मुलाजिम जेरा इन्वॉल्वमेंट नशा तस्करी च या नशे उस तक मिल गया उसको बख्शा नहीं जाऊंगा। मैं परिवार को मैं समझाया कि पहले तुसी अपना स्टेटमेंट दर्ज कराओ कि पर्चा डिले हो रहा है, वो बच्चा अपना जो है अपना स्टेटमेंट है क्योंकि मैं उन्होंने स्टेटमेंट पे बच्चा देना वो मैं रिक्वेस्ट करे। इन्होंने कहा कि
7: अपनी कमेटी
6: डिस्कस करके
7: प्रपोजल लेके आए।
6: मैं इन्होंने यही कहा कि तुसी अपना स्टेटमेंट दर्ज कराओ जिन्होंने तुम्हें शक है इन्वॉल्वमेंट है सारे नाम दर्ज करो।
5: जिस हमले में परविंदर की मौत हुई उस हमले में 4 अन्य लोग भी जख्मी हुए हैं, 2 की हालत इनमें गंभीर है। बीजेपी नेता रवनीत बिट्टू घायलों का हालचाल लेने कल मानसा के अस्पताल पहुंचे। इस बीच 2023 का एक वीडियो सामने आया है, आरोपी केमिस्ट के गले में जूते की माला डालकर परविंदर सिंह ने उसे पुलिस के हवाले किया था। केमिस्ट पर ड्रग्स बेचने का आरोप था। मानसा से अमरजीत चहल के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और इस पूरे मामले पर मंत्री अमन अरोड़ा क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए।
8: देखिए मुझे अभी आपसे पता चला है, वेरी अनफॉर्चुनेट, किसी भी तरह की वायलेंस या लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई विशिएट करेगा तो वो टॉलरेट किया जाएगा, पुलिस इसमें अपना एक्शन लेगी।
0: कंवल जीत संधू मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कंवल जीत, गिरफ्तारी कैसे संभव हुई? क्या अब इस गिरफ्तारी के बाद हम ये माने कि ये जो सीरीज है इस पूरी वारदात की वो यहीं पर खत्म होती है या फिर कोई और भी पकड़ा जाना बाकी है?
7: और सुबह सुबह खबर
0: तो हत्याकांड से मानसा में तनाव इस वक्त बना हुआ है और इस गिरफ्तारी के बावजूद जो मुख्य आरोपी है अश्विनी उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बावजूद वहां पर देखिए आप किस तरीके से लोग हिंसा कर रहे हैं और पूरा माहौल इस वक्त मानसा में तनावपूर्ण बना हुआ है। और अब बात मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल की। कल विपक्ष के हल्ला बोल के बीच मोदी सरकार के दो दिग्गज मंत्री चुनाव आयोग के बचाव में सामने आए। राहुल गांधी और विपक्ष पर निशाना साधते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 2029 में फिर एनडीए की प्रचंड जीत होगी और राहुल गांधी की हार।
9: 2029 के आम चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है
10: जिसके कारण कांग्रेस बार बार हार रही है। कई युवा साथी बैड ओमेन को कहते हैं बिगेस्ट रेड फ्लैग और वो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए सबसे बड़े रेड फ्लैग है।
5: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार पर राहुल गांधी और विपक्ष के लगातार हमलों के बीच कल केंद्र सरकार के दो दिग्गज मंत्री मैदान में उतर गए। गृह मंत्री अमित शाह और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल।
9: 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए। 2029 के आम चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार चौथी बार हार होने वाली है। इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है। इस सत्य को आप झुठला नहीं सकते।
5: अमित शाह ने 2029 के लिए राहुल गांधी को ललकार लगाई। एसआईआर पर सवाल उठाने की मंशा पर ही सवाल उठाया।
9: राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी एसआईआर के बहाने घुसपैठिया बचाने का आपकी जो कार्य योजना है उसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है।
5: साथ में तंज भी कसा कि 1.5 किलोमीटर के दायरे में 14 पार्टियों के कैडर की भीड़ जुटाकर खुद को देश की आवाज समझने की भूल ना करें।
9: 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है।
5: शाह ने राहुल गांधी को आत्मचिंतन करने की नसीहत देते हुए याद दिलाया कि एसआईआर तो 2024 के बाद आया लेकिन कांग्रेस तो उससे पहले से ही लगातार हार रही है।
9: एसआईआर तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते।
5: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी पर हमलों की बौछार की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भ्रम में ही समाधान नजर आ रहा है।
10: अगर ये सही माने में मानते हैं कि एसआईआर रिग्ड है तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जब वो जीत रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन का काम ठीक है, इलेक्शंस आर परफेक्ट, और जब हार रहे हैं तो इलेक्शंस आर रिग्ड। इसको आजकल एक लोग, युवा हमारे साथी बोलते हैं, डेलुलू इज द सोलुलू। ये माइंडसेट, ये जो मानसिकता इनकी, इसको डेल्यूजन में रहने के वाले जो लोग हैं उनको ये डेल्यूजन में ही सोल्यूशन दिखता है. डेलुलू इज द सोलुलू.
5: वार पलटवार तेज है, यकीनन बात यहीं रुकने वाली नहीं है. दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो.
0: और गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया. कांग्रेस ने सवाल किया कि 2029 में जीत का दावा किस आधार पर अमित शाह कर रहे हैं.
11: भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आते आते बहुमत लाते लाते 50-60 साल लग गए, फिर क्या कहें हम. ये अजीब सी टिप्पणी है साहब कि कांग्रेस कई राज्यों में इतने सालों से. भाई आप तो देश में कितने सालों तक नहीं थे, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं. फिर कहते हैं 29 भी हम जीतेंगे. क्यों इतना भरोसा है ज्ञानेश पर, और ज्ञानेश रहेगा 29 तक. ये चुनाव आयोग जिस तरह से चल रहा है, हम चलने देंगे 29 तक. कि इतना भरोसा हमारी बात साबित करते हैं ये बात कहकर, तो वो कि 29 में भी हम जीत रहे हैं. कैसे जीत रहे हो साहब, सड़क पे तो निकलकर देखो, गुस्सा तो देखो लोगों का, आकर हटाओ पुलिस और आकर देखो गुस्सा.
12: देखिए गृहमंत्री जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं, मैं उसको ज्यादा नहीं, लेकिन हम लोग जो आपने पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया, चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक खिलौना बनकर रह गया. हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है और हम लोग लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे और ये काम नहीं होने देंगे. और ये बार बार घुसपैठियों का नाम लेकर के गुमराह करने की कोशिश ना करें. 13 करोड़ लोगों के वोट काटें तो 13 करोड़ घुसपैठिए नहीं हैं. घुसपैठियों को कितनों को आपने चिन्हित करा और कितनों को डिपोर्ट करा, उसकी सूची देश को उपलब्ध कराई है.
0: और बात राहुल गांधी की, जिन्होंने कल विपक्ष के नेताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों और छात्र संगठन को चाय पार्टी दी. बड़ा सवाल ये कि राहुल गांधी का अगला प्लान क्या है.
13: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं है. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एंड गोल तक जाएगी. कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आपको सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा. और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइज रहे.
5: सबके मन में जो सवाल थे राहुल गांधी ने उसका जवाब दे दिया. आकाशवाणी भवन पर 6 अक्टूबर के धरने से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो चाय पर चर्चा से थमने वाला नहीं है. अभी और भी सरप्राइज बाकी हैं.
13: मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे.
5: यानी विपक्ष का यह आंदोलन अभी थमने वाला नहीं है. चाय पार्टी में आए विपक्ष के तमाम नेताओं ने एक एक कर अलग अलग तरीके से यही बातें कही.
14: ज्ञानु गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम. जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा जरूर मिलेगी. ये लोग बचने वाले लोग नहीं है, ये लोग डरे हुए लोग हैं.
15: कैसे माफिया से कैसा लड़ना है और कैसा निपटना है हमको मालूम है. 10-12 साल तक मोदी और शाह ने ये देश को डरा कर धमका कर रखा था. अब डरने की बारी उनकी है.
16: इनका खिलाफ हमारा संघर्ष आगे जाता है टीम से. और जो संघर्ष करने के लिए एक डेसिग्नेटेड जगह था जंदर मंदर, इनका चोरी भी करता है.
5: राहुल गांधी के घर हुई चाय पार्टी में आईसा की अध्यक्ष नेहा बोरा की मौजूदगी भी सुर्खियों में रही.
17: It has truly been revealed that the people who have actually committed treason against the people of this country is the BJP and the people who have facilitated this treason, the Election Commission of India and the CEC, Ganesh Kumar, needs to go.
5: कुल मिलाकर राहुल गांधी की हाई टी का संदेश साफ था. एक मकसद, एक विरोध और आंदोलन को कायम रखने के लिए एक जुट मंच. माना जा रहा है कि ये जुटान विपक्षी दलों के बीच जहां आपसी समन्वय को आगे बढ़ाएगा, वहीं सिविल सोसाइटी और छात्र संगठनों की मौजूदगी एक व्यापक गठबंधन बनाने के प्रयास का भी संकेत दे रही है. दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो.
0: और अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं. बीजेपी में ये शामिल होंगे। इनमें गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह और जलौन जिले की कालपी सीट से विधायक विनोद चतुर्वेदी शामिल हैं। अमेठी जिला मुख्यालय गौरीगंज में आज बड़ा कार्यक्रम है जिसमें इन तीनों को शामिल किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और नेताओं के अलावा राज्य सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान और प्रतिभा शुक्ला भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, तीनों की क्या नाराजगी थी जो पार्टी छोड़ दी?
18: देखिए, सबसे बड़ी बात है जब राज्यसभा इलेक्शन पहले भी था और उस दौरान जब क्रॉस वोटिंग हुई थी तब इन तीनों ने एक तरीके से कह सकते हैं राकेश प्रताप सिंह और इसके अलावा अभय सिंह जो गौर जिस तरीके से उन्होंने छोड़ी पार्टी बदली, क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी उस समय एहसास नहीं था कि ये अचानक से क्रॉस वोटिंग हो जाएगी और इस तरीके से ये दूसरे पाले में चले जाएंगे। अब अमेठी में आज का प्रोग्राम इसलिए भी मायने है क्योंकि पीडीए का रथ एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने निकाला था रायबरेली अमेठी से और वहां पर अपनी ताकत का शो किया था। उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विधायकों को कराएगी वहां पर मनोज पांडे जो कि पहले आए थे समाजवादी पार्टी से अब मंत्री हैं और उसके साथ साथ राकेश प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह, ये सभी उसी जोन को चुना गया है और अपनी ताकत दिखाने के लिए, तो ये 2027 की पटकथा लिखने के लिए उस जगह को चुना गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से आज ये बड़ा प्रोग्राम वहां रखा गया, ना कि वो लखनऊ हेडक्वार्टर पर, जबकि वो रखा गया है अमेठी में। 50,000 लोगों को बुलाया भी है, तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी अपना एक मैसेज कन्वे करेगी कि जो बागी विधायक आए हैं उनके साथ जनाधार बहुत बड़ा आया है और इसी वजह से ये अब 2027 में एक नया जीत दर्ज करेंगे। क्या आगे की रूपरेखा होगी, क्या सीटों पे चर्चा होगी, किस तरीके से उनको टिकट मिलेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन आज पहले वो ज्वाइन करके कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका आशीष। बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: लोकपाल हिदायत के बावजूद जंतर मंतर पर जबरन घुसने के मामले में बीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष राखा को 5 दिन की न्यायिक हिरासत। दिल्ली की कोर्ट ने भेजा तिहार, दीप के बोले तिरंगा फहराने की सजा मिली। बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में पलटी नाव, 14 लोगों की मौत की पुष्टि, मरने वालों में एक ही गांव के बच्चे शामिल। सीएम सम्राट चौधरी ने दिया 4-4 लाख का मुआवजा। मुंबई के नाला सुपारा इंपीरियल हाइट्स इमारत में लगी भीषण आग से 2 महिलाओं की मौत, 6 अस्पताल में भर्ती, दम घुटने से गई 2 महिलाओं की जान। विपक्ष की चाय पार्टी में लोकतंत्र बचाने की कसम खाने वाले राहुल गांधी को अमित शाह का चैलेंज, कहा 2029 में भी करारी हार के लिए रहे तैयार। पंजाब के मनसा में ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा मर्डर केस मुख्य आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान के सालासर से पकड़ा गया कैमरे पर फायरिंग करने वाला शूटर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।
0: जंतर मंतर पर जबरन घुसने पर एक्शन, सीजेपी नेता आशुतोष राखा और सौरभ दास को कोर्ट ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बेल बॉन्ड तोड़ने के जुर्म में कोर्ट ने दोनों को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। मंगलवार सुबह जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पकड़ा था। तीनों को जंतर मंतर में बिना अनुमति प्रवेश करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। बैरिकेडिंग और सभी गेट बंद होने के बावजूद गेट के ऊपर से चढ़कर पहुंचे थे। अजिंक्य शिंदे से बॉन्ड भरवा रही है पुलिस। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की तानाशाही हावी है। अजिंक्य शिंदे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा जनता डरने वाली नहीं है, तिरंगा लहराना जुर्म नहीं है। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में रेस्टोरेंट में भीषण आग से हड़कंप, जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल की खिड़की से लोगों ने लगाई छलांग। समय रहते आग पर पाया गया काबू, टला बड़ा हादसा, लोगों को जान बचाने के लिए खिड़की के बाहर कूदना पड़ा। फिलहाल आग लगने के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं है। मामले में संबंधित विभाग की जांच और आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। स्थानीय लोगों ने लोगों की जान बचाने में मदद की, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसे के बाद फिर बिना फायर एनओसी के चल रहे रेस्टोरेंट पर सवाल, उधम फिश पॉइंट के पास फायर एनओसी था या नहीं इसकी पुष्टि होना बाकी है। महाराष्ट्र के नाला सुपारा में हाई राइज बिल्डिंग में भीषण आग, 2 महिलाओं की मौत, 6 लोग अस्पताल में भर्ती। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार धुएं के कारण दम घुटने से गई महिलाओं की जान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चलेगा कारणों का पता। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, बड़ी क्रेन की मदद से 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गोपालगंज में गैस सिलेंडर से लगी भीषण आग, 17 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर, गोरखपुर हुए रेफर। गुवाहाटी से बैग स्नैचिंग का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने, बदमाशों ने महिला को 100 मीटर तक घसीटा। बिहार के वैशाली में गंगा में पलटी नाव, हादसे में 14 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। नाव हादसे में मरने वालों में सबसे अधिक बच्चे, पुलिस के मुताबिक सभी श्राद्ध का भोज खाने गए थे। हादसे के बाद ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर डीएम का किया घेराव, पुलिस ने समझाकर कराया शांत। नाव हादसे में मरने वाले बच्चों की उम्र 6 से 15 साल के बीच, परिवार और पूरे गांव में पसरा मातम। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया खेद, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार मुआवजे का ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए की प्रार्थना। वैशाली नाव हादसे पर सीएम सम्राट ने जताया खेद, 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश। राघोपुर नाव हादसे पर तेजस्वी यादव ने जताया दुख, बोले मेरे विधानसभा क्षेत्र में बेहद दुखद घटना हुई है। हादसे पर चिराग पासवान ने जताया गहरा दुख, बोले मासूम बच्चों की मौत की खबर हृदय विदारक, शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं। देहरादून के विकास नगर में बेकाबू ट्रक साइबर कैफे में घुसा, भागकर लोगों ने बचाई जान, चला बड़ा हादसा। इंदौर में कैफे के बाहर 2 पक्षों में मारपीट, बीच सड़क चले लात घूसों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चोरी के टेम्पो और ट्रैवलर का इंदौर में आतंक, कई वाहनों को मारी टक्कर, ऑटो चालक और आरोपी घायल। गुरुग्राम के फरुख नगर में बस की टक्कर से ट्रैक्टर के 2 टुकड़े, ड्राइवर घायल। घटना के वक्त बस में 35 से 40 यात्री सवार थे। नवादा में बाइक सवारों ने उड़ाई ट्रैफिक नियम की धज्जियां, स्टंट और डील के चक्कर में कई लोगों की जान खतरे में डाली। मोगा के स्कूल में छात्रों के विवाद ने पकड़ा टूल, दो परिवारों के बीच मारपीट, प्रिंसिपल को भागकर बचानी पड़ी जान। पटना में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूटपाट, हथियार की नोक पर वारदात को दिया अंजाम। मेरठ के अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। राजस्थान में दीपावली से पहले बड़ी साजिश नाकाम, श्रीगंगानगर बॉर्डर पर ड्रोन से गिराया गया हथियार और विस्फोटक बरामद, दो गिरफ्तार। नोएडा की पॉश सोसाइटी में 1.5 करोड़ की चोरी, दो फ्लास्क के लॉकर काटकर सोना, 2 किलो चांदी और कैश ले उड़े चोर। अलवर में एटीएम लूट की वारदात, रस्ते से बांधकर उखाड़ने की कोशिश नाकाम, बदमाशों ने कैमरे पर लगाया काला स्प्रे। जयपुर में अवैध ब्लास्टिंग के दौरान बड़ा हादसा, महेशवास पहाड़ी ढही, दो मजदूर मलबे में दबे, रेस्क्यू जारी। मेरठ में डीला ड्रम कांड में आज होगा सजा का ऐलान, बेटी से मिलने को बेचैन है मुस्कान। झांसी में कार की टक्कर के बाद सड़क पर बरसी बेल्ट, लोगों ने युवक को घेर कर पीटा, वीडियो वायरल। बेगूसराय में महिला डॉक्टर पर एसिड अटैक, पड़ोसी दुकानदार गिरफ्तार। लुधियाना में तेज रफ्तार फॉर्चूनर कार का कहर, कार और मोटरसाइकिल ने मारी टक्कर, नौजवान की हुई मौत, सारा एक्सीडेंट पीछे आ रही कार के डैशबोर्ड में रिकॉर्ड। थाने के दीवा में भीषण आग, ऑटो रिक्शा समेत 22 दोपहिया वाहन जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा के जहांगीरपुर में दिन दहाड़े युवक की हत्या का सीसीटीवी आया सामने, दौड़ा दौड़ा कर मारी थी 6 गोलियां। उन्नाव में दीवार के विवाद में महिलाओं को लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, 4 गिरफ्तार। एमपी के श्योपुर में भाई ने मोबाइल छीनकर स्कूल जाने को कहा तो 60 फीट ऊंचे पानी की टंकी पर चढ़ा लड़का। राहुल गांधी का सीईसी ज्ञानेश के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान, इंडिया गठबंधन राज्यों का तेज करेगा विरोध। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी को अमित शाह का जवाब, का एसआर के बहाने घुसपैठी हुई बचा रहे हैं राहुल। अमित शाह ने कहा 2029 में करारी हार के लिए तैयार रहे राहुल। केसी वेणुगोपाल का अमित शाह पर तंज, बोले 2029 तक पद पर बने रहने की चिंता करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालों से बचने का लगाया आरोप। पवन खेड़ा ने शाह पर पलटवार करते हुए पूछा, ज्ञानेश कुमार का पर इतना भरोसा क्यों है। पीयूष गोयल ने कांग्रेस की मंशा पर उठाए सवाल, का एसआर गलत तो इनके सभी 6 सीएम इस्तीफा दे, जहां जीते वहां एसआर सही है, जहां हारे वहां गलत है। सीसी पर राहुल के आरोप को पीयूष गोयल ने बताया बेबुनियाद, कहा कांग्रेस चुनाव आयोग को बनाती थी राज्यपाल। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा, कर रहे हैं बचकानी हरकत। खड़गे का दावा, इंडिया गठबंधन के अभियान को मिला व्यापक समर्थन, बोले वोट चोरी की कथित साजिश का पर्दाफाश करने के तैयार हैं लोग। तेजस्वी यादव का सीसी ज्ञानेश कुमार पर बड़ा आरोप, बोले मोदी शाह के इशारे पर लोकतंत्र को चलने और वोट चोरी की रची गई है साजिश। तेजस्वी यादव बोले लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है, प्रोटेस्ट से दिल्ली को बदल दिया गया है। संजय राउत का सीसी ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला, बोले माफिया है, पूरे सिस्टम का प्राधिकरण कर दिया है। सुप्रिया सुले का ऐलान, इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से एकजुट है, संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली से गांव गांव तक जारी रहेगा आंदोलन। ऐसा छात्र नेता नेहा बोरा का बीजेपी पर निशाना, बोली सीसी ज्ञानेश कुमार दे इस्तीफा। दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट मामले में एफआईआर दर्ज, सौरभ दास और आशुतोष समेत अन्य पर केस दर्ज, जेडीयू दफ्तर में घुसने की शिकायत पर ट्रेसपासिंग का आरोप। अभिजीत दिपके का बयान, उन्होंने कहा लगता है कि जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहेगा और यह बंद हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। वोट चोरी के आरोप पर आपका कल दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन, सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर रद्द करने की मांग। एल मुरुगन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ने की मांगी अनुमति। बीते दिन कनॉट प्लेस में एनएसयूआई का प्रदर्शन, सीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर अचानक पहुंचे प्रदर्शनकारी। मुंबई प्रदर्शन विरासत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा बयान, ब्लेटेंट ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। सुनेत्रा पवार के पैनल का सोमेश्वर चीनी मिल चुनाव में क्लीन स्वीप, सभी 21 सीटों पर जीत, विरोधी पैनल का खाता नहीं खुला। महाराष्ट्र में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, छत्रपति संभाजीनगर में 23 लाख रुपए का 12,382 किलो संदिग्ध मिलावटी तेल जब्त। मुंबई में डोमिनोज समेत 3 फूड आउटलेट्स के लाइसेंस सस्पेंड, जांच में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन। दीयू में 5,889 करोड़ की लागत से बनेंगे हॉस्टल, 21,895 विद्यार्थियों को मिलेगी आवासीय सुविधा। सीएम योगी आज 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं स्नातक महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी करेंगे बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन। यूपी समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक आज बीजेपी में शामिल होंगे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी होंगे शामिल। प्रयागराज में गरीबों को मिलेगा पक्का आशियाना, माफिया अतीक के घर में बनेगा पद्मावास। प्रयागराज के चकिया में अतीक के घर के पास 602 फ्लैट की आवासीय सोसाइटी, पीडीए की टीम ने जमीन का किया निरीक्षण। कश्मीर में जुमे की नमाज में खुतबों के मुद्दे पर सवाल, वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव पर एनसीपीडीपी का बीजेपी पर एजेंडा थोपने का आरोप। पंजाब के परविंदर झूठा हत्याकांड में बांसा के लोगों का धरना प्रदर्शन जारी। परिवार से बातचीत करने पहुंचे एसएसपी मानसा, भारी रोष के बीच सहमति न मिलने पर धरना स्थल से लौटे। बीते कल पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। परविंदर झूठा हत्याकांड विरोध में कल पंजाब बंद का ऐलान, कानून व्यवस्था पर गिरी भगवंत मान सरकार। जम्मू कश्मीर गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में मौसम की फेरी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। गुरेज और पीर बाबा इलाके में बर्फबारी, बर्फबारी की वजह से दमकल विभाग की गाड़ियां सड़क पर फिसली। जम्मू कश्मीर गुरेज पुलिस ने जदकुसी में फंसे चार बाइकर्स का किया रेस्क्यू, सूचना मिलने पर बचाव दल ने केरल के बाइकर्स को सुरक्षित बाहर निकाला। कश्मीर के बूढ़पत्री इलाके में ताजा बर्फबारी से पहाड़ों का बदला नजारा, सफेद बर्फ से ढक गई पहाड़ियां। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद बदला मौसम, तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ गुलमर्ग, बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने की मौज मस्ती। कश्मीर में बदला मौसम, मैदानी इलाकों में बारिश तो सोनमर्ग की पहाड़ियों में बर्फबारी। सोनमर्ग में बर्फबारी से बढ़ी ठंड, कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट। देश में पहली बार ग्लेशियर झील पर स्वदेशी अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित, 2 घंटे पहले मिलेगी बाढ़ की चेतावनी। राजकोट के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मिनिएचर आर्टिस्ट कैप्टन स्मिच मच्छार ने बनाई दुनिया की सबसे छोटी हनुमान चालीसा। नवरात्र के चौथे दिन देश भर में आज माँ दुर्गा के कुष्मांड स्वरूप की होगी पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की रौनक, अलग अलग थीम पर बनाए गए हैं दुर्गा पूजा पंडाल। कोलकाता के कालीघाट मिलन संघ दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन, पंडाल के उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची। करनाल में दशहरे की तैयारियां, तैयार की जा रहा है 75 फीट ऊंचा रावण, अब की बार गर्दन घुमाकर लोगों को देखेगा रावण का पुतला। त्योहारों पर रेल यात्रियों को राहत, पटना से नई दिल्ली के बीच चलेगी वंदे भारत पूजा स्पेशल ट्रेन, 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक होगी सुविधा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
3: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
2: स्मॉल बैंक?
3: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
2: Okay.
3: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: what I can be.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार रोटी थमका लगाने बस।
4: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
5: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
8: कौन सी बनानी है?
9: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
11: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
12: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
13: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
14: इट्स अ माय वे।
15: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
16: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
17: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
18: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
17: क्या?
18: इनकी राय।
19: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
20: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
21: सोच बदलो और बैंक भी।
22: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
23: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपिवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
22: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
24: लव एंड केयर, द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट रेंज ऑफ रबर पेट टॉयज।
25: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: क्या लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से पहले उसे टॉर्चर किया गया था? क्या मौत से पहले शिवा के शरीर को सिगरेट से दागा गया था? क्या यही जुल्म, यही टॉर्चर शिवा की मौत की वजह बना? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये गंभीर आरोप खुद शिवा शर्मा की मां रंजना की ओर से लगाया गया है। इन सनसनीखेज आरोपों के बीच लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत का मामला अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया है, ये हाई प्रोफाइल केस, रसूख, ब्लैकमेलिंग और एक बड़े सिंडिकेट का खतरनाक कॉकटेल दिख रहा है जिसका शिकार युवा कारोबारी शिवा शर्मा बना। इस पूरे जाल को लेकर जो जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पता ये भी चला है कि शिवा की मौत के बाद भी श्रद्धा और उसके साथियों ने परिवार वालों को सही जानकारी नहीं दी, काफी देर तक इस पूरे केस को छुपाने की कोशिश करते रहे। पुलिस को अंदेशा है कि घटना के बाद मेडिकल कॉलेज से निकलते ही आरोपियों ने आपस में संपर्क साधा और एक सोची समझी साजिश के तहत शहर से फरार हो गए। पुलिस श्रद्धा दुबे और उसके कनेक्शन की पड़ताल कर रही है। इस बीच उसके कई बड़े नेताओं से संपर्क की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या किसी ने लखनऊ से फरार होने में श्रद्धा की मदद की। जांच के बीच पुलिस को श्रद्धा को लेकर कई और जानकारियां भी मिली हैं। पता चला है कि श्रद्धा को शुरुआत से ही ग्लैमर वर्ल्ड का शौक था। उसके पति ने हैदराबाद से उसे एक्टिंग का कोर्स करवाया जिसके बाद वो लखनऊ आकर मॉडलिंग करने लगी। यहाँ रसूखदार और हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क बढ़ते ही उसने पति को छोड़ दिया और यही बस गई। पुलिस अब श्रद्धा के पुराने मुकदमों, उसके बैंक खातों के लेन देन और संदिग्ध संपर्कों की कड़ियां जोड़कर पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने में जुट गई है।
1: आ गया सोमवार और आ गए चकमक चचा। आ चचा, अखबार बांच रहे हैं। चल रहा है भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
2: अरे भैया प्रदर्श में हिस्सा ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
1: अच्छा, कब उठाए?
2: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
1: अच्छा,
2: हाँ तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग तरह इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन करके, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
3: जी,
2: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
1: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है।
2: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन दिल बोलता रखे थे एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
1: अच्छा,
2: और क्या
1: आपका मतलब हम लोग डर जाते हैं?
2: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल जहाँ पुलिस सिटी नहीं भेजे उसमें भागने लगता हूँ।
1: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है।
2: किधर?
1: चाचा हम खेल गए अब की।
4: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
5: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
6: डोंट ट्विस्ट।
4: क्या हुआ?
6: डोंट ट्विस्ट लप से।
4: हर आदमी में
6: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
5: कितना घटिया था यार।
6: लप लप लप।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखा देते हैं 10 बजे आपके लिए क्या

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार रोटी थमका लगाने पर
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
8: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
10: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
11: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
12: आई लव इट एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
13: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
12: क्या?
13: इनकी राय।
14: नई सोच की नींव में हम हर नई उम्मीद में हम गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
15: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है
16: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
15: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
17: मैडी आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
18: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
17: स्मॉल बैंक
18: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
17: Okay.
18: Ujjivan, nothing small about us.
19: अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में भारत रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का विश्वास देता है। इस साल अप्रैल जून क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है और यह ग्रोथ मजबूत नींव पर खड़ी है। 12-13 साल पहले भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4% से भी अधिक था। पिछले साल यह घटकर लगभग 0.5% यानी 0.61% रह गया है। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $700 बिलियन से अधिक है। हमारा बैंकिंग सिस्टम अनेक देशों में सबसे मजबूत स्थिति में है। साथियों इसी मजबूती का परिणाम है कि भारत की सॉवरेन रेटिंग्स अपग्रेड की जा रही है।
20: पंजाब सरकार ने कहा कि किसान का दाना ना लेंगे कि पंजाब सरकार दाना ना लेगी।
21: पंजाब सरकार से किसानों की ये नाराजगी बद इंतजामी की वजह से है। बेमौसम बारिश में किसानों की मेहनत डूबी तो किसानों का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया।
20: बोरियां देखो तुसी बोरियां दूध तो पानी जा रहे हैं
22: जी।
20: और एन ए बोरी कौन तुलाएगा? केड़ा शल्ले वाला तुलाएगा? आरजे की करेगा जमींदार की करेगा? देखो कल ही इलेक्शन कल ही मंडी पहले ही बंद की हुई थी। साढ़े यार्ड पास कर दो मंडी च जगह नहीं हैगी मंडी नुकसान बहुत हो रहा है। ऐसी किसानों के फायदे यार्ड बनाए ने ना कि आधे फायदे। जे किसान की फसल रुलनी है तो सरकार जगह आप इंतजाम करे ना।
21: पानी के ऊपर तैरते हुए धान को समेटने की ये नौबत नहीं आती अगर मंडी में पानी की निकासी का सही इंतजाम होता। लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश में किसानों के सपने बह गए।
23: पर जो ये पानी की निकासी नहीं हुई ना इसके लिए हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। 50 किलो माल है वो देखो ये बोरी अपनी है ये भी। हाँ ये बोरी अपनी है वो भी अपनी है वो भी है। कुछ उधर साइड के पास पड़ा है जी। अब देख लो आपके सामने ही है बहुत नुकसान। 6 महीने खेती की है जी। अब ये हाल है अब क्या हाल है देखो।

0: पंजाब में बेमौसम की बारिश ने एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी की भी पोल खोल दी, जहां बेमौसम बारिश से बचाने तक के इंतजाम नहीं है। नतीजा, खुले आसमान के नीचे रखी धान की बोरियां भीग गईं। आपको धान की बोरियों पर दिख रहा ये तिरपाल भी किसानों ने लगाया है, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि किसान अपनी फसल पूरी तरह से बचाने में नाकाम रहे।
1: पता ही है, बहुत हालत खराब है। झोने के भी पानी पै जाना, जेडे थे तिरपालां दित्तियां ने उहदे च भी पानी भर जाना, क्योंकि हुण किहड़ा उच्चे थां ते पईआं ने, कोई नीवे थां ते ढेरी पई है, कोई उच्चे थां ते पई है, पानी तां थल्ले बढ़ना ही बढ़ना है।
0: किसानों का आरोप है कि उनका ये नुकसान बच सकता था अगर तय वक्त पर चार दिन पहले धान खरीद हो जाती। किसानों का ये भी आरोप है कि धान की खरीद के दौरान कटौती की जा रही है, प्रति क्विंटल 3 से 5 किलो तक धान काटा जा रहा है, इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
2: चलो है तरपाला दिखाई हम जिन्ना हो सके कर सके, नुकसान है।
0: मंडी में किसानों की मेहनत पानी में जाने के सवाल पर खन्ना मार्केट कमेटी के सचिव कमलदीप सिंह मान रहे हैं कि उन्होंने तो बारिश से फसल को बचाने के निर्देश पहले ही दे दिए थे।
3: मेरे वालों आड़तियों नूं, मुलाजमान नूं ते अपने सिविल विंग के अधिकारियों नूं लिखती ते जवानी तौर ते पहले ही हदायतां कीतियां होईयां सन, उन्हां वालों ये प्रबंध पुख्ता तौर ते कीते होए सन।
0: पंजाब जैसा हाल हरियाणा में भी दिखा। अंबाला में बारिश का पानी अनाज मंडी में भर गया, धान की बोरियां पानी में डूब गई, किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। अंबाला में किसानों का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन्हें नुकसान हुआ है।
4: रात सारी रात नहीं बैठे रहे, जगह नहीं थी, फिर आरती ने जगह बनवाई, फिर दोपहरा बरसात है 10 बजे
5: गिरी सारी भिजगी
4: भिजगी हटका सारी लेबर पड़ेगी दोबारा।
6: नुकसान
4: तो काफी है।
0: किसान कह रहे हैं कि मंडी में सरकारी लापरवाही ने बर्बाद कर दिया, वहीं मंडी बोर्ड की तरफ से अब नालियां साफ करवाई जा रही हैं।
7: मंडी में जल भराव है, उसमें हमने कर्मचारी लगाए हुए हैं, जो भी नालियों में कहीं जीरी का कबाड़ वगैरह फंसा हुआ था उसको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसान को की जीरी ना गिली हो और जो माल बोरियों में पैक है वो भी गिला ना।
0: इसे कहते हैं सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटना। पंजाब और हरियाणा में किसान परेशान हैं। बारिश में उनका धान डूब गया और जिनकी जिम्मेदारी है वो अब आगे सब ठीक करने का दावा करते फिर रहे हैं। सवाल ये है कि किसान अब इस दावे का क्या करे।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

के बावजूद जंतर मंतर पर जबरन घुसने के मामले में सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की जेल। दिल्ली की कोर्ट ने भेजा तिहाड़। दीपके बोले, तिरंगा फहराने की सजा। खोखली नाव में सवार होने से बिहार के हाजीपुर में गई 14 बच्चों की जान। आज तक की पड़ताल में खुलासा, छेद वाली बोट के गंगा में डूबने से हुई मौत, मरने वालों में सभी एक ही गांव के बच्चे। मुंबई में नाला सोपारा इंपीरियल हाइट्स इमारत में लगी भीषण आग से 2 महिलाओं की मौत, दम घुटने से गई दोनों की जान, 6 लोग अस्पताल में भर्ती। विपक्षी चाय पार्टी में लोकतंत्र बचाने की कसम खाने वाले राहुल गांधी को अमित शाह का चैलेंज, कहा 2029 में भी करारी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस, घुसपैठियों को बचा रहे हैं राहुल गांधी। पंजाब के मनसा में ड्रग्स एक्टिविस्ट परविंदर झोटा मर्डर केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान के सालासर से पकड़ा गया कैमरे पर फायरिंग करने वाला शूटर।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है। पहले आपको बता दें कि आज सुबह में क्या क्या खास है। बात होगी 2019 तक पहुंची ज्ञानेश कुमार की लड़ाई की। बताएंगे कि कैसे अमित शाह की हुंकार पर छिड़ी नई सियासी तकरार। साथ ही बात होगी जंतर मंतर पर जंग की। प्रदर्शन साइट की लिस्ट से बाहर होने पर सियासी घमासान तिहाड़ तक पहुंच गया है। और आधे घंटे बाद देखिए नाव में हाहाकार, 14 बच्चों की मौत का आखिर कौन है जिम्मेदार। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले लेकर आ रहे हैं एक बड़ी खबर। दिल्ली के जंतर मंतर पर तिरंगा फहराने के मामले में आज सीजेपी के दो प्रवक्ताओं सौरव दास और आशुतोष रंका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। दोनों पर बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। बीएनएसएस की धारा 163 के दोबारा उल्लंघन का भी इल्जाम है। अजिंक्य शिंदे को 20 बॉन्ड भरने के बाद बाहर जाने की अनुमति मिल गई। इस कार्रवाई के बाद विरोध के सुर और तेज हो गए हैं। अभिजीत दिपके ने सवाल उठाया है कि तिरंगा फहराने पर आखिर ये ऐसी कार्रवाई क्यों, और इसे असहमति की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। आपको बता दें कि दरअसल ये तीनों नेता जो थे ये कल जंतर मंतर की तरफ गए थे। दीवार फांद कर, एक गेट फांद कर ये जंतर मंतर पहुंचे। इनके हाथ में तिरंगा था और इन्होंने वहां पर तिरंगा फहराने की कोशिश की। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया था। 20 बॉन्ड भरा हुआ था आशुतोष रंका और सौरव दास ने, जिनको पहले भी डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा। और इस 20 बॉन्ड के उल्लंघन के बाद इन्हें अब कोर्ट के पास पेश किया गया था, जिन्होंने उन्हें 5 दिन की हिरासत में भेजा। तो देखिए कि दिल्ली मंदिर मार्ग थाने से आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज भेज रहे हैं कौन सी ग्राउंड रिपोर्ट।
1: दिल्ली पुलिस अभी सौरभ दास को यहां से लेके गई, आशुतोष रंका, सौरभ दास, अजिंक्य शिंदे को कल से डिटेंशन में रखा गया था, लेकिन स्पष्ट नहीं है आखिरकार क्यों इन गाड़ियों में उनको ले जाया जा रहा है। क्या दिल्ली पुलिस अरेस्टिंग दिखाने जा रही है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया था और अब सौरभ दास को हमने देखा दिल्ली पुलिस अपनी गाड़ी में लेकर मंदिर मार्ग थाने से गई है। कहां लेकर गई है इसको लेके अभी स्पष्ट तस्वीर नहीं है। वीडियो सहयोगी मनीष भिदुड़ी के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: तो इस पूरे मामले पर अभिजीत दिपके क्या कह रहे हैं, आइए सुन लीजिए।
2: अगर तुम्हें देश में इमरजेंसी लगानी है, इमरजेंसी करनी है, तो ऑफिशियली करो ना। ये क्या कायरो की तरह अनऑफिशियली आप इमरजेंसी कर रहे हो, जहां पर आप लोगों को जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो। ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया कि उसके लिए आप लोगों को 5 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हो। इतने बड़े कायर मत बनो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। अगर इमरजेंसी लगानी है तो ऑफिशियली लगाओ, दम है तो। आरोप क्या लगा रहे हो, जो सत्ता में हो इन्वेस्टिगेशन करो, जांच करनी है वो करो, ये आरोप क्या लगा रहे हो तुम लोग। और ये जो लोग है ये सारे के सारे बहुत ही बड़े कायर है, ये पुलिस के पीछे छुप रहे है। कल से सौरभ, आशुतोष और अजिंक्य को इलीगल डिटेंशन में रखा गया था, उनके लॉयर से तक उनको मिलने नहीं दिया गया था। और आज सुबह सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। किस चीज के लिए, क्या गुना था उनका? उनका गुना सिर्फ यही था कि वो जंतर मंतर पर गए और उन्होंने वहां पर तिरंगा लहराया।
1: ये बताओ, आपने भी आज बॉन्ड भरा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ये कह रही थी लगातार कि ब्रीच ऑफ पीस जो बॉन्ड था वो हुआ, तो आपने भी वो बॉन्ड भरा है। तो
3: सर, जंतर मंतर जाके भारत का झंडा लहराना ये ब्रीच ऑफ पीस है, तो मैं दोबारा करूंगा।
4: दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि इन्होंने जो इनका बॉन्ड था उनका वायलेशन किया है, इनका उनका प्रेजम्पशन है कि ये फिर से ऐसा कर सकते हैं, और जो इन्होंने किया है वो कानून का उल्लंघन है, 163 का उल्लंघन है। उनके हिसाब से पहली बार एक प्राय किसी, उनका कहना है कि प्राय पब्लिक बॉडी, पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया गया है विदाउट प्राइवेट कंप्लेनेंट फाइलिंग दी कंप्लेंट। दिल्ली पुलिस ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया है और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेके, और जिस केस के रेफरेंस में जो उसके लिए सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, जो बताया गया है कि कनॉट प्लेस में उसमें सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, उसको यहाँ पे यूज करते हुए, उसका मिसयूज करते हुए अपनी पावर अथॉरिटी का 5 दिन की जेसी में भेजा है।
0: और हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी अरविंद ओझा। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा समझाएं कि आखिर अजिंक्य जो है उनको क्यों छोड़ दिया गया, अजिंक्य शिंदे को, और सौरभ और आशुतोष रंका को क्यों हिरासत में बल्कि अब न्यायिक हिरासत में क्यों लिया गया है?
5: देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है अंजलि, ये कल हुआ जब आशुतोष, सौरभ, आदित्य और बाकी इनके सहयोगी वो जंतर मंतर पर पहुंचे थे, और जंतर मंतर पर पहुंचने के लिए इन्होंने जेडीयू पार्टी के परिसर का सहारा लिया और परिसर के रास्ते गुपचुप तरीके से पहुंचते हैं, जो गेट है उसको कूद करके जंतर मंतर पहुंचते हैं, वहां पर नारेबाजी करते हैं, वहां पर दिल्ली पुलिस पहुंचती है और उनको हिरासत में लेती है। अब दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि चूंकि नई दिल्ली इलाके में और जंतर मंतर पर बीएनएस की धारा 163 लागू है, उसके बावजूद भी ये जो तमाम धाराएं हैं उनको तोड़ते हुए यहां पर पहुंचे और इस वजह से इनको हिरासत में लिया गया। कल फिर देर शाम इस मामले में ट्रेसपासिंग की और बीएनएस की धारा 163 तोड़ने की एफआईआर दर्ज की, उसके बाद इनको प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया, उसके बाद सभी को जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि सौरभ दास, आशुतोष रंका ये रिपीट ऑफेंडर हैं, लगातार जो बीएनएस की धारा 163 है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, इस वजह से इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। लिहाजा आशुतोष और सौरभ दास को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आदित्य ने पहली बार ऐसा किया, इस वजह से 5,000 के सियोरिटी बॉन्ड पर और साथ ही साथ 6 महीने की वार्निंग की, 6 महीने आप शांति भंग नहीं करेंगे, इस पर उसको रिलीज किया गया।
0: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बात ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंग और 2029 के नाम पर सियासी ललकार की। राहुल गांधी ने चाय की चुस्कियों के बीच विपक्षी एकजुटता की नई रणनीति बना दी है। सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन अब आंदोलन को दिल्ली से राज्यों तक ले जाने की तैयारी में है, लेकिन इस सियासी लड़ाई में अमित शाह ने 2029 का मैदान भी खोल दिया है। राहुल गांधी को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि अगले चुनाव में भी करारी हार के लिए तैयार रहिए। अमित शाह ने एसआईआर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष से पूछा कि जब कई राज्यों में कांग्रेस दशकों से चुनाव नहीं जीत पाई, तब क्या उसके लिए भी एसआईआर ही जिम्मेदार है? बीजेपी ने राहुल के आंदोलन को बचकाना बताया तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस की हार की पूरी लिस्ट सामने रख दी।
6: श्री राहुल जी और उनके साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए। 2029 के आम चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार चौथी बार हार होने वाली है। इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, इस सत्य को आप झुठला नहीं सकते।
0: अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने तो ये आरोप तक लगा दिया कि राहुल गांधी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में डलवाना चाहते हैं।
6: मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, एसआईआर के बहाने घुसपैठिया बचाने का आपकी जो कार्य योजना है उसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है।
0: लेकिन कांग्रेस ने भी अमित शाह के हमले पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई।
7: भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आते आते बहुमत लाते लाते 50-60 साल लग गए, फिर क्या कहें हम? ये अजीब सी टिप्पणी है साहब कि कांग्रेस कई राज्यों में इतने सालों से, भाई आप तो देश में कितने सालों तक नहीं थे, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? फिर कहते 29 भी हम जीतेंगे, क्यों इतना भरोसा है ज्ञानेश पर? और ज्ञानेश रहेगा 29 तक, ये चुनाव आयोग जिस तरह से चल रहा है हम चलने देंगे 29 तक, कि इतना भरोसा हमारी बात साबित करते हैं ये बात कहकर, तो वो कि 29 में भी हम जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हो साहब? सड़क पे तो निकल कर देखो, गुस्सा तो देखो लोगों का, आकर हटाओ पुलिस और आकर देखो गुस्सा।
8: देखिए गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं, मैं उसको ज्यादा नहीं, लेकिन हम लोग जो आपने पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया, चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक खिलौना बनकर रह गया, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है और हम लोग लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे और ये काम नहीं होने देंगे। और ये बार बार घुसपैठियों का नाम लेकर के गुमराह करने की कोशिश ना करें। 13 करोड़ लोगों के वोट काटे तो 13 करोड़ घुसपैठिए नहीं हैं। घुसपैठियों को कितनों को आपने चिन्हित करा और कितनों को डिपोर्ट करा उसकी सूची देश को उपलब्ध कराई है।
0: और आइए अब रुख करते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस का।
9: आरोग्य मंदिर दिल्ली में बन चुके हैं, जो कि एक प्राइमरी हेल्थ केयर का बड़ा सेंटर के रूप में दिल्ली राज्य के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि लगभग 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हम लोग खोलने वाले हैं। मैं जरूर बात करूंगी प्रधानमंत्री आवास योजना की। आवास योजना जिसका लाभ कभी पिछली सरकार ने लेना नहीं चाहा, क्योंकि उसमें शब्द था प्रधानमंत्री। पूरे देश में करोड़ों लोगों तक उस योजना का लाभ पहुंचा, गरीब लोगों के घर बने, पर दिल्ली राज्य में नहीं बन पाए थे। 2025 के बाद से हमने प्रधानमंत्री जी की इस योजना के अंतर्गत दिल्ली में काम करना शुरू किया, और मुझे खुशी है कि आज दिल्ली हर गरीब को मकान मिले उस योजना पे काम कर रही है। जहां झुग्गी वहां मकान, उसमें केंद्र सरकार का हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। हमने दिल्ली में जितनी पेंशन्स आती हैं उन सब में केंद्र का हमको लाभ मिलता है। दिल्ली में जितना हेल्थ केयर सिस्टम है उस सब में हमको केंद्र का सीधा सीधा लाभ मिलता है। दिल्ली में एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, समग्र शिक्षा के तहत हमें अपने स्कूलों में केंद्र का शेयर मिलता है और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाती है। और ये कहना मेरे लिए बहुत ही उचित समय होगा कि दिल्ली की जितनी लीगेसी प्रॉब्लम है, यमुना सफाई की हो, कूड़े के पहाड़ की हो, पर्यावरण को बेहतर करने की हो, हमेशा आदरणीय मोदी जी ने दिल्ली को अपना आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी। अब स्वच्छ भारत मिशन की ही मैं बात करती हूँ। 2014 जब से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से ही वो दिल्ली राज्य को स्वच्छ भारत मिशन हो, अमृत योजना हो और सासकी, सबके तहत दिल्ली राज्य को मदद करते रहे। और मुझे खुशी है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली को अब तक 1200 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। आज ये कूड़े के पहाड़ जो लगातार खत्म हो रहे हैं, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग है। और इसी तरीके से अमृत योजना के तहत हमको लगभग 830 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, जो कि दिल्ली राज्य में सीवर नेटवर्किंग के लिए, यमुना की सफाई के लिए, डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने के लिए लगातार काम में आ रहा है। और सासकी योजना के तहत भी हमें लगभग 1650 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि दिल्ली की लगभग 30 परियोजनाओं में हमें मदद कर रहा है। एक बड़ी मदद है ये दिल्ली राज्य के लिए। दिल्ली राज्य छोटा है पर इसका महत्व बहुत बड़ा है। देश की राजधानी है दिल्ली, तो इसमें विकास का कोई भी सेगमेंट छूटे ना, ये प्रधानमंत्री जी का हमेशा से सहयोग रहता है। मैं जरूर धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल्ली की जनता की ओर से, जिस तरीके से रोड इंफ्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली को सपोर्ट मिला है। 1,25,000 करोड़ की योजनाएं दिल्ली राज्य में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के केंद्र द्वारा या तो पूरी कर ली गई है इन 12 सालों में, या वो चल रही हैं और प्लानिंग में है। तो ये बड़ा बड़ा सपोर्ट है। मतलब इसमें मैं अगर नाम लेना चाहूं तो हमारा प्रगति मैदान का जो इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर है, धोलाकुआ सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, महिपालपुर अंडरपास है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवेज हैं। आप सोचिए कि क्या इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की एब्सेंस में दिल्ली सर्वाइव कर पाती। आज हजारों ट्रक रोजाना बिना दिल्ली में एंटर हुए बाईपास निकल जाते हैं। ये इन सभी एक्सप्रेसवे के कारण हो पा रहा है। आज डी कंजेशन की ओर दिल्ली बढ़ रही है, तो ये हम आदरणीय मोदी जी की मदद से ही कर पा रहे हैं कि हमारे जितने डिफिकल्ट टास्क हैं वो केंद्र ने अपने ऊपर लिए हैं और उन सब पे दिल्ली राज्य की मदद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जा रही है। और सच में दिल्ली को एक बेहतर परिवहन, कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रा देने के लिए मैं केंद्र सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगी इसमें अलग अलग हमारी योजनाएं, जैसे पीएम उदय है, 1511 कॉलोनियों को ऑथराइज करना एज इज वेयर इज, इस तरीके से कि 45 लाख परिवारों को इसका लाभ मिले। दिल्ली अनसिस्टमैटिकली वर्षों से बस्ती चली गई, पिछली किसी सरकार ने, ना केंद्र की ना राज्य की, कभी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली राज्य को ये इतना बड़ा सपोर्ट मिला कि हमारे लाखों परिवार, 45 लाख परिवार सीधा सीधा अब ऑथराइजेशन में पहुंचे हैं और आज उनकी प्रॉपर्टी अपनी है, उस पर वो लोन ले सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, रीडेवलपमेंट हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा काम है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का वो धन्यवाद भी करना चाहती हूँ जिसके माध्यम से हमें हमारे 73 लाख परिवारों को फ्री राशन हर माह मिलता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। कोविड के समय में तो इस राशन की बदौलत ही परिवार सरवाइव कर पाए थे। और इसी तरीके से उज्ज्वला में भी हमारे यहाँ लगभग 3 लाख कनेक्शन मिले हैं, जो हमारी माताओं बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात रही है। आज उनके पास में अपना गैस है, चूल्हा कनेक्शन है और बहुत बड़ा असिस्टेंस है। और ग्लोबल वेन्यूज जो आज इतनी बड़ी बड़ी समिट दिल्ली में हो पा रही है, तो भारत मंडपम, यशो भूमि, ये इंफ्रा जो हमें मिला है वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से दिल्ली शहर को मिला है। परिवहन की दृष्टि से मैं कहूं तो आज दिल्ली में जो 5100 ईवी बसेस चल रही हैं वो भी केंद्र की मदद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमें दी गई है। और उसके कारण से दिल्ली की प्रदूषण जैसी सख्त समस्या के निपटाने के लिए हम सब लोग काम कर पा रहे हैं। एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सेंट्रल फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट जो हमें चाहिए NCAP के माध्यम से वो हमको मिल रहा है। और उद्योग और व्यापार के लिए भी नई उद्योग नीति बनाने के लिए, नई वेयरहाउस पॉलिसी बनाने के लिए, हमारे दिल्ली शहर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लगातार हमें केंद्र की मदद मिल रही है। तो मैं दिल्ली राज्य की ओर से प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि दिल्ली लगातार जो विकसित भारत की तर्ज पे विकसित दिल्ली अपना अनुभव ले पा रही है, काम कर।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
12: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर, भीम ऐप से करो पे।
13: इट्स अ माही वे।
14: एक तो विश्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: यार लोन भूल गया मैरी।
3: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
4: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
5: There's nothing small about
4: it. Ujjivan, nothing small about us.
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
7: मेरे पास एक आइडिया है।
6: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
8: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
9: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
10: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
11: कौन सी बनानी है?
12: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाए special car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ।
13: मेरा रुतबा है मेरा signature. दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा signature. Signature finest silver इलायची, a premium product from Dilbar Group.
14: AU Savings Account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने।
15: Money, money, money, money, every month.
16: सोच बदलो और बैंक भी।
17: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
18: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
0: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
3: I love it, absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
4: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
3: क्या?
4: इनकी राय।
5: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
6: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
7: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद। लायन कश्मीर हनी,
6: असली शहद असली स्वाद।
8: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
8: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
10: हाउस द हॉस्टल सेटल्ड?
11: यस मैम, रियली नाइस।
10: कोई आ रहा है क्या?
12: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
10: मयंक, फॉर रियल?
12: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव, नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाए special car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
3: AU Savings Account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
4: Money, money, money, money every month.
5: सोच बदलो और बैंक भी.
6: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो.
7: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं.
8: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
9: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो.
10: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
9: क्या?
10: इनकी राय.
11: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम. गैलेंट निर्माण का रियल हीरो.
12: फिर डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है.
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें.
12: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती. कपीवा डायबिटीज जूस.
14: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर. दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर. सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप.
15: In association with Canara Bank, together we can.
16: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal anmol. Signature finest cardamom seeds.
17: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
18: Wait, lifestyle ke liye 10 alag pages kyu follow karna? Health, fitness, yoga, mental wellness, sab kuch ek hi jagah. FitTuck. Simple tips, expert insights, real conversations. Life upgrade karo easy way. Watch only on FitTuck YouTube.
19: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर.
2: मैं पहले से ये कहता आ रहा हूं कि राहुल गांधी भले ही संविधान दिखा रहे हैं, लेकिन उनका प्लान, उनकी मोडस ऑपरेंडी दूसरी है. संविधान सामने करके जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करना, उनके बारे में लोगों के मन में प्रश्न तैयार करना, लोगों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं से उड़ जाए, इस प्रकार की व्यवस्था तैयार करना, इस व्यवस्था को तैयार करके अराजकता यानी एनार्की और फिर एनार्की लाकर लोगों के मन में ये भावना तैयार करना कि संविधान ने तैयार की हुई डेमोक्रेटिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमको न्याय नहीं दे सकती, और फिर ये सारी व्यवस्था को जो साम्यवादी व्यवस्था है, कम्युनिस्ट व्यवस्था है, उस व्यवस्था की ओर ले जाना, इस प्रकार का डिजाइन ये राहुल गांधी ने तैयार किया है.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: रोक और हिदायत के बावजूद जंतर मंतर पर जबरन घुसने के मामले में सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की जेल। दिल्ली की कोर्ट ने भेजा तिहाड़। दिपके बोले, तिरंगा फहराने की सजा। खोखली नाव में सवार होने से बिहार के हाजीपुर में गई 14 बच्चों की जान। आज तक की पड़ताल में खुलासा, छेद वाली बोट के गंगा में डूबने से हुई मौत। मरने वालों में सभी एक ही गांव के बच्चे। मुंबई में नाला सोपारा इंपीरियल हाइट्स इमारत में लगी भीषण आग में से 2 महिलाओं की मौत। दम घुटने से गई दोनों की जान। 6 लोग अस्पताल में भर्ती। विपक्ष की चाय पार्टी में लोकतंत्र बचाने की कसम खाने वाले राहुल गांधी को अमित शाह का चैलेंज। कहा, 2029 में भी करारी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस, घुसपैठियों को बचा रहे हैं राहुल गांधी। पंजाब के मनसा में ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा मर्डर केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के सालासर से पकड़ा गया कैमरे पर फायरिंग करने वाला शूटर।

आज सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात बिहार के हाजीपुर की, जहां नाव पलटने से एक दर्दनाक हादसा हुआ है। राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के पास नाव पलटने से हुए हादसे में 14 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। हादसे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुआवजे की घोषणा की है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ने भी शोक जताया है।

0: बिहार के राघोपुर में नदी में पलटी नाव। गंगा में समा गई 14 मासूम जिंदगियां। जर्जर नाव को लेकर उठे कई सवाल। ये तस्वीरें हाजीपुर के राघोपुर के रामपुर श्यामचंद गांव की है, जहां 14 बच्चों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और हादसे में अपने बच्चों को खोने वाले परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल नाव पर सवार लोग श्राद्ध भोज में शामिल होकर अपने गांव लौट रहे थे, उसी दौरान गंगा नदी पार करते वक्त नाव पलट गई और 14 मासूम जिंदगियां गंगा नदी में समा गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त नाव में करीब 20 से 25 लोग सवार थे, जिसमें 10 से 14 साल के बच्चे भी थे और श्राद्ध भोज खाकर गांव की तरफ लौट रहे थे और नाव पलटने से 14 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जहां एक तरफ नाव पलटने के बाद गांव में मातरम पसरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नाव की जर्जर हालत को लेकर लापरवाही के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जर्जर हालत में नाव को चलाने से क्यों नहीं रोका गया?
1: वही नाव है जो दुर्घटना ग्रस्त हुआ है कल रात में, और थोड़ी देर पहले इसको SDRF की टीम ने पानी से जो है वो निकाल भी लिया है। और आप इस नाव की स्थिति देखिए, नाव देखने से ही जर्जर स्थिति में नजर आ रहा है। और स्थानीय लोगों का दावा है, स्थानीय नेताओं का दावा है, जो ये एक सरकारी नाव है और उसमें आप देखिए इसमें बैठने की ज्यादा जो है वो लोगों की जगह नहीं है, 8-10 लोग जो है वो मुश्किल से बैठ सकते हैं। अब दूसरी बात देखिए, ये नाव किस हालत में जर्जर है, ये आप देखिए, इस नाव में इतना बड़ा छेद आप देखिए, आप ये देख सकते हैं नाव में इतना बड़ा जो है दरार आप नजर आ रहा है। और क्योंकि जब ओवरलोडिंग हुई होगी तो जाहिर सी बात है नाव का ये हिस्सा जो है जो टूटा हुआ है, जो इतना बड़ा छेद है, तो पानी इसके जरिए भी नाव के अंदर प्रवेश किया और उसकी वजह से जो है अचानक स्थिति जो है वो काफी खराब हो गई। और जब नाव के अंदर पानी भरा होगा तो जाहिर सी बात है छोटे बच्चे थे 10-14 साल के, तो वहां पर एक तरीके से कहे तो हड़बड़ी की स्थिति हो गई होगी, इधर उधर बच्चे भागने लगे होंगे और उसी दौरान उस आपाधापी में ये नाव पलट गई।
0: तो साफ है कि जिस हालत में नाव दिख रही है उससे ये साफ साफ लापरवाही दिख रही है। वहीं पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है और गांव के लोग हादसे को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं।
1: श्राद्ध का भोज खाने के लिए एक नाव पर ये तमाम बच्चे जो है वो सवार होकर दूसरे गांव गए थे और जो जानकारी है कि वापसी के दौरान नाव पलट गई और उसके बाद नाव पर जो सवार तकरीबन 20 से 25 लोग थे उसमें से 14 लोगों की मौत हो गई और उसमें से लगभग सभी जो है वो 10 से 14 साल के मासूम बच्चे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त इस गांव में चीख पुकार मचा हुआ है।
0: जहां एक तरफ हादसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जिलाधिकारी से बात की और हादसे में बच्चों की मौत पर उन्होंने दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
2: हमारी जिलाधिकारी से भी बात हुई है, आपदा विभाग के जो सचिव हैं उनसे भी बात की गई है और हमने आग्रह किया है कि ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू टीम जो है भेजा जाए, NDRF के लोग हों, SDRF के लोग हों। और पटना आते ही हम जो है राघोपुर जाएंगे, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। इस दुख के घड़ी में हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मदद करे।
0: 14 मासूमों की मौत को लेकर CM सम्राट चौधरी और PM मोदी ने भी दुख जताया, साथ ही राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए और PM राष्ट्रीय राहत कोष की तरफ से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। राघोपुर से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रोहित सिंह का, जो राघोपुर में ही मौजूद हैं। रोहित, आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि नाव में इतना बड़ा छेद था, सरकारी नाव थी, इतनी लापरवाही, क्या किसी का भी ध्यान नहीं इस पर गया था?
1: बिल्कुल, दो तीन बिंदुओं पर जो है लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। और सबसे पहले ये कि ये सरकारी नाव जो है, जो सब बता रहे थे स्थानीय लोग, वहां के नेता जो है पूर्व बीजेपी के विधायक, उनका भी दावा था कि सरकारी नाव है। तो सरकारी नाव शाम 5-6 बजे के बाद इसका परिचालन कैसे हो रहा था? रात के वक्त नाव का नदी में परिचालन जो है पूरी तरीके से जो है प्रतिबंधित, आप नहीं रात में चला सकते हैं, तो कैसे ये परिचालन चल रहा था? दूसरा ये कि ओवरलोडिंग, कोई देखने वाला नहीं था नाव में कि कितनी कैपेसिटी है, क्षमता कितनी है। 8-10 लोग मुश्किल से उस पर बैठ सकते होंगे, लेकिन बैठे कितने? 20-25 लोग बैठे। तो जाहिर सी बात है वजन ज्यादा हो गया नाव पे। और तीसरा और सबसे गंभीर सवाल, वो बड़ा सुराख, वो बड़ा छेद, जिसकी वजन ज्यादा होने की वजह से जो नाव जो है वो नदी में ज्यादा जो है वो बैठ गया, और फिर उस छेद के जरिए जो है पानी ने नाव के अंदर प्रवेश किया, और उसके बाद फिर हड़कंप मच गया क्योंकि नाव जो है वो डगमगाने लगी, और इसी आपाधापी में जो है नाव पलट गई क्योंकि सब बच्चे इधर उधर अपनी जान बचाने की कोशिश में जुट गए थे। तो जाहिर सी बात है लापरवाही कई बिंदुओं पर जो है वो नजर आ रही। हालांकि इस पूरे मामले की जो है अब जांच कराई जाएगी और फिर पता चलेगा कि असली वजह क्या थी, लेकिन जो भी हो इस पूरी घटना में जो है 14 मासूम जिंदगी जो है वो कह सकते हैं वो खत्म हो गई है। 14 मासूम बच्चों की मौत हो गई है, 10-14 साल के छोटे छोटे बच्चे थे, और जाहिर सी बात है इस घटना
3: बिल्कुल दुख की बात यही है कि सरकारें सरकारी गाड़ियों पर करोड़ों खर्च कर देती हैं, लेकिन एक नाव एक गांव की ठीक नहीं करा पाई। चलिए बात मुंबई की करते हैं, मुंबई के नाला सुपारा की, जहां एक हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 2 महिलाओं की दम घुटने के चलते मौत हो गई, वहीं 5-6 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज जारी है। ये आग देर रात नाला सुपारा वसई लिंक रोड की इंपीरियल हाइट्स इमारत की 14वीं मंजिल पर लगी। वहीं आग से बचने के लिए इमारत में मौजूद 4 लोगों ने बाहर की ओर बनी एक छोटी सी जगह का सहारा लिया, वे वहां फंस गए। करीब 40 से 45 मिनट तक मदद का इंतजार करते रहे। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद ही उस पर काबू पाया। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब आग धू धू कर जल रही थी, और उस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम अपनी क्रेन की मदद से आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। कोशिश ये भी की गई जो लोग फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू किया जाए, लेकिन धुआं इतना ज्यादा हुआ कि जिन 2 महिलाओं की मौत हुई है उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। और अब आपको दिखाएंगे हम ऐसी तस्वीरें, ये खास 3 तस्वीरें। पहली वो आग की जो उस 14वीं मंजिल पर लगी, दूसरी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रेन से जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बचाया गया, लेकिन इस सब के बावजूद, इतनी मशक्कत के बावजूद 2 महिलाएं उनकी मौत होगी क्योंकि दम घुटने की वजह से जो काला धुआं उठा उसकी वजह से उनकी मौत हो गई।
4: लगभग 11:30 बजे के आसपास रिपोर्ट की गई थी, उसके बाद हमारा जो फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है यहाँ का, और हमारे प्रशासन से कर्मचारी और अधिकारी रेस्क्यू एफर्ट्स में लग गए हैं। इनिशियल जानकारी के हिसाब से इमीडिएटली 15 से 20 लोगों को डायरेक्टली हमारे TTL मशीन और फायर फाइटर्स ने रेस्क्यू किया, काफी लोगों को इन्फॉर्म किया और वो खुद से भी नीचे आए हैं।
3: और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे दीपेश कि ये जो आग लगी इसमें 2 महिलाओं की जो मौत हुई है वो कैसे हुई, क्योंकि यहां पर जो फायर अफसर है वो ये दावा कर रहे हैं कि क्रेन पहुंच गई थी, कई लोगों को बचाया गया, तो ये महिलाएं कहां फंस गई?
5: जी बिल्कुल, देखिए इस दर्दनाक हादसे में जो 2 महिलाएं हैं, फाल्गुनी शाह और पार्कर, इन दोनों की, दोनों महिलाओं की मृत्यु हो गई। 50 वर्षीय दोनों की ही आयु थी। जो डॉक्टर हैं तुलिंज अस्पताल की डॉक्टर कविता, उनका कहना है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो धुआं था वो उनके शरीर के अंदर चला गया, जिसकी वजह से दम घुटने से यानी सफोकेशन से उनकी मृत्यु होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा है कि अभी पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि दोनों की मौत किस वजह से हुई है। हालांकि जो प्रारंभिक जांच है अस्पताल की और पुलिस की, उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि धुएं की वजह से इन महिलाओं की मृत्यु हुई है। साथ ही 6 लोग जो है उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। जो 4 लोग फंसे हुए थे बिल्डिंग के एक कोने में, उन्हें बचाने में जो है फायर ब्रिगेड को यश प्राप्त हुआ है, उन्हें बचाने में फायर ब्रिगेड कामयाब रहा है। 40 से 45 मिनट का इंतजार वो लोग करते रहे अपनी मदद के लिए।
3: गनीमत यह रही कि काफी लोगों की जान बचाई जा सकी। शुक्रिया दीपेश इस पूरी जानकारी के लिए। और अब एक बड़ी खबर पंजाब के मानसा से, जहां कल एक एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह छोटा की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुख्य आरोपी का नाम अश्विनी है, जिसे पुलिस ने राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर मानसा में जबरदस्त गुस्सा है। बीती रात प्रदर्शन के बीच एसएसपी परिजनों से मिलने भी पहुंचे, लेकिन परिजनों ने साफ कह दिया कि उन्हें इंसाफ चाहिए। इसके बाद एसएसपी मौके से लौट गए। मानसा में परविंदर झोटा की हत्या के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। हमारे सहयोगी असीम बस्सी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। असीम, जो परिवार है वो नाराज है, वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं था, वो किसी तरह की बयान दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं था। फिलहाल मानसा में क्या तनाव कम हुआ है? पुलिस इस पूरे मामले में आगे कैसे बढ़ रही है?
6: जी हम आपको बता दूं, भले ही पुलिस ने जो है जो प्राइम अक्यूज अश्विनी कुमार है उसको पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है, राजस्थान से अरेस्ट हुई है, लेकिन कुछ चीजें हैं अभी भी जो है स्टेटमेंट दर्ज नहीं करवाई गई है, परिवार की तरफ से एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई है। और परिवार में लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। उन्होंने कहा है कि परविंदर झोटा जो है नशे के खिलाफ आवाज उठाता था और उसको इस तरह गोली मारकर उसकी आवाज बंद कराई गई है। सो उनको उनका सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है। तिकोनी चौक है मानसा में, जहां पर लोकल रेजिडेंट्स, झोटा के दोस्त हों, सोशल वर्कर्स हों, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों, दूसरी एनजीओज हों, सबने एक बड़ा धरना लगाया हुआ है। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और जो माहौल है डेफिनेटली टेंस है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है। उन्होंने कहा कि नशा एक बड़ी प्रॉब्लम है पंजाब में और परविंदर झोटा नशे के खिलाफ आवाज उठाता था, सरकार इस इशू को टैकल करने में फेल हुई है, ये उनका आरोप है और इसमें इंसाफ मिलना चाहिए। सो फिलहाल पुलिस का यही जोर लगा है कि किस तरह फैमिली को कंसोल किया जाए और फैमिली को मनाया जाए पोस्टमार्टम कमीशन के लिए, लेकिन लोग जो है वो मांग कर रहे हैं अश्विनी कुमार जो कि केमिस्ट था और एलिजेडली नशा बेचता था, उसका घर भी डाला जाए, उसका जो है दुकान भी गिराई जाए।
3: अंदर गुस्सा है और विरोध प्रदर्शन जारी है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जहां एक तरफ मनसा हत्याकांड को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी को तो पकड़ लिया है, वहीं अब पंजाब ने नशे के खिलाफ सियासी बयानबाजी दिखाई दे रही है। अकाली दल ने मान सरकार को घेरा और पंजाब में नशा तस्कर बेखौफ है यह दावा किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे पुरानी रंजिश का हवाला दिया है।
7: परविंदर झोटे का जो दिन दिहाड़े गोलियां मार के कतल किया गया, उन्हें एक बार फिर पंजाब दे विच माड़े लॉ एंड ऑर्डर की जिहड़ी तस्वीर है वह देश के सामने रख दी। मैं सरकार नूं कहना चाहुंदा कि होर किन्ना नुकसान तुसीं पंजाब दा कर, जे नहीं परफॉर्म कर सकते छड़ के पासे होवो, पंजाब के उत्ते तंग तरस करना चाहिए।
8: मानसा की घटना हुई है, सबसे पहले मैं उस घटना की निंदा करता हूं और दूसरा उनका जो जिस आदमी ने मर्डर किया है, कातिल है जो, उसका और जिसका कत्ल हुआ है, दोनों का पुराना आपसी रंजिश जो चल रही थी, उनका आपसी पुराना लड़ाई झगड़ा चल रहा था, पर लेकिन ये बहुत ही दुखदायी घटना है। दोषी को पकड़ लिया गया, किसी को भी कानून आपने हाथ में लेने की आज्ञा नहीं है, जो भी लेगा उसको सख्त सजा दी जाएगी।
3: और रुक करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर का, कोची की खबर, जहां सिनेगॉग ट्रस्ट की एक नर्सरी के पास आग लगाने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। रात करीब 2:30 बजे आरोपी ने पेट्रोल के कैन से सिनेगॉग के सामने आग लगाने की कोशिश की। हॉर्टिकल्चर नर्सरी में भी पेट्रोल डाला, पुलिस को इसमें आतंकी साजिश का शक है। एल्डो पॉल नाम का यह आरोपी अर्नाकुलम का रहने वाला है और पुलिस को शक है कि आरोपी किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा हो सकता है। हमारी सहयोगी अनघा केशव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनघा, क्या पता चल रहा है पुलिस को, क्यों कर रहा था ये शख्स ऐसा?
9: इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जांच हो रहा है इस मामला के बारे में। अभी पुलिस को ये सस्पेक्टेड है कि ये आदमी को दूसरा और बड़ा लिंक हो सकता है, तो ये है पुलिस का प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो हमें पता आ रहा है। उन्होंने ये बोल रहा है कि उनका फोन एविडेंस पे कुछ लार्जर लिंक हो सकता है और हम वो सीसीटीवी दृश्य में देख सकते हैं कि वो कैसे आ रहा है और पेट्रोल पंप पेट्रोल कैन को वहाँ हॉर्टिकल्चर नर्सरी को फेंक के इज लाइटेड ऑन फायर और वो ऐसा निकल रहा है। और हम ये पता चल रहा है कि ये अक्यूज एर्नाकुलम से है और अभी उसका चैट पे कोई बॉस को रेफर कर रहा था। तो अभी पुलिस को ये शक है कि ये बॉस कोई और इंटरनेशनल लिंक हो सकता है, तो ये सब जांच चल रहा है, टेरर एंगल से जांच चल रहा है।
3: जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर यहूदी प्रार्थना स्थल के पास आखिर ऐसा इस शख्स ने क्यों किया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
13: कैसे लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
14: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
15: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
14: क्या?
15: इनकी राय।
16: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
17: दिल्ली के जंतर मंतर पर अब धरना नहीं, रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन मुश्किल। अगले ढाई महीने तक बुकिंग फुल और फीस भी लाखों पार। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर अब इतिहास बन गया है, क्योंकि जंतर मंतर को डी नोटिफाई कर दिया गया है, मतलब अब जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल नहीं रहा। सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए तीन जगह निर्धारित कर दी हैं। ये जगह हैं रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड, पुरानी मैदान। अब मसला यह है कि इन तीनों ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल तो बना दिया गया, मगर दो मैदानों में कार्यक्रम चल रहा है। रामलीला मैदान और सीबीडी ग्राउंड में भी रामलीला की तैयारी हो रही है। बचा भुराड़ी का मैदान, वहां बारिश के बाद फिलहाल कहीं कहीं पानी भरा हुआ है।
18: हम जिस रामलीला मैदान पर हैं, इस समय नवरात्रि के चलते आप देखेंगे कि यहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है। इस तरफ स्टेज लगा हुआ है और ठीक इसके पीछे यहाँ पर देखिए सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही मेला लगा हुआ है। कारोबार मेले का और लोगों के बचपन की यादें ताजा हो जाती है। इस रामलीला मैदान का अपना बहुत इतिहास रहा है, इस रामलीला मैदान ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, लेकिन अब इसे एक आंदोलन धरना प्रदर्शन स्थल घोषित किए जाने को लेकर के व्यापारी चिंता जता रहे हैं, स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है और ऊपर से जंतर मंतर को जिसकी एक अपनी पहचान रही है कि वहां पर धरने प्रदर्शन होते थे जिसकी वजह से सरकार सत्ता तक आवाज पहुंचती थी, उसको लेकर के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते आवाज उठाते हैं, वो भी नाराज हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
3: कैसे लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
4: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
5: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
4: क्या?
5: इनकी राय।
6: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
7: साथियों, आप सभी जानते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं, करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के इस दौर में भारत में 500 मिलियन से अधिक यूट्यूब यूजर्स हैं, 500 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। हमारे यहां अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
8: आ गया सोमवार और आ गए
9: चकमक चाचा।
10: हाँ चाचा, अखबार बांच रहे हैं।
11: टेस्ट
10: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
11: अरे भैया, तुरस में हिस्सा हम ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा है, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
10: अच्छा, कब उठाए?
11: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठा।
10: अच्छा,
11: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग तरह इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे, दन दन दन दन कर गया, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला जी। मुद्दा मजबूती से रखते थे
10: हम तो। सुने मुद्दा टूटा भी है
11: आपका? भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द पिता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन दिल बोलता रखे थे हमें। हाँ, एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
10: अच्छा,
11: और क्या
10: आपका मतलब? हम लोग डर जाते हैं।
11: और क्या डर जाते हैं? बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उस भागने लगता।
10: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है।
11: किधर?
10: हम खेल गए अब की।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: खोखली नाव में सवार होने से बिहार के हाजीपुर में गए 14 बच्चों की जान, आज तक की पड़ताल में खुलासा, सुराख वाली बोट के गंगा में डूबने से हुई मौत, सभी एक ही गांव के बच्चे।
1: मुंबई में नाला सुपारा इंपीरियल हाइट्स इमारत में लगी भीषण आग से 2 महिलाओं की मौत, दम घुटने से गई जान, 6 लोग अस्पताल में भर्ती।

0: अगर चैलेंज कहा 2029 में भी करारी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस, घुसपैठियों को बचा रहे हैं राहुल गांधी।
1: पंजाब के मनसा में ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर जोटा मर्डर केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान के सालासर से पकड़ा गया कैमरे पर फायरिंग करने वाला शूटर।

0: जंतर मंतर पर जबरन घुसने पर एक्शन सीजेपी नेता आशुतोष शांका और सौरभ दास को कोर्ट ने 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। बेल बॉन्ड तोड़ने के जुर्म में कोर्ट ने दोनों को 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा। मंगलवार सुबह जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पकड़ा था। तीनों को जंतर मंतर में बिना अनुमति प्रवेश करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। वहां बैरिकेडिंग और सभी गेट्स बंद होने के बावजूद गेट के ऊपर चढ़कर पहुंचे थे। अजिंक्य शिंदे से बॉन्ड भरवा रहे हैं पुलिस और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की तानाशाही हावी है। अजिंक्य शिंदे ने सरकार पर बोला हमला, कहा कि जनता अब डरने वाली नहीं, तिरंगा लहराना जुर्म नहीं। बिहार के वैशाली में गंगा में पलटी नाव हादसे में 14 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। इस नाव हादसे में मरने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। पुलिस के मुताबिक सभी शाद का भोज खाने के लिए जा रहे थे। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे के बाद ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर डीएम का किया घेराव, पुलिस ने समझाकर करवाया शांत। नाव हादसे में मरने वाले बच्चों की उम्र 6 से 15 साल के बीच, परिवार और पूरे गांव में मातम पसरा। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता का ऐलान।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना। वैशाली नाव हादसे पर सीएम सम्राट ने जताया खेद, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश। राघोपुर नाव हादसे पर तेजस्वी यादव ने जताया दुख, बोले मेरे विधानसभा क्षेत्र में बेहद दुखद घटना, मैं अभी दिल्ली में हूं, आज लौटूंगा पटना। हादसे पर चिराग पासवान ने जताया खेद, बोले मासूम बच्चों की मौत की खबर हृदय विदारक है। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग से अफरा तफरी, लोगों ने जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल से लगाई छलांग। समय रहते आग पर पाया गया काबू, टला बड़ा हादसा, लोगों को जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर कूदना पड़ा। फिलहाल आग लगने के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, संबंधित विभागों की जांच जारी। स्थानीय लोगों ने लोगों की जान बचाने में मदद की, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हादसे के बाद फिर बिना फायर एनओसी चल रहे रेस्टोरेंट पर सवाल, उधम फिश पॉइंट के पास फायर एनओसी था या नहीं इसकी पुष्टि नहीं है।
0: महाराष्ट्र के नाला सोपारा में हाई राइज बिल्डिंग में भीषण आग, हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 6 लोग अस्पताल में समय भर्ती। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक धुएं के कारण दम घुटने से 2 महिलाओं की मौत होने की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सटीक कारण पता चलेंगे। घटना की जानकारी मिलते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, बड़ी क्रेन की मदद से 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। गोपालगंज में गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग, 17 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर, गोरखपुर रेफर। गुवाहाटी में बैक स्नेचिंग का रॉक खड़े कर देने वाला एक वीडियो है, सामने बदमाशों ने महिला को 100 मीटर तक घसीटा। राहुल गांधी का सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान, इंडिया गठबंधन राज्यों तक तेज करेगा विरोध। इंडिया गठबंधन की चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाना हमारा मकसद है। राहुल गांधी को अमित शाह का जवाब, कहा कि एसआईएल के बहाने घुसपैठियों को बचा रहे राहुल। अमित शाह ने कहा कि 2029 में भी करारी हार के लिए राहुल रहे तैयार, देश की जनता को मोदी पर भरोसा। केसी वेणुगोपाल का अमित शाह पर तंज, बोले 2029 तक पद पर बने रहने की चिंता करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों से बचने का आरोप लगाया।
1: पवन खेड़ा ने शाह पर पलटवार करते हुए पूछा, ज्ञानेश कुमार पर इतना भरोसा क्यों है, क्या 2029 तक पद पर रहेंगे सीसी, चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। पीयूष गोयल ने कांग्रेस की मंशा पर उठाए सवाल, कहा एसआर गलत तो इनके सभी 6 सीएम इस्तीफा दें, जहां जीते वहां एसआर सही है, जहां हारे वहां गलत है। सीसी पर राहुल के आरोप को पीयूष गोयल ने बताया बेबुनियाद, का कांग्रेस चुनाव आयुक्त तो बनाती थी राज्यपाल, मंत्री, नेता, विपक्ष से पूछे 10 सवाल। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा, कर रहे बचकानी हरकत, चुनाव आयोग ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। खड़गे का दावा, इंडिया गठबंधन के अभियान को मिला व्यापक समर्थन, बोले वोट चोरी की कथित साजिश का पर्दाफाश करने के तैयार हैं लोग। तेजस्वी यादव का सीसी ज्ञानेश कुमार पर बड़ा आरोप, बोले मोदी शाह के इशारे पर लोकतंत्र को चलने और वोट चोरी की रची गई साजिश। तेजस्वी यादव बोले लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष एकजुट होकर लड़ने को तैयार है, इस प्रोटेस्ट ने दिल्ली को बदल दिया है। संजय राउत का सीसी ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला, बोले माफिया है, पूरे सिस्टम का प्राधिकरण कर दिया है। सुप्रिया सुले का ऐलान, इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है, संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली से गांव गांव तक जारी रहेगा आंदोलन। आयशा छात्र नेता नेहा बोरा का बीजेपी पर निशाना, बोली सीसी ज्ञानेश कुमार दे इस्तीफा।
0: मुंबई प्रदर्शन में हिरासत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा बयान, कहा कि ब्लैंकेट ऑर्डर ब्लिंकिट ऑर्डर कर सकते हैं और पुलिसिया कार्रवाई के विशिष्ट मामलों पर सबूत मांगे गए। सुनेत्रा पवार के पैनल का सोमेश्वर चीनी मिल चुनाव में क्लीन स्वीप, सभी 21 सीटों पर जीत, विरोधी पैनल का खाता तक नहीं खुला। महाराष्ट्र में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, छत्रपति संभाजी नगर में 23 लाख रुपए से ज्यादा का 12,382 किलो संदिग्ध मिलावटी तेल जब्त, बीड में 4,60,000 के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ पकड़े गए। मुंबई में डोमिनोज समेत 3 फूड आउटलेट का लाइसेंस हुआ सस्पेंड, जांच में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, वेज नॉनवेज खाना एक ही फ्रीजर में रखा मिला। डीओ में 5,889 करोड़ की लागत से अब बनेंगे नए हॉस्टल, 21,895 विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा मिलेगी। सीएम योगी आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे, संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं स्नातक महासम्मेलन को करेंगे संबोधन। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी करेंगे बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन, कानून व्यवस्था और एयर शो की तैयारियों की समीक्षा भी। यूपी में समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक आज थामेंगे बीजेपी का दामन, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी होंगे शामिल। प्रयागराज में गरीबों को मिलेगा अपना पक्का आशियाना, माफिया अधिक अहमद के गढ़ में बनेगा पद्म आवास, मुख्यमंत्री योगी जल्द कर सकते हैं भूमि पूजन। प्रयागराज के चकिया में अतीक अहमद के घर के पास 602 फ्लैट की आवासीय सोसाइटी पीडीए की टीम ने जमीन का किया निरीक्षण, साफ सफाई भी कराई।
1: परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने राजस्थान के सालासर से मुख्य शूटर को किया गिरफ्तार। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजावरिंग के परविंदर सिंह के परिवार से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। परविंदर सिंह हत्या मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है क्योंकि परिवार ने अपनी कुछ मांगे रखी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मुखर्जी नगर में औचक निरीक्षण, विद्यार्थियों के बीच बैठकर सुनी समस्याएं, सीएम ने सुरक्षा को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद करने के दिए आदेश। छात्रा ने निःशुल्क लाइब्रेरी, पीजी के किराए, महिला सुरक्षा और क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुख्य मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रखे। देहरादून के विकास नगर में बेकाबू ट्रक साइबर कैफे में घुसा, भागकर लोगों ने बचाई जान, टला बड़ा हादसा। इंदौर में कैफे के बाहर 2 पक्षों में मारपीट, बीच सड़क चले लात घूसों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चोरी के टेम्पो ट्रैवलर का इंदौर में आतंक, कई वाहनों को मारी टक्कर, ऑटो चालक और आरोपी घायल। गुरुग्राम के फरुखनगर के बस टक्कर से ट्रैक्टर के 2 टुकड़े, ड्राइवर घायल, घटना के वक्त बस में 25 से 40 सवारियां मौजूद थी। नवादा में बाइक सवारों ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, स्टंट और रील के चक्कर में गई कई लोगों की जान।
0: मोगा के स्कूल में छात्रों के विवाद ने पकड़ा थूल, 2 परिवारों के बीच में जमकर मारपीट, प्रिंसिपल को भागकर बचानी पड़ी जान। पटना में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूटपाट, हथियारों की नोक पर वारदात को दिया गया अंजाम। मेरठ के अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा, परिवार वालों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। राजस्थान में दीपावली से पहले बड़ी साजिश नाकाम, श्रीगंगानगर बॉर्डर पर ड्रोन से गिराए गए हथियार और विस्फोटक बरामद, 2 गिरफ्तार। नोएडा की पॉश सोसाइटी में 1.5 करोड़ की चोरी, 2 फ्लैटों के लॉक काट कर सोना, 2 किलो चांदी, कैश ले उड़े चोर, सीसीटीवी में वारदात। अलवर में एटीएम की लूट की वारदात, रस्से से बांधकर उखाड़ने की कोशिश हुई नाकाम, बदमाशों ने कैमरे पर एक काला स्प्रे लगाया। जयपुर में अवैध ब्लास्टिंग के दौरान बड़ा हादसा, महेशवास पहाड़ी ढही, मलबे में दबे 2 मजदूर रेस्क्यू जारी। मेरठ में नीला ड्रम कांड में आज होगा सजा का ऐलान, बेटी से मिलने के लिए बेचैन है मुस्कान। झांसी में कार की टक्कर के बाद से सड़क पर बरसी बेल्टें, कई लोगों ने युवक को घेर कर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। बेगूसराय में महिला डॉक्टर पर एसिड अटैक, पड़ोसी दुकानदार गिरफ्तार, महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल।
1: लुधियाना में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार का कहर, कार और मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, 1 नौजवान की मौत, 4 एक्सीडेंट पीछे आ रही कार के डैशबोर्ड में हुआ रिकॉर्ड। थाने में दीवा में भीषण आग, ऑटो रिक्शा समेत 22 दोपहिया वाहन जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा के जहांगीरपुर में दिन दहाड़े युवक की हत्या का सीसीटीवी आया सामने, दौड़ा दौड़ाकर मारी थी 6 गोलियां। उन्नाव में दीवार के विवाद में महिलाओं को लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ाकर पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। एमपी के शोपुर में भाई ने मोबाइल चीन स्कूल जाने को कहा तो 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया लड़का। जम्मू कश्मीर के गुरेज समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी, चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। श्रीनगर में अधिकतम तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस, लोगों से सतर्क रहने की अपील, आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी की संभावना। गुरेज में पीर बाबा इलाके में बर्फबारी, इसकी वजह से दमकल विभाग की गाड़ी सड़क से फिसली, मौसम विभाग के लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जम्मू कश्मीर गुरेज पुलिस ने 4 बाइकर्स को किया रेस्क्यू, सूचना मिलने पर बचाव दल ने केरल के बाइकर्स को सुरक्षित बाहर निकाला। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ गुलमर्ग, पर्यटकों ने जमकर उठाया लुत्फ।
0: दिल्ली के झंडे वालन मंदिर में नवरात्र के चौथे दिन मां चंद्र घंटा का भव्य श्रृंगार हुआ, आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। हैदराबाद में नवरात्र के चौथे दिन चार मीनार सहित भाग्य लक्ष्मी मंदिर में महाआरती का आयोजन, सुबह से दर्शनों की लंबी कतार। पूरी में नवरात्र के चौथे दिन भगवान जगन्नाथ की उतारी गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह, दुर्गा पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं भक्तों की भीड़। हावड़ा में सह्याद्री क्लब ने तैयार किया भव्य दुर्गा पूजा पंडाल, केदारनाथ धाम की थीम पर भव्य पूजा पंडाल तैयार। आज फिल्म महिषासुर का फर्स्ट लुक हुआ जारी और टेनिस लुइस के साथ पद्मिनी कोल्हापुरे, चंदन रॉय और आयशा ईमान आएंगे नजर। फिल्म खोसला का खोसला 2 की नई रिलीज डेट आई सामने और 5 मार्च को ये फिल्म दस्तक देगी। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म उड़ता तीर का दूसरा ट्रेलर रिलीज 23 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। हनुमान अंश पर पवन पुत्र की कृपा बरकरार, 68वें दिन 337 करोड़ के क्लब में एंट्री। अजय देवगन की दृश्यम 3 ने रचा इतिहास, 12 दिनों में 500 करोड़ का क्लब में बने पहुंची और 2026 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी। अयोध्या में इस साल भी दीपोत्सव पर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, इस साल 30 लाख दिए जलाने की योजना, 35,000 स्वयंसेवक सजाएंगे राम की पैड़ी। आगामी त्योहारों को लेकर यूपी पुलिस सतर्क, लखनऊ में जोन के ADG प्रवीण कुमार ने अयोध्या में तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। असम के नाहरकटिया और आसपास के इलाकों में युवाओं को बहुउद्देशीय खेल परिसर की सौगात, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का उद्घाटन। इंदौर में भारत वेस्ट इंडीज T20 मैच के बाद नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान चलाया, 3 दिन की सफाई में निकले कूड़े कचरे को रिसाइकिल भी किया गया। आज खेला जाएगा भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में 5 मैचों की T20 सीरीज का 4th मैच, मैदान पर इतिहास रचने उतरेंगे अर्शदीप सिंह, हैदराबाद में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है।

0: सौरभ राजपूत हत्याकांड में आज साहिल और मुस्कान की सजा पर फैसला आना है। साहिल और मुस्कान दोनों जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होंगे। सौरभ राजपूत के परिवार ने आरोपियों की फांसी की मांग की है। सौरभ ने 2016 में मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ की हत्या की और शव के चार टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिए। इसके बाद दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए। 17 मार्च को लौटे और 18 मार्च को घटना का पर्दाफाश हुआ।
1: 30 सितंबर को कोर्ट ने दोनों को दोषी माना था और उसके बाद आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण जब ऐलान होगा कि क्या इनको सजा मिलेगी। हमारे संवाददाता हिमांशु भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, इस सुनवाई के संबंध में क्या क्या अपडेट है, आज क्या क्या होगा?
2: देखिए, आज सुबह सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से साहिल और मुस्कान दोनों जुड़े कोर्ट में और उनसे पूछा भी गया, दो जो सबसे महत्वपूर्ण, एक कि क्या कहना चाहते हो, कुछ कहने के लिए अगर आखिरी में जैसे सजा सुनाने से पहले उनसे ये पूछा गया और साथ साथ क्या कभी कभी अपराध में कभी शामिल रहे नहीं रहे हैं, ये सारी चीजें। तो अब कुछ देर के बाद कभी भी 11:30 के बाद राजीव कभी भी इस पर फैसला आ सकता है। सबकी निगाहें हैं। अभी हम गए थे सौरभ भारद्वाज के घर, उनकी माँ से हमने बात की, उनके भाई से हमने बात की। उन लोगों का कहना है कि पिछले 1.5 साल से लगातार वो आज के दिन का ही इंतजार कर रहे थे। सौरभ भारद्वाज के बड़े भाई, उनकी माँ, दोनों लोगों ने तो सीधे तौर पे कहा कि फांसी से कम पे उनको वो फांसी की सीधे सजा की मांग कर रहे हैं। पूरा परिवार फांसी की सजा की मांग कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि कुछ ही देर में सजा पे जो पूरी बहस है वो सब कुछ हो चुकी है, सिर्फ सजा का ऐलान होना बाकी है। जी राजीव,
0: हिमांशु, लगभग 11:30 बजे सजा का ऐलान, कितनी संभावना है कि सजाए मौत दोनों को मिलेगी?
2: देखिए, जिस तरीके से हत्या हुई थी इसमें दो चीजें बेहद इंपॉर्टेंट थी। एक, पहले साजिश रची गई, क्योंकि नीला ड्रम खरीदा गया, सीमेंट खरीदा गया, कटर खरीदा गया, ये सारी चीजें, यानी मर्डर के पहले साजिश। बाहर घूमने के लिए मनाली, शिमला, कसोल घूमने के लिए पूरी टिकट की पूरी तैयारी थी। यानी एक तो मर्डर के पहले की साजिश रची गई और हत्या के बाद किस तरीके से डिस्पोज करना है बॉडी, यानी कि सबूत मिटाने के भी पूरी तरीके सब कुछ तय कर लिया गया था। यानी सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसके बाद बाकायदा सौरभ के फोन को लेकर के मुस्कान और साहिल घूमने निकल गए बॉडी को डिस्पोज करके ड्रम के अंदर, और उसके बाद वो आराम से उसके फोन से मैसेज लगातार सौरभ के फैमिली को करती रही, गुमराह करती रही, ताकि लोगों को लगे कि सौरभ जिंदा है और वो कसौल और मनाली घूमने गया है। अब इस मामले में जो फैसला है, क्योंकि करीब 20 से ज्यादा गवाह भी पेश किए गए हैं, देखना ये होगा कि सजा पे ऐलान क्या होता है। लेकिन एक चीज को गौर करना होगा यहाँ पे राजीव, कि 1 साल की एक बच्ची।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मैडी, I need to open a savings account.
2: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
1: स्मॉल बैंक?
2: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
1: Okay.
2: Ujjivan, nothing small about us.
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 products, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाएं special. Car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो थमका लगाने बस।
6: मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
7: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया है, पर स्टेज नहीं हिलता,
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
9: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
10: कौन सी बनानी है?
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
12: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
13: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
14: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
15: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
14: क्या?
15: इनकी राय।
16: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
17: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
18: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
17: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपीवा डायबिटीज जूस।
19: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
20: AU
21: सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
4: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
5: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: कौन सी बनानी है?
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
10: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपीवा डायट्री जूस।
12: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
13: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
12: स्मॉल बैंक?
13: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडी, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
12: ओके
13: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
14: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
15: सोच बदलो और बैंक भी।

जम्मू में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूबे नजर आए। आरएसपुरा के धान के खेतों में बारिश से फसल को नुकसान पहुंचा है। कटाई से पहले फसल बर्बाद होने से किसान परेशान हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पंजाब के फाजिल्का में अनाज मंडी में पानी भरने से धान की फसल भीग गई। पानी के बीच अपनी उपज बचाने के लिए किसान मशक्कत करते नजर आए। दिल्ली के किशनगढ़ में रामलीला मैदान में पानी भरने से मंच और कलाकारों का सामान भीग गया। वहीं नोएडा के सेक्टर 95 अंडरपास में पानी में फंसी कार से लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकलना पड़ा। सभी लोग सुरक्षित बताए गए। हिमाचल में बारिश के बाद मौसम साफ होने के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। बारिश ने किसानों की फसल से लेकर शहरों की व्यवस्थाओं तक को प्रभावित किया है। अब नजरें राहत, मुआवजे और जल निकासी के इंतजामों पर हैं। आज तक ब्यूरो।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार तुम्हारा।
2: लप लप लप।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मंत्र पर जबरन घुसने के मामले में सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष राका को 5 दिन की जेल, दिल्ली की कोर्ट ने भेजा तैयार। दिक्के बोला तिरंगा फहराने की मिली है सजा।
1: विपक्ष के चाय पार्टी में लोकतंत्र बचाने की कसम खाने वाले राहुल गांधी को अमित शाह का चैलेंज, कहा 2029 में भी करारी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस, घुसपैठियों को बचा रहे राहुल।
0: नाम सवार होने से बिहार के हाजीपुर के 14 बच्चों की गई जान, आज तक की पड़ताल में खुलासा, सुराख वाली बोट में गंगा में डूबने से हुई मौत, सभी एक ही गांव के बच्चे।
1: प्रेमी साहिल की मदद से पति का मर्डर कर नीले ड्रम में शव के टुकड़े डाल करके डालने वाली मुस्कान की सजा पर थोड़ी देर में आएगा फैसला, मेरठ जिला अदालत ने दोनों को ठहराया है दोषी।
0: पंजाब के मानसा में ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा मर्डर मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान के सालासर से पकड़ा गया कैमरे पर फायरिंग करने वाला शूटर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
0: दिल्ली के जंतर मंतर पर रोक के बावजूद जबरन घुसने के मामले में अब सीजेपी के 2 प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष राका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। दोनों पर बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन का आरोप है।
1: बेनिस की धारा 163 के दोबारा उल्लंघन का बॉन्ड पर आरोप है और अजिंक्य शिंदे की 20 बॉन्ड भरने के बाद अब उनके बाहर जाने की अनुमति मिल गई है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पहले भी कहा था कि उन्होंने शांति बॉन्ड भरा है, जिसे अभिजीत दीप के समेत टीम ने इनकार किया था, लेकिन वो बॉन्ड भरा गया था और यही वजह है कि उसी के उल्लंघन का आरोप लगाया गया और कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के बाद से विरोध के सुर भी तेज हो गए, अभिजीत दीप के का बयान भी आ गया और सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराने पर आखिर ऐसी कार्रवाई क्यों।
0: उन्होंने ये भी कहा कि इसे असहमति की आवाज दबाने की कोशिश में सरकार इस तरह के कदम उठा रही है। जबरन जंतर मंतर में घुसने पर सौरभ दास और अजिंक्य शिंदे, आशुतोष राका, इन तीनों को जेल भेज दिया गया।
3: अगर तुम्हें देश में इमरजेंसी लगानी है, इमरजेंसी करनी है, तो ऑफिशियली करो ना, ये क्या कायरों की तरह अनऑफिशियली आप इमरजेंसी कर रहे हो, जहां पर आप लोगों को जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो। ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया कि उसके लिए आप लोगों को 5 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हो। इतने बड़े कायर मत बनो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। अगर इमरजेंसी लगानी है तो ऑफिशियली लगाओ, दम है तो। आरोप क्या लगा रहे हो? जो सत्ता में हो इन्वेस्टिगेशन करो, जांच करनी है वो करो, ये आरोप क्या लगा रहे हो तुम लोग? और ये जो लोग हैं, ये सारे के सारे बहुत ही बड़े कायर हैं, ये पुलिस के पीछे छुप रहे हैं। कल से सौरभ, आशुतोष और अजिंक्य को इलीगल डिटेंशन में रखा गया था, उनके लॉयर से तक उनको मिलने नहीं दिया गया था, और आज सुबह सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। किस चीज के लिए? क्या गुनाह था उनका? उनका गुनाह सिर्फ यही था कि वो जंतर मंतर पर गए और उन्होंने वहां पर तिरंगा लहराया।
4: ये बताओ, आपने भी आज बॉन्ड भरा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ये कह रही थी लगातार कि ब्रीच ऑफ पीस जो बॉन्ड था वो हुआ, तो आपने भी वो बॉन्ड भरा है? तो
5: सर, जंतर मंतर जाके भारत का झंडा लहराना ये ब्रीच ऑफ पीस है, तो मैं दोबारा करूंगा।
6: दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि इन्होंने जो इनका बॉन्ड था उनका वायलेशन किया है, इनका उनका प्रेजम्पशन है कि ये फिर से ऐसा कर सकते हैं, और जो इन्होंने किया है वो कानून का उल्लंघन है, 163 का उल्लंघन है। उनके हिसाब से पहली बार एक प्राय किसी उनका कहना है कि प्राय पब्लिक बॉडी पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया गया है विदाउट प्राइवेट कंप्लेनेंट फाइलिंग दी कंप्लेंट। दिल्ली पुलिस ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया है और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेके, और जिस केस के रेफरेंस में या जो उसके लिए सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, जो बताया गया है कि कनॉट प्लेस में उसमें सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, उसको यहाँ पे यूज करते हुए, इसका मिसयूज करते हुए अपनी पावर अथॉरिटी का 5 दिन की जेसी में भेजा है।
1: तो प्रोटेस्ट करने का अगर अधिकार है, लेकिन सवाल एक भी है कि कितने दिन तक प्रोटेस्ट, हर दिन क्या प्रोटेस्ट हो सकते हैं, इसको लेकर भी अब जनता भी सवाल पूछ रहे हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, अब किस तरह की कार्रवाई इन पर संभव है? तिहाड़ तो भेज दिया गया है, लेकिन क्या अब क्योंकि ज्यादा लंबा रखा जाएगा तो भी सवाल उठेंगे कि आप तो कुचल रहे हैं प्रोटेस्ट को, आवाज दबा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है।
7: देखिए, न्यायिक हिरासत में तो कोर्ट ने भेजा है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने दिल्ली पुलिस ने भेजा, और सभी को अदालत में अधिकार होता है वहां पर दोनों पक्ष ने दलीलें दी हैं और दलीलों के बाद दिल्ली पुलिस ने बताया कि 13 अक्टूबर को दो अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है कनॉट पुलिस स्टेशन, कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में और संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में। और खुद सीजेपी ने वीडियो जारी किया था जिसमें ये जेडीयू पार्टी का जो दफ्तर है उसके परिसर से गुपचुप तरीके से पहुंचते हैं, उसके बाद जो गेट है उसको कूद करके जंतर मंतर पर पहुंचते हैं, वहां पर नारेबाजी करते हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बीएनएस की धारा 163 लागू है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन ये दोनों खासतौर से आशुतोष और सौरभ दास रिपीट ऑफेंडर हैं, शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लोगों को ऐसा करने के लिए उकसा रहे हैं। तो ये एसीएम के सामने दलील दी गई जिसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली पुलिस दोनों को तिहाड़ जेल लेकर पहुंची जहां आज तक की टीम भी मौजूद थी, तस्वीरें भी सामने आई हैं। जबकि आजके को 5,000 के जो पीस बॉन्ड है उस पर छोड़ा गया है और साथ ही साथ 6 महीने के लिए उनको बोला गया है कि आप शांति भंग नहीं करेंगे। तो ये दिल्ली पुलिस की दलील है और ये भी आरोप लगाया दिल्ली पुलिस ने कि सरकारी काम में बाधा डाली, सोशल मीडिया पर लोगों को उकसा रहे हैं।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खिलाफ आंदोलन को अब अलग तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं राहुल गांधी। विपक्षी नेताओं के साथ हाई टी में राहुल गांधी ने साफ किया कि आगे की लड़ाई साझा बैनर के तले लड़ी जाएगी।
1: राहुल गांधी सीईसी के खिलाफ लड़ाई को पूरी रफ्तार से जारी रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लड़ाई दो मोर्चों पर लड़ी जाए, कानूनी लड़ाई अदालत में लड़ी जाए और राजनीतिक लड़ाई गलियों सड़कों पर हो, और इसके लिए वो चाहते हैं कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट हो जाए।
8: इस मचवे को जरा गौर से देखिए। राहुल गांधी ने चाय पार्टी की बहाने बड़ा दांव चला है। अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई राहुल गांधी करते दिख रहे थे, लेकिन आगे की योजना इसे विस्तार देने की है। चाय पार्टी में राहुल गांधी ने अपना प्लान ये कहते हुए साफ कर दिया कि अदालत में कानूनी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन राजनीतिक लड़ाई सड़कों पर लड़नी होगी। आंदोलन की गति को लंबे समय तक बनाए रखा जाए, न कि शुरुआती विरोध प्रदर्शनों के बाद इसे ठंडा पड़ने दिया जाए। भविष्य में आंदोलन विपक्ष के साझा बैनर के तले आगे बढ़े, लड़ाई एकजुट होकर लड़ी जाए।
9: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एंड गोल तक जाएगी। कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि फिर आपको सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइजिंग रहे। मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
8: आज तक को मेरी जानकारी के मुताबिक हाई टी की बहाने हुआ विपक्ष का गेट टुगेदर सिर्फ मेल जोल तक सीमित नहीं था। इसमें विरोध प्रदर्शनों की गति बनाए रखने, आंदोलन का दायरा बढ़ाने और राजनीतिक दलों, सिविल सोसाइटी संगठनों और युवा समूहों के लिए एक साझा मंच बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई।
9: कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
8: यानी विपक्ष का ये आंदोलन अभी थमने वाला नहीं है। चाय पार्टी में आए विपक्ष के तमाम नेताओं ने एक एक कर अलग अलग तरीके से यही बातें कही।
10: ज्ञानु गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा जरूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं।
11: कैसे माफिया से कैसा लड़ना है और कैसा निपटना है हमको मालूम है। 10-12 साल तक मोदी और शाह ने ये देश को डरा कर धमका कर रखा था, अब डरने की बारी उनकी है।
12: इनका खिलाफ हमारा संघर्ष आगे जाता है और जो संघर्ष करने के लिए एक डेसिग्नेटेड जगह था जंतर मंतर, इनका चोरी भी करता है।
8: राहुल गांधी के घर हुई चाय पार्टी में आयशा की अध्यक्ष नेहा बोरा की मौजूदगी भी सुर्खियों में रही।
13: It has truly been revealed that the people who have actually committed treason against the people of this country is the BJP and the people who have facilitated this treason, the Election Commission of India and the CEC, Ganesh Kumar.
14: Rahul Gandhi ki high tea ka sandesh saaf tha. Ek maksad, ek virodh aur andolanon ko qayam rakhne ke liye ek jut manch ka gathan. Delhi se Mausmi Singh ke saath aaj tak bureau.
0: मौसमी सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ. मौसमी, देखिए विपक्ष भले ही एकजुट हो जाए लेकिन नैरेटिव अपने हिसाब से सेट नहीं हो सकता. पीयूष गोयल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ध्यान दें तो उनका यह कहना है कि जहां जहां कांग्रेस चुनाव जीती है वहां पर ठीक तरीके से चुनाव हुआ, वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन जहां पर वो हार गई, जहां पर बीजेपी जीत गई, वहां पर जो है गड़बड़ी हुई. और यहां तक कि विपक्षी दल की जो अन्य पार्टियां हैं वो भी तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी सीट्स जीती हैं जहां पर जिसका दबदबा रहा. अब ऐसे में आप अपनी मनमर्जी के हिसाब से नैरेटिव कम से कम मत सेट करिए.
15: देखिए नेहा, नैरेटिव किसका सेट होता है, हालांकि हर एक पार्टी अपनी दलील देती है, नैरेटिव किसका सेट होता है ये तो देश की जनता ही तय करेगी. और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कहीं ना कहीं इसकी अग्नि परीक्षा भी हो जाएगी कि जो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं वोट चोरी का, वो कितना संवेदनशील है और कितना जनता में घर करता है. तो दोनों तरफ के नेता अपनी दलील दे रहे हैं और जाहिर तौर पे बीजेपी भी जिस जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका बचाव करेगी ही. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटक दल आपस में लड़ रहे थे, चाहे वो टीएमसी कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट और कांग्रेस हो, या फिर अखिलेश यादव सपा और कांग्रेस हो, वो अगर एक साथ आ जाएं तो आपस में जो कम से कम विपक्ष है जो काफ़ी बटा हुआ नज़र आता था पिछले 4-5-8 साल में, और ख़ासतौर से 2024 के चुनाव के बाद हुआ था कि किसी और को कन्वीनर बनाना चाहिए, राहुल गांधी सही से नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, उसमें अब वो दलील अब रेस्ट खत्म हो गई है. कहीं ना कहीं राहुल गांधी एज अ टीम लीड उभरे हैं और ये सीजेपी की बैकिंग जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी की है 1 घंटे पहले, ये अपने आप में ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि सीजेपी को लेके बच रही थी कांग्रेस, अब सीजेपी की बैकिंग में उतर आए हैं राहुल गांधी.
1: जी मौसमी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के हल्ला बोल के बीच में कल मोदी सरकार के 2 दिग्गज मंत्री चुनाव आयोग के बचाव में सामने आए. एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल.
0: राहुल गांधी और विपक्ष निशान साधते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 2029 से फिर एनडीए की प्रचंड जीत होगी. अमित शाह ने क्या कुछ कहा है देखिए.
16: 2029 के आम चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है,
17: जिसके कारण कांग्रेस बार बार हार रही है. कई युवा साथी बैड ओमेन को कहते हैं बिगेस्ट रेड फ्लैग, और वो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए सबसे बड़े रेड फ्लैग है.
14: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार पर राहुल गांधी और विपक्ष के लगातार हमलों के बीच कल केंद्र सरकार के 2 दिग्गज मंत्री मैदान में उतर गए, गृह मंत्री अमित शाह और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल.
16: 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए, 2029 के आम चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार 4थी बार हार होने वाली है. इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, इस सत्य को आप झुठला नहीं सकते.
14: अमित शाह ने 2029 के लिए राहुल गांधी को ललकार लगाई, एसआईआर पर सवाल उठाने की मंशा पर ही सवाल उठाया.
16: राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी एसआईआर के बहाने घुसपैठिया बचाने का आपकी जो कार्य योजना है उसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है.
14: साथ में तंज भी कसा कि 1.5 किलोमीटर के दायरे में 14 पार्टियों के कैडर की भीड़ जुटाकर खुद को देश की आवाज समझने की भूल ना करें.
16: 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो. मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है।
14: शाह ने राहुल गांधी को आत्मचिंतन करने की नसीहत देते हुए याद दिलाया कि SIR तो 2024 के बाद आया, लेकिन कांग्रेस तो उससे पहले से ही लगातार हार रही है।
16: SIR तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते।
14: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी पर हमलों की बौछार की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भ्रम में ही समाधान नजर आ रहा है।
17: अगर ये सही माने में मानते हैं कि SIR रिग्ड है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जब वो जीत रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन का काम ठीक है, इलेक्शन आर परफेक्ट, और जब हार रहे हैं तो इलेक्शन आर रिग्ड। इसको आजकल एक लोग, युवा हमारे साथी बोलते हैं, डेलुलू इज द सोलुलू। ये माइंडसेट, ये जो मानसिकता इनकी, इसको डेल्यूजन में रहने के वाले जो लोग हैं उनको ये डेल्यूजन में ही सोल्यूशन दिखता है। डेलुलू इज द सोलुलू।
14: वार पलटवार तेज है, यकीनन बात यही रुकने वाली नहीं है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कांग्रेस ने सवाल किया कि 2029 में जीत का दावा आप किस आधार पर कर रहे हैं। अमित शाह,
18: भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आते आते बहुमत लाते लाते 50-60 साल लग गए, फिर क्या कहें हम। ये अजीब सी टिप्पणी है साहब कि कांग्रेस कई राज्यों में इतने सालों से, भाई आप तो देश में कितने सालों तक नहीं थे, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। फिर कहते हैं 29 भी हम जीतेंगे, क्यों इतना भरोसा है ज्ञानेश पर, और ज्ञानेश रहेगा 29 तक। ये चुनाव आयोग जिस तरह से चल रहा है, हम चलने देंगे 29 तक, कि इतना भरोसा, हमारी बात साबित करते हैं ये बात कहकर, तो वो कि 29 में भी हम जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हो साहब, सड़क पे तो निकल कर देखो, गुस्सा तो देखो लोगों का, आकर हटाओ पुलिस और आकर देखो गुस्सा।
19: देखिए गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं, मैं उसको ज्यादा नहीं, लेकिन हम लोग जो आपने पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया, चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक खिलौना बनकर रह गया, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है और हम लोग लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे और ये काम नहीं होने देंगे। और ये बार बार घुसपैठियों का नाम लेकर के गुमराह करने की कोशिश ना करें। 13 करोड़ लोगों के वोट काटे तो 13 करोड़ घुसपैठिए नहीं हैं। घुसपैठियों को कितनों को आपने चिन्हित करा और कितनों को डिपोर्ट करा, उसकी सूची देश को उपलब्ध कराई है।
0: बात से ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, टिकते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
21: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
22: सोच बदलो और बैंक भी।
23: अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में भारत रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का विश्वास देता है। इस साल अप्रैल जून क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है और यह ग्रोथ मजबूत नींव पर खड़ी है। 12-13 साल पहले भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट GDP के 4% से भी अधिक था। पिछले साल यह घटकर लगभग 0.5% यानी 0.61% रह गया है। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $700 बिलियन से अधिक हैं। हमारा बैंकिंग सिस्टम अनेक देशों में सबसे मजबूत स्थिति में है। साथियों, इसी मजबूती का परिणाम है कि भारत की सॉवरेन रेटिंग्स अपग्रेड की जा रही है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखिए।
1: कितना घटिया था यार।
2: लप लप लप।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: सो सॉरी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: जो प्रोग्राम्स इंडिया गठबंधन की ओर से चलाया गया, राहुल जी और दूसरे नेता भी इसको बहुत ही गंभीरता से लेके जनता के समस्याओं को सुलझाने के लिए वो काम किए और बहुत ही बढ़िया सक्सेस आपने देखा होगा। शायद ही इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं जुड़े दिल्ली में, ये पहली बार है जो खुद अपने आप को सारे नौजवान लोग साथियों सभी लोग मिलके आए। जो मोदी का प्लान है वोट चोरी का, उसको पूरा एक्सपोज करने के लिए सारे लोग तैयार हो गए।
2: इंडिया अलायंस की तरफ से हम पूरी ताकत से साथ है, और जो संविधान की हत्या हुई है और संविधान आज इस देश में खतरे में है, इसीलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम आंदोलन करते रहेंगे। और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान में हम सब भारतीयों को अधिकार दिया है, एक आदमी एक सरकार, उसे कुचलने की बहुत बड़ी भूल कर रही है, और इसके लिए इस खिलाफ, इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हम पूरी ताकत से साथ है और लड़ते रहेंगे, और आंदोलन जारी रहेगा दिल्ली में लेके गली तक।

0: जो प्रोग्राम्स इंडिया गठबंधन के ओर से चलाया गया, राहुल जी और दूसरे नेता भी इसको बहुत ही गंभीरता से लेके जनता के समस्याओं को सुलझाने के लिए वो काम किए और बहुत ही बढ़िया सक्सेस आपने देखा होगा। शायद ही इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं जुड़े दिल्ली में, ये पहली बार है जो खुद अपने आप को सारे नौजवान लोग साथियों सभी लोग मिलके आए। जो मोदी का प्लान है वोट चोरी का, उसको पूरा एक्सपोज करने के लिए सारे लोग तैयार हो गए।
1: इंडिया अलायंस की तरफ से हम पूरी ताकत से साथ है, और जो संविधान की हत्या हुई है और संविधान आज इस देश में खतरे में है, इसीलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम आंदोलन करते रहेंगे। और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान में हम सब भारतीयों को अधिकार दिया है, एक आदमी एक सरकार उसे कुचलने की बहुत बड़ी भूल कर रही है, और इसके लिए इस खिलाफ, इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हम पूरी ताकत से साथ हैं और लड़ते रहेंगे, और आंदोलन जारी रहेगा दिल्ली में लेके गली तक। NCP SP और शिवसेना और हम सारे इंडिया अलायंस पूरी ताकत से साथ में रहेंगे और हर भारतीय को उसका अधिकार दे के रहेंगे। धन्यवाद।
2: दिल्ली पुलिस तुम लट्ठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
3: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
4: डोंट ट्विस्ट।
2: क्या हुआ?
4: डोंट ट्विस्ट लप से।
2: हर आदमी में
4: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
3: कितना घटिया था यार तुम्हारे
4: लप लप लप।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन। डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
1: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार।
2: लप लप लप।

0: रोक और हिदायत के बावजूद जंतर मंतर पर जबरन घुसने के मामले में सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिनों की जेल। दिल्ली की कोर्ट ने भेजा तिहाड़, राहुल ने किया सीजेपी का समर्थन। बढ़ती जा रहे हैं आजम खान की मुसीबत। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ईडी ने दर्ज की नई एफआईआर, 416 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य का हिसाब न मिलने का आरोप। विपक्ष की चाय पार्टी में लोकतंत्र बचाने की कसम खाने वाले राहुल गांधी को अमित शाह ने दिया चैलेंज, कहा 2029 में भी करारी हार के लिए रहे तैयार, घुसपैठियों को बचा रहे हैं राहुल। खोखली नाव में समार होने से बिहार के हाजीपुर में गए 14 बच्चों की जान, आज तक की पड़ताल में खुलासा, सुराख वाले बोट के गंगा में डूबने से हुई मौत, सभी एक ही गांव के बच्चे थे। और प्रेमी साहिल की मदद से पति का मर्डर कर नीले ड्रम में शव के टुकड़े टुकड़े कर डालने वाली मुस्कान पर सजा, थोड़ी देर में आएगा फैसला।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। 12 बजे 12 रिपोर्टर आप देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। 27 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल बहुत तेज है। आज समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इनके नाम है गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज से सीट से विधायक अभय सिंह और जालौन जिले की कालपी सीट से विधायक विनोद चतुर्वेदी। अमेठी जिला मुख्यालय गौरीगंज में आज बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता कुमार अभिषेक।
2: समाजवादी पार्टी के वो बागी विधायक जो भाजपा के साथ हो चुके थे, आज वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और उनका बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। अमेठी का गौरीगंज, यहीं से विधायक है राकेश प्रताप सिंह। 3 बार 2012, 2017 और 2022 में लगातार विधायक रहे, अखिलेश यादव के कभी करीबी रहे, उनके यूथ ब्रिगेड का चेहरा रहे, लेकिन 2024 में राज्यसभा चुनाव के वक्त बगावत की उन्होंने, क्रॉस वोटिंग की और भाजपा छोड़ दी। बीजेपी सपा ने भी उन्हें पार्टी से निकाल दिया, लेकिन यह सियासी रूप से बेहद अहम है। अमेठी का वो क्षेत्र जहां पर स्मृति ईरानी भी चुनाव हार गई, लेकिन अमेठी का वो क्षेत्र कभी समाजवादी पार्टी नहीं हारी। आज वहां 3 विधायक जिन्होंने बगावत की, उनका शक्ति प्रदर्शन है उसी गौरीगंज में, जहां ये 3 विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखना है कि क्या बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलता है या नहीं। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर हो सकता है कि बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे पे दांव लगाए। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की एक अहम बैठक होने वाली है और बैठक में बीजेपी के संगठन सचिव बीएल संतोष, राज्य के प्रभारी विनोद तावड़े, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी, यूपी बीजेपी के संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह इस बैठक में शामिल रहेंगे।
3: उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अब लखनऊ यानी यूपी से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में एक अहम बैठक जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी तय होगी, किस तरीके से वो 2027 में चुनाव लड़ रही है, किस तरीके से वो अपने स्ट्रांग अपोजिशन समाजवादी पार्टी का मुकाबला करेगी और उन सीटों की अहम चर्चा भी की जाएगी जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यही नहीं, इसके अलावा उन सभी सीटों की बात की जाएगी जहां पर बीजेपी बैकफुट पर है, यानी कि टिकट की दावेदारी से लेकर अन्य सभी मसलों पर एक बड़ी बैठक है जिसमें कि सभी वरिष्ठ नेता साथ ही साथ उत्तर प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे। और ये बैठक दिल्ली की अहम इस वजह से भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 को चुनाव जीतने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में एक और बड़ी खबर, सीजेपी नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। दोनों पर जेल बॉन्ड के उल्लंघन का आरोप है और पूरी खबर बता रहे संवाददाता अरविंद ओझा।
4: कांग्रेस जनता पार्टी के 2 लीडर सौरभ दास और आशुतोष रंका दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। दरअसल आशुतोष रंका, सौरभ दास और उनके अन्य सहयोगी 13 अक्टूबर को गुपचुप तरीके से जंतर मंतर पहुंचे थे, वहां पर नारेबाजी की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सौरभ दास, आशुतोष रंका और उनके सहयोगियों को हिरासत में लिया था। कल देर रात दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन और संसद मार्ग में अलग अलग FIR दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये लोग लगातार शांति भंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी लोगों को उकसा रहे हैं, जिसके बाद इन सभी को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया। दिल्ली पुलिस ने सभी को SEM कोर्ट के सामने पेश किया, जिसमें से आशुतोष और सौरभ दास को अदालत ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि उसके एक अन्य सहयोगी अजिक्य को 5,000 के पीस बॉन्ड पर छोड़ा गया है और साथ ही साथ 6 महीने की वार्निंग भी दी गई है।
0: 12:12 रिपोर्टर में बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जारी विपक्ष के आंदोलन की। कल मोदी सरकार के 3 मंत्रियों ने राहुल गांधी पर हमला बोला। गृहमंत्री अमित शाह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। तो
5: पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष संसद से सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने विपक्ष और राहुल गांधी के खिलाफ कल मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, ललन सिंह ने राहुल गांधी और विपक्ष को ये नसीहत दी कि जब विपक्ष चुनाव जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है और जब विपक्ष चुनाव हार जाए तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना क्या सही है।
6: ऐसा ही तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर अब देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर। श्री राहुल जी और उनके साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए। 2029 के आम चुनाव में NDA प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार 4थी बार हार होने वाली है। इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, BJP के साथ है, NDA के साथ है, इस सत्य को आप झुठला नहीं सकते।
0: तो गृहमंत्री अमित शाह राहुल गांधी को आत्मचिंतन करने की नसीहत दे रहे हैं। 2029 में कांग्रेस की एक और प्रचंड हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि वो रुकने वाले नहीं। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन को इंडिया गठबंधन जो है एक रिजल्ट तक, एंड रिजल्ट तक पहुंचाएंगे।
7: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सड़कों पर उबाल है और तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि विपक्ष की अब अगली रणनीति क्या होगी। दरअसल राहुल गांधी ने कल अपने घर पर हाईटी पर तमाम विपक्षी नेताओं को बुलाया और उनका साफ तौर पर कहना था कि हम इस लड़ाई को अंजाम तक, मुकाम तक लेकर जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार और पुलिस के द्वारा जंतर मंतर को डी नोटिफाई करने के पीछे की जो मंशा है वो साफ तौर पर ये दिखाती है कि सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष जो है वो सड़कों पर आए या लोग अपनी मांगे लेकर सड़क पर उतरें। राहुल गांधी ने यह भी साफ किया कि जितने भी प्रदर्शन चल रहे हैं वो तमाम प्रदर्शन एक है और उनको अलग अलग कर नहीं देखना चाहिए। तो सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लेकर जाने की और बताया जा रहा है आने वाले दिनों के अंदर भी विपक्ष सड़कों पर रहेगा। 1 नवंबर को एक बड़ी रैली की जाएगी रामलीला मैदान के अंदर, जहां पर तमाम बड़े बड़े लोग जुटेंगे, भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को अलग अलग राज्यों से बुलाया जाएगा और सूत्रों के मुताबिक उसी रामलीला मैदान की रैली के अंदर ये कोशिश होगी बताने की कि देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है।
0: 12:12 रिपोर्टर में बात करेंगे केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के इस्तीफे की। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की आहट के बीच में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने इस्तीफे की पेशकश की है। अब मुरुगन ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि तमिलनाडु में काम करने का उन्हें मौका दिया जाए। मुरुगन ने अगले लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए अनुमति मांगी है, केंद्रीय मंत्री पद एवं राज्यसभा सदस्यता छोड़ने की पेशकश की है।
8: तमिलनाडु से आने वाले मोदी सरकार में मंत्री एल मुरुगन ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। न सिर्फ मंत्री पद से बल्कि राज्यसभा से भी इस्तीफा देने की बात एल मुरुगन ने अपने पत्र में कही है। आपको बता दें कि अपने द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया है कि प्रधानमंत्री ने उन पर भरोसा जताया, लेकिन एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि एल मुरुगन ने ये कहा है कि वो तमिलनाडु जाकर संगठन के लिए काम करना चाहते हैं, पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं और आगे आने वाले चुनाव से पहले पार्टी बेहतर स्थिति में हो, ये उनकी इच्छा है। अब एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं 8 मंत्री पद पर संशय शुरू हो गया है, जिसमें एल मुरुगन के बाद रवनीत सिंह बिट्टू, जॉर्ज कुरियन और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेताओं का, मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। इसी के साथ साथ हरदीप पुरी और बीएल वर्मा को टिकट नहीं मिला है। वहीं पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं और हर्ष मल्होत्रा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल कब होता है।
0: अगली रिपोर्ट पंजाब से, जहां पर एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अश्विनी कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अश्विनी कुमार को राजस्थान से सालासर से गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कल से मानसा में धरना प्रदर्शन चल रहा था। आरोपी की दुकान पर तोड़फोड़ तक कर दी गई थी। और हमारे संवाददाता कमलजीत संधू इस समय मानसा से उसी दुकान के बाहर से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ी है। क्या आक्रोश अब शांत हुआ क्योंकि मुख्य आरोपी पकड़ा गया और क्या खुलासा हुआ है, क्या बवाल, क्या विवाद हुआ था कि हत्या कर दी गई?
9: देखिए, दो बड़ी चीजें सामने आई हैं, एक तो कानून व्यवस्था और दूसरा कि किस तरह से खुलेआम ड्रग्स बिक रहे हैं। उसी बीच में आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर दिया गया है आरोपी को। ये देखिए, ये नंबर 3 लिखा है, इस पे अश्विनी लिखा है, यही वो दुकान है जहां पे गोली मारी गई थी परविंदर झोटा को। और आपको बता दें, उसके बाद अगर कैमरा पर्सन आपको 360 डिग्री व्यू दिखाए तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से रोष है, क्योंकि अब बात आ रही है कि क्या किया जा रहा है सरकार द्वारा और पहले क्यों नहीं किया गया। क्योंकि ऐसा जाता है कि अगर खुलेआम यहां पे ड्रग्स बिक रहे थे तो पहले ही कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और फेसबुक लाइव पे जिस तरह से खुलेआम गोली दागी गई, 3 गोलियां चलाई गई, और आपको बता गए कि परविंदर झोटा जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। उसी बीच में खुलेआम घूमता हुआ अश्विनी नजर आया, जिसके हाथों में पिस्तौल थी। वो पहले गाड़ी में बैठ के गया, उसके बाद वहां से वो ऑटो में बैठा और फिर बस से सलासर चला गया। और वहां पे थोड़ी दूर पे ही आश्रम पहुंचने से पहले उसने अपना वेपन फेंक दिया, फोन स्विच ऑफ कर लिया। उस बीच में उसने पंजाब पुलिस ने कई टीमें क्रैक की डाली और सीसीटीवी से पूरा मामला क्रैक किया गया है। लेकिन अगर आप देखें यहां पे रोष किस तरह से नजर आएगा, पुलिस इस वक्त खड़ी हुई है लगातार यहां पर। और देखिए, आसपास की जो दुकानें हैं, क्योंकि एक ये सूचना मिली है कि बुलडोजर किसी वक्त भी चल सकता है, तो ये अपनी दुकानें लगातार खाली कर रही है। पास की दुकानें हैं, आपको सूचना है क्या, क्या यहां पे बुलडोजर
10: चलेगा ही चलेगा?
0: ठीक है कमल जी, तो एक्शन की भी तैयारियां, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर करोड़पति कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड के पैसों के लेन देन में हत्याकांड का ये जो कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। इस हत्याकांड में और भी खुलासे हुए और पूरी खबर बताने संवाददाता संतोष शर्मा।
11: लखनऊ में व्यापारी शिवा शर्मा हत्याकांड में पुलिस को जिस 25,000 के इनामी श्रद्धा दुबे की तलाश है, उस श्रद्धा दुबे का 50,000 के इनामी ऋषभ राय से भी कनेक्शन था। श्रद्धा दुबे और गैंगस्टर ऋषभ राय के बीच में नजदीकी ताल्लुकात थे। रिश्ते ऐसे थे कि श्रद्धा दुबे कई बार शिवा शर्मा को ऋषभ राय के नाम पर धमकाती थी और रंगदारी वसूली के इस कारोबार में शिवा शर्मा, ऋषभ राय और श्रद्धा दुबे के बीच में पैसों का ऐसा लेन देन हुआ कि जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि शिवा शर्मा की लज्जान ले ली गई।
0: अब बिहार से आई बड़ी और दर्दनाक खबर आपको देते हैं। बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी में नाव पलटी, जिसमें 14 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। अब ये सभी बच्चे नाव से बगल वाले गांव में शाद का भोजन खाने के लिए गए थे और वापस लौट रहे थे। नाव पर 20 से 25 लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे, लेकिन उस नाव में सुराख था।
12: मैं जिस नाव पर इस वक्त हूँ मौजूद, ये दरअसल वही नाव है जो दुर्घटना ग्रस्त हुआ है कल रात में, और थोड़ी देर पहले इसको SDRF की टीम ने पानी से जो है वो निकाल भी लिया है। और आप इस नाव की स्थिति देखिए, नाव देखने से ही जर्जर स्थिति में नजर आ रहा है और स्थानीय लोगों का दावा है, स्थानीय नेताओं का दावा है, जो ये एक सरकारी नाव है और उसमें आप देखिए इसमें बैठने की ज्यादा जो है वो लोगों की जगह नहीं है, 8-10 लोग जो है वो मुश्किल से बैठ सकते हैं। ओवरलोडिंग का मामला बनता है कि किस तरीके से छोटे से नाव में जहां 8-10 लोग ही बैठ सकते हैं वहां बताया गया कि 20-25 लोग जो है सवार थे। अब दूसरी बात देखिए, ये नाव किस हालत में जर्जर है, ये आप देखिए इस नाव में इतना बड़ा छेद आप देखिए, आप ये देख सकते हैं नाव में इतना बड़ा जो है दरार आप नजर आ रहा है। और क्योंकि जब ओवरलोडिंग हुई होगी तो जाहिर सी बात है नाव का ये हिस्सा जो है जो टूटा हुआ है, जो इतना बड़ा छेद है, तो पानी इसके जरिए भी नाव के अंदर प्रवेश किया और उसके वजह से जो है अचानक स्थिति जो है वो काफी खराब हो गई। और जब नाव के अंदर पानी भरा होगा तो जाहिर सी बात है छोटे बच्चे थे 10-14 साल के, तो वहां पर एक तरीके से कहें तो हड़बड़ी की स्थिति हो गई होगी, इधर उधर बच्चे भागने लगे होंगे और उसी दौरान उस आपाधापी में ये नाव पलट।
0: खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मेरठ के, जहां ब्लू ड्रम मर्डर केस में आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज सजा का ऐलान होना है और किसी भी समय सजा का ऐलान हो सकता है। 30 सितंबर को मेरठ के जिला जज ने सौरभ राजपूत मर्डर केस में सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को दोषी ठहराया था।

0: मामले में मेरठ कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इस पूरे मामले में दो आरोपी हैं, मुस्कान और साहिल। इन दोनों को पुलिस ने 18 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 1000 पन्नों की चार्जशीट पुलिस ने दायर की थी। इन दोनों के खिलाफ हत्या, हत्या के बाद सबूत मिटाना और साजिश रचने की धाराओं के तहत केस दर्ज था। पुलिस का कहना था कि इस पूरे मामले में साइंटिफिक एविडेंस ने बेहद अहम रोल अदा किया, क्योंकि कत्ल के बाद इन दोनों ने बॉडी को नीले ड्रम के अंदर सीमेंट की मदद से पूरी तरीके से पैक कर दिया था और उसके बाद सौरभ राजपूत के फोन का इस्तेमाल मुस्कान पहाड़ों में जब वो घूम रही थी उस दौरान करती रही थी। कैमरामैन इमैनुअल जोश के साथ हिमांशु मिश्रा, मेरठ आज तक।
1: अब आज जम्मू कश्मीर के जहां पर खुतबों पर वक्फ बोर्ड के फैसले पर विवाद शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है कि जुमे की नमाज के दौरान दिए जाने वाले उपदेश के विषय सभी मस्जिदों में एक हो। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आपत्ति जताई है। इसे बीजेपी का एजेंडा जो है थोपने की कोशिश बताया गया है।
2: एक खुतबा कॉन्ट्रोवर्सी के चलते जम्मू कश्मीर का वक्फ बोर्ड फिर एक बार विवादों के घेरे में है। नया बवाल तब उठा जब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने एक मीटिंग ली और इस मीटिंग में सभी इमाम जो भी वक्फ द्वारा संचालित मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने हिस्सा लिया। उनको कहा गया कि आप अलग अलग मुद्दों पे बात अब नहीं करेंगे। जुम्मा नमाज से पहले जो खुतबा होता है वो किसी सोशल इवल पे होगा और सभी मौलवी मिलकर एक मुद्दा चुनेंगे और सभी जगह उसी पे बात होगी। जब ये जो है बात बाहर आई तो तुरंत इस पे बवाल बच गया। जम्मू कश्मीर की जो पार्टीज हैं, बड़ी बड़ी जो राजनीतिक दल हैं, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने वक्फ पे निशाना साधा और कहा कि वक्फ बोर्ड जो है साफ तौर पे बीजेपी का जो डिवाइसिव एजेंडा है वो जम्मू कश्मीर में नाफिज करना चाहता है। मामला पेचीदा हो गया, सेंसिटिव हो गया और उसके बाद वक्फ बोर्ड ने पूरे मामले को संभालने की कोशिश की, क्लैरिफिकेशन दी कि कभी भी उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाला है और बिना वजह जो यहां के राजनीतिक दल है राई का पहाड़ बना रहे हैं और इस मुद्दे को लेके पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: 12:12 रिपोर्टर में रुकने छोड़े से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो थमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?
7: How's the hostel? Settled?
8: Yes, Mark's really nice.
7: कोई आ रहा है क्या?
9: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
7: मयंक, for real?
9: One carat for my one true love. Natural diamond, real love, solitaires to reignite your new season of love.
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
15: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।
16: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
17: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
16: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
18: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
19: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
20: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
21: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
20: क्या?
21: इनकी राय।
22: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।

0: In association with Canara Bank, together we can.
1: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal anmol. Signature finest cardamom seeds.
2: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
3: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
3: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार।
2: लप लप लप।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन झुमका लगाने बस।
4: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
5: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: कौन सी बनानी है?
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
10: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
12: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
13: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
14: I love it. Absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
15: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
14: क्या?
15: इनकी राय।
16: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
17: दिल्ली की सियासत में ये दूसरा मोर्चा है। कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी की महिला मोर्चा ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कांग्रेस सांसद की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी रहे। इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम पर जेएनयू की 11 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अकोईजाम जेएनयू में प्रोफेसर थे। वहां की 11 छात्राओं ने उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर इल्जाम लगाए। तमाम आरोपों के बाद जेएनयू ने आंतरिक जांच बिठाई। इस जांच में अकोईजाम पर तमाम आरोप सही साबित पाए गए। उसी रिपोर्ट के आधार पर जेएनयू ने 9 अक्टूबर को प्रोफेसर पद से उन्हें हटा दिया। उसके दो दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR भी दर्ज करा दी। दिल्ली पुलिस का FIR दर्ज करते ही कांग्रेस सांसद के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस पर हमला बोला।
18: हमारे 9 अक्टूबर को 2026 को बिमल अकोईजाम जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनके खिलाफ बहुत संगीन सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों में तथ्य पाए गए और इसीलिए जेएनयू की इंटरनल कमिटी ने उनको तुरंत नौकरी से बर्खास्त करा। बहुत अजीब बात है कि इस पर चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी जी भी, माननीय प्रियंका गांधी जी भी, खड़गे जी भी और माननीय सोनिया गांधी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट नहीं करा। इसीलिए मैं आज पूछना चाहती हूँ उनसे, राहुल गांधी जी, क्या स्मैश द पेट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला है, केवल एक पॉलिटिकल रेटोरिक है?
17: बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं पर हमले के आरोप भी लगाए। जेएनयू के प्रोफेसर रहे कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम के खिलाफ सियासी संग्राम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी जगहों से गिरफ्तारी की मांग उठी है, लेकिन कांग्रेस अपने सांसद पर लगे गंभीर आरोप और दर्ज FIR को लेकर अब तक तमाम आरोपों को लेकर चुप है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी मामले में FIR, 416 करोड़ रुपए के निर्माण खर्च का हिसाब नहीं मिलने का आरोप। ईडी की ओर से भेजी गई जानकारी के आधार पर दर्ज हुए FIR, 24 किसानों की जमीन और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। यूपी में चुनावी टिकट की खरीद फरोख्त पर CBI जांच में सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिकाकर्ताओं को निर्वाचन आयोग का रुख करने की सलाह। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर जांच की मांग उचित नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इसी मामले में दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर चुका है। वैशाली नाव हादसे को लेकर मृतकों के परिवार वालों के प्रति मुख्यमंत्री योगी ने भी संवेदनाएं की व्यक्त, घायलों के स्वस्थ होने की जल्द कामना। कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड मामले में खुलासा, श्रद्धा दुबे की 50,000 की इनामी ऋषभ राय के साथ फोटो आई सामने। जेल में बंद रहते हुए ऋषभ राय ने रंगदारी वसूली के लिए कई बार शिवा शर्मा को धमकाया, ऋषभ राय जेल से देता था धमके, श्रद्धा रंगदारी वसूली करती थी। पुलिस ने श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि, आदिल पर 25,000 रुपए का इनाम किया घोषित, पुलिस की दो टीमें संभावित ठिकानों पर दे रही दबिश। मृतक शिवा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 10 गंभीर इंटरनल चोटें मिली। मौत का कारण शॉक और हेमरेज बताया गया है जो इन्हीं चोटों के कारण हुआ। शिवा शर्मा की मां ने भी FIR में हत्या की आशंका जताई थी। सीएम योगी आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे, संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं स्नातक महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी करेंगे बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन, कानून व्यवस्था और एयर शो की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक आज थामेंगे BJP का दामन, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने बीजेपी में शामिल होने से पहले गोसाईगंज विधानसभा सीट को लेकर अपनी स्थिति की स्पष्ट कहा कि पार्टी के फैसले का स्वागत करेंगे। कानपुर देहात में सांड के हमले से बुजुर्ग की मौत, CCTV में कैद हुई घटना।

0: यूपी की चुनावी खबरों में आज की बड़ी खबर आपको बताते हैं। चुनावों से पहले आजम खान के खिलाफ जौहर अली यूनिवर्सिटी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। हवाला रोकथाम कानून यानी कि पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत ईडी ने यह कार्रवाई की है। अब आजम खान पर हवाला का केस दर्ज होने का खतरा बढ़ गया है। ईडी की ओर से भेजे गए शिकायत पर रामपुर के अजीम नगर थाने में कल रात को ही मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में पूर्व मंत्री आजम खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, जौहर यूनिवर्सिटी और कुछ ठेकेदारों को आरोपी बनाया गया है। दरअसल रामपुर जिला जेल की बैरक में आजम खान से लगभग 8 घंटे तक की गई लंबी पूछताछ के बाद ये कार्रवाई सामने आई है। ये पूरा मामला 416 करोड़ रुपए के निर्माण खर्च का हिसाब नहीं मिलने को लेकर है, जिसमें 13 अक्टूबर 2026 को रात 10:05 पर एफआईआर नंबर 0224 दर्ज की गई। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 61, 316(5) और 318(4) के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(13)(1)(d) और 13(2) लगाए गए। अब ईडी के मुताबिक यूनिवर्सिटी परिसर की इमारतों के निर्माण की लागत लगभग 494 करोड़ और 46 लाख बताए गए। वहीं ट्रस्ट ने 2013-14 से 2024-25 के बीच में अपने आयकर रिटर्न में 78 करोड़ 32 लाख रुपए का कुल पूंजीगत खर्च दिखाया है। अब इस तरह करीब 416 करोड़ 14 लाख रुपए का निर्माण खर्च का हिसाब स्पष्ट नहीं होने का दावा किया गया। आरोप है कि सरकारी ठेकों से जुड़े हुए निर्माण का सामान यूनिवर्सिटी में लगाया गया और सरकारी पैसे से बनी इमारत का मालिकाना हक यूनिवर्सिटी को दे दिया गया, जिसमें 85 करोड़ 81 लाख रुपए सरकारी खजाने के खर्च हुए थे। और हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरविंद, आप ये क्या नया मामला है, क्या नई एफआईआर है या पुराने जांच में हुए खुलासों पर ही ये मुकदमा है?
1: देखिए, पहले ईडी ने एक केस दर्ज किया था, उसके बाद रेड हुई थी और आजम खान से जेल में पूछताछ भी हुई थी। उसके बाद जो नई चीजें निकली है उसके आधार पर जो ईडी है उसने यूपी के डीजीपी को एक लेटर लिखा था। उस लेटर के आधार पर 13 अक्टूबर को रामपुर के पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर ईडी की तरफ से दर्ज करवाई गई है, जिसमें ये खुलासा किया गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य में सरकारी ठेकों से जो धन कमाया गया उसका इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा जो अनियमितताएं हैं, धन पैसे लगाने की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उस पर यह शिकायत दी गई है, जिसके बाद रामपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। जो ईडी ने पहले से केस दर्ज किया है उसमें ये जो एफआईआर है उसको जोड़ा जाएगा और फिर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।
0: अरविंद, ये भी बताएं कि कल आजम खान से लगभग 8 घंटे तक पूछताछ हुई है, तो क्या इस एफआईआर का उससे भी कोई कनेक्शन है, क्या उसमें कुछ खुलासे हुए हैं?
1: बिल्कुल उससे कनेक्शन है। देखिए, जैसा मैंने बताया, पहले ईसीआईआर दर्ज की थी ईडी ने, उसके बाद कई जगहों पर आजम खान के और जो उनके ट्रस्ट है उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर। उसके बाद आजम खान से पूछताछ हुई जिसमें नए खुलासे हुए, जिसके बाद ईडी ने लेटर लिखा और उसके बाद रामपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। अब इस एफआईआर को भी अपने जांच का हिस्सा बनाएगी ईडी, जिसमें 416 करोड़ का जो खर्च है उसका उसकी जानकारी ही नहीं है। तो ये तमाम जो शिकायतें हैं वो ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को दी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है।
0: बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति के बाद जहां आज राहुल गांधी परिवार के गढ़ में बहुत ज्यादा हलचल है। दरअसल अमेठी, जालौन और अयोध्या जिले में एक एक समाजवादी पार्टी के विधायकों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। अमेठी जिले में गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, अयोध्या में गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह और जालौन जिले के कालपी सीट से विधायक विनोद चतुर्वेदी ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है।
2: कहा तो रायबरेली से रथ यात्रा की शुरुआत करके अखिलेश यादव ने कांग्रेस के गढ़ में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के दावे किए थे और महीने भर के अंदर फुर्सतगंज चौराहा पार करके सियासत पड़ोस के अमेठी जिले में पहुंच गई और वहां इंडिया गठबंधन को कुछ ऐसा झटका लगा कि समाजवादी पार्टी के 3 विधायक बीजेपी की ओर खिसक लिए। विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह बीजेपी में चले गए। इसके लिए अमेठी के गौरीगंज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और बीजेपी महामंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में तीनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम यूपी को तरक्की की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का दावा किया।
3: मैं बहुत बधाई देता हूं अपने क्षेत्रवासियों का जिन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया भारतीय जनता पार्टी को रास्ता लीजिए और उन लोगों ने कहा कि मैं आपके साथ हूं। सारे लोग आज यहां आपको नजर आएंगे और 98% लोग जो अपना बूथ जिताते हराते थे वो सभी लोग आज समाजवादी पार्टी का प्रत्याग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे।
4: पहली बार समाजवादी पार्टी से आप ही यहाँ विधायक निर्वाचित हुए थे, उसके पहले कोई सपा का यहाँ कैंडिडेट निर्वाचित नहीं हुआ था, तो अब उसका क्या असर पड़ेगा?
3: आगे भी अब नहीं होगा।
4: अभी कौन कौन लोग शामिल होने जा रहे हैं, किसकी मौजूदगी रहेगी?
3: श्री विनोद चतुर्वेदी जी मेरे विधायक, श्री अभय सिंह जी विधायक, मैं स्वयं और उसके साथ लगभग 1000 लोग जो जनप्रतिनिधि है और पूर्व जनप्रतिनिधि है। मंच
2: गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने पार्टी छोड़ने की जो वजह बताई है, दरअसल उसका कनेक्शन धर्म और आस्था से जुड़ा है। राकेश कहते हैं कि सनातन की रक्षा, आस्था और संस्कार के कारण नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में सनातन ग्रंथों को लेकर बयान आए। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी ने विधायकों को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन तक नहीं करने दिए। दरअसल समाजवादी पार्टी से ताजा बगावत सिर्फ अमेठी जिले तक सीमित नहीं है, इसमें जालौन, अमेठी और अयोध्या तीनों जिलों के 3 SP विधायक बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में अगर सिर्फ रायबरेली अमेठी के शक्ति संतुलन की बात की जाए तो दोनों जिले मिलाकर कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। दल बदल से पहले यहाँ समाजवादी पार्टी के 6 और बीजेपी के 4 विधायक थे। इसमें ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे तो मंत्री बन चुके हैं। अब गौरीगंज के राकेश सिंह के आने के बाद 10 में से 6 सीटों पर बीजेपी हो जाएगी, 4 सीट पर समाजवादी पार्टी बचेगी, जिसमें अमेठी में 1 और रायबरेली में 3 विधायक बचेंगे। यानी 2022 से 2027 के बीच अमेठी और रायबरेली दोनों जिलों से 1-1 समाजवादी भाजपाई बन गए हैं।
5: ये भारतीय जनता पार्टी हमको कहां लड़ाती, क्या करती है, ये उस पर डिपेंड होगा। हमारी ऐसी कोई दबाव या कोई हमारा इसको डिमांड नहीं है।
6: अगर खब्बू तिवारी को टिकट मिलता है, क्या आप उनका समर्थन साथ देंगे?
5: भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी सिंबल देगी उसके साथ हम हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
6: मतलब भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे 2027?
5: बिल्कुल, 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी के हाथों को मजबूत करेंगे, आदरणीय योगी जी मजबूत होंगे।
2: यूपी के चुनावी समर से पहले ये दल बदल असरकारी माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश इसी संख्या के आधार पर कांग्रेस के ऊपर भी अमेठी रायबरेली का दबाव बना रहे थे। वैसे अखिलेश लगातार बीजेपी में अंदर खाने नाराजगी का दावा करते रहे हैं, चाहे वो कौशल किशोर के बेटे और यूपी प्रदेश बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष विकास किशोर की नाराजगी की बात हो या आंवला के पूर्व बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बात। अखिलेश दावा करते आ रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक और नेता उनके संपर्क में हैं। शबर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: यूं तो चुनावों के सीजन में नेताओं का दल बदल हर बार होता है, ज्यादातर नेता अपना टिकट कटता देख सुरक्षित मौके की तलाश में दल बदलते हैं, लेकिन दल बदल की दूसरी दिक्कत पार्टी के ओल्ड गार्ड्स को लेकर होती है। गौरीगंज में भी यही हो रहा है। 2007 में गौरीगंज से विधायक रहे चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी कहते हैं कि पार्टी में लोग आते जाते रहते हैं, वो तो पुराने हैं।
7: टिकट पार्टी नेतृत्व निर्णय करती है, टिकट का निर्णय पार्टी नेतृत्व का निर्णय करना है। वहा जाए हैं हम तो चुनाव 2022 का संघर्ष किए हैं, लड़े हैं, 5 साल इसी गौरीगंज को समर्पित करने का काम किया। चुनाव शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद लेकर के मैं चुनाव को लड़ूंगा और एक कमल का फूल लखनऊ की पंचायत में भेजने का संकल्प यह मटियार मिट्टी में पैदा मटियारी का बेटा लेता है।
0: वैसे चंद्र प्रकाश मटियारी जिस राकेश सिंह को बीजेपी में नया बता रहे हैं, दरअसल वो 22 साल मायावती के पार्टी में रहने के बाद 2019 में ही बीजेपी में आए हैं और 2022 में गौरीगंज से चुनाव वो हारे हैं। आगे बढ़ते हैं, चुनावी महत्वाकांक्षाओं में पार्टी छोड़ने की खबरें बीजेपी से भी आई हैं, जहां पर बरेली की आंवला सीट से सांसद रह चुके धर्मेंद्र कश्यप ने राज्यसभा टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी। उधर यूपी में कांग्रेस को अयोध्या से एक और झटका लगा है।
8: प्रदेश में दरवाजे पर चुनाव है, उससे पहले कांग्रेस ने पुराना गार्ड क्या बदला? लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में झूठ मपैजार हो गए। सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की सियासी फजीहत करने के बाद नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने पार्टी को एकजुट रखकर आगे बढ़ाने का दावा तो किया है, लेकिन कुर्सी संभालते ही पार्टी कैडर की जैसी गुटबाजी सामने आई। उसे लेकर पार्टी को 5 सदस्यों की जांच कमेटी को 18 अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी। उधर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन की जुगत में जुटे ओवैसी निराश होकर कांग्रेस की कलह पर कुछ बोलना तक नहीं चाहते।
9: कांग्रेस में कल तमाम वीडियोस आए,
10: वो तो सब मंजर आम पे आ चुका है, अब हम उस पर क्या बोलेंगे? आप खुद चला रहे हैं अपने टीवी चैनल पर, अब हम क्या बोलेंगे उस बारे
8: में? कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान का असर तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन इन हलचलों का असर यूपी के 2 तीर्थों तक नजर आ रहा है, जहां एक तरफ अजय राय के प्रभाव क्षेत्र काशी में कांग्रेस को नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है, वहां अयोध्या के क्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ ओवैसी का ही सहारा बच गया है। 2 दिन पहले ही अयोध्या में कांग्रेस के पुराने नेता करण त्रिपाठी ने ओवैसी को गदा थमाते हुए गले में पतंग वाली माला डाल ली। अयोध्या के पूर्व सांसद निर्मल खत्री के करीबी और फैजाबाद इलाके में प्रभाव रखने वाले करण त्रिपाठी की कांग्रेस से रुखसती नुकसान के तौर पर ही देखा जा रहा है। यूपी के चुनिंदा इलाकों में रैलियों कार्यक्रमों को लेकर ओवैसी कहते हैं कि अहम जगहों पर सियासी गतिविधियों के बड़े सियासी संकेत होते हैं।
10: ये तमाम मुखामात जो हैं, इसकी एक पॉलिटिकल बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, और हम अपने अध्यक्ष के साथ, अपने पार्टी के जो जोनल इंचार्ज हैं, पार्टी के मेंबर्स हैं, उनके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, और जाहिर है आने वाले विधानसभा के लिए हमारी कोशिश यही है कि, और हमको यकीन है कि पहले से ज्यादा हमको जनता भरोसा कर रही है, उनकी मोहब्बत मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है।
8: वैसे अयोध्या में कांग्रेस नेता के हाथों गदा थाम चुके ओवैसी कांग्रेस का कितना नुकसान कर पाते हैं ये चुनाव में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि अयोध्या जैसे इलाके तक भी ओवैसी इस बार हौसले के साथ कदम रख रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और एक और अहम खबर आपको बताते हैं, एसआईआर पर चल रहे देशव्यापी आंदोलन में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी नए सिरे से एंट्री मार ली है। ओवैसी की पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर में अपनाए जा रहे तौर तरीकों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ओवैसी के वकील निजाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली इस बेंच के सामने रिट याचिका दाखिल की है, उसका जिक्र किया है, और ये मांग की है कि इसे कल ही सुनवाई के लिए तय हुए इसी तरह के मामलों के साथ लिस्ट कर दिया जाए। हमारी संवाददाता अनिशा माथुर भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई। अनिशा, ओवैसी की अर्जी में एसआईआर की किस प्रक्रिया को चुनौती दी गई और कल एसआईआर को लेकर किस तरह के मामले कोर्ट में है जिन पर सुनवाई होनी है?
11: देखिए, एसआईआर को लेकर जिन मामलों पर सुनवाई होनी है वो वैसे तो 27 तारीख के लिए लंबित हैं। याद रखिएगा, जो इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट आकर याचिका दाखिल की है अभी परसों ही, उसमें भी यही मुद्दे उठाए गए हैं कि एसआईआर में जो चेंजेस किए गए, फॉर्म 6 में जो चेंज किया गया, एसआईआर की प्रक्रिया पर जो डिसीजन मेकिंग हुई इलेक्शन कमीशन के अंदर वो सब सही तरीके से नहीं हुई। वो याचिका ब्लॉक के लीडर्स ने भी डाली है, उसके पहले भी 5 अक्टूबर को इस मुद्दे पर एक याचिका पर नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग चुकी है, जिसकी सुनवाई 27 के लिए लंबित है।
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिशा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, एक तरफ एसआईआर को लेकर गलत बताकर इसे विपक्ष पूरे देश में आंदोलन छेड़ रहा है और लगातार आंदोलन कर भी रहा है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी एसआईआर के खिलाफ फैलाए जा रहे सियासी भ्रम और अफवाहों से अब लड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। यूपी में अब चुनाव आयोग छूट गए वोटर्स के लिए व्यापक मतदाता पंजीकरण अभियान शुरू कर रहा है, जिसमें पूरे यूपी में 1,77,000 मतदाता केंद्रों पर 17 और 24 अक्टूबर को विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसमें बीएलओ उन वोटर्स को फॉर्म 6 देंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। पंजीकरण के इच्छुक वोटर्स अपना पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म प्रमाण पत्र और पते का वैध दस्तावेज देकर नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। इस अभियान में डीएम, एडीएम, ईआरओ, एईआरओ भी बूथों का दौरा करेंगे।
12: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे हुए पात्र नागरिकों और युवा मतदाताओं का नाम शामिल करने के लिए प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 17 अक्टूबर शनिवार को और 24 अक्टूबर शनिवार को प्रत्येक बूथ में एक विशेष कैंप का आयोजन होगा। इन दिनों में बूथ लेवल अधिकारी अपने अपने बूथों पर प्रातःकाल 10 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक वहां नवीनतम मतदाता सूची के साथ उपस्थित रहेंगे और अपने साथ वे पर्याप्त संख्या में खाली फॉर्म 6 भी रखेंगे। जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल हैं वो तो जांच करने के बाद उनको कुछ नहीं करना, लेकिन जिनका नाम शामिल नहीं है उनको फॉर्म 6 भरना है। फॉर्म 6 भरने के लिए आपको नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और अपनी जन्मतिथि और अपने पते को दर्शाने वाले दस्तावेजों की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देनी होती है।
0: अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एंड गोल तक जाएगी। कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आपको सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइज रहे।
1: सबके मन में जो सवाल थे राहुल गांधी ने उसका जवाब दे दिया। आकाशवाणी भवन पर 6 अक्टूबर के धरने से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो चाय पर चर्चा से थमने वाला नहीं है, अभी और भी सरप्राइज बाकी हैं।
0: मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
1: यानी विपक्ष का यह आंदोलन अभी थमने वाला नहीं है। चाय पार्टी में आए विपक्ष के तमाम नेताओं ने एक एक कर अलग अलग तरीके से यही बातें कही। कुल मिलाकर राहुल गांधी की हाई टी का संदेश साफ था, एक मकसद, एक विरोध और आंदोलन को कायम रखने के लिए एक जुट मंच। माना जा रहा है कि ये जुटान विपक्षी दलों के बीच जहां आपसी समन्वय को आगे बढ़ाएगा, वहीं सिविल सोसाइटी और छात्र संगठनों की मौजूदगी एक व्यापक गठबंधन बनाने के प्रयास का भी संकेत दे रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: द वन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज जंतर मंतर, एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट जंतर मंतर कैन नो लॉन्गर बी यूज टू एक्सप्रेस डेमोक्रेटिक फीलिंग्स। वेल, वी आर गोइंग टू चैलेंज दैट आइडिया। It is not going to be so simple for the government to decide that the Indian people will not fight for their voice.
2: जिस प्रकार से ज्ञानेश गुप्ता जी ने, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी, अमित शाह और मोदी जी के इशारे पे। हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आते आते बहुमत लाते लाते 50-60 साल लग गए, फिर क्या कहें हम? ये अजीब सी टिप्पणी है साहब कि कांग्रेस कई राज्यों में इतने सालों से, भाई आप तो देश में कितने सालों तक नहीं थे, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? फिर कहते हैं 29 भी हम जीतेंगे, क्यों इतना भरोसा है ज्ञानेश पर? और ज्ञानेश रहेगा 29 तक? ये चुनाव आयोग जिस तरह से चल रहा है, हम चलने देंगे 29 तक? कि इतना भरोसा हमारी बात साबित करते हैं ये बात कहकर, तो वो कि 29 में भी हम जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हो साहब? सड़क पे तो निकल कर देखो, गुस्सा तो देखो लोगों का, आकर हटाओ पुलिस और आकर देखो गुस्सा।
2: देखिए गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं है उसको ज्यादा नहीं, लेकिन हम लोग जो आपने पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया, चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक खिलौना बनकर रह गया, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है और हम लोग लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे और ये काम नहीं होने देंगे। और ये बार बार घुसपैठियों का नाम लेकर के गुमराह करने की कोशिश ना करें। 13 करोड़ लोगों के वोट काटे तो 13 करोड़ घुसपैठिए नहीं हैं। घुसपैठियों को कितनों को आपने चिन्हित करा और कितनों को डिपोर्ट करा उसकी सूची देश को उपलब्ध कराई है।
3: साथियों आप सभी जानते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं, करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, और इतना ही नहीं सोशल मीडिया के इस दौर में भारत में 500 मिलियन से अधिक यूट्यूब यूजर्स हैं, 500 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। हमारे यहां अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।

0: जिस वक्त सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के हिंगोली में अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल थे, उस वक्त सीजेपी के बाकी के नेता दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में धरने की परमिशन मांगने पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस को अपनी चिट्ठी सौंप दी, लेकिन चिट्ठी सौंपने के बाद जब वो बाहर आए तो प्रशासन को सीधे सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया।
1: 24 घंटा टाइम ले लीजिए, लेकिन बॉल इज इन योर कोर्ट। आप बताइए किस दिन लोग डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर आ सकते हैं। फुल कोऑपरेशन के साथ पीसफुल तरीके से लोग गैदर होंगे एंड प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट तो जरूर होगा।
0: लेकिन अब मसला बदल गया है। सीजेपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन जंतर मंतर को डिनोटिफाई कर दिया गया, मतलब अब जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल नहीं रहा, मतलब सीजेपी वाले जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए 3 जगह निर्धारित कर दी हैं। ये जगह हैं रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड और बुराड़ी मैदान। अब मसला ये है कि इन तीनों ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल तो बना दिया गया, मगर 2 मैदानों में कार्यक्रम चल रहा है। रामलीला मैदान में रामलीला की तैयारी चल रही है, सीबीडी ग्राउंड में रामलीला की तैयारी हो रही है। बचा बुराड़ी का मैदान, जहां बारिश के बाद फिलहाल कहीं कहीं पानी भरा हुआ है। अब सवाल ये है कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कहां करेंगे। आज तक ब्यूरो।

0: दिल्ली के जंतर मंतर पर अब धरना नहीं, रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन मुश्किल। अगले ढाई महीने तक बुकिंग फुल और फीस भी लाखों पार। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर अब इतिहास बन गया है, क्योंकि जंतर मंतर को डी नोटिफाई कर दिया गया है। मतलब अब जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल नहीं रहा। सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए तीन जगह निर्धारित कर दी हैं। ये जगह हैं रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड, पुरानी मैदान। अब मसला यह है कि इन तीनों ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल तो बना दिया गया, मगर दो मैदानों में कार्यक्रम चल रहा है। रामलीला मैदान और सीबीडी ग्राउंड में भी रामलीला की तैयारी हो रही है। बचा भुराड़ी का मैदान, वहाँ बारिश के बाद फिलहाल कहीं कहीं पानी भरा हुआ है।
1: हम जिस रामलीला मैदान पर हैं, इस समय नवरात्रि के चलते आप देखेंगे कि यहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है। इस तरफ स्टेज लगा हुआ है और ठीक इसके पीछे यहाँ पर देखिए सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही मेला लगा हुआ है। कारोबार मेले का और लोगों के बचपन की यादें ताजा हो जाती है। इस रामलीला मैदान का अपना बहुत इतिहास रहा है। इस रामलीला मैदान ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, लेकिन अब इसे एक आंदोलन धरना प्रदर्शन स्थल घोषित किए जाने को लेकर के व्यापारी चिंता जता रहे हैं, स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है और ऊपर से जंतर मंतर को जिसकी एक अपनी पहचान रही है कि वहां पर धरने प्रदर्शन होते थे जिसकी वजह से सरकार सत्ता तक आवाज पहुंचती थी, उसको लेकर के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते आवाज उठाते हैं, वो भी नाराज है।

श्रांका को 5 दिन की जेल, दिल्ली की कोर्ट ने भेजा तिहाड़, राहुल ने किया सीजेपी का समर्थन। बढ़ती जा रही है आजम खान की मुसीबत, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ईडी ने दर्ज की नई एफआईआर, 416 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य का हिसाब ना मिलने का आरोप। राहुल पर अमित शाह के बयान से उठा राजनीतिक बवंडर, खड़गे का पोस्ट, एसआईआर के बाहर 13 करोड़ लोगों को घुसपैठिया बोला भारतीयता का अपमान, शाह ने कहा था घुसपैठियों को बचा रहे राहुल। नाव में सवार होने से बिहार के हाजीपुर की 14 बच्चों की गई जान, आज तक की पड़ताल में खुलासा, सुराख वाली बोट के गंगा में डूबने से हुई मौत, सभी एक ही गांव के बच्चे। पंजाब के मनसा में एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट मर्डर केस में मुख्य आरोपी पर ताबड़तोड़ एक्शन, गिरफ्तारी के बाद घर पर चला बुलडोजर।

जंतर मंतर पर जबरन घुसने पर एक्शन, सीजेपी नेता आशुतोष राका और सौरभ दास को कोर्ट ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा। बेल बॉन्ड तोड़ने के जुर्म में कोर्ट ने दोनों को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा। मंगलवार सुबह जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पकड़ा था। तीनों को जंतर मंतर में बिना अनुमति प्रवेश करने के आरोप में हिरासत लिया गया। वहां बैरिकेडिंग और सभी गेट बंद होने के बावजूद गेट के ऊपर चढ़कर पहुंचे थे। अजन के शिंदे से बॉन्ड भरवा रही है पुलिस, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा सरकार की तानाशाही हावी है। अजय के शिंदे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा जनता अब डरने वाली नहीं है, तिरंगा लहराना जुर्म नहीं है। आजम खान और जॉर्ज यूनिवर्सिटी मामले में एफआईआर, 416 करोड़ रुपए के निर्माण खर्च का हिसाब नहीं मिलने का आरोप। ईडी की ओर से भेजी गई जानकारी के आधार पर दर्ज हुई एफआईआर, 26 किसानों की जमीन और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। यूपी में चुनावी टिकट की खरीद फरोख पर सीबीआई जांच से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग का रुख करने की सलाह। कोर्ट ने कहा सोशल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जांच की मांग उचित नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इसी मामले में दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर चुका है। वैशाली नाव हादसे को लेकर मृतकों के परिजनों के प्रति सीएम योगी ने व्यक्त की संवेदना, घायलों के स्वस्थ होने की कामना। बिहार के वैशाली में गंगा में पलटी नाव, हादसे में 14 लोगों की मौत और 6 की हालत गंभीर। नाव हादसे मरने वालों में सबसे अधिक बच्चे, पुलिस के मुताबिक सभी श्राद्ध का भोज करके लौट रहे थे। हादसे के बाद ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, प्रशासन खिलाफ नारेबाजी कर डीएम का किया घेराव। नाव हादसे मरने वालों बच्चों की उम्र 6 से 15 साल के बीच, परिवार और पूरे गांव में पसरा माथम। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि का ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना। वैशाली नाव हादसे पर सीएम सम्राट ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। राघवपुर नाव हादसे पर तेजस्वी यादव ने जताया दुख, बोले मेरे विधानसभा क्षेत्र में बेहद दुखद घटना हुई है, मैं अभी दिल्ली में हूं, आज लौटूंगा पटना। हादसे पर चिराग पासवान ने जताया खेद, बोले मासूम बच्चों की मौत की खबर हृदय विदारक। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से हड़कंप, लोगों ने जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल की खिड़की से छलांग लगाई। समय रहते आग पर पाया गया काबू, चला बड़ा हादसा, लोगों को जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर कूदना पड़ा। फिलहाल आग लगने के कारणों की इस पर जानकारी सामने नहीं आई, मामले में संबंधित विभागों की जांच और आधिकारिक जानकारी का इंतजार। स्थानीय लोगों ने लोगों की जान बचाने में मदद की, हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। हादसे के बाद फिर बिना फायर एनओसी चल रहे रेस्टोरेंट पर सवाल, उधम फिश पॉइंट के पास फायर एनओसी था या नहीं इसकी पुष्टि नहीं है। महाराष्ट्र के नालासोपारा में हाई राइज बिल्डिंग में भीषण आग, हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 6 लोग अस्पताल में भर्ती। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार धुएं के कारण दम घुटने से दोनों महिलाओं की मौत होने की आशंका। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, बड़ी क्रेन की मदद से 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गोपालगंज में गैस सिलेंडर में लगी आग, 17 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर, गोरखपुर हुए रेफर। गुवाहाटी से बैग स्नैचर का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला, बदमाश ने महिला को 100 मीटर तक घसीटा। कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में नया खुलासा, श्रद्धा दुबे का 50,000 के नामी ऋषभ राय के साथ था कनेक्शन। जेल में बंद रहते ऋषभ राय ने रंगदारी वसूली के लिए कई बार शिवा शर्मा को धमकाया, ऋषभ राय जेल से देता था धमकी। पुलिस ने श्रद्धा की बहन रश्मि आदू पर 25,000 रुपए इनाम की घोषणा की। मृतक शिवा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के शरीर पर 10 गंभीर इंटरनल चोटें, मौत का कारण शॉक और हैमरेज बताया जा रहा है जो इन्हीं चोटों के कारण हुआ। शिवा शर्मा की मां ने एफआईआर में हत्या की जताई आशंका। उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग में वर्ष 2014 के भर्ती घोटाले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी, तत्कालीन प्रमुख सचिव योगेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा विजय गाथा का विमोचन, लखनऊ में लॉन्चिंग इवेंट में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम योगी ने सभा को किया संबोधित, बोले विलक्षण योग ही लोग ही अयोध्या का महत्व समझते हैं। श्री राम ने कहा कि मेरे लिए अयोध्या ही सब कुछ है। योगी ने शारदीय नवरात्र चतुर्थी पर लोगों को दी शुभकामनाएं, लिखा जब तक गांव की नारी समृद्ध होगी तभी उत्तर प्रदेश सही मायने में समृद्ध और सशक्त बनेगा। प्रयागराज में तीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर 602 फ्लैट बनाए जाएंगे। सीएम योगी आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं स्नातक महासम्मेलन में करेंगे शिरकत। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी करेंगे बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन, कानून व्यवस्था और एयर शो की तैयारियों का लेंगे जायजा।
यूपी में समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक आज थामेंगे बीजेपी का दामन। राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने बीजेपी में शामिल होने से पहले गुसाईगंज विधानसभा सीट को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। एसआर को लेकर सांसद ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। चुनाव आयोग की एसआर प्रक्रिया के तरीके को दी चुनौती। परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड मुख्य आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के सालासर से मुख्य शूटर को किया गया गिरफ्तार। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने परविंदर सिंह के परिवार से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। परविंदर सिंह हत्या मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है क्योंकि परिवार ने अपनी कुछ मांगे रखी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मुखर्जी नगर में औचक निरीक्षण। विद्यार्थियों के बीच बैठकर सुनी समस्याएं। छात्रों ने निःशुल्क लाइब्रेरी, पीजी के किराए, महिला सुरक्षा और क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रखे। कानपुर देहात में सांड के हमले से बुजुर्ग की मौत, इसी में कैद हुई घटना। गुजरात के पंचमहल में तेंदुए का आतंक, घर के बाहर बंधे पशु का किया शिकार। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हैरान करने वाला मामला, विशालकाय अजगर ने नील गाय के बच्चे को निगला। कोची में ट्रस्ट की नर्सरी के पास आग लगने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। पेट्रोल कैन से आग लगाने की कोशिश की गई। पुलिस को इसमें आतंकी साजिश का शक है। पुलिस को शक है आरोपी किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा हो सकता है। देहरादून के विकास नगर में बिकाबू ट्रक साइबर कैफे में घुसा, भागकर लोगों ने बचाई जान, टला एक बड़ा हादसा। इंदौर कैफे में बाहर दो पक्षों में मारपीट, सड़क पर चले लात घूसों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चोरी के टेम्पो ट्रैवलर का इंदौर में आतंक, कई वाहनों की मारी टक्कर, ऑटो चालक और आरोपी घायल। गुरुग्राम के फरुखनगर में बस की टक्कर से ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हुए, ड्राइवर घायल। घटना के वक्त बस में 35 से 40 लोग सवार थे। नवादा में बाइक सवार ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, स्टंट और रील के चक्कर में कई लोगों की जान को खतरे में डाला। मोगा के स्कूल में छात्र विवाद ने पकड़ा तूल, 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट, प्रिंसिपल को भागकर बचानी पड़ी जान। पटना में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूटपाट, हथियार की नोक पर वारदात को दिया अंजाम। मेरठ में अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाया लाश में लापरवाही का आरोप। राजस्थान में दीपावली से पहले बड़ी साजिश नाकाम, गंगानगर बॉर्डर पर ड्रोन से गिराया गया हथियार और विस्फोटक बरामद, 2 गिरफ्तार। नोएडा की पोस्ट सोसाइटी में 1.5 करोड़ की चोरी, 2 फ्लैश के लॉक काटकर सोना, 2 किलो चांदी और कैश लेकर उड़े चोर। अलवर में एटीएम लूट की वारदात, रस्सी से बांधकर उखाड़ने की कोशिश नाकाम, बदमाशों ने कैमरे पर लगाया काला स्प्रे। जयपुर में वेद ब्लास्टिंग के दौरान बड़ा हादसा, महेशवास पहाड़ी ढही, 2 मजदूर दबे, रेस्क्यू जारी। मेरठ में नीला ड्रम कांड में आज होगा सजा का ऐलान, बेटी से मिलने को बेचैन है मुस्कान। झांसी में कार की टक्कर के बाद सड़क पर बरसी बेल्ट, कई लोगों ने युवक को घेर कर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। बेगूसराय में महिला डॉक्टर पर एसिड अटैक, पड़ोसी दुकानदार गिरफ्तार, महिला सुरक्षा पर उठे सवाल। लुधियाना में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार का कहर, कार और मोटरसाइकिल की टक्कर, 1 नौजवान की मौत। थाने के दीवा में भीषण आग, ऑटो रिक्शा समेत 22 दोपहिया वाहन जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा के जहांगीरपुर में दिनदहाड़े युवक की हत्या का सीसीटीवी आया सामने, दौड़ा दौड़ा कर मारी थी 6 गोलियां।

0: और अब बात पंजाब के मानसा की करेंगे, जहां पर एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा मर्डर मामले में अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। मुख्य आरोपी अश्विनी के घर पर यह बुलडोजर चलाया जा रहा है। अश्विनी की आज सालासर बालाजी से गिरफ्तारी हुई। परविंदर सिंह झोटा नशे के खिलाफ अभियान चला रहे थे। अश्विनी की मानसा में केमिस्ट शॉप है और आरोप है कि उसकी दुकान से ड्रग्स बिकता था। 3 साल पहले परविंदर ने जूते की माला पहनाकर उसे पुलिस के हवाले किया था। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, अभी भी हंगामा हो रहा है या स्थिति सामान्य है?
1: देखिए, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, बुलडोजर एक्शन हुआ है। हम बात कर रहे हैं उसके घर पे और दुकान पे, लेकिन आपको ये धुआं नजर आता हुआ है क्योंकि यहाँ पे रोष है, निहंग आ गए हैं, यहाँ के नौजवान हैं। आप देखिए, हजारों की तादाद में ये भीड़ है, ये अब अपना गुस्सा दिखा रही है। और हमने देखा कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, चाहे पथराव से हो, चाहे यहाँ पे तोड़फोड़ की हो। आप ये देखिए, लगातार पत्थर फेंके जा रहे हैं। और अगर हम बात करें, आपको लगातार हम ये दिखा रहे हैं किस तरह से लोग हैं, ये देखिए अंदर से तोड़फोड़ की जा रही है। तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, खास तौर पे जिस तरह खुलेआम दिन दिहाड़े कत्ल होता है परविंदर झोटा का। अब ये देखिए कि लगातार यहाँ पे वो गोलियां कथित तौर पे जो ड्रग्स है उसे बेचे जा रहे थे, और वहीं पर कार्रवाई खास तौर पे कानून की तरफ से की गई है। लेकिन अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आप ये देखिए, ये सारे गुस्से में है, रोष में है, और पुलिस एक मूकदर्शक है। और यहाँ पर अगर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे अब अंदर से निकाला हुआ सामान है, उसमें आग जली की जा रही है। ये आप देखिएगा, अंदर भी आग लगी हुई है। ये आपको यहाँ पे तोड़फोड़ के निशान, दिवाइयों के निशान नजर आएंगे, क्योंकि बुलडोजर एक्शन के बाद आ रही है। अब ये आप देखिए, पूरी दुकान तहस नहस हो चुकी है। आपको लाइव एक्शन हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंदर भी कई लोग गए हुए थे, पर उम्मीद कर रहे हैं कि अंदर से कोई फंसा नहीं होगा। लेकिन लोगों का गुस्सा, लोगों का रोष, और ये पूरा मामला आता है कानून व्यवस्था और ड्रग्स को लेकर कि किस तरह से यहाँ पर खुलेआम ड्रग्स बिक रहा था और परविंदर झोटा ने जिस तरह से उठाया। अब आप ये देखिए कि युवक है, पुलिस है, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए, पूरा ध्वस्त कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। और अभी पुलिस कार्रवाई करने की कोशिश, क्योंकि कई लोग अंदर भी गए थे, आप बोलो कोई अंदर था, तो यहाँ पे पुलिस रोकने की कोशिश पर यहाँ पे आप देख सकते हैं अफड़ा तफड़ी का माहौल है। और अपने आप में एक बड़ा संकेत है आम आदमी पार्टी सरकार के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जा अंदर कोई था तो नहीं।
2: अंदर कोई नहीं है गई, अंदर आप देख लिया, आ देख लो, आज भी यदि दुकान चल पे हूं भी एक डब्बा पूरा डब्बा निकला इना करके
1: लगातार दिखा रहे हैं। गुस्सा है, और देखिएगा कि बुलडोजर के बाद ये बिल्डिंग पूरी तरह से लोगों ने ही नीचे ले आए हैं। और अपने आप में बात आ गई है कि इतना गुस्सा है, इतना लोगों में गुस्सा भरा हुआ है, और ये एक बड़ा संकेत है। विपक्षी पार्टी भी लगातार कानून व्यवस्था और ड्रग्स का मुद्दा उठा रही है। और ये देखिए, उसी वक्त आपको लगातार हम दिखा दें यहाँ पर, ये देखिए हजारों की भीड़ आपको यहाँ पे नजर आएगी, हर जगह कैमरा नजर आएगा। और इसी बीच में यहाँ पे पथराव के बाद जिस तरह से आग जलने की कोशिश, ये लोगों का गुस्सा है कि ड्रग पेडलर्स पे है, जो ड्रग का धंधा चला रहे हैं उन पर है। और अपने आप में एक बड़ा संकेत, ये देखिए आपको पीछे तक भी जहाँ तक भीड़ नजर आएगी वहां पर आपको युवक की आवाज सुनाई देगी कि वो ड्रग्स के खिलाफ है। और अपने आप में ये एक बड़ा संकेत है कि कानून पे इतना भरोसा नहीं रहा है, लोग अपनी तरफ से ही एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और आप देखें, निहंग है, चाहे हम युवक की बात करें वो है, और ये आग की जो लगते हैं और आसपास की जो एरिया है वो भी आप ये देखिए, धुआं किस तरह से ऊपर उठता हुआ, और यही धुआं है, यही आग है जो कि कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में भी नजर आएगा। यहाँ पे बात आ रही है, क्या इंसाफ मिल पाएगा परविंदर झोटा को, जिन्होंने ये पूरा मुद्दा पिछले 3 सालों से उठाया था। वहां पे हम लगातार बता रहे हैं किस तरह से कानून व्यवस्था को बनाने की कोशिश पंजाब पुलिस की तरफ से, लेकिन यहाँ पे लोगों का रोष, लोगों का गुस्सा वो सड़कों पे फूटा है। एक जगह विरोध प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी ओर इस तरह से की गई बुलडोजर एक्शन के बाद और आगजनी भी की गई, तो यहाँ पे लोगों ने संकेत दे दिया है कि कोई गलत काम जरूर हुआ है और खासतौर पे वो आदमी जिसने मुद्दा उठाया उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब वहीं पे बात आ रही है कि किस तरह से वो चाह रहे हैं कि जो सीबीआई प्रोब की जाए या फिर कोई बड़ा पुलिस एक्शन किया जाए। अब ये देखिए, अब अतिरिक्त पुलिस आती हुई और उस बीच में बड़ा एक्शन। ये देखिए, दुकान के अंदर भी आपको आग नजर आएगी। यहाँ पे आस पड़ोस के दुकान वाले हैं, उन्होंने भी माना है कि एक्शन सही हो रहा है, अगर किसी ने गलत किया है तो ध्वस्त किया जाना चाहिए। लेकिन यहीं पे एक बड़ा संकेत है कि ड्रग्स किस तरह से खुले हम दिखे। आप लोग कहाँ से आए?
3: हम आए हैं गोंडवाल साहब से। जेड़ा भी नशा बेचूगा इदा करूगा यही हाल होगा, यही हसर होगा।
1: जो नशा बेचेगा उन्होंने कहा कि यही हाल होगा। और लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से रोष है, गुस्सा है, वो फूट पड़ा है। आपको आज तक लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पे जिस तरह से अब कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है सिचुएशन को, वहां पे एक बड़ी चीज है कि अश्विनी को तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जो ड्रग्स का व्यापार है जिस तरह से खुलेआम चल रहा है वहां पे इस तरह का एक्शन अपने आप में, आप देखिए जहां आप नजर फैलाएंगे वहां पे आपको भीड़ नजर आएगी। और यही एक बड़ी बात सामने नजर आ रही है कि किस तरह का लोगों का गुस्सा है वो सड़कों पे फूटा और वो अब चाह रहे हैं कि एक बड़ा एक्शन किया जाए। अपने आप में अगर हम बात करें, भगवंत मान सरकार नशे विरुद्ध एक्शन किया जा रहा है, वॉर अगेंस्ट ड्रग्स किया जा रहा है, वहीं विपक्ष भी वही कहती है कि वो इस पूरे मामले को उजागर कर रहे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन अपने आप में क्या है, आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं कि किस तरह से एक एंटी ड्रग कैंपेन चलाने वाले की मौत के बाद इस तरह से गुस्सा फूट पड़ा है। परविंदर झोटा को न्याय मिले, यही चीज वो लोग बार बार कह रहे हैं और ये आपको नजर आएगा कि किस तरह से लोग अब यहाँ पे दर्शक बन के देख रहे हैं। पर इससे पहले हमें देखा कि किस तरह से लगातार पथराव हुआ, लगातार एक्शन हुआ।
0: ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मानसा पंजाब की हैं, जहां पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन चल रहा है उस केमिस्ट की दुकान पर जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में। और इस बीच आपको लिए चलते हैं एनएसयूआई छात्रों के साथ, इस वक्त राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
4: आप शुरू करो, थोड़ा नाम, अपना नाम।
5: तो मेरा नाम समर्थ है।
4: समर्थ थोड़ा पास आ जाओ।
5: तो मेरा नाम समर्थ है, हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। 4 तारीख से मैं प्रोटेस्ट में ज्वाइन था और 5 तारीख को सुबह हम लोगों को डिटेन करा, जिसमें मैं और धर्मेंद्र हम लोगों को पुश करके ये पार्लियामेंट स्ट्रीट के स्टेशन में ले जाके हम लोगों को 15 से 20 पुलिस वालों ने मारा है, जिसमें से एक दो सिविल ड्रेस में भी थे। एक का नाम बहाब सिंह तोमर था, उन लोगों ने हमें बहुत बुरी तरीके से मारा था। फिर पीछे के गेट से हमें ले जाके पूरे रास्ते, अंकित कसाना एक ऑफिसर है कॉन्स्टेबल, पूरे रास्ते पार्लियामेंट स्ट्रीट से लेकर दिल्ली के एंड तक हम दोनों को मारते हुए ले गया है। इवन इसको ये बोल रहा था इसको वॉमिटिंग आ रही है, तो ही सेड कि नहीं तू बैग अपना ओपन कर और बैग में वॉमिटिंग कर। और
4: अच्छा भाई एक बात बताना, पुलिस वालों ने आपको क्या बोला ये भी बता दो ना लोगों को।
6: पुलिस वाले बोल रहे थे कि आपकी वजह से हम सो नहीं पा रहे हैं। तुम बोलते हो दिल्ली पुलिस, बोलो दिल्ली पुलिस तुम्हारी पापा है, दिल्ली पुलिस को बोलो दिल्ली पुलिस तुम्हारा पापा है, तुम लोग अपने घर क्यों नहीं रहते हो, तुम्हारी वजह से हम ना सो पा रहे हैं ना खा पा रहे हैं, हमारी ड्यूटी डबल हो गई है। मतलब उन्होंने ये सारी चीजें बोली और हमें हिटिंग भी किया, बहुत ज्यादा मारा भी। और एक अंकित कसाना नाम का पुलिस ऑफिसर था, वो बोल रहा था कि राहुल गांधी जी हो या तुम्हारे, मैं तो जी लगा रहा हूँ सर साथ में है, नेहा बोरा हो, गाड़ी में बुला ले अब लीडर, कितने लीडर आएंगे तेरे साथ, गाड़ी में अब कोई आ रहा है तुझे बचाने के लिए आ रहा है, तुम दल्ले हो, तुम 500 रुपए पे आए हो, तुम पैसे पे आते हो, तुमने हमारी नींद हराम कर दी, हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे। मैंने कहा सर मैं अपने मन में सोच रहा था अगर गवर्नमेंट ये काम तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी 8-8 घंटे की लगा दे, वो हम पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे, लात घूंसे थप्पड़ उनसे जो मर्जी हुआ, ये मेरे निशान है जो।
4: अच्छा, आपको डर लगा?
6: मेरे को पहले बहुत डर लगा, अब तो मुझे लग रहा है गोली चल रही हो सामने तो मैं गोली भी खा लूंगा। अगर अभी AK-47 मेरे सामने हो, मैं 6 दिन से मास्क में चल रहा हूँ क्योंकि तिहाड़ जेल से बेल पे बाहर हूँ मैं, तो मैं मास्क लगा के चल रहा हूँ, क्यों बेल बोल दिया कि अगर प्रोटेस्ट में जाओगे तो आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी।
4: प्रोटेस्ट में जाओगे फिर से?
6: बिल्कुल जाऊंगा, अभी जाऊंगा, जहाँ जाना होगा वहाँ जाऊंगा।
4: गायब हो गया?
6: बिल्कुल हो गया सर।
4: अरे आप बोलो।
7: हाय, मेरा नाम रमित है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। और उस दिन मेरे को भी ब्रूटली 11 अक्टूबर को डिटेन किया गया। और वो सबसे फनी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको इलीगली डिटेन नहीं करना है प्रोटेस्टर्स को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, पर मेरे को बजरंग दल और आरएसएस के गुंडों के बोलने पे डिटेन किया गया। और वो गुंडे वो थे जिनके पास मेरे पास उनका वीडियो है, सॉरी मेरे पास उनका वीडियो है जहाँ पर वो तो थ्रेटन कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स को। उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में पत्थर है, और वो सब होने के बावजूद वही सेम गुंडे जाके पुलिस को बोलते हैं, और पुलिस सुप्रीम कोर्ट की ना सुनने के बजाय उन गुंडों की सुन के उन्होंने मेरे को ब्रूटली डिटेन किया। और डिटेंशन बस में मैंने देखा कि वो कैसे लोगों को मार मार के अंदर घुसा रहे थे, और काफ़ी लोग थे जिनका उन्होंने फ़ोन भी छीना पुलिस ने, और फ़ोन फॉर्मेट करके वापस दे दिया, और बहुत लोगों के फ़ोन छीन लिए और कभी वापस दिए भी नहीं। प्लस मेरी डिटेंशन बस में कम से कम 15 फीमेल्स थी और एक भी फीमेल ऑफिसर नहीं थी।
4: अच्छा एक बात बताओ, ये हाथ में क्या पकड़े?
7: ये बेसिकली 20 जुलाई को भी मेरे सर पे डंडा मारा था एक आरएफ वाले सर ने।
4: तो आपका रिस्पांस क्या है, डंडे का रिस्पांस तो कैसा मेरा, गया?
7: डंडे का रिस्पांस डंडा ही है मेरा, पर ये थोड़ा प्यार वाला डंडा है, उनका थोड़ा नफरत वाला डंडा।
4: कैसे होता है?

0: यू. नफरत का जवाब प्यार से ही दिया जाएगा बेसिकली. थैंक यू. अच्छा ये मैं स्पेशल इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ. ये शेरनी है, ये शेरनी है, जान रहे हो उसको? ये शेरनी है, इसको मारा, कोई डर नहीं लगा? डर लगा?
1: नहीं लगा सर. नहीं लगा, नहीं लगा.
0: नफरत थी दिल में?
1: नफरत नहीं थी, प्रेम था. जितना मारा हमने ये बोला खुला, आज मन जितना है उतना भर के मारो.
0: तो थोड़ा बताओ.
1: कल हम लोग सीपी में एनएसटीआई के तमाम कार्यकर्ता पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमारे को डिटेन किया गया 3 बसों में. हमारे तमाम साथी थे तमाम बसों में, 30-30, 40-40 सब बसों में हम लोग, हमारे को पुलिस ने डिटेन किया था. तो हमारी जो बस में हम लोग 2 लड़कियां थी और 20-30 हमारे और भी एनएसटीआई के साथी थे. ऐसा होता है कि उसमें महिला कांस्टेबल भी होती है जिसका नाम चंचल यादव होता है, और वो महिला कांस्टेबल, हम डिटेन होने के बाद हम कोशिश कर रहे थे कि हम गेट से फिर से नीचे उतरकर फिर से हम लोग प्रोटेस्ट में आगे लीड करते हैं, बस को रोकने का प्रयास करते हैं कि हम लोग बस से उतर के कैसे तैसे बस के नीचे बैठ जाते हैं कि कैसे भी हमारा प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रन करता रहे. लेकिन चंचल यादव जी ऐसा करती है कि वो मेरे गले को जोर से दबा के मुझे पुश कर देती है ताकि मैं पीछे जाके सीट पे पीछे गिर जाती हूँ, और फिर मुझे मेरे मुंह पे ऐसे मतलब स्क्रैच, मतलब पूरे नाखूनों से पूरा स्क्रैच करके, मेरे यहाँ पे स्क्रैच भी आया, इधर कान पे भी मतलब पूरा लगा है. और स्क्रैच करने के बाद वो मुझे, मैं उनके झड़प देती हूँ तो वो मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारती है कि लो तुम्हारे मुंह पे एक और तमाचा. और उसके बाद वो फिर मेरे, मतलब मैं उठने की कोशिश करती हूँ तो वो उनमें इतनी ताकत होती है कि मेरे से उठा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं अपने एफर्ट्स लगा के पूरा उठती हूँ. तो वो मेरे जोर से बाल पकड़ लेती है, और बाल पकड़ने के बाद वो कंटिन्यू मुझे मतलब बस में आगे पीछे करके हम लोग, मतलब मैं मेरा एफर्ट कर बचाने का एफर्ट करती हूँ, वो अपनी ओर से अपनी ताकत लगाती है. उसके बाद ऐसा होता है कि मैं नीचे गिर जाती हूँ और वो मेरे ऊपर आ जाती है. उसके बाद उन्होंने मेरा और जोर से गला दबा के, यहाँ मेरे कान के ऊपर, मतलब मैंने इयररिंग डाला हुआ था, और पूरा जूते से रब करके, गले से रब करके, मतलब पूरा कान का रंग चेंज हो गया है, मतलब ब्लू कलर का कान हो गया है, और उसमें इयररिंग अंदर चला गया. शाम को मतलब हॉस्पिटल हम लोग गए तो डॉक्टर ने इयररिंग निकाला, और ऐसे हालात थे. चंचल यादव बोलती है कि तुम लोगों को तो ज्यादा नेती है ना, हम लोग बनाते हैं, तुम देखो अभी नेती तुम्हारी नेतागिरी पूरी झाड़ते हैं हम लोग. उसके बाद चंचल यादव जी हमारे को वहां से पीसफुली तरीके से, मतलब वहां लात गुस्से मार के वो निकल जाती हैं, और हम लोग जो थे वहां पे मेल फोर्सेज जितनी भी होती है हमारी बस में वो चुपचाप निकल जाती है, और आगे मेल फोर्सेज हमारे साथ बस में डिटेन करके रहती है हमारे साथ में. उसके बाद हम लोग जैसे कैनोट प्लेस पुलिस थाने के पास से हम लोग निकलते हैं तो चंचल यादव जी वहां पे बस को रोकती है, और मेरे साथ मैं और एक केरला की साथी होती है तीरा जो मुझे प्रोटेक्ट करती है, इन दोनों को पर्सनली मुझे टारगेट करने के चक्कर में इसको भी, मतलब इतना फर्स्ट टाइम इसको इतना जोर से घिसटा गया रोड पे, और इसके कीक मारी गई, प्राइवेट पार्ट्स पर मारी गई, मेरे भी इंटरली बैक की, मतलब लेफ्ट की मारा, मतलब पूरा पुश किया गया पेट को. उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू लड़ते लड़ते वहां तक हम लोगों को, मतलब बस से खींचा गया और थाने में ले जाया गया, इसको नीचे बेसमेंट में ले जाया गया, मुझे रूम नंबर 107 में ले जाया गया. उसके बाद वहां पे रूम में वो आती है 5-7 लेडी जो सिविल ड्रेस में होती है, और चंचल यादव भी होती है, कि बोलती है अब तेरा नेता कहाँ गया, तेरी नेतागिरी मैं निकालती हूँ. तो उसके बाद चंचल यादव मुझे रूम में बंद करके और मुझे इतना जोर से पीटती है कि पीछे 7-8 डंडे मुके पंच जितना उनके एफर्ट हो सकते थे मुझे 7-8 लोगों ने दम के पीटा. उसके बाद मुझे सीटियों से घिसीट के नीचे लाया गया, और फिर मुझे बोलती है कि सीटियों पे नहीं नीचे फर्श पे बैठो तुम, फिर बोली पैर सीधे करो. फिर हमने पैर सीधे किए तो मेरे पैरों पे नीचे ब्लू हो गए हैं, पैरों पे डंडे मार मार के, मतलब 10 इस लेफ्ट पे मारे 10 राइट पे मारे. उसके बाद चंचल यादव बोलती है और बोल बनाऊं तेरे को नेता, तो मतलब ठीक है मैम कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं प्रोटेस्ट में. उसके बाद भी मैंने बोला आप जितना मारना उतना मार लीजिए, क्योंकि हम लोग हौसला नहीं हारने वाले, हम लोग इस लड़ाई में 10 साल कंटिन्यू दे चुके हैं, हमारा तो पूरा बनवास इधर ही जाएगा, और ये कुरुक्षेत्र का युद्ध है, ये हमें जीतना ही होगा. तो मैंने बोला मैम अगर आप, हम लोग योग्य हैं तो देखते हैं आने वाले टाइम में आप कहाँ होती हैं हम कहाँ होते हैं. और अतीरा ने भी बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी और इसने मुझे ताकत दी, और ये छोटी बहन है ये आपको दो शब्द और कहेंगी.
0: यू कैन स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी, व्हाटएवर यू.
2: आई एम आदिरा फ्रॉम केरला स्टडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी. यस्टरडे
0: शी हैज लॉस्ट हर हियरिंग इन 1 ईयर. ओके शी इज डेफ इन 1 ईयर because she's been beaten in that year, she cannot hear anymore. Last time I showed you a boy who's blinded in one eye, now she's deaf in 1 ear. Just so that you know.
2: when they detain us, there is no police officers in the bus. So I just asked, where is lady constable? If they want to detain us, there is mandatory at least a lady constable. Then the bus moved and stopped Cannot Place, front of Cannot Place police station. Udhar, there is Chanchal. Chanchal Yadav and other teen or child police officers went in the bus and dragged me in the road. And also there is a SHO in Cannot Place police station. He told me, the lady police officer, taken away to basement. There is no CCTV, you can do anything. So they punch me here. Mera, leave. And continuously beaten my pura cheek. There is my eye also have some problem, and ear had some problem. Then I
0: you also in your private part?
2: Yeah. Then I back just chop. Then they started to kick my private part and also underbelly and back belly also. They didn't consider me as a human. They didn't consider a woman. They just consider me as a human.
3: Hi, I'm Arjun. I'm from Kerala. I live in Delhi since the last 3 years. I was at CP. I was taken from CP and I was a protester. Along with me, there were protesters, there were non-protesters, there were journalists, there were lawyers, there were minors. We were taken to a spot near LIC, Raji Chowk Mehi. So there is a makeshift detention area that Delhi police has created there. It is heavily barricaded, it is heavily staffed, there is no entry for media, there is no entry for civilians, nobody knows what happens inside that area. The bus took us there and we were made to sit in rows, 4 to 5 rows, 8 to 10 people each in the rows. Our phones were snatched away. There was a friend of mine, his phone was snatched away, the police abused him. They asked for the password, they searched his gallery, they went to the recent deleted part, they went to the hidden folders, completely arbitrary use of force. Around 10 to 15 detainees lost their phones, they still haven't gotten their phones back. After this, additional DCP Ashok Bishnoi, he was in charge of this detention area. He played a good cop, bad cop play production in front of us. So he acted as a good cop and he was like, please cooperate with us, we'll do nothing, we'll safely drop you home. He gave us reassurances. After that, the bad cops would enter and they'll be like, no sir, don't say that, we want to beat them up. And then the good cop will say, no, I have just given them the reassurance, so I can't back off from that. The next moment, we were called to a jail van, which had 4 to 5 compartments. Each compartment can accommodate 10 people each. So it can easily accommodate 50 plus people. There were police, there were Delhi police commandos, 3 to 4 people standing in queue to beat us up. I was called third or fourth. I entered the jail van and I was punched on my face and I'm on the floor. They kicked me on my chest, on my back, on my private parts. They strangled me. The first constable passed me to the second. The second passed me to the third. The third passed me to the fourth. And the fourth put me behind the cell inside. After me, there were 4 minors who went through the same ordeal. 16 and 17 year old non-protesters went through the same ordeal. They were pleading, they were begging the police officers to leave them. They were not even there to protest. They just happened to be at CP at that point of time. They were Muslims. After that, an injured person, he was already injured. His hand was already fractured. He was also beaten up the same way. He was also in my compartment. Our phones were snatched away. The minors had no phone with them to inform their parents that they've been detained. The bus left at around 5:30. The bus took us to Panduwala Khurd, which is 35 to 40 kilometers away from the city. The bus reached there at around 7:30 p.m. Some of us had our phones with us. We explored all possible means to inform our friends and whoever is in Delhi, the network in Delhi. They reached the detention center within an hour. However, the people at the detention center in Pandwala Khurd, they too took the details from the minors, 16 and 17 years old. They had the names of the minors, they had the age of the minors, they had all the details of the minors. Even they didn't bother to provide any provision, any care, any attention to these minors. And an hour later, some of my friends came, some of the lawyers came. They demanded that the details of the minors be given to them. Had there been no minors in our van, we wouldn't have been released within 3 hours of being detained. They had all the arrangements made inside the detention center to keep us there the whole night. The minors, even while leaving the detention centers, they didn't have mobile phones with them. They didn't have money to go back home. The police didn't make any arrangements to drop them back home. There was an officer, a senior officer, who came after 2 hours. It is only after the officer came, the police took some interest in giving first aid to the injured detainees. My request is, please expose this makeshift detention center near LIC. This is completely illegal, where people are being sorted. It reminded me of the Nazi time. And I also demand to Rahulji and also the opposition, please take the fight ahead, and there should be a Nuremberg trials in India. Thank you.
4: हमारे खिलाफ FIR की गई है, जिसमें हम 18-19 साल के बच्चे हैं. पार्लियामेंट थाने के बाहर से जब डिटेन किया जा रहा था, पुलिस ने अब क्या किया है कि कुछ बच्चों को बस में डाल लेते हैं, और जो थोड़ा बहुत पुश करते हैं अपने बहन भाइयों को बाहर निकालने के लिए, तो उनको बोलते हैं तुम्हें नेता बनाएंगे, जिसमें कि मैं और समर्थ हम दोनों को पार्लियामेंट थाने में अंदर ले जाया गया, मारा पीटा गया, गाड़ी में ले जाते हुए पार्लियामेंट थाने से दिल्ली कैंट तक गाड़ी में भी मारा गया. ये बोला गया नेताओं को बुलाओ, सारी चीजें उन्होंने जितनी गंदी गालियां हो सकती थी वो सारी चीजें की, मारने पीटने की अंकित कसाना ने हमें धमकी दी, सारी चीजें की. और सबसे बड़ी चीज, यहाँ से जाने के बाद जब हम जेल जाते हैं, तिहाड़ जेल में हमें भेजा गया, मेरे को इतनी चोट थी, मैं बेहोश था, व्हील चेयर पे चल रहा था. कोर्ट में पेश किया गया, जज ने भी आंखें उठा के ऐसे नहीं देखी, पुलिस वाले ने बोला जज ने बोला धर्मेन, तो पुलिस वाले ने हाथ मेरा ऐसे करके ऊपर उठा दिया. तो सब लोग ये इनलीगली कर रहे हैं, तो मैं आप सभी से, सर से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका जो पर्दे के पीछे जो ये काम कर रहे हैं, इस सब को एक्सपोज किया जाए. हम जैसे बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, डिटेंशन में कभी कोई मारा पीटा नहीं जाता, मारा पीटा जा रहा है, माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं, लड़कों को गंदा बोला जा रहा है. FIR क्या किया इन्होंने, जिस गाड़ी में था नहीं उस गाड़ी के मैंने शीशे तोड़े हैं, महिला पुलिसकर्मियों को मैंने अटैक किया है, और 50 लोग मैंने इकट्ठे किए हैं, वो सारी धाराएं हम 17-18 बच्चों पर पेश कर दी. तो ये हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं आज आया था तो मैं रोने लगा सर को देख के, मैं अब रो नहीं रहा. मैं कई दिन से छिपा हुआ था मास्क लगा के, पर मुझे आज सुबह से हंसी आ रही है. मैं हंस रहा हूँ, खुश हूँ, क्योंकि सर ने बोला कि हम साथ हैं, आप डरो नहीं, आप हमारे शेर हो. तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम सब बच्चों की बिना बात की जो FIR है ये वापिस हो. हमको जितना डर, ये बोलते हैं कि तुम प्रोटेस्ट करना भूल जाओगे, तुम 500 रुपए पे आए हो, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू मुसलमान है, तो क्या देश में हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते. मैंने बोला हाँ मैं मुसलमान हूँ, मार लो, देशद्रोही का केस लगा दो, जेल में डाल दो, जो मर्जी करना है कर दो. आज के बाद ना मैं घर में रहूंगा, जहाँ प्रोटेस्ट होगा मैं वहां जाऊंगा, आप पे गोली मारी जाए गोली मारो, जो मर्जी करना है वो कर लो. हम डरने वाले नहीं है, मोहब्बत वाले नेता के यहाँ आ गए, अब हम पीछे नहीं हटेंगे.
0: क्या बात
1: साथियों, जिस प्रकार से कल पुलिस थाने में पुलिस का जो व्यवहार था वो बहुत ही अमानवीय व्यवहार था, और हम ये कहना चाहते हैं कि जो सुखविंदर सिंह मलिक जो वहाँ के SHO हैं, उनके सामने हमें पीटा गया था. पहले वो बोलते हैं कि आप लोगों को पीटा गया, लेकिन जब हम लोग ज्यादा लोगों की संख्या हो जाती है तो वो बोलते हैं नहीं नहीं बेटा, आपको तो पीटा ही नहीं गया, मैंने तो चाय की पूछी, पानी की पूछी, आप लोगों की आपकी सारी व्यवस्था कर रहा हूँ, बेटा आपको तो कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे आप अच्छे बच्चे हो. मतलब वो हमें कैसे कैसे मतलब मिसगाइड करने को लगे हुए थे. लेकिन हम कहना चाहते हैं कि पुलिस जिस प्रकार से आजाद भारत में अंग्रेजों ने इस देश में शोषण किया था गरीबों और मजदूरों का, उसी तरीके से आज हमारे देश की पुलिस है, उसकी प्राथमिकता है कि पब्लिक की सुरक्षा करनी चाहिए. लेकिन आज वही पुलिस हम लोगों को अपराधी और गुंडों की तरह हमारा शोषण करती है, हमारी आवाज दबाने का और दमन करने का काम करती है. उसी पुलिस को हम कहना चाहते हैं, उन्होंने हमें यह भी कहा था तुम तो FIR तक करके दिखा देना. आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे बड़े भाई के जैसे हमारे को बोल रहे तुम हमारी शेरनिया हो, तो हमें गर्व है कि हम लोग FIR तो क्या हम हर लड़ाई लड़के दिखाएंगे, इसी भारत में आजाद भारत को आजाद करके दिखाएंगे। जय हिंद जय भारत।
0: तो जैसे मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये इधर आ जाओ, लगाओ पर, ये हिंदुस्तान है। अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए, यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है। और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत। कोई डर रहा है?
4: नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
0: खुश हो?
1: यस सर।
0: शाबाश, लव यू, थैंक यू। नहीं नहीं, देखिए देखिए, वो उसके बारे में आप मत घबराइए, वो हमारा काम है, FIR होगा, प्रेशर करना है, क्या करना है, एक प्रोटेस्ट है, एक आवाज है, देश की आवाज है और उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। मैंने कल आप प्रेस वालों से पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा परसों, सॉरी, कि आप में से कोई सोचता है कि नरेंद्र मोदी जी सही काम कर रहे हैं, और आपने पहली बार बिना डरे सच्चाई देश को दिखा दी, तो मैं आपको भी प्यार देना चाहता हूं और आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू।
5: जंतर मंतर जाएंगे राहुल जी,
6: तो NSUI के छात्रों के साथ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी बोल रहे हैं कि यही है हिंदुस्तान की आवाज, देख ले गृह मंत्री अमित शाह, देख ले दिल्ली की पुलिस किस तरीके से नाराजगी है इन तमाम जो छात्र संगठन है, जो छात्र हैं, जिनको लाठी डंडे पड़े हैं, जिनके चोटें आई हैं, उसके पूरे डिटेल्स यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताते हुए कहां कहां पुलिस ने मारा, किस तरीके से उनके साथ ज्यादती की गई, किस तरीके से अनैतिक व्यवहार उनके साथ किया गया और इन्हें धमकाया भी गया, यहां तक कि पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वहां पर भी उनके साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई और अब उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। मौसमी सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए। मौसमी, मैंने देखा आपने जानने की कोशिश की क्या राहुल गांधी जंतर मंतर जाएंगे, तो अब उसके जवाब में क्या फिर वही हम समझें कि हर कोई एक्शन उनका अब सरप्राइज एलिमेंट ही रहने वाला है?
5: बिल्कुल, ये तो है कि राहुल गांधी कहाँ जाएंगे या इस क्या रणनीति होगी इस पर पत्ते नहीं खोलना चाहते, लेकिन उनका ये पोस्ट कि अगर कोई तिरंगा दिखा रहा है तो ये अपराध नहीं है, और आशुतोष रांका के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की है और सौरभ दास पर, ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जंतर मंतर को लेकर बेहद आक्रामक है। और अभी उन्होंने बेहद एक तरीके से चुनौतीपूर्ण तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को कहा कि ये हिंदुस्तान है, ये पीछे हटने वाला नहीं है। दिल्ली पुलिस को उन्होंने चेतावनी जारी कर दी है कि सारे सबूत इकट्ठा हो रहे हैं, इसकी चिंता मत कीजिए, FIR से लेके जो भी लड़ाई है, जो छात्रों की पिटाई हुई है या जो पुलिस की बर्बरता हुई है, राहुल गांधी का कहना है उसको लेके लड़ाई लड़ी जाएगी और दिल्ली पुलिस के जो भी कर्मी है या अधिकारी है जिन्होंने ऐसा किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनका भी हिसाब होगा। तो एक तरीके से ये आपको याद होगा, इससे पहले भी चाहे वो साहिल लोचब हो या नेहा बोरा हो, उनको लेके जेंजी के आंदोलन के दौरान यहाँ 10 जनपद से राहुल गांधी ने तमाम प्रेस वार्ताएं की थी। अब एक बार फिर से वो दौर हम देख रहे हैं कि जब राहुल गांधी 10 जनपद के बाहर तमाम, ना सिर्फ इसमें एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे बल्कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे और कोई प्रोटेस्टर्स थे, वो बता रहे थे अपनी व्यथा, कई ने अपने चोटों के निशान दिखाए। जो महिला एनएसयूआई की कार्यकर्ता है उन्होंने बताया कि उनकी एक हियरिंग चली गई है, उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा, एक ऋतु बाला करके जो महिला,
6: उन सबकी व्यथा हमने सुन ली है और आगे भी वो प्रदर्शन जारी रखेंगे ये उन्होंने बताया है। अब रुक करेंगे खबरों का, पाकिस्तानी टूलकिट से जुड़ी आज तक की वो खबर का रुक करेंगे जिस पर दिल्ली पुलिस ने भी अब मुहर लगा दिया है। मामला 10 अक्टूबर से उन्होंने प्रदर्शन का है। इस मामले में आज तक की कल खबर दिखाई गई थी कि दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान पाकिस्तानी टूलकिट एक्टिव है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान आईएसआई ने सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स एक्टिव किए ताकि फेक न्यूज फेक वीडियो से दिल्ली में अराजकता फैलाई जा सके। पाकिस्तानी अकाउंट से लगातार सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाई जा रही है और इस खबर को लेकर अब दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक रूप से इसका खुलासा कर दिया, इसकी पुष्टि कर दी है। दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी संजय भाटिया ने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा से खास बातचीत में बताया कि आतंक पाकिस्तान की तरफ से एक संगठित तौर पर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है और ये प्रदर्शन की आड़ में किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से भड़काऊ पोस्ट और वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं।
7: कुछ पाकिस्तानी हैंडल से, सोशल मीडिया हैंडल से इस तरह का फेक न्यूज फैलाया गया कि दिल्ली पुलिस ने ओपन फायरिंग कर दी, राहुल गांधी घायल हो गए। पाकिस्तानी लिंक का भी खुलासा हुआ है आपकी जांच में?
8: हमने कुछ FIR दर्ज की हैं और उसमें अभी मैं आपको संख्या तो नहीं बता पाऊंगा, पर कुछ ऐसे हैंडल्स हैं जिनकी IP इंडिकेट करती है कि वो पाकिस्तान से क्रिएट किए हुए हैंडल्स हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। वो हमने पाया कि उन हैंडल्स द्वारा खासकर बहुत ही मिस्चीवियस तरह के पोस्ट डाले जा रहे हैं जो फैक्ट्स पर बिल्कुल आधारित नहीं हैं, सरासर गलत हैं, झूठे हैं, और उन पोस्ट से पब्लिक ऑर्डर जो है खराब होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे पोस्ट पे हमने टेक डाउन का जो रिक्वेस्ट है वो भी की हुई है, हटाए भी हैं और इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं।
7: एक आखिरी मेरा सवाल है, कुछ एक शिकायत मिली है कि AI रिपोर्टर, कुछ ह्यूमन ऑनलाइन, उस पर भी क्या दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया, FIR दर्ज किया?
8: हमारे पास जो भी सिंथेटिकली जनरेटेड ऐसा कोई पोस्ट आता है और उस पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस बनता है तो हम कार्रवाई करते हैं, और जो आपने बताया AI जनरेटेड जो पोस्ट हैं वो भी हम टेक डाउन, हम उसको जनरल पोस्ट की तरह लेते हैं और मुनासिब कार्रवाई वो उसी हिसाब से होती है। तो वो हैंडल जिसने क्रिएट किया है वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, अगर FIR दर्ज है तो, नहीं तो टेक डाउन करवाएंगे। अगर कोई डिफेमेटरी टाइप उसमें पोस्ट में अगर कोई ऐसा इंडिकेशन है तो अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाई करते हैं।
7: शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एडिशनल CP संजय भाटिया, जिन्होंने पाकिस्तानी कनेक्शन का भी खुलासा किया, कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से दिल्ली में प्रोटेस्ट को लेकर भड़काऊ पोस्ट किया जा रहा है जिससे हिंसा भड़के, लेकिन इसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और लगातार FIR दर्ज की जा रही है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
6: और इस बीच बड़ी खबर पंजाब के मानसा से, जहां पर एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा मर्डर मामले में विरोध हो रहा है, जबरदस्त रोष देखा जा रहा है। और अब से कुछ ही देर पहले नाराज लोगों ने आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ की, आगजनी की, बिल्डिंग के हिस्से को गिरा दिया गया। ये बवाल प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के दौरान हुआ। आपको बता दें कि आज ही हत्या के आरोपी को पुलिस ने राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया, पुलिस उसे भटिंडा ले गई। इस बीच मानसा में नाराज लोगों ने हंगामा और बवाल किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिंसा की जा रही है और हिंसा इन तमाम लोग द्वारा इस आरोपी के केमिस्ट शॉप के इर्द गिर्द की गई है। आरोप यह है कि यहीं से वो ड्रग्स बेचता था, इसी को लेकर लोगों में गुस्सा है। हालांकि झोटा की मौत को लेकर भी काफी बवाल हुआ था। यह पूरा इलाका दरअसल इस वक्त संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि यहां पर एक तरफ बुलडोजर एक्शन, दूसरी तरफ आगजनी, लोगों का गुस्सा, बवाल, पत्थरबाजी, सब कुछ देखने को मिल रहा है।
9: और अभी पुलिस कार्रवाई करने की कोशिश, क्योंकि कई लोग अंदर भी गए थे, आप बोल रहे कोई अंदर था, तो यहाँ पे पुलिस रोकने की कोशिश पर यहाँ पे आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल है और अपने आप में एक बड़ा संकेत है आम आदमी पार्टी सरकार के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया।
6: इंटरक्शन के बाद निहंगों ने हंगामा किया, बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थे, इन्होंने आगजनी की और पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हें वहां पर रोका गया, स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की गई।
10: जेड़ा भी नशा बेचूगा इदा करूगा यही हाल होएगा यही हसर।
6: वक्त एक ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: Okay.
14: Ujjivan, nothing small about us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: How's the hostel? Settled?
3: Yes, Mom's really nice.
2: कोई आ रहा है क्या?
4: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
2: मयंक, for real?
4: One carat for my one true love. Natural diamond real love solitaires to reignite your new season of love.
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो तुम ठुमका लगाने पर।
6: मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
7: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
9: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
10: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
11: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
14: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
15: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
16: I love it, absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
17: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
16: क्या?
17: इनकी राय।
18: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट, निर्माण का रियल हीरो।
19: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
12: सोच बदलो और बैंक भी।
14: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
15: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
16: I love it, absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
17: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
16: क्या?
17: इनकी राय।
18: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट, निर्माण का रियल हीरो।
21: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
22: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
21: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
23: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
24: Maddie, I need to open a savings account.
25: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
24: स्मॉल बैंक?
25: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एच करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज RDM, there is nothing small about them.
24: Okay.
25: उज्जीवन, nothing small about us.
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो तुम ठुमका लगाने पर।
6: मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
7: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
9: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: क्या कहती है आपकी राशि? कैसा बीतेगा आपका दिन? किस दिन क्या करें क्या ना करें? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर? देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।
3: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ। देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपीवा डायबिटीज जूस।
4: SIR की वजह से कांग्रेस केरल में जीती, क्योंकि ये सब डुप्लीकेट नाम, मरे हुए लोगों के नाम, जो लोग वहां से शिफ्ट हो गए वो नाम निकल गए, तो कोई मैल प्रैक्टिस होने की संभावना नहीं थी केरल में। ये शशि थरूर जी का दावा है। रमेश चेन्नीथाला जी ने खुद कहा कि SIR की वजह से ही आज कांग्रेस जीत पाई है केरल में, और केरल के मुख्यमंत्री स्वयं श्री VD सतीशन जी ने SIR की तारीफ की है। अधीर रंजन चौधरी जी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ करी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव उन्होंने अच्छी तरीके से लड़ाए, ईमानदार व्यवस्था से लड़े गए, और जो गलत काम ममता बैनर्जी जी करती थी उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने भी किया और इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। अब उनकी खुद की पार्टी बेबुनियाद और झूठे वोट चोरी के दावे ला रही है।
5: भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आते आते बहुमत लाते लाते 50-60 साल लग गए, फिर क्या कहें हम? ये अजीब सी टिप्पणी है साहब कि कांग्रेस कई राज्यों में इतने सालों से, भाई आप तो देश में कितने सालों तक नहीं थे, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? फिर कहते हैं 29 भी हम जीतेंगे, क्यों इतना भरोसा है ज्ञानेश पर? और ज्ञानेश रहेगा 29 तक? ये चुनाव आयोग जिस तरह से चल रहा है, हम चलने देंगे 29 तक? कि इतना भरोसा, हमारी बात साबित करते हैं ये बात कहकर, तो वो कि 29 में भी हम जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हो साहब? सड़क पे तो निकलकर देखो, गुस्सा तो देखो लोगों का, आकर हटाओ पुलिस और आकर देखो गुस्सा।
6: देखिए गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं, मैं उसको ज्यादा नहीं, लेकिन हम लोग जो आपने पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया, चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक खिलौना बनकर रह गया, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है और हम लोग लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे और ये काम नहीं होने देंगे। और ये बार बार घुसपैठियों का नाम लेकर के गुमराह करने की कोशिश ना करें। 13 करोड़ लोगों के वोट काटे तो 13 करोड़ घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठियों को कितनों को आपने चिन्हित करा और कितनों को डिपोर्ट करा, उसकी सूची देश को उपलब्ध कराई है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नेता को 5 दिन की जेल, दिल्ली की कोर्ट ने भेजा तिहाड़। राहुल गांधी ने किया CJP का समर्थन। बढ़ती जा रही है आजम खान की मुसीबत। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ईडी ने दर्ज की नई FIR। 416 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य का हिसाब न मिलने का आरोप। खोखली नाव में सवार होने से बिहार के हाजीपुर में गई 14 बच्चों की जान। आज तक की पड़ताल में खुलासा, सुराख वाली बोट के गंगा में डूबने से हुई मौत, सभी एक ही गांव के बच्चे। पंजाब के मनसा में एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट मर्डर केस में मुख्य आरोपी पर ताबड़तोड़ एक्शन। गिरफ्तारी के बाद घर पर चला बुलडोजर, भीड़ ने बोला हमला।

राहुल गांधी के साथ मीडिया के सामने आए NSUI के प्रदर्शनकारी छात्र दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मारपीट और गाली गलौज हुई। रोक और हिदायत के बावजूद जंतर मंतर पर जबरन घुसने के मामले में CJP के सौरव दास और आशुतोष रांग

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कुछ अहम खबरें। हमारी नजर रहेगी उन खबरों पर जो सुर्खियों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली खबर ये कि विरोध प्रदर्शन को लेकर तिरंगे की लड़ाई अब पैदा हो गई है। सरकार, बीजेपी की पार्टी के नेताओं और कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों के बीच में। इसके अलावा दूसरी खबर जिस पर हमारी नजर रहेगी वो ये कि अमित शाह और राहुल गांधी के बीच कहासुनी हुई है, जिसमें अब मुद्दा 13 करोड़ वोटरों के नाम काटने को लेकर है और उस पर अब दोनों के बीच खींचतान चल रही है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबरें रहेंगी, पंजाब की खबर है जहां पर एक ड्रग एक्टिविस्ट के साथ की हत्या के बाद अब खबर आ रही है कि हम आपको पंजाब की खबर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी खेल चल रहा है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का जो खेल चल रहा है, उस खबर के बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे एक और खबर जो बिहार से आई है, बेहद दुखद खबर, जहां पर 14 बच्चों की मौत हो गई सरकारी लापरवाही की वजह से, क्योंकि एक नाव जिसमें सुराख था उसके डूबने की वजह से 14 बच्चे, एक ही परिवार, एक ही गांव के, उनकी मौत हो गई। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। एक और विरोध प्रदर्शन की खबर आ रही है। आज जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनका एक जो छात्र संघ है उनके विरोध प्रदर्शन की खबर आ रही है। उन्होंने आज फिरोज शाह रोड पर चलने की कोशिश की और वहां से जंतर मंतर का रुख करने की कोशिश की। उस दौरान उन्हें रोक लिया गया है। उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो दो मेन मुद्दों पर था। पहला तो सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, दूसरा वो ये भी अब मांग कर रहे हैं कि जंतर मंतर को एक नोटिफाइड प्रोटेस्ट साइट के तौर से न हटाया जाए, जो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है। और इस दो मांगों के साथ जब वो आगे बढ़ रहे थे, फिर उस वक्त उन्हें दिल्ली पुलिस ने रोक दिया, तो वो वहीं धरने पर बैठ गए, आगे नहीं बढ़ पाए। कोशिश उनकी जंतर मंतर की तरफ जाने की थी। SFI का प्रदर्शन था ये, जिसे रोक दिया गया है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, प्रदर्शनकारी जो मांग कर रहे थे वो वही मांग जो लगातार कई दिनों से दिल्ली में आप लगातार देख रहे हैं, और वो ये कि CC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल बाली इस वक्त जुड़ गए हैं। अनमोल, जो ये छात्र पार्टियों के नेता हैं वो इस वक्त कोशिश क्या कर रहे थे? क्या उन्हें पुलिस ने सिर्फ महज रोका है या उन्हें हिरासत में भी लेने की कोशिश है?
1: अंजलि, जैसे कि आप जानते हैं पिछले एक हफ्ते से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जो केंद्रीय दिल्ली क्षेत्र है वहां देखा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शनों का जो दौर जारी है, और सबसे ज्यादा इसमें देखा जा रहा है कि जो छात्र संगठन है जो लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन करें। इसी बीच आज फिर जो एक तस्वीर फरोशा रोड पे देखी गई, जहां DYFI और SFI जो कम्युनिस्ट पार्टियों के छात्र संगठन है, इनके जो कुछ छात्र थे, जो कुछ इनके कार्यकर्ता थे, वो अपना जो प्रोटेस्ट मार्च थे दिल्ली के जंतर मंतर की ओर लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि जब से देखा जाता है जंतर मंतर को डी नोटिफाइड किया गया है बतौर एक प्रोटेस्ट साइट के तौर पर, उसके बाद से देखा जा रहा है कि विपक्षी दलों के जो छात्र संगठन है वहां अपना मार्च ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से देखा जा रहा है कि ISI, ISF और NSY जो कांग्रेस की छात्र इकाई है वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रही है कनॉट प्लेस पर। आज देखा गया कि फरोशा रोड से जो कुछ छात्र थे जो लेफ्ट से जुड़े हुए थे वो जाना चाहते थे, पर उनको वहां पर रोक लिया गया। और अभी देखा जाएगा कि जो छात्र है अगर वहां से नहीं हटते तो इनको डिटेन भी कर लिया जाएगा, क्योंकि भारी मात्रा में जो पुलिस बल है केंद्रीय दिल्ली में अंजलि तैनात किया गया, तकरीबन 23,000 के आसपास जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान है यहां पर तैनात किए गए, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र हैं, जो जंतर मंतर जाने की कोशिश करें, चाहे वो CCP के हों, लेफ्ट के हों या कांग्रेस के हों, उनको रोका जा सके। अंजलि
0: जी, ये जो छात्र पार्टियों के नेता हैं, DFY के हैं, SFI के हैं, ये सब जो लेफ्ट विंग पार्टियां हैं उनके छात्र हैं, तो क्या ये कह सकते हैं कि अब अलग अलग पार्टियों के जो छात्र हैं, जो छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, अब वो सड़कों पर आ रहे हैं अलग अलग दिन?
1: अगली देखा गया कि 10 को कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा कॉल दी गई थी, उसके बाद से ही देखा जा रहा है कि जो लेफ्ट पार्टीज हैं बहुत एक्टिव दिख रही हैं। खासतौर पर दिल्ली के कनॉट प्लेस से देखा गया कि जनपद से होते हुए बहुत बार आज से 4-5 दिन पहले से ही देखा जा रहा है कि ISA, AISF और जो SFI जैसे भी धरना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। जनपद से होते हुए जंतर मंतर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर सीसी से उनको डिटेन कर लिया जाता था। आज जो एसएफआई और डीवाईएफआई जो इनकी छात्र और यूथ संगठन है, उन्होंने कोशिश की फरोशा रोड से वो जंतर मंतर की ओर कूच करें। वही मैं आपको बता दूं, कुछ देर बाद देखा जाएगा कि इंडियन यूथ कांग्रेस, जो कांग्रेस का यूथ विंग है, वो भी कोशिश करेगा कि रायसीना रोड से वो भी जंतर मंतर की ओर और कूच करे। तो सब जो यूथ विंग है ओपोजिशन पार्टीज के और छात्र विंग है, इस समय दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं और कोशिश करें कि जंतर मंतर अपना मार्च ले जा सके।
0: जी अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक एक करके अलग अलग पार्टियों के जो यूथ विंग है वो सड़कों पर आ रहे। कल हमने यही चीज देखी थी कांग्रेस के यूथ विंग एनएसयूआई की तरफ से, और आज राहुल गांधी उन छात्रों से मिले जिन पर कथित तौर पर पुलिस ने ज्यादती की। उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई, अपनी कहानी सुनाई कि उनके साथ क्या क्या हुआ जब वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए कल सड़कों पर उतरे। राहुल गांधी ने कहा कि नौजवानों की आवाज देश की आवाज है। उन्होंने उनसे मुलाकात के दौरान उनकी कहानी भी सुनी और कहा कि उनकी आवाज यानी कि नौजवानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उनके साथ एनएसयूआई के वो सारे छात्र मौजूद थे जो इस धरने प्रदर्शन में शामिल थे। उनको राहुल गांधी ने मौका दिया कि वो अपनी बात आगे रखें, उनसे पूछा क्या उन्हें डर लग रहा था, उनसे जानने की कोशिश की जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो वो क्या महसूस कर रहे थे, और पूछा कि आगे भी क्या आप विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुनिए क्या क्या कहा राहुल गांधी ने।
2: ये हिंदुस्तान है अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है, और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए। इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूँ, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए। इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे। ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत। कोई डर रहा है?
3: नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
2: खुश हो?
4: यस सर।
2: शाबाश, लव यू, थैंक यू। नहीं नहीं, देखिए वो उसके बारे में आप मत घबराइए, वो हमारा काम है। FIR होगा, प्रेशर करना है, क्या करना है। एक प्रोटेस्ट है, एक आवाज है, देश की आवाज है, और उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है।
0: तो राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान इन छात्रों ने जो एनएसयूआई के थे, उन्होंने आपबीती सुनाई, अपनी विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कई आरोप भी लगाए।
5: तो हमारे जो बस में हम लोग दो लड़कियां थी और 20-30 हमारे और भी एनएसयूआई के साथी थे। ऐसा होता है कि उसमें महिला कांस्टेबल भी होती है जिसका नाम चंचल यादव होता है, और वो महिला कांस्टेबल हम डिटेन होने के बाद हम कोशिश कर रहे थे कि हम गेट से फिर से नीचे उतर कर फिर से हम लोग प्रोटेस्ट में आगे लीड करते हैं, बस को रोकने का प्रयास करते हैं कि हम लोग बस से उतर के कैसे तैसे बस के नीचे बैठ जाते हैं कि कैसे भी हमारा प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रन करता रहे। लेकिन चंचल यादव जी ऐसा करती है कि वो मेरे गले को जोर से दबा के मुझे पुश कर देती है ताकि मैं पीछे जाके सीट पे पीछे गिर जाती हूँ, और फिर मुझे मेरे मुंह पे ऐसे मतलब स्क्रैच, मतलब पूरे नाखूनों से पूरा स्क्रैच करके, मेरे यहाँ पे स्क्रैच भी आया, इधर कान पे भी मतलब पूरा लगा है, और स्क्रेच करने के बाद वो मुझे, मैं उनके झड़प देती हूँ तो वो मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारती है कि लो तुम्हारे मुंह पे एक और तमाचा, और उसके बाद वो फिर मेरे मतलब मैं उठने की कोशिश करती हूँ तो वो उनमें इतनी ताकत होती है कि मेरे से उठा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं अपने एफर्ट्स लगा के पूरा उठती हूँ। तो वो मेरे जोर से बाल पकड़ लेती है, और बाल पकड़ने के बाद वो कंटिन्यू मुझे मतलब बस में आगे पीछे करके हम लोग मतलब मैं मेरा एफर्ट कर बचाने का एफर्ट करती हूँ, वो अपनी ओर से अपनी ताकत लगाती है। उसके बाद ऐसा होता है कि मैं नीचे गिर जाती हूँ और वो मेरे ऊपर आ जाती है। उसके बाद उन्होंने मेरा और जोर से गला दबा के यहाँ मेरे कान के ऊपर, मतलब मैंने इयररिंग डाला हुआ था, और पूरा जूते से रब करके, गले से रब करके, मतलब पूरा कान का रंग चेंज हो गया है, मतलब ब्लू कलर का कान हो गया है, और उसमें इयररिंग अंदर चला गया। शाम को मतलब हॉस्पिटल हम लोग गए तो डॉक्टर ने इयररिंग निकाला, और ऐसे हालात थे। चंचल यादव बोलती है कि तुम लोगों को तो ज्यादा नेती है ना, हम लोग बनाते हैं, तुम देखो अभी नेती तुम्हारी नेतागिरी पूरी झाड़ते हैं हम लोग
4: पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। 4 तारीख से मैं प्रोटेस्ट में ज्वाइन था, और 5 तारीख को सुबह हम लोगों को डिटेन करा, जिसमें मैं और धर्मेंद्र हम लोगों को पुश करके ये पार्लियामेंट स्ट्रीट के स्टेशन में ले जाके हम लोगों को 15 से 20 पुलिस वालों ने मारा है, जिसमें से एक दो सिविल ड्रेस में भी थे। एक का नाम बहाब सिंह तोमर था, उन लोगों ने हमें बहुत बुरी तरीके से मारा था।
0: तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी वहां पर मौजूद थी। आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मौसमी, कई आरोप लगाए गए हैं इन छात्रों की तरफ से पुलिस के ऊपर। उनका कहना है कि उनके ऊपर हाथ उठाया गया, कई ऐसी बातें कही गई हैं जो शायद पुलिस की कार्रवाई में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान जायज नहीं है। तो वहां पर राहुल गांधी भी उस वक्त मौजूद थे, तो किस तरह का वहां पे आपको जो इमोशन था वो नजर आया?
6: देखिए अभी भी धर्मेंद्र हैं, समर्थ हैं, रमित हैं, यही इन्हीं लोगों ने राहुल गांधी के साथ ये प्रेस वार्ता की, जो बता रहे हैं कि इनको डिटेन किया गया, घंटों ये लोग बैठे रहे बिना खाए पिए, मारा पीटा गया इनको। इनका आरोप है कि जो बर्बरता इन्होंने सहन की है, चोट आप देख सकती हैं इनके हाथ में जो चोट लगी है और इस तरीके के जो निशान हैं, तो एक तरीके से ये विनोद झाखड़ है यहाँ पे जो NSUI के अध्यक्ष भी है। विनोद, जिस तरीके की अलग अलग महिलाओं से लेके आगे आप लोग लड़ाई कैसे लड़ेंगे, राहुल गांधी से भी है सवाल?
7: देखिए राहुल गांधी जी ने, देखिए इस देश में हजारों कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, हजारों लोगों के ऊपर जो है मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ब्रूटिलिटी हुई है। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग जो हैं आपके साथ में हैं। राहुल गांधी जी ने यह भी आश्वस्त किया है, क्योंकि एक प्रोटेस्टर हमारे साथी को, जिनको कहा गया कि तुम पैंट खोल के साबित करो कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो, तो हम सबका हाथ पकड़ के कहा गया कि तुम एक दूसरे के साथ में खड़े हो, यही हिंदुस्तान की तस्वीर है, हिंदुस्तान संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, और यही
8: ये मैम पार्लियामेंट थाने में डिटेंशन के समय इन्होंने क्या, पुलिस ने रवैया अपनाया है कि कुछ लोगों को बसों में डालते हैं और जो बहन भाइयों को अपने निकालते हैं कि हमें क्यों ले जा रहे हो, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको थाने में अंदर ले जा रहे हैं। जैसे मुझे और समर्थ को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब ये 6 से
6: बात हैं, क्योंकि काफ़ी इनके चोट भी आई है और खड़ी भी नहीं हो पा रही है, एक कान से हियरिंग भी नहीं है, अभी आपको दिक्कत है बहुत, यू कांट
9: एक्चुअली आई कांट हियर दिस साइड and also I can't eat food properly. देखो
6: चल गया आपका।
9: Yes, then my eyes also, देखो I also had problem in eyes.
6: बताएंगे क्या नाम है आपका?
9: आदिरा।
6: आदिरा क्या हुआ आपके साथ, संक्षिप्त में
9: बताएंगे? Because we are protesting peacefully, then they detain us. I just ask, there is no police, no lady constables inside the bus. Inside the bus, you know. If someone detained, they will drop, they will detain us in UP border or Haryana border.
0: जी मौसमी, वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, बात हम NSUI की कर रहे थे, और अब बात करते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है। CJP के जो कार्यकर्ता, जो नेता जिनको हिरासत में लिया गया और उसके बाद तिहाड़ जेल जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, उनके बारे में आपको बता दें कि राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता इसे तिरंगा फहराने से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि दरअसल वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस देश में तिरंगा फहराना अब गैर कानूनी हो गया है। उन्होंने ये सवाल उठाते हुए लगातार पोस्ट किए हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि आखिर तिरंगा फहराने पर पुलिस एक्शन क्यों हुआ है, तो दरअसल वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो CJP के कार्यकर्ता जंतर मंतर पहुंचे थे और दीवार फांद करके ऐसी जगह पर गए थे जहां पर लोगों का जुटना मना था, उसे वो वहां पे उन्होंने तिरंगा भी फहराया था, उस एक्शन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक तरीके से समर्थन दिया कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को, और उनके इस समर्थन के बाद अभिजीत दीपके की तरफ से भी एक धन्यवाद का पोस्ट किया गया।
10: तुम्हें देश में इमरजेंसी लगानी है, इमरजेंसी करनी है तो ऑफिशियली करो ना, ये क्या कायरो की तरह अनऑफिशियली आप इमरजेंसी कर रहे हो, जहां पर आप लोगों को जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो? ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया कि उसके लिए आप लोगों को 5 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हो? इतने बड़े कायर मत बनो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। अगर इमरजेंसी लगानी है तो ऑफिशियली लगाओ, दम है तो। आरोप क्या लगा रहे हो? जो सत्ता में हो इन्वेस्टिगेशन करो, जांच करनी है वो करो, ये आरोप क्या लगा रहे हो तुम लोग? और ये जो लोग है ये सारे के सारे बहुत ही बड़े कायर है, ये पुलिस के पीछे छुप रहे है। कल से सौरभ, आशुतोष और अजिंक्य को इलीगल डिटेंशन में रखा गया था, उनके लॉयर से तक उनको मिलने नहीं दिया गया था, और आज सुबह सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। किस चीज के लिए? क्या गुना था उनका? उनका गुना सिर्फ यही था कि वो जंतर मंतर पर गए और उन्होंने वहां पर तिरंगा लहराया।
0: तो आइए सुन लेते हैं कि तिरंगे विरोध प्रदर्शन और पुलिसियाई एक्शन पर बीजेपी क्या कह रही है।
11: एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ सीजेपी यानी कि आम आदमी पार्टी की प्रॉक्सी टीम, दोनों के बीच में जितनी नूरा कश्ती है सब जानते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रोटेस्ट की, आप देखिए राहुल गांधी किस तरह से तिरंगे का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं तिरंगे, और इनको लगता है कि तिरंगे की आड़ में वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाएंगे, संविधान के खिलाफ जाएंगे, बावजूद इसके कि बाकायदा बॉन्ड दी है सौरभ दास और ये सीजेपी के जितने भी साथी हैं, उसके बावजूद आप फांद कर दीवारें आप पहुंचेंगे उस साइट पर और बाकायदा तिरंगे की आड़ में आप देश के कानून को तोड़ेंगे। ये बात है ट्रेसपासिंग की है।
0: और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज का। अमित, ये मामला जो है वो अलग ही रुख अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब लग रहा है कि राहुल गांधी और दूसरी विपक्षी नेता जो है उसे तिरंगा फहराने से जोड़कर लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जबकि पुलिस कहती है कि ये मामला दरअसल अपने बेल बॉन्ड के उल्लंघन, पीस बॉन्ड के उल्लंघन का है। तो इसे थोड़ा समझाएं कि दरअसल हुआ क्या है।
12: अंजलि, देखिए प्रदर्शनकारी आशुतोष रंका और सौरभ दास जब वहां कल पहुंचे थे, उनके साथ अजिंक्य शिंदे भी थे। अजिंक्य शिंदे को आज बाहर निकलने के लिए दिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा एक बेल बॉन्ड साइन, पीस बॉन्ड साइन कराने के बाद। ऐसा ही पीस बॉन्ड 11 तारीख को आशुतोष और सौरभ ने अभिजीत के साथ साइन किया था। दिल्ली पुलिस का आर्ग्यूमेंट है कि बॉस आप क्योंकि पीस बॉन्ड आपने साइन किया था वो ब्रेक हुआ है, बीएनएस 163 की धारा ब्रेक हुई है और ट्रेसपासिंग की धारा की बात सीजेपी के लॉयर कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने आर्ग्यू किया अरेस्ट के ग्राउंड्स को लेकर, तो इन धाराओं के तहत इनकी गिरफ्तारी दिखा दी गई है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि रिपीट ऑफेंडर का केस बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर मामला अभी और तूल पकड़ेगा, तिरंगा से लेकर विपक्ष की आवाज दबाने वाला मामला बनेगा। अंजलि
0: जी, शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
16: कैसे लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
17: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
15: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
17: क्या?
15: इनकी राय।
18: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार लोन भूल गया मैरी।
3: इट्स
2: जस्ट अ गुड बैंक ना।
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
4: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
5: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार रुक ठुमका लगाने बस।
7: मेरे पास एक आइडिया है।
6: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
8: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
9: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
10: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
11: कौन सी बनानी है?
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो।
14: फिर डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है।
15: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफिल जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
14: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफिल जूस।
16: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
17: AU सोच बदलो और बैंक भी।
18: In association with Canara Bank, together we can.
19: Anmol biscuits, swad jo banaye har pal anmol. Signature finest cardamom seeds.
20: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
21: Rajasthan ki siyasat ka sabse bada manch, jahan hogi yuvaon ke man ki baat aur milega yuvaon ke har sawal ka jawab. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
22: अगर तुम्हें देश में इमरजेंसी लगानी है, इमरजेंसी करनी है तो ऑफिशियली करो ना। ये क्या कायरों की तरह अनऑफिशियली आप इमरजेंसी कर रहे हो, जहां पर आप लोगों को जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो। ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया कि उसके लिए आप लोगों को 5 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हो। इतने बड़े कायर मत बनो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। अगर इमरजेंसी लगानी है तो ऑफिशियली लगाओ, दम है तो। आरोप क्या लगा रहे हो? जो सत्ता में हो इन्वेस्टिगेशन करो, जांच करनी है वो करो। ये आरोप क्या लगा रहे हो तुम लोग? और ये जो लोग हैं, ये सारे के सारे बहुत ही बड़े कायर है। ये पुलिस के पीछे छुप रहे हैं। कल से सौरभ, आशुतोष और अजिंक्य को इलीगल डिटेंशन में रखा गया था, उनके लॉयर से तक उनको मिलने नहीं दिया गया था। और आज सुबह सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। किस चीज के लिए? क्या गुना था उनका? उनका गुना सिर्फ यही था कि वो जंतर मंतर पर गए और उन्होंने वहां पर तिरंगा लहराया।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
3: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायबिटीज जूस।
5: ऐसा ही तो 24 के बाद चालू हुआ। अब जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए।
6: अगर वास्तव में ये मानते हैं कि इलेक्शन रिग्ड है या इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रही है या SIR ठीक नहीं है, तो इनकी चारों कांग्रेस सरकार कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल और केरल और साथ में जो झारखंड और तमिलनाडु की सरकार में शामिल है, इसमें सत्ता का क्या है? उनको लोभ है। अगर वो सही माने में मानते हैं इलेक्शन कमीशन ने ईमानदार व्यवस्था नहीं रखी है, तो क्यों नहीं रिजाइन करते हैं इनके 6 के 6 मुख्यमंत्री? तुरंत रिजाइन करना चाहिए। और ये कई लोग ये बात रख रहे हैं कि कांग्रेस तय करे, ऐसा नहीं हो सकता है जहां जीते वहां तो सही काम हुआ, वहां इलेक्शन कमीशन ने पक्षपात नहीं किया, और जहां हारे वहां SIR को गाली देना।
7: मुझको नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी के पास एक भी प्रश्न का जवाब होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से इस देश में जिस तरह नौटंकी और ड्रामा केयर के देश भर में अराजकता कायम करने का प्रयास किया जा रहा है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, मुझको नहीं लगता है कि इस देश की जनता कभी इसको स्वीकार करे।
8: मैं पहले से
7: ये
8: कहता आ रहा हूं कि मैं राहुल गांधी भले ही संविधान दिखा रहे हैं लेकिन उनका प्लान, उनकी मोडस ऑपरेंडी दूसरी है। संविधान सामने करके जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करना, उनके बारे में लोगों के मन में प्रश्न तैयार करना, लोगों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं से उड़ जाए, इस प्रकार की व्यवस्था तैयार करना, इस व्यवस्था को तैयार करके अराजकता एनार्की और फिर एनार्की लाकर लोगों के मन में यह भावना तैयार करना कि संविधान में तैयार की हुई डेमोक्रेटिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमको न्याय नहीं दे सकती, और फिर ये सारी व्यवस्था को जो साम्यवादी व्यवस्था है, कम्युनिस्ट व्यवस्था है, उस व्यवस्था की ओर ले जाना, इस प्रकार का डिजाइन ये राहुल गांधी ने तैयार किया है।
0: Presented by
9: पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार
10: इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: पंजाब के मानसा में एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट के मर्डर पर फूटा भीड़ का आक्रोश, आरोपी के घर पर हमला, तोड़फोड़ और आगजनी। एक्शन में आई सरकार, शूटर की गिरफ्तारी के बाद चला बुलडोजर। राहुल गांधी के साथ मीडिया के सामने आए एनएसयूआई के प्रदर्शनकारी छात्र, दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा हमारे साथ मारपीट और गाली गलौज हुई। राहुल बोले हर ज्यादती का हिसाब होगा। रोक और हिदायत के बावजूद जंतर मंतर पर जबरन घुसने के मामले में सीजेपी के सौरव दास और रांका को 5 दिन की जेल, दिल्ली की कोर्ट ने भेजा तिहाड़, राहुल ने किया सीजेपी का समर्थन। खोखली नाव में सवार होने से बिहार के हाजीपुर में गई 14 बच्चों की जान, आज तक की पड़ताल में खुलासा, सुराग वाली बोट के गंगा में डूबने से हुई मौत, सभी एक ही गांव के बच्चे। प्रेमी साहिल की मदद से पति का मर्डर कर नीले ड्रम में शव के टुकड़े डालने वाली मुस्कान की सजा पर शाम 4 बजे आएगा फैसला, मेरठ जिला अदालत ने दोनों को ठहराया दोषी।

0: न्यूज रूम लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं पंजाब के मनसा की, जहां पर ड्रग एक्टिविस्ट के हत्याकांड के मामले में अब काफी कुछ हो गया है। लोगों का गुस्सा तो था ही, इसके बाद अब सरकारी एक्शन भी हुआ, बुलडोजर चला और बुलडोजर चलते दौरान लोगों का गुस्सा इतना फूटा कि जो आरोपी है जिसकी दुकान थी उसमें आग लगा दी गई। इसके अलावा जो आरोपी है उसके घर पर भी एक्शन किया गया है, जो अवैध रूप से बना हुआ उसका घर था उसके ऊपर भी सरकारी बुलडोजर चला है। तो लोगों का गुस्सा आज मानसा में सामने आया जब कार्रवाई की जा रही थी आरोपी के खिलाफ। आरोपी की दुकान जो है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, उस दौरान वहां पर लोग पहुंचे, उनकी नाराजगी वहां पर फूट पड़ी तो तोड़फोड़ वहां हुई और उसके बाद आगजनी भी हुई है।
1: हम आए हैं
0: नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले शख्स की हत्या की वजह से अब यह मामला इतना सियासी हो गया है कि अब बीजेपी ने इस पर एक बयान दिया है। उनका कहना है कि जो लोग नशे के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें ही पंजाब में मार दिया जा रहा है। तो बीजेपी सवाल उठा रही है, उनका कहना है कि परविंदर सिंह झोटा जो कि एक एक्टिविस्ट थे और नशे के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद करते थे, उनको गोली मार दी गई और वो भी दिन दहाड़े सरे आग। तो बीजेपी अब कह रही है कि कानून व्यवस्था पर भी इससे सवाल उठते हैं। आइए सुन लेते हैं कि क्या कह रही है बीजेपी।
2: कोई ऐसा दिन नहीं है पंजाब में, सुबह उठते हैं तो ये पता चलता है कि इतने आदमी गोलियों से मार दिए गए, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत है, नशे तो मुद्दे तो बहुत है पंजाब के, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा नशा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी हमने यात्रा भी निकाली। यात्रा की शुरुआत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने की, फिर सारे बड़े बड़े मंत्री साहब आए, हमने चार दिशाओं से शुरू करके उसको ख़त्म किया। जलंधर में वहाँ पे हमारे गृह मंत्री साहब आए, एक बहुत बड़ी जनसभा की वहाँ पे मंत्री साहब ने, गृह मंत्री साहब अमित शाह जी ने लोगों से ये भी बताया कि अगर इसको ख़त्म करेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, और 31 मार्च 2029 का उन्होंने टारगेट दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में बने, और इसके लिए हम वचनबद्ध हैं कि इसको जड़ से उखाड़ देंगे। और इसी तरफ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने भी अपनी मन की बात में पिछले महीने भी बोला, इस महीने भी बोला कि भारत से नशे को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज मैं पंजाब की बात करने आया हूँ आपके सामने, आपका धन्यवाद आप हमारे पास आए। नशा, गैंगस्टरवाद, लॉ एंड ऑर्डर, फरौतियाँ, कर्जा, माली हालत, और इस वेले पंजाब के एक नहीं मुद्दे पे मुद्दा है।
0: और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी कमलजीत संधु, जो कि मानसा में ही मौजूद है जहां ये पूरा मामला हुआ है। कमलजीत, इस मुद्दे को अब ठंडा करना सरकार के लिए आसान नहीं है, क्योंकि मामला सिर्फ अब एक ड्रग एक्टिविस्ट की खुलेआम दिन दहाड़े मौत का नहीं है। अब ये मौका है सारी पार्टियों के लिए इलेक्शन से पहले कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाने का, जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी कर रही है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, 24 घंटे के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन किया गया। एक तो गिरफ्तारी की गई पंजाब पुलिस द्वारा मेन अक्यूज की, दूसरी चीज हुई कि बुलडोजर एक्शन हुआ, लेकिन उससे भी लोग नाराज थे क्योंकि उनका तभी वो आगजनी हुई, तभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी पुलिस कर्मी लगाए गए हैं और बीच बीच में ठहर ठहर के यहाँ पे जो निहंग हैं या फिर युवक हैं या लोग हैं वो आना चाहते हैं क्योंकि वो घर जाना चाहते हैं जहाँ पे बुलडोजर एक्शन हो चुका है। लेकिन अपने आप में एक बार फिर सवालिया निशान ये उठाया जा रहा है कि 3 साल पहले भी अगर परविंदर झोटा ने ये पूरा आरोप लगाया था और उस समय भी ये बात आई थी कि वो ड्रग्स बेच रहा है, तो अश्विनी को दोबारा लाइसेंस एज अ केमिस्ट कैसे मिल गया, तो ये सारी जो चीजें हैं वहां पे सवाल उठाते हैं, खासतौर पे उस समय जहां पे आम आदमी पार्टी का भी बड़ा दावा है कि वो युद्ध नशे विरुद्ध कर रही है, तो वो कह रहे हैं कि भाई कहां पे है ये, और यही चीज विपक्षी पार्टियां लगातार उठा रही हैं। लेकिन आज जो हमने गुस्सा देखा, जो सड़कों पे उतरा हुआ था, जिस तरह से आगजनी हुई, जिस तरह से पथराव किया गया, तो वहां पे एक गुस्सा जो है वो एक आम आदमी का गुस्सा था जो कि सड़कों पे फूट पड़ा है। और आपको बता दें कि सीसीटीवी के जरिए क्रैक जरूर किया गया केस, लेकिन सवालिया निशान है कि पिछले पिछले कई सालों से कई सरकारें क्या कर रही थी।
0: बिल्कुल, और इस सवाल यही उठता है कि आखिर कानून व्यवस्था का क्या हाल है पंजाब में। आइए एक नजर डाल लीजिए कि आखिर मानसा में हुआ क्या।
4: मनसा लाइव मर्डर पर लोगों का फूटा गुस्सा। गुस्साई भीड़ ने आरोपी की दुकान को तोड़ा। भीड़ ने दुकान में तोड़फोड़ के बाद की आगजनी।
5: अब आप ये आप देखिए, पूरा पूरी दुकान तहस नहस हो चुकी है।
4: प्रशासन ने आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर। ये तस्वीरें पंजाब के मनसा की है, जहां नशे के खिलाफ मुहिम चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा और नाराजगी साफ देखी जा सकती है। गुस्साई भीड़ ने आरोपी के मेडिकल शॉप पर हमला कर तोड़फोड़ की। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के बाद भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ की। यही नहीं, दुकान में रखे सामान को भी आग के हवाले कर दिया गया। गुस्साई भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
5: ये एक बड़ा संकेत है कि कानून पे इतना भरोसा नहीं रहा है। लोग अपनी तरफ से ही एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, और आप देखें निहंग है, चाहे हम युवक की बात करें वो है, और ये आग की जो लगते हैं और आसपास की जो एरिया है वो भी आप ये देखिए धुआं किस तरह से ऊपर उठता हुआ, और यही धुआं है, यही आग है जो कि कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में भी नजर आएगा। यहाँ पे बात आ रही है क्या इंसाफ मिल पाएगा परविंदर झोटा को, जिन्होंने ये पूरा मुद्दा पिछले 3 सालों से उठाया था। वहां पे हम लगातार बता रहे हैं किस तरह से कानून व्यवस्था को बनाने की कोशिश पंजाब पुलिस की तरफ से, लेकिन यहाँ पे लोगों का रोष, लोगों का गुस्सा वो सड़कों पे फूटा है।
4: जहाँ एक तरफ आरोपी की दुकान पर लोगों का गुस्सा फूटा, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने आरोपी के घर पर भी कार्रवाई की। प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाए गए घर के हिस्से को बुलडोजर से गिराया।
3: परविंदर झोटा एक सोशल एक्टिविस्ट के सनसनीखेज मर्डर के मामले में अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बोल्डर है ये अब आगे मिल रहा है जेसीबी, और ये देखिए लगातार और एक तंग गली है जिसके बीच में ये एक्शन किया जा रहा है। ये आप देखिएगा, अब आपको यहाँ पे दीवारें टूटती नजर आएंगे और साथ में ही ये धुआं सा जो उठ रहा है वो कंक्रीट का है, और जाहिर सी बात है अब जो बड़ा एक्शन जिस तरह से परिवार मांग कर रहा था कि वो चाहते हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी की जाए, उस पर पुलिस पे कार्रवाई की जाए, डीजीपी पंजाब के ऊपर भी कार्रवाई की मांग की गई है कि उन्होंने कहा है कि किस तरह से पुलिस को पहली बार पहले भी बताया गया लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अब जो एक्शन किया जा रहा है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है, वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है, और एक तरह से बात यही आ रही है कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पहले आप अक्यूज को अरेस्ट कीजिए, उसके ऊपर सजा कीजिए, बुलडोज कीजिए। तो यहां पर एक कोशिश जरूर है कि कहीं ना कहीं ये सब एक्शन करके के परिवार को मनाया जाए।
4: परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद जहां एक तरफ इंसाफ की मांग को लेकर लोगों में गुस्सा दिखा, वहीं दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने एक्शन लेते हुए परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मुख्य आरोपी अश्विनी कुमार को राजस्थान के सारासर से धर दबोचा।
3: मानसा का सनसनी हत्याकांड, परविंदर झोटा को मारने वाला अश्विनी अब गिरफ्तार हो चुका है। पंजाब पुलिस ने उसे सलासर राजस्थान से धर पकड़ा है, उसे अब पंजाब लाया गया है। आपको ये भी बता दें कि लगातार झोटा का परिवार है वो मांग कर रहा है कि इसमें सीबीआई होना चाहिए जांच। इसके अलावा उनका कहना है कि यहां पर डीजीपी पंजाब का इस्तीफा मांग लेना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, उनकी मांग है कि पोस्टमार्टम है वो पीजीआई के डॉक्टर से करवाना चाहिए।
4: परविंदर सिंह की हत्या के बाद उनके घर पर भी भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा है और न्याय की मांग कर रहा है। कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने उनके परिवार से मुलाकात की और पूरा साथ देने का भरोसा दिलाया।
6: एक ऐसी मुहिम जिरा ना युद्ध नशा विरुद्ध सी, जेड़ा वखावा ता कीता और करोड़ा रुपया लोगों का खर्च कीता, लेकिन मैं समझना कि एदू महाड़ी मुहिम ते जान बुझ के लोगों नू जेड़ा बेवकूफ बनाया पंजाब सरकार ने, कुछ हो नहीं सकता। पंजाब दी पुलिस दी, पंजाब दे मुख्यमंत्री दी और पंजाब दे सरकार दी पूर्ण करड़े शब्द च निंदा कर दें।
4: जिस हमले में परविंदर सिंह झोटा की मौत हुई, उस हमले में चार और लोग भी घायल हुए, जिनका हालचाल लेने के लिए बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू अस्पताल पहुंचे और मान सरकार पर कई सवाल खड़े किए।
6: जाना जा रही हां, वो झोटे अर्गा था यार, अज एक इन्होंने ना निशान मिटाने की कोशिश की, झोटा नहीं मारिया। जेड़ा भी नशे के खिलाफ, जेड़ा भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाऊ।
4: कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं, अकाली दल ने भी कई सवाल खड़े किए। पंजाब सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश थी।
7: मैं सरकार कहना चाहना कि कितना नुकसान तुसी पंजाब दा कर, जे नहीं परफॉर्म कर सकते छड के पासे होवो, पंजाब दे उत्ते तुहानू तरस करना चाहिए।
8: मानसा की घटना हुई है, सबसे पहले मैं उस घटना की निंदा करता हूं, और दूसरा उनका जो जिस आदमी ने मर्डर किया है, कातिल है जो, उसका और जिसका कत्ल हुआ है, दोनों का पुराना आपसी रंजस जो चल रही थी, उनका आपसी पुराना लड़ाई झगड़ा चल रहा था, पर लेकिन ये बहुत ही दुखदायी घटना है।
4: इस बीच 2023 का एक वीडियो सामने आया है। आरोपी केमिस्ट के गले में जूते की माला डालकर परविंदर सिंह ने उसे पुलिस के हवाले किया था। केमिस्ट पर ड्रग्स बेचने का आरोप था। मनसा से अमरजीत और चंडीगढ़ से कमलजीत के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब बिहार से एक बेहद दुखद खबर, जहां ये देखा गया कि एक सरकारी बोट के पलटने से 14 बच्चों की मौत हो गई। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस बोट में एक सुराख था, सरकारी बोट थी, आखिर लापरवाही किसकी है, ये सवाल अब उठ रहे हैं।

0: बिहार के राघोपुर में नदी में पलटी नाव। गंगा में समा गई 14 मासूम जिंदगियां। जर्जर नाव को लेकर उठे कई सवाल। ये तस्वीरें हाजीपुर के राघोपुर के रामपुर श्यामचंद गांव की है, जहां 14 बच्चों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और हादसे में अपने बच्चों को खोने वाले परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल नाव पर सवार लोग शाद भोज में शामिल होकर अपने गांव लौट रहे थे, उसी दौरान गंगा नदी पार करते वक्त नाव पलट गई और 14 मासूम जिंदगियां गंगा नदी में समा गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त नाव में करीब 20 से 25 लोग सवार थे, जिसमें 10 से 14 साल के बच्चे भी थे और शाद भोज खाकर गांव की तरफ लौट रहे थे और नाव पलटने से 14 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जहां एक तरफ नाव पलटने के बाद गांव में मातरम पसरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नाव की जर्जर हालत को लेकर लापरवाही के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जर्जर हालत में नाव को चलाने से क्यों नहीं रोका गया?
1: वही नाव है जो दुर्घटना ग्रस्त हुआ है कल रात में, और थोड़ी देर पहले इसको SDRF की टीम ने पानी से जो है वो निकाल भी लिया है। और आप इस नाव की स्थिति देखिए, नाव देखने से ही जर्जर स्थिति में नजर आ रहा है। और स्थानीय लोगों का दावा है, स्थानीय नेताओं का दावा है, जो ये एक सरकारी नाव है और उसमें आप देखिए इसमें बैठने की ज्यादा जो है वो लोगों की जगह नहीं है, 8-10 लोग जो है वो मुश्किल से बैठ सकते हैं। अब दूसरी बात देखिए, ये नाव किस हालत में जर्जर है, ये आप देखिए, इस नाव में इतना बड़ा छेद आप देखिए, आप ये देख सकते हैं नाव में इतना बड़ा जो है दरार आप नजर आ रहा है। और क्योंकि जब ओवरलोडिंग हुई होगी तो जाहिर सी बात है नाव का ये हिस्सा जो है जो टूटा हुआ है, जो इतना बड़ा छेद है, तो पानी इसके जरिए भी नाव के अंदर प्रवेश किया और उसके वजह से जो है अचानक स्थिति जो है वो काफी खराब हो गई। और जब नाव के अंदर पानी भरा होगा तो जाहिर सी बात है छोटे बच्चे थे 10-14 साल के, तो वहां पर एक तरीके से कहे तो हड़बड़ी की स्थिति हो गई होगी, इधर उधर बच्चे भागने लगे होंगे और उसी दौरान उस आपाधापी में ये नाव पलट गई।
2: तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: जिस वक्त सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के हिंगोली में अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल थे, उस वक्त सीजेपी के बाकी के नेता दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में धरने की परमिशन मांगने पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस को अपनी चिट्ठी सौंप दी, लेकिन चिट्ठी सौंपने के बाद जब वो बाहर आए तो प्रशासन को सीधे सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया।
1: 24 घंटा टाइम ले लीजिए, लेकिन बॉल इज इन योर कोर्ट। आप बताइए किस दिन लोग डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर आ सकते हैं। फुल कोऑपरेशन के साथ पीसफुल तरीके से लोग गैदर होंगे एंड प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट तो जरूर होगा।
0: लेकिन अब मसला बदल गया है। सीजेपी जंतर मंत्र पर प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन जंतर मंत्र को डिनोटिफाई कर दिया गया, मतलब अब जंतर मंत्र प्रदर्शन स्थल नहीं रहा, मतलब सीजेपी वाले जंतर मंत्र पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए 3 जगह निर्धारित कर दी हैं। ये जगह हैं रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड और पुराड़ी मैदान। अब मसला ये है कि इन तीनों ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल तो बना दिया गया, मगर 2 मैदानों में कार्यक्रम चल रहा है। रामलीला मैदान में रामलीला की तैयारी चल रही है, सीबीडी ग्राउंड में रामलीला की तैयारी हो रही है। बचा बुराड़ी का मैदान, जहां बारिश के बाद फिलहाल कहीं कहीं पानी भरा हुआ है। अब सवाल ये है कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कहां करेंगे। आज तक ब्यूरो।
2: साथियों, आप सभी जानते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं, करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के इस दौर में भारत में 500 मिलियन से अधिक यूट्यूब यूजर्स हैं, 500 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। हमारे यहां अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में आज फैसला आने वाला है। दरअसल ये मामला तब का है जब सौरभ राजपूत की पत्नी, जिससे उसने पहले 2016 में प्रेम विवाह किया था, और उसके साथी साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की, उसके शव के चार टुकड़े किए, उसे एक नीले ड्रम में सीमेंट के साथ डालकर जमा दिया। उसके बाद वो हिमाचल चले गए और हिमाचल से जब लौटे तो उनके इस कारनामे का पर्दाफाश हुआ। आज सुनवाई के दौरान उनके मुद्दे उनका जो मामला है उसमें फैसला आने वाला है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: दिल्ली के जंतर मंतर पर अब धरना नहीं, रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन मुश्किल। अगले ढाई महीने तक बुकिंग फुल और फीस भी लाखों पार। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर अब इतिहास बन गया है, क्योंकि जंतर मंतर को डी नोटिफाई कर दिया गया है, मतलब अब जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल नहीं रहा। सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए तीन जगह निर्धारित कर दी हैं। ये जगह हैं रामलीला मैदान,
1: सीबीडी ग्राउंड,
0: पुरानी मैदान। अब मसला यह है कि इन तीनों ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल तो बना दिया गया, मगर दो मैदानों में कार्यक्रम चल रहा है। रामलीला मैदान और सीबीडी ग्राउंड में भी रामलीला की तैयारी हो रही है। बचा भुराड़ी का मैदान, वहाँ बारिश के बाद फिलहाल कहीं कहीं पानी भरा हुआ है।
2: हम जिस रामलीला मैदान पर हैं, इस समय नवरात्रि के चलते आप देखेंगे कि यहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है। इस तरफ स्टेज लगा हुआ है और ठीक इसके पीछे यहाँ पर देखिए सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही मेला लगा हुआ है। कारोबार मेले का और लोगों के बचपन की यादें ताजा हो जाती है। इस रामलीला मैदान का अपना बहुत इतिहास रहा है। इस रामलीला मैदान ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, लेकिन अब इसे एक आंदोलन धरना प्रदर्शन स्थल घोषित किए जाने को लेकर के व्यापारी चिंता जता रहे हैं, स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है और ऊपर से जंतर मंतर को जिसकी एक अपनी पहचान रही है कि वहां पर धरने प्रदर्शन होते थे जिसकी वजह से सरकार सत्ता तक आवाज पहुंचती थी, उसको लेकर के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते आवाज उठाते हैं, वो भी नाराज है।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार।
2: लप लप लप।

जबरदस्त हंगामा बरपा है। ये है कांग्रेस का युद्ध अपने ही विरुद्ध। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं। कोई किसी को धक्का मार रहा है, कोई किसी पर जूता चला रहा है। मारपीट का फुल माहौल है। बता दें कि हाथापाई यूपी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय के समर्थक और कांग्रेस की पार्षद ममता चौधरी के समर्थकों के बीच हो रही है। दरअसल यहां पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष

0: जबरदस्त हंगामा बरपा है। ये है कांग्रेस का युद्ध अपने ही विरुद्ध। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं। कोई किसी को धक्का मार रहा है, कोई किसी पर जूता चला रहा है। मारपीट का फुल माहौल है। बता दें कि हाथापाई यूपी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय के समर्थक और कांग्रेस की पार्षद ममता चौधरी के समर्थकों के बीच हो रही है। दरअसल यहां पर यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा को आना था, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष आए उसके पहले पूर्व अध्यक्ष अजय राय अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंच गए। बताया जा रहा है कि अजय राय के समर्थकों ने कहा कि अध्यक्ष जी के लिए रास्ता दीजिए, जिस पर पार्षद ममता चौधरी ने पूछ लिया कौन अध्यक्ष। बस इसी बात पर समर्थकों में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि ममता चौधरी पर जूता फेंका गया है। इस बवाल के बाद कांग्रेस के सांसद अजय राय से पूछ रहे हैं कि हुआ क्या। लेकिन जिन लोगों ने ये बवाल देखा, सुनिए वो क्या कह रहे हैं।
1: कुछ दो तीन लड़के तो थे भैया, लेकिन अभी हम आपके ही कैमरे से उनको छानेंगे, देखेंगे वो कौन लोग थे। जहां तक है वो भाजपा के ही लोग थे, अजय राय जी के साथ किसी तरह अंदर आ गए थे और अजय राय जी का भी नाम खराब कर रहे हैं।
2: इधर महिलाएं सब लेके दोनों लोग के स्वागत में खड़ी थी, दोनों लोग में। तो उनके आदमी कहे कि आप लोग थोड़ा रास्ता जीत दीजिए, तो इसी पे ममता जी कही कि रास्ता दिए तो हैं, जाएं ना, हम लोग कहां चले जाएं। और कुछ एक शब्द और क्या बोली हमें नहीं ध्यान है। तो उस पर अध्यक्ष जी कहे कि ए ममता पार्षद, होश में बात करिए।
0: 27 में यूपी में चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश के नेता अगर खुद में ही लड़ते रहेंगे तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।

देश के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट में तेज ग्रोथ का द्वार कुछ थमता हुआ दिख रहा है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि 2026 के पहले 9 महीनों में 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री स्थिर रही है, लेकिन मार्केट में इन्वेंट्री का दबाव बढ़ रहा है और NCR में बिक्री में बड़ी गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी सितंबर में करीब 2.5 लाख घर बिके, जो पिछले साल के बराबर है। वहीं इन 9 महीनों में करीब 2,80,000 नए घर लॉन्च हुए। बिक्री के मुकाबले ज्यादा लॉन्च से मौजूदा घरों को बेचने में 6.1 तिमाही लगेंगी, यानी नए घरों की सप्लाई बिक्री से ज्यादा बनी हुई है और घरों को बिकने में पहले से ज्यादा समय लग रहा है। NCR मार्केट में तेज ग्रोथ के बाद बिक्री में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक NCR में घरों की बिक्री 11% घटी है, जहां जनवरी से सितंबर के बीच करीब 35,500 घर बिके। इस दौरान 5 से 10 करोड़ रुपए वाले प्रीमियम सेगमेंट में घरों की बिक्री 39% घटी है और NCR की अनसोल्ड इन्वेंट्री में गुरुग्राम की हिस्सेदारी 57% हो गई है। दूसरी तरफ मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े बाजारों में बिक्री बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में बिक्री 1% बढ़ी है, वहीं बेंगलुरु में 5% और कोलकाता में 4% की बढ़ोतरी हुई है। इस पूरी तस्वीर में सबसे बड़ा बदलाव अफोर्डेबल हाउसिंग में दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री 14% घटी है, वहीं 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के घरों की बिक्री भी 5.9% घटी है, जबकि 1 से 2 करोड़ रुपए के घरों की बिक्री 6.8% और 2 से 5 करोड़ रुपए के घरों की बिक्री 19.4% बढ़ी है। यानी खरीदारों का रुझान सस्ते से हटकर महंगे घरों की तरफ बढ़ रहा है। कीमतों की बात करें तो NCR और बेंगलुरु को छोड़कर ज्यादातर शहरों में सालाना बढ़ोतरी 3 से 6% के बीच रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम में 4%, नोएडा में 7%, ग्रेटर नोएडा में 11% और गाजियाबाद में 14% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी रियल एस्टेट में फिलहाल दाम गिरने की नहीं, बिक्री की रफ्तार थमने और इन्वेंट्री के दबाव बढ़ने की कहानी बन गया है। आज तक ब्यूरो।

0: पंजाब के मानसा में एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट के मर्डर पर फूटा भीड़ का आक्रोश, आरोपी के घर पर हमला, तोड़फोड़, आगजनी, एक्शन में आई सरकार, शूटर की गिरफ्तारी के बाद चला बुलडोजर। राहुल के साथ मीडिया के सामने आए एनएसयूआई के प्रदर्शनकारी छात्र, दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा हमारे साथ मारपीट और गाली गलौज हुई, राहुल बोले हर ज्यादती का हिसाब होगा। रोक और हिदायत के बावजूद जंतर मंतर पर जबरन घुसने के मामले में सीजेपी के सौरभ दास और रंका को 5 दिनों की जेल, दिल्ली की कोर्ट ने भेजा तिहाड़, राहुल ने किया सीजेपी का समर्थन। खोखली नाव में सवार होने से बिहार के हाजीपुर में 14 बच्चों की जान गई, आज तक की पड़ताल में खुलासा, सुराख वाली बोट के गंगा में डूबने से हुई मौत, सभी बच्चे एक ही गांव के। प्रेमी साहिल की मदद से पति का मर्डर कर नीले ड्रम में शव के टुकड़े डालने वाले मुस्कान की सजा पर शाम 4 बजे आएगा फैसला, मेरठ जिला अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया है। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जेएनयू से, बर्खास्त प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है, उनको नोटिस जारी किया गया है। अंगोमचा बिमोल को जेएनयू यौन शोषण केस मामले में पुलिस ने नोटिस थमाया है और उनको जवाब देना होगा। 11 महिला छात्राओं के द्वारा यौन उत्पीड़न, अश्लील सवाल पूछने, आपत्तिजनक टिप्पणियां करने, बिना सहमति के छूने जैसे गंभीर आरोप उन पर लगे और उसके बाद जेएनयू की एक इंटरनल कमेटी बैठी, आंतरिक शिकायत कमेटी, और उसमें आरोप सही पाया गया और अब बसंत कुंज थाने में इनको पेश होने का निर्देश दिया गया। 9 अक्टूबर को ही प्रोफेसर को पद से बर्खास्त कर दिया गया था। कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकाईजाम को अब नोटिस दिया गया और उनको जवाब देना है। हालांकि मीडिया पर आकर वो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन 11 छात्राओं के आरोपों को भी वो एक तरीके से एक साजिश के तहत आरोप बता रहे हैं, लेकिन अब पुलिस के सामने उनको अपनी बात रखनी होगी क्योंकि कमिटी ने तो उनको आरोपी पाया है। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करेंगे 100 शहर 100 खबर की। पंजाब के मानसा में एंट्री ड्रग एक्टिविस्ट परमिंदर झूठा की हत्या के बाद से तनाव, हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर निहंग सिखों का जमकर बवाल, घर में तोड़फोड़ की गई, सामान बाहर फेंका गया, दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। परमिंदर झूठा की हत्या के मुख्य आरोपी अश्विनी के खिलाफ पंजाब की भगवंत मान सरकार का एक्शन, बुलडोजर कार्रवाई हुई, जैसे ही प्रशासन ने दुकान पर बुलडोजर चलाया तुरंत बाद प्रदर्शनकारियों ने केमिस्ट शॉप को आग लगा दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया, हालात ताकि और ना बिगड़े। सीसी गणेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में एनएसयूआई कार्यकर्ता की पिटाई का मामला, राहुल गांधी ने उठाया कार्यकर्ताओं की पुलिस की पुलिस हिरासत के दौरान मारपीट का आरोप। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये हिंदुस्तान के बच्चे, इनकी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने छात्रों से वीडियो सुरक्षित रखने को कहा और कहा कि सबूतों का इस्तेमाल करेंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक सबको सजा दिलाएंगे। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बढ़ता जा रहा विरोध का दायरा, अब एसएफआई और डीवाईएफआई ने भी खोला मोर्चा, जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल बनाए रखने की मांग। दोनों संगठनों फिरोज शाह रोड पर जंतर मंतर तक संयुक्त विरोध मार्च निकाला, लेकिन सभी को फिरोज शाह रोड पर ही रोक दिया गया। जंतर मंतर पर जबरन घुसने पर एक्शन, सीजेपी नेता आशुतोष रंका और सौरभ दास को 5 दिनों की अब जेल में भेज दिया गया। बेल बॉन्ड तोड़ने के जुर्म में कोर्ट ने 5 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में इन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया। मंगलवार सुबह जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पकड़ा था। तीनों को जंतर मंतर में बिना अनुमति प्रवेश करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। वहां पर बैरिकेडिंग और सभी गेट बंद होने के बावजूद गेट के ऊपर चढ़कर पहुंचे थे और बेल बॉन्ड तोड़ा था। अजय किशन दे से बॉन्ड भरवाकर पुलिस ने छोड़ा और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते उन्होंने कहा कि ये तो तानाशाही है। अजय किशन दे ने सरकार पर बोला हमला, कहा कि जनता अब डरने वाली नहीं, तिरंगा लहराना कोई जुर्म नहीं। आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी मामले में एफआईआर, 416 करोड़ रुपए के खर्च, निर्माण खर्च का हिसाब नहीं मिलने का गंभीर आरोप। ईडी की ओर से भेजी गई जानकारी के आधार पर दर्ज हुई एफआईआर, 26 किसानों की जमीन और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। यूपी में चुनावी टिकट की खरीद फरोख पर सीबीआई जांच से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग का रुख करने की सलाह। कोर्ट ने कहा सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जांच की मांग उचित नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इसी मामले में दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर चुका है। वैशाली नाव हादसे को लेकर मृतकों के परिवार वालों के प्रति उनमें असंतोष है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदना व्यक्त की है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बिहार के वैशाली में गंगा में पलटी नाव और हादसे में 14 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर है। नाव हादसे में मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं और पुलिस के मुताबिक शाद का भोज खाकर लौट रहे थे और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी भी। हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा, भूडा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, डीएम का भी किया घेराव, पुलिस ने समझाकर करवाया शांत, एक पुल तक नहीं बना पाए। नाव हादसे में मरने वाले बच्चों की उम्र 6 से 15 साल के बीच, परिवार और पूरे गांव में मातम। मोदी ने भी हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिवार वालों के 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता का ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। वैशाली नाव हादसे पर सीएम सम्राट ने जताया दुख, 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान, घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश। राघोपुर नाव हादसे पर तेजस्वी यादव ने जताया दुख, बोले कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में घटना बेहद दुखद हुई, मैं अभी दिल्ली में हूं, आज लौटूंगा पटना। हादसे पर चिराग पासवान ने गहरा दुख, बोले कि मासूम बच्चों की मौत की खबर हृदय विदारक, शोकाकुल परिवार वालों के प्रति संवेदना है। पूर्वी दिल्ली में जाफराबाद में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग से हड़कंप, लोगों ने जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल पर खिड़की से ही छलांग लगा दी। समय रहते आग पर काबू पाया गया, टला बड़ा हादसा, लोगों को जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर कूदना पड़ा। फिलहाल आग लगने के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं है, मामले के में संबंधित विभाग के अधिकारियों और जानकारों का इंतजार। स्थानीय लोगों ने भी जान बचाने में मदद की और हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हादसे के बाद फिर बिना फायर एनओसी के रेस्टोरेंट चल रहा था, फिर सवाल, उधम फिश पॉइंट के पास में फायर एनओसी थी या नहीं, इसकी अभी पुष्टि होना बाकी है। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में हाईराइज बिल्डिंग में भीषण आग, हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 6 लोग अस्पताल में भर्ती। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक धुएं के कारण दम घुटने से 2 महिलाओं की मौत होने की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगी सटीक जानकारी। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, बड़ी क्रेन की मदद से 4 लोगों को निकाला गया बाहर। गोपालगंज में गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग, 17 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर, गोरखपुर रेफर किए गए। गुवाहाटी से बैग स्नैचिंग का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बदमाशों ने महिला को 100 मीटर तक घसीटा। कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड मामले में नया खुलासा, श्रद्धा दुबे की 50,000 के इनामी ऋषभ राय के साथ फोटो आई सामने। जेल में बंद रहते हुए ऋषभ राय ने रंगदारी वसूली के लिए कई बार शिव शर्मा को धमकाया, ऋषभ राय जेल से देता था धमकी, श्रद्धा करती थी रंगदारी और वसूली। पुलिस ने श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि, आदिल पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया और पुलिस की 2 टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही। मृतक शिव शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 10 गंभीर इंटरनल चोट मिली, मौत के कारण शॉक और हेमरेज बताया गया जो कि इन्हीं चोटों के कारण हुआ। शिवा शर्मा की मां ने पहली हत्या की आशंका जताई थी। उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग ने साल 2014 के भर्ती घोटाले में बड़ी गिरफ्तारी की, तत्कालीन प्रमुख सचिव योगेश कुमार को अरेस्ट किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा विजय गाथा का विमोचन लखनऊ में लॉन्चिंग इवेंट में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम योगी ने सभा को किया संबोधित, बोले विलक्षण लोग ही अयोध्या का महत्व समझते हैं, श्री राम ने कहा था मेरे लिए अयोध्या ही सब कुछ। सीएम योगी ने शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी पर राज्य के सभी लोगों को शुभकामनाएं दे रही कि जब गांव की नारी समृद्ध होगी तभी यूपी सही मायनों में समृद्ध सशक्त बनेगा। प्रयागराज में अधिक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर 602 फ्लैट बनाए जाएंगे, मुख्यमंत्री योगी करेंगे शिलान्यास। आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे, संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं स्नातक महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी करेंगे बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन, कानून व्यवस्था और एयर शो की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। यूपी में समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक आज थामेंगे बीजेपी के दामन, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने बीजेपी में शामिल होने से पहले गोसाईगंज विधानसभा सीट को लेकर अपनी स्थिति की स्पष्ट कहा कि पार्टी के फैसले का स्वागत करेंगे। एसआईआर को लेकर एआईएमएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के तरीके को चुनौती दी। कानपुर देहात में सांड के हमले में बुजुर्ग की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। गुजरात में पंचमहल में तेंदुए का आतंक, घर के बाहर बंधे हुए पशु का शिकार किया, पूरी घटना सीसीटीवी में दिख गई। यूपी के प्रतापगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला, विशाल का अजगर ने नील गाय के बच्चे को निगला, घटना के बाद हड़कंप। कोची में ट्रस्ट की नर्सरी के पास में एक आग लगाने की कोशिश के आरोप में एक शख्स को पकड़ा गया, पेट्रोल कैन से आग लगाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इसमें आतंकी साजिश का शक पुलिस को है और आरोपी को किसी बड़े ग्रुप का ये हिस्सा हो सकता है और विदेशी कनेक्शंस भी इसके खोजे जा रहे हैं। देहरादून के विकास नगर में बेकाबू ट्रक साइबर कैफे में घुसा, भागकर लोगों ने बचाई जान, बड़ा हादसा भी टला। इंदौर के कैफे के बाहर दो पक्षों में जमकर मारपीट, बीच सड़क पर लात घुसे चले, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चोरी के टेम्पो ट्रैवलर का इंदौर में आतंक, कई वाहनों को मारी टक्कर, ऑटो चालक और आरोपी घायल। गुरुग्राम के फरूखनगर में बस की टक्कर में ट्रैक्टर के दो टुकड़े, ड्राइवर घायल, घटना के वक्त बस में 35 से 40 सवारियां मौजूद थी। नवादा में बाइक सवारों ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, स्टंट और रील के चक्कर में कई लोगों की जान खतरे में डाली। बोगा में स्कूल में छात्रों के विवाद ने पकड़ा तूल, दो परिवारों के बीच में जमकर मारपीट, प्रिंसिपल को भागकर बचानी पड़ी जान। पटना में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूटपाट, हथियार के नोक पर वारदात को दिया अंजाम। मेरठ के अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा, परिवार वालों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। राजस्थान में दीपावली से पहले बड़ी साजिश नाकाम, श्रीगंगानगर बॉर्डर पर ड्रोन से गिराए गए हथियार और विस्फोटक बरामद, दो गिरफ्तार। नोएडा की पॉश सोसाइटी में 1.5 करोड़ की चोरी, दो फ्लैटों के लॉक काटकर सोना, 2 किलो चांदी और कैश लेकर चोर फरार, वारदात सीसीटीवी में कैद। अलवर में एटीएम की लूट की वारदात, रस्से से बांधकर उखाड़ने की कोशिश नाकाम, बदमाशों ने कैमरे पर काला स्प्रे लगा दिया। जयपुर में अवैध ब्लास्टिंग के दौरान बड़ा हादसा, महेश मास पहाड़ी ढही, मलबे में दो मजदूर दबे, रेस्क्यू जारी। मेरठ में नीला ड्रम कांड में आज सजा का होगा ऐलान और बेटी से मिलने को बेचैन दिखी मुस्कान। झांसी में कार की टक्कर के बाद सड़क पर बरसी बेल्ट, कई लोगों ने युवक को घेर कर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। बेगूसराय में महिला डॉक्टर पर एसिड अटैक, पड़ोसी दुकानदार गिरफ्तार, महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल। जम्मू कश्मीर में गुरेज में कई इलाकों में ताजा बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत। श्रीनगर में अधिकतम तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, लोगों से सतर्क रहने की अपील, आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी की संभावना। गुरेज में पीर बाबा इलाके में बर्फबारी की वजह से दमकल विभाग ने उनकी गाड़ी सड़क पर फिसल गई, मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जम्मू कश्मीर की गुरेज में पुलिस ने 4 बाइकर्स का रेस्क्यू किया, सूचना मिलने पर बचाव दल ने केरल के बाइकर्स को सुरक्षित निकाला। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ गुलमर्ग, पर्यटकों ने जमकर उठाया लुत्फ। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में नवरात्रि के चौथे दिन मां चंद्रघंटा का भव्य श्रृंगार, आरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। हैदराबाद में नवरात्र के चौथे दिन चार मीनार स्थित भाग्य लक्ष्मी मंदिर में महाआरती का आयोजन, दर्शनों के लिए लंबी कतार। पूरी में नवरात्र के चौथे दिन भगवान जगन्नाथ की उतारी गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालु में विशेष उत्साह दिखा, पूजा पंडालों में मां दुर्गा के दर्शनों के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। हावड़ा में सहयात्री क्लब ने तैयार किया भव्य दुर्गा पूजा पंडाल, केदारनाथ धाम की थीम पर तैयार है ये पंडाल। अयोध्या में इस साल भी दीपोत्सव पर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, इस साल 30 लाख दिए जलाने की योजना, 35,000 स्वयंसेवक सजाएंगे राम की पैड़ी। आगामी त्योहारों को लेकर यूपी पुलिस सतर्क है, लखनऊ जोन के एडीजी प्रवीण कुमार ने अयोध्या में तैयारियों की समीक्षा की, अधिकारियों को निर्देश भी। असम के नाहरकटिया और आसपास के इलाकों में युवाओं को बहुउद्देशीय खेल परिसर की सौगात, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने उद्घाटन किया। इंदौर में भारत वेस्ट इंडीज टी20 मैच के बाद नगर निगम ने सफाई अभियान चला, 3 दिनों की सफाई में निकले हुए कचरे को रिसाइकल किया गया। आज खेला जाएगा भारत वेस्ट इंडीज के बीच में 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला और इतिहास रचने के लिए उतरेंगे अर्शदीप सिंह, हैदराबाद में बन सकता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिल्म आज का महिषासुर का फर्स्ट लुक हुआ जारी और टेरेंस लुइस के साथ पद्मिनी कोल्हापुरे, चंदन रॉय और आयशा इमान नजर आएंगे। फिल्म खोसला का घोसला 2 की नई रिलीज डेट सामने आई, 5 मार्च को अगले साल रिलीज होगी। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म उड़ता तीर का दूसरा ट्रेलर रिलीज, 23 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। हनुमान अंश पर पवन पुत्र की कृपा बरकरार, 68वें दिन 337 करोड़ से ज्यादा की कमाई। अजय देवगन की दृश्यम 3 ने रचा इतिहास, 12 दिनों में 500 करोड़ के पार, बनी 2026 की दूसरी बड़ी फिल्म।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: और अब अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर करोड़पति कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में शिवा शर्मा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया वो चौंकाने वाला है, वो बहुत चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। दरअसल सामने आया कि कारोबारी के शरीर पर 10 गंभीर चोट के निशान मिले और सभी चोट मौत से पहले के बताए गए हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या शिवा शर्मा की हत्या की गई थी और फिर लाश को फेंका गया था। पुलिस शिवा की मां की शिकायत पर अब जांच में जुटी है, क्योंकि शरीर पर 10 गंभीर चोट के निशान मिले हैं और ये सब इंटरनल चोट है, आंतरिक चोटें बताई गई हैं और भीतर फिर रक्तस्राव भी है और उसकी वजह से उनकी मौत हुई है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस एंगल से भी कर रही है कि मर्डर क्या पहले हुआ और उसके बाद उनके शव को फेंका गया और बाद में उसको एक एक्सीडेंट दिखाने का प्रयास हुआ। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: How's the hostel? Settled?
4: Yes, ma, it's really nice.
3: कोई आ रहा है क्या?
5: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
3: मयंक, for real?
5: One carat for my one true love. Natural diamond real love solitaires to reignite your new season of love.
6: SBI Celebrations Unlimited इस festive season को बनाए special car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो तुम ठुमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?
7: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जी तू सारा।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
12: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
13: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
14: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
15: I love it, absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
16: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए?
15: क्या?
16: इनकी राय।
17: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
18: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
19: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
18: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी हिंट एक हिंट तो देते
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
3: भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आते आते बहुमत लाते लाते 50-60 साल लग गए, फिर क्या कहें हम। ये अजीब सी टिप्पणी है साहब कि कांग्रेस कई राज्यों में इतने सालों से, भाई आप तो देश में कितने सालों तक नहीं थे, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। फिर कहते हैं 29 भी हम जीतेंगे, क्यों इतना भरोसा है ज्ञानेश पर, और ज्ञानेश रहेगा 29 तक। ये चुनाव आयोग जिस तरह से चल रहा है हम चलने देंगे 29 तक, कि इतना भरोसा हमारी बात साबित करते हैं ये बात कहकर, तो वो कि 29 में भी हम जीत रहे हैं। कैसे जीते रहो साहब, सड़क पे तो निकल कर देखो, गुस्सा तो देखो लोगों का, आकर हटाओ पुलिस और आकर देखो गुस्सा।
4: देखिए गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं, मैं उसको ज्यादा नहीं, लेकिन हम लोग जो आपने पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया, चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक खिलौना बनकर रह गया, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है और हम लोग लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे और ये काम नहीं होने देंगे। और ये बार बार घुसपैठियों का नाम लेकर के गुमराह करने की कोशिश ना करें। 13 करोड़ लोगों के वोट काटे तो 13 करोड़ घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठियों को कितनों को आपने चिन्हित करा और कितनों को डिपोर्ट करा उसकी सूची देश को उपलब्ध कराई है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: SBI Celebrations Unlimited. इस फेस्टिव सीजन को बनाए स्पेशल कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पे स्पेशल ऑफर्स के साथ।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
8: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
9: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
10: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
9: क्या?
10: इनकी राय।
11: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: ऐसा ही तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए।

0: जम्मू में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूबे नजर आए। आरएसपुरा के धान के खेतों में बारिश से फसल को नुकसान पहुंचा है। कटाई से पहले फसल बर्बाद होने से किसान परेशान हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पंजाब के फाजिल्का में अनाज मंडी में पानी भरने से धान की फसल भीग गई। पानी के बीच अपनी उपज बचाने के लिए किसान मशक्कत करते नजर आए। दिल्ली के किशनगढ़ में रामलीला मैदान में पानी भरने से मंच और कलाकारों का सामान भीग गया। वहीं नोएडा के सेक्टर 95 अंडरपास में पानी में फंसी कार से लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकलना पड़ा। सभी लोग सुरक्षित बताए गए। हिमाचल में बारिश के बाद मौसम साफ होने के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। बारिश ने किसानों की फसल से लेकर शहरों की व्यवस्थाओं तक को प्रभावित किया है। अब नजरें राहत मुआवजे और जल निकासी के इंतजामों पर हैं। आज तक ब्यूरो।
1: दिल्ली पुलिस तुम लट्ठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
2: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
3: डोंट ट्विस्ट।
1: क्या हुआ?
3: डोंट ट्विस्ट लप से।
1: हर आदमी में
3: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखिए।
2: कितना घटिया था यार।
3: लप लप लप।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार।
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट के मर्डर पर फूटा भीड़ का आक्रोश, आरोपी के घर पर हमला, तोड़फोड़ और आगजनी, एक्शन में आई सरकार, शूटर की गिरफ्तारी के बाद चला बुलडोजर। राहुल के साथ मीडिया के सामने आए एनएसयूआई के प्रदर्शनकारी छात्र, दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा हमारे साथ मारपीट और गाली गलौज हुई, राहुल बोले हर ज्यादती का हिसाब होगा। रोक और हिदायत के बावजूद जंतर मंतर पर जबरन घुसने के मामले में सीजेपी के सौरव दास और रांका को 5 दिन की जेल, दिल्ली की कोर्ट ने भेजा तिहाड़, राहुल ने किया सीजेपी का समर्थन। खोखली नाव में सवार होने से बिहार के हाजीपुर में गई 14 बच्चों की जान, आज तक की पड़ताल में खुलासा, सुराख वाली बोट के गंगा में डूबने से हुई मौत, सभी एक ही गांव के बच्चे। प्रेमी साहिल की मदद से पति का मर्डर कर नीले ड्रम में शव के टुकड़े डालने वाली मुस्कान की सजा पर शाम 4 बजे आएगा फैसला, मेरठ जिला अदालत ने दोनों को ठहराया है दोषी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद भारत।
2: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन सीईसी के मुद्दे पर चल रहा था, उसकी तस्वीरों के साथ हम शुरुआत करते हैं, जहां पर पुलिस यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को बस में भर के ले जा रही है। लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध, उसी कड़ी में यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान एक बस में उन सभी प्रदर्शनकारियों को भरकर ले जाते हुए दिख रहे हैं। अनमोल वाली हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनमोल, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि बस की खिड़कियों से निकल निकल कर छत पर भी जा रहे हैं यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और वहां तिरंगा लहरा रहे हैं। ठीक किस जगह पर यह प्रदर्शन आज शुरू हुआ था, क्या केवल सीसी का मुद्दा या फिर जंतर मंतर के डी नोटिफिकेशन का भी?
3: श्वेता, इस समय मैं दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने के बाहर खड़ा हूं, जहां मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि एक बस तो है जो रवाना कर दी गई है, जिसमें आईवाईसी के कार्यकर्ता जिनको डिटेन किया गया था उनको ले गई है, पर एक जो दूसरी बस है जिसमें ज्यादातर महिला कार्यकर्ता है आईवाईसी की, उनको डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि आज इंडियन यूथ कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई है उनका एक बड़ा विरोध प्रदर्शन था, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर था। दो बड़े मुद्दे थे, एक तो कल जो एनएसयूआई की दो कार्यकर्ताओं के साथ कथित दिल्ली पुलिस द्वारा की गई मारपीट का मामला, और साथ ही जंतर को डीनोटिफाई कर दिया गया है बतौर प्रोटेस्ट साइट। तो इन दो मुद्दों को लेकर जो आईवाईसी के कार्यकर्ता थे यहां अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया, यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास वो पहुंचते हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, यहां दो लेयर की बैरिकेटिंग भी कर रखी थी ताकि जो आईवाईसी के कार्यकर्ता उनको रोका जा सके, पर पहली लेयर की जो बैरिकेटिंग तोड़कर जो आईवाईसी के कार्यकर्ता है अंदर दाखिल हो जाते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर बैठते हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट वो यहां बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। पर बाद में देखा जाता है कि भारी संख्या में, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो महिला प्रदर्शनकारी थे उनको डिटेन करकर यहां पर जो बस है वो ले जा रही है, जो तकरीबन 15 से 20 मिनट श्वेता वो यहां पर बैठते हैं अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। बाद में देखा जाता है कि दिल्ली पुलिस का एक्शन यहां पर शुरू हो जाता है। दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि कैसे अभी भी पीछे आप देख सकते हैं श्वेता मेरे कि भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान है यहां पर तैनात किए गए, ना केवल यहां जंतर मंतर कनॉट प्लेस जो जो इलाके जंतर मंतर के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है, वहां देखा जा रहा है कि भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए, ताकि जो लेफ्ट से जुड़े, जो कांग्रेस से जुड़े, जो अलग अलग छात्र संगठन है या विरोधी विपक्षी दल जो अपना मार्च करने की जंतर मंतर कोशिश कर रहे हैं उनको रोका जा सके। श्वेता,
2: बहुत शुक्रिया अनमोल बाली इस पूरी जानकारी के लिए। तो हम देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को लेकर बस वहां से रवाना हो गई है। रोज जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन सीसी के मुद्दे पर लगातार चल रहा है, और राहुल गांधी भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि वो किसी भी तरीके से सरकार पर से दबाव हटाना नहीं चाहते हैं जब तक कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता है। अब बात हम पंजाब की करते हैं। पंजाब में मानसा, जहां कल एक एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या कर दी गई, हत्याकांड के मुख्य आरोपी को, चूंकि कैमरे में कैद थी उसकी तस्वीर, सीसीटीवी में कैद थी उसकी तस्वीर, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुख्य आरोपी का नाम अश्विनी है, जिसे पुलिस ने राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर मानसा में जबरदस्त गुस्सा है। बीती रात प्रदर्शन के बीच एसएसपी परिजनों से मिलने पहुंचे, लेकिन परिजनों ने साफ कह दिया कि इंसाफ चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद एसएसपी मौके से लौट गए। मानसा में परविंदर झोटा की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।
1: मनसा लाइव मर्डर पर लोगों का फूटा गुस्सा। गुस्साई भीड़ ने आरोपी की दुकान को तोड़ा। भीड़ ने दुकान में तोड़फोड़ के बाद की आगजनी।
4: अब ये आप देखिए, पूरी दुकान तहस नहस हो चुकी है।
1: प्रशासन ने आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर। ये तस्वीरें पंजाब के मनसा की है। जहां नशे के खिलाफ मुहिम चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा और नाराजगी साफ देखी जा सकती है। गुस्साई भीड़ ने आरोपी के मेडिकल शॉप पर हमला कर तोड़फोड़ की। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के बाद भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ की। यही नहीं, दुकान में रखे सामान को भी आग के हवाले कर दिया गया। गुस्साई भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
4: ये एक बड़ा संकेत है कि कानून पे इतना भरोसा नहीं रहा है, लोग अपनी तरफ से ही एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और आप देखें, निहंग है, चाहे हम युवक की बात करें वो है, और ये आग की जो लगते हैं और आसपास की जो एरिया है वो भी आप ये देखिए, धुआं किस तरह से ऊपर उठता हुआ, और यही धुआं है, यही आग है जो कि कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में भी नजर आएगा। यहाँ पे बात आ रही है, क्या इंसाफ मिल पाएगा परविंदर झोटा को, जिन्होंने ये पूरा मुद्दा पिछले 3 सालों से उठाया था। वहां पे हम लगातार बता रहे हैं किस तरह से कानून व्यवस्था को बनाने की कोशिश पंजाब पुलिस की तरफ से, लेकिन यहाँ पे लोगों का रोष, लोगों का गुस्सा वो सड़कों पे फूटा है।
1: जहाँ एक तरफ आरोपी की दुकान पर लोगों का गुस्सा फूटा, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने आरोपी के घर पर भी कार्रवाई की। प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाए गए घर के हिस्से को बुलडोजर से गिराया।
4: परविंदर झोटा एक सोशल एक्टिविस्ट के सनसनीखेज मर्डर के मामले में अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बोल्डर है ये अब आगे मिल रहा है जेसीबी, और ये देखिए लगातार, और एक तंग गली है जिसके बीच में ये एक्शन किया जा रहा है। ये आप देखिएगा, अब आपको यहाँ पे दीवारें टूटती नजर आएंगे और साथ में ये धुआं सा जो उठ रहा है वो कंक्रीट का है। और जाहिर सी बात है, अब जो बड़ा एक्शन जिस तरह से परिवार मांग कर रहा था कि वो चाहते हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी की जाए, उस पे पुलिस पे कार्रवाई की जाए, डीजीपी पंजाब के ऊपर भी कार्रवाई की मांग की गई है। कि उन्होंने कहा है कि किस तरह से पुलिस को पहली बार पहले भी बताया गया लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अब जो एक्शन किया जा रहा है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है, वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है। और एक तरह से बात यही आ रही है कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पहले आप अक्यूज को अरेस्ट कीजिए, उसके ऊपर सजा कीजिए, बुलडोज कीजिए। तो यहां पर एक कोशिश जरूर है कि कहीं ना कहीं ये सब एक्शन करके के परिवार को मनाया जाए।
1: परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद जहां एक तरफ इंसाफ की मांग को लेकर लोगों में गुस्सा दिखा, वहीं दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने एक्शन लेते हुए परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मुख्य आरोपी अश्विनी कुमार को राजस्थान के सारासर से धर दबोचा।
4: मानसा का सनसनी हत्याकांड, परविंदर झोटा को मारने वाला अश्विनी अब गिरफ्तार हो चुका है। पंजाब पुलिस ने उसे सलासर राजस्थान से धर पकड़ा है, उसे अब पंजाब लाया गया है। आपको ये भी बता दें कि लगातार झोटा का परिवार है वो मांग कर रहा है कि इसमें सीबीआई होना चाहिए जांच। इसके अलावा उनका कहना है कि यहां पर डीजीपी पंजाब का इस्तीफा मांग लेना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, उनकी मांग है कि पोस्टमार्टम है वो पीजीआई के डॉक्टर से करवाना चाहिए।
1: कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं, अकाली दल ने भी कई सवाल खड़े किए तो पंजाब सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश थी।
5: मैं सरकार कहना चाहना कि कितना नुकसान पंजाब तक है, जे नहीं परफॉर्म कर सकते छंड के पासे होवो पंजाब के उत्ते तंग तरस करना चाहिए।
6: मानसा की घटना हुई है, सबसे पहले मैं उस घटना की निंदा करता हूं, और दूसरा उनका जो जिसने जिस आदमी ने मर्डर किया है, कातिल है जो, उसका और जिसका कत्ल हुआ है, दोनों का पुराना आपसी रंजिश जो चल रही थी, उनका आपसी पुराना लड़ाई झगड़ा चल रहा था, पर लेकिन ये बहुत ही दुखदायी घटना है।
1: इस बीच 2023 का एक वीडियो सामने आया है। आरोपी केमिस्ट के गले में जूते की माला डालकर परविंदर सिंह ने उसे पुलिस के हवाले किया था। केमिस्ट पर ड्रग्स बेचने का आरोप था। मनसा से अमरजीत और चंडीगढ़ से कमलजीत के साथ आज तक ब्यूरो।
2: एनएसयूआई के प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर हमले के विरोध में आज राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। राहुल गांधी उनके साथ अपने साथ उन छात्रों को लेकर आए जिनका आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की। राहुल गांधी ने कहा कि नौजवानों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है लेकिन उनकी आवाज को दबाने नहीं देंगे। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ज्यादती का हिसाब होगा, राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया।
7: ये हिंदुस्तान है, अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहां कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है, और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए। इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत। कोई डर रहा है?
8: नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
7: खुश हो?
9: यस सर।
7: शाबाश, लव यू, थैंक यू। नहीं नहीं, देखिए देखिए, वो उसके बारे में आप मत घबराइए, वो हमारा काम है, FIR होगा, प्रेशर करना है, क्या करना है, एक प्रोटेस्ट है, एक आवाज है, देश की आवाज है, और उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है।
2: आज बिना इजाजत जंतर मंतर तक जाने वाले CJP प्रवक्ताओं को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सौरव दास और आशुतोष रांका को तिहाड़ जेल भेजा गया, जिसके बाद फाउंडर अभिजीत दिपके ने इसे तिरंगे से जोड़ दिया। विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से इसी तरीके से यह मुद्दा उठाया गया, यहां तक कि राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को तिरंगा वाला ट्विस्ट दिया। पहली बार राहुल गांधी ने CJP के प्रवक्ताओं के लिए पोस्ट लिखा और मामले को तिरंगे से जोड़ा। राहुल गांधी का पोस्ट आते ही CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने उनका शुक्रिया किया। उन्होंने सौरव दास और रांका की जेल जाने को तिरंगा फहराने से जोड़ा।
10: तुम्हें देश में इमरजेंसी लगानी है, इमरजेंसी करनी है तो ऑफिशियली करो ना, ये क्या कायरों की तरह अनऑफिशियली आप इमरजेंसी कर रहे हो, जहां पर आप लोगों को जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो। ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया कि उसके लिए आप लोगों को 5 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हो। इतने बड़े कायर मत बनो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। अगर इमरजेंसी लगानी है तो ऑफिशियली लगाओ, दम है तो। आरोप क्या लगा रहे हो? जो सत्ता में हो इन्वेस्टिगेशन करो, जांच करनी है वो करो, ये आरोप क्या लगा रहे हो तुम लोग? और ये जो लोग है ये सारे के सारे बहुत ही बड़े कायर है, ये पुलिस के पीछे छुप रहे है। कल से सौरभ, आशुतोष और अजिंक्य को इलीगल डिटेंशन में रखा गया था, उनके लॉयर से तक उनको मिलने नहीं दिया गया था, और आज सुबह सौरव और आशुतोष को 5 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। किस चीज के लिए? क्या गुना था उनका? उनका गुना सिर्फ यही था कि वो जंतर मंतर पर गए और उन्होंने वहां पर तिरंगा लहराया।
2: बीजेपी की तरफ से शाजिया इल्मी ने जवाब दिया।
11: एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ CJP यानी कि आम आदमी पार्टी की प्रॉक्सी टीम, दोनों के बीच में जितनी नूरा कश्ती है सब जानते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रोटेस्ट की, आप देखिए राहुल गांधी किस तरह से तिरंगे का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं तिरंगे, और इनको लगता है कि तिरंगे की आड़ में वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाएंगे, संविधान के खिलाफ जाएंगे, बावजूद इसके कि बाकायदा बॉन्ड दी है सौरव दास और ये CJP के जितने भी साथी हैं, उसके बावजूद आप फांद कर दीवारें आप पहुंचेंगे उस साइट पर और बाकायदा तिरंगे की आड़ में आप देश के कानून को तोड़ेंगे, ये बात है ट्रेसपासिंग की है।
2: अब बात बिहार की, जहां राघोपुर में नाव पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ है। राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के पास नाव पलटने से जो हादसा हुआ उसमें 14 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 6 लोगों को अभी अस्पताल में रखा गया है, 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था। हादसे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया
12: कि शायद ग्रामीणों के द्वारा वहां पर मांग की गई थी नाव की, अगर ऐसी मांग की गई थी और नहीं मुहैया कराई गई है तो यकीनन ये बहुत बड़ी लापरवाही है और जो भी दोषी होगा इसको लेकर कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। जानकारी के अभाव में ये घटना घटी हो तो एक विषय पर, अगर प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी गई थी और प्रशासन की लापरवाही से अगर ऐसी घटना घटी है तो यकीनन जो भी दोषी अधिकारी होगा बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को देकर सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
8: हम जो है लागूपुर जाएंगे, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। इस दुख के घड़ी में हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मदद करे।
2: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: यूपी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। SIR और वोट चोरी के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया दावा किया गया है। दावा यही है कि उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। सवाल यही है कि SIR के बाद फर्जी वोटर कहां से आए।
17: देखिए, उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया शुरू हुई, समाजवादी पार्टी के PDA प्रहरी ने लगातार सजगता से SIR पे नजर रखी और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में वोट कटने का काम हुआ, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी थी, भाजपा बेचैन थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान था कि 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट कट गए, चिंतित थे। लेकिन उसके बाद जब फॉर्म 6 और फॉर्म 7 आया तो भाजपा की साजिश, चुनाव आयोग की साजिश के कारण लगातार उत्तर प्रदेश में फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके लगातार वोटर्स को बढ़ाया जा रहा है।
16: समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। दावा यही है कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों के नाम पड़ताल के दौरान मिले हैं। समाजवादी पार्टी के आरोप पर BJP ने पलटवार किया है।
18: देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आता है या चुनाव होता है तो ये लोग अपने हार का कारण पहले ढूंढ लेते हैं कि जब हम हारेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो फिर हारेंगे तो बोल देखें कि हम वोट में गड़बड़ी थी इसलिए हार गए। कभी ABM को बता देते हैं कि जो है ABM के कारण हम हार गए, तो इस तरह से ये अपनी हार का पहले से भूमिका तैयार कर रहे हैं।
16: दरअसल बीते कुछ दिनों से 16 लाख वोटर बहाए जाने के दावे सोशल मीडिया पर किए गए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिडवा सफाई दे चुके हैं। दावा किया है कि फेक वोटरों को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर एक्शन लिया गया है और लिया जाएगा, लेकिन इसे लेकर भ्रामक झूठ भी फैलाया जा रहा है।
19: SIR के बाद हमारे पास कई ज्ञापन आए थे राजनीतिक दलों के, उसमें गलत नाम काटने का नहीं था, किसी समुदाय विशेष का काटने का शिकायत नहीं थी। शिकायत थी डुप्लीकेट नामों की, और जहां जहां डुप्लीकेट पाए गए उनका बकायदा डिलीशन किया गया है। कुछ का जो अब आएगी शिकायत उनके भी जांच होगी, तो ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत और ज्ञापन हमारे पास आया और अनअटेंडेड या बिना इंक्वायरी के हमने रखा है।
20: एक बात तो साफ है, एक तरफ दिल्ली में चुनाव आयोग को लेकर घमासान शुरू हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अब कहीं भी मौका नहीं चूक रहे हैं जहां चुनाव आयोग से सवाल किए जा सके। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
21: बिहार के हाजीपुर में राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के पास गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक कुछ बच्चे भोज में शामिल होकर नाव से लौट रहे थे, तभी नाव नदी में पलट गई। हादसे में 14 लोगों के शव बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है। 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि 3 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। इस हृदय विदारक हादसे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी शोक जताया है। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को राहत बचाव कार्य तेज करने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए इस हादसे की जानकारी मिलते ही तेजस्वी यादव ने वैशाली के जिलाधिकारी से बात की। हादसे में बच्चों की मौत पर उन्होंने दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
3: कुछ बच्चे नाव से भोज खाने के लिए गए थे, वापस लौटते दौरान जो है नाव पलटने से काफी लोगों की जानें गई हैं। लगभग संख्या 30 लोगों की बताई जा रही है, ज्यादातर बच्चे हैं उसमें। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। दुख की घड़ी में हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मदद करें।
21: हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों तक तत्काल राहत पहुंचाने, घायलों को बेहतर इलाज देने और उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ते हैं उनको क्या करना है। आईमाओं को इंडिपेंडेंट छोड़िए, वक्फ बोर्ड पे पॉलिटिक्स मत करिए, वक्फ बोर्ड ने जो काम करा है वो करा है।
1: फिलहाल वक्फ बोर्ड की पहल पर जम्मू कश्मीर में सियासी बहस तेज है। जम्मू कश्मीर से मीर फरीद आज तक।
2: अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में भारत रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का विश्वास देता है। इस साल अप्रैल जून क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है और यह ग्रोथ मजबूत नींव पर खड़ी है। 12-13 साल पहले भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4% से भी अधिक था। पिछले साल यह घटकर लगभग 0.5% यानी 0.61% रह गया है। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $700 बिलियन से अधिक है। हमारा बैंकिंग सिस्टम अनेक देशों में सबसे मजबूत स्थिति में है। साथियों, इसी मजबूती का परिणाम है कि भारत की सॉवरेन रेटिंग्स अपग्रेड की जा रही है।

0: आ गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: हाँ चाचा, अखबार भाँच रहे हैं। चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चीचा कब जाएंगे?
2: अरे भैया पुता सुता समस्या हम ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
0: अच्छा, कब उठा है?
2: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठा है।
0: अच्छा
2: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन कर गया, ऐसा नहीं, ये सब नहीं था अपना मामला
3: जी,
2: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
0: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है आपका।
2: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर बोलता रखे था एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
0: अच्छा
2: और क्या
0: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
2: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उसमें भागने लगता।
0: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही
2: है। किधर?
0: चाचा हम खेल गए अब की।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

घर तोड़फोड़, आगजनी शूटर की गिरफ्तारी के बाद चला बुलडोजर। राहुल गांधी के सामने एनएसयूआई छात्रों का छलका दर्द, दिल्ली पुलिस पर लगाए मारपीट और गाली गलौज के आरोप। राहुल गांधी बोले होगा हर ज्यादती का हिसाब। रोक के बावजूद जंतर मंतर में घुसने पर सीजेपी नेताओं को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजा गया। सौरभ दास और आशुतोष राग का सीजेपी के समर्थन में आए राहुल गांधी। बिहार के हाजीपुर में जर्जर और खोखली नाव डूबने से 14 बच्चों की मौत। आज तक की पड़ताल में बड़ा खुलासा, छेद वाली जर्जर बोट बनी काल, सभी एक ही गांव के थे बच्चे। मेरठ नीला ड्रम कांड में अब से थोड़ी ही देर में आएगा फैसला। शव के टुकड़े कर छिपाने वाली मुस्कान और प्रेमी साहिल को मिलेगी सजा। मेरठ जिला कोर्ट ने ठहराया दोषी।

0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि। कांग्रेस जनता पार्टी के दो नेताओं को तिहाड़ जेल भेजे जाने के बाद अभिजीत दीपके कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर हैं, ये राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि जब वो राजधानी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो कुछ लोगों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। इन तस्वीरों को देखिए, ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। लोग ये कहते सुने गए कि कांग्रेस जनता पार्टी देश को क्यों खराब कर रही है, क्यों माहौल खराब कर रही है। ये कौन लोग थे इसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन वीडियो इस समय वायरल है। ये अभिजीत दीपके राजधानी दिल्ली पहुंचे और लोग ये कहते सुने जा रहे थे एयरपोर्ट पर, ये क्यों देश को खराब कर रहे हैं। हम आपको इनकी पूरी बात सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। सुनिए,
1: खराब कर रहा भाई, क्यों देश को खराब कर रहा है, क्यों से देश को खराब कर रहा है।
0: तो कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से कुछ लोग ये कहते सुने गए क्यों देश को खराब कर रहे हैं। इसके बारे में बात विस्तार से करेंगे, लेकिन अब रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारत और अमेरिका के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों की अब बात करते हैं।
2: क्या दुश्मनी पर उतर आया है अमेरिका? केंद्रीय मंत्री का किस देश की तरफ इशारा? क्या दुश्मनी को दोस्ती में बदलने आ रहे रूबियो? चीन की घेराबंदी के लिए भारत का साथ क्यों जरूरी है? कनाडा के पीएम की कल प्रधानमंत्री मोदी से क्या बात हुई? अमेरिका से व्यापार युद्ध के बीच भारत क्यों आई कनाडा की विदेश मंत्री? दुनिया देख रही है भारत का दम।
0: अंतरराष्ट्रीय समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जिस अमेरिका को एक समय भारत का अभिन्न मित्र समझा जाता था, अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में लगातार खटास आ रही है। और यह भारत की वजह से नहीं है, भारत ने हर संभव प्रयास किया अमेरिका के साथ दो सशक्त प्रजातंत्र, दो मजबूत लोकतंत्रों के बीच मित्रता बनी रहे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बर्ताव भारत को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। आखिर भारत सरकार के एक बड़े मंत्री ने यह क्यों कहा कि दोस्त दुश्मन भी बन सकते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और कनाडा को करीब ला दिया है? आखिर क्यों अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 6 महीने में अब दूसरी बार भारत आ रहे हैं? क्या आगे बढ़ रहे हैं ये संबंध एक ट्रेड डील की ओर, एक लैंडिंग की ओर? इस ओर इशारा भारत के विदेश मंत्री कुछ कर भी चुके हैं। रणभूमि में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम तलाशने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारत सरकार के मंत्री और बड़े मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। उन्होंने दुनिया में इन बदलते समीकरणों पर और हालातों पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दोस्तों के दुश्मन बनने की बात की है, और यह बयान तब आया है जब अब से 3 दिन बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिनों की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। वहीं उनके दौरे से ठीक पहले कनाडा की विदेश मंत्री भारत के दौरे पर है, और बीती रात ही भारत और कनाडा के प्रधानमंत्रियों के बीच फोन पर एक लंबी बातचीत हुई है। इसके अलावा अमेरिका में बांग्लादेश के पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, वैसे तो वो नोबेल लॉरिएट है, लेकिन एयरपोर्ट पर न्यूयॉर्क में उनकी किस तरह से फजीहत हुई है इसके हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। किस तरह मोहम्मद यूनुस, जो एक समय बांग्लादेश में अपने आप को तख्ते पर लगातार रखना चाहते थे, उनको बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा, व्हीलचेयर पर किस तरह से घसीटते हुए जा रहे हैं, और बांग्लादेश मूल के लोग उनको गाली दे रहे हैं। उन्हें आतंकवादी तक बताया जा रहा है। इन सब खबरों की हम परत दर परत खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चाहे कितनी भी तकरार क्यों ना हो, अमेरिका आज भी भारत के साथ किसी ना किसी रूप में अपने रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को महत्व देने की कोशिश कर रहा है या दे रहा है। इसका एक सबूत है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस साल दूसरी बार भारत आ रहे हैं। रूबियो 17 से 22 अक्टूबर को भारत के दौरे पर होंगे। इससे पहले वो मई में भी 4 दिनों की यात्रा पर भारत आए थे, और इस दौरे से ठीक पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कहा कि ये मुद्दा किसी नतीजे पर पहुंचने वाला है। उनका बयान सुनाने से पहले हम आपको बता दें कि मार्को रूबियो सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान की यात्रा के तुरंत बाद भारत आएंगे। वो पहले मुंबई पहुंचेंगे, जहां उनके साथ मौजूद 200 से ज्यादा अमेरिकी एक ट्रेड डेलीगेशन है, व्यापारी और नेता कारोबार की वो बात करेंगे। फिर वो भारत के रिफाइनरी हब और सबसे बड़े रिफाइनरी हब जामनगर जाएंगे। जामनगर का यह दौरा भारत की रिफाइनिंग क्षमता को एक सलाम भी है और एक कूटनीतिक दबाव भी है। अमेरिका यह कह रहा है कि आपके पास तेल साफ करने की दुनिया की सबसे बेहतरीन रिफाइनरी है, तो आप रूस का तेल क्यों साफ कर रहे हैं? आप वो तेल हमसे या हमारे सहयोगियों यानी वेनेजुएला से लीजिए। आपको इस दौरे के पीछे की रणनीति भी बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर क्या कहा।
3: I think people, you know, the trade ministers, USTR there and our commerce and industry minister, they're working on that, they're ironing it out. So my sense is that this is an issue which is heading towards a landing point.
0: This is an issue which is heading towards a landing point, yani ek padav ki or aur ek mukhya padav ki or ab ye pahunch raha hai sambandh. Kis roop mein hum aapko ye dikhane ka prayas karte hain. Darasal 6 mahine mein America ke videsh mantri Marco Rubio, Secretary of State Marco Rubio dusri bar Bharat aa rahe hain. Kyun? Rubio 17 se 22 October ka ye jo daura hai de ise ranneetik roop se behad mahatvapurna mana ja raha hai. Jo sanket mil rahe hain uske anusar रूबियो भारत के दौरे को एक भू राजनीतिक और रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक के रूप में आगे लेकर जाना चाहते हैं। दरअसल रूबियो से पहले व्हाइट हाउस की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के शीर्ष अधिकारी वो भारत पहुंच रहे हैं, एक रणनीतिक तात्कालिक यानी एक स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी। जी हां, भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच कहा यह जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद एक थोड़ी सी खटास सी आ गई थी। भारत को कभी डेड इकोनॉमी कहना, कभी यह कहना कि वी लॉस्ट इंडिया टू डार्क चाइना, कभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अनर्गल बातें करना, और यह सब भारत को बिल्कुल नहीं भाता। भारत ने कहा ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। अमेरिका ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मेशन इन रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी, उस फ्रेमवर्क को हर हाल में फिर से एक्टिव करना चाहता है, ताकि सेमीकंडक्टर हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, चीन के दबदबे को वहां चुनौती दी जा सके। ये जो ट्रस्ट है ना, ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, इसको सक्रिय करने में अमेरिका जुटा है। दरअसल अमेरिका ने भारत को दबाने की कोशिश की, ये उनको लगा कि भारत उनका पिछलग्गू बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब अमेरिका को पता चल गया कि भारत के बिना अमेरिका का भी आगे बढ़ पाना संभव नहीं है, ऐसी परिस्थिति में जब चीन अमेरिका के साथ अमेरिका पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, भारत से पहले मार्को रूबियो उज़्बेकिस्तान जाएंगे, वहां 5+1 की महत्वपूर्ण बैठक है। चीन को काउंटर करने का वहां एक बड़ा प्लान भी है। उज़्बेकिस्तान के साथ ही मार्को रूबियो, जब हम 5+1 की बात करते हैं तो क्या है ये 5+1? इसमें उज्बेकिस्तान में 5+1 की मीटिंग के बारे में हम आपको बता दें, इसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये 5+1 नेताओं की यहां मुलाकात होगी, यानी सेंट्रल एशिया के उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनके नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए कर्ज के मकड़ जाल में चीन ने इनको जकड़ रखा है। मार्को रूबियो इन्हें वो विकल्प देने की बात कर रहे हैं जो चीन के जाल से फंसने के बजाय ये अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाए। और ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है ना, इनमें भी बहुत वो मादा है, ये तेजी से बढ़ना चाहते हैं, ये चाइना से दबना नहीं चाहते, ना ये रूस से दबना चाहते हैं, ना ये चाइना से दबना चाहते हैं। ऐसे में अमेरिका और भारत और जापान जैसे देश अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, लेकिन भारत भी अमेरिका को साफ कर चुका है कि भारत भी अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। वहां से भारत आका मार्को रूबियो हिंद प्रशांत महासागर में क्वाड को मजबूती देने की बात करेंगे। अमेरिका का लक्ष्य यह भी है कि हिंद प्रशांत महासागर में जो चीन का बढ़ता वर्चस्व है, चीन की दादागिरी है, उसे केवल सशक्त प्रजातंत्र, मजबूत प्रजातंत्र एक साथ आकर रोक सकते हैं। इसमें भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जापान की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, और उस पूरे क्षेत्र में जो प्रजातंत्र है उन सब को भी सशक्त मित्रों की आवश्यकता है जो क्वाड देश है। भारत इसमें एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके अलावा मार्को रूबियो अमेरिका के निवेश को भारत लाने की भी वकालत करेंगे ताकि दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच जो वैश्विक मित्रता है उसे मजबूत किया जा सके और मिलकर वैश्विक बाजार में जो चीन की आर्थिक ताकत है उसे टक्कर दिया जा सके। अब यह उनकी कोशिश है, लेकिन यह कोशिश भारत भी पहले कर चुका है। दुर्भाग्यवश उस समय अमेरिका को कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी, संभवतः अब अमेरिका को यह बातें समझ आने लगी हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में आए थे तो इनॉग्रेशन के बाद उन प्रधान राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों में पहली सूची में थे जो जिन्होंने जाके ट्रंप से मुलाकात की, एक अर्ली ट्रेड डील की बात की, अर्ली हार्वेस्ट की बात हो रही थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश थी कि भारत को दबा दो, 2 साल में तो नहीं दबा पाए। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक बड़ा बयान दिया। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कई बार दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं, इसीलिए भारत को भू राजनीतिक बदलावों के लिए तत्पर और तैयार रहना चाहिए। यह बयान उन्होंने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में दिया है। केंद्रीय मंत्री ने किसी देश का तो नाम नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि दुनिया में हर पल समीकरण बदल रहे हैं, हर पल बदलाव हो रहे हैं, और जिन देशों पर आज आप निर्भर हैं उनकी नीतियों के बदलने से आपके यानी हमारे आर्थिक क्षेत्र या उत्पादन पर भी असर पड़ता है। इसीलिए भारत अब जो जरूरी कदम है, भारत के हितों को देखते हुए भारत ये कदम उठा रहा है। सुनिए।
4: यस, थिंग्स चेंज, पॉलिटिक्स चेंज, geopolitics play a big role, so we have to constantly calibrate our approach, and we in India are thinking at least 20 years ahead. We are looking at goals which are short-term goals of 3 to 5 years, mid-term goals of 5 to 15 years, and long-term goal of 20 to 25 years. That's the way we are thinking, and we are moving in a very, very, very methodical way, because yes, you are right, there are times when friends will become foes. So it's very important to build, find out, figure out what's the most important thing which can make your production, make your economy vulnerable to somebody else's policies. So we think in that way and identify those things and start working on that.
0: There are times friends will become foes. अच्छा, एक और बात, ऐसा भी समय आता है जब नए मित्र बनते हैं। भारत बदलते हालात के साथ अपनी सोच और अपने तरीकों को भी नए रूप में ढाल रहा है। अच्छा, माहौल बदलते माहौल की बात करें तो कनाडा भी भारत की ओर अब मजबूती से हाथ बढ़ा रहा है। भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक दुनिया का एक बहुत बड़ा रीसेट हुआ है, यानी नए सिरे से शुरुआत दोनों देशों के बीच हो रही है। जस्टिन ट्रूडो के समय जो कड़वाहट आ गई थी, जस्टिन ट्रूडो का जो समर्थन खालिस्तानियों को और भारत विरोधी तत्वों को मिल रहा था, अब मार्क कार्नी के समय वो नहीं मिल रहा है और दोनों देश अब बहुत तेजी से और करीब आ रहे हैं। बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच फोन पर खासा गर्मजोशी से बात हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खुलकर प्रशंसा की। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं इन्हें और मजबूत करने के लिए आने वाले दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा का दौरा भी करेंगे और यह दौरा तय हो चुका है। इस फोन कॉल के ठीक साथ कनाडा की जो नई विदेश मंत्री हैं अनीता आनंद, वो भी एक बड़े व्यापारिक दल के साथ इस समय भारत के दौरे पर हैं। वो भारत पहुंच चुकी हैं। उनका यह भारत आना दिखाता है कि फोन पर जिस तरह की दोस्ती की बात हो रही है उसे जमीन पर उतारने का काम तुरंत शुरू कर दिया गया है। अब माना यह जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में कनाडा जाएंगे तब भारत और कनाडा के बीच एक बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता हो सकता है, CEPA। इस बीच एक और बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, मेरठ हत्याकांड में साहिल और मुस्कान को मौत की सजा सुनाई गई है। मेरठ हत्याकांड में ब्लू ड्रम केस में साहिल और मुस्कान दोनों को सजाए मौत मुकर्रर की गई है। दोनों को अदालत ने दोषी पाया था, दोनों ने मिलकर पति की हत्या की थी। मेरठ हत्याकांड में साहिल और मुस्कान को मौत की सजा, क्या कहा अदालत ने सुनिए।
5: दो
6: कहाँ है?

0: मेरठ हत्याकांड में साहिल और मुस्कान को सजाए मौत मुकर्रर की गई है। नीले ड्रम में मुस्कान के पति को काट कर डाल दिया गया था। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या कहा अदालत ने? रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना है इस मामले को।
1: बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना, क्योंकि दोनों चीजें देखी गई, हत्या के पहले की साजिश और हत्या के बाद जिस तरीके से शव को छिपाने की कोशिश के दौरान उसके टुकड़े किए गए, क्योंकि ये बात जांच में आई थी, तीन टुकड़े किए गए थे और उसके बाद नीले ड्रम में उसको सीमेंट से पैक कर दिया गया था। ये तस्वीर देखिए यहाँ की, आप देखेंगे यहाँ पर तो कोर्ट रूम के अंदर गौरव भारत माता की जय के नारे लगे। जैसे ही सत्र और न्यायाधीश यहाँ के अरविंद कुमार मिश्रा ने बोला कि साहिल शुक्ला और मुस्कान आप दोनों को मृत्यु दंड की सजा दी जाती है, क्योंकि दोनों जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे
0: जी।
1: तो उसके बाद तुरंत से ही जो कि पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा था, यहाँ पर गौरव आपको बताए कि लोग वहाँ पर नारे लगाने लगे कोर्ट रूम के अंदर ही। और इस वक्त जो कोर्ट रूम में जो फैमिली थी सौरभ राजपूत की, वो भी पहुंची हुई थी यहाँ पर। ये तस्वीरें देखिए, हम आगे गौरव और बात करने की कोशिश करते हैं। हमने पहले भी पीपी से जब बात की थी, जो कृष्ण कुमार चौबे जी हैं, उन्होंने कहा था कि उनकी तरफ से सीधे मांग की गई है मृत्युदंड की, इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना गया है। और आप यहाँ पर आपको नजर आएंगे सामने जो वो यहाँ नजर आएंगे, उन्होंने कहा था कि हर तरीके से कोशिश थी, पूरे मामले को सामने रखा गया था। जो 22 जो गवाह थे, वो 22 गवाहों की गवाही बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें जो गवाह थे वो डायरेक्ट एविडेंस के तौर पर थे। जहां से अलाय कत्ल खरीदा गया था, हत्या के बाद जिन होटलों में वो रुके थे जाकर के, मनाली में, कसौल में, शिमला में, वहां के मैनेजर का स्टेटमेंट था। यानी ये जो गवाही थी ये डायरेक्ट गवाही थी जिन लोगों ने हत्या के बाद देखा था। और दूसरी चीज, जो मोबाइल फोन लगातार इस्तेमाल किया गया था उसको भी देखा गया कि किस तरीके से मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत के मोबाइल को हत्या के बाद अपने पास रखा, ताकि वो पूरे परिवार को गुमराह कर सके। लगातार लोगों को ऐसा लगे कि सौरभ जो है अपनी पत्नी मुस्कान के साथ घूमने गया हुआ है, लेकिन हकीकत में उसकी कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी को डंप कर दिया गया था ड्रम में। अब इस पूरे मामले में जो साइंटिफिक एविडेंसेस थे, क्योंकि जो नशा दिया गया था खाने में, सब्जी में, उस नशे को कहां से खरीदा गया था उसने भी आइडेंटिफाई किया, मुस्कान को आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से ये कत्ल के पहले खरीदी थी। सीसीटीवी फुटेज कत्ल के पहले और बाद का, कौन आया कौन गया, ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण थी और डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे काम किया, जिसके बाद आज ये दिन आया, 30 सितंबर को दोषी ठहराया गया था। और आखिरकार आज जो मेरठ कोर्ट है वही ठीक मौजूद है, यहाँ पर अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है। सुबह हम पहुंचे थे
0: जी,
1: बहुत महत्वपूर्ण था, जब हम जेल पहुंचे थे गौरव, तो वहां पर हमें ये पता लगा था कि मुस्कान से मिलने कोई नहीं आया था पिछले 1.5 साल में, उसकी फैमिली में से कोई नहीं पहुंचा था जो जाए और मुस्कान से बातचीत करे। और यहां आने पे हमें कोर्ट में पता चला कि किस तरीके से मुस्कान के पेरेंट्स ने यहां पे लिख के दिया था कि अगर फांसी की सजा होती है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, हायर कोर्ट में नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा लड़का था सौरभ राजपूत, ये लिख करके दिया गया था जो स्टेटमेंट, जो सजा सुनाने से पहले जो सभी से बातचीत की जाती है। आज सुबह भी दोनों करीब 10:30 बजे के आसपास
0: मेरे साथ, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे सहयोगी शम्स ताहिर खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शम्स, न केवल निर्मम हत्या बल्कि निर्मम हत्या के बाद जिस तरह से शव को कई टुकड़ों में काट काट के उसको नीले ड्रम में सीमेंट के साथ पैक किया गया और उसके बाद छुट्टी पर निकल गए, तो कोई रिमोर्स नहीं था, मन में कोई बुरा नहीं लग रहा था दोनों को कि सौरभ की हत्या कर दी है।
2: देखिए गौरव, ये जो फैसला है, आज सुबह से मैं कोर्ट में हूँ, ठीक मेरे पीछे मेरठ कोर्ट है और हर एक को यही लगा, कुछ सरकारी वकील को भी ये लग रहा था कि शायद उम्र कैद की सजा मिलेगी मुस्कान और साहिल को, लेकिन जज साहब 4:15 पर जैसे ही आते हैं मुस्कुराते हुए वो महाभारत के बारे में जिक्र करते हैं और फिर कहते हैं कि दंड भी धर्म है। और इसके बाद जो वो कहते हैं अदालत के अंदर, पहले तो लोग थोड़े से सन्न थे, उसके बाद तालियां, भारत माता की जय के नारे कोर्ट के अंदर लगे और जज साहब ने कहा कि इन्होंने जो जुर्म किया है उसके लिए हम आप दोनों को मौत की सजा दे रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साहिल और मुस्कान दोनों मेरठ जेल से लाइव थे, उनका चेहरा जज साहब के सामने था क्योंकि स्क्रीन उन्हीं की तरफ, और उसके बाद मौत की सजा सुनाने
0: का फैसला। मेरे साथ वकील का क्या कहना है हम आपको सुनवाते हैं जल्दी से।
3: कोर्ट ने महाभारत का वर्णन देकर ये कहा था,
4: तुम बुलाओ
5: जुर्माना भी लगाया गया
6: 302 के लिए 50,000 जुर्माना है, 238 के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना है।
5: क्या कहेंगे, नजीर बन गया?
6: बिल्कुल नजीर बन गया, ये नजीर बनना चाहिए ही था। अदालत ने हमारी भावनाओं को, जनता की भावनाओं को और सारे अब तक के निर्णयों के भावनाओं को समझते हुए ये बहुत अच्छा निर्णय दिया गया
7: है। जजमेंट में क्या-क्या कहा गया? जजमेंट में क्या-क्या कहा?
6: अभी जजमेंट में जजमेंट आने वाला है और उसको पढ़ेंगे तब और कोई बात कह पाएंगे। उन्होंने ये बताया, अदालत ने दोनों अपराधियों को जघन्य हत्या का अपराधी माना है और इसके लिए उनको अधिकतम सजा मृत्यु दंड की सजा मुकर्रर की है, मृत्यु दंड सजा दी है और इसके लिए 302 के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना नगद और 238 के लिए 238A के लिए उन्होंने 20,000 रुपए का जुर्माना तय किया है।
5: मृत्यु दंड दोनों को मिला है?
6: दोनों को मृत्यु दंड मिला है।
5: महाभारत का भी जिक्र
6: है? महाभारत का बताया मैंने, उन्होंने वर्णन देकर ये कहा कि अपराधी को के अपराध के लिए सजा देना भी धर्म है, यानी अच्छा काम है, उचित काम है, अपराधी को उसके अपराध के कृत्य के अनुसार सजा मिलनी चाहिए।
5: मजबूत पैरवी की गई
6: जी, अभियोजन की तरफ से बहुत मजबूत सटीक पैरवी की गई, उसी का परिणाम है कि इन अपराधियों को कृत्य का उचित सजा मिली। बिल्कुल पूरे देश में, पूरे देश में एक नजीर बनेगा और जो इस प्रकार की घटनाओं की बाढ़ आ रही थी वो बाढ़ों पर मुझे लगता है कुछ सोचने पर मजबूर होंगे अपराधी कि इस प्रकार का कृत्य भविष्य में ना हो।
8: सर, इस तरह की घटना करने वाले जो आरोपी उनके लिए साफ संदेश है कि अगर आपने हत्या की तो आपको भी जाएगा कि उसका हर्जाना झेलने को।
6: बिल्कुल बिल्कुल, ये उनको ये संदेश पूरे देश के जनता को, पूरे देश को ये संदेश है इस न्यायालय के निर्णय से कि अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचेंगे।
8: सर, आपकी भी तरफ से तब तक पेश किए गए थे 126 पेशियां होती है, उसके बाद क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर?
6: हमें ऐतिहासिक फैसला है, हमें इस अपराधियों के कृत्य के अनुसार, अपराधियों के भयावहता को देखते हुए, अपराध को भयावहता को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए, पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर कलंकित करने वाला अपराध के रूप में ये सामने आया था।
8: समाज के लिए क्या संदेश है सर? समाज के लिए क्या संदेश?
6: अभी बता रहा, समाज के लिए ये संदेश है कि कोई भी अपराधी अपने निकटतम रिश्तेदार को, अपने पति पत्नी का, पत्नी पति का, या बेटे का, या बेटे द्वारा माँ का, या माँ द्वारा बेटे का, किसी भी प्रकार के छोटी लालच में आकर के ऐसा जघन्य हत्याकांड का अंजाम नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसको सजा जो आज मृत्यु दंड की मिली है ऐसी मिलेगी।
9: सर, फांसी अपने आप को बचाने के मारे बोल रहे थे कि सौरभ बहुत अच्छा, अगर उनको उसका साथ देते और अपनी लड़की का साथ नहीं देते। वो
10: जिस तरीके से पिछला 1.5 साल बीता उसको आप कैसे देखती हैं जब ये कोर्ट का ये फैसला?
9: बहुत बहुत दुख भरा दिन निकले हैं, हर दिन हम रो रो के निकले हैं, हर दिन याद करते थे, हर चीज हमारे नजरों के सामने घूमती है, हमारी नजरों से तो खैर हमारा बच्चा जाने का ही नहीं, घर के एक एक कोने में बसा पड़ा है वो।
10: अच्छा, अब आप बताएं कि अब आप जिस तरीके से नीला ड्रामा एक कहें कि पूरे देश में एक सिंबल बन गया था, अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज तक?
9: हम तो यही देना संदेश जाते भैया, किसी का भी बच्चे को मारो मत, नहीं रहना उनके साथ, अलग हो जा। अगर कोई लड़का नहीं चाहता, लड़की को मार देता है तो वो भी अपने नई लड़की के साथ रहना तो वो भी अलग हो जाए। अगर ये ऐसा काम करेंगे तो उनको भी फांसी की ही सजा होगी।
10: सौरभ की माँ हमारे साथ ही, सौरभ राजपूत की माँ।
0: ये बड़ी बात है, अदालत ने ये कहा कि दंड भी धर्म है। और श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण का के श्रीमद् भगवद गीता का उद्धरण उन्होंने लिया कि धर्म, दंड देना धर्म का काम है शम्स। और जिस तरह से, जिस निर्ममता से सौरभ की हत्या की गई, एक सोची समझी साजिश के तहत, यह नहीं कि एकाएक हत्या हो गई, सोचा उन्होंने, पति का कत्ल किया, आलाय कत्ल भी बरामद कर दिया गया है, पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अदालत में प्रोसिक्यूशन दिखा पाया।
2: जी, इसमें जिस तरीके से आज सजा पड़ चुके, गिल्टी 30 सितंबर को ही करार दिया गया था, आज सिर्फ ये थी कि सजा क्या मिलेगी, उम्र कैद या फिर सजाए मौत, दो ही चीज थी। जो प्रोसिक्यूशन है, सरकारी वकील है, उन्होंने ये बताया कि इनकी कम उम्र या फिर इनका ये पहला अपराध है, ये मत देखिए, अपराध किस तरीके का था, किस क्रूर तरीके से पहले कत्ल किया सौरभ का मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने, और फिर लाश के टुकड़े किए, फिर उसको नीले ड्रम में पैक किया। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद और फिर सारी इन्वेस्टिगेशन जो हुई, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, उससे साबित हुआ। और एक जज ने आज ये भी कहा बहस के दौरान कि हमें फैसला देने से पहले ये भी देखना है कि समाज और जनता की ओपिनियन क्या है ऐसे केसेस में, जिससे समाज पे असर पड़ता है। उनका इशारा ये था कि हाल के वक्त में बहुत सारी पत्नियां के हाथों पति का कत्ल हो रहा है, पति के हाथों पत्नियां का कत्ल हो रहा है, तो समाज में जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है, तो एक ऐसा फैसला होना चाहिए जो जनता चाहती है उस हिसाब से ये फैसला हो, और जो समाज में सोच है उस हिसाब से भी एक मैसेज जाए। तो ये क्लियर था, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं थी कि इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में रखा जाए, यही मानकर चल रहे थे। खुद सरकारी वकील से मेरी इस फैसले से थोड़ी देर पहले बात हुई, उनका भी ये कहना था कि शायद लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद। लेकिन 4:15 बजे जज साहब ने जिस तरीके से मुस्कुराते हुए दंड और धर्म की बात कहने के बाद सीधे मुस्कान और साहिल जो मेरठ जेल से जुड़े थे, उन्हें ये सजा भी मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों को मृत्यु दंड दे रहा हूं जो अपराध आपने किया, और जो सबूत मिटाने थे उसके लिए 7 साल। सिर्फ 2 मिनट की बात थी, लेकिन जिस तरीके का फैसला आया शायद उसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन
0: परिवार को
2: कोर्ट में जो हुआ
0: जी,
2: ये हाल के वक्त में जो समाज में हुआ है, शायद उसके लिए एक मैसेज था।
0: निश्चित तौर पर यह नजीर बननी चाहिए, यह बात लोग भी वहां कह रहे थे। और एक और बात, जो परिवार है सौरभ का, वो यही विनती लगातार कर रहा था कि अगर मृत्युदंड नहीं दिया गया तो इस तरह के अपराध होते रहेंगे। और उनकी मां ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात की शम्स, उन्होंने ये कहा कि अगर आपको लड़की नहीं पसंद आप छोड़ दीजिए, अगर आपको लड़का नहीं पसंद आप छोड़ दीजिए, आप किसी की हत्या मत कीजिए, पूरा परिवार मर जाता है। और संभवतः ये जो आज निर्णय आया है अदालत का, ये इस ओर भी एक इशारा है कि हत्या नहीं कर सकते।
2: देखिए गौरव, इसमें सबसे अहम बात एक और चीज थी, जिस सौरभ का कत्ल हुआ उसकी पत्नी मुस्कान, लेकिन मुस्कान के माँ बाप सौरभ को ज्यादा मानते थे, और मुस्कान के माँ बाप ने बाकायदा सरकारी वकील के जरिए जज साहब तक एक लेटर भिजवाया और उसमें ये कहलवाया कि मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ, उनके माँ बाप कह रहे हैं कि मुस्कान को उसके किए की मैक्सिमम सजा यानी कि सजाए मौत मिले। खुद मुस्कान के माँ बाप ने ये अर्जी कोर्ट में दी और आज फैसला लगभग वही हुआ।
0: और कुछ भी कहा जाए, साहिल और मुस्कान, उनके पास कोई कारण नहीं था कि न केवल हत्या की उन्होंने सौरभ की, बल्कि हत्या के बाद नीला ड्रम खरीद के लाए, सीमेंट खरीद के लाए, लाश के टुकड़े किए, और पहले सीमेंट फिर एक टुकड़ा उसके ऊपर सीमेंट की ताकि बदबू भी बाहर ना आए, और उसके बाद छुट्टी मनाने के लिए चले गए और उसका सौरभ का मोबाइल फोन अपने साथ लेकर गए। तो हत्या की एविडेंस मिटाई और छिपाई, और उसके बाद ये तथ्य सामने ना आए तो छुट्टी पर चले गए, ये एक अलग उनकी विकृत मानसिकता को भी दर्शाता है ताहिर।
2: देखिए 3 मार्च 2025 को सौरभ का कत्ल होता है, और वो रात मुस्कान और साहिल एक साथ होते हैं, लाश के तीन टुकड़े करते हैं, सर और हथेली। साहिल अपने घर ले जाता है, फिर वापस लाता है। 4 मार्च यानी अगले दिन ये दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने चले जाते हैं। 15 दिन तक ये दोनों एक तरह से घूमते रहते हैं। 15 दिन बाद जब इनके पैसे खत्म होते हैं, 18 मार्च को ये वापस आते हैं। मुस्कान पहली बार अपनी माँ से खुलासा करती है कि सौरभ जब पूछती है कहाँ है, तो वो कहती है मैंने उसको मार डाला। तब मुस्कान की माँ पुलिस के पास जाती है और कहती है कि ऐसी ऐसी बात है। फिर पुलिस मुस्कान के घर पहुंचती है और वहां मुस्कान बताती है कि नीले ड्रम में पैक्ड है। तब पुलिस उस नीले ड्रम को देखती है, लेकिन नीला ड्रम खुलता नहीं है क्योंकि सीमेंट से बिल्कुल वो एक तरह से सीमेंटेड हो चुका था। फिर उसको उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, वहां मजदूरों को बुलाया जाता है, बड़े उसको एहतियात से काटा जाता है ताकि बॉडी को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि वो एक एविडेंस था। और तब जाकर कहीं ये लाश सामने आती है। कोर्ट ने आज फैसला देते वक्त और जो सुबह सजा पर बहस हुई उसमें यही बात थी कि ये दोनों का बेशक पहला क्राइम था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने क्राइम किया, ये एक सोची समझी साजिश थी, प्लान था। मारने के बाद लाश के तीन टुकड़े करने, सर हथेली को अपने साथ ले जाना, फिर वापस आना, और उसके बाद 15 दिन तक आप वादियों में घूम रहे हैं, ये दर्शाता है कि इन दोनों की सोच कितनी क्रूर और कितनी खतरनाक थी। इसीलिए ऐसे लोगों को, फिर वही बात थी कि दंड जो है वो धर्म है, और इसीलिए मृत्यु दंड इनके लिए बनती है।
0: मृत्यु दंड, क्योंकि समाज में इस तरह की जो बुराई आ रही है, उस बुराई पर अंकुश लगाना, उस बुराई को रोकना बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में सज्जनता एक बार क्या इससे आएगी, क्या और लोग ऐसा करने से बचेंगे, ऐसे कई प्रश्न हैं, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अदालत से फैसला आते ही, निकलते ही वकील ने क्या कहा, सुनिए।
6: सर, अपराधियों के भयावहता को देखते हुए, अपराध को भयावहता को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए, पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर कलंकित करने वाला अपराध के रूप में ये सामने आया था।
8: समाज के लिए क्या संदेश है सर? समाज के लिए क्या संदेश है?
6: समाज का प्रसंग उन्होंने सुनाया महाभारत। अभी बता रहा, समाज के लिए ये संदेश है कि कोई भी अपराधी अपने निकटतम रिश्तेदार को, अपने पति पत्नी का, पत्नी पति का, या बेटे का, या बेटे द्वारा माँ का, या माँ द्वारा बेटे का, किसी भी प्रकार के छोटे लालच में आकर के ऐसा जघन्य हत्याकांड का अंजाम नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसको सजा जो आज मृत्यु दंड की मिली है ऐसी मिलेगी।
8: सर, फांसी की सजा है?
6: फांसी की सजा दोनों को। महाभारत के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने ये महाभारत के बारे में उन्होंने ये बताया कि ये अपराधियों को अपराध के अनुरूप सजा देना भी धर्म का काम है, ये धर्म है, इसलिए उसके अपराध के अनुरूप।
0: इसको ब्लू ड्रम मर्डर केस के रूप में भी देश भर में जाना गया। हालांकि मेरठ का यह मामला, लेकिन पूरे देश में इसको लेकर एक तरह से हड़कंप था। जब छानबीन हुई शम्स इस पूरे मामले की, तो एक जो इसमें अक्यूज्ड है यानी मुस्कान, उसका कबूलनामा, फिर साहिल की गिरफ्तारी, आलाय कत्ल का बरामद किया जाना, और क्या क्या सबूत पुलिस ने जुटाए जिससे यह साबित हुआ कि इन्हीं दोनों ने कत्ल किया, और फिर एविडेंस को मिटाने की कोशिश की।
2: अदालत ने जिस सबूत को सबसे अहम सबूत माना था गौरव, वो ये था कि वो मुस्कान और साहिल थे जिनकी निशानदेही पर सौरभ की लाश नीले ड्रम में है, यह पता चला, और फिर उस नीले ड्रम से वो बॉडी मिली, डीएनए से पता चला कि ये वही है। इसके अलावा इन दोनों की 3 मार्च की रात को उस घर में मौजूदगी जहां सौरभ का कत्ल हुआ, इन तीनों के पास से वो मोबाइल जिसमें इन दोनों के चैट थे और उसके जरिए इनके रिश्ते, फिर 15 दिन तक इनका ठीक उसी वक्त गायब हो जाना, साहिल का इस क्राइम से 8 घंटे पहले अपना मोबाइल बंद कर देना, ये वो एविडेंस है जो कोर्ट ने पुख्ता माना। हालांकि इसमें 2-3 लूपहोल्स भी थे। एक ये कि जिस रात क्राइम सीन पर इन तीनों की मौजूदगी एक साथ दिखानी थी, मेरठ पुलिस दिखाने में नाकाम रही। दोनों को जब अरेस्ट किया तो उन दोनों को साहिल के घर से अरेस्ट किया। इसके अलावा जब वो घर ले गए जहां पे ड्रम रखा हुआ था, तो खुद मुस्कान ने अपनी जेब से चाबी निकालकर अपने घर का दरवाजा खोला। उस पर ये सवाल उठा कि जब पुलिस उन दोनों की कस्टडी ले चुकी थी, तलाशी ले चुकी थी, तो ये चाबी कहां से आई। लेकिन इन चीजों को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने फॉरेंसिक एविडेंस और सबसे बड़ी बात कि इनकी निशानदेही पर उस लाश की बरामदगी को सबसे अहम सबूत माना। हालांकि पूरे केस में 132 पेशी हुई, कभी मुस्कान और साहिल ने ये नहीं माना कि हमने ये कत्ल किया है, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंस इतने पुख्ता और मजबूत थे कि फिर शक की गुंजाइश नहीं रही, और अदालत को ये यकीन दिलाने में सरकारी वकील कामयाब रहे कि असल में सौरभ के कातिल मुस्कान और साहिल हैं, और मोटिव ये था कि ये दोनों शादी करना चाहते थे और सौरभ से छुटकारा पाना चाहते थे।
0: और क्या सौरभ ये छुटकारा देने से इनकार कर रहा था? पहली बात, क्या सौरभ को इन दोनों के संबंध के बारे में जानकारी थी? क्या अदालत में ये बातें भी निकल कर आई और आगे की कार्रवाई अब इस मामले में क्या होगी? हालांकि मुस्कान की मां ने कहा कि वो अपील नहीं करेंगी, लेकिन जो दोनों अब दोषी हैं, अब अदालत के निर्णय के बाद वो आरोपी नहीं दोषी हैं, वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उनके वकीलों का क्या कहना है?
2: देखिए सौरभ, पहले सवाल का जवाब देता हूं। 2016 में शादी हुई थी सौरभ और मुस्कान की
0: जी।
2: उसके बाद जब सौरभ चूंकि लंदन में था, पीछे प्ले स्कूल में उसकी एक बेटी हुई, जहां स्कूल जाते जाते साहिल से मुलाकात हुई, दोनों में प्यार हुआ। प्रॉब्लम तब हुई जब वापस सौरभ इंडिया आता है और उसे पता चलता है कि इन दोनों के रिश्ते हैं, वो इसका विरोध करता है, तब उसे लगता है कि अब आजादी में खलल है, क्योंकि अब सौरभ आ चुका, वो दोनों मिल नहीं सकते। तब ये लोग उसे रास्ते से हटाने का फैसला

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: How's the hostel? Settled?
3: Yes, Mark, really nice.
2: कोई आ रहा है क्या?
4: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस है।
2: मयंक, for real?
4: One carat for my one true love. Natural diamond, real love, solitaires to reignite your new season of love.
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो ठुमका लगाने पर।
6: मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
7: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
9: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
10: कौन सी बनानी है?
11: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाए special car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ।
12: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
13: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
14: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
15: I love it, absolutely amazing. तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
16: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
15: क्या?
16: इनकी राय।
17: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
18: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
19: In association with Canara Bank, together we can.
20: Anmol biscuits, swad jo banaye har pal anmol. Signature finest cardamom seeds.
21: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
22: Business sirf stock market ka naam nahi hai, ye hai aapke paise ki baat,
23: aapke business ki baat. और उन डिसीजंस की बात जो आपके कल को इंपैक्ट करते हैं।
24: मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा बिजनेस ग्रो कर रहा है,
22: इकॉनमी में क्या बदल रहा है और इसका असर आप पर क्या होगा। हर ट्रेंड, हर अपडेट,
24: हर अपॉर्चुनिटी
23: एक जगह।
22: बिज तक, बिजनेस की हर बात सीधी आप तक।
25: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
26: कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठाती है, पर पूरी तरीके से नजरअंदाज करती है अपने खुद के काम को, अपने खुद के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ

कभी भी देने का प्रयास नहीं किया। उनको अब ईमानदारी से काम करने दिया और जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से उनको कोई राजनीतिक पद देने का कभी गुनाह नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी जी की अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, जिसको वो बड़ा कन्वीनियंटली नजरअंदाज कर देते हैं, तो उन्होंने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी टिकट पे कैंडिडेट बनाया, एक को यूनियन कैबिनेट में लिया, दो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को गवर्नर बनाया, और एक बार तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहने पे कि उनके नीचे काम करने वाला इलेक्शन कमिश्नर पूरी तरीके से कांग्रेस की एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, उसको निकालने से इनकार करते हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
3: कैसे लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
4: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
5: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
4: क्या?
5: इनकी राय।
6: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।

0: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एंड गोल तक जाएगी। कैसे जाएंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आपको सारा मतलब सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके लिए और देश के लिए ये माहौल बना रहे, इंटरेस्टिंग रहे और सरप्राइज रहे।
1: सबके मन में जो सवाल थे राहुल गांधी ने उसका जवाब दे दिया। आकाशवाणी भवन पर 6 अक्टूबर के धरने से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो चाय पर चर्चा से थमने वाला नहीं है, अभी और भी सरप्राइज बाकी हैं।
0: मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
1: यानी विपक्ष का यह आंदोलन अभी थमने वाला नहीं है। चाय पार्टी में आए विपक्ष के तमाम नेताओं ने एक एक कर अलग अलग तरीके से यही बातें कही। कुल मिलाकर राहुल गांधी की हाई टी का संदेश साफ था, एक मकसद, एक विरोध और आंदोलन को कायम रखने के लिए एक जुट मंच। माना जा रहा है कि ये जुटान विपक्षी दलों के बीच जहां आपसी समन्वय को आगे बढ़ाएगा, वहीं सिविल सोसाइटी और छात्र संगठनों की मौजूदगी एक व्यापक गठबंधन बनाने के प्रयास का भी संकेत दे रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत।
2: कल जाहिर सी बात है आयशा की छात्र हैं नेहा बोरा, उनको खड़ा कर दिया था, अब उनको लगा कि भाई अपने ही स्टूडेंट विंग की छात्राओं का सामने रखे हैं, तो अब छात्रों का इस्तेमाल ना करें। आपकी जो सोच है, जो आपने दिखाया है सबके सामने अपना रवैया और अपना एटीट्यूड, अरे आपने तो अपने डीके शिव कुमार को नहीं छोड़ा और जितनी महिला वहां पे पुलिस कर्मी थी उनको आपने बख्शा नहीं, और ना ही आपके लोगों ने मदद भी की उन महिलाओं की, उन पत्रकारों की। तो अब उस सबसे बचने के लिए आप जिस तरह से छात्र और छात्राओं का इस्तेमाल कर रहे हैं ये सबको पता चल रहा है।
3: साथियों, आप सभी जानते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं, करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के इस दौर में भारत में 500 मिलियन से अधिक यूट्यूब यूजर्स हैं, 500 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। हमारे यहां अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।

0: मेरठ नीला ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी की सजा। जिला जज ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मामला, सौरभ के शव के किए थे टुकड़े। पंजाब के मानसा में एंटी ड्रग एक्टिविस्ट के मर्डर पर फूटा गुस्सा, आरोपी के घर पर तोड़फोड़, आगजनी, शूटर की गिरफ्तारी के बाद चला बुलडोजर। राहुल गांधी के सामने एनएसयूआई छात्रों का छलका दर्द, दिल्ली पुलिस पर लगाए मारपीट और गाली गलौज के आरोप, राहुल बोले होगा हर जाति का हिसाब। रोक के बावजूद जंतर मंतर में घुसने पर सीजेपी नेताओं को 5 दिन की जेल, तिहाड़ भेजे गए सौरभ दास और आशुतोष रांका, दिल्ली पहुंचे दीपके का एयरपोर्ट पर लोगों ने किया विरोध। रेलवे कर्मचारियों को दिल्ली का तोहफा, केंद्र सरकार ने 78 दिन के बोनस की दी सौगात, मोदी कैबिनेट की बैठक में फैसले को मंजूरी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। देश में पिछले दो हफ्ते से दिल्ली में एक आंदोलन सड़कों से अदालतों तक नजर आया है। चुनाव आयोग के फैसले और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आंदोलन चल रहा है। आज भी एक तरफ लेफ्ट के स्टूडेंट्स विंग्स ने प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने NSUI के पीड़ित नौजवानों को पेश करके सरकार पर बर्बर हथकड्डे अपनाने का आरोप भी दोहराया। कांग्रेस की यह लड़ाई अब लंबी चलेगी। राहुल कह चुके हैं कि 2 साल भी चल सकती है, लेकिन बात अब जंतर मंतर की भी हो रही है। दशकों तक राजनीतिक आंदोलनों का केंद्र माने जाने वाला जंतर मंतर अब ये केंद्र नहीं बनेगा, क्योंकि जंतर मंतर पर तय की गई थी उसे सरकार ने हटा दिया है। ये लोगों की आवाज लोकतंत्र में उठाने के लिए एक जगह बन गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसे डीनोटिफाई कर दिया है। अब दिल्ली में रामलीला मैदान, पूर्वी दिल्ली में CBD ग्राउंड और उत्तरी दिल्ली में बुराड़ी ग्राउंड पर ही राजनीतिक विरोध प्रदर्शन किए जा सकेंगे।

की जंतर मंतर पर जो राजनीतिक आंदोलन हो रहे थे उसके बहाने विपक्ष अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सलाह दी थी कि जंतर मंतर के साथ कुछ और अल्टरनेट ग्राउंड्स भी तैयार किए जाए ताकि आम लोगों को परेशानी कम हो, नई जगह का विचार भी किया जाए। अब सरकार ने उस जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन करने के लिए नो एंट्री लगा दी है। जहां होश संभालने के बाद जेंजी ने कम से कम आधा दर्जन प्रदर्शन इसी जंतर मंतर पर देखे होंगे। विरोध प्रदर्शन का पर्याय बन चुके जंतर मंतर के डी नोटिफिकेशन के बाद अब राहुल गांधी अलग लड़ाई लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी भी कर चुके हैं, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने आवाजाही में सुलभ और केंद्रीय प्रतिष्ठानों के करीब के जंतर मंतर से प्रदर्शन को मना करके तीन ऐसी जगह नोटिफाई कर दी है जहां कूड़ा भरा हुआ है या तो मैदान पानी में डूबा हुआ है। मतलब ये कि वोट चोरी के मुद्दे के साथ अब लड़ाई लोकतांत्रिक विरोध की आवाज बनाम अराजकता की कोशिश के बीच भी शुरू हो चुकी है। इसलिए आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या सरकार ने जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए जो डी नोटिफाई कर दिया है उसका फैसला क्या दमनकारी है, क्या अहम सरकारी प्रतिष्ठानों के पास विरोध प्रदर्शन से सरकार के साथ आम आदमी के लिए अराजक माहौल बन सकता है, और एक पखवाड़े के आंदोलन ने अब तक क्या हासिल किया है। तमाम और भी सवाल होंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।

0: वोट चोरी के चुनावी मुद्दे और सत्ता के संग्राम में दिल्ली की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन का पखवाड़ा गुजरने को है। 2 अक्टूबर से शुरू नौजवानों के प्रदर्शन के साथ 6 अक्टूबर से राहुल सड़क पर उतरे। 2 दिनों तक चुनाव आयोग जाने की कोशिश की। 8 अक्टूबर को राजघाट पर प्रदर्शन हुआ। 9 अक्टूबर को राष्ट्रपति से शिकायत। 10 को फिर सड़क पर संग्राम। 11 अक्टूबर को सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन की आधिकारिक जगह से डीनोटिफाई किया। 12 अक्टूबर को फिर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में बड़ा प्रदर्शन हुआ। 13 अक्टूबर को चाय पर चर्चा में आगे की रणनीति बनी और 14 अक्टूबर को राहुल आंदोलन के पीड़ित चेहरों को पेश कर रहे थे।
1: ये हिंदुस्तान है अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है। और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए। इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
0: आखिरी हासिल अभी बाकी है, लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर सियासत मंथन करके राहुल ने 3 चीजें हासिल कर ली। पहली ये कि वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल ने ज्यादातर विपक्ष को एक साथ कर लिया है। दूसरी ये कि देश में विपक्षी नेता राहुल ही हैं और क्षेत्रीय दलों को उन्हीं के मुद्दों के साथ आना पड़ेगा। तीसरी ये कि अदालतों में अर्जियों की बाढ़ ने चुनाव आयोग पर अविश्वास के मुद्दे की सियासी बुनियाद मजबूत कर दी है।
2: ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 3 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो 1 साल, नहीं तो 2 साल, ये रुकने वाली नहीं, ये एंड गोल तक जाएगी। जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे। थैंक यू।
0: और राहुल की माने तो ये लड़ाई 2 मोर्चों पर चलेगी, क्योंकि सड़क की लड़ाई से माहौल भले बन जाए, चुनाव आयोग पर आरोप तो अदालतों में ही साबित करने पड़ेंगे। लिहाजा एक तो 16 दिसंबर को रामलीला मैदान में फिर महारैली होने वाली है। दूसरे अदालत में चुनाव आयोग के SIR को लेकर तमाम अर्जियां डाली गई हैं, जिन पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार और बंगाल के SIR मामले के बाद पहली बार तकरीबन एकजुट विपक्ष ने अदालत में अर्जी डाली है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD, शिवसेना, UBT, TMC, NCP, शरद पवार, CPI, CPM, JMM और IUML ने साझा अर्जियां डाली हैं। विरोधी दल के तौर पर इंडिया से बाहर रखे गए AIMIM ने अलग से अर्जी डाली है और सबकी अर्जियों के साथ सुनवाई की मांग की है। इस अर्जी में चुनाव आयोग के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, उनमें 13 करोड़ वोटर के नाम काटने, मनमाने फैसले लेने, अवैध हलफनामा भरवाने के आरोप लगाते हुए SIR तुरंत रद्द करने, आयोग की बैठकों का ब्यौरा सार्वजनिक करने, काटे गए नामों का ऑडिट करने, उनका ब्यौरा सार्वजनिक करने, वैध कटे नाम दोबारा जोड़

0: ने फॉर्म 6 से नया हलफनामा हटाने और ईवीएम के सुरक्षा मानकों की समीक्षा की मांग की गई है। लेकिन इन तमाम आरोपों और अर्जियों के बाद भी सरकार विपक्षी आंदोलन को कभी भ्रम और अफवाह की सियासत बता रही है तो कभी चुनावी हार का बहाना। आज तक ब्यूरो।
1: जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब उन्हें कहा गया कि जंतर मंतर पर जाकर बैठिए, क्योंकि जंतर मंतर एक नोटिफाइड जगह है जहां पर आप अपनी आवाज रख सकते हैं। जब पहलवान जंतर मंतर पर आंदोलन करने पहुंचे तब उन्हें वहां से उठा दिया गया। सीजेपी ने पहले आंदोलन के लिए जब इजाजत मांगी तब सरकार की तरफ से उन्हें वो इजाजत दे दी गई थी। लेकिन अब आप आज उसी कारण के साथ में सुप्रीम कोर्ट की आड़ में अब जंतर मंतर डी नोटिफाई कर दिया गया है। सवाल यही बनता है कि क्या लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश है या अराजकता का माहौल पर अंकुश लगाने की कोशिश है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गुरुप्रकाश पासवान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी कई आंदोलन इस जंतर मंतर ने देखे हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। श्रेष्ठ सिंह खेरा प्रवक्ता है सीजेपी के, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट और हमारे प्रोफेसर संगीत रागी भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या सरकार ने जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शनों के लिए डी नोटिफाई करना क्या दमनकारी फैसला है, क्योंकि सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा था कि अल्टरनेट जगह ढूंढिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो और इसके चलते अब बाहरी दिल्ली में कहीं जगह देने का फैसला किया है, तो क्या यह दमनकारी फैसला है। दूसरा सवाल, क्या विपक्ष अहम सरकारी प्रतिष्ठानों के पास विरोध प्रदर्शन करके अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो सरकार का आरोप है, और यही कारण देकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर अब रोक लग चुकी है। तीसरा सवाल, एक पखवाड़े के आंदोलन में अब तक कांग्रेस ने क्या हासिल कर लिया। इन सवालों के इर्द-गिर्द हमारी चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत गुरुप्रकाश पासवान आप ही से करेंगे। गुरुप्रकाश जी, जो शुरुआत मैंने की, किसान आंदोलन हो रहा था तब आपने कहा कि भाई जंतर मंतर जाकर बैठ जाइए। जंतर मंतर पर पहलवान पहुंच गए तो उनको वहां से उठा दिया गया। सीजेपी ने पहले जब इजाजत मांगी तब आपकी तरफ से दे दी गई। अब वही आंदोलन का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट की आड़ में विपक्ष का कहना है कि जंतर मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटा दिया गया है ताकि प्रोटेस्ट सरकार के नजर के सामने ना हो, उसका दबाव सरकार पर नहीं बने।
2: नहीं साहिल जी, देखिए वो तो देश ने देख लिया था, उस पर कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार की अराजकता, जब आपका नेता, देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, कार्यकर्ता नेता को फॉलो करता है, जब आपका नेता ऐसे कोहनी मार रहा है, जब प्रियंका गांधी, भले ही उनके परिवार ने 5 प्रधानमंत्री दिए होंगे इस देश को, लेकिन ऐसे सामान्य पुलिसकर्मी को यदि आप कोहनी मारेंगे, ऐसे हिंसा का व्यवहार करेंगे, तो अराजकता नहीं तो और क्या है। दूसरा, आपने कहा भी पहलवानों की बात, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में 2 बार पहलवानों की चर्चा की। महिलाओं की गरिमा, महिलाओं का सम्मान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी, अभी राहुल गांधी जी अपनी टीम का जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी की टीम के अहम सदस्य, कांग्रेस पार्टी के सांसद, जेएनयू के प्रोफेसर, मणिपुर के प्रोफेसर अकोईजाम के ऊपर 12 से अधिक लड़कियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। राहुल गांधी कहां है? स्मैश द पेट्रियार्की कहां है? लड़की हूं लड़ सकती हूं कहां है? दूसरी बात, आपने दिखाया कि भी राहुल गांधी जी की टीम है, युवा आए हुए हैं, बहुत अच्छा टीम है, हम पटना से लाइव हैं, इनकी टीम है ना, कांग्रेस और आरजेडी आपस में चुनाव लड़ रही है, बिहार विधान परिषद का चुनाव हो रहा और आपस में लड़ रही है, इनकी टीम है ना, यूपी में लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में क्या हुआ, अजय राय के समर्थक और आराधना जी के समर्थक में क्या गुत्थम गुत्था नहीं हुआ, किस प्रकार के अपशब्दों का उपयोग हुआ। तो देखिए ऐसा है साहिल जी, यहां क्लियर हो गया है ये लड़ाई कोई लोकतंत्र की नहीं है। जो लोग अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र को नहीं बचा सकते हैं वो लोकतंत्र का हवाला देते हुए यहां पे कह रहे कि जंतर मंतर को डीनोटिफाई कर दिया गया। सामान्य प्रशासनिक निर्णय है, इमरजेंसी के विरोध में आंदोलन कहां हुआ था? रामलीला मैदान में। अटल बिहारी वाजपेयी जी को अटल बिहारी वाजपेयी बने वो रामलीला के उस भाषण में। आप बहुत लोकतंत्र से प्यार करते हैं, जाइए वहां पे आंदोलन करिए और सिद्ध करिए, लोगों में अपनी बातों को लेके जाइए। लोकतंत्र में साहिल भाई सर्वोपरि क्या है? लोकतंत्र में सर्वोपरि है लोग, और उनको असुविधा होगी यदि आप उनको इस प्रकार से हानि पहुंचाएंगे, सामान्य काम नहीं करने देंगे, अपने दफ्तर नहीं जाने देंगे। तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को पालन करते हुए कहा कि जाइए आप, यहां पे दशकों से ऐतिहासिक आंदोलन होते आए हैं, आपकी इतनी पराक्रम है, इतना पुरुषार्थ, उतना संख्या जुटाइए और जाइए वहां पे। और जो दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है साहिल जी, मतलब हद हो गई है। लड़की हूं लड़ सकती हूं हमने देख लिया, आंतरिक लोकतंत्र हमने देख लिया, इंडी गठबंधन का क्या चल रहा है हमने देख लिया, इनका संस्थानों में विश्वास, संस्थानों में निष्ठा। केरला कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया था मैं पूछना चाहता हूं यहां पे आपसे। केरला कांग्रेस का आप देखिए, उनकी हिम्मत देखिए, कहते हैं सीजीआई को हटा दो, भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसको हटा दो, हम किसी और को ले आएंगे।
3: क्या समझ रखा है आपने? ये इंदिरा गांधी का समय चल रहा है क्या कि अपने मन मुताबिक आप जज बिठा देंगे? क्या समझ रखा आपने? नवीन चावला को कहा गया अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस शाह कमीशन के द्वारा। नवीन चावला को कहा गया एन गोपाल स्वामी जो उनके कलीग थे, सीनियर कलीग थे, कि भैया इनको हटाइए। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को इंदिरा गांधी का तीसरा स्वघोषित पुत्र बोलता था 2009 के सामान्य चुनाव के ठीक पहले, उनको आपने मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। ऐसे नहीं चलेगा। या तो साहिल जी आपके शो पे आज तय हो जाए कि राहुल गांधी इज अबव द रूल ऑफ लॉ, राहुल गांधी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन अनफॉर्चुनेट फॉर राहुल गांधी, ये राहुल गांधी के लिए दुर्भाग्य की बात है कि देश में लोकतंत्र है, बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है और बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान सर्वोपरि है। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, बाबा साहेब अंबेडकर का एक भाषण है, आपने पढ़ा होगा, थ्री वार्निंग्स एनआरकी, ग्रामर ऑफ एनआरकी। ये क्या हो रहा है? ये अराजकता का व्याकरण फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ऑपोजिशन आज की तारीख में राजधानी को बंधक बनाना चाहती है और ये अराजकता का व्याकरण फैलाना चाहती है। जब तक संविधान है, जब तक लोकतंत्र है, आखिरी सांस तक हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का लोकतंत्र, उस पर आंच ना आए, किसी प्रकार का आंच ना आए। कोई खानदानी अहंकार, कोई परिवारी घमंड यहां नहीं चलेगा। भले आपके परिवार ने कितने प्रधानमंत्री दिए होंगे, लेकिन आप सामान्य नागरिक हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान कहता है एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ।
1: ठीक है। सुरेंद्र राजपूत आप पहले जवाब दे दीजिएगा, लेकिन एक एक सवाल तो मुझे आपसे पूछना है गुरु प्रकाश जी, कि एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है कि बुराड़ी में आंदोलन करने से संविधान की रक्षा कैसे होगी, या सीबीडी पर आंदोलन करने से, उसकी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। सरकार आंदोलनकारियों को, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो आंदोलनकारी होंगे उन्हें बेसिक सुविधाएं भी सरकार को वहां पर देनी होगी, ये भी उन्होंने अपने आदेश में कहा है। उसमें उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि अल्टरनेट जगह ढूंढिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि जंतर मंतर को आप डीनोटिफाई कर दीजिएगा। रवैया यह नजर आ रहा है कि जिसका दबाव सरकार पर बन सकता है, ये पुराने जमाने में याद है ना कि गांव के बाहर किसको फेंक देते थे, तो आंदोलनकारियों को गांव के बाहर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, हमारे नजर के सामने आंदोलन नहीं होना चाहिए। क्या सरकार की यह भूमिका यहां पर नजर आ रही है? संक्षेप में बताइएगा, उसके बाद सुरेंद्र जी जवाब भी देंगे इसका।
4: सर, रामलीला मैदान इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी है मेट्रो से, साहिल जी आप जानते हैं, रामलीला मैदान इतिहास गवाह है कि रामलीला मैदान ने कौन कौन से आंदोलन नहीं देखे हैं। अभी 10 साल पहले, 12 साल पहले आपने भी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार रहे होगे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन कहां हुआ था, निर्भया का आंदोलन कहां हुआ था। अरे बड़ी संख्या जुटाइए ना, जंतर मंतर बीच में है, इतने LIC ऑफिस और तमाम ऑफिस है वहां पे, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सदन है, RBI है, सारे के सारे बैंक, असुविधा होती है। लोकतंत्र में लोग आपके सर्वोपरि होते हैं और किसी प्रकार से लोगों की सुविधा को, आप लोगों को कष्ट मत पहुंचाइए, आंदोलन करिए, आंदोलन का स्वागत है। हम लोग
1: इसके सरकार का यह कहना है,
3: आपातकाल का जो आंदोलन,
1: लोगों को कष्ट किए बिना निकले। जी, देखिए कुल मिलाकर सुरेंद्र जी, मुझे जो समझ में आ रहा है, सरकार यह कह रही है कि आंदोलन करिए, लोगों को कष्ट मत होने दीजिए। सरकार के कष्ट की बात तो अलग है, लेकिन लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए, इस कारण से वहां पर जंतर मंतर को डीनोटिफाई किया है। और आप जंतर मंतर पर आमादा क्यों हैं? अभी आपकी रैली तो रामलीला मैदान में होने वाली है, अगली रैली जो बड़ी रैली होने वाली है वो।
5: बिल्कुल सही कहा साहिल भाई, कहते हैं ना कि हार गए जेनजी के आगे लाठी वाठी हंटर वंटर, हार गए जेनजी के आगे लाठी वाठी हंटर वंटर, और भारत फिर से एक हुआ है, गर्व है तुझ पर जंतर मंतर। उस जंतर मंतर को जिसने सैकड़ों नहीं हजारों आंदोलन देखे हैं, उसको आप डी नोटिफाई करके क्या कहना चाहते हैं, समझ से बाहर है। और आपने बहुत बढ़िया बात कही साहिल भाई, वो सबसे बढ़िया बात यह कि जब पुराने सामंतवादी थे, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, वो हमेशा गांव से बाहर बसा देते थे, हमेशा गांव से बाहर बसा देते थे। और वो ही भारतीय जनता पार्टी पीड़ित को, शोषित को, वंचित को, जो सरकार से कुछ मांग लेकर के आए हैं, उनको कोई बुराड़ी में, कहीं उनको सीबीडी ग्राउंड में, उनको अपना वहां पर बसा देगी कि बसे रहो, कोई बात नहीं, दो टैंकर पानी के भेज देंगे, कभी आप जो है सोलर लाइट लगा देंगे। ये पोजीशन कर दिए गुरु प्रकाश पासवान, ये जो है आपके लिए भी खतरनाक है, नंबर एक। नंबर दो, जो आप रामलीला ग्राउंड के पीछे छुपना चाहते हैं, आंदोलन के लिए अगले 30 दिन में सिर्फ 3 डेट्स खाली है रामलीला ग्राउंड में, और हर बार रामलीला ग्राउंड में 1,21,000 रुपए पर डे आपको जमा करने पड़ेंगे। 1,21,000, वो गुरु प्रकाश जी अपनी जेब से देंगे, नरेंद्र मोदी जी अपनी जेब से देंगे, अमित शाह जी अपनी जेब से देंगे, मुझे बता दीजिए क्या आंदोलन हम पैसा देकर के, जो हमारे बेचारे गरीब बच्चे हैं, नल है, नील है, कोल है, भील है, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, महिला है, नौजवान है, किसान है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, ये सब लोग 1,25,000 रुपए रोज कहां से लाएंगे? तीसरी बात, जो आप शहर की बात कर रहे थे, गुरु प्रकाश जी बड़े वैचारिक विद्वान थे, लेकिन आज इनकी संगत भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई, मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि गुरु प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी की संगत में वैचारिक रूप से दरिद्र हो गए। आपने सवाल पूछा क्या, ये अब्बा डब्बा झब्बा, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, फलाने जी, ढिमकाने जी, अरे आज की डेट में सवाल ये नहीं है कि हमारे यहां कितने प्रधानमंत्री हुए, प्रधानमंत्री हम लोगों के हुए जो जनता ने चुने हैं। प्रधानमंत्री किसी सामंत ने नहीं चुने थे हमारे यहां, या नागपुर से चुनकर के संघ ने नहीं भेजे थे, जनता ने चुने थे और जनता के चुने हुए हम लोग प्रधानमंत्री मानते हैं। अब आप आ जाइए कि हम लोगों ने जो है आम आदमी की असुविधा की बात करिए। अरे भाई, आम आदमी की असुविधा सबसे बड़ी है कि गरीब से गरीब आदमी के पास भी वोट का हक है और वो कहता है कि मैं हक अपने वोट के हक से सरकार बदल दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने उसी आम आदमी से उसी वोट के हक की चोरी कर ली, लूट कर ली, डकैती कर ली, लॉजिकल डिस्क्रेंसी के नाम पर, कभी किसी एसआईआर के नाम पर, कभी ज्ञानेश कुमार ने लोटों की चोरी भी की, लूट भी की, डकैती भी की। इससे बड़ी असुविधा आम आदमी को क्या होगी, है इससे बड़ी असुविधा, मुझे बता दीजिए। तो मेरा यह आपसे मानना है साहिल भाई कि जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, यह लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रही है। संविधान के पीछे गुरु प्रकाश जी सुप रहे, गुरु प्रकाश जी व्यक्तिगत रूप से आप जो संविधान को मानने वाले हैं, गुरु प्रकाश पासवान मैं मानता हूं, लेकिन आपकी भारतीय जनता पार्टी सामंतवादी है और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे।
6: बड़ी दिलचस्प बात थी जो कि एक वक्त था जब सरकार के नीतियों के खिलाफ जो भी आंदोलन होता था, सबसे पहला डेरा जंतर मंतर पर पड़ता था। आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जिक्र किया, आशुतोष जी यहां पर बैठे हुए हैं, उनका तो काफी संबंध रहा है उस आंदोलन से। जहां तक मुझे याद है, पहली बार अन्ना हजारे को पूरे दिल्ली में उनको लाया गया था तो वह जंतर मंतर पर ही लाकर बिठाया गया था। जब आंदोलन बढ़ा तब रामलीला मैदान पर शिफ्ट हो गया क्योंकि वहां पर बड़ी रैली भी चल रही थी। लेकिन श्रेष्ठ सिंह खेरा, क्या जंतर मंतर पर जो आपने आंदोलन किया, आपकी पार्टी की तरफ से आपके नेता वहां पर गए, तिरंगा लहराकर आपने वहां पर आंदोलन करने की कोशिश की, आज की स्थिति में क्या आपको लगता है कि आप जंतर मंतर के अलावा कहीं और इस तरीके का आंदोलन कर पाते, जो आपको जंतर मंतर के आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिसकी मांग को लेकर आप वहां पर जंतर मंतर पर बैठे थे, बुराड़ी में बैठे रहते, सीबीडी पर बैठे रहते, तो क्या आपकी मांग कभी पूरी हो पाती?
7: देखिए, मांग जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्लेस रहा है बड़े बड़े आंदोलनों का। जंतर मंतर को किसी और जगह से कंपेयर करके नकारा नहीं जा सकता साहिल जी। जिस तरीके से अभी भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर बाबा साहेब की और संविधान की बात कर रहे थे, मुझे इस बात की खुशी है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले भी अब संविधान की बात कर रहे हैं, तो मैं इनकी इस बात का स्वागत करता हूं। और दूसरी बात साहिल जी, आज हम दिल्ली पुलिस को, भारतीय जनता पार्टी को इस तिरंगे से तकलीफ हुई है। इनकी इस तिरंगे से तकलीफ नई नहीं है, जिस परिपाटी से ये आते हैं उसमें तो गोलवलकर जी खुद तिरंगे का विरोध करते रहे हैं। 52 साल इनको लग गए इस तिरंगे को अपनाने के लिए, 52 साल लग गए, और 52 साल बाद भी जो इन्होंने अपनाया है सिर्फ ऊपर ऊपर से अपनाया है, अभी भी अंदर से आत्मसात नहीं किया। इसी वजह से सौरभ दास, आशुतोष रनका, अजिंक्या जी, तमाम सीजेपी के कार्यकर्ताओं को जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए गिरफ्तार कर लिया। वाह, ये आपकी राजनीति है, कितना गिर गए। एक चीज और मैं साहिल जी बोलूंगा, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की, अटल बिहारी जी सबके लिए आदरणीय है। अटल जी तो कहते थे कि अगर मुझे सत्ता लेने के लिए किसी की पार्टी तोड़नी पड़े, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी नहीं छूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी क्या से क्या हो गए देखते देखते। अटल जी तो किसी की पार्टी तक नहीं तोड़ते थे सत्ता के लिए, आप सत्ता के नशे में अंधे होकर वोटों की चोरी करने लग गए। जहां पे आज हमें संघ के स्वयंसेवक दिखते हैं, जहां कोई भाजपा का दिखता है, बच्चा बच्चा कहता है कि वोट चोर आ गए हमारी गली में, वोट चोर आ गए हमारे शहर में। ये चरित्र आपने छोड़ दिया है संघ का और भारतीय जनता पार्टी का। ये धन्यवाद आपको नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को करना चाहिए जी।
6: इतना क्या गुस्सा कि तिरंगा दिखा दिया तो गिरफ्तारी हो गई, 5 दिन के लिए जेल के भीतर भेज दिया। वो कह रहे कि भाई जंतर मंतर पर आंदोलन थोड़ी कर रहे थे, तिरंगा लहराने के लिए गए थे।
2: नहीं नहीं साहिल जी, मैं बड़ा ध्यानपूर्वक सुनता हूँ और आलोचना सुन करके मुझे अच्छा लगता है, मुझे एनर्जी मिलती है, और आलोचना में अगर दम हो तो और अच्छा लगता है, लेकिन इस आलोचना में तो कोई दम ही नहीं है। इतने नादान तो ये मेरे भाई भी नहीं है जो सीजेपी वाले बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूँ इनको, भाई तिरंगा लहराने पर कौन गया अंदर? आप लोगों ने लिखित अंडरटेकिंग दिया था, उस अंडरटेकिंग का वायलेशन किया है। आप कानून से ऊपर हो गए हैं क्या? अंडरटेकिंग का वायलेशन होगा तो कार्रवाई नहीं होगी क्या? क्या समझते हैं आप अपने आप को? आप युवाओं के ठेकेदार हैं क्या? युवाओं की जो स्वघोषित ठेकेदारी आपने लेके रखी है ना इस भ्रम में, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था भैया, हाँ धन्यवाद, ये जो युवाओं की स्वघोषित ठेकेदारी में आपको लगता आपने ले रखी है, इस भ्रम में मत रहिएगा आप लोग, इस अहंकार में मत रहिएगा आप। युवा वो भी है जो एशियन गेम्स में जाता है और 100 से अधिक पदक जीत के लाता है। युवा वो भी कैप्टन स्मिथ मच्छर जो तीसरे विश्व युद्ध को रोकने से रोकता है। युवा वो भी है जो जेएनयू में आज 13 लड़कियां छात्र जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जिनका यौन उत्पीड़न हुआ है, कभी आंख में पानी होगा तो उनके लिए भी कहिएगा। और संविधान और बाबा साहब अंबेडकर की बात आप कर रहे थे, आप जो संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान दिवस मनाइएगा ना 26 नवंबर को, पूछ करके आइएगा अपने नेताओं से कि संविधान दिवस किसने घोषित करवाया था, संविधान दिवस क्यों होता है, कब से होता है, जरा पूछ करके आइएगा, तथ्यों से जरा तैयार होकर के आया करिए भैया, तब बात किया करिए। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, ये भी पता करके आइए कि बाबा साहब अंबेडकर को भारत
6: रत्न मिलाकर वो कह रहे हैं कि आपने तो बॉन्ड तोड़ा, लिख के दिया था,
2: बैठे हैं
6: जो अदालत में आपको जेल में भेज दिया, वो कह रहे हैं कि वो तो आपने दिया हुआ बॉन्ड ब्रेक किया है, जंतर मंतर से उसका लेना देना नहीं है।
7: ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो कहता है कि आप तिरंगा नहीं लहरा सकते जंतर मंतर में? ऐसा कौन सा बॉन्ड है अपने ही देश में किसी समय पे एक मिनट किसी समय पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल चौक तक तिरंगा फहराने यात्रा निकाल के चले जाते थे, आज वही हमें जंतर मंतर में तिरंगा फहराने से रोक रहे हैं। तिरंगा फहराने से कौन सी शांति भंग हुई है जरा बता दीजिए? क्या तिरंगा फहराने से शांति भंग होती है? तिरंगे में यह सफेद रंग तो शांति का ही प्रतीक है, तिरंगे में ये सफेद रंग तो शांति का ही प्रतीक है, तो कौन सी शांति भंग हो गई जरा बताइए? ये भाजपा
6: जी कहीं ना कभी लोगों को शायद ये लगेगा कि ये जो गुरिला टैक्टिक्स है ना, वही कहीं ना कहीं सरकार को चुभ रही है, और लगता है कि भाई इसी की वजह से जंतर मंतर ही ना रहेगा, बास ना बजेगी बांसुरी। भाई जितना ढोल बजाना है जाके दिल्ली के बाहर बजा लीजिएगा।
2: साहिल जी ऐसा है, हाँ नहीं साहिल जी देखिए ना, ऐसा है कि लोगों में, त्रिपुरा में लोकल बॉडी का चुनाव हुआ बैलेट पेपर से हुआ, वहां के लोग नहीं है क्या? हिमाचल प्रदेश में लोकल बॉडी का चुनाव हुआ, अभी कल गुजरात में लोकल बॉडी का चुनाव हुआ है, वहां के लोग नहीं है। कहां के लोगों की बात कर रहे हैं आप? कुछ विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके, चलिए ठीक है आइए पढ़ करके आप आंदोलन करिए, यहाँ पे पर्यटन के लिए आए हैं, पर्यटन करिए, थोड़ा रील वील बनाइए और फिर लौट जाइए। एक जर्मनी से आया हुआ है, उससे बोलना समय व्यर्थ करने जैसा है। लेकिन यहाँ सुरेंद्र जी बैठे हैं, बड़े वरिष्ठ हैं। देखिए सुरेंद्र जी का जवाब देने दो भाई, सुरेंद्र जी हमारे बड़े वरिष्ठ हैं, मैं बड़ा इनको सम्मान करता हूं, कांग्रेस में कुछ गिने चुने ऐसे
6: सुरेंद्र जी, आपने जो तारीफ किया उसका जवाब मिलेगा आपको,
2: ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं साहिल जी। लेकिन हाँ नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, ये बढ़िया आदमी है सर, और ये मैं बताना चाहता हूँ, ये जमीन से जुड़े आदमी है, और इनको बताना चाहता हूँ भाई, इतने नल नील कोल भील कर रहे हैं सर, कांग्रेस पार्टी का ये दाव उल्टा न पड़ जाए, आराधना मिश्रा को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है, कहीं वो दाव उल्टा न पड़ जाए, थोड़ा ख्याल रखिएगा इस बात का कि जिस चिंता से राहुल गांधी जी ने आराधना मिश्रा को अध्यक्ष बनाया है, की घोषणा की है, वो चिंता आपके ध्यान में रहे, कहीं का आपको नोटिस ना आ जाए, हमें चिंता हो रही है इस बात की। और बाबा साहब अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, डी के शिव कुमार के साथ क्या हुआ, कुमारी शैलजा के साथ क्या हो रहा है, मतलब मुझे देखिए ये अच्छा नहीं लगता है, ये जो बात है अब देश की जनता के सामने स्पष्ट हो गया है। साहिल जी आपस में लड़ रहे हैं बिहार में, आपस में लड़ रहे हैं
6: देश में,
2: एकजुटता दिखाएंगे ये लोग, छोड़िए ना।
6: खैर सुरेंद्र जी, कुल मिलाकर बीजेपी का दावा हमेशा यह रहा है कि आप जितना भी आंदोलन कर लो चुनाव तो हम ही जीतेंगे, तो इसके वजह से उसका असर तो कुछ होने वाला नहीं है, कल तो सीधी सीधी चुनौती आपको दे दी है उसके बारे में। लेकिन जरा आशुतोष जी और संगीत रागी बैठे हैं, जरा उनको भी जरा हम इस चर्चा में लाना चाहते हैं, और उससे पहले जी सुरेंद्र जी आप चलिए, दस सेकंड चलिए,
8: बहुत बहुत शुक्रिया। ये गुरुप्रकाश पासवान जी से पहले भी मैंने कहा कोई हमें शिकायत नहीं है, क्योंकि गुरुप्रकाश जी संविधान की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन संगत खराब है, इसीलिए वैचारिक दरिद्रता आ गई, क्योंकि इनको पढ़ा लिखा हुआ खाली भेजा गया है, ये अपने मन से नहीं बोल पा रहे। अरे संविधान दिवस मनाने वाले, संविधान दिवस बताने वाले लोग अपना गले मिलकर के संविधान की हत्या कर रहे हैं, संविधान की पूरी हत्या आप लोग कर रहे हैं, और एक जगह नहीं, आप चुनाव जीत रहे, आप कह रहे 2029 में हम चुनाव जीत जाएंगे, कौन से भाई आपने क्या ज्ञानेश कुमार वाली सारी गोटियां सेट कर ली हैं? आज की डेट में आप नल नील कोल भील, पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान अल्पसंख्यक और पीड़ित शोषित वंचित की बात पूरी, तो आप ये लाइन तक सब क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी नहीं बोलते, तो इनके हक की बात क्या करेंगे? सारे के सारे इनके हक जातीय जनगणना तो आप करा नहीं पा रहे। आप जो है अडानी और अंबानी को देश के संसाधन सारे के सारे दे दे रहे हैं, सारे की सारी जिसको जहां हमारा प्लूरल नेचर था बिजनेस का, उसको आपने मोनोपोली पे कर दिया है, आपने पूरे देश को आपने बंधक बना दिया है।
6: चंद ये सारे मुद्दे लेकर,
4: साहिल जी 10 सेकंड,
6: अगली बार से सुरेंद्र जी
4: 10 सेकंड,
6: ये सारे मुद्दे लेकर अगली बार से आपको बुराड़ी जाकर आंदोलन करना पड़ेगा, जंतर मंतर पर आप नहीं कर पाएंगे, ये सभी मुद्दे लेकर आपको बुराड़ी जाना पड़ेगा।
8: जी बिल्कुल ठीक है, चलिए सहमत हूँ।
6: एक मिनट गुरु प्रकाश जी, आशुतोष जी और आशुतोष जी और 10 सेकंड ठीक है। देखिए मैं सबसे पहले आशुतोष जी और संगीत रागी इंतजार कर रहे हैं, और उन्होंने उन्होंने उन्होंने पिछले जी बोलिए बोलिए, खत्म करिए आपकी बात।
4: देखिए 10 सेकंड में बस यही बात बोलूंगा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना होती है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस प्रीएम्बल का राहुल गांधी जी की दादी ने क्या हश्र किया था, ध्वस्त कर दिया था, हत्या कर दिया था, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ। लोगों की मेमोरीज ताजी है, लोगों को सब कुछ याद है, लोगों को अब
6: उसी संविधान ने अपनी आवाज उठाने का अधिकार और हक भी इस जनता को दिया हुआ है। उसी संविधान ने, बाबा साहेब अंबेडकर की संविधान ने भी वही अधिकार दिया हुआ है, और बाबा साहब अंबेडकर ने भी आंदोलन के बल पर ही, महाराष्ट्र में आपने गया होगा चवदार, उसको तालाब कहते हैं, वहां जाकर आंदोलन किया था, तब जाके दलितों को वहां पर पानी भरने का अधिकार भी मिल पाया था। तो आंदोलन के रास्ते से ही इस देश में हर तरीके के सुधार भी हुए हैं। लेकिन जरा जंतर मंतर पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं आशुतोष जी और संगीत रागी जी, आपने तो बहुत सारे आंदोलन वहां पर देखे होंगे, कुछ गिने चुने आंदोलन हम भी जनता के सामने रखेंगे, जरा फुल फ्रेम में दिखा दीजिएगा। शुरुआत करते हैं 1993 से, सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, क्योंकि तब मनमोहन सिंह जी ने जो नीतियां लाई थी उसके खिलाफ पहला आंदोलन ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ इसी जंतर मंतर पर आयोजित किया गया था। 1999 में मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी जंतर मंतर पर किया गया था। उसके बाद 2004 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, पहला भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन इसी जंतर मंतर से उसी की शुरुआत हुई थी। 2009 में तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर आंदोलन, जिसके बाद तेलंगाना का राज्य हुआ, वो भी जंतर मंतर पर ही शुरू हुआ था। 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन की शुरुआत, भले रामलीला मैदान पे अंत हुआ होगा लेकिन शुरुआत इसी जंतर मंतर के आंदोलन से हुई थी। 2012 में सबसे बड़ा निर्भया कांड पर आंदोलन, जिसके बाद दिल्ली में तख्ता पलट भी हुआ 2015 में, वो भी इसी जंतर मंतर से शुरू हुआ था। 2015 में सेना में वन रैंक वन पेंशन का आंदोलन जंतर मंतर पर ही किया गया था। CAA NRC के खिलाफ आंदोलन इसी जंतर मंतर से शुरू हुआ था। 2023 में महिला पहलवानों का आंदोलन, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो सांसद थे उस वक्त, वो भी यहीं पर इसी जंतर मंतर पे किया गया था। अब सवाल आशुतोष जी और संगीत रागी जी मेरा यही है कि जंतर मंतर पूरे देश में प्रोटेस्ट का केंद्र रहा है, कि आपको अगर कुछ आवाज उठानी है तो जंतर मंतर पर आइए, आपकी आवाज सरकार सुन पाएगी, क्योंकि अगर आप चिल्लाएंगे तो सरकार तक ये आवाज यहीं से पहुंच सकती है। सरकार के सारे आस्थापन उस जंतर मंतर से काफी पास करीब है, और इसीलिए जंतर मंतर को वहां पर चुना गया था। क्या कारण है आपको लगता है कि आप जंतर मंतर यह आंदोलन का प्रतीक नहीं रहेगा?
9: साहिल, उम्मीद है कि आप मुझे पूरा वक्त देंगे, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से लोगों को सुना है। ये बात मुझे सुनकर अच्छा लगा कि भारत के संविधान में लोगों की आस्था है। इंदिरा गांधी के बारे में चर्चा की गई, लेकिन 2007 में सुदर्शन जी ने क्या कहा था, स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन। खैर छोड़ दीजिए, उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। देखिए, इस देश के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिरों की मान्यता सबसे ज्यादा होती है। क्यों? इसीलिए बहुत सारे प्रदर्शन स्थल, लेकिन जंतर मंतर का जो स्थान है वो दूसरा कोई नहीं ले सकता। आप लोकतंत्र के जो पुजारी हैं उनसे, उनके पूजा स्थल को उनसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं जंतर मंतर को लेके। तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दिया जा रहा है वो गलत हवाला दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, वो कोई आदेश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, जिसमें उन्होंने कहा कि यहां पर जो सिविल एमिनिटीज है वो नहीं है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसका बहाना लेके कह दिया कि नहीं भाई आप वहां चले जाइए। जब सुप्रीम कोर्ट CEC के चयन को लेकर कोई फैसला करता है तब आप उस फैसले को नहीं मानते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ऑब्जर्वेशन देता है तो उसके बहाने पे आप जो है वो उस जगह को बदलने का काम करते। दूसरी बात, यह कहा जा रहा है, इस देश की विडंबना को देखिए कि जो भगवा वस्त्रधारी लोग जो मासूम बच्चियों को सड़क पर पटक पटक के पीटते हैं, नाबालिग बच्चियों को, उनको 24 घंटे के अंदर जमानत मिल जाती है। पहले तो पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती, जब पुलिस गिरफ्तार करती दबाव में आके, तो 24 घंटे के अंदर उनको जमानत दिलवा दी जाती, 24 घंटे के अंदर। आप सोचिए, जिनको कि कम से कम कई सालों तक जेल में रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर की मासूम बच्चियां हैं, और वो तस्वीर सबने देखी, जिनका दिल नहीं दहला वही लोग हो सकते हैं जो उस जमानत दिलवाने का काम कर रहे थे, और बाद में जब बाहर निकले तो उनका फूल माला से उनका स्वागत हो रहा था। ये पता नहीं कौन से सनातनी लोग हैं, बताओ, इस पर अगर शर्म नहीं आती लोगों को तो किस पर शर्म आएगी? और जो जिनको सलूट करना चाहिए जिन बच्चों को, उनको 5 दिन जेल में रख रहे हैं आप, ये फर्क है। तीसरी बात, कहा गया कि जंतर मंतर में तो बहुत ट्रैफिक वगैरह प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं रामलीला मैदान गया हूं, इसलिए मैं जानता हूं, वहां पे 3 हॉस्पिटल हैं आसपास में, लोकनायक हॉस्पिटल, जीबी पंत हॉस्पिटल, संजीवन हॉस्पिटल। जब वहां पे प्रदर्शन होगा तो उन हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति होगी, मरीजों की क्या स्थिति होगी, आप अच्छी तरीके समझ सकते हैं। बगल में रेलवे स्टेशन है, वहां हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, वहां क्या हालत होगा आप समझ सकते हैं। आईटीओ है, जो हिंदुस्तान का ट्रैफिक का एक तरीके से हेडक्वार्टर मान लीजिए उसको। तो जो तर्क आप जंतर मंतर पे दे रहे हैं, उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति,
1: यानी दूसरी जगह पर ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाएगी। और देखिए, अब जंतर मंतर की लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जंतर मंतर को प्रदर्शन लिस्ट से हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया है। 11 अक्टूबर को जंतर मंतर को हटाया गया था, डीनोटिफाई किया गया था प्रोटेस्ट साइट से, और अब सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर पीआईएल भी फाइल की गई है प्रदर्शन स्थल से हटाने को लेकर। संगीत रागी, आपने सुना आशुतोष क्या कह रहे हैं, मैं वही पूछना चाह रहा हूं जो लिस्ट हम चला रहे हैं यहां पर। निर्भया कांड का आंदोलन होता है तब जंतर मंतर की वजह से वहां पर लोगों को तकलीफ नहीं होती है। अन्ना हजारे का आंदोलन होता है 2011 में, तब तकलीफ नहीं होती है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन होता है 2004 में, तब तकलीफ नहीं होती है। ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ 1993 में आंदोलन छेड़ा जाता है, तब तकलीफ नहीं होती है। वन रेशन वन रैंक वन पेंशन का आंदोलन होता है, तब तकलीफ नहीं होती है। क्या कारण है कि आज की स्थिति में सरकार को लगता है कि बहुत ज्यादा अब तकलीफ हो रही है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं?
10: साहिल, मेरी इच्छा तो है कि पहले आशुतोष के सारे झूठ का पर्दाफाश करूं, लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा इस बात से कि जंतर मंतर के अलावा एक और इस देश में बड़ा देश के नाम
9: संगीत रागी की मेरे प्रति साहिल मोहब्बत है, या मोहब्बत क्या कहलाती है?
10: क्लब भी एक जगह, जरा ये वोट क्लब पर रैली हुआ करती थी साहिल, आपको ध्यान होगा कि वोट क्लब पर बाबरी मस्जिद को लेकर के राम जन्मभूमि आंदोलन ने वहां किया था, और मैं उस समय वहां पर था, माना जा रहा था कि 3-3.5 लाख लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, ऐसा इस प्रकार का आकलन किया गया था। ये वही जगह है, मुझे वो भी दिन याद है जब चौधरी देवीलाल ने वहां पर बहुत बड़ा आंदोलन किया, वहां पर इकट्ठा किया था, और उससे घबरा करके, उस रैली से घबरा करके बीपी सिंह ने एकाएक जो है वो मंडल कमीशन आरोपित कर दिया था इस देश में। लेकिन जब राम मंदिर पर वोट क्लब पर रैली हुई तो 1993 में नरसिंह राव की सरकार उठी और एकाएक रातों रात उसको बैन कर दी। तब तो भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार ने ये नहीं कहा कि लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है। अरे भाई, जिसमें ताकत होगी वो वोट क्लब नहीं, पूरे देश भर में आंदोलन खड़ा होगा, लेकिन कुहनी मार वाले की हैसियत ही उतनी है, वो कुहनी मार सकते हैं, अपने मुख्यमंत्रियों को मार सकते हैं। अभी मेरे मित्र राजपूत जी कह रहे थे ये कोल भील के लिए पैसा कहां से आएगा। अरे भाई, आपने पिछले 2024 के चुनाव में 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे, और अभी तो आपके पास पैसे बहुत जगह से आ रहे हैं, सोर्स आपके बढ़ गए हैं, राहुल गांधी जी विदेश यात्रा बहुत बार कर चुके हैं, तो इतना तो इस देश को सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी को लाल किले के पास या रामलीला मैदान में या कहीं भी आंदोलन करने के लिए पैसों की कमी नहीं हो, भीड़ की कमी हो सकती है आपको, क्योंकि बिहार में जब एसआईआर हो रहा था तो आपके पास 1 लाख आपके पास बीएलए नहीं मिल रहे थे। उत्तर प्रदेश में जब एसआईआर हो रहा था तो हर बूथ के लिए आपको बीएलए नहीं मिल रहे हैं। तीसरी बात, यहां पर कोई किसी को तिरंगे से एतराज नहीं है, लेकिन मैं एक चीज मानता हूं, तेलचट्टो का आंदोलन पहले दिन से मैं कह रहा हूं अराजक आंदोलन है, और मैं इसको बहुत गंभीरता से बोलता हूं, मैं इसको बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। देखिए, अमित शाह ने जो जमीन पर लड़ रहे थे नक्सल, उनको तो पुलिस, जो बंदूक और लाठी यूज कर रहे थे उनको तो परास्त कर दिया, लेकिन वो बंदूक और लाठी चलाने और बम फोड़ने और रिवॉल्वर और मशीन गन चलाने वाले नक्सलियों के पीछे जो ताकत थी शहरी नक्सल, वो एक तरह से सड़क पर अब सीधे उतर करके आ गया है, जो मानवाधिकार की बात करेगा, डेमोक्रेसी की बात करेगा, जो तियमान स्क्वायर पर टैंक उतरने पर चुपचाप रह जाता था। सुन लीजिए, 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड प्लीज सर, 10 सेकंड हमें भी बोल लेने दीजिए।
11: आप तो मतलब स्क्वायर पहुंच गए,
10: टैंक चलाने वाले के साथ खड़े होने वाले
7: साहिल जी,
11: मतलब अगर कोई इस देश में डेमोक्रेसी की बात करेगा तो ये आप पहले चेक करेंगे कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है, और उसके आधार पर ये उसको अधिकार होगा कि वो डेमोक्रेसी की बात कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये बड़ी दिलचस्प बात है संगीत रागी जी।
10: साहिल मैं अपनी बात कर लूं,
7: संगीत जी सुनिए प्लीज आपने आइडियोलॉजी की बात की थी, मैं अपनी बात कर लूं,
10: आप इसके बाद जवाब दे दीजिएगा।
11: सुनन राजपूत कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार के समय में बोट क्लब जैसे बदला गया था, और ये पहली बार नहीं है, दिल्ली में ऐसे प्रोटेस्ट साइट कई बार बदले गए हुए हैं, तो जंतर मंतर से क्या दिक्कत है? बोट क्लब पे आंदोलन इससे पहले होते थे, इससे पहले तो इंडिया गेट पर भी आंदोलन होते थे, ये बार बार कैसे बार बार बंद होते हैं? आपका बंद हो गया तो क्या दिक्कत है आपको?
8: ऐसा है ना, ये संगीत रागी साहब जो है ये मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ थेथराई करते हैं, टोटल थेथराई, मतलब 100%। अरे भाई, मान लीजिए हमारी सरकार ने कोई कमी की तो उसको शिखंडी बना करके कब तक छुपोगे पीछे, कब तक उसके पीछे छुपोगे? जनता ने हमको उसकी सजा दे दी, हमको विपक्ष में बैठा दिया, और आप बताओ मुझे कि अगर आप भी विपक्ष में, हमें तो 44 सीट दी थी, आपको 4 सीट देगी, नंबर एक। नंबर दो, भाजपा के लोग और संघी लोग कब से तिरंगे के प्रिय होने लगे? जिस संघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने और जनसंघ ने मिलकर के तिरंगे को जलाया था, तिरंगे को जला करके संविधान को रोक करके, संविधान को जला करके जो लोग आज संविधान बचाने की बात,
11: समय खत्म हो रहा है, और संगीत रागी जी 10 सेकंड है आपके पास, आखिर में
10: साहिल 10 सेकंड है
11: संगीत रागी,
10: साहिल श्रीमती सोनिया गांधी को तिरंगे से कब प्यार था? 1971 में जब भारत की लड़ाई थी तब वो जाकर के इटली के दूतावास में थे, 1980 तक 83 में
8: बकवास की बात करता है संगीत रागी,
11: यही बात करिए
8: और नहीं
11: तो। चलिए, मामला यहीं पर आकर भटक जाता है, लेकिन आमतौर पर अब यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पीआईएल के द्वारा वहां पर मांग की गई है कि एक बार फिर उसे नोटिफाई किया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानेगा? नजर रखेंगे। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देख रहे हैं।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: SBI Celebrations Unlimited इस festive season को बनाए special car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ।
2: आपके पास दो options हैं, या तो Superman बनकर furniture को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR boards लगाकर furniture को lifetime के लिए water और termite proof बना लो। E3 products, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो थमका लगाने पर
4: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
5: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
8: कौन सी बनानी है?
9: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रूँ सारा।
10: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
11: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
12: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
13: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
12: क्या?
13: इनकी राय।
14: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
15: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
3: अगर तुम्हें देश में इमरजेंसी लगानी है, इमरजेंसी करनी है, तो ऑफिशियली करो ना। ये क्या कायरों की तरह अनऑफिशियली आप इमरजेंसी कर रहे हो, जहां पर आप लोगों को जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो। ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया कि उसके लिए आप लोगों को 5 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हो। इतने बड़े कायर मत बनो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। अगर इमरजेंसी लगानी है तो ऑफिशियली लगाओ, दम है तो। आरोप क्या लगा रहे हो? जो सत्ता में हो इन्वेस्टिगेशन करो, जांच करनी है वो करो। ये आरोप क्या लगा रहे हो तुम लोग? और ये जो लोग हैं, ये सारे के सारे बहुत ही बड़े कायर हैं। ये पुलिस के पीछे छुप रहे हैं। कल से सौरभ, आशुतोष और अजिंक्य को इलीगल डिटेंशन में रखा गया था। उनके लॉयर से तक उनको मिलने नहीं दिया गया था। और आज सुबह सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। किस चीज के लिए? क्या गुनाह था उनका? उनका गुनाह सिर्फ यही था कि वो जंतर मंतर पर गए और उन्होंने वहां पर तिरंगा लहराया।
4: ये हिंदुस्तान है अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है। और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए। इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से। देखिए, मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए। इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे। ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस। और घबराइए मत, कोई डर रहा है?
5: नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
4: खुश हो?
6: यस,
4: शाबाश, लव यू।
7: दिल्ली पुलिस, तुम लट्ठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
8: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन। डोंट ट्विस्ट।
7: क्या हुआ?
8: डोंट ट्विस्ट लप से।
7: हर आदमी में
8: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखिए।
9: कितना घटिया था यार, घटिया तरीके से पढ़ा।
8: लप लप लप।
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
1: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
2: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
3: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
2: क्या?
3: इनकी राय।
4: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेट निर्माण का रियल हीरो।
5: कहा तो रायबरेली से रथ यात्रा की शुरुआत करके अखिलेश यादव ने कांग्रेस के गढ़ में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के दावे किए थे और महीने भर के अंदर फुर्सतगंज चौराहा पार करके सियासत पड़ोस के अमेठी जिले में पहुंच गई और वहां इंडिया गठबंधन को कुछ ऐसा झटका लगा कि समाजवादी पार्टी के 3 विधायक बीजेपी की ओर खिसक लिए। विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह बीजेपी में चले गए। इसके लिए अमेठी के गौरीगंज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और बीजेपी महामंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में तीनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम यूपी को तरक्की की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का दावा किया।
6: कि राजनीति सेवा भाव है और सेवा किसके साथ रह के अपने लोगों के अच्छे से की जा सकती है, तो विचार निकल के आया, लोगों का मत निकल के आया कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में काम कर रही है, राम हित में काम कर रही है, सनातन हित में काम कर रही है, देश को प्रदेश को मजबूत बना रही है, अर्थव्यवस्था ठीक कर रही है और देश का नाम पूरे विश्व में ताकत के साथ बढ़ा रही है, तो उसके साथ जाने का निर्णय लिया गया।
5: गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने पार्टी छोड़ने की जो वजह बताई है, दरअसल उसका कनेक्शन धर्म और आस्था से जुड़ा है। राकेश कहते हैं कि सनातन की रक्षा, आस्था और संस्कार के कारण नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में सनातन ग्रंथों को लेकर बयान आए, यहां तक कि समाजवादी पार्टी ने विधायकों को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन तक नहीं करने दिए। दरअसल समाजवादी पार्टी से ताजा बगावत सिर्फ अमेठी जिले तक सीमित नहीं है, इसमें जालौन, अमेठी और अयोध्या तीनों जिलों के 3 SP विधायक बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में अगर सिर्फ रायबरेली अमेठी के शक्ति संतुलन की बात की जाए तो दोनों जिले मिलाकर कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। दल बदल से पहले यहां समाजवादी पार्टी के 6 और बीजेपी के 4 विधायक थे। इसमें ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे तो मंत्री बन चुके हैं। अब गौरीगंज के राकेश सिंह के आने के बाद 10 में से 6 सीटों पर बीजेपी हो जाएगी, 4 सीट पर समाजवादी पार्टी बचेगी, जिसमें अमेठी में 1 और रायबरेली में 3 विधायक बचेंगे। यानी 2022 से 2027 के बीच अमेठी और रायबरेली दोनों जिलों से एक एक समाजवादी भाजपाई बन गए हैं।
7: भारतीय जनता पार्टी हमको कहाँ लड़ाती, क्या करती है, ये उस पर डिपेंड होगा। हमारी ऐसी कोई दबाव या कोई हमारा इसको डिमांड नहीं है।
8: अगर खब्बू तिवारी को टिकट मिलता, क्या आप उनका समर्थन साथ देंगे?
7: भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी सिंबल देगी उसके साथ हम हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
8: मतलब भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे 2027?
7: बिल्कुल, 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी के हाथों को मजबूत करेंगे, आदरणीय योगी जी मजबूत होंगे।
5: यूपी के चुनावी समर से पहले ये दल बदल असरकारी माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश इसी संख्या के आधार पर कांग्रेस के ऊपर भी अमेठी रायबरेली का दबाव बना रहे थे। वैसे अखिलेश लगातार बीजेपी में अंदर खाने नाराजगी का दावा करते रहे हैं, चाहे वो कौशल किशोर के बेटे और यूपी प्रदेश बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष विकास किशोर की नाराजगी की बात हो या आंवला के पूर्व बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बात। अखिलेश दावा करते आ रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक और नेता उनके संपर्क में हैं। सबर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

क्या लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत से पहले उसे टॉर्चर किया गया था? क्या मौत से पहले शिवा के शरीर को सिगरेट से दागा गया था? क्या यही जुल्म, यही टॉर्चर शिवा की मौत की वजह बना? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये गंभीर आरोप खुद शिवा शर्मा की मां रंजना की ओर से लगाया गया है। इन सनसनीखेज आरोपों के बीच लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत का मामला अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया है, ये हाई प्रोफाइल केस, रसूख, ब्लैकमेलिंग और एक बड़े सिंडिकेट का खतरनाक कॉकटेल दिख रहा है जिसका शिकार युवा कारोबारी शिवा शर्मा बना। इस पूरे जाल को लेकर जो जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पता ये भी चला है कि शिवा की मौत के बाद भी श्रद्धा और उसके साथियों ने परिवार वालों को सही जानकारी नहीं दी, काफी देर तक इस पूरे केस को छुपाने की कोशिश करते रहे। पुलिस को अंदेशा है कि घटना के बाद मेडिकल कॉलेज से निकलते ही आरोपियों ने आपस में संपर्क साधा और एक सोची समझी साजिश के तहत शहर से फरार हो गए। पुलिस श्रद्धा दुबे और उसके कनेक्शन की पड़ताल कर रही है। इस बीच उसके कई बड़े नेताओं से संपर्क की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या किसी ने लखनऊ से फरार होने में श्रद्धा की मदद की? जांच के बीच पुलिस को श्रद्धा को लेकर कई और जानकारियां भी मिली हैं। पता चला है कि श्रद्धा को शुरुआत से ही ग्लैमर वर्ल्ड का शौक था। उसके पति ने हैदराबाद से उसे एक्टिंग का कोर्स करवाया जिसके बाद वो लखनऊ आकर मॉडलिंग करने लगी। यहाँ रसूखदार और हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क बढ़ते ही उसने पति को छोड़ दिया और यहीं बस गई। पुलिस अब श्रद्धा के पुराने मुकदमों, उसके बैंक खातों के लेन देन और संदिग्ध संपर्कों की कड़ियां जोड़कर पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने में जुट गई है।

0: आ गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: हाँ चाचा, अखबार भाँच रहे हैं।
2: टेस्ट
0: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
2: अरे भैया तुटस में हिसाब ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
0: अच्छा, कब उठाए?
2: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
0: अच्छा
2: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन कर गया, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
3: जी,
2: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
0: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है
2: आपका। टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द भीता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन दिल बोलता रखे थे हाँ, एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
0: अच्छा
2: और क्या
0: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
2: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी में बचे उसमें भागने लगता हूँ।
0: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही
2: है। किधर?
0: चाचा हम खेल गए अब की।
4: दिल्ली पुलिस तुम लट्ठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
5: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
6: डोंट ट्विस्ट।
4: क्या हुआ?
6: डोंट ट्विस्ट लप से।
4: हर आदमी में
6: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखिए।
5: कितना घटिया था यार।
4: हाँ।
6: लप लप लप।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मेरा मेरठ नीला ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी की सजा। जिला जज ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला। सौरभ के शव के किए थे टुकड़े। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को फिर घेरा, कहा हर ज्यादती का होगा हिसाब। एनएसयूआई छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर लगाए मारपीट के आरोप। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन की सूची से हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। तुरंत सुनवाई के लिए कल होगी लिस्टिंग। 11 अक्टूबर के आदेश को चुनौती। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराने का दिया आदेश। तब तक प्रशासक बने रहेंगे ग्राम प्रधान। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का दिवाली बोनस। अब दिव्यांगों को 18 साल की बजाय जन्म से मिलेगी पेंशन। मोदी सरकार का फैसला, 3 पेंशन योजनाओं से इंदिरा गांधी का नाम हटा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: ये हिंदुस्तान है। अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए।
1: डेढ़ किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो।
0: सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक।
1: 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए।

आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आज ज्ञानेश कुमार हटाओ की अपनी मुहिम में राहुल गांधी सड़कों पर तो नहीं उतरे, न ही इंडिया अलायंस की कोई आज बड़ी बैठक हुई, लेकिन राहुल गांधी ने अमित शाह को चैलेंज दिया, चुनौती देने की कोशिश की। दरअसल बीते दिन अमित शाह ने कहा था कि 8,000 लोगों की भीड़ से आप देश की आवाज नहीं बन सकते।

गांधी ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यही हिंदुस्तान है। एनएसयूआई ने आज दिल्ली पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। उधर जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने पर विपक्ष का विरोध बढ़ता जा रहा है। और तो और अब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर कर दी गई है। एक ओर जहां जंतर मंतर पर अवैध घुसपैठ की कोशिश पर सीजेपी के आशुतोष रांका और सौरभ दास को 5 दिनों की जेल भेज दिया गया है, वहीं राहुल गांधी ने उनका

0: गांधी ने उनका समर्थन कर दिया है। इस पूरी लड़ाई में अब बहस 2029 पर चल पड़ी है। कल अमित शाह ने कहा था कि 2029 में राहुल फिर हारेंगे, तो कांग्रेस का जवाब है कि पीएम मोदी अस्थिर हो गए हैं, ये साफ नजर आने लगा है। सवाल है कि क्या सीसी को हटाने की लड़ाई पर अब 2029 का दांव चला जाने लगा है? क्या राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शनों पर अमित शाह का यह कहना सही है कि यह देश की आवाज नहीं है? अमित शाह ने तो यह भी ललकारा कि अनेकों ऐसे राज्य हैं जिसमें चार चार दशक से भारतीय जनता पार्टी ही शासन में, कांग्रेस पार्टी शासन में नहीं आई है। उन्होंने गुजरात का जिक्र किया और कहा तब भी वहां नहीं जीत रहे थे, तब कौन सा SIR हो रहा था? राहुल गांधी का घमासान, 2029 पर शाह का ऐलान, आज है हल्ला बोल का यही विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए।
1: ये हिंदुस्तान है, अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज, और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए। इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
0: NSUI कार्यकर्ताओं को हिंदुस्तान बताकर अमित शाह का जवाब देने राहुल गांधी कुछ यूं सामने आए। दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी के हंगामों पर अमित शाह ने मंगलवार को जोरदार प्रहार किया था। अमित शाह ने न सिर्फ SIR के विरोध पर राहुल गांधी को घेरा था, बल्कि ये भी कहा था कि राहुल असली हिंदुस्तान को नहीं जानते।
2: मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी SIR के बहाने घुसपैठिया बचाने का आपकी जो कार्य योजना है उसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है, और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है, आपकी वहां कोई रीच नहीं है।
0: अमित शाह के बयान पर जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आया। खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा, गृह मंत्री द्वारा SIR में बाहर 13 करोड़ भारतीयों को घुसपैठिया घोषित करना भारतीयता का अपमान है। उधर अमित शाह ने अपने बयान में 2029 को लेकर भी अभी से भविष्यवाणी की है।
2: श्री राहुल जी और उनके साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए। 2029 के आम चुनाव में NDA प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है, और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार चौथी बार हार होने वाली है।
0: कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने एक्स पोस्ट में जवाब में कहा, हद है कि अमित शाह चुनावी जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि पूरा विवाद ही इस बात को लेकर है कि किस तरह वे हमारी चुनावी व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। अमित शाह अभी से 2029 की बात कर रहे हैं, इससे साफ लगता है कि उन्हें भी मोदी की स्थिति अस्थिर होने का एहसास है। इस बीच राहुल गांधी ने NSUI के जिन कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने दिल्ली पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। NSUI की महिला कार्यकर्ता के साथ पुलिस की महिला कांस्टेबल की झड़प का वीडियो सामने आया है।
3: कैनोट पुलिस थाने के पास से हम लोग निकलते हैं तो चंचल यादव जी वहाँ पे बस को रोकती है, और मेरे साथ मैं और एक केरला की साथी होती है तीरा, जो मुझे प्रोटेक्ट करती है। इन दोनों को पर्सनली मुझे टारगेट करने के चक्कर में इसको भी, मतलब इतना फर्स्ट टाइम इसको इतना जोर से घिसटा गया रोड पे, और इसके कीक मारी गई, प्राइवेट वार्स पर मारी गई। मेरे भी इंटरली बैक की, मतलब लेफ्ट की मारा, मतलब पूरा पुश किया गया पेट को।
0: राहुल गांधी ने CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका को जंतर मंतर पर अवैध तरीके से घुसपैठ की कोशिश पर 5 दिन की जेल होने पर भी अपने बयान में कहा है कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है, इसके लिए युवाओं को जेल में डालना कायरता है। छात्र, युवा, पत्रकार, इंडिया गठबंधन, झंडे और बैनर अलग अलग हैं, लेकिन मकसद एक है। हर विरोध प्रदर्शन एक ही आवाज है, अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करते नागरिकों की आवाज। जंतर मंतर भारत के लोगों का है, हम इसे फिर से जनता के अधिकार में लेकर रहेंगे। उधर BJP भी राहुल गांधी के खिलाफ नैरेटिव की लड़ाई में

0: टूट गई है। बीजेपी की एक्स पोस्ट में लिखा कांग्रेस, इट्स डन ब्रो, जनता का भरोसा ही इस असली सुपरहिट का राइटर है। इस पोस्ट के जरिए बीजेपी 4 एपिसोड सामने रख रही है। पहला राहुल गांधी का डेलुलू मोड, दूसरा एरोगेंस, तीसरा पीपल्स रिप्लाई और चौथा रिजल्ट। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अतुल लौंडे पार्टी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अमित जमई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, स्वाति चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। 2-3 बड़े सवाल हैं जो आज राहुल गांधी और मतलब बीजेपी के जो नेता हैं वो भी उठा रहे हैं। सबसे पहले तो यही कि जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से क्यों हटाया, क्या सरकार डरी हुई है? दूसरा बड़ा सवाल है कि अब इसकी वजह से उनको जेल में, तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। और तीसरी तरफ आज कांग्रेस पार्टी का एनएसयूआई की तरफ से सारे कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह बताया है कि उनके कार्यकर्ताओं को बहुत पीटा गया है, लड़कियों को गलत तरीके से मारा गया है। जवाब दीजिए गौरव जी।
1: नमस्कार अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, राहुल गांधी जी ऐसे अपरिपक्व गैर जिम्मेदार नेता हैं जिनको खुद नहीं पता वो कर क्या रहे हैं, और उनका ये जो कंफ्यूजन है इसकी वजह से ही कांग्रेस पार्टी की ये हालत है। और उनको पनौती या भस्मासुर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि केवल कांग्रेस पार्टी को ही खत्म नहीं किया है। जैसे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे 99 चुनाव हार गए, ऐसे 5 से ज्यादा प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा में अंडा है कांग्रेस पार्टी का। आगे क्या करना है ये उनको पता नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं में उनकी आस्था नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का क्या हाल किया, भस्मासुर ही कर सकता है। बिहार में तेजस्वी यादव का क्या हाल किया, आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हुआ, एलाय बने, आम आदमी पार्टी का अंडा आ गया था दिल्ली में लोकसभा में। और इसी तरह से अखिलेश यादव को नष्ट करेंगे, कुछ माह की बात और है। आपने मुझसे जो 3 सवाल पूछे, पहले मैं उनका उत्तर दे देता हूं, उसके बाद बाकी चीजों तथ्यों को जो मैं रखना चाहता हूं रखूंगा। आपने सबसे पहले कहा कि तिहाड़ जेल भेज दिया गया है प्रदर्शनकारियों को, कॉकरोच जनता पार्टी के जो अपने आप को नेता बुलाते हैं। तो ये अगर कोई अंडरटेकिंग देंगे अंजना जी और उस अंडरटेकिंग का पालन नहीं करेंगे और न्यायालय एक आदेश पारित करेगी और जुडिशियल कस्टडी में भेज देगी, तो मैं समझता हूं न्यायपालिका में तो हम सब की तो आस्था है। और अगर इनकी आस्था नहीं है तो फिर ये इनके लिए चिंता का सबब है। और अगर आदेश इनको ठीक नहीं लगता है तो उच्च न्यायालय जाएं, सर्वोच्च न्यायालय जाएं, पहला सवाल। दूसरा, आपने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ आपत्तिजनक बर्ताव हुआ है, छेड़छाड़ हुई है या हाथापाई हुई है, तो मैं तो बहुत सम्मान से कहता हूं प्रदर्शनकारी भी, अगर हमारी कोई बहन प्रदर्शन कर रही है तो उसके साथ पुलिस सुनिश्चित करती है कि अच्छा बर्ताव हो। लेकिन अब आप मुझे बताइए, प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से पुलिसकर्मी के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जो कोई नागरिक नहीं कर सकता है, तो क्या देश शर्मसार नहीं होता है? जब पुलिसकर्मी, एक महिला पुलिसकर्मी एक प्रदर्शनकारी को हटा रही थी, तो राहुल गांधी उसको गलत तरीके से कहां कहां छू रहे थे, एक मर्द होने के नाते क्या यह उचित था? मैं पूछता हूं, अगर एक महिला प्रदर्शनकारी को हटाने का हक एक महिला पुलिसकर्मी को है, तो एक महिला पुलिसकर्मी के साथ बातचीत करना या उसको छूना तो गलत है ही, लेकिन एक मर्द अगर नेता प्रतिपक्ष छुएगा तो उसके मानव अधिकारों का क्या, उसकी डिग्निटी का क्या, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या? यह बात सर्वोच्च न्यायालय में भी अब आई है और इस पर सुनवाई होगी। आपका तीसरा सवाल है कि जंतर मंतर को डी नोटिफाई करके दूसरा प्रदर्शन स्थल क्यों रखा गया? तो मैं अंजना जी आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आजादी मिली भारत को और जंतर मंतर ही प्रदर्शन स्थल था, इससे पहले भी जगह बदली गई है। जो आवश्यक है संविधान के तहत प्रदर्शन का अधिकार, वो भी बिना हथियार और हिंसा नहीं होगी उस प्रदर्शन में, और एक जगह होनी चाहिए। वो स्थल रामलीला मैदान दिया गया है, 2 और स्थल दिए गए हैं,
0: तो
1: अगर कांग्रेस की सरकार ने पहले बदला तो
0: गौरव जी, रामलीला मैदान तो अब रामलीला के लिए बुक्ड है।
1: बताइए,
0: इस साल वहां पर मुश्किल से 2-3 डेट बचे हैं, वो भी साल के अंत में। है ना, वही सीबीडी मैदान हो, बुराड़ी हो, सीबीडी मैदान भी रामलीला के लिए बुक्ड है, तो कहां जाएंगे प्रदर्शनकारी?
1: नहीं, एक चीज मुझे ये बताइए अंजना जी, अगर रामलीला के दौरान पहले से दरख्वास्त आती है और उस मैदान को आप किसी को दे देते हैं, तो क्या ये कहा जाएगा कि ये गलत है? क्या इनकी दरख्वास्त ये रामलीला जो होनी है उससे पहले की आ रखी है क्या? अगर आ रखी है तो बताएं। हमने तो देखा था कांग्रेस जनता पार्टी ने 10 दिन पहले जो अनुमति लेनी थी वो भी नहीं ली और 3 दिन पहले दरख्वास्त दी थी। तो मैं समझता हूं कि देखिए ये देश कानून और नियम से चलेगा और उन्हीं नियमों का पालन हो रहा है। ये मामला भी सर्वोच्च न्यायालय चला गया है, सर्वोच्च न्यायालय तय कर लेगा कि डीनोटिफाई करना जंतर मंतर को ठीक है या नहीं।
0: बहुत सारी पेचीदगियां हैं, कोर्ट में जाएंगे। मैं आ रही हूं बाकी मेहमानों के पास। एक आखिरी सवाल है आपसे। देखिए बहुत चीजें छवि से भी तय होती हैं। अब यह आरोप जो आप पर लगता है कि आप डिसेंट नहीं चाहते हैं देश में, आप चाहते हैं कि विरोध की हर आवाज को बंद कर दें, क्या उसको बल नहीं मिलता है कि यहां पर वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे और वहां आपने बंद कर दिया, बाकी जगहों पर मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है?
1: ठीक है अंजना जी, तो आपका प्रश्न यह है कि हम डिसेंट नहीं चाहते हैं, तो मैं एक सवाल पूछता हूं क्योंकि एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति अब तो कोलेजियम करता है, 3 मेंबर बॉडी करती है, प्रधानमंत्री, एक नामित मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। डिसेंट हो सकती है, दे दे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन दे दे, मंत्री दे दे, प्रधानमंत्री की डिसेंट हो सकती है। लेकिन यह सवाल जरूर पूछिएगा, जो लोकतंत्र के प्रहरी बुलाते हैं अपने आप को, उनके समय में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोनिया गांधी नियुक्त करती थी, और क्या कोई कोलिजियम था? क्या 3 मेंबर बॉडी थी? अगर नहीं थी तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग डिसेंट पसंद नहीं करते? इस सवाल का उत्तर जरूर लीजिएगा।
0: हमें जरूर लूंगी, क्योंकि अभी भी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं कही जा सकती है। प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री, मतलब 2:1 है गौरव भाटिया जी,
1: कैसे
0: 2:1 है?
1: नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं।
0: दे दीजिए
1: अंजना जी। हाँ, मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पैरा नंबर 315 है मेरे ख्याल से, आप देख लीजिएगा, जिसमें यह कहा गया कि जब तक केंद्र सरकार और पार्लियामेंट कानून नहीं लाती है, 3 सदस्यीय प्रणाली होगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिस्सा रहेंगे। जब कानून आ जाएगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिस्सा नहीं रहेंगे, ये अनूप बारनवाल का जजमेंट खुद कहता है, मैंने आपको पैराग्राफ नंबर बताया। और जब कानून आ गया तो उस कानून के तहत जो है चयन होने लगा। अगर किसी को परेशानी है तो उस कानून को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया है, सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा ये निष्पक्ष है, उचित है, संविधान संगत है या नहीं है।
0: जैसा
1: अगर ये गलत है तो आप चेक कर लीजिए।
0: नहीं नहीं, ये गलत नहीं है, लेकिन जैसा कि मुझे शक था, मैंने जो बात कही उसको आप नहीं काट पाए। मैंने जो बोला वो तथ्य है, 2:1 की स्थिति है।
1: क्यों
0: क्या
1: कानून देश का क्या होगा ये तो संसद तय करेगी, सरकार तय करेगी।
0: यही से बहस आगे लिए चलते हैं। अतुल लौंडे पाटिल साहब, देश की संसद ही तय करेगी ना, और देश की संसद के ही जरिए आपने भी बहुत कुछ इस देश में किया जो बीजेपी बार बार याद दिलाती है। लेकिन आज सवाल ये है जिस पर अब मैं इस बहस को ले जाना चाह रही हूं, वो कह रहे हैं 8,000। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 8,000 लोग एक सड़क पर खड़े होकर नहीं, आप लोग 2.5 लाख का दावा कर रहे हैं। तो सवाल यही है ना कि अगर इस पूरे मामले में, और एक और बड़ी बात कह रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह, वो कह रहे हैं अनेकों ऐसे राज्य हैं जिनमें आप 2-2, 3-3 दशक से नहीं है, तब कौन सा एस आई आर हुआ था पहले? और अगर ईवीएम से ये जीत ही रहे थे तो एस आई आर करने की क्या जरूरत थी? ईवीएम से तो ये पहले ही जीत रहे थे।
2: 3-4 सवाल दाग दिए उन्होंने, 7 मिनट तक अपना भाषण दिया। मैं तो तड़ीपार, नलायक वगैरह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा अमित शाह जी के लिए, अच्छा नहीं लगता। ये लोग करते हैं राहुल जी के लिए, अभी डरे हुए हैं, तिलमिला गए ना देश के गृहमंत्री, सम्मान्य गृहमंत्री अमित शाह जी, तिलमिला गए। 2.5 लाख लोग आए थे, इसने कॉग्निजेंस लिया, इसने जवाब देने के लिए बाहर आना पड़ा, बिल से बाहर निकलना पड़ा, और वो तिलमिला गए, इसने जवाब दिया। 8,000 रहते सही में तो जवाब ही नहीं देते, उनका स्वभाव तो हमें बहुत अच्छे से पता है। रही बात इनकी शालीनता की, तो ये बलात्कारियों का सत्कार सम्मान करने वाले, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को हार डालने वाले, मिठाई खिलाने वाले, अंकिता भंडारी के जिसमें नाम है उसे गवर्नर बनाने वाले, ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, सारे बलात्कारियों का सम्मान करने वाले क्या समझ पाएंगे कि एक महिला को करीब करीब मारे डाला था वहां पर? वो वीडियो है, सारे वीडियो सारे सबूत के साथ अवेलेबल है। तो राहुल गांधी जी ने उन्हें दूर किया, किसी ऐसी जगह हाथ नहीं लगाया जहां इनके सारे गुंडों ने हाथ लगाया। गुंडों को डेढ़ दिन में बीजेपी के बेल भी मिल गई, ये सबने देखा है। अब अमित शाह जी की बात कर लेते हैं। 990 चुनाव 70 साल में हारने वाले इस देश के लोकतंत्र को नहीं समझ पाए, कई चुनाव जीते हैं इसके बीच में, हम लोग भी जीते हैं। तो जो चोर होता है ना वो हर बार पैतरे बदलता है अंजना जी, ईवीएम, फिर ईवीएम से नहीं हो पा रहा, अभी लोग उससे ज्यादा वोट कर रहे हैं, कितना सेट करेंगे, तो फिर अभी एसआईआर पर आए हैं। तो चुनाव हारे हैं ना ये, चुनाव जब हारे तो इन्होंने सरकारें चोरी कर ली, इन्होंने विधायकों को जो है वो चोरी कर लिया। अब यहां पर सामने बातें आई है कि 29 को हम जीतने वाले हैं। अच्छा, फॉर्म नंबर 6 बदला तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शिकायत दर्ज नहीं की। ये 2:1 वाला जो फंडा है, इसमें दीपांकर दत्ता जो जस्टिस है उन्होंने कहा कि क्या जूनियर मंत्री जो है वो अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ जा सकता है, ये टिप्पणी उन्होंने की। फिर बात है 6 फॉर्म नंबर 6 में जो बदलाव किए थे वो हटा दिए, वहां एक चोरी पकड़ी गई, मान भी ली गई। फिर फॉर्म नंबर, फिर उन्होंने 20 राज्यों में जहां एसआईआर खत्म हो गया था वहां फिर से अनमैप्ड और डिस्क्रिपेंसी जो है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम का एक नया ही लाया है, तो उसे हटाकर लोगों को लाओ। और फिर फॉर्म नंबर 7 में बल्क डिलीशन को भी मना कर दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, कलकत्ता में 90% होटल जो है होटल लिस्ट में वापस आए, तो इस देश के 13 करोड़ लोग जो है वो क्या घुसपैठी है इस देश? इस बात का जवाब जो है वो अमित शाह दे, वो अमित शाह जो 2015 से घुसपैठिए के नाम पर चुनाव लड़ रहे असम में और बंगाल में, लेकिन उन्होंने 5,000 के ऊपर घुसपैठिए नहीं निकाले। हमने 2004 से 2014 तक करीब 90,000 तक घुसपैठिए बांग्लादेशी जो बाहर निकाले, ये राज्यसभा में इन्होंने कुछ जो है वो जवाब दिया है। अब ये कहते हैं कि हम लोग चुनाव जीतते हैं। अरे कांग्रेस के लोगों को लेते हो, पहले इनकम टैक्स सीबीआई का इस्तेमाल करते हो, उनके ऊपर आरोप करते हो, कांग्रेस के लोगों को लेते हो, उनको मुख्यमंत्री बनाते हो, बड़े बड़े पदों पर बिठाते हो, कहते हो कि हम संस्था का जो है इस्तेमाल नहीं करते। सुनिए,
0: एमएस गिल दो काउंटर सवाल है ना आपसे भी, अतुल जी आपसे भी दो काउंटर सवाल है सिंपल। अरे एक सेकंड, बिल्कुल पूछा, फिर वही रोना, फिर वही विक्टिम कार्ड, दो बार उनसे सवाल पूछा, कब तक ये रोना रोते रहिएगा विक्टिम कार्ड वाला? अतुल जी दो काउंटर सवाल पूछा, दो काउंटर, हाँ तो सुनिए ना अतुल जी, दो काउंटर सवाल आपसे भी ना, आपको भी जवाब देना होगा। पहला सवाल तो यही है कि ठीक है आपने कहा और ये सच है कि कई जगहों पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको अगर चोटें आई हैं, तो महिला कांस्टेबल्स को भी पीटते हुए लोग क्या दिख रहे हैं? वो कौन है? वो भी कांस्टेबल्स हैं, कौन मार रहा है महिला कांस्टेबल्स को? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और दूसरा सवाल ये है, एक सेकंड सुनिए ना, जैसे बंगाल में तो आप वैसे ही नहीं जीत रहे थे, ममता दीदी वहां पर जीती थी और राहुल गांधी जी ने ही कहा था कि जो तुष्टीकरण ममता बनर्जी कर रही है इसकी वजह से वहां पर बीजेपी को फायदा हो रहा है। तो वहां के एसआईआर से उनकी हार हुई और बीजेपी की जीत, ये थ्योरी तो समझ नहीं आती क्योंकि राहुल जी ने ही पहले कहा था। अब तमिलनाडु आ जाइए, तमिलनाडु में कौन जीता? विजय जीते। केरल में एसआईआर के बाद कौन जीता? आप जीते। तो ये भी दो पॉइंटेड सवाल है, दोनों के जवाब फिर मैंने
2: ऐसा है कि मैच फिक्सिंग में सभी बॉल को नो बॉल नहीं दिया जाता है और सभी प्लेयर्स को गलत आउट नहीं दिया जाता है, कुछ बचा के रखना पड़ता है दिखाने के लिए कि हम अच्छा कर रहे हैं। पहला जवाब। दूसरा जवाब, कौन जीता, हमने क्या किया? हम वहां प्रतिद्वंदी थे, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, हमने अपने सवाल खड़े किए। इसके अलावा जो 27 लाख वोटर्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस बार नहीं तो बाद में वोटर कर दो, जितने भी उसमें की एप्लीकेशन क्लियर हुई है उसमें 90% 10 में से 9 लोग जो है वो सही वोटर पाए गए हैं। ये किसकी गलती है? ये किसकी चोरी है? किसके कहने पर कह रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? रही बात चुनाव जीतने हारने की, आप अगर चोरी करते हो, चोरी पे सवाल नहीं उठाने का सवाल ही ये खड़ा करता है कि अमित शाह को बचाने की कोशिश हुई है। अभी एक यूपी में 84-85 हजार के आसपास अचानक लोग जो है डिलीट हो गए। पहले वहां के सीईओ ने नकार दिया, फिर बाद में वीडियो में सामने आके कह दिया कि हाँ ये हुआ है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। तो कितना अभी तिरंगे की बात बताता हूं मैं, ये तिरंगे को तो पहले जला चुके हैं 1947-48 में जब एक्सेप्ट किया था। 2002 में 52 साल तक इन्होंने अपने हेडक्वार्टर पे आरएसएस के तिरंगा नहीं लगाया। कुछ लोग जो है कांग्रेस के वो तिरंगा वहां लगाने गए, उनके ऊपर केस लगाया। तो ये आश्चर्य की बात ही नहीं है, तिरंगा और संविधान का हेट करते हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने केस दर्ज किए, तब भी केस दर्ज किए थे।
0: अच्छा ये बताइए ठीक है अभी बीच में
2: नहीं बोला,
0: ठीक है जल्दी कंक्लूड कीजिए। हाँ बोलिए।
2: तो ये सारे तिरंगे का जो है ना वो सब सामने आ गया। आप अमित शाह से मेरा सवाल है, अमित शाह जी अगर ये सब घुसपैठी है तो फिर से इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर क्यों देना पड़ा कि फिर से 20 राज्यों में एसआईआर करें? जो 10 में से 9 लोग वापस आए क्या वो घुसपैठी है? अपने ही जनता को घुसपैठे कहने वाला गृह मंत्री कितना बड़ा आरोपी है इस देश का, कितना बड़ा गद्दारी लोगों के साथ कर रहे हैं, ये स्पष्ट तरीके से सामने आता है। बताइए ना मुझे, कितने घुसपैठिए निकाले आपने 12 साल में? 5,000 से भी ज्यादा नहीं।
0: ठीक है स्वाति चतुर्वेदी, स्वाति चतुर्वेदी, क्या क्या विपक्ष के कॉज को फायदा होगा अगर क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जब भी विपक्ष का होता है, हालांकि उसमें नेहा बोरा को भी शामिल किया राहुल गांधी ने, प्रशांत भूषण को भी शामिल किया, अन्य लोगों को भी शामिल किया, लेकिन उन्होंने मतलब जो एक दूरी दिखती है सीजेपी और राहुल गांधी की रैलियों के बीच में, वो आज एक्स पर बदल गई क्योंकि उन्होंने समर्थन किया, उन्होंने खुल के कहा कि बच्चों को वहां पर तिरंगा लहराने पर, इफ दे गो तिरंगा लहराने के लिए जंतर मंतर पर, तो आपको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, और उस पर दीपके ने धन्यवाद भी किया है। आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या ये फोर्सेस साथ आते हुए दिख रहे हैं या कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा इलेक्शन का?
3: देखिए अंजना, आज राहुल गांधी ने सपोर्ट किया है, कल क्या हो ये किसी को पता नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज्यादा हैं। हम सबको किसी को पता नहीं कि ये कांग्रेस जनता पार्टी कहाँ से आई है, क्या है, कौन है। ऑब्वियस बैकर सबको लगता है केजरीवाल हैं, और जिस तरह से आप और कांग्रेस में अभी तक कोई तालमेल नहीं है, मुझे लगता है आगे जाके भी जो कांग्रेस जनता पार्टी है और कांग्रेस, से आज राहुल गांधी ने सपोर्ट कर दिया क्योंकि कॉज ऐसा था, मतलब किसी को भी अरेस्ट किया जाए, जैसे वो कह रहे हैं तिरंगा लहराने पे, ये तो गलत है, पूरा देश देख रहा है। तो आज जैसे कहते हैं कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी उनको सपोर्ट करने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे जाके आप या सीजेपी कांग्रेस के साथ बहुत तालमेल में काम कर पाएंगे।
0: आपको लगता है तालमेल में काम नहीं कर पाएंगे, वजह इसकी?
3: वजह यही है कि कांग्रेस को लगता है कि जिस तरह से बीजेपी उनका विपक्ष है, ये एक तरह से आपको बीजेपी की टीम भी समझते हैं, और सीजेपी को आपका भी टीम भी 2.0 समझते हैं। तो ये जो एक जो सस्पिशन है, एक जो उनको डर है कि ये मतलब एक तरह से उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ऑपोजिशन स्पेस जिसे कहते हैं ना इंग्लैंड में, कहते हैं हर मैजेस्टी इज लॉयल ऑपोजिशन, तो यहाँ पे भी एक आरएसएस ने हर मैजेस्टी इज लॉयल ऑपोजिशन बना दिया है, और कांग्रेस के साथ एक तरह से मजाक हो रहा है। ये उनका सारा जो उनका स्पेस है, जैसे हमने देखा दिल्ली में या हमने कहीं और जगह भी देखा है, वो आप बीजेपी का स्पेस नहीं खाती, कांग्रेस का स्पेस खाती है।
0: और यही शायद वजह है। अमीक जमाई जी आपके पास अब आ रहे हैं, सब मिलके लड़े तो ज्यादा फायदा नहीं होगा या सिर्फ एक्स पर ही धन्यवाद धन्यवाद चला जाएगा? अब दूसरी बात यह भी है कि देखिए अमीक जी, एक आपको यह भी फैक्टर इन करना पड़ेगा कि भाई बीजेपी के भी वोटर्स इस देश में हैं, या आप लोग अब ये फैक्टर इन ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज भी जब अभिजीत दीपके एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनका विरोध किया।
4: देखिए अंजना जी, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश का विपक्ष, छात्र, युवा और इवन वर्किंग जो यूनियंस हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, वो सारे लोग धीरे धीरे साथ में आए। भाजपा के नेता भले ही मजबूरी में सड़क पे नहीं आ पा रहे हो, पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बच्चे वो इस कॉज में, उनके बहुत सारे वीडियोज आए, बहुत सारे पॉडकास्ट आए। आपने झंडा फहराने के लिए हमारे युवाओं को आपने गिरफ्तार किया, और आप भारतीय भाजपाई गुंडों को भेज के अभिजीत दीपके या युवाओं के ऊपर जो अटैक करा रहे हो आप पुलिस के भेष में, आप बताइए ना, पुलिस भी तो हमारे किसान मजदूर के बेटे हैं। ये गृहमंत्री जो कायर गृह मंत्रालय में बैठ के हमारी पुलिस को इस्तेमाल करके हमारे युवाओं पर पैलेट गन चलवाते हैं, हमारे युवाओं पर, बेटियों पर कपड़े फाड़े गए, पत्रकार प्रंजय गुहा ठाकुरता जैसे लोग, मैं कितने नाम लूं वरिष्ठ पत्रकार जिनके, अंजना जी आप भी इज्जत करती होंगी, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर आपको जेल का शौक है, युवाओं को जेल डालने का, समाजवादी लोग, कांग्रेस के लोग जेल भरने से जिस दिन तय हो जाएगा इंडिया ब्लॉक की तरफ से, कोई जेल भरने से डरने वाला नहीं है। और ये जो ज्ञानेश कुमार का मुद्दा देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, अंजना जी समझिए, आपने बिहार लूटा, आपने बंगाल लूटा, अब आपकी निगाह उत्तर प्रदेश पर है कि किस तरह से 24 का बदला अखिलेश यादव जी से लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक कार्यकर्ता समाजवादी का पीडीए प्रहरी, हम लोग इस तानाशाही हुकूमत के सामने अंत तक लोकतंत्र को बचाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इन गुंडों के सामने, ज्ञानेश कुमार जैसे माफिया के सामने उत्तर प्रदेश का एक एक नौजवान लड़ेगा। क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार होता था, आप हमारे देश में वोट का अधिकार छीन रहे हो। ध्रुव राठी कौन सा आतंकवादी है, पहले यही गौरव भाटिया बोल रहे थे,
5: कि ध्रुव राठी तो विदेशी है, उसका पासपोर्ट विदेशी है। अब जब उसका पासपोर्ट आ गया यह बात साफ हो गई कि ध्रुव राठी हमारे देश के नौजवान है। अब यह मुंह छिपा के गौरव भाटिया जी भाग रहे हैं। पहले कह रहे हो कि ISI का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, CIA का हाथ है, इसराइल का हाथ है। नरेंद्र मोदी जी,
0: जवाब दीजिए गौरव जी, गौरव जी जवाब दीजिए, इस पर पॉइंटेड बात करिए।
5: हुआ डरता नहीं है आपसे
0: और धीरे।
1: बिल्कुल मैं देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे दूं। अंजना जी, मैंने तो आपसे विनती करी थी कि एक सवाल जरूर पूछिएगा। अभी 3 का कोलिजियम है, 2014 से पहले सोनिया गांधी कैसे नियुक्ति कर देती थी, वो तो संवैधानिक पद पे भी नहीं थी। कोई उत्तर इन्होंने नहीं दिया। महिला की बात एकदम से करने लगे तो ये बिमल एकोइजाम इन्हीं के सांसद है ना, 11 हमारी बहनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं 2 दिन से गूगल पे सर्च करे जा रहा हूं, राहुल गांधी स्टेटमेंट। गूगल भी कह रहा है राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने कोई इस पर टिप्पणी नहीं करी। क्यों नहीं करी? यही तो चरित्र है कांग्रेस पार्टी का, महिलाओं का शोषण करना। प्रियंका चतुर्वेदी हो, राधिका खेड़ा हमारी बहन हो, राहुल गांधी हमेशा से इस तरह से ही। ये क्या बात है, बीच में कोई बोल रहा है। अंजना जी चुप करा लीजिए प्लीज, अंजना जी चुप करा लीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं तो सुन रहा था उनकी बात, वो बीच में बोल रहे तो मेरे कान में उनकी आवाज आ रही है। हाँ, तो इसलिए ये शोषण करते हैं जो कांग्रेस में महिलाएं भी होती हैं। हमने देखा है किस तरह से कांग्रेस का चरित्र रहा है। तीसरी बात, इनके दोहरे मापदंड देखिए। आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं, पंजाब में जो SIR हो रहा है उसमें कांग्रेस ने भी, और आपने कहा है कि बहुत अच्छा SIR हो रहा है, आपने केरला का उदाहरण दिया, मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि अगर SIR नहीं होता तो लेफ्ट जो फर्जी वोटर डाले हुई थी उनको हराना असंभव था। तो ऐसा कैसे है कि एक जगह SIR अच्छा है दूसरी जगह खराब है? अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई भी आरोप लगाता है विपक्षी दल का नेता, उसका वो सही है कि गलत, इसकी परख 2 जगह होती है। पहला, चुनावों में होती है। तो चुनावों में मैं ये बता दूं कि आप देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी बार बार चुनाव हार रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की 2 सीटें आई, असम में 19 सीटें आई, -10 हो गई, बिहार में केवल 6 सीटें आई, दिल्ली में अंडा आया, महाराष्ट्र में 16 सीटें आई, 28 कम हो गई, और हरियाणा में 37 सीटें आई, वहां भी हार गई। तो ये तो जनता ने दिखा दिया कि वो कांग्रेस पार्टी को नहीं पसंद करती है। अब आते हैं न्यायालय में, और न्यायालय क्या कहता है, और ये मैं सारे आदेश सुप्रीम कोर्ट के बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो EVM है वो EVM खराब है। तो इस EVM की छेड़छाड़ पे सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है उसका ट्रांसलेशन बता रहा हूं एक वाक्य में। ये के पॉल का जजमेंट है, होता ये है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो EVM से छेड़छाड़ नहीं हुई होती, जब आप चुनाव हारते हैं तो कहा जाता है कि EVM से छेड़छाड़ हुई है। इसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता पे सवाल उठाया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह रिकॉर्ड में दर्ज तथ्य है कि पिछले 25-30 वर्षों में ECI ने निष्पक्ष संस्था के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास करती है। और इसके अलावा मशीन रीडेबल फॉर्मेट SIR के मुद्दे पे भी अभी 1 सप्ताह पहले सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट करा, हमने Form 6 पे कोई टिप्पणी, अप्रूवल या डिसअप्रूवल कुछ भी नहीं किया है। और 10 दिन पहले कांग्रेस के नेता यहाँ पे कह रहे थे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हमने अप्रूव नहीं किया।
0: लेकिन एक फैक्ट चेक
1: सपा पे भी मैं टिप्पणी कर दूं अगर आप मुझे मौका दें।
0: अब छोड़िए, बहुत बोल लिया आपने गौरव जी। एक फैक्ट चेक आपका कर देती हूँ। SIR कोऑर्डिनेशन को लेकर परकट सिंह, जो कि पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने सीधा जो चुनाव आयोग है उसके क्लेम को चैलेंज किया है कि हमने कभी भी सहमति इसके लिए नहीं दी है। तो वो सहमत हैं, वो बात चुनाव आयोग कह रहा है, प्रकट सिंह ने आज ही इसको डिस्क्लेम किया और कहा ये गलत है। तो ये फैक्ट चेक
1: दे देता हूं, फैक्ट चेक।
0: अब सेकंड राउंड में
1: नहीं अभी ले ली, नहीं नहीं,
0: अच्छा जल्दी बोलिए।
1: आज की न्यूज है इन अ ट्विस्ट, कांग्रेस एंड आप प्रेज SIR प्रोसेस इन पंजाब, और कांग्रेस के लीडर हरदीप सिंह किंगरा सेड ही रेज सेवरल इश्यूज विद पंजाब सीईओ एंड दे वर ऑल हर्ड, उन्होंने तारीफ करी है।
0: ठीक है, आज की खबर है पंजाब कांग्रेस चीफ परकट सिंह चैलेंजेस इलेक्शन कमीशन क्लेम ऑन एसआईआर कोऑर्डिनेशन। ठीक है ठीक है, चलिए आज उनकी बाइट आ गई है ना, अब तो अरे भाई पंजाब प्रदेश अध्यक्ष है। चलिए ठीक है, चलिए अनंत ये बहस चलती रहेगी। स्वाति जी मैं आ रही हूँ, इसके बाद तुरंत आ रही हूँ। अतुल जी
1: स्वाति जी जल्दी से क्या तारीफ नहीं करी?
0: बिल्कुल नहीं, वो तो अखिलेश यादव भी सहमत है, अखिलेश यादव भी सहमत। अब मैं बड़े सवाल पर आ रही हूँ स्वाति चतुर्वेदी जी, वो सवाल ये है कि चुनाव जो है उसको सीधा पहले ईवीएम से बीजेपी जीतती थी, अब एसआईआर से बीजेपी जीत रही है। इसी व्यवस्था में, एसआईआर नहीं हुआ था लेकिन इसी व्यवस्था के रहते हुए समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें आई ना लोकसभा के चुनाव में, और बीजेपी उत्तर प्रदेश में ऐसी फिसली कि वो बहुमत के आंकड़े से भी पीछे रह गई। तो अल्टीमेटली क्या ये थ्योरी बिल्कुल नकार दी जाए कि लोकप्रियता ही असली पैमाना होता है? अगर विजय ने तमिलनाडु में अपनी लोकप्रियता के दम पर इतनी सीटें हासिल कर ली तो ये क्रेडिट सारा उनको जाता है। उसके बाद धीरेन्द्र जी आ रहे
3: हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं अंजना, और आपने बहुत अहम बात कही थी कि छवि क्या है, ऑप्टिक्स क्या है। बीजेपी जीतती है, बार बार जीतती है, और जैसे आपने कहा ईवीएम के साथ जीती, एसआईआर में जीत रही है, बैलेट पेपर पे भी जीत सकती थी, लेकिन जो बाहर छवि जा रही है लोगों में, और ये बहुत अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं, वो ये है कि बीजेपी डर गई है। वो मुझे बताइए कि इलेक्शन कमीशन अगर इतना सही कर रही है तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट की थी, सारे इलेक्शन कमिश्नर तीनों ने आके एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, उन्होंने आके हम सबके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया, जैसे कुछ और हो। अगर ऐसा हो तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, और अगर बीजेपी जैसे गौरव भाटिया कह रहे हैं कि इलेक्शन दर इलेक्शन जीते जा रही है और बहुत ही पूरी मैंडेट और पूरी बहुमत और सब कुछ उनके साथ है, तो जैसे जंतर मंतर को यू नो डेजिग्नेटेड साइट से हटा देना, इस तरह की हरकतें बीजेपी क्यों कर रही है जिसे लग रहा है कि वो डरी हुई है?
0: इस पर एक छोटा सा जवाब गौरव जी, लग रहा है कि बीजेपी डरी हुई है?
1: देखिए स्वाति जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बहुत सह सम्मान एक बात कहूंगा। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस वार्ता करता है नहीं करता है, प्रेस नोट के जरिए चीजें लिखता है, ये प्रेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तय करता है। अभी एक प्रेस नोट आया था 15 दिन पहले स्वाति जी, जिसमें लिखा था कि हमारे सारे निर्णय यूनानिमस है जो हमने पढ़ा और चर्चा भी करी, और एक फोटो आई थी जहां तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स बैठे हुए थे। पहली बात, मैं उनका प्रवक्ता नहीं इसलिए मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि डरे हैं इसलिए जो है हमने अब प्रदर्शन स्थल का बदल दिया स्थान, मैं इतना ही कहूंगा, देखिए समय के साथ जरूरतें बदलती हैं। दिल्ली के हृदय में अगर एक स्थान है जहां प्रदर्शन होता और हम देखते किस तरह से पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, नागरिकों को और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था तक को रोक दिया जाता है, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इतना अपरिपक्व है वो सुप्रीम कोर्ट घुस जाता है, तो मैं समझता हूं ये सरकार का क्षेत्र अधिकार है कि वो एक और स्थल दे। अगर स्थल एक और नहीं दिया होता तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत होता कि इन्होंने जो प्रोटेस्ट का अधिकार है उसको छिन्न भिन्न कर दिया।
0: ठीक है धीरेन्द्र जी, आपके पास आ रही हूँ, चिराग पासवान को कोट कर रही हूँ कि जो हुआ वो गलत है, नथिंग कैन स्टॉप द यूथ ऑफ इंडिया। क्या चिराग पासवान केंद्र सरकार की जो नीति है युवाओं के आक्रोश को हैंडल करने में उसके खिलाफ बोल नहीं रहे हैं खुलकर?
6: अंजना जी, युवाओं की बातों और उनके जो मांगे होती है प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन, इसके समर्थन में है, लेकिन इस तरह से कोई करे कि आम सामान्य नागरिकों की, पढ़ने वाले छात्रों के, रोगियों के, मरीजों को आने जाने में असुविधा हो, इस तरह का इजाजत कैसे दिया जा सकता हो? 2.5 करोड़ दिल्ली के लोगों की चिंता करना भी तो सरकार का काम है, और यह संविधान बचाने के नाम पर संविधान डराने की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? एक एक करके इस्तीफा मांगना, जिले इलाही हो रहे हैं मुगले आजम।
0: अरे तो जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाकर युवाओं को रोका जा रहा है कि नहीं?
6: ये 1,000 का परमिशन लेते हैं और 8,000 लोग आते हैं, तो इनको कहते हैं खुद ये कि 2.5 लाख लोग हम आएंगे, तो बुराड़ी का मैदान सरकार
0: आएंगे नहीं, वो कह रहे हैं हम आए थे 2.5 लाख,
6: तो इसीलिए बुराड़ी का मैदान दिया गया, तो उस पर भी सवाल है कि आप जंतर मंतर से क्यों हटा दिए गए? सरकार तो इन्हीं की बातों को मान रही है कि भैया मेरे साथ पूरा देश है, पूरा देश को हटाने के लिए या तो लखनऊ के रमाबाई मैदान दे दूं या बुराड़ी दिया जाए ताकि इनका धरना प्रदर्शन भी अच्छे से चलता रहे। दूसरी बात है कि मारने पीटने की बात हो रही है, एलओपी ने किस तरह से केहूनी चलाया, कौन से अपने नेता का जो ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, डीके शिवकुमार जी के साथ में कैसे केहूनीबाजी कर रहे थे ये पूरा देश ने देखा। अरे भाई वो भी संवैधानिक पद पर है, आप उनको क्यों नहीं मारेंगे साहब, ऐसा नहीं करेंगे ना। एक मुख्यमंत्री के बेटे जो अगले पंक्ति में लोकसभा में बैठते हैं उनको ट्रक से कैसे बेइज्जत करके आपने उतारा, यह भी पूरा देश ने देखा। अब आप एक ही संविधान बचा हुआ है, सीडीएस से भी इस्तीफा मांग लीजिए, क्योंकि इस्तीफा मांगने में तो आपसे जो मर्जी।
0: खबर आ रही है अभिजीत दीपके का एक्स पर पोस्ट आया है, लहरा दो तिरंगा कह रहे हैं। 16 अक्टूबर शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क सीपी जगह बताई गई है। तो अतुल जी आप लोग भी शामिल होंगे इसमें, और गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि 8,000 लोग ही आए थे।
6: अंजना जी,
0: हाँ धीरेन जी पूरा कर लीजिए, एक सेकंड धीरेन जी पूरा कर लें, धीरेन जी जल्दी बोलिए।
6: और फिर प्रदर्शन पर ये कौन से तरह के अपशब्द का प्रयोग हो रहा है, ये ज्ञानू वो ज्ञानू, एक इनके सांसद गा रहे हैं तू मेरा जानू है, यही तरीका है क्या लोकतंत्र में? अरे एक तरह के तू मेरा जानू है, तू मेरा हीरो है, ये मजाक नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? बिहार घूम रहा हूं, न एक छात्र दुखी है न एक युवा दुखी है, और इस तरह से ये खीप फोटो ऑफ कर रहे हैं दिल्ली में बैठ करके।
0: अरे आपके नेता कुछ और कहते हैं, आप टीवी पे कुछ और कह रहे हैं, आपके नेता तो कह रहे हैं युवाओं को अब कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए अतुल जी जवाब दीजिए, अतुल जी
6: एक सेकंड में, उन्होंने कहा अंजना जी एक सेकंड में
0: कि 8,000 की आए थे, आप लोग 2.5 लाख का दावा कहां से कर रहे हैं?
6: युवाओं को कोई रोक नहीं सकता ये बात सच्चाई है, लेकिन इनके पास तो युवा है नहीं, ये तो सिर्फ वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ कार्डर को लेकर के। और दिल्ली में
0: कांग्रेस एमपी विमोल अकोयजाम को पुलिस का नोटिस गया है, दरअसल FIR उनमें उन पर दर्ज हुई है जेएनयू के मामले में, जो यौन उत्पीड़न का मामला जिसमें जेएनयू की इंटरनल कमेटी ने 11 छात्राओं के आरोप के बाद उनको दोषी पाते हुए बर्खास्त कर दिया था। कल वसंत कुंज उनको जाना है, जेएनयू छात्राओं के यौन शोषण मामले में FIR में उनको थाने में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। अब तो कम से कम अतुल जी इस पर कुछ बोलिए, 11 बच्चियों की आवाज तो बनी है, 11 बच्चियां यौन शोषण का आरोप लगा रही है और आपकी पार्टी उनको डिफेंड कर रही है।
2: हेलो अकोई जाम जी जो है वो पुलिस के सामने जाएंगे, पूरी इंक्वायरी के सामने जाएंगे, अगर गलत होंगे तो फांसी चढ़ा देना, लेकिन अगर गलत नहीं रहे तो इनको फिर से हम छोड़ेंगे।
0: ठीक है, मतलब आप बीजेपी की भाषा बोलने लगे, जैसे ये भूषण शरण सिंह को यही कहते थे वो, और वहां को ओलंपियंस ने आरोप लगाया था।
2: सरकार इनकी, पुलिस इनका, सब कुछ इनका, हम कुछ डिफेंड नहीं कर रहे। अकोई जाम को जो कहना है उन्होंने सामने आके कहा है,
0: यही भाषा ये यूज करते थे बृजभूषण शरण सिंह।
2: अंजना जी,
0: जब हम इनसे पूछे थे बृजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं हटाते,
2: कोई भी कांग्रेसी गलत चीज का सपोर्ट कभी समर्थन नहीं करेगा, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बात बता रहा हूँ। अकोई जाम जी का मैंने इंटरव्यू सुना है, अकोई जाम जी जब सांसद बने हैं उसके बाद क्या क्या हुआ है सबने देखा है। अभी मैं बताता हूँ, अनिल मसीह को इस देश ने और दुनिया ने देखा है किस तरह से उन्होंने चोरी की थी और उसको बचाने की कोशिश किस तरह से ये कर रहे थे सबने देखा। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने की हिम्मत क्यों नहीं होती, एक एक नाम जांचना पड़ता है।
0: स्वाति जी का एक रिएक्शन में ले लूं, फिर आ रही हूं इस इशू पर।
3: अंजना एकदम आप एकदम सही कह रही थी, जिस तरह से बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह को डिफेंड किया था वैसे ही कांग्रेस आइडेंटिकली, और शर्मनाक है लड़कियों बच्चियों के साथ जिस तरह का शोषण हुआ है वो एस्टैब्लिश हो गया है ऑलमोस्ट। इस तरह का डिफेंस कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, क्यों कर रहे हैं? और एक तरफ आप कहते हैं ब्रेक स्मैश द पेट्रियार्की, राहुल गांधी ने कहा है बार बार, राहुल गांधी कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की, ये कौन सी पेट्रियार्की स्मैश कर रहे हैं? एक सेक्सुअल हरासर को डिफेंड करके क्यों कर रहे हैं डिफेंड कांग्रेस पार्टी? इनको निकालते क्यों नहीं कांग्रेस इन्हें?
0: अतुल जी का ऑडियो दीजिए। अतुल जी
2: लेने पड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। ये बीजेपी है, ये महिला विरोधी है, ये मनुस्मृति वाले है,
3: ये वो लड़कियां बीजेपी नहीं है।
2: हम कह रहे हैं कि हम
3: छात्राएं नहीं है,
0: वो स्टूडेंट्स बीजेपी नहीं है। सुनिए अतुल जी, वो स्टूडेंट्स तो बीजेपी नहीं है ना, आप तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए, वो स्टूडेंट्स तो बीजेपी नहीं है ना, जो जेएनयू की छात्राएं हैं।
2: मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ स्वाति जी, मैंने एफआईआर ट्रोल का प्रीफेस पढ़ा है। ऐसा है कि ये बीजेपी है ना, ये बीजेपी और आरएसएस वाले महिलाओं को
3: गलत बात मत करिए।
2: पैरा पैरों की जूती समझते हैं।
3: शर्मा, हमको शर्मा।
2: तो ये क्या है
0: ये तो शेमफुल है। आई एम सॉरी। चलिए इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और सच सामने आना चाहिए। और अगर वाकई बच्चियों का उत्पीड़न का आरोप सही है जिसमें सेक्सुअल फेवर्स फॉर मार्क्स, अगर कोई प्रोफेसर जेएनयू में ऐसा कर रहा था तो बहुत गंभीर इल्जाम है और कांग्रेस को जवाबदेही देनी होगी। हालांकि जांच पूरी हो जाने देते हैं, लेकिन बच्चियों ने, छात्रों ने यह आरोप लगाया है, इसलिए यह मामला बहुत गंभीर है और इंटरनल कमेटी ने उन्हें दोषी पाकर बर्खास्त किया है। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में मेरठ में अपने पति को मारकर नीले ड्रम में दफन करने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को हुई मौत की सजा का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि कोर्ट ने सौरभ दास और आशुतोष रांका को तिहाड़ जेल क्यों भेजा। इसके बाद आपको बताएंगे कि बिहार में नाव लीक से कब तक लोग मरते रहेंगे। देखते रहिए आज।

0: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स द माय वे।

0: what I can be.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: Maddie, I need to open a savings account.
3: Arey, Ujjivan Small Finance Bank mein khollo.
2: Small bank?
3: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
2: Okay.
3: Ujjivan, nothing small about us.
4: How's the hostel? Settled?
5: Yes, ma. It's really nice.
4: कोई आ रहा है क्या?
6: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
4: मयंक, फॉर रियल?
6: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिडाइज टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।
7: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
8: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद। लायन कश्मीर हनी,
7: असली शहद, असली स्वाद।
9: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार ठुमका लगाने बस।
10: मेरे पास एक आइडिया है।
9: क्या?
10: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
11: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
12: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
13: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
11: कौन सी बनानी है?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
5: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
8: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
9: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
10: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
11: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
10: क्या?
11: इनकी राय।
12: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
13: एक दो, एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
3: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
4: You know, डिजाइन्स कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डूड।
5: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
6: एक परिवार अटूट भरोसा।
7: In association with Canara Bank, together we can.
8: Anmol biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
9: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
10: Rajasthan ki siyasat ka sabse bada manch, jahan hogi yuvaon ke man ki baat aur milega yuvaon ke har sawal ka jawab. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन धमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
4: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
0: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
5: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
6: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
5: क्या?
6: इनकी राय।
7: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
8: आ गया सोमवार और आ गए चकमक चाचा। हाँ चाचा, अखबार बांच रहे हैं। चल रहा है भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
9: अरे भैया प्रदर्श में हिस्सा ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
8: अच्छा, कब उठाए?
9: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
8: अच्छा,
9: हाँ तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग तरह इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन करके, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
8: जी।
9: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
8: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है आपका।
9: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन दिल बोलता रखे थे एकदम पुत्ता मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
8: अच्छा
9: और क्या
8: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
9: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल जहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उस भागने लगता हूँ।
8: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है।
9: किधर?
8: चाचा हम खेल गए अब की।
10: अगर तुम्हें देश में इमरजेंसी लगानी है, इमरजेंसी करनी है तो ऑफिशियली करो ना, ये क्या कायरो की तरह अनऑफिशियली आप इमरजेंसी कर रहे हो, जहां पर आप लोगों को जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो। ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया कि उसके लिए आप लोगों को 5 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हो। इतने बड़े कायर मत बनो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। अगर इमरजेंसी लगानी है तो ऑफिशियली लगाओ, दम है तो। आरोप क्या लगा रहे हो? जो सत्ता में हो इन्वेस्टिगेशन करो, जांच करनी है वो करो, ये आरोप क्या लगा रहे हो तुम लोग? और ये जो लोग है ये सारे के सारे बहुत ही बड़े कायर है, ये पुलिस के पीछे छुप रहे हैं। कल से सौरभ, आशुतोष और अजिंक्य को इलीगल डिटेंशन में रखा गया था, उनके लॉयर से तक उनको मिलने नहीं दिया गया था, और आज सुबह सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। किस चीज के लिए? क्या गुनाह था उनका? उनका गुनाह सिर्फ यही था कि वो जंतर मंतर पर गए और उन्होंने वहां पर तिरंगा लहराया।
11: अगर वास्तव में ये मानते हैं कि इलेक्शन रिग्ड है या इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रही है या SIR ठीक नहीं है, तो इनकी चारों कांग्रेस सरकार कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल और केरल और साथ में जो झारखंड और तमिलनाडु की सरकार में शामिल है, इसमें सत्ता का क्या है? उनको लोभ है। अगर वो सही माने में मानते हैं इलेक्शन कमीशन ने ईमानदार व्यवस्था नहीं रखी है, तो क्यों नहीं रिजाइन करते हैं इनके 6 के 6 मुख्यमंत्री? तुरंत रिजाइन करना चाहिए। और ये कई लोग ये बात रख रहे हैं कि कांग्रेस तय करे, ऐसा नहीं हो सकता है जहां जीते वहां तो सही काम हुआ, वहां इलेक्शन कमीशन ने पक्षपात नहीं किया, और जहां हारे वहां SIR को गाली देना।
12: मुझको नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी के पास एक भी प्रश्न का जवाब होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से इस देश में जिस तरह नौटंकी और ड्रामा केयर के देश भर में अराजकता कायम करने का प्रयास किया जा रहा है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको नहीं लगता है कि इस देश की जनता कभी इसको स्वीकार करे।
13: ज जिस वक्त सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के हिंगोली में अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल थे, उस वक्त सीजेपी के बाकी के नेता दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में धरने की परमिशन मांगने पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस को अपनी चिट्ठी सौंप दी, लेकिन चिट्ठी सौंपने के बाद जब वो बाहर आए तो प्रशासन को सीधे सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया।
14: 24 घंटा टाइम ले लीजिए, लेकिन बॉल इज इन योर कोर्ट। आप बताइए किस दिन लोग डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर आ सकते हैं। फुल कोऑपरेशन के साथ पीसफुल तरीके से लोग गैदर होंगे एंड प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट तो जरूर होगा।
13: लेकिन अब मसला बदल गया है। सीजेपी जंतर मंत्र पर प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन जंतर मंत्र को डिनोटिफाई कर दिया गया, मतलब अब जंतर मंत्र प्रदर्शन स्थल नहीं रहा, मतलब सीजेपी वाले जंतर मंत्र पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए 3 जगह निर्धारित कर दी हैं। ये जगह हैं रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड और पुराड़ी मैदान। अब मसला ये है कि इन तीनों ग्राउंड को प्रदर्शन ने स्थल तो बना दिया गया, मगर 2 मैदानों में कार्यक्रम चल रहा है। रामलीला मैदान में रामलीला की तैयारी चल रही है, सीबीडी ग्राउंड में रामलीला की तैयारी हो रही है। बचा बुराड़ी का मैदान, जहां बारिश के बाद फिलहाल कहीं कहीं पानी भरा हुआ है। अब सवाल ये है कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कहां करेंगे। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष को ललकारा है, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। एक तरफ राहुल की हुंकार, दूसरी तरफ ललकारते हुए अमित शाह। हम ब्रेक नहीं ले रहे, अब देखिए सात तक नेहा के साथ।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। शाम के 7 बजने वाले हैं और अगले आधे घंटे में इस बुलेटिन में दिनभर की सभी बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के साथ आकर एनएसयूआई छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर लगाए मारपीट के आरोप। एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थाने, बदले में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की बदसलूकी का जारी किया वीडियो।

0: दिल्ली पहुंचे अभिजीत दिपके का एयरपोर्ट पर लोगों ने किया विरोध, आंदोलन पर जताई नाराजगी। तो दिपके ने की 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की अपील। वाराणसी से सीएम योगी ने अखिलेश पर फिर बोला धावा, कहा समाजवादी के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या पराया धन अपना। रेल कर्मचारियों को 78 दिन का दिवाली बोनस, अब दिव्यांगों को भी 18 वर्ष के बजाय जन्म से मिलेगी पेंशन। मोदी कैबिनेट का निर्णय, 3 पेंशन योजनाओं से इंदिरा गांधी का नाम हटा। मेरठ नीले ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी की सजा, जिला जज ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला, सौरभ के शव के किए थे दोनों ने टुकड़े। इस शो की शुरुआत हम कर रहे हैं आज मेरठ की कोर्ट से आए एक बहुत बड़े निर्णय के साथ, जहां बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में दोषी मुस्कान और साहिल को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। निर्णय सुनाने से पहले जज कोर्ट में आए, उन्होंने निर्णय पढ़ना शुरू किया। इससे पहले उन्होंने महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि दंड भी धर्म है। जज ने महाभारत का उल्लेख करते हुए कहा कि दंड को भी धर्म ही महाभारत में बताया गया है।
1: पहले हुआ हत्याकांड और करीब एक साल से चल रहे ट्रायल के बाद आखिरकार नीला ड्रम कांड में कोर्ट का फैसला आ गया। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
2: वो कहा गया था कि कुछ चश्मदीद गवाह नहीं है और उसके बच्चे हैं और इसके माँ बाप बुजुर्ग हैं, ये सारी तथ्य रखे गए थे, लेकिन वो कोर्ट ने कोई वो नहीं

0: को अपराध की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड की सजा मुकर्रर की है।
1: जिला जेल से दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। जज ने मुस्कान से पूछा, तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? मुस्कान ने जवाब दिया, मेरी बेटी छोटी है, उसका ख्याल रखा जाए। फिर वो खामोश हो गई। इसके बाद साहिल से यही सवाल पूछा गया तो वो भी चुप रहा।
2: जज ने आज ये भी कहा बहस के दौरान कि हमें फैसला देने से पहले ये भी देखना है कि समाज और जनता की ओपिनियन क्या है ऐसे केसेस में जिससे समाज पे असर पड़ता है। उनका इशारा ये था कि हाल के वक्त में बहुत सारी पत्नियां के हाथों पति का कत्ल हो रहा है, पति के हाथों पत्नियां का कत्ल हो रहा है, तो समाज में जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है तो एक ऐसा फैसला होना चाहिए जो जनता चाहती है उस हिसाब से ये फैसला, और जो समाज में सोच है उस हिसाब से भी एक मैसेज जाए।
1: सरकारी वकील ने कोर्ट से मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं मुस्कान साहिल के वकील ने कहा था, मुस्कान की दो बेटियां हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, कम से कम सजा होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फांसी की सजा पर मुहर लगाई।
3: अब इस पूरे मामले में जो साइंटिफिक एविडेंसेस थे, क्योंकि जो नशा दिया गया था खाने में सब्जी में, उस नशे को कहां से खरीदा गया था उसने भी आइडेंटिफाई किया, मुस्कान को आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से ये कत्ल के पहले खरीदी थी, सीसीटीवी फुटेज कत्ल के पहले और बाद का, कौन आया कौन गया, ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण थी और डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे काम किया, जिसके बाद आज ये दिन आया, 30 सितंबर को दोषी ठहराया गया था और आखिरकार आज जो मेरठ कोर्ट है वहीं ठीक मौजूद है। यहाँ पर अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है।
1: 30 सितंबर को कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी ठहराया था। सौरभ राजपूत के परिवार ने कोर्ट से दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई थी।
4: हम तो यही देना संदेश जाते भैया, किसी का भी बच्चे को मारो मत, नहीं रहना उनके साथ, अलग हो जा। अगर कोई लड़का नहीं चाहता लड़की को मार देता है तो वो भी अपने नई लड़की के साथ रहना तो वो भी अलग हो जाए। अगर ये ऐसा काम करेंगे तो उनको भी फांसी की ही सजा होगी।
1: अब सवाल ये है कि आखिर मुस्कान को फांसी कब और कैसे होगी, क्योंकि मुस्कान की दो छोटी बेटियां हैं, एक बेटी सौरभ राजपूत की है तो वहीं दूसरी बेटी साहिल की, जिसका जन्म जेल में हुआ था।
5: साहिल के घर वाले करेंगे, क्योंकि साहिल ने आगे आके बोला था कि भाई मैं ये तुम चाचा बन गए हो जो उसके जेल बंदी थे, और उन्होंने बोला मैं बाहर आने के बाद जो है तुम्हें दावत दूंगा। उसने खुले में बोला था कि मेरी बच्ची
4: जो जेल वाली बेटी है उससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, और वो बड़ी वाली बेटी अगर उसके नाना नानी हमें बिना किसी उसके देंगे तो हम रखेंगे उसे अपने पास।
1: सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। शव को 5 टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया गया था। जुलाई 2025 में जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था, जिसके बाद आज कोर्ट ने फांसी की सजा देकर सौरभ राजपूत के परिवार को इंसाफ दिया। मेरठ से शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।
6: बिहार के राघोपुर में नाव पलटने से बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के पास नाव पलटने से हुए हादसे में 14 मासूम बच्चों की मौत हो गई, वहीं 6 को अस्पताल में भर्ती कराया गया जिनका इलाज इस समय चल रहा है।
1: छेद हो तो शोक का ऐसा ही संसार दिखता है। जब सिस्टम ही डूबा हुआ हो तो क्या फर्क पड़ता है कि बच्चे पानी के भीतर मर जाएं हिचकियां लेते हुए, क्या फर्क पड़ता है कि उजड़ जाएं परिवार के परिवार, क्या फर्क पड़ता है क्या? मातम की तस्वीरें हाजीपुर के राघोपुर के रामपुर श्यामचंद गांव की है। इसी गांव से 20 से 25 लोग श्राद्ध भोज में गए थे। इसी टूटी नाव से वापस वो लौट रहे थे, मगर नाव में पानी भरा, नाव पलटी और 14 मासूम बच्चे काल के गाल में समा गए।
7: ये नाव किस हालत में जर्जर है ये आप देखिए, इस नाव में इतना बड़ा छेद आप देखिए, आप ये देख सकते हैं नाव में इतना बड़ा जो है दरार आप नजर आ रहा है, और क्योंकि जब ओवरलोडिंग हुई होगी तो जाहिर सी बात है नाव का ये हिस्सा जो है जो टूटा हुआ है, जो इतना बड़ा छेद है, तो पानी इसके जरिए भी नाव के अंदर प्रवेश किया और उसकी वजह से जो है अचानक स्थिति जो है वो काफी खराब हो गई। और जब

0: गांव के अंदर पानी भरा होगा तो जाहिर सी बात है छोटे बच्चे थे 10-14 साल के, तो वहां पर एक तरीके से कहें तो हड़बड़ी की स्थिति हो गई होगी, इधर उधर बच्चे भागने लगे होंगे और उसी दौरान उस आपाधापी में ये नाव पलट गई।
1: अब इस गांव में मातम मचा हुआ है, जिगर के टुकड़ों को मुर्दा देखने की हिम्मत माँ बाप नहीं कर पा रहे हैं, पिताओं की बकार नहीं फूट रही, माँ बेसुध है, हाई रेस सिस्टम बच्चों को मार डाला।
0: इस गांव में चीख पुकार मचा हुआ है और तमाम जो लाश है उनको पानी से निकाला जा चुका है बीती रात, और प्रशासन कल रात से ही यहां पर आकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है।
1: सवाल ये है कि जर्जर नाव को चलने कैसे दिया जा रहा था, जर्जर नाव में ओवरलोडिंग क्यों नहीं रोकी गई, प्रशासन कहां सोया था।
2: नाव प्राइवेटली रजिस्टर्ड है जिनके नाम से है, उस संदर्भ में रिपोर्ट आ चुकी है स्थानीय प्रशासन की और इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई भी की जाएगी।
1: अब क्या फर्क पड़ता है कार्रवाई से, घर के चिराग तो बुझ गए। जिसने ये हादसा देखा वो बताते हैं कि हादसा कहना इसे आसान है, सड़े हुए सिस्टम ने बच्चों को मौत का आमंत्रण दिया था।
3: यदि जो सबको लेके हॉस्पिटल पे सही व्यवस्था रहता सर, कुछ तो यही दम तोड़ दे, कुछ हॉस्पिटल गया तो ऑक्सीजन नहीं होने के कारण सब बच्चा सर यही खत्म हो गया, हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं था अच्छा, इसी कारण सब बच्चा डेट कर गया।
4: अभी बाढ़ का मौसम था तो उस तरह से जैसे वहाँ पे 10 घर है तो 10 घर के लिए तो नाव चाहिए था अवेलेबल, ये लापरवाही है।
1: जनता रोती है और सरकार मस्त चादर तान कर सोती है।
5: सरकार को कोई मतलब है, कौन मरा कौन हरा कौन जरा।
1: अब शुरू हुआ है संवेदना जताने का सिलसिला।
6: हमारी जिलाधिकारी से भी बात हुई है, आपदा विभाग के जो सचिव हैं उनसे भी बात की गई है और हमने आग्रह किया है कि ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू टीम जो है भेजा जाए, एनडीआरएफ के लोग हों, एसडीआरएफ के लोग हों।
7: घटना बहुत ही दुखद है, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए।
1: हादसे पर मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है, मगर सवाल ये है कि मुआवजे के बदले अगर लाइफ जैकेट दी जाती तो शायद बच्चे जिंदा होते, प्रशासन अलर्ट होता तो बच्चे जिंदा होते, सिस्टम सड़ा हुआ नहीं होता तो बच्चे जिंदा होते। रोहित कुमार सिंह, राघोपुर, आज तक।
8: बेहद दर्दनाक है और इस समय आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा निर्णय आया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने 3 महीने में पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद अब सरकार के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो 3 महीने के भीतर हर हाल में चुनाव करवा लें या ऊपरी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।
9: आज कोर्ट ने कहा है, स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन दोनों को ही डायरेक्ट किया है कोर्ट ने कि 3 महीने के अंदर एंटायर एक्सरसाइज यानी कि पूरा इलेक्शन आपको कंडक्ट कराना होगा और टाइम एक्सटेंड भी नहीं किया जाएगा इसके बाद। और इसके अलावा जो प्रशासक जो नियुक्त किए गए थे राज्य सरकार द्वारा, उसका आदेश भी कुछ याचिकाओं में चैलेंज किया गया था, उसको आज हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, यानी कि जो वर्तमान ग्राम प्रधान जो प्रशासक हैं वही आगे कंटिन्यू करेंगे।
10: ये चुनाव मार्च अप्रैल में हो जाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस चुनाव को टालती रही और अब अक्टूबर आ गया और माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है कि 3 महीने में चुनाव कराए जाए। भाजपा लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, इसी कारण वो पंचायत चुनाव से भाग रही थी, क्योंकि उसको पता है कि जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा।
11: हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार जो लगातार पंचायत चुनाव को टालने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि उनको ये बात पता है कि जनता में नाराजगी है और अगर विधानसभा से पहले पंचायत चुनाव कराएंगे तो बीजेपी के खिलाफ परिणाम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इसीलिए वो लगातार लोकतंत्र को कमजोर कर रहे थे। जो जनता का सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है, वोट का अधिकार, निर्वाचन का अधिकार, चुनाव करने का अधिकार, उसे भारतीय जनता पार्टी दबा रही थी, आज हाईकोर्ट ने आईना दिखाया है।
8: उधर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव से पहले सेंधमारी का खेल जारी है। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी में बीजेपी के पूर्व मंत्री शामिल हुए तो आज बीजेपी में समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों की एंट्री हो गई।
1: यूपी में चुनाव से पहले बदलते सियासी समीकरण की एक बड़ी तस्वीर है। अमेठी में स्मृति ईरानी और पंकज चौधरी की मौजूदगी में तीन विधायकों अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
12: कितने भी राजनीतिक दलों को अपने राजकुमार को शहंशाह बनाने के लिए इकट्ठा कर दो, उत्तर प्रदेश का सत्य यह है कि 1989 से तुम लगातार 9 विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हारते आए हो।
1: बीजेपी में शामिल होने के बाद अब विधायकों के सुर बदले नजर आ रहे हैं
13: कि आप लोगों के मन में चीज होगी, ये लोग काहे समाजवादी पार्टी छोड़कर चले आए और काहे भारतीय जनता पार्टी में आए। तो हम ये बताना चाहते हैं, मुझे गर्व और गौरव की बात है कि मैं उसी कुल में पैदा हुआ हूं जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अवतार लिया था।
1: जिस अयोध्या सीट को लेकर अखिलेश और योगी के बीच जुबानी जंग हुई थी, उसी अयोध्या की गोसाईगंज सीट से अभय सिंह विधायक हैं।
14: तो बहुत पहले शामिल हो गए थे, उनके शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। उनके शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी की कोई ताकत बढ़ेगी नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी नुकसान में रहेगी।
1: अमेठी और रायबरेली के अलावा बीजेपी को पश्चिम यूपी में भी अपने किले को मजबूत करना है। ऐसे में सूत्रों की माने तो बीजेपी आरएलडी 23 दिसंबर को एक बड़ी रैली के साथ 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों के लिए संयुक्त प्रचार अभियान शुरू कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हापुड़ जिले के नूरपुर गाँव में एक बड़ी रैली को संबोधित कर सकते हैं। ये रैली पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आयोजित की जाएगी। उधर अखिलेश यादव SIR जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
15: भाजपाइयों की 400 बीसी, ये हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो जनता, भारतीय जनता पार्टी की 400 बीसी को नहीं चलने देंगे। 403
16: पीडीए पीडीए चिल्लाते थे ये राज्यसभा के टिकट में, वो पीडीए कहां चला गया था? और हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी।
1: बहरहाल यूपी में चुनाव से पहले सियासी खेल जारी है, जहां रणनीति के अलावा समीकरण सेट करने की कोशिश की जा रही है। आज तक ब्यूरो।
8: उधर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। रामपुर में जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ईडी ने FIR दर्ज कर ली। आजम खान पर अपनी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए करोड़ों रुपए के सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल करने और इससे जुड़े फाइनेंस में गड़बड़ी करने का आरोप है। बड़ी खबर इस समय आ रही है, आजम खान को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश ने शिक्षा को लेकर यूपी में भेदभाव किया, यह कहा योगी आदित्यनाथ ने आजम खान को विश्वविद्यालय बनाने की छूट अखिलेश यादव ने दी।
16: जिन लोगों को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, जो माफिया के पिछलग्गू हो, माफिया के मरने पर उनकी कब्र में जाकर के फतिया पढ़ करके आंसू बहाते हो, जिनको केवल अपने परिवार की चिंता हो, बाकी प्रदेश उनके लिए कुछ कोई मायने नहीं रखता है, जिन्होंने यूपी के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, उन लोगों से हम क्या उम्मीद करते हैं? क्या वे लोग शिक्षा के लिए कुछ करेंगे? शिक्षकों के लिए कुछ करेंगे? यहां तो भेदभाव होता था। आजम खां विश्वविद्यालय बनाएंगे तो उनके लिए 10 एकड़, और अगर कोई दूसरा वाराणसी में बनाना चाहता तो उसको कहा था नहीं 100 एकड़, तुम 100 एकड़ जब जमीन होगी तब मान्यता देंगे। ये कौन सा मानक है भाई? ये सरकार की बेमानी का स्तर दिखाता है।
8: और अब खबर जंतर मंतर पर होने वाली राजनीति की। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के 2 नेताओं को 5 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस की बात माने तो जंतर मंतर पर माहौल खराब करने के लिए पाकिस्तानी साजिश का भी खुलासा हुआ। इसके साथ ही आज राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान घायल NSUI के छात्रों से मुलाकात की। छात्रों ने बताया कि उन्हें कहां कहां चोटें लगी।
17: क्यों देश को खराब कर रहे हैं? से देश को खराब कर रहा है।
18: चोर है, चोर है,
19: देश को खराब है।
18: अरे देश को खराब कर रहे।
1: सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनका विरोध कुछ इस अंदाज में हुआ।
17: क्यों देश को खराब कर रहा है? क्यों से देश को खराब कर रहा है?
18: चोर है, चोर है,
19: देश को खराब है।
18: अरे देश को खराब कर रहे।
1: इधर एक दिन पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले सीजेपी के तीन नेताओं में से दो को, सौरभ दास और आशुतोष रांगा को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।
20: जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो? ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया।
1: जंतर मंतर को लेकर प्रशासन इसलिए भी सख्त है क्योंकि अब इसमें पाकिस्तानी साजिश के एंगल मिले हैं।
21: ऐसे हैंडल्स हैं जिनकी आईपी इंडिकेट करती है कि वो पाकिस्तान से क्रिएट किए हुए हैंडल्स हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना मना है, मगर कनॉट प्लेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज भी जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन से पहले प्रदर्शन में घायल NSUI के छात्रों को लेकर राहुल गांधी हाजिर हुए।
22: ये हिंदुस्तान है, अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है, और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए।
8: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। एक दिन पहले की जोरदार तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। थोक महंगाई में बढ़ोतरी, महंगे कच्चे तेल, विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार पर दबाव बना रहा और इस दौरान सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 72,781, निफ्टी 99 अंक टूटकर 22,622 पर बंद हुआ। सितंबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 11.39% पर पहुंच गई, जो अगस्त में 9.92% थी। महंगाई बढ़ने से ब्याज दरों में राहत की उम्मीद पर पड़ने वाली चिंता बढ़ गई। वहीं कच्चे तेल का भाव $106 प्रति बैरल के आसपास रहा। हालांकि आईटी शेयर्स में खरीदारी ने बाजार की गिरावट को कुछ हद तक संभालने का काम भी किया। वहीं शेयर बाजार में गिरावट के बीच रुपए में मजबूती जारी रही और डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे मजबूत होकर 95.17 रुपए पर बंद हुआ। आरबीआई के विदेशी मुद्रा बाजार से जुड़े कदमों और कमजोर डॉलर से रुपए को सपोर्ट मिला, लेकिन महंगे कच्चे तेल और विदेशी निवेशकों के लगातार बिकवाली से रुपए की आगे की चाल पर दबाव बना रह सकता है। उधर सराफा बाजार में सोने और चांदी में गिरावट जारी रही। सोना 1,272 रुपए गिरकर 1,46,345 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, जबकि चांदी 4,646 रुपए टूटकर 2,14,392 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने में लगातार तीसरे सत्र गिरावट रही। महंगाई बढ़ने की आशंका से अमेरिकी ब्याज दर ऊंची बनी रहने का डर सोने चांदी पर लगातार दबाव डाल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
24: इन एसोसिएशन विद
25: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
26: शादी है
27: तो क्या बनवाना पसंद करेंगे आप?
26: बंद गला।
27: क्यों, उसे पसंद है?
28: सहारा केल फिटिंग का है। डियर विंस्टो।

0: what I can be.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: यार लोन भूल गया मैडी
3: जस्ट अ गुड बैंक ना
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक
4: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
5: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
6: हाउस द हॉस्टल सेटल्ड
7: यस मैम रियली नाइस
6: कोई आ रहा है क्या
8: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभाली अब फिर से थोड़ा रोमांस ले
6: मयंक फॉर रियल
8: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव
9: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस
10: मेरे पास एक आइडिया है
9: क्या
10: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
11: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
12: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है
13: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है
14: कौन सी बनानी है
15: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाएं special. Car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
16: आपके पास दो options हैं. या तो Superman बनकर furniture को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR boards लगाकर furniture को lifetime के लिए water और termite proof बना लो. E3 products. ये रिश्ता लंबा चलेगा.
17: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप
18: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट वो भी हर महीने
19: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ
20: सोच बदलो और बैंक भी
21: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा
22: तो स्विच टू बीम एकदम सेफ और भरोसेमंद रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर भीम ऐप से करो पे
23: इट्स अ माय वे
24: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं गोल्डी हिंग कण कण में जान
25: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं
26: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम
27: आई लव इट एब्सोल्युटली अमेजिंग तुम एक काम करो तुम मिठाई ऑर्डर कर लो
28: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
27: क्या
28: इनकी राय
29: नई सोच की नींव में हम हर नई उम्मीद में हम गैलेंट निर्माण का रियल हीरो
30: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना वहाँ खाया शहद पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा अरे कश्मीर क्यों जाना कश्मीर ही यहाँ आ गया
31: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद लायन कश्मीर हनी
30: असली शहद असली स्वाद
32: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपीवा डायबिटीज जूस।
4: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो।
5: एक दो, एक श्राम।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
3: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ। देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

राहुल गांधी के साथ आकर NSUI छात्रों ने लगाए दिल्ली पुलिस पर मारपीट के आरोप। FIR दर्ज कराने पहुंचे थाने, बदले में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की बदसलूकी का जारी किया वीडियो। दिल्ली पहुंचे अभिजीत दिपके का एयरपोर्ट पर विरोध, आंदोलन पर नाराजगी, तो दिपके ने की 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की अपील। वाराणसी से सीएम योगी ने अखिलेश पर बोला धावा, कहा SP के PDA का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या पराया धन अपना। रेल कर्मचारियों को 78 दिन का दिवाली बोनस, दिव्यांगों को भी अब 18 वर्ष की बजाय जन्म से मिलेगी पेंशन, मोदी कैबिनेट का निर्णय, 3 पेंशन योजनाओं से इंदिरा गांधी का नाम हटा। मेरठ नीले ड्रम केस में दोषी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, जज ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, सौरभ के शव के किए थे दोनों ने टुकड़े।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष पंजाब। जी हां, पंजाब इस समय उबल रहा है और कारण है एक एंटी ड्रग एक्टिविस्ट की हत्या, और वो भी तब जब वो फेसबुक लाइव करके मेडिकल स्टोर चलाने वाले एक आरोपी पर छापा मार रहे थे। ये घटना कल हुई थी। आज दिन भर पंजाब के मानसा में हंगामा और बवाल चलता रहा। पहले आरोपी के घर पर बुलडोजर चला, फिर दुकान पर चला, दुकान में आग लगाई गई और उसे ढहा दिया गया। अब पंजाब में कल बंद का ऐलान किया गया है, जिसे किसान संगठनों के अलावा कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का भी समर्थन है। पूरी रिपोर्ट देखिए।
1: ड्रग्स का जहर और फेसबुक पर लाइव मर्डर। मंगलवार को पंजाब के मानसा में एंटी ड्रग एक्टिविस्ट प्रविंदर सिंह छोटा की हत्या के बाद बहुत तनाव बना हुआ है। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और आज तो लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ही ले लिया। आरोपी केमिस्ट अश्विनी कुमार की दुकान में पहले बुलडोजर एक्शन हुआ, फिर स्थानीय लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की और दुकान में आग लगा दी, और फिर पूरी दुकान भर भरा कर टूट गई। पूरा केस आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि ये शुरुआत कहां से हुई। कल सुबह 10 बजे के करीब मानसा में एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा अपने कुछ साथियों के साथ एक केमिस्ट अश्विनी कुमार की दुकान में दाखिल होते हैं। केमिस्ट पर आरोप लगाते हैं कि उसने एक बुजुर्ग को नशीली दवाएं बेची हैं। परविंदर सिंह ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चलाते थे और ऐसी छापेमारियों की लाइव स्ट्रीमिंग भी करते थे। कल भी वो पूरी छापेमारी की फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। दोनों के बीच में जमकर बहस होने लगी। तभी केमिस्ट अश्विनी कुमार ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल दी। परविंदर झोटा ने अश्विनी कुमार को चैलेंज किया कि गोली मार कर दिखा, और अश्विनी कुमार ने फायर कर दिया। परविंदर झोटा को 3 गोलियां लगी, 2 पेट में और 1 जांघ पर। एक गोली तो लीवर को चीरती चली गई। अश्विनी कुमार की दुकान से बाहर निकलते ही परविंदर सिंह जमीन पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत मानसा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया, और उसके बाद अश्विनी कुमार अपनी दुकान से भाग गया। मानसा में तनाव हो गया, तुरंत आम लोग अस्पताल में जुटने लगे। लोगों ने अश्विनी की मेडिकल शॉप में कल तोड़फोड़ भी की। परविंदर झोटा के परिवार की तरफ से कहा गया कि जब तक न्याय नहीं मिलता वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस बीच पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया कि इन दोनों के बीच पुरानी रंजिश थी, जिसकी वजह से यह हत्या हुई। ये भी जानकारी मिली कि 2023 में परविंदर झोटा ने अश्विनी कुमार के मेडिकल शॉप पर ऐसे ही छापेमारी की थी। तब भी यही आरोप लगे थे कि वो नशीली दवाएं बेचता है, और इसके बाद परविंदर ने उसके गले में जूतों की माला डालकर मानसा बाजार में उसका जुलूस निकलवाया था और उसे पुलिस के हवाले किया था। इसी वीडियो के आधार पर पंजाब पुलिस ने दोनों के बीच रंजिश बताई। लेकिन पंजाब में चुनाव नजदीक है और मामला ड्रग्स से जुड़ा है। पंजाब सरकार की कैंपेन भी चल रही है युद्ध नशे के विरुद्ध, इसीलिए राजनीति तेज हुई, पंजाब सरकार पर दबाव भी पड़ा। इस बीच आज सुबह सुबह खबर आई कि अश्विनी कुमार को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया गया, जिसे बठिंडा लाया गया क्योंकि मानसा में कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी। परविंदर झोटा के पिता की शिकायत पर अश्विनी कुमार के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मानसा में अश्विनी कुमार की दुकान के बाहर स्थानीय लोग जुटने लगे। मांग होने लगी कि अश्विनी कुमार का घर और उसकी दुकान ढाई जाए। यूपी में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलना आम बात है, पंजाब में ये सब कहां होता है। लेकिन चुनाव नजदीक है, इसीलिए पंजाब सरकार ने तुरंत अश्विनी कुमार के घर और दुकान पर बुलडोजर भेज दिया। एक संकरी सी गली से बुलडोजर अश्विनी कुमार के घर पर पहुंचा और तोड़फोड़ शुरू कर दी।
2: अंदर झोटा के कातिल के ऊपर बुलडोजर एक्शन, आप देखिए उसके घर के ऊपर जिस तरह से ये बुलडोजर है। एक तंग गली है जिसमें ये बुलडोजर आया है, और इसी बीच में मीडिया कर्मी भी आपको नजर आएंगे, और यहाँ पे एक बड़ी मुहिम पंजाब पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए, क्योंकि एक बड़ी मांग थी कि भाई ये जो कातिल है अश्विनी है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, उसके दुकान पे चलना चाहिए जहां से वो इलीगल ड्रग्स कथित तौर पे बेच रहा था। और यहां पे बात आती है कि किस तरह से जब फेसबुक लाइव हो रहा था, वहां पे इस तरह की कार्रवाई की गई और वहां पे सबके सामने दिन दिहाड़े एक नहीं तीन गोलियां दागी गई, जिसके वजह से परविंदर झोटा की मौत हो गई।
1: घर पीछे गली में था और इसी गली में आगे अश्विनी कुमार की दुकान थी, जहां लोग जुट गए थे और अब तो यहां निहंग भी आ गए थे। यहां भी कार्रवाई की मांग होने लगी। बड़ी संख्या में पुलिस बल था, लेकिन पुलिस वाले चुपचाप कोने में खड़े थे। बुलडोजर अश्विनी कुमार की दुकान पर भी पहुंचा और यहां भी तोड़फोड़ शुरू हो गई। लेकिन बुलडोजर की तोड़फोड़ के बाद भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो उसकी दुकान में घुस गए। भीड़ ने मेडिकल शॉप से दवाइयां निकालनी शुरू कर दी। दावा किया कि इन्हीं में वो नशीली दवाएं भी हैं जिन्हें अश्विनी कुमार बेचता था। गुस्साई भीड़ ने दुकान में तोड़फोड़ की। दुकान का सामान पहले बाहर निकाला और उसमें आग लगाई और उसके बाद दुकान के अंदर भी आग लगा दी।
2: लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, बुलडोजर एक्शन हुआ है। हम बात कर रहे हैं उसके घर पे और दुकान पे, लेकिन आपको ये धुआं नजर आता हुआ है क्योंकि यहाँ पे रोष है, निहंग आ गए हैं, यहाँ के नौजवान हैं। आप देखें हजारों की तादाद में ये भीड़ है, ये अब अपना गुस्सा दिखा रही है और हमने देखा कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, चाहे पथराव से हो चाहे यहाँ पे तोड़फोड़ की हो। आप ये देखिए लगातार पत्थर फेंके जा रहे हैं और अगर हम बात करें आपको लगातार हम ये दिखा रहे हैं किस तरह से लोग हैं, ये देखिए अंदर से तोड़फोड़ की जा रही है। तो लोगों का
0: एक बड़ी खबर आ रही है इस समय, हम आपको बता दें राहुल गांधी इस समय दिल्ली के इंडिया गेट पर जा रहे हैं और वो अंकिता भंडारी के परिवार से मिलने जा रहे हैं। वो अंकिता भंडारी जिसे उत्तराखंड के पौड़ी जिले में जिसकी हत्या कर दी गई थी, और अंकिता भंडारी जो कि एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम किया करती थी और इसका आरोप जो था वो रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य जो बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे हैं उन पर लगा था। तो राहुल गांधी इस समय अंकिता भंडारी के परिवार से मिलने जा रहे हैं। राहुल गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। राहुल, ये अंकिता भंडारी का परिवार इंडिया गेट पर क्या कर रहा
3: है, किस बेस पे उन्होंने उस आदमी को राज्यपाल बनाया?
4: जो आशाएं लगी थी वो कुछ नहीं हुई और साथ ही साथ गांधी ने
5: लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं और हम सोच रहे थे यहाँ एक न्याय की थोड़ी सी उम्मीद बनती है। एक नाम सामने आया वीआईपी का, वो वीआईपी का जब नाम सामने आया उम्मीद बनी कि चलिए एक नाम उजागर हुआ है, क्योंकि ये जो पकड़े हैं तो मोहरे हैं। अब उन्होंने भी बोला वीआईपी था, उन्मिला सनावर ने हर बार वीडियो बना के बोला एक वीआईपी था, जब वो वीआईपी का नाम भी उसने दिया उसको एसआईटी में लाया गया, इस व्यक्ति को एसआईटी में लाया, जी बिल्कुल एसआईटी में लाया गया। उसके बाद सीबीआई जांच में अभी उसकी जांच भी नहीं हुई है, उसको गवर्नर क्या, आपको नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पर कितना मतलब बदबूदार एक पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है जिसमें उसकी उसको इम्यूनिटी दे दी गई है ताकि वो जांच ही ना कर पाए और जांच से ऊपर उठ जाए और वो बच जाए। पूरी तरह से बचाया जा रहा है वीआईपी को, जो डे वन से बचाया जा रहा है अभी भी वही हुआ है। और अब इस कितना बड़ा थप्पड़ है ऐसे माँ बाप के ऊपर जिनकी बेटी इस तरह से गई और उसके बाद जो व्यक्ति है जो आरोपी है उसको इम्यूनिटी मिल जाती है और वो राज्यपाल हो जाता है। मतलब राज्यपाल बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, गवर्नर बनना किसी देश में किसी राज्य का, और ये अगर रेपिस्ट को अगर इस तरह की सजा इस तरह से ये एक पदक मिलता है।
6: रेपिस्ट बोल लो तो उनका नाम किसी जांच में तो आया नहीं,
5: आया है एसआईटी में आया है जांच में, तो जांच के घेरे में तो है ना, वो मैं ये कह रही हूँ। वो
0: राहुल क्या है ये मामला, क्यों अंकिता के परिवार वाले यहाँ बैठे हैं और ये विरोध कर रहे हैं जिनसे मिलने राहुल गांधी जा रहे हैं?
7: देखिए दुष्यंत गौतम है बीजेपी के नेता, उनको अभी हाल में ही गवर्नर नियुक्त के लिए नॉमिनेट किया गया है सिक्किम के, और बीजेपी के नेता है और लगातार जो परिवार है वो उनको कटघरे में खड़ा करता रहा है। इससे पहले भी अंकिता भंडारी के जो माता पिता है वो राहुल गांधी से एक बार मिल चुके हैं और उस समय भी उन्होंने ये मांग उठाई थी कि हमको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, इसमें कई ऐसे नाम हैं बड़े लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। तब राहुल गांधी ने उनको अश्योर किया था कि मैं आपके साथ हूं और इंश्योर करेंगे कि आपको जस्टिस मिले। अब ये जानकारी मिल रही है क्योंकि परिवार को इस बात से खासा एतराज है कि वो सिक्किम के गवर्नर बनने जा रहे हैं दुष्यंत गौतम, और उसके विरोध में वो इंडिया गेट के पास धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ में योगिता भयाना भी हैं जो कि एक महिला।
8: आप जो वीआईपी के बारे में बोलेंगे, और दूसरी बात कि जब पुलकिता ने जो आरोपी था वो 18 सितंबर 2022 से 19 सितंबर 2022 की एसआईटी द्वारा कोई रिपोर्ट उसके कॉल डिटेल नहीं निकाली गई, और उसका 19 तारीख जो उसने नया फोन लिया वही कोर्ट में जमा किया। तो मैं ये चाहता हूँ सीबीआई से 19 सितंबर 2022 से 18 सितंबर 2022 से 19 सितंबर 2022 तक मेन जड़ वो ये पुलकिता है उसकी पूरी कॉल डिटेल निकाल जाए, उसकी किससे बात कर रहा था साफ पता पड़ जाएगा वीआईपी आखिरी कौन था। पर लेकिन मैं महामहिम राष्ट्रपति जी, मेरी बड़ी गिनती है कि तब तक दुष्यंत कुमार की नियुक्ति न की जाए जब तक सीबीआई की जांच पूरी न हो पाती हो जाती।
6: आपको लगता है कि दुष्यंत कुमार की कोई भूमिका इसमें?
8: बिल्कुल, दुष्यंत कुमार देखो जिस तरह से उर्मिला सनावर बिल्कुल दावे करके ठोक रही है कि अंकिता भंडारी का वीआईपी दुष्यंत कुमार गौतम है, तो सीबीआई बार बार छुपाने की कोशिश क्यों करी है? जैसे मैंने 10 तारीख को वीडियो बनाई वैसे 12 तारीख को सरकार केंद्र सरकार ने दुष्यंत कुमार को राज्य सिक्किम का राज्यपाल बना दिया है। क्या है वे तो हमारी उत्तराखंड की सरकार और केंद्र में जो मोदी की सरकार
9: हमको अपने घर छोड़े सड़कों में रह रहे हम सड़कों में हमको ये सिला दिया मैं बेटी को ना बोलने का इतना बड़ा इतनी बड़ी सजा कि उसके माँ बाप आज तक सड़क में बैठे कम मिलेगा मेरे बेटे को न्याय
0: अंकिता भंडारी हत्याकांड में दुष्यंत गौतम का नाम भी आया था और सिक्किम का गवर्नर बनाया गया है उन्हें, जिसका विरोध अंकिता भंडारी का परिवार कर रहा है और ये लोग धरने पर बैठे हैं। इन लोगों का आरोप है कि अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा है और जिस बीजेपी नेता का नाम आया आपने उसे सिक्किम का गवर्नर बना दिया। राहुल गांधी भी परिवार से मिलने के लिए इंडिया गेट इस समय जा रहे हैं। ये अंकिता भंडारी का परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है पौड़ी में एक रिसोर्ट में, रिसेप्शनिस्ट का काम अंकिता भंडारी एक लड़की क्या करती थी। 2022 में उसकी हत्या हो गई थी और बीजेपी के एक नेता जिन्हें बाद में निष्कासित कर दिया गया उनके बेटे का ये रिसोर्ट था जिस पर आरोप लगा था अंकिता की हत्या का और वो परिवार अभी तक बैठा है। बहुत सारे लोगों के नाम उस समय इस हत्याकांड में सामने आए थे जिसमें दुष्यंत गौतम का नाम भी आया था और इसी को लेकर परिवार विरोध कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं दुष्यंत गौतम, बड़े नेता हैं और उन्हें हाल ही में सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है जिसका विरोध यहां पर किया जा रहा है। अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष भी दुष्यंत गौतम रह चुके हैं। कांग्रेस ने इस नियुक्ति का विरोध किया। अंकिता का परिवार यहां पर बैठा हुआ है धरने पर दुष्यंत गौतम के खिलाफ, उन्हें गवर्नर राज्यपाल बनाए जाने के खिलाफ। तो राहुल गांधी भी इस परिवार से मिलने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए इस समय इंडिया गेट जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: शादी है।
1: तो क्या बनवाना पसंद करेंगे आप?
0: बंद गला।
1: क्यों, उसे पसंद है?
2: सारा खेल फिटिंग का है। डियर विंस्टो,
3: यार लोन भूल गया। मैरी,
4: इट्स
3: जस्ट अ गुड बैंक ना।
5: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
3: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
5: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
6: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
7: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार रुक, ठुमका लगाने बस।
8: मेरे पास एक आइडिया।
7: क्या?
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
9: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
10: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
11: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
12: कौन सी बनानी है?
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।
17: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
18: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
19: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
9: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
19: क्या?
9: इनकी राय।
10: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मैं चैन की नींद सो पाता कपीवा डायबिटीज जूस।
4: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।
5: Hey, Shram!

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: ये हिंदुस्तान है, अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है, और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए। इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूँ, दिल से प्यार से। देखिए, मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए। इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक। नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत। कोई डर रहा है?
3: नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
2: खुश हो?
4: यस सर।
2: शाबाश, लव यू।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: शादी है
3: तो क्या बनवाना पसंद करेंगे आप?
2: बंद गला।
3: क्यों, उसे पसंद है?
4: सारा खेल फिटिंग का है। डियर विंस्टो,
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
6: मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
7: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
9: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
15: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
16: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
17: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
16: क्या?
17: इनकी राय।
18: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
19: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुना।

0: आ गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: हाँ चाचा, अखबार भाँच रहे हैं।
2: टेस्ट
0: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
2: अरे भैया प्रोटेस्ट में हिस्सा हम ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा है, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
0: अच्छा, कब उठाए?
2: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
0: अच्छा,
2: हाँ तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग तरह इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन कर गया, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
3: जी,
2: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
0: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है आपका।
2: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द पिता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन दिल बोलता रखे था हाँ, एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
0: अच्छा,
2: और क्या
0: आपका मतलब हम लोग डर जाते हैं?
2: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस की सिटी नहीं बची उस दिन भागने लगता।
0: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है।
2: किधर?
0: चाचा हम खेल गए अब की।
4: अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में भारत रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का विश्वास देता है। इस साल अप्रैल जून क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है और यह ग्रोथ मजबूत नींव पर खड़ी है। 12-13 साल पहले भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4% से भी अधिक था। पिछले साल यह घटकर लगभग आधा प्रतिशत यानी 0.61% रह गया है। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $700 बिलियन से अधिक हैं। हमारा बैंकिंग सिस्टम अनेक देशों में सबसे मजबूत स्थिति में है। साथियों, इसी मजबूती का परिणाम है कि भारत की सॉवरेन रेटिंग्स अपग्रेड की जा रही है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। खबरदार की शुरुआत हम इस समय एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों दिल्ली के इंडिया गेट इस समय पहुंच चुके हैं और वो वहां पर अंकिता भंडारी के परिवार से मिलने गए हैं। वो अंकिता भंडारी जिसकी उत्तराखंड के एक रिसोर्ट में हत्या कर दी गई थी और उसका परिवार बीजेपी के नए बनाए गए गवर्नर राज्यपाल दुष्यंत गौतम की नियुक्ति का विरोध कर रहा है। 2022 में उत्तराखंड में अंकिता की हत्या हुई थी और अंकिता के परिवार को अभी तक अपनी बेटी के लिए इंसाफ का इंतजार है। इस हत्याकांड में सिक्किम के नए गवर्नर बनाए गए दुष्यंत गौतम का भी नाम अंकिता के परिवार की तरफ से लिया गया था। कांग्रेस भी उनकी नियुक्ति का विरोध कर रही है। अब बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जिसके विरोध में अंकिता भंडारी का परिवार इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गया और वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन मिलने पहुंचे हैं परिवार के साथ। कांग्रेस पहले से इस नियुक्ति का विरोध कर रही थी। उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से भी विरोध किया गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों इस समय इंडिया गेट पर मौजूद हैं परिवार के साथ, अंकिता भंडारी के परिवार के साथ यहाँ पर ये मौजूद हैं। सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है दुष्यंत गौतम को। दुष्यंत गौतम का नाम परिवार की तरफ से लिया जाता रहा है। इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के रह चुके हैं और सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त उन्हें किया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनका नाम आया था। कांग्रेस का ये आरोप है कि उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस वीआईपी का नाम आ रहा था वो दुष्यंत गौतम ही हैं। कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि अंकिता पर जिस वीआईपी को विशेष सेवाएं देने का दबाव बनाया जा रहा था वो भी दुष्यंत गौतम ही थे, इसलिए दुष्यंत गौतम का विरोध कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है और अंकिता के परिवार की तरफ से भी हो रहा है। अंकिता के माता पिता यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और राहुल हमारी संवाददाता इस समय फोन लाइन पर हैं। राहुल, आप क्योंकि इंडिया गेट पर मौजूद हैं जहां की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां पर। राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों परिवार से मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, बताइए, आंखों देखिए।
1: उनसे मुलाकात कर रहा है और वहाँ पर योगिता भयाना भी मौजूद हैं जो कि महिला एक्टिविस्ट हैं। लगातार उनके लिए उन्होंने आवाज भी उठाई, परिवार के साथ वो लगातार बनी हुई हैं। और जाहिर है, मैं जैसे आपको पहले भी बताया था कि राहुल गांधी पहले भी परिवार से मिल चुके हैं और तब भी राहुल गांधी ने ये भरोसा जताया था कि तमाम जो जो हेल्प है वो परिवार को वो एक्सटेंड करेंगे। और जाहिर है उसी के अब क्योंकि परिवार सड़क पर है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है, ऐसे में राहुल गांधी को का मानना है कि वो चाहते थे कि वहां जाएं और अपना जो समर्थन है वो उनको दें। आप अगर देखिए तो लगातार उनकी जो मांग है वो साफ तौर पर ये है कि जो दुष्यंत कुमार गौतम है उनके खिलाफ उनको सिक्किम का जो गवर्नर का जो नॉमिनेट किया गया है वो नहीं करना चाहिए और तमाम जो लोग हैं उनको उनको उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं, जो इंडिया गेट है उसका जो सर्कल है वहां पर धीरे धीरे गहमागहमी बढ़ती जा रही है। पुलिस का जमावड़ा भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लगातार जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के वो भी पहुंच रहे हैं और जाहिर है ट्रैफिक की एक समस्या उत्पन्न हो सकती है तो उसको रोकने के लिए तमाम लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है, अलाउ नहीं किया जा रहा है और कोशिश है उनकी कि तमाम जो लोग हैं उनको अलाउ के

0: तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अभी भी परिवार से संवाद कर रहे हैं राहुल गांधी। आप अगर देखें तस्वीरों के जरिए तो हाथ में तख्तियां हैं, जो जो अंकिता को न्याय दो, वीआईपी संरक्षण को बंद करो। जाहिर है ये एक कोशिश भी है राहुल गांधी की मैसेज देने की कि वो परिवार के साथ खड़े हैं, लगातार खड़े हैं, और आगे भी अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो वो परिवार का साथ देंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है
1: जी।
0: कि जब राहुल गांधी ने उनको अपने घर पर बुलाया था, तब राहुल गांधी ने उनके साथ में अपने दफ्तर के नंबर भी शेयर किए थे और कहा था कि अगर आपको
1: राहुल, आप ये बताइए कि दुष्यंत गौतम का विरोध परिवार क्यों कर रहा है?
0: देखिए, दुष्यंत गौतम का नाम दरअसल अंकिता भंडारी केस में आया था, बताया गया था कि एक डीआईजी हैं, बड़े नेता हैं दिल्ली के, उनके उनका नाम आया था कि कथित तौर पर प्रोस्टिट्यूशन या फिर शोषण की बात कही गई थी। और हालांकि दुष्यंत कुमार गौतम ने लगातार इन तमाम दावों को कहा है, पार्टी ने भी जाहिर है तमाम बातों को दरकिनार किया है, एलिगेशन को रबिश किया है, लेकिन जो परिवार है उसका ये मानना है कि तथा कथित जो बड़ा नेता था या वीआईपी नेता था वो दुष्यंत कुमार गौतम थे, जिनके जिनकी वजह से तमाम जो
1: राहुल बहुत धन्यवाद आपका, हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ थे। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग के निर्णय और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आंदोलन लगातार चल रहा है। राहुल गांधी ने भले ही अपने अगले कदम की जानकारी नहीं दी हो, लेकिन जंतर मंतर को लेकर राहुल की तरफ से सरकार को लगातार खबरदार किया जा रहा है। आज लेफ्ट और कांग्रेस से जुड़े संगठनों का जंतर मंतर की तरफ मार्च करना हो, या फिर राहुल का पुलिस की बदसलूकी के शिकार एनएसयूआई के छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जंतर मंतर को लेकर लड़ाई धीरे धीरे ही सही लेकिन तेज होती जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का प्रयास किया तो फिर क्या होगा? गिरफ्तारी होगी तो जेल होगी, बेल होगी या नहीं होगी, और अगर जेल होगी तो कितने साल की सजा होगी?
2: उसके बारे में आप मत घबराइए, वो हमारा काम है। FIR होगा, प्रेशर करना है, क्या करना है। एक प्रोटेस्ट है, एक आवाज है, देश की आवाज है, और उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है।
3: SIR के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले NSUI के कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी छात्रों को डरना मत वाला मंत्र देते हैं। जंतर मंतर को भारत के लोगों का बताकर इसे वापस लेने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, CJP नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, जंतर मंतर पर तिरंगा फहराने को अपराध नहीं बताते। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष का अगला प्रदर्शन जंतर मंतर को लेकर ही होगा, जो अब विरोध प्रदर्शन की जगह नहीं रहा?
4: द वन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज जंतर मंतर, एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट जंतर मंतर कैन नो लॉन्गर बी यूज टू एक्सप्रेस डेमोक्रेटिक फीलिंग्स। वेल, वी आर गोइंग टू चैलेंज दैट आइडिया। It is not going to be so simple for the government to decide that the Indian people will not fight for their voice.
3: राहुल इसका जवाब हाँ में दे चुके हैं। राहुल कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जाएंगे, वहीं दोबारा विरोध प्रदर्शन करेंगे, जहां CJP के नेताओं को मिनट छोड़िए कुछ ही सेकंडों में पुलिस ने पकड़ लिया। सवाल यह है कि अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो उसे क्या अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि राहुल के जंतर मंतर पर दिए बयान के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जंतर मंतर छोड़िए इन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने तक से रोक दिया, दो दो बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया।
5: वैसी अपना विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर दर्ज करवा रही, आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे जो IYC के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंच गए, आपको दिखाना चाहूंगा। पीछे आप पढ़ सकते होंगे संसद मार्ग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रायसेना रोड से जो IYC के कार्यकर्ता हैं जो अपना मार्च शुरू करते हैं, जंतर मंतर जाते हैं और जंतर मंतर से यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट वो पहुंचते हैं। वहीं एक तरफ दिल्ली पुलिस की भी यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा भारी जो है तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं तैनात किए गए हैं, जगह जगह को बैरिकेड करके रखा ताकि जो IYC के कार्यकर्ता यहां से आगे ना बढ़ पाए, पर पहली लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर जो IYC के कार्यकर्ता यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए हैं अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने के लिए।

0: पुलिस की सख्ती के बावजूद SFI और DYFI जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने फिरोज शाह रोड से जंतर मंतर जाने की कोशिश की। जब पुलिस ने रोका तो नारेबाजी की। विपक्षी संगठन भले ही बार बार जंतर मंतर पर जाने की कोशिश कर रहे हों, राहुल इसे दोबारा वापस पाने के दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार और विपक्ष में टकराव की नई वजह बनती जा रही है। इस जगह पर अब पहले की तरह प्रदर्शन नहीं हो सकता, ऐसा करना अब गैर कानूनी हो गया है। अब सवाल ये है कि अगर कोई इसके बावजूद वहाँ प्रदर्शन करता है तो क्या होगा?
1: जंतर मंतर उन स्थानों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहाँ हमेशा के लिए हमेशा DNS की धारा 163 यानी कहें तो CRPC की धारा पहले जो 144 थी, निषेधाज्ञा जिसे कहते हैं भारतीय न्याय संहिता की, अब भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 163 का असर रहेगा, यानी उसके असर में आप वहां बिना किसी परमिशन के आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। और ऐसे भी वो धरना प्रदर्शन के लिए वहां अगर आप परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी डालेंगे तो मंजूर नहीं होगी, क्योंकि अब वो जगह धरना प्रदर्शन के लिए नामजद जगहों में नहीं रह गई है।
0: शुरुआत में दिल्ली का बोट क्लब बड़े आंदोलन का बड़ा केंद्र था। लोग बोट क्लब में जुटते और सरकार से मांगे करते या असहमति जताते। इंडिया गेट के पास स्थित बोट क्लब से भी संसद की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। राम मंदिर आंदोलन के वक्त केंद्र की कांग्रेस सरकार ने यहां प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। 1988 में पश्चिम यूपी के कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने यहां से एक आंदोलन किया था, जिससे तब की कांग्रेस सरकार हिल गई थी। साल 1993 में प्रदर्शन स्थल बनने के बाद जंतर मंतर भी कई आंदोलन का गवाह बना। इसमें अन्ना हजारे आंदोलन सबसे बड़ा है। जंतर मंतर निर्भया आंदोलन में भी चर्चा में रहा। CAA किसान आंदोलन भी यहां से हुए, लेकिन अब यहां पर प्रदर्शन करने से रोक लगा दी गई है।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में निषेधाज्ञा जब लगाई जाती है तो पूरा नई दिल्ली इलाका घुटने लगता है, यानी दम घुट जाता है, ट्रैफिक रेंगता रहता है और लोगों को परेशानियां होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार जंतर मंतर के बजाय किसी और खुली जगह पर प्रदर्शन के लिए इजाजत क्यों नहीं दे देती है, यही प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है।
0: जंतर मंतर का मामला अदालत पहुंच गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देने के दिल्ली पुलिस के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर को तय प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के आधार पर लिया गया है, जिसमें वैकल्पिक जगहों की पहचान करने की बात कही गई थी। पुलिस की ओर से ये भी दलील दी गई कि जब जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया जा चुका है तो इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का अब कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की तो फिर उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
1: जैसा कि CJP ने लगातार दोहराया कि हमारा अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, तो अब कानून की धाराओं में उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर आप वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, 5 या 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके आगे भाषण करते हैं, तो आपको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि इसी में अगर आपके पास अवैध हथियार पाए जाते हैं, अगर आप पुलिस पर हमला करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं, तो अलग अलग धाराओं में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अधिकतम सजा 5 साल की सजा, ₹10,000 तक जुर्माना और चाहे अदालत चाहे तो दोनों चीजें एक साथ लगा सकती हैं। लिहाजा अब प्रदर्शन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है जहां निषेधाज्ञा यानी DNSS की धारा 163 लागू है, जिसे हम पुराने जमाने में 144 कहते थे, वो अगर लागू है तो आपको एक तो परमिशन नहीं मिलेगी और बिना परमिशन के अगर आप सिद्ध करेंगे कि हमें प्रदर्शन करना है तो इन सारी चीजों को भुगतने के लिए आप तैयार हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज का।
2: जंतर मंतर का मामला अब अदालत पहुंच चुका है। अगर जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर विपक्ष अड़ा तो फिर विपक्षी कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस के अफसर एक बार फिर से आमने सामने होंगे। राहुल गांधी ने NSUI कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। इस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जवाब आया। वीडियो जारी करके उन्होंने भी आरोप लगाया।
3: जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव
0: SIR पर अमित शाह की तरफ से पहले और बड़े हमले के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को छात्रों के बहाने घेरा।
4: ये हिंदुस्तान है, अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए, यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है, और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
0: राहुल गांधी ने सरकार ही नहीं दिल्ली पुलिस को भी चेतावनी दी, कहा प्यार से समझा रहा हूँ।
4: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूँ, दिल से प्यार से। देखिए, मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत।
0: राहुल गांधी ने जिन लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सभी ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट और हिरासत में ज्यादती करने के आरोप लगाए। एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों के कहने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही थी।
5: सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको इलीगली डिटेन नहीं करना है प्रोटेस्टर्स को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, पर मेरे को बजरंग दल और आरएसएस के गुंडों के बोलने पे डिटेन किया गया, और वो गुंडे वो थे जिनके पास मेरे पास उनका वीडियो है जहां पर वो थ्रेटन कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में पत्थर है, और वो सब होने के बावजूद वही सेम गुंडे जाके पुलिस को बोलते हैं, और पुलिस सुप्रीम कोर्ट की ना सुनने के बजाय उन गुंडों की सुन के उन्होंने मेरे को ब्रूटली डिटेन किया।
0: राहुल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदिरा ने होठों के नीचे लगी चोटों को भी दिखाया।
6: चंचल यादव एंड अदर 3 or 4 पुलिस ऑफिसर्स वेंट इन द बस एंड ड्रैगन मी इन द रोड एंड आल्सो दे देयर इज एसएचओ इन कैनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन, ही टोल्ड मी द लेडी पुलिस ऑफिसर taken away to basement, there is no CCTV, you can do anything, so they punch me here, mera live, and continuously beaten my pura cheek.
0: इसी दौरान NSUI से जुड़ी रितु बराला ने बताया कि उनके चेहरे पर चोट लगने की वजह दिल्ली पुलिस है। रितु ने बस में चंचल यादव नाम की एक महिला पुलिस कांस्टेबल पर मारपीट के आरोप लगाए।
7: महिला पुलिसकर्मी होती है वो इतना अग्रेसिव हो जाती है, हम आगे आने की कोशिश करते हैं तो वो मुझे इतनी जोर से धक्का मारती कि मैं पीछे जाके सीट पे, वो इतना जोर से पुश करती कि मैं पीछे सीट पे जाके गिरती हूँ, और फिर वो इतना जोर से अग्रेसिव हो जाती कि मेरा गला जोर से दबा लेती है। इधर
8: पीछे का विजुअल है वो,
7: जी जी जी, यहाँ से मतलब मेरा गला पूरा स्क्रेच हो जाता है पूरा, और फिर मतलब मैं गला कैसे छुड़ाने का प्रयास करती हूँ तो वो मेरे मुंह पे पंजा मार के मुक्का मारती है, और फिर यहाँ इतनी जोर से मतलब पूरा स्क्रेच कर देती है पूरे फेस को और आंख के इधर भी लगता है, तो उसके बाद ये छुटाने का प्रयास करते हैं के लिए मैं धक्का मारती हूँ, तो वो मेरे जोर से इतना थप्पड़ मार के मेरे बालों पे मतलब पूरा कैप्चर कर लेती है, जूते रगड़ के, और मेरी जो इयररिंग होती है वो मेरे कान के अंदर चली जाती है, और उसके बाद हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा वो बाली मेरे साथियों के सामने निकाली जाती है।
0: अब 13 अक्टूबर की ये तस्वीर देखिए जिसमें रितु और महिला पुलिसकर्मी के बीच झड़प हो रही है, पुलिसकर्मी पर रितु थप्पड़ मारती दिखती है। अब पुलिस पूछ रही है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का हक किसने दिया।
9: वायरल वीडियो में दिखाई दे रही महिला पुलिसकर्मी का नाम चंचल यादव है, वो नई दिल्ली जिले में तैनात है, उसने सीनियर अफसरों को शिकायत दी है, उसमें बताया है कि NSUI के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दौरान महिला NSUI की कार्यकर्ता को उसने हिरासत में लिया और बस में बिठाया, जहां NSUI की महिला कार्यकर्ता ने बस ड्राइवर से चाबी छीनी और उसे जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। महिला कांस्टेबल चंचल यादव ने आरोप लगाया है कि NSUI की कार्यकर्ता ने उसके साथ मारपीट की जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने चंचल यादव का मेडिकल टेस्ट करवाया है और अगर लीगल एक्शन लिया जा रहा है।
8: डर गायब हो गया?
10: बिल्कुल हो गया सर।
0: तो भले ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की मारपीट के बावजूद शांतिपूर्ण संदेश दिए जाने की बात कही गई हो,

0: थैंक यू. नफरत का जवाब प्यार से ही दिया जाएगा बेसिकली.
1: लेकिन दिल्ली पुलिस इस तरह के वीडियो के आधार पर पुलिस कर्मियों के हक का सवाल उठा रही है. राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान छात्रों से मारपीट का वीडियो बनाने को कहा है, उससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों में वीडियो वॉर तेज होने की पूरी संभावना है. अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक.
2: NSUI की तरफ से छात्रों से बदसलूकी के आरोप के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से भी वीडियो सबूत के तौर पर पेश किए गए. दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी जरूरत से ज्यादा आक्रामक थे, जिन पर काबू करना बहुत मुश्किल था. NSUI से जुड़ी रितु बराला ने जिस बस में मारपीट का आरोप लगाया, दिल्ली पुलिस ने उसी बस का वीडियो जारी किया जिसमें प्रदर्शनकारी महिला बहुत अधिक आक्रामक दिखी. पहले आप वो वीडियो देखिए. वीडियो में देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से दिखाया गया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से दिखाया गया कि आंदोलन कर रही छात्राएं बस के बाहर खड़ी पुलिसकर्मियों से हाथापाई कर रही थी, तो बस के दरवाजे पर खड़े होकर किसी को भी अंदर नहीं आने दे रही थी. पुलिस का कहना है कि स्थिति ऐसी थी तो उन्हें काम करना पड़ा. दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसा ही एक और वीडियो जारी किया गया जिसमें महिला प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मी के ऊपर थप्पड़ बरसाती, चेहरे पर हमला करते देखी जा सकती है. NSUI की तरफ से छात्रों से बदसलूकी के आरोप के बाद दिल्ली पुलिस ने भी ये वीडियो सबूत के तौर पर जारी किए. दिल्ली पुलिस ने NSUI कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी के आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने को लेकर 24 घंटे का समय मांगा है. NSUI की लीगल टीम के अनुसार उन्होंने अपने आरोप के समर्थन में सबूत सौंपे हैं. NSUI की लीगल टीम ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस FIR दर्ज नहीं करती तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
3: हम लोगों ने जो है कैनॉट प्लेस थाने के SHO जो कि एक निहायत मैं कहूंगा कि ऐसे आदमी हैं जो महिलाओं से अभद्रता की बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और उनकी देखरेख में कल जो है हमारी फीमेल प्रोटेस्टर्स को मारा गया, उनके सामने मारा गया, उनका सस्पेंशन किया जाए, उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज हो, और जो पुलिसकर्मी कांस्टेबल इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो और उनको भी सस्पेंड किया जाए. 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है हमने दिया है और समय भी पुलिस ने हमें 24 घंटे का, पुलिस ने खुद ने 24 घंटे का समय मांगा है. तो अगर 24 घंटे के बाद हमारी FIR लोज नहीं होती, FIR दर्ज नहीं की जाती है, तो हम जो है तमाम लोगों से आह्वान कर रहे हैं जिनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने ब्रुटेलिटी की है, जिन भी पत्रकारों को मारा है, यूट्यूबर्स को मारा है, आम सिविलियंस स्टूडेंट्स को मारा है, कल सब हम इकट्ठा होकर 3 बजे जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे आएंगे, घेराव करेंगे. अगर हमारी FIR दर्ज नहीं हुई तो बाद में हम कोर्ट का सहारा लेंगे.
4: तो देखते हैं 24 घंटे में, लेकिन हम होपफुल हैं कि इस बार दिल्ली पुलिस एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगी, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगी कि आने वाले टाइम पे उसके याद रखा जाए. कोर्ट का रुख करेंगे अगर ये ब्लॉक करते हैं तो हम कोर्ट का रुख करेंगे. और FIR एक चीज है, FIR में प्रावधान क्या लगाते हैं वो दूसरी है. तो FIR तो होनी है, लेकिन FIR रेलेवेंट सेक्शन में होनी है जो बर्बरता हुई है.
2: जंतर मंतर से ही जुड़ा एक विवाद कॉकरोच जनता पार्टी से भी जुड़ा है, जिसके नेताओं ने प्रतिबंध के बावजूद जंतर मंतर पर तिरंगा लहराया, नारेबाजी की, और इसके बाद CJP के 3 नेताओं में से सौरभ दास और आशुतोष रंका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया. वहीं अजय के शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया. इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण पहलू राहुल गांधी का कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में आवाज उठाना है. अभी तक राहुल गांधी की तरफ से CJP से दूरी बनाकर रखी गई थी, लेकिन जंतर मंतर से जुड़े मामले में राहुल गांधी का समर्थन और फिर अभिजीत दिपके का थैंक यू कहना चर्चा का विषय बना हुआ है.
5: क्यों देश को खराब कर रहा है? क्यों से देश को खराब कर रहा है?
6: चोर है। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका स्वागत इस तरह से होगा.
5: चोर है।
6: ऐसा दूसरी बार है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दिपके को सरप्राइज में विरोध मिलता है.
5: भारत
7: माता की जय।
8: राजस्थान के एनएसए यूएनए जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो। आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड।
6: जंतर मंतर पर भी सीजेपी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने सरप्राइज दिया और मिनटों में पकड़ लिया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से रोकने के बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से दो को, सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।
9: जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो? ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया?
6: तिहाड़ जेल में सौरभ दास को जेल नंबर 2 में रखा गया है, वहीं आशुतोष रांका को जेल नंबर 4 में रखा गया है। दोनों को तिहाड़ जेल की अलग अलग बैरक में रखा गया है। अब सवाल ये है कि सीजेपी नेताओं को तिहाड़ क्यों भेजा गया? क्या इसकी वजह सख्त नाकेबंदी के बावजूद मंगलवार सुबह प्रतिबंधित क्षेत्र जंतर मंतर में घुसना है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तीनों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया, फिर तीनों को बुधवार संसद मार्ग की एसीएम कोर्ट के सामने पेश किया, जहां पर पिछली जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। दरअसल बेल बॉन्ड की शर्त का उल्लंघन करने पर जिन्हें अदालत जेल की सजा सुनाती है, इस तरह के मामले में तुरंत राहत के लिए किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, आरोपियों को सजा काटनी ही पड़ती है। जंतर मंतर को लेकर प्रशासन इसलिए भी सख्त है क्योंकि अब इसमें पाकिस्तानी साजिश के एंगल मिले हैं।
10: ऐसे हैंडल्स हैं जिनकी आईपी इंडिकेट करती है कि वो पाकिस्तान से क्रिएट किए हुए हैंडल्स हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है।
6: जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना मना है, फिर भी कनॉट प्लेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रदर्शन में घायल एनएसयूआई के छात्रों को लेकर राहुल गांधी हाजिर हुए, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए, जिसके बाद जंतर मंतर को लेकर सवाल और गहरा गया है।
11: अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए।
2: अभिजीत दिपके ने 16 तारीख को दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा लहराने का ऐलान किया है। वीडियो जारी करके अभिजीत दिपके ने कहा कि उनके सहयोगियों को तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया, इसीलिए वो 16 तारीख को 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा लहराएंगे।
9: जैसे कि आप लोगों को पता है, सौरभ और आशु को बस तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है। तो मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 16 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आप सब सेंट्रल पार्क कैनॉट प्लेस में आइए तिरंगे के साथ। वहां पर हम अपना तिरंगा लहराएंगे और हम बता देंगे कि वेविंग अ तिरंगा इज नॉट अ क्राइम। और जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते, वो अपने अपने शहरों में शाम को तिरंगा मार्च निकालिए और बता दीजिए इन लोगों को, इन तानाशाह को, कि हमारा तिरंगा हमारा प्राइड है और उसे लहराना कोई क्राइम नहीं है। हो सकता है इसके बाद मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरा तिरंगा मेरा प्राइड है और उसे मैं लहरा कर ही रहूंगा।
2: अब खबर पंजाब से। पंजाब के मानसा में कल एक एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झूठा की हत्या के बाद से शहर में जबरदस्त तनाव है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी अश्विनी को पुलिस ने राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया था, लेकिन अश्विनी के खिलाफ गुस्सा थम नहीं रहा। अश्विनी के घर में पहले तोड़फोड़ की गई, उसकी दुकान को आग लगा दी गई। वहीं पंजाब सरकार ने अश्विनी के घर पर बुलडोजर भी चला दिया।
6: पंजाब का एक उभरता बॉक्सर पहले खुद नशे का आदि बना और फिर उसी ने नशे को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। एक लाइन में परविंदर सिंह झोटा की यही कहानी है। परविंदर सिंह झोटा को मानसा में बाबा बॉक्सर कहा जाता था। जालंधर के लायलपुर खालसा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान झोटा एक टैलेंटेड बॉक्सर थे, लेकिन किसी कारणवश वो इंटरनेशनल नहीं खेल पाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि परविंदर झोटा को खुद नशे की लत लग गई थी, लेकिन बाद में झोटा इस नशे की लत से बाहर आए और पंजाब में
7: नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा। उन्होंने नशे को खत्म करना अपने जीवन का मिशन बना लिया, लेकिन अंत में इसी मिशन ने उनकी जिंदगी भी ले ली। लेकिन परविंदर झोटा की हत्या ने पूरे मानसा में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में तनाव पैदा कर दिया है। चुनाव नजदीक है, इसलिए राजनीति भी हो रही है। झोटा के घर वालों से मिलने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या अकाली दल, आम आदमी पार्टी, सब नेता पहुंच रहे हैं। और अब कल पंजाब बंद का भी ऐलान हो गया है।
12: श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने फैसला किया है कि नशियां के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए अपनी जान निशावर करने वाले सरदार परमिंदर सिंह झोटा के सत्कारयोग पिता जी ने जिहड़ी कल 15 तरीक नूं पंजाब बंद की कॉल दिती है, श्रोमणी अकाली दल उस पीसफुल बंद का समर्थन करेगा, क्योंकि इस वेले जिहड़ा मुद्दा वह पंजाब की जवानी नूं बचाउण दा। श्रोमणी अकाली दल सारे पंजाबियों नूं अपील करदा कि किसी नूं कहण की जरूरत नहीं पैनी चाहीदी, बिल्कुल पीसफुल तरीके दे नाल जिस तरह जेडे परविंदर सिंह झोटा के पिता जी ने बेनती की है कि एक सुनेहा जाना चाहिए सारे देश नूं कि सारा पंजाब उस सोच दे नाल खड़ा है जिदे वास्ते परविंदर सिंह झोटा ने अपनी शहादत दी।
7: पंजाब में भगवंत मान की सरकार भी दावा कर रही है कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो पंजाब में नशे के विरुद्ध युद्ध छेड़ा हुआ है।
13: पंजाब पुलिस वालों कोई भी कमी नहीं छड़ी जाऊगी, दोषियों नूं सख्त तो सख्त सज़ा मिलेगी। जे इहदी साजिश के पिछे कोई हो बंदा होया तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाऊगा। पूरे पंजाब दे विच जो भावें मैडिकल नशा है भावें वैसे चिट्टा बेचते हैं असी युद्ध छेड़िया होया ते उच किसे नूं कोई लिबर्टी जा किसे नाल कोई लिहाज नहीं की जाऊगी। परमिंदर सिंह झोटा के परिवार नाल हमदर्दी भी प्रकट करदा कि एक जवान पुत जिहड़ा वह दुनिया तो चला गया, पर इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए सी। पर जो भी कमियां भावें जिस पद्धर ते मर्जी होवे मैं DGP साहब नूं सख्त निर्देश दिते ने कि इहदी जिहड़ी है पूरी जांच पड़ताल की जाए ते दुध दा दुध ते पानी दा पानी कीता।
7: पंजाब की विपक्षी पार्टियां सरकार के इसी अभियान को मुद्दा बना रही हैं। कांग्रेस के सांसद अमरिंदर राजा बड़े आज मृतक के परिवार से मिले, परविंदर झोटा के माता पिता उनके बच्चों से मिले, और जब मीडिया से बात करने की बारी आई तो राजा बड़िंग ने पंजाब सरकार के इसी अभियान पर सवाल उठा दिया।
14: भगवंत मान साहब ये कहंदे सी कि ये नशा असी 1.5 महीने दे विच खत्म कर देने, और इस नशा खत्म करने दे वास्ते बड़िया मुहिमां चलाईयां गईयां विखावे दे वास्ते। एक ऐसी मुहिम जिहड़ा नां युद्ध नशियां विरुद्ध सी, जेड़ा विखावा तां कीता और करोड़ां रुपया लोगों का खर्च किया, लेकिन मैं समझना कि एदू महाड़ी मुहिम ते जान बुझ के लोगों नूं जिहड़ा बेवकूफ बनाया पंजाब सरकार ने, कुछ हो नहीं सकता। पंजाब दी पुलिस दी, पंजाब दे मुख्यमंत्री दी और पंजाब दे सरकार दी पूरन करड़े शब्दों च निंदा कर दी।
2: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का अयोध्या के राम मंदिर को लेकर दिया बयान चर्चा में है। सम्राट चौधरी ने कहा कि टेंट में विराजमान प्रभु श्री राम ने गरीबों को मकान देने वाले मोदी जी से घर मांगा, तब हम कोर्ट गए, जीते और भव्य मंदिर बना। अब सीतामढ़ी में मां सीता का मंदिर बन रहा है।
15: इस देश में आजादी के पूर्व लगभग 400 वर्ष पहले से प्रभु श्री राम एक टेंट में इंतजार कर रहे थे। सबको इमारत मिल रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगभग 5 करोड़ लोगों को पक्का मकान दे रहे थे, तो प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी हमको घर कब दोगे। और मोदी जी की सरकार जब आपके आशीर्वाद से बना साथियों, तो 400 वर्षों से जो टेंट में इंतजार कर रहे थे, मोदी जी ने लोअर कोर्ट हम लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, और जब सभी न्यायालय से जीत गए तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया सर। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय अमित शाह जी को और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बन गए तो बिहार में भी मां सीता का जो जन्म स्थान था वहां पर भव्य सीता मंदिर बनाने का काम आदरणीय अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी ने किया।
2: उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि 3 महीनों के अंदर पंचायत चुनाव कराए जाएं। यूपी में वर्ष 2021 में अंतिम बार पंचायत चुनाव हुए थे जिनमें चुने गए ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों का कार्यकाल इस वर्ष खत्म हो गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी में राज्य सरकार और चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव अब करवाने होंगे।
16: आज कोर्ट ने कहा है, स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन दोनों को ही डायरेक्ट किया है कोर्ट ने कि 3 महीने के अंदर एंटायर एक्सरसाइज यानी कि पूरा इलेक्शन आपको कंडक्ट कराना होगा और टाइम एक्सटेंड भी नहीं किया जाएगा इसके बाद। और इसके अलावा जो प्रशासक जो नियुक्त किए गए थे राज्य सरकार द्वारा, उसका आदेश भी कुछ याचिकाओं में चैलेंज किया गया था, उसको आज हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। यानी कि जो वर्तमान ग्राम प्रधान जो प्रशासक हैं वही आगे कंटिन्यू करेंगे जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती है, जब तक नई पंचायतों का इलेक्शन नहीं हो जाता।
17: देखिए, सरकार को कोई भी एतराज नहीं है, चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग जब फैसला करेगा सरकार 24 घंटा सहयोग करने के लिए तैयार है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को कोई परेशानी नहीं है। चुनाव आयोग को फैसला करना है, चुनाव आयोग जब फैसला करेगा सरकार उसके साथ खड़ी है।
2: और अब खबर टीबी मुक्त भारत जैसे बड़े लक्ष्य के सिपाहियों की, जिन्हें पिछले एक वर्ष से मानदेय तक नहीं मिल रहा। भोपाल में टीबी के मरीजों की दवा से लेकर उनकी जांच और फॉलोअप तक की जिम्मेदारी संभालने वाले डॉट्स प्रोवाइडर्स अपने मानदेय का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब टीबी मरीजों की दवा एक दिन भी नहीं रुकनी चाहिए तो उनकी सेवा करने वालों का मानदेय महीनों तक क्यों रोका जा रहा है। देखिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को खबरदार करती हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।

0: भारत टीबी से मुक्ति के रास्ते पर है। दुनिया के मुकाबले चाहे टीबी के नए मामलों के सामने आने का मामला हो, टीबी का इलाज होना हो या फिर जांच होनी हो, टीबी के इलाज में भारत की प्रगति चमकदार दिखती है। लेकिन जो डॉट्स प्रोवाइडर घर घर जाकर मरीजों को समय पर दवा देते हैं, निगरानी से लेकर फॉलो अप टेस्ट करवाते हैं, परिवार के सदस्यों की जांच करवाते हैं, उनसे जुड़ी जानकारी अपडेट करते हैं, उन डॉट्स प्रोवाइडर्स का ख्याल रखना तो छोड़िए, वक्त पर बांधे तक नहीं दिया जा रहा। भोपाल के 1250 जिला अस्पताल से जुड़े आदर्श साल 2022 से डॉट्स प्रोवाइडर के तौर पर काम कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ ये काम शुरू किया, लेकिन अब वही काम उनके लिए आर्थिक परेशानी का कारण बन गया है। आदर्श का कहना है कि उन्हें साल भर से मानदेय नहीं मिला। अक्टूबर 2025 से अब तक उन्हें मानदेय नहीं मिला, जिससे पढ़ाई में मुश्किल आ रही है।
1: मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, वैसे मैं यहाँ पर डॉट प्रोवाइडर का जॉब भी कर रहा हूँ, और निरंतर अक्टूबर माह से लास्ट 2025 अक्टूबर माह से मेरी जो मानदेय है वो नहीं आ रहा है। मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे क्या है मेरी पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ और मुझे पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें करनी चाहिए रहती है, जिस कारण से मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
0: आदर्श जैसे ही हालात आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह से बात करती इस महिला डॉट्स प्रोवाइडर के भी हैं, जो भले ही अपना नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहती, लेकिन मानदेय नहीं मिलने से उसके परिवार पर क्या बीत रही है उससे सरकार को खबरदार करना चाहती है। मानदेय नहीं मिलने से बच्चों की फीस भरना मुश्किल है, जरूरतें पूरी करने के लिए उधार लेना पड़ रहा है, यहाँ तक कि जेवर भी गिरवी रखने पड़े हैं।
2: कुछ पुराना जेवर था वो रख के मैंने घर चलाया है, काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। मेरे पति हैं वो भी अभी बेरोजगार बैठे हैं, काम नहीं चल रहा सही से, बहुत परेशान हो रही हूँ, बच्चों की फीस वगैरह काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, क्या करूँ अब, ये सरकार से भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है।
0: इन डॉट्स प्रोवाइडर को मासिक 10,000 रुपए मानदेय मिलता है। हर महीने एक डॉट्स प्रोवाइडर को कुल 10 टीबी मरीज चिन्हित कर उनको दवाई देना और उनका फॉलो अप करना होता है। मध्य प्रदेश सरकार के बजट में डॉट्स प्रोवाइडर्स के मानदेय या बजट के लिए अलग से कोई निश्चित राशि घोषित नहीं की जाती, बल्कि ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के तहत राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के केंद्रीय और राज्य बजट के संयुक्त कोष से दिया जाता है। इस तरह जिनसे टीबी मरीजों का इलाज सुनिश्चित करने की उम्मीद सरकार करती है, वही कर्मचारी आर्थिक इलाज के लिए तरस रहे हैं। इसमें भोपाल के रहने वाले अविनाश शर्मा भी शामिल हैं, जिन्हें अब उधार मिलना भी बंद हो गया है।
3: जब से हम लोगों का सैलरी का सेटलमेंट सही था कि हर मंथली हमको मिल जाती थी, लेकिन अभी हमें एक वर्ष हो गया, एक वर्ष से अभी तक हम लोगों को कोई भी मानदेय नहीं मिला है, जिससे कि हम ना तो पेशेंट के घर जा पा रहे हैं और हमारी दयनीय स्थिति भी इतनी बेकार हो चुकी है कि हम लोगों से उधार ले लेके काम चला रहे हैं। अब उधार लेने में भी क्या कि जिससे लिए उसको देना भी है अपन को, तो अब अभी तक हमारे पास कोई भी पैसा नहीं आया है, और मैडम से मिलने गए थे तो मैडम ने हमको एक महीने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब कब तक आएगा कोई ठिकाना नहीं है।
0: आज तक ने डॉट्स प्रोवाइडर्स की इस समस्या के बारे में जब स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से बात की तो उन्होंने जल्द मानदेय दिए जाने का भरोसा दिया।
4: लगातार फंड रिलीज हो रहे हैं, बजट का प्रावधान हो गया है और अब लोगों को रेगुलर भुगतान मिले इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं।
5: कब तक हो जाएगा? हो भी चुका है और जो बचा है वो हो रहा है।
6: मध्य प्रदेश के डॉट प्रोवाइडर्स का सवाल सीधा है, जब वो महीनों से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो सरकार समय पर उनका भुगतान करने की जिम्मेदारी कब निभाएगी? क्योंकि टीबी से लड़ाई सिर्फ मरीजों को दवा देने से नहीं, बल्कि इस लड़ाई को जमीन पर लड़ने वालों का हक देकर जीती जाएगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
7: खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: खेती में सिर्फ आज का नहीं, आने वाले कल का भी सोचना पड़ता है, इसीलिए स्वराज प्रोटेक्ट, इसका वर्षा पीटीओ सिर्फ आज नहीं फ्यूचर के इम्प्लीमेंट्स के लिए भी है तैयार। भरोसा और टेक, मेरा स्वराज प्रोटेक्ट।
2: ओए, जाके से खड़ी की,
3: पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है
2: और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है, तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी?
3: क्या
4: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
2: यार कहीं भी लगा ले।
5: हमारे निबर मिस्टर कुमार बात बात पे कार मांगते रहते हैं।
6: वो इन लॉस को लाना है, कार मिल जाएगी?
7: अरे यार कुमार, अब तो अपनी कार ले लो यार।
5: कैनरा व्हीकल लोन से
6: अप टू 90% फाइनेंसिंग,
7: क्विक प्रोसेसिंग एंड नो प्री क्लोजर पेनल्टी।
8: कैनरा व्हीकल लोन, अपनी वाली गाड़ी के लिए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मैडी आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
3: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
2: स्मॉल बैंक
3: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
2: ओके
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो थमका लगाने बस।
5: मेरे पास एक आइडिया है।
4: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
6: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
7: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
8: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?
9: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाए special car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ।
10: आगे आगे।
11: अरे उधर
10: उधर क्या?
11: Correct correct.
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 matching edge band से किनारों को हमेशा के लिए smooth बना लीजिए। E3 products. ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल 2-in-1 बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
14: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
15: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
16: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
17: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
16: क्या?
17: इनकी राय।
18: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम, गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
19: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डे सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
12: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
20: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
21: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
22: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
21: असली शहद, असली स्वाद।
23: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
24: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
25: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
26: इट्स माही वे।
27: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस

0: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल 2-in-1 बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
1: यार ड्रिल करना पड़ेगा।
2: ड्रिल? नहीं नहीं, ओनर से पूछना पड़ेगा।
3: इसका नाम क्या रखेंगे?
4: ये भी ओनर से ही पूछ लेते हैं।
5: अरे भाई साहब, कब तक ओनर के डर में रहेंगे, शान से अपने घर में रहिए ना, विद कैनरा होम लोन।
6: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: How's the hostel? Settled?
3: Yes, Mom, really nice.
2: कोई आ रहा है क्या?
4: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
2: मयंक, फॉर रियल?
4: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव।
5: नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिडाइज टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: हमारे निबर मिस्टर कुमार बात बात पे कार मांग रहे थे।
3: वो इन लॉस को लाना है, कार मिल जाएगी।
4: अरे यार कुमार, अब तो अपनी कार ले लो यार।
5: कैनरा व्हीकल लोन से
3: अप टू 90% फाइनेंसिंग,
6: क्विक प्रोसेसिंग एंड नो प्री क्लोजर पेनल्टी।
7: कैनरा व्हीकल लोन, अपनी वाली गाड़ी के लिए।
8: आगे आगे,
9: अरे उधर
8: उधर,
9: करेक्ट करेक्ट।
10: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: बच्चों के लिए अलग टीवी रूम बना सकते हैं।
12: कैसा लगा आप दोनों को अपना ड्रीम होम?
13: आई लव इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तुम एक काम करो, तुम मिठाई ऑर्डर कर लो।
14: मिठाई से पहले कुछ और हो जाए
13: क्या?
14: इनकी राय।
15: नई सोच की नींव में हम, हर नई उम्मीद में हम। गैलेंट निर्माण का रियल हीरो।
16: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डेज सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
17: आ गया सोमवार और आ गए
18: चकमक चाचा।
17: आ चाचा, अखबार भाँच रहे हैं। चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
19: अरे भैया पुटस में हिस्सा ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके
17: हैं। अच्छा, कब उठाए?
19: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
17: अच्छा
19: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे, दन दन दन दन कर गए, ऐसा नहीं, ये सब नहीं था अपना मामला
17: जी।
19: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
17: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है आपका।
19: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द बिता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर बोलता रखे था हाँ, एकदम बोलता मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
17: अच्छा
19: और क्या
17: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
19: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल। जहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उसमें भागने लगते हो।
17: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही
19: किधर?
17: चाचा हम खेल गए अब की।
20: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से। देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है, और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे, और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत।
21: कल जाहिर सी बात है आयशा की छात्र हैं नेहा बोरा, उनको खड़ा कर दिया था, अब उनको लगा कि भाई अपने ही स्टूडेंट विंग की छात्राओं का सामने रखे हैं, तो अब छात्रों का इस्तेमाल ना करें। आपकी जो सोच है, जो आपने दिखाया है सबके सामने अपना रवैया और अपना एटीट्यूड, अरे आपने तो अपने डीके शिव कुमार को नहीं छोड़ा, और जितनी महिला वहां पे पुलिस कर्मी थी उनको आपने बख्शा नहीं, और ना ही आपके लोगों ने मदद भी की उन महिलाओं की, उन पत्रकारों की। तो अब उस सबसे बचने के लिए आप जिस तरह से छात्र और छात्राओं का इस्तेमाल कर रहे हैं ये सबको पता चल रहा है।
0: जिस वक्त सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के हिंगोली में अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल थे, उस वक्त सीजेपी के बाकी के नेता दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में धरने की परमिशन मांगने पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस को अपनी चिट्ठी सौंप दी, लेकिन चिट्ठी सौंपने के बाद जब वो बाहर आए तो प्रशासन को सीधे सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया।
22: 24 घंटा टाइम ले लीजिए, लेकिन बॉल इज इन योर कोर्ट, आप बताइए किस दिन लोग डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर आ सकते हैं। फुल कोऑपरेशन के साथ पीसफुल तरीके से लोग गैदर होंगे एंड प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट तो जरूर होगा।
0: लेकिन अब मसला बदल गया है, सीजेपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन जंतर मंतर को डिनोटिफाई कर दिया गया। मतलब अब जंतर मंत्र प्रदर्शन स्थल नहीं रहा, मतलब सीजेपी वाले जंतर मंत्र पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए 3 जगह निर्धारित कर दी हैं। ये जगह हैं रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड और पुराड़ी मैदान। अब मसला ये है कि इन तीनों ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल तो बना दिया गया, मगर 2 मैदानों में कार्यक्रम चल रहा है। रामलीला मैदान में रामलीला की तैयारी चल रही है, सीबीडी ग्राउंड में रामलीला की तैयारी हो रही है। बचा बुराड़ी का मैदान, जहां बारिश के बाद फिलहाल कहीं कहीं पानी भरा हुआ है। अब सवाल ये है कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कहां करेंगे। आज तक ब्यूरो।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन। डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
1: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
2: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखिए।
1: कितना घटिया था यार।
2: लप लप लप।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है. अब से कुछ ही क्षणों में ब्लैक एंड व्हाइट लेकर हमारी साथी अंजना होंगे आपके साथ. आप देखते रहिए आज तक.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको मेरठ में अपने पति को मारकर नीले ड्रम में दफ्न करने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को सुनाई गई सजाए मौत के बारे में बताएंगे। प्यार में धोखा, रिश्तों का कत्ल, फिर नीले ड्रम में दफनाए गए अरमान। मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आज कोर्ट ने वो फैसला सुना दिया है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल सिर्फ सजा का नहीं बल्कि उस सोच का है जो रिश्तों से भागने के लिए हत्या का रास्ता चुनती है। क्या रिश्तों को खत्म करने का तरीका सिर्फ खून खराबा है, कत्ल है? और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या राहुल गांधी कॉकरोच जनता पार्टी का उस तरह समर्थन करेंगे जैसे वो नेहा बोरा का समर्थन कर रहे हैं, और क्या जंतर मंतर पर गिरफ्तारी के बाद विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच की दूरियां मिटने लगी हैं? सौरभ दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने लिखा कि जंतर मंतर पर तिरंगा लहराना अपराध नहीं है। इस पर अभिजीत दिपके ने जवाब देते हुए राहुल गांधी का धन्यवाद किया। अगली खबर, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों के बीच राहुल गांधी और एनएसयूआई ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है कि मारपीट में एक छात्रा की सुनने की क्षमता चली गई। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देहरादून में छिपी एक मिस्ट्री लेडी का जिक्र करके इस मामले में नया सस्पेंस खड़ा कर दिया।
1: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक।
0: इधर सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस की मुश्किल लगातार बढ़ रही है। आलम यह है कि खुद को बचाने के लिए उन्हें बंकर वाले महल में शिफ्ट होना पड़ा है। अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की, ये तमाम देश जो बड़े बड़े मेका अकॉर्ड साइन कर रहे हैं उनके साथ कोई मदद के लिए नहीं आया है, सारे मदद से पीछे हट चुके हैं। ऐसे में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एमबीएस को कहा कि हुती के खिलाफ सीधे मदद हम करते हैं, आपको ऑफर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एमबीएस ने इस मदद को ठुकरा दिया, तो क्या अब वो इसराइल का खुलकर समर्थन या मदद लेने से इतने डर रहे हैं? सवाल यह है कि जब अपनी सुरक्षा दांव पर है तो फिर एमबीएस इसराइल की मदद लेने से क्यों कतरा रहे हैं? पूरी कहानी आपको बताएंगे। इधर अगली खबर, भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने भारत में स्टारलिंक की एंट्री पर एलॉन मस्क के आरोपों की हवा निकाल दी। एलॉन मस्क ने भारत सरकार और जियो पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या अंबानी भारत के असली बॉस है, जिस पर राहुल गांधी ने भी समर्थन किया। अब सुनील भारती मित्तल ने मस्क को करारा जवाब दिया है, वो पहले से लाइन में है और मस्क से काफी आगे है। मित्तल ने साफ किया कि एयरटेल का ग्राउंड नेटवर्क 3 साल से तैयार है और उनके सैटेलाइट्स भी 5 साल से भारत के ऊपर। और अगली खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई प्रेस सेक्रेटरी केडी जकारिया, जिनका पहला भाषण चर्चाओं में है क्योंकि उन्होंने इस भाषण में गलती से ट्रंप को अपना हस्बैंड बताया। हालांकि गलती का एहसास होते ही उन्होंने बात को संभाला, लेकिन यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ।
2: With my kid, kids are is completely unacceptable. So my president, or excuse me, my husband, that's a good one. My husband is out here.
0: फ्रांस से इजराइल जाने वाली फ्लाइट में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के पायलट्स पर बैन लगा दिया है। एयर फ्रांस और यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी बड़ी कंपनीज ने सख्त कदम उठाया। दरअसल पिछले दिनों फ्लाई दुबई की फ्लाइट में ओमानी पायलट के आतंकी हमले के बाद इसराइल ने करीब 30 देशों के जो नागरिक हैं उन पर शिकंजा कसा है जिनके साथ उसके राजनयिक संबंध नहीं है। अब इसराइल के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए तमाम एयरलाइंस ऐसे देशों के पायलट्स बैन कर रही हैं जिन पर इसराइल के लोगों को निशाना बनाने की आशंका है। और अगली खबर, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पायलट ने आसमान से हाईजैक अलर्ट यानी स्क्वॉक 7500 कोड एक्टिवेट कर दिया। घबराए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने आन अनफानन में विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया। इसमें 293 यात्री सवार थे, लेकिन तमाम सुरक्षा जांच के बाद ये हाईजैक अलर्ट फॉल्स अलार्म निकला। अब डीजीसीए इस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर ये इमरजेंसी सिग्नल कैसे ट्रिगर हुआ और क्यों ट्रिगर हुआ। अगली खबर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के पुष्पा स्टाइल वाले इशारे को लेकर डीएमके ने उन पर सीधा हमला बोला है। एक तस्वीर शेयर करते हुए डीएमके ने विजय को आरएसएस का गोद लिया बच्चा करार दिया। विधानसभा में विजय जोसेफ ने पुष्पा स्टाइल के हाथ के स्टेप की तुलना सीधे आरएसएस के ध्वज प्रणाम से कर दी है। लेकिन आज सबसे पहले इस मां की चीखें और उसके दर्द को सुनिए जिसने राघोपुर की घटना में अपने इकलौते बेटे को खो दिया। वो बेटा जो दिन रात यही कहता था कि मां मैं बड़ा होकर तेरे सारे दुख खत्म कर दूंगा।

0: लेकिन वहाँ पे ट्रीट किया गया, ऐसा ट्रीट किया गया है ना जो हम आपको बताने आज हम हाजीपुर से आए
1: हैं।
0: ऐसा स्थिति है रामपुर के, हमें जाने
2: मैम क्या बोले
0: नहीं पूछ सकते हैं सर, नहीं पूछने की वजह से इतना हादसा हुआ है। हमको से भेजा दिया है, बोला कि ठीक है मैम के पास एप्लीकेशन भिजवा देंगे एप्लीकेशन।
3: अधिकारियों को, पुलिस से जुड़ी महिलाओं को पकड़ कर बिलख बिलख कर रोती है मां। सोचिए राघोपुर में नाव पलटने से जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उनके घरों में आज कैसी बेबसी होगी। और आज की शाम जब हम सब अपना खाना खा रहे हैं उस घर में कैसे ये शाम बीत रही होगी। और ये सोचिए कि हमारी राजनीति कैसी है। और इसीलिए हमने सोचा कि आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत इस खबर के साथ कि क्या इस देश में आम इंसान की जिंदगी की कोई कीमत बची है, या फिर वो नाव पर सवार होगा, नाव पलटेगी और एक साथ इतने लोगों की मौत हो जाएगी, बच्चों की मौत हो जाएगी। राघोपुर, इस इलाके को हाई प्रोफाइल वीवीआईपी क्षेत्र बिहार का माना जाता है। सम्राट चौधरी की सरकार इस वक्त बिहार में चल रही है। 2015 से यहां पर तेजस्वी यादव खुद इस सीट से विधायक है, लेकिन इसी क्षेत्र से हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान सांसद हैं और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। यानी जो इलाका नेताओं के लिए हाई प्रोफाइल है, उनका गढ़ है, उनके लिए पारंपरिक सीट है, उसी इलाके के आम लोग बदतर हालात में जी रहे हैं और ये घटना भी इन्हीं हालातों का नतीजा है। ये पूछे ये घटना हुई, हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो देखिए, ये है नाव, जिस नाव में पास के गांव से लगभग 25 से 30 बच्चे और ग्रामीण श्राद्ध के भोज में शामिल होने जा रहे थे। उस नाव में बहुत बड़ा छेद था और यह नाव इतनी जर्जर थी कि इसे इस्तेमाल करने की इजाजत होनी ही नहीं चाहिए थी। खुद गांव के लोग बता रहे हैं कि उन्होंने सर्कल ऑफिसर को इसके बारे में शिकायत की थी। ये बताया था कि प्रशासन ने सरकारी नाव की या तो मरम्मत कराए या नई नाव उन्हें उपलब्ध कराए, लेकिन इन शिकायतों की एक जू तक स्थानीय प्रशासन के कानों तक नहीं रहेंगी और गांव वालों को उन्हीं के हालात पर मरने के लिए छोड़ दें। कितनी घटनाएं आपने बिहार से सुनी है, नाव पलट गई, इतने लोगों की मौत हो गई, कहीं पर सिंगल लाइन एक खबर बनकर रह जाती है। और इसीलिए हम बार बार पूछ रहे हैं कि क्या आम इंसान की जिंदगी की कीमत इस देश में कुछ है। कल रात ऐसी एक घटना में 14 बच्चे दर्दनाक तरीके से मारे। और यहां ये बात भी याद रखिएगा कि इन बच्चों के पास लाइफ जैकेट भी होती तब भी शायद बचने की उम्मीद होती, लेकिन बिहार में आम आदमी की लाइफ और उनकी लाइफ जैकेट के बारे में सोचने वाला है कौन? कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दुनिया में पहली लाइफ जैकेट 1765 में बनी, आज से 261 साल पहले, लेकिन 261 साल पहले बनी लाइफ जैकेट आज भी बिहार तक नहीं पहुंची, बिहार के इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और कई कई लोग, बच्चे नदी में डूब कर मारे जा रहे हैं। तो क्यों ना कहा जाए कि बिहार को अब तक सरकारों ने पिछड़ा बनाकर रखा। और बीजेपी की अब सरकार बनी है, 15 साल तक वहां पर नीतीश कुमार की सरकार रही। सम्राट चौधरी की सरकार क्या चीजों को बदलेगी या वही स्थिति बनी रहेगी? कहा जाता है कि बीमारू राज्यों से बिहार निकल गया है, लेकिन अगर 261 साल पहले बनी लाइफ जैकेट सरकारें आम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है, भाई कहीं भी आप जाइए, आप यहां पर यमुना में जाइए, आप किसी बोट पर सवार ही नहीं हो सकते लाइफ बोट के बिना, लेकिन वहां पर ये सब है ही नहीं। आज हम एक बड़ा मुद्दा ये उठाना चाहते हैं कि कोई भी इलाका या क्षेत्र वहां जीतने वाले नेताओं की वजह से हाई प्रोफाइल नहीं होनी चाहिए। वो सीट, वो इलाका सुविधाओं, बेहतर विकास के लिए हाई प्रोफाइल होना चाहिए। और हम तो कहेंगे राघोपुर में जो हुआ वो हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक हत्या है। और सरकार से भी हम कहेंगे, सम्राट चौधरी की सरकार से, कि आज वो इन मौतों की सरकारी कीमत लगाकर मुआवजे का ऐलान कर रही है, लेकिन हकीकत में इन लोगों को मुआवजे की नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो इनकी जान ना ले, जो इनकी जिंदगियां खत्म ना करे, जो इनके बच्चों को ना मारे। अरे मुआवजे में पैसे के लिए आप इंतजाम कर रहे हैं, वो तो मरने के बाद है ना, अब ये बच्चे लौट के थोड़ी आएंगे। अगर मरने से पहले इन

0: नाव पर सवार होने वाले यात्रियों को लाइफ जैकेट मिलता तो एक उम्मीद तो होती कि शायद बच जाते। देखिए,
1: परिस्थितियों में ये घटना घटी है वो बेहद कह सकते हैं वो परेशान करने वाली ये कह सकते हैं तस्वीर है। जब आप देखें किस तरीके से यहाँ पर पूरे गांव में मातम छाया हुआ है, कितने लोग नाव पर सवार थे?
2: लगभग 20 के आसपास।
3: 20 के आसपास
1: सभी के बच्चे ही थे उसमें?
2: हाँ, सभी बच्चे थे।
1: सिर्फ नाव चलाने वाला नाविक?
2: वो भी सब बच्चे थे। माइनर लोग नाव चलाता है यहाँ, सरकारी नाव माइनर चलाता है।
1: और देखिए, नाव बहुत बड़ा नाव नहीं है, ये छोटा नाव है, मुश्किल से 8-10 लोग इसमें जो है वही बैठ सकते हैं। लेकिन अभी आप परिस्थिति देखिए, जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 से 25 जो है वो नाबालिग बच्चे इस पर बैठे हुए थे। ये नाव किस हालत में जर्जर है ये आप देखिए, इस नाव में इतना बड़ा छेद आप देखिए, आप ये देख सकते हैं नाव में इतना बड़ा जो है दरार आप नजर आ रहा है। और क्योंकि जब ओवरलोडिंग हुई होगी तो जाहिर सी बात है नाव का ये हिस्सा जो है जो टूटा हुआ है, जो इतना बड़ा छेद है, तो पानी इसके जरिए भी नाव के अंदर प्रवेश किया।
4: ये जिला से पहले भी इस क्रम में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि सनसेट के बाद बोट का परिचालन नहीं करना है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। और उसके बावजूद ये हुआ है तो जिनकी नाव है और जो परिचालन कर रहे थे निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन जिनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी, जो पदाधिकारी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।
5: जैसे यहाँ के नेता, मंत्री, विधायक, हर लोग कोई काम होता है तो अपना क्रेडिट ले लेते हैं, अगर आज वही नेता, मंत्री, विधायक किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल से हो, अगर आपदा प्रबंधन विभाग इकाई बना देते 5 मिनट की दूरी पे था, तो हमें लगता है ये कैजुअलिटी इतनी नहीं होती, हो सके एक भी मृत्यु नहीं हो।
0: क्या फर्क पड़ता है, सियासत वैसे ही चलेगी, फिर राजनीति भी वैसे चलेगी, फिर वैसे ही चुनावी मंच पर सब पहुंचेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, फिर कहीं नाव किसी नदी में पलटेगी, फिर बच्चों की मौत होगी, फिर उनके घर में मातम छाएगा, फिर नए सिरे से ये बात उभरेगी और फिर गहरी नींद सियासत की जारी रहेगी। अन्य खबरों का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंडिया गेट जाकर प्रदर्शन कर रहे अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की है और वो अब इंडिया गेट से वापस लौट चुके हैं। हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं उनमें ये दिख रहा है कि अंकिता भंडारी की मां ने रोते हुए अपनी बेटी की हत्या के बाद 4 साल से चल रहे इंसाफ के इंतजार का दर्द बयां किया, राहुल गांधी से इस मामले में मदद मांगी। देखिए,
6: नियुक्ति न की जाए तब तक,
7: नहीं तो नियुक्ति कल हो गई। दुष्यंत गौतम की आप लोग क्या कहना चाहते हो?
8: उन्होंने अभी एक लिस्ट जारी कर किया है, लेकिन उनकी नियुक्ति तब तक नहीं की जाए जब तक
7: क्या चाहते हो?
8: हमें चाहिए कि दुष्यंत कुमार सलाखों से पड़ा जिसने जिसकी नियुक्ति की वजह से मेरी लड़की की उन्होंने हत्या की।
7: तो अगर सीबीआई जांच चल रही है अभी
8: चल रही है, लेकिन वो सीबीआई तो जो लोअर कोर्ट में जिन गवाहों के बयान हो चुके हैं उन्हीं के रिपीट कर रही है। मैंने उनको कहा 9 तारीख मेरे घर आए थे, मैंने उनको कहा कि सर आप सबसे पहले उर्मिला सनावर और श्री राठौर के पास जाइए और उनका बयान लीजिए आप जो वीआईपी के बारे में बोलेंगे। और दूसरी बात की जब कुलकितार जो आरोपी था वो 18 सितंबर 2022 से 19 सितंबर 2022 की एसआईटी द्वारा कोई रिपोर्ट उसकी कॉल डिटेल नहीं निकाली गई और उसका 19 तारीख जो उसने नया फोन लिया वही कोर्ट में जमा किया। तो मैं ये चाहता हूँ सीबीआई से 19 सितंबर 2022 से 18 सितंबर 2022 से 19 सितंबर 2022 तक मेन जड़ वो ये पुलकितार है उसकी पूरी कॉल डिटेल निकाली जाए, उसकी किससे बात कर रहा था साफ पता पड़ जाएगी भियाबी आखिर कौन था।
9: माँ बाप आज तक सड़क में बैठे काम मिलेगा मेरे बेटे को न्याय।
10: मैं नहीं लेके आई हूँ, ये मुझे लेके आई है उत्तराखंड से।
0: तो राहुल गांधी आज अचानक इंडिया गेट पहुंचे और वहां पर अंकिता भंडारी के माता पिता मौजूद थे जिन्होंने न्याय की गुहार लगाई। अब आप ये देखिए कि आखिर अंकिता भंडारी के माता पिता इंडिया गेट पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ये पूरा मामला आखिर है क्या। 19 साल की अंकिता भंडारी उत्तराखंड की रहने वाली थी जो ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। आरोप है कि सितंबर 2022 में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या और उसके साथियों ने अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले एक वीआईपी के कमरे में जाने के लिए दबाव बनाया। आरोप है कि जब अंकिता ने इसका विरोध किया तो उसे नहर में धक्का देकर मार दिया गया। इस घटना के बाद पूरे देश और खासकर उत्तराखंड में भारी जन आक्रोश भड़का, क्योंकि अंकिता जिस रिजॉर्ट में काम करती थी उसका मालिक एक पूर्व बीजेपी नेता का बेटा था। इसीलिए आरोप लगा कि जिस वीआईपी के कमरे में अंकिता को भेजने के लिए दबाव बनाया गया था वो वीआईपी भी कोई बीजेपी नेता ही था। हालांकि आरोप थे जो अब तक साबित नहीं हुए हैं, ना ही पुलिस ने ऐसे किसी नेता को अक्यूज बनाया। और यही सवाल आज कांग्रेस पूछ रही है कि क्या जिस वीआईपी को ढूंढने की पूरी जांच होनी चाहिए थी वो की ही नहीं गई। अब भी इस मामले में मुख्य आरोपी जेल में है, लेकिन जिस वीआईपी को लेकर सवाल उठे उसका नाम अब तक बाहर नहीं आया है। इस मामले में पुलिस की जांच पर अंकिता भंडारी के परिवार को शुरुआत से कभी भरोसा नहीं था, जिसके बाद यह जांच इसी साल की शुरुआत में सीबीआई को सौंपी गई। अब इस सवाल पर आते हैं कि अचानक अंकिता भंडारी के माता पिता इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने क्यों आए, तो इसके पीछे बड़ा कारण है दुष्यंत कुमार गौतम जिन्हें सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। अंकिता भंडारी के माता पिता का कहना है कि जिस वीआईपी के कारण उनकी बेटी को मारा गया था उसके संदिग्धों में दुष्यंत कुमार गौतम का भी नाम था। ये उनकी तरफ से आरोप है जो उस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी के प्रभारी थे। हालांकि वो संदिग्ध थे और उन्हें कभी इस मामले में आरोपी पुलिस ने नहीं बनाया, लेकिन अब जब उन्हें सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो अंकिता भंडारी के माता पिता इस नियुक्ति का विरोध करते हुए आज इंडिया गेट पर आए हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक दुष्यंत कुमार गौतम इस मामले में संदिग्ध है तब तक उनकी राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। सुनिए, चलिए तो हम तस्वीरें आपको दिखा ही रहे थे वहां की। इससे पहले राहुल गांधी ने पहली बार खुलकर कांग्रेस जनता पार्टी के गिरफ्तार नेताओं का समर्थन किया। उन्होंने सौरभ दास आशुतोष शांका की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए लिखा कि जंतर मंतर पर तिरंगा लहराना अपराध नहीं, जंतर मंतर भारत के लोगों का और वो उसे वापस हासिल करके रहेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में सीधे तौर पर सीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन क्योंकि उनका यह बयान सीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में था, कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पहली बार राहुल गांधी को धन्यवाद पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि आशुतोष रांका और सौरभ दास की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए धन्यवाद एलओपी राहुल गांधी सर। अभिजीत दिपके की प्रतिक्रिया जो है इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि महज कुछ दिनों पहले तक दिपके सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर राजनीतिक हमले कर रहे थे। सीजेपी के आंदोलन में ना तो राहुल गांधी आए, ना विपक्ष के आंदोलन में सीजेपी के तरफ से कोई हिस्सा लेते दिखा। लेकिन आज के घटनाक्रम के बाद अब तीन बातों की चर्चा हो रही है। पहली बात, पिछले कुछ महीनों में पेपर लीक, एसआईआर जैसे कई राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस और सीजेपी एक ही तरफ खड़े नजर आए, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस अब तक दिपके के संगठन के साथ सीधे तौर पर नई मंच साझा करने गई। एक बार भी राहुल गांधी जब वो आंदोलन कर रहे थे तो जंतर मंतर पर नहीं गई और ना ही खुलकर समर्थन देने से वो बचते बल्कि राहुल गांधी नजर आए। लेकिन अब राहुल गांधी और दिपके का आज का इस हिचक के टूटने का पहला बड़ा संकेत हो सकता है। और यहां एक सवाल यह भी है कि क्या नेहा बोरा की तरह राहुल गांधी अभिजीत दिपके को विपक्ष के मंच पर लाएंगे और क्या दिपके इसके लिए तैयार होंगे। दूसरा, राहुल गांधी के अलावा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और विपक्षी इंडिया गठबंधन के कई दूसरे नेताओं ने कार्रवाई की निंदा की। इससे साफ है कि विपक्ष सीजेपी के इस मुद्दे को सरकार विरोधी आंदोलन की तरह देख रहा है। तीसरा, कुछ विश्लेषकों का ऐसा भी मानना है कि सीजेपी की अपनी एक सोशल मीडिया और जमीनी रीच जरूर है, लेकिन हालिया प्रदर्शनों के नाकाम होने और शीर्ष नेताओं के जेल जाने के बाद क्या अब अभिजीत दिपके ये चाहते हैं कि विपक्ष के साथ एक ऐसे वक्त पर हाथ मिलाना उनके लिए काम आएगा जब उनके नेताओं को बार बार जेल में डाला जा रहा है। खैर, तो ये है पूरी लंबी कहानी और ये लड़ाई लंबी है। हालांकि ये सिर्फ कयास है, अभी इस पर औपचारिक रूप से कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। अब आप ये देखिए कि आशुतोष रांका, सौरभ दास को दिल्ली की एक अदालत ने 5 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए तिहाड़ जेल क्यों भेजा। आपको याद होगा 10 अक्टूबर को जब दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को हिरासत में लिया था, तीनों नेताओं को से एक बेल बॉन्ड भरवाया गया था। बेल बॉन्ड की सबसे बड़ी शर्त यह थी कि उन्हें दिल्ली में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखनी होगी और गलत पालन उसका उनके लिए दंडनीय होगा। अब जब इस बेल बॉन्ड को भरने के बाद 13 अक्टूबर को सौरभ दास, आशुतोष रांका, सीजेपी के बाकी कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर के बंद पड़े और प्रतिबंधित विरोध स्थलों के तालों को पार कर जबरन अंदर घुसने की कोशिश की, तो पुलिस के मुताबिक जो बेल बॉन्ड उन्होंने भरी थी उन्होंने उसको तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने यही कहा कि इन दोनों ने ही जंतर मंतर पर बिना अनुमति प्रवेश किया, सुरक्षा नियमों को तोड़ा, कानूनी वादे यानी बेल बॉन्ड का उल्लंघन किया है। क्योंकि अदालत 13 अक्टूबर की घटना को बेल बॉन्ड का गंभीर उल्लंघन मान रही थी, इसलिए मजिस्ट्रेट ने उनसे उनके जो पिछले बेल बॉन्ड है उसको तत्काल रद्द कर दिया और दोनों को 5 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए तिहाड़ जेल में भेजने का आदेश जारी कर दिया। तो अभी भी जब आप ये शो देख रहे हैं ये लोग तिहाड़ जेल में है। इन दोनों नेताओं पर मुख्य रूप से 4 बड़े आरोप लगाए गए हैं। पहला, बिना अनुमति किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसना। दूसरा, कानून का उल्लंघन करने की पहले से योजना बनाना। सरकारी काम में बाधा डालना, चुनौती देना। और चौथा, पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या बल प्रयोग करना। सौरभ दास और रांका को जेल भेजने के बाद आज जब अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका विरोध हुआ। हालांकि विरोध करने वाले लोग किसी पार्टी से थे या नहीं अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि सीजेपी के समर्थक ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने लोगों को भेजकर ये किया है।
10: क्यों देश को खराब कर रहा है? क्यों सिर्फ देश को खराब कर रहा है?
11: चोर है, चोर है।
12: देश को खराब
11: है? अरे देश को खराब कर।
10: क्यों देश को खराब कर रहा है? क्यों सिर्फ देश को खराब कर रहा है?
11: चोर है, चोर है।
12: देश को खराब है?
11: अरे देश को खराब कर।
10: क्यों देश को खराब कर रहा है?
0: वोट चोरी के नाम पर आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ बेरहमी से मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली केरल की अथरा ने आरोप लगाया कि पुलिस बस के अंदर उनके साथ मारपीट की गई, उनके कान पर इतनी जोर से प्रहार किया कि कान में सुनाई देना बंद हो गया है। कई दूसरे छात्रों ने आरोप लगाया कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर और पुलिस वाहन में ले जाते वक्त उन्हें लाठियों से पीटा गया, प्राइवेट पार्ट्स पर लात मारी गई। तमाम ज्यादतियों पर भड़के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जुल्म करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो हर घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत अपने पास रखें। देखिए,
13: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए। इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक। नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत।
0: लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा सस्पेंस बना राहुल गांधी के उस रहस्यमय बयान को लेकर जिसमें उन्होंने देहरादून में छिपी एक महिला का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा था कि वोट चोरी के इस खेल में पीएम मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार के साथ साथ वो महिला भी शामिल है जो फिलहाल देहरादून में छिपी है। इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर राहुल गांधी का इशारा किस महिला की ओर है। सुनिए।
14: एंड इट इज आवर कमिटमेंट टू यू that the people who have done this, Mr. Modi, Mr. Shah, Mr. Ganesh Kumar, the lady who's hiding right now in Dehradun, and others are going to be brought to justice.
0: जब विपक्ष के नेता जंतर मंतर पर आंदोलन के लिए अड़े हैं तब उन्हें बाजार में हुए नुकसान के आंकड़े भी देखने चाहिए। बीजेपी बार बार ये कह रही है कि चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री जिस तरह से सामने आ रही है, क्योंकि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिन से ये जानकारी सामने रखनी शुरू की है कि जब जब बंद होता है चांदनी चौक, इन तमाम इलाकों में किस तरह का व्यापार का नुकसान होता है। तो आइए आपको बताते हैं, सीटीआई के मुताबिक धरने प्रदर्शनों में ये जो बाजार बंद होता है। उनका ये दावा है इन ट्रेड यूनियन के लोगों का और जो चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी बिजनेस वाले हैं कि बाजार बंद होता है और करीब 2000 करोड़ रुपए का उनका कारोबार ठप हो जाता है। प्रदर्शनों की वजह से व्यापारियों पर अपनी दुकानें बंद करने का दबाव था और इस पूरे इलाके में आपको याद होगा कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, खान मार्केट, जनपद, करोल बाग, चांदनी चौक, सदर बाजार, लाजपत नगर, देश के राजधानी के जो सबसे बड़े कमर्शियल हब्स हैं वो बिल्कुल ही बंद थे। असर सिर्फ दुकानों के शटर गिरने तक सीमित नहीं रहा और इसीलिए चेंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का कहना है कि दुकानें बंद रहती हैं तब भी किराया और कर्मचारियों का वेतन तो देना ही पड़ता है और भारी भरकम उनको खर्च हो रहा है, लेकिन सेल बिल्कुल नहीं क्योंकि दुकानें बंद कर दी गई। तो यही चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मुताबिक सदर बाजार और चांदनी चौक जैसे जो थोक बाजार वाले इलाके हैं उनमें दिल्ली के बाहर से रोजाना आने वाले 3 से 4 लाख खरीदार उस दिन राजधानी नहीं पहुंच सके। ये मार सिर्फ रिटेल दुकानों तक नहीं है या होलसेल नहीं, क्योंकि जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, सलोन है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उन सब पर मार पड़ती है। अब मुश्किल यह है कि नवरात्रि, दशहरा, दीपावली का यह दौर दिल्ली के करीब 20 लाख व्यापारियों के लिए साल भर की सबसे बड़ी कमाई का हफ्ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CTI यानी चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री और तमाम व्यापारिक संगठनों ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो कम से कम दिवाली तक दिल्ली के बाजारों में इस तरह की बड़ी रुकावट खड़ी करने से बचे। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों और विपक्षी दलों के भीतर भी अंदर खाने बड़ा मंथन शुरू हुआ। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या त्योहारों के समय में विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा में कोई बदलाव किया जाए। कई नेताओं का मानना है कि दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली के पर्वों पर आम जनता की खुशियों और बाजारों की रौनक में खलल डालने से एक गलत संदेश जा सकता है। वहीं कई ऐसे सांसद हैं जो त्योहार के सीजन में अभी तक दिल्ली में रुके हुए हैं विपक्ष की तरफ से आंदोलन में शामिल होने के लिए, या उनको रोका गया है, वो भी अब वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, अपने अपने चुनावी क्षेत्र में, अपने घरों में। इससे पहले कनॉट प्लेस और जनपद के पास स्थित जंतर मंतर को लेकर गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को एक बड़ा संदेश आदेश जारी किया। इसके तहत जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शनों के प्रोटेस्ट साइट की सूची से डीनोटिफाई कर दिया। अब इस पर भी खूब बवाल है। इस फैसले के बाद दिल्ली के व्यापारियों ने राहत की सांस ली। व्यापारियों के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं विपक्षी पार्टियां और खास तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो इसका थुर विरोध कर रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को मेरठ की जिला अदालत ने मृत्यु दंड यानी मौत की सजा सुना दी है। ये वही मामला है जिसमें मुस्कान रस्तोगी ने मर्चेंट नेवी में काम करने वाले अपने पति की हत्या करके उसके शव के कई टुकड़े कर दिए थे और उन्हें एक नीले ड्रम में छिपा दिया था। इसके बाद यह घटना बहुत सारे लोगों के लिए एक मीम बनी। बहुत सारे लोग शादी के मामलों में नीले ड्रम का जिक्र करने लगे, लेकिन हमें लगता है कि आज इस मामले में जो फैसला आया है उसके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। और यहां हम सिर्फ अदालती फैसले की बात नहीं कर रहे हैं, इस मामले में अदालत के अंदर बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारा समाज चाहे तो काफी कुछ सीख सकता है। जैसे इस फैसले के दौरान सौरभ राजपूत की मां, वही सौरभ राजपूत जो कि मर्चेंट नेवी में काम करते थे, जिन्हें उनकी पत्नी ने मार कर टुकड़े टुकड़े काट कर नीले ड्रम में सीमेंट में डाल दिया, तो वही सौरभ राजपूत की मां रेनू राजपूत ने एक बहुत बड़ी बात कोर्ट में कही। जब कोर्ट मुस्कान रस्तोगी और उसके बॉयफ्रेंड को मृत्यु दंड की सजा सुना रहा था तब उनकी मां बहुत भावुक हुई और उन्होंने शब्दशः यह कहा, किसी के बच्चे को तो मारो मत, अगर साथ नहीं रहना चाहते हो तो अलग हो जाओ, लेकिन मारो मत। ये महज एक अदालती बयान नहीं था, ये उस मां की आप बीती थी जिसने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उसकी पत्नी ने अलग होने के बजाय पति की हत्या का रास्ता चुना। मुस्कान चाहती तो वो अपने पति सौरभ राजपूत से अलग हो सकती थी, उनसे तालाक ले सकती थी, अपनी एक अलग दुनिया बसा सकती थी, लेकिन ऐसा किया नहीं। अदालत का कहना है कि इसकी जगह उसने अपने पति को जान से मारने की योजना बनाई। प्री मेडिटेटेड, प्री ऑर्गेनाइज मर्डर था, और यह भी तब किया जब उसकी दो बेटियां थी, एक हंसता खेलता पूरा परिवार था। पुलिस खुद ऐसा मानती है कि मुस्कान के पास ऐसे कई मौके आए जब वो सचमुच सब कुछ सच सच बताकर सौरभ राजपूत से अलग हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसकी जगह उसने साहिल शुक्ला के साथ मिलकर ना सिर्फ सौरभ राजपूत को धोखे से मारा बल्कि उसके शव के कई टुकड़े किए, एक नीले ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया। और यही बातें आज जब सौरभ राजपूत की मां ने सुनी तो उनके मुंह से एक ही बात निकली कि भले ही अलग हो जाओ, शादी तोड़ दो, मत करो, लेकिन किसी को मारो तो मत। और यह बात हाल की कई घटनाओं पर लागू होती है। जैसे इसी साल पुणे के केतन हत्याकांड में आपने देखा, मंगेतर सिया चाहती तो यह घटना नहीं होती। सिया ने केतन को शादी के लिए ना कहने की जगह उसे मारना ज्यादा सही समझा। आरोप है कि इसमें उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी मदद की। इसी तरह इंदौर का आपको याद होगा राज रघुवंशी हत्याकांड, सोनम रघुवंशी चाहती तो वो शादी के लिए ना कह सकती थी और वो ये बात राजा रघुवंशी को बता सकती थी कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कराई जा रही है। लेकिन इस मामले में भी सोनम रघुवंशी ने सब कुछ सच बताने के बजाय शादी करके अपने पति को हनीमून पर मारना सही समझा। और आज राजा रघुवंशी भी हमारे बीच नहीं है। पिछले 2 सालों में इस तरह की 15 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं जिनमें अलग अलग होकर रिश्तों को खत्म किया जा सकता था, लेकिन फिर भी इन घटनाओं में हत्या और अपराध का रास्ता चुना गया। और इसीलिए आज हम भी इस बात को आप सबसे कहना चाहते हैं कि किसी भी रिश्ते से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जो लोग इसे नामुमकिन मान लेते हैं वही फिर अपने पति और पत्नी की हत्या का रास्ता चुनते हैं। और ये पिछले कुछ सालों में हमने कई घटनाओं में देखा है। दूसरा, इस पूरे मामले का सबसे अभूतपूर्व पहलू यह भी रहा कि खुद मुस्कान के सगे माता पिता ने अपनी अपराधी बेटी का साथ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ उसे नाता तोड़ दिया बल्कि कोर्ट में उसे सख्त सजा देने की मांग तक कर दी। ये इस बात का प्रमाण है कि जब समाज में रिश्तों की मर्यादाएं तार तार हो रही हों, तब भी न्याय का स्थान खून के रिश्तों से ऊपर हो सकता है। और यहां हमें यह भी लगता है कि मुस्कान के माता पिता का ये कदम और सौरभ राजपूत की मां की ये बिलखती हुई पुकार दोनों मिलकर आज की युवा पीढ़ी को ये चेतावनी देते हैं कि गलत फैसलों और अपराधों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। कोई रिश्ता पसंद नहीं आए ना कहिए, और उसके लिए अगर मेहनत करनी पड़े, कुछ परेशानियां झेलनी पड़े, सबको, परिवार वालों को उसमें शामिल कीजिए, संघर्ष करिए, लेकिन हत्या का रास्ता मत चुनिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे समाज पर गहरा असर डालती है। देखिए,

0: देखेंगे यहाँ की, आप देखेंगे यहाँ पर तो कोर्ट रूम के अंदर गौरव भारत माता की जय के नारे लगे। जैसे ही सत्र न्यायाधीश यहाँ के अरविंद कुमार मिश्रा ने बोला कि साहिल शुक्ला और मुस्कान आप दोनों को मृत्यु दंड की सजा दी जाती है क्योंकि दोनों जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, तो उसके बाद तुरंत से ही जो कि पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा था, लोग वहां पर नारे लगाने लगे कोर्ट रूम के अंदर ही।
1: साहिल और मुस्कान दोनों को अपराध के लिए मृत्यु दंड की सजा मुकर्रर की है, तय किया है, उनको सजा सुनाई है 302 के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना और 238A के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना तय किया है।
2: कितना एग्जाम्पल वाला जजमेंट थी आप मानते?
1: ये ऐतिहासिक निर्णय है, पूरे देश की निगाहें थी, पूरे देश के जनता की निगाहें थी कि इस अपराध के अपराधी को क्या सजा मिलती है।
2: मुस्कान और साहिल की क्या बॉडी लैंग्वेज थी?
1: उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सदमे में एक तरीके से आए, झटका खाया उनको, सबको लगता है जिसको मृत्युदंड की सजा होगी वो समझ सकते हैं मानसिक स्थिति कैसी होगी। होश फाकता हो गए
2: मुस्कान और साहिल को मृत्यु
1: दोनों।
3: आज जब मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई गई तब कोर्टरूम के अंदर भारत माता की जय के नारे लगे, लोगों ने खुशी मनाई। जबकि इसी दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने वाले मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की आंखों में आंसू थे और कई वकील ऐसा बता रहे हैं कि मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि उन्हें सौरभ राजपूत की हत्या के लिए दोषी मान लिया गया है। इसी महीने जब कोर्ट का फैसला आया था तब भी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला फूट फूट कर रोए थे और इसके बाद उन्हें उनकी बैरक में ले जाया गया। इसके पीछे बड़ा कारण यह हो सकता है कि जब मुस्कान और साहिल शुक्ला ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की और उनके शव के टुकड़े करके उन्हीं नीले ड्रम में छिपाया तब उन्होंने यही सोचा था कि इस हत्याकांड का रहस्य कभी नहीं खुलेगा। लेकिन अब जब अदालत ने अपराध को मान लिया, इसके लिए दोनों को मृत्यु दंड सुना दिया, तब ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्कान और साहिल दोनों फूट फूट कर रोए। हम आपको 5 पॉइंट्स में बताते हैं कि आज इस फैसले को कोर्ट ने महत्वपूर्ण क्यों बताया। सबसे पहले अदालत ने मौत की सजा सुनाते हुए महाभारत का जिक्र किया, ये कहा कि अपराधी को उसके अपराध के लिए सजा देना भी एक धर्म है और अदालत भी अपना कर्तव्य निभा रही है। दूसरा, अदालत ने इस हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया और ये माना कि जिस क्रूरता से सौरभ राजपूत की हत्या की गई, शव के 3 टुकड़े किए गए, सबूत छिपाने के लिए उसे सीमेंट और कंक्रीट से नीले ड्रम में जमा दिया गया, वो समाज को झकझोरने वाला जघन्य अपराध है, इसीलिए ये मामला मौत की सजा के योग्य है। तीसरा, इस केस में कोई सीधा चश्मदीद गवाह था नहीं जिससे ऐसा माना जा रहा था कि मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला कानूनी सजा से शायद बच ना जाए, लेकिन आज अदालत ने कहा कि इस मामले में पेश किए गए 22 गवाह, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और हत्या में इस्तेमाल हथियार से ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि मुस्कान और साहिल ने ही मिलकर सौरभ राजपूत को मारा था। चौथा, कोर्ट ने केवल फांसी की सजा ही नहीं सुनाई बल्कि अपराधियों पर आर्थिक दंड भी लगाया। इसमें हत्या के लिए 50,000 रुपए, सबूत छिपाने के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना लगा और अभी इस जुर्माने पर काफी बहस हो रही है। शोगी लिख रहे हैं कि जिस तरह मुस्कान ने अपने पति के टुकड़े करके उन्हें नीले ड्रम में छिपाया, इसके लिए 20,000 रुपए का जुर्माना क्या होता है। सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने आज ये भी कहा कि पिछले 1.5 साल के भीतर इस तरह की क्रूर हत्याओं और शवों को छिपाने की घटनाएं बहुत सामने आई हैं। समाज में ऐसी आपराधिक मानसिकता को रोकने, अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए एक सख्त नजीर पेश करना जरूरी था और इसलिए भी इस मामले में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। मुस्कान के वकील ने भी 5 बड़ी दलीलें दी जिनमें यह कहा गया कि इस मामले में कोई चश्मदीद नहीं है, मुस्कान की 2 छोटी बेटियां हैं, उसमें सुधार की गुंजाइश है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और अदालत को मुस्कान के बूढ़े माता पिता और परिवार की आर्थिक हालत भी देखनी चाहिए और कम से कम सजा सुनानी चाहिए, लेकिन अदालत ने इनमें से किसी भी दलील स्वीकार ही नहीं की।
4: हम संतुष्ट है न्यायालय से एकदम संतुष्ट है, बहुत सही फैसला आया है हमारे लिए, हम यही चाह रहे थे 1.5 साल से जो हम चक्कर काट रहे थे इसी फैसले के लिए काट रहे थे।
5: ये लोग आगे जाएंगे तो हम भी जाएंगे, अगर इनको फांसी नहीं होती है तो हम आगे तक जाएंगे।
6: अभी कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पे आप
5: अभी उन्होंने फांसी का ऐलान किया है, फांसी की डेट डिसाइड नहीं करी है, अगर फांसी जिस दिन हो जाएगी उस दिन हमको संतुष्टि।
6: ये बात तो सामने आ गई थी कि किस तरीके से।
3: और आखिर में हम फिर से यही कहेंगे, इस पूरे मामले में सबसे झकझोरने वाली जो गूंज है वो सौरभ राजपूत की मां रेनू राजपूत के उस बयान की है जिसमें अदालत परिसर में मौजूद हर शख्स की आंखें नम की। बिलखते हुए उन्होंने कहा था कि अगर साथ नहीं रहना तो अलग हो जाओ, लेकिन किसी के बच्चे को मारो मत। एक माँ के मुंह से निकला ये वाक्य आज की उस पीढ़ी के लिए सबक है, जो रिश्तों की उलझनों का समाधान आपसी बातचीत में तलाशने के बजाय, आप सोचिए ना कितनी घटनाएं आई हैं इसे, क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखकर मर्डर की साजिशों में तलाश रहे, पति को मारना, मार के काट काट के टुकड़े करना, सीमेंट में उसको नीली ड्रम में जमा देना। ये बयान याद दिलाता है कि शादी कोई पिंजरा नहीं है, अगर प्यार खत्म हो चुका है तो रिश्ते में अलग होने का सम्मानजनक रास्ता खुला होना चाहिए। और माता पिता को भी समझना चाहिए कि अगर किसी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश हो रही है तो कहां पर जाकर उनको पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन अलग अलग तरह के संबंधों की अंधी चाहत और लालच में किसी की जान ले लेना वो बर्बरता है जिसकी माफी ना तो समाज दे सकता है ना कानून। आज कई लोग ये कह रहे हैं कि मुस्कान रस्तोगी भारत की पहली महिला है जिसे अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, जबकि ये दावा पूरी तरह गलत है। भारत में इस वक्त 21 महिला अपराधी जेल में बंद है जिन्हें कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। इसके अलावा भारत में अब तक एक ही महिला को मौत की सजा दी गई है, उनका नाम रतन बाई जैन, जिन्हें 3 लड़कियों की हत्या के लिए 1955 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस वक्त रतन बाई जैन को शक था कि इन लड़कियों की दोस्ती उनके पति से है और इसी के बाद उन्होंने इन लड़कियों को जहर देकर मार दिया था। यानी वो मामला भी रिश्तों में धोखे और अविश्वास का था, और आज भी कई मामलों में यही धोखा रिश्तों को लहूलुहान कर रहा है। अब फ्रांस की बात करेंगे जहां सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों की शुरुआत शिक्षा व्यवस्था की बदहाली जैसे मुद्दे पर 17 सितंबर को हुई थी, लेकिन अक्टूबर ने इन प्रदर्शनों में अपना एक हिंसक रूप दिखा दिया है। फ्रांस 40 से ज्यादा शहरों में फ्रांस के इस वक्त प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, रोकना नामुमकिन है। लगभग लाठीचार्ज, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले सब नाकाफी साबित हो रहे हैं। अब ऐसे में कल इन प्रदर्शनों का सबसे भयंकर रूप दिखाई दिया। फ्रांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक कल 1,61,000 प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए थे, जिसमें अकेले पेरिस में लगभग 41,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों की संख्या को लेकर युवाओं के अलग अलग संगठनों ने दावा किया है कि कल के प्रदर्शन में 4,80,000 प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। तो पुलिस का दावा एक तरफ है, प्रदर्शनकारियों का एक तरफ है। इन प्रदर्शनों की वजह से फ्रांस के करीब 214 स्कूल्स को बंद रखा गया, देश की 90% यूनिवर्सिटीज बंद रही। फ्रांस में हो रहे प्रदर्शनों का सबसे बुरा असर राजधानी पेरिस के अलावा कुछ खास शहरों जैसे नॉन्ट, लियो, लॉन्स, स्ट्रासबर्ग, टुलूस, बॉर्डो और मर्सी में हुआ है। इन शहरों में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर है, जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। कल के प्रदर्शन में पेरिस के हालात ज्यादा खराब थे। फ्रांस सरकार के मुताबिक पेरिस में 11 पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर कांच की बॉटल्स, पटाखे, पत्थर खूब फेंके। प्रदर्शनकारियों की रोकने के लिए जो वाटर कैनन्स और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया उसका भी वीडियो देखिए। पिछले हफ्ते फ्रांस के गृह मंत्रालय ने दावा किया था कि प्रदर्शनों में करीब 71,000 प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे थे और अब यह संख्या दोगुनी हो चुकी है। दरअसल पिछले हफ्ते जो प्रदर्शन हुए थे उसके बाद फ्रांस की सरकार ने 3,000 शिक्षक बढ़ाने और 114 बदहाल स्कूल्स को ठीक कराने का वादा किया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इस वादे को झूठा बताया और खारिज कर दिया। 17 सितंबर से शुरू हुए प्रदर्शनों में अब तक करीब 7,000 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं और इसमें नाबालिगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन हिंसक प्रदर्शनों में 700 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी और सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। फ्रांस में होने वाले इन प्रदर्शनों को मुद्दे से भटकाने के भी आरोप लग रहे हैं। ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इन प्रदर्शनों में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। और इन्हें लहराने वालों ने फ्रांस की मैक्रों सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हिंसक प्रदर्शनों की शुरुआत के बाद से 3 ऐसे मौके आए हैं जब प्रदर्शनकारियों में शामिल हुए कुछ लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराकर हंगामा किया। सबसे पहले 6 अक्टूबर को स्ट्रासबर्ग में हुए और उसके बाद 7 और 8 अक्टूबर को पेरिस में फिलिस्तीन का झंडा लेकर प्रदर्शन हुआ। 8 अक्टूबर को तो फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने ट्रायंफ डेला रिपब्लिक स्मारक पर फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया। यह स्मारक फ्रांस के गणतंत्र की मजबूती को दिखाता है। फ्रांस में शिक्षा जैसे अहम मुद्दे को लेकर होने वाले प्रदर्शनों का इस्तेमाल, यह आरोप है फ्रांस की सरकार का कि कुछ ऐसी ताकतें इसका इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसी विदेशी ताकतें इस्तेमाल करने लगी हैं जो फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करती है। और इन लोगों ने जानबूझकर 6, 7, 8 अक्टूबर का दिन चुना है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ही इसराइल पर आतंकी हमला किया जिसमें 1200 से ज्यादा इसराइली लोगों को मार दिया गया और 250 से ज्यादा को बंधक बना लिया गया। आरोप लग रहे हैं कि फिलिस्तीन और हमास समर्थकों ने इन्हीं दिनों का इस्तेमाल फ्रांस के विरोध प्रदर्शनों में किया है। अब इस पूरे में नया बवाल और नया विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि फ्रांस के प्रदर्शनों में आखिर ग्रेटा थनबर्ग का क्या काम। तो कई लोग हैं जो उनके साथ भी इस मुद्दे पर खड़े हैं कि वो स्टूडेंट्स के साथ आज सामने विरोध में आ रही हैं, लेकिन कई लोग इस बात पर भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ग्रेटा थनबर्ग जो है वो फ्रांस में पेरिस में आखिर फिलिस्तीनी काफिये पहनकर क्या फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए आई है। तो ऐसे किसी भी बवाल के बीच और किसी भी विरोध प्रदर्शन के बीच आपको भी इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि दो गुट बन जाते हैं। एक तरफ से इस बात पर चर्चा होती है कि आखिर बच्चों की बात हो रही है और जब बच्चों के लिए उनकी शिक्षा व्यवस्था न्याय की बात हो रही है तो फिर कोई भी ह्यूमन जो राइट्स का एक्टिविस्ट है वो वहां पर क्यों ना आए। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा धड़ा इस बात को भी उठाता है कि क्या फिलिस्तीन के साथ समर्थन दिखाने के लिए, क्या फिलिस्तीन के मुद्दे को वहां प्रबल करने की जरूरत है। अगर बात शिक्षा की ही हो रही है तो ऐसे में फिलिस्तीन को आगे करने की जरूरत क्या है। अब सबसे बड़ा विवाद इस बात पर हो रहा है, कई सारे समर्थक तो साथ खड़े हैं ग्रेटा थनबर्ग के, लेकिन उनके विरोधी जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि फ्रांस के प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने ग्रेटा थनबर्ग क्यों पहुंचे। अब हम पूछेंगे कि क्या तकनीक इतनी आगे निकल चुकी है कि अब इंसान की गंदी सोच मशीनों के जरिए भी बाहर आने लगी है। ये खबर बहुत सचेत करती है। जानती है जर्मनी के कोलोन शहर में हैरान करने वाली घटना आई है, डरावनी खबर है, आंखें खोल देने वाला मामला सामने आया है। पूरी दुनिया की पुलिस और तकनीक के जानकारों को सख्ते में डाल दिया है। आरोप है कि एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक रोबोट ने छेड़छाड़ की। पहले आप ये वीडियो देखिए। और इसी के साथ हम रुक रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट में एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
3: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक।

0: what I can do.
1: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
2: SBI Celebrations Unlimited. इस festive season को बनाए special car loan, personal loan, gold loan और loan against mutual funds पे special offers के साथ.
3: मेरा रुतबा है मेरा signature. मेरा जज्बा है मेरा signature. बेबाक है मेरा signature. Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
4: खेती में सिर्फ आज का नहीं, आने वाले कल का भी सोचना पड़ता है. इसीलिए स्वराज प्रोटेक्ट, इसका वर्षा पीटीओ सिर्फ आज नहीं, फ्यूचर के इम्प्लीमेंट्स के लिए भी है तैयार. भरोसा और टेक, मेरा स्वराज प्रोटेक्ट.
5: हमारे निबर मिस्टर कुमार बात बात पे कार मांगते रहते हैं.
6: वो इन लॉस को लाना है, कार मिल जाएगी.
7: अरे यार कुमार, अब तो अपनी कार ले लो यार.
8: कैनरा व्हीकल लोन से
6: अप टू 90% फाइनेंसिंग,
7: क्विक प्रोसेसिंग एंड नो प्री क्लोजर पेनल्टी.
9: कैनरा व्हीकल लोन, अपनी वाली गाड़ी के लिए.
10: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डे सबके लिए लाए हैं डिलाइट. हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ.
11: How's the hostel? Settled?
12: Yes, ma. It's really nice.
11: कोई आ रहा है क्या?
13: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटीज तो निभा ली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले.
11: मयंक, for real?
13: One carat for my one true love. Natural diamond, real love, solid as to reignite your new season of love.
14: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
15: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से.
11: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना.
14: मतलब
11: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे.
15: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ.
11: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है. PNB, मेरा अपना बैंक.
16: आगे आगे,
17: अरे उधर,
16: करेक्ट.
18: मिल गया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर. सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप.
19: यहाँ ड्रिल करना पड़ेगा.
20: ड्रिल नहीं, ऑनर से पूछना पड़ेगा.
21: इसका नाम क्या रखेंगे?
22: ये भी ओनर से ही पूछ लेते हैं.
23: अरे भाई साहब, कब तक ओनर के डर में रहेंगे, शान से अपने घर में रहिए ना, विद कैनरा होम लोन.

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी हिंट एक हिंट तो देते
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डे सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
3: How's the hostel? Settled?
4: Yes, ma'am. Really nice.
3: कोई आ रहा है क्या?
5: तुम मॉम डैड वाली ड्यूटी तो निभाली, अब फिर से थोड़ा रोमांस ले।
3: मयंक, फॉर रियल?
5: वन कैरेट फॉर माय वन ट्रू लव। नेचुरल डायमंड रियल लव सॉलिटेयर्स टू रीइग्नाइट योर न्यू सीजन ऑफ लव।
6: आ गया सोमवार और आ गए
7: चकमक चाचा।
6: हाँ चाचा, अखबार भाँच रहे हैं। चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुँच गई है, चिचा कब जाएंगे?
8: अरे भैया पुटस में हिस्सा हम ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके
6: पुराने। अच्छा, कब उठाए?
8: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
6: अच्छा
8: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन कर गए, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
6: जी।
8: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
6: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है आपका।
8: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर बोलता रखे था हाँ एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
6: अच्छा
8: और क्या
6: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
8: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल जहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उसमें भागने लगता हूँ।
6: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही
8: है। किधर?
6: चाचा हम खेल गए अब की।
9: वोट चोरी के चुनावी मुद्दे और सत्ता के संग्राम में दिल्ली की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन का पखवाड़ा गुजरने को है। 2 अक्टूबर से शुरू नौजवानों के प्रदर्शन के साथ 6 अक्टूबर से राहुल सड़क पर उतरे। 2 दिनों तक चुनाव आयोग जाने की कोशिश की। 8 अक्टूबर को राजघाट पर प्रदर्शन हुआ। 9 अक्टूबर को राष्ट्रपति से शिकायत। 10 को फिर सड़क पर संग्राम। 11 अक्टूबर को सरकार ने जंतर मंतर को प्रदर्शन की आधिकारिक जगह से डीनोटिफाई किया। 12 अक्टूबर को फिर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में बड़ा प्रदर्शन हुआ। 13 अक्टूबर को चाय पर चर्चा में आगे की रणनीति बनी और 14 अक्टूबर को राहुल आंदोलन के पीड़ित चेहरों को पेश कर रहे थे।
10: ये हिंदुस्तान है अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है, और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए। इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
9: आखिरी हासिल अभी बाकी है, लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर सियासत मंथन करके राहुल ने 3 चीजें हासिल कर ली। पहली ये कि वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल ने ज्यादातर विपक्ष को एक साथ कर लिया है। दूसरी ये कि देश में विपक्षी नेता राहुल ही हैं और क्षेत्रीय दलों को उन्हीं के मुद्दों के साथ आना पड़ेगा। तीसरी ये कि अदालतों में अर्जियों की बाढ़ ने चुनाव आयोग पर अविश्वास के मुद्दे की सियासी बुनियाद मजबूत कर दी है। और राहुल की माने तो ये लड़ाई 2 मोर्चों पर चलेगी, क्योंकि सड़क की लड़ाई से माहौल भले बन जाए, चुनाव आयोग पर आरोप तो अदालतों में ही साबित करने पड़ेंगे। लिहाजा एक तो 16 दिसंबर को रामलीला मैदान में फिर महारैली होने वाली है। दूसरे अदालत में चुनाव आयोग के SIR को लेकर तमाम अर्जियां डाली गई हैं, जिन पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार और बंगाल के SIR मामले के बाद पहली बार तकरीबन एकजुट विपक्ष ने अदालत में अर्जी डाली है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD, शिवसेना, UBT, TMC, NCP, शरद पवार, CPI, CPM, JMM और IUML ने साझा अर्जियां डाली हैं। विरोधी दल के तौर पर इंडिया से बाहर रखे गए AIMIM ने अलग से अर्जी डाली है और सबकी अर्जियों के साथ सुनवाई की मांग की है। इस अर्जी में चुनाव आयोग के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनमें 13 करोड़ वोटर के नाम काटने, मनमाने फैसले लेने, अवैध हलफनामा भरवाने के आरोप लगाते हुए SIR तुरंत रद्द करने, आयोग की बैठकों का ब्यौरा सार्वजनिक करने, काटे गए नामों का ऑडिट करने, उनका ब्यौरा सार्वजनिक करने, वैध कटे नाम दोबारा जोड़ने, फॉर्म 6 से नया हलफनामा हटाने और EVM के सुरक्षा मानकों की समीक्षा की मांग की गई है। लेकिन इन तमाम आरोपों और अर्जियों के बाद भी सरकार विपक्षी आंदोलन को कभी भ्रम और अफवाह की सियासत बता रही है तो कभी चुनावी हार का बहाना। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पुरानी कड़वी यादों को दिल में बैकग्राउंड ऐप की तरह खुला मत छोड़िए। ये आपकी आज की शांति की बैटरी धीरे धीरे ड्रेन कर देती है। नमस्कार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलने के बाद राहुल का पोस्ट, चार साल से नहीं मिला इंसाफ। 2022 में उत्तराखंड में हुआ था अंकिता का मर्डर। राहुल गांधी के साथ आकर एनएसयूआई छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर लगाए मारपीट के आरोप, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थाने। बदले में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की बदसुलूकी का जारी किया वीडियो। दिल्ली पहुंचे अभिजीत दिपके का एयरपोर्ट पर लोगों ने किया विरोध, आंदोलन पर जताई नाराजगी तो दिपके ने की 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की अपील। वाराणसी से सीएम योगी ने अखिलेश पर फिर बोला धावा, कहा समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या पराया धन अपना। मेरठ नीले ड्रम केस में दोषी मुस्कान, प्रेमी साहिल को फांसी की सजा, जज ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, सौरभ के शव के किए थे दोनों ने टुकड़े।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज हम दस्तक में वेंटिलेटर पर चल रहे हेल्थ सिस्टम के खिलाफ दस्तक देंगे। आज हम गंभीर मरीजों की जिंदगी से हो रहे खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ पर जिम्मेदारों की नींद तोड़ने वाली सच्चाई आपको दिखाएंगे। आज तक की टीम ने हमारे देश के 6 राज्यों के बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में क्रिटिकल हेल्थ केयर की पड़ताल की। राज्य अलग, जिले अलग, अस्पताल अलग, लेकिन अंधेर गर्दी की तस्वीर हर राज्य में एक जैसी। हमारी पड़ताल ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की स्याह सच्चाई को बेपर्दा कर दिया। ये वही सच्चाई है जिससे हर दिन आप और हम हजारों मरीज जूझने को मजबूर हैं। सोचिए, सरकारी अस्पतालों तक प्रधानमंत्री राहत कोष से कई साल पहले वेंटिलेटर तो पहुंच गए लेकिन चले नहीं। वेंटिलेटर की जगह आईसीयू में होनी चाहिए लेकिन जान बचाने वाले वेंटिलेटर अस्पताल के किसी कोने में पड़े धूल फांक रहे हैं। कई अस्पतालों में तो वेंटिलेटर कबाड़ में बदल चुके हैं। अब सवाल यही है कि वेंटिलेटर मरीजों की सांसें बचाने के लिए आए थे या सरकारी फाइलों में आंकड़े बढ़ाने के लिए? आखिर टैक्स पेयर्स यानी कि आपके और हमारे पैसों की बर्बादी और कबाड़ बन चुके वेंटिलेटर के लिए जिम्मेदार कौन है?
1: वेंटिलेटर पर हेल्थ सिस्टम की बड़ी पड़ताल। देश के 6 राज्यों में वेंटिलेटरों का काला सच।
2: तमाम मेडिकल उपकरण रखे गए हैं जो रखे रखे जंग खा रहे हैं।
1: कहीं वेंटिलेटर हैं, लेकिन कबाड़ में तब्दील।
3: पीएम केयर के तहत कोरोना काल के दौरान जो वेंटिलेटर्स मिले थे उनकी संख्या करीब करीब 500 बताई थी।
1: कहीं वेंटिलेटर हैं लेकिन काम नहीं करते। कहीं वेंटिलेटर हैं लेकिन ट्रेन्ड स्टाफ नहीं। कहीं वेंटिलेटर पर पर्दा तो कहीं लगा ताला। मरीज का हाल पस्त और जिम्मेदार है मस्त। सरकारी अस्पताल क्यों हैं इतने बदहाल?
0: सबसे पहले हम आपको राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल दिखाते हैं। हमारी संवाददाता भारत भूषण जोशी ने पाली के सरकारी अस्पताल की पड़ताल की तो विकास शर्मा हमारे संवाददाता ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की पोल खोली।
1: यह है राजस्थान के पाली जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था का स्याह सच। वेंटिलेटर पर पड़ी चादर पाली में सरकारी अस्पताल की चरमराई हुई व्यवस्था का साक्षात्कार।

0: कि बागड़ अस्पताल प्रशासन गंभीर बीमारी से जूझते मरीजों के इलाज को लेकर हकीकत में कितना गंभीर है। सोचिए, जिस वेंटिलेटर को किसी मरीज की जान बचाने के लिए कोविड काल में यहां लाया गया था, वही वेंटिलेटर बीमारू स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते धूल फांक रहे हैं। जवाबदेही छोड़िए, अस्पताल प्रशासन ने कबाड़ बनते वेंटिलेटर को लेकर जो दलील पेश की है वो चौंकाने वाली है।
1: सर, पीएम केयर फंड से अपने यहाँ पर जो वेंटिलेटर आए हुए थे वो आज की तारीख के अंदर जो है कचरेदानी में पड़े हैं, कपड़े ढके हुए पड़े हैं, उनका उपयोग क्यों नहीं आ रहा है आज की तारीख के अंदर? वेस्टेज हो रहे
2: हैं। वेंटिलेटर मरीज बहुत कम होते हैं, लगता है आईसीयू बेड 10 है, वेंटिलेटर पे एक आधा होता है मुश्किल से। और ये सीरियस मरीज को वेंटिलेटर, हर एक को वेंटिलेटर नहीं रखा जाता है। जितने वेंटिलेटर काम में आ रहे हैं, जितने जरूरत काम में आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पड़े हैं, जब जरूरत होगी तब काम में लेंगे उनको।
0: डॉक्टर कैलाश परिहार के मुताबिक अस्पताल में गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज नहीं आते तो वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल यही है कि अस्पताल को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों वेंटिलेटर को अपने हाल पर छोड़ दिया गया? अस्पताल प्रशासन का दावा यही है कि सभी वेंटिलेटर चल रहे हैं, लेकिन पॉलिथीन और चादर से ढके वेंटिलेटर इस्तेमाल के लायक हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है।
2: ढके रखा हुआ
1: है, स्टोरेज नहीं हो सकता इनका अलग कमरे में सुरक्षित तौर से रखा जाए इनको? जिस तरीके से
2: हर बार को इश्यू क्यों है, वार्ड के इंचार्ज के चार्ज में वो जब जरूरत हो मरीज को लगा जाता है।
0: सवाल सरकारी अस्पतालों में जिम्मेदारों की लापरवाही का है, लिहाजा राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने माना अस्पतालों में वेंटिलेटर की बदहाली की जांच कराई जाएगी, मतलब जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी।
3: पीएम केयर फंड का या अन्य योजना का है ना, कोई तरह से दुरुपयोग नहीं हो। ये बात जो आपने बताई है, निश्चित रूप से इस संबंध में हम पीएमओ से भी बात करेंगे और सीएमएचओ से भी बात करके यदि कोई दुरुपयोग हो रहा है तो उसका भी जांच कराएंगे, जांच करा करके उनका सही दुरुपयोग हो इस दिशा में हम काम करेंगे। निश्चित रूप से हमारी चिकित्सा व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी बहुत बड़ी है, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, बांगड़ में भी सुधार हुआ है, हमने गांव ढाणी तक जैसे नए चिकित्सालय खोलने, नए भवन बनाने।
0: दरअसल सवाल ये नहीं है कि सरकारी अस्पताल में कितने वेंटिलेटर मौजूद हैं, सवाल ये है कि मरीज की जान बचाने के लिए कितने वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। अगर वेंटिलेटर कबाड़ बन गए तो जिम्मेदार कौन है? शिमला के दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल में वेंटिलेटर अपनी बदहाली की दास्तान सुना रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, करीब एक दर्जन वेंटिलेटर अस्पताल के स्टोर रूम में कैद हैं।
4: ये देखिए जरा तस्वीर आप यहाँ पर इस अस्पताल में, ये स्टोर का एक दूसरा हिस्सा है जहाँ पर जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर दिखता है कि कुछ मशीन्स जो हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं और ये मशीन्स वेंटिलेटर्स मशीन हैं, वही मशीनें हैं जो पीएम केयर के तहत जो है वो यहाँ पर लाई गई थी इस अस्पताल में। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये देखिए यहाँ पर जो है वो ताला लगा हुआ।
0: पीएम केयर फंड से अस्पताल को 20 वेंटिलेटर मिले थे, सिर्फ 8 वेंटिलेटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वेंटिलेटर तो मिले लेकिन उनमें तकनीकी खामियां हैं।
5: ये मशीन्स इसलिए पड़ी हैं क्योंकि इनके कई मशीनों के सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुए और कुछ के स्क्रीन्स नहीं हैं और कुछ के ऑन ही नहीं होती है स्क्रीन्स।
4: तो कुछ बोल रहे थे, हमारी जानकारी के मुताबिक ये भी सुनने में आ रहा था कि कुछ पुर्जे जो हैं वो आने थे जिनकी वजह से ये चल नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ एक ऐसे पुर्जे हैं, क्या कोई खराबी भी इनके अंदर है?
5: इनको हम हर साल निकाल के चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और वो फिर हम उसको हायर अथॉरिटी के लिए भेजते हैं।
4: अच्छा, तो अभी फिलहाल ये नॉन फंक्शनल हैं, कितनी मशीन्स हैं?
5: ये 5 मशीन्स हैं एग्वा की जो कोविड के दौरान आई थी।
0: तो क्या डिफेक्टिव वेंटिलेटर अस्पताल को मिले या फिर देखरेख में बरती गई लापरवाही, मशीनों में आई तकनीकी खामियों की वजह है? अस्पताल प्रशासन की माने तो कई वेंटिलेटर डिफेक्टिव थे। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम की दलील ने अस्पताल प्रशासन के दावों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। हेल्थ मिनिस्टर की माने तो कबाड़ बन चुके वेंटिलेटर के लिए तत्कालीन बीजेपी सरकार जिम्मेदार है क्योंकि ना तो सही रख रखाव हुआ और न ही इन्हें इस्तेमाल में लाया गया। सवाल जान बचाने वाले वेंटिलेटर का है, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर की माने तो जरूरत से ज्यादा वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने भेजे, यानी जिम्मेदार केंद्र सरकार है।
6: जो है मैं समझता हूँ कुछ रह भी गई होंगी, परंतु अदरवाइज जो जिसका जो रियल आंसर तो ये था कि वो मशीनें ही ठीक होनी चाहिए थी, जिसको जितनी जरूरत थी उतनी ही देने की जरूरत थी। मुझे लगता है कि ये जो पिछली सरकार में काम हुआ है

0: मेरा अपना मानना है ठीक नहीं हुआ।
1: अस्पतालों में मशीनें मरीजों की जान बचाने के लिए हैं, तो फिर उनकी बदहाली और मैन पावर की कमी पर जवाबदेही कब तय होगी? क्योंकि अस्पताल में लापरवाही की कीमत किसी फाइल को नहीं बल्कि एक मरीज को चुकानी पड़ सकती है।
2: सरकारी अस्पतालों में एक तरफ गंभीर बीमारी से जूझते मरीज बेहतर इलाज के लिए भटकते हैं और दूसरी तरफ सवाल यह है कि अस्पतालों में जान बचाने वाले वेंटिलेटर तो मौजूद हैं, तो वेंटिलेटर आखिर चलते क्यों नहीं? अगर वेंटिलेटर खराब हैं तो उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारा उद्देश्य जवाबदेही तय करवाना है। आज मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के राज्य मंत्री को सतना और शहडोल के सरकारी अस्पतालों में धूल फांकते वेंटिलेटर का स्याह सच जरूर देखना चाहिए।

0: मध्य प्रदेश में वेंटिलेटरों की बदहाली हेल्थ सिस्टम की सांस फूलने की कहानी बयान करती है। शहडोल में पीएम केयर से मिले वेंटिलेटर एक बंद कमरे में पड़े हैं, तो सत्ता में वेंटिलेटर और कार्डियक बेड मौजूद हैं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ की कमी के चलते मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ जारी है। यानी मशीनें हैं, अस्पताल हैं, मरीज हैं, लेकिन इलाज की व्यवस्था गायब है। ये तस्वीर शहडोल जिला अस्पताल की है। एक कमरे के अंदर वेंटिलेटर रखे हैं, जो कोरोना काल के दौरान पीएम केयर्स फंड से अस्पताल को मिले थे। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि सभी वेंटिलेटर काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर वेंटिलेटर इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, तो उन्हें ऐसे कमरे में बंद करके क्यों रखा गया है?
1: नहीं, वेंटिलेटर चालू थे। जो नॉन इन्वेसिव मोड है, जो ट्रेक्यूस्टोमी करके या जो इंट्यूबेशन करके जो करते हैं वेंटिलेटर्स का यूज, उस वो हमारे यहाँ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास टेक्निकली क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स हैं, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए चाहिए रहते हैं, वो अभी अब उपलब्ध नहीं है। और बाकी जो बाईपैप मोड पे जो वेंटिलेटर्स का यूज होता है, वो हमारे यहाँ हो रहा है और सभी वेंटिलेटर्स फंक्शनिंग है।
0: दावा यही है कि वेंटिलेटर काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रेंड मेडिकल स्टाफ की कमी के चलते वेंटिलेटर का इस्तेमाल संभव नहीं है। हालांकि हमारी पड़ताल में कैमरे ने वो तस्वीर दिखाई जो सरकारी दावों की कलई खोलने के लिए काफी है। अब तस्वीर सतना की। यहां 500 बेड वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल में भी कहानी जुदा नहीं है। दरवाजे पर बाहर से ताला है और अंदर ट्रॉमा यूनिट में रखे वेंटिलेटर सपोर्ट वाले कार्डियक बेड धूल खा रहे हैं। आधुनिक मशीनें मौजूद हैं, लेकिन उन्हें संचालित करने के लिए पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ नहीं है।
2: फंक्शनिंग लाने के लिए जैसे नर्सिंग ऑफिसर समय मिल जाए, क्योंकि डॉक्टर्स तो हमारे यहाँ जब से मेडिकल कॉलेज आता है तो डॉक्टर्स तो काफी है, मतलब जितनी जरूरत है उतने डॉक्टर्स हैं, उससे ज्यादा ही है। पर नर्सिंग ऑफिसर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कम है। अभी 15 नर्सिंग ऑफिसर चली गई नर्सिंग कॉलेज में पढ़ा रही हैं, 25 नर्सिंग ऑफिसर चली गई अभी पीजी करने, ये 40 चली गई, और 10 नर्सेज ने अभी फिर आवेदन आया कि पीजी करने जाना है, और 50 इनके इसके बाद कुछ एंटीनेटल है, कुछ नेटल है, कुछ पोस्टनेटल है, कुछ चाइल्ड केयर लीव में है, कुछ बीमारी में, कुल मिला के मुश्किल से 100 या 110 नर्सेज काम कर रही हैं।
0: 500 बेड का सतना जिला अस्पताल, करीब 400 से 500 मरीज भर्ती हैं। वेंटिलेटर है लेकिन ट्रेन स्टाफ नहीं, गंभीर मरीजों का भगवान भरोसे इलाज। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक पीएम राहत कोष से 7 वेंटिलेटर मिले थे, इनमें से 6 वेंटिलेटर चालू हैं, जबकि एक खराब होने के बाद सुधार के लिए भोपाल भेजा गया है। लेकिन असली सवाल सिर्फ मशीन के चालू या बंद होने का नहीं है, सवाल है क्या अस्पताल के पास उन्हें मरीजों के लिए इस्तेमाल करने वाला पर्याप्त स्टाफ है।
3: ये सिर्फ 2 अस्पतालों की कहानी नहीं, बल्कि उस स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना है, जहां मशीन खरीद कर ये मान लिया जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो गई है। सरकार ने अस्पतालों में मशीनें तो पहुंचा दी, लेकिन इन मशीनों को मरीजों तक पहुंचाने वाला सिस्टम अभी भी अधूरा है, और इस अधूरे सिस्टम की कीमत एक गंभीर मरीज को चुकानी पड़ सकती है। रावेंद्र शुक्ला और वेंकटेश द्विवेदी के साथ अविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
4: और अब हम आपको पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और पंजाब के फिरोजपुर से हमारे संवाददाता अक्षय गल्होत्रा की रिपोर्ट दिखाते हैं।
0: सरकारी बद इंतजामी की गवाही दे रही ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की हैं। महिला अस्पताल में रखे वेंटिलेटर और दूसरे उपकरण इंतजार करते करते कबाड़ में बदल गए, लेकिन मरीजों को नसीब नहीं हुए। आज तक की पड़ताल में महिला अस्पताल की 5वीं मंजिल की तस्वीरें चौंकाने वाली हैं।
5: यहाँ एक जनरल वार्ड 2 लिखा हुआ है, और इसके अंदर तमाम मेडिकल उपकरण और गत्ते में वेंटिलेटर के सामान, साजो सामान रखे गए हैं, जो मॉनिटर हैं, जिसके जरिए मरीजों का पल्स और तमाम चीजें मॉनिटर की जाती हैं, जिससे जो है सही टाइम पे सही रीडिंग मिलती है और मरीजों की जान बचाई जाती है। लेकिन ये उपकरण लगने के अभाव में और यूज होने के अभाव में यहाँ रखे रखे जंग खा रहे हैं।
0: कई साल पहले अस्पताल को वेंटिलेटर तो मिल गए, लेकिन आज तक इस्तेमाल नहीं हुए। न तो अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं और न ही ट्रेन मेडिकल स्टाफ। आज तक के कैमरे पर खुद महाराजगंज के सीएमओ ने बदहाली का सच कबूल किया है।
6: जो हमारे 18 वेंटिलेटर जो पीएम योजना के अंदर केयर योजना के अंदर आए थे कोविड काल में, ये हमारा क्रिटिकल केयर यूनिट जो बनके तैयार है पीएम अभी योजना के अंतर्गत जो यूपीसीएल संस्था द्वारा बनाई गई है वो हैंडओवर हो चुका है 12 मार्च 2026 में। अभी इसमें कई गैप हैं, जैसे कि अभी जो है आपका इसमें मेडिकल गैस पाइपलाइन नहीं बना हुआ है, जिसके लिए हम लोगों ने अप्लाई किया है, शासन को मैंने पत्र लिखा है, डीएम सर के द्वारा मेरे द्वारा भी पत्र भेजा जा चुका है।
0: उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर बृजेश पाठक को महाराजगंज के महिला अस्पताल की बदहाली पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकारी दावों से इतर सरकारी अस्पतालों की सच्चाई मरीजों को रुला रही है।
5: मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया गया और यह यहाँ के कर्मचारियों अधिकारियों और जो भी स्टाफ हैं उनकी यह उदासीनता है, ये लोग अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन है। जनता मर रही है, मरीज मर रहा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जरा सा भी अगर उल्टी दस्त है, किसी को चक्कर आ रहा है, तो इनका एकमात्र काम होता है गोरखपुर के लिए रेफर कर और अपनी जिम्मेदारियों को छुड़ाना।
0: सवाल यही है कि अस्पताल की बुनियादी जरूरतों को लेकर जिम्मेदार आंखें मूंद कर क्यों बैठे हैं? अस्पताल में मरीज धक्के खा रहे हैं और जिम्मेदार मुंह फेर कर बैठे हैं। दरअसल सरकारी अस्पतालों में मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन जब जरूरत के वक्त मशीनें काम न करें और उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त मेडिकल स्टाफ न हो, तो सवाल सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था पर नहीं बल्कि सरकारी जवाबदेही पर भी उठता है। पड़ताल के दौरान बंगाल के कूच बिहार के दिनहाटा मेडिकल कॉलेज में आज तक की टीम पहुंची, यहां पर वेंटिलेटर खुद बीमार मिले।
7: तब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यापी एक है, यापी लेके टोटल 8 ऐसे वेंटिलेटर है। ये सारे वेंटिलेटर कोविड का टाइम दौरान को दिया गया था एवं दिनहाटा सब डिविजन हॉस्पिटल में कोविड अस्पताल बनाया गया था। बाद में ये सारे वेंटिलेटर खराब हो गया था और जितना सारे वेंटिलेटर खराब हो गया सबको यहाँ पे अभी रखा गया।
0: जिम्मेदार मानते हैं कि वेंटिलेटर खराब है जिसकी वजह से जरूरतमंद मरीजों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज तक की पड़ताल के बाद अस्पताल प्रशासन की नींव टूटी, दावा किया कि जल्द ही सभी खराब वेंटिलेटर को बनवाया जाएगा। कोविड काल के दौरान फिरोजपुर के सिविल अस्पताल में 4 वेंटिलेटर भेजे गए थे, लेकिन 6 साल बाद भी वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं हुआ। यही वजह है कि गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को वेंटिलेटर और क्रिटिकल केयर की सुविधा नहीं मिली। दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन का कहना है कि न तो पर्याप्त स्टाफ है और न ही बुनियादी सुविधाएं, ऐसे में वेंटिलेटर का इस्तेमाल संभव नहीं है, लेकिन जल्द ही कोई रास्ता निकल जाएगा।
8: जी ये ना, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फिरोजपुर में 4 वेंटिलेटर इस समय अवेलेबल है और वर्किंग कंडीशन में है। जो कोविड के टाइम पर भी आए थे उस टाइम पर तो चलो, बाद में जो हमारा स्टाफ है थोड़ा कमी होने के कारण जो आईसीयू फैसिलिटीज या वेंटिलेटर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, बट लास्ट वीक से हमने फिरोजपुर में आईसीयू फैसिलिटीज शुरू कर दी है।
0: यहाँ सवाल किसी एक कर्मचारी को दोषी ठहराने का नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम में जिम्मेदारों की कड़ी पहचानने का है। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की मौजूदगी का मतलब तभी है जब जरूरत के वक्त वो मरीजों की जान बचा सके और उसके लिए ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ मौजूद हो। आज बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के जवाब अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जिम्मेदारों को देने चाहिए, क्योंकि सरकारी पैसों का हिसाब देना उनकी जवाबदेही है और मरीजों को इलाज मुहैया कराना उनकी जिम्मेदारी है।
4: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे सऊदी अरब पर हमले के पीछे तेल का क्या है खेल। आप देखते रहिए दस्तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: SBI Celebrations Unlimited इस फेस्टिव सीजन को बनाए स्पेशल कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पे स्पेशल ऑफर्स के साथ।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मैडी, I need to open a savings account.
3: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
2: स्मॉल बैंक?
3: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस, एच करंट अकाउंट बिजनेस, मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज, RDF, there's nothing small about them.
2: Okay.
3: उज्जीवन, nothing small about us.
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: AU सोच बदलो और बैंक भी।
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
9: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
10: इट्स द माही वे।
11: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
12: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
13: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है।
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
13: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
15: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।

0: In association with Canara Bank, together we can.
1: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal anmol. Signature finest cardamom seeds.
2: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
3: Jahan jurm, wahin kahani. Jahan kahani, wahin saazish. Jahan saazish, wahan crime tha. Jurm chahe kitna hi uljha ho, uski parte hum suljhate. देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
4: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: बिहार के राघोपुर में नदी में पलटी नाव। गंगा में समा गई 14 मासूम जिंदगियां। जर्जर नाव को लेकर उठे कई सवाल। ये तस्वीरें हाजीपुर के राघोपुर के रामपुर श्यामचंद गांव की है, जहां 14 बच्चों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और हादसे में अपने बच्चों को खोने वाले परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल नाव पर सवार लोग श्राद्ध भोज में शामिल होकर अपने गांव लौट रहे थे। उसी दौरान गंगा नदी पार करते वक्त नाव पलट गई और 14 मासूम जिंदगियां गंगा नदी में समा गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त नाव में करीब 20 से 25 लोग सवार थे, जिसमें 10 से 14 साल के बच्चे भी थे और श्राद्ध भोज खाकर गांव की तरफ लौट रहे थे और नाव पलटने से 14 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जहां एक तरफ नाव पलटने के बाद गांव में मातरम पसरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नाव की जर्जर हालत को लेकर लापरवाही के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जर्जर हालत में नाव को चलाने से क्यों नहीं रोका गया?
1: वही नाव है जो दुर्घटना ग्रस्त हुआ है कल रात में, और थोड़ी देर पहले इसको SDRF की टीम ने पानी से जो है वो निकाल भी लिया है। और आप इस नाव की स्थिति देखिए, नाव देखने से ही जर्जर स्थिति में नजर आ रहा है। और स्थानीय लोगों का दावा है, स्थानीय नेताओं का दावा है, जो ये एक सरकारी नाव है और उसमें आप देखिए इसमें बैठने की ज्यादा जो है वो लोगों की जगह नहीं है, 8-10 लोग जो है वो मुश्किल से बैठ सकते हैं। अब दूसरी बात देखिए, ये नाव किस हालत में जर्जर है, ये आप देखिए, इस नाव में इतना बड़ा छेद आप देखिए, आप ये देख सकते हैं नाव में इतना बड़ा जो है दरार आप नजर आ रहा है। और क्योंकि जब ओवरलोडिंग हुई होगी तो जाहिर सी बात है नाव का ये हिस्सा जो है जो टूटा हुआ है, जो इतना बड़ा छेद है, तो पानी इसके जरिए भी नाव के अंदर प्रवेश किया और उसकी वजह से जो है अचानक स्थिति जो है वो काफी खराब हो गई। और जब नाव के अंदर पानी भरा होगा तो जाहिर सी बात है छोटे बच्चे थे 10-14 साल के, तो वहां पर एक तरीके से कहें तो हड़बड़ी की स्थिति हो गई होगी, इधर उधर बच्चे भागने लगे होंगे और उसी दौरान उस आपाधापी में ये नाव पलट गई।
0: तो साफ है कि जिस हालत में नाव दिख रही है उससे ये साफ साफ लापरवाही दिख रही है। वहीं पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है और गांव के लोग हादसे को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां एक तरफ हादसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जिला अधिकारी से बात की और हादसे में बच्चों की मौत पर उन्होंने दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
2: हमारी जिलाधिकारी से भी बात हुई है, आपदा विभाग के जो सचिव हैं उनसे भी बात की गई है और हमने आग्रह किया है कि ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू टीम जो है भेजा जाए, NDRF के लोग हों, SDRF के लोग हों। और पटना आते ही हम जो है राघोपुर जाएंगे, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। इस दुख की घड़ी में हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मदद करे।
0: 14 मासूमों की मौत को लेकर CM सम्राट चौधरी और PM मोदी ने भी दुख जताया, साथ ही राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए और PM राष्ट्रीय राहत कोष की तरफ से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। राघोपुर से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: मैं पहले से ये कहता आ रहा हूँ कि राहुल गांधी भले ही संविधान दिखा रहे हैं, लेकिन उनका प्लान, उनकी मोडस ऑपरेंडी दूसरी है। संविधान सामने करके जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करना, उनके बारे में लोगों के मन में प्रश्न तैयार करना, लोगों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं से उड़ जाए, इस प्रकार की व्यवस्था तैयार करना, इस व्यवस्था को तैयार करके अराजकता एनार्की और फिर एनार्की लाकर लोगों के मन में ये भावना तैयार करना कि संविधान ने तैयार की हुई डेमोक्रेटिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमको न्याय नहीं दे सकती। और फिर ये सारी व्यवस्था को जो साम्यवादी व्यवस्था है, कम्युनिस्ट व्यवस्था है, उस व्यवस्था की ओर ले जाना, इस प्रकार का डिजाइन ये राहुल गांधी ने तैयार किया है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आपका। और आज खबर ईरान के उस प्लान हूती की जिसने अमेरिका और सऊदी अरब की नींद उड़ा दी। सऊदी अरब पर हूतियों के हमले पर पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया। ट्रंप का दावा यही है कि सऊदी अरब पर हमले के पीछे तेल का खेल है, तेल का वही खेल जो मिड टर्म चुनाव को लेकर ईरानी साजिश का हिस्सा है। तो क्या सऊदी अरब पर हूतियों के हमले के पीछे ईरान है? क्या कच्चे तेल के दाम बढ़ाने के लिए सऊदी अरब पर हूती हमला कर रहे हैं? क्या है तेल वाला खेल? आइए हम आपको बताते हैं।

0: सऊदी पर हमले के पीछे तेल का खेल, ईरान के इशारे पर निशाना बना रहे हूती, क्या ईरान का निशाना है मिड टर्म चुनाव, ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू में हुई बात, क्या हूतियों के हमलों का बदला लेंगे ट्रंप, तीन नवंबर से पहले ईरान पर होगा हमला, 27 अक्टूबर को इसराइल में चुनाव है तो 3 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है, चाहे इसराइल में चुनाव हो या फिर अमेरिका में मिड टर्म चुनाव, ट्रंप और नेतन्याहू के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, चुनाव में जीत मिली तो ईरान युद्ध पर जनता मोहर लगा देगी, लेकिन चुनाव में नेतन्याहू या फिर ट्रंप की पार्टी की हार हुई तो फैसला युद्ध छेड़ने के खिलाफ माना जाएगा। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी पर हूतियों के हमले के बीच ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर फोन पर बातचीत हुई है, बातचीत के दौरान ईरान पर नए सिरे से हमलों को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है, इसी बातचीत को लेकर ईरानी सेना की तरफ से अमेरिका को सीधी धमकी दी गई है, ईरान के खिलाफ नया युद्ध शुरू करना अमेरिका के लिए तर्कहीन होगा, लेकिन इस तरह के हमले की संभावना बनी हुई है क्योंकि ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले एक उपलब्धि हासिल करने की जरूरत है, ईरान किसी भी नए आक्रमण का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है, इस बार अमेरिका के लिए परिणाम कहीं अधिक गंभीर होंगे, ईरान ने 40 दिनों के युद्ध के दौरान मुख्य रूप से अपने पुराने हथियारों पर भरोसा किया था, लेकिन तब से उसे कहीं अधिक उन्नत हथियार प्राप्त हो गए हैं, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हमले के लिए पूरी तरह तैयार है, ईरान की तरफ से ये भी संकेत दिए गए हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया या फिर हूतियों के खिलाफ अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो खाड़ी देशों पर जमीनी स्तर पर ईरानी सेना घुसपैठ कर सकती है, अगर अमेरिका नए हमले शुरू करता है तो हम पड़ोसी देशों में सेना भेज सकते हैं, अब की बार ईरानी सेना की तैयारी कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने की है, मिडल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी मुल्कों को भारी कीमत चुकानी होगी, सऊदी अरब के तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है, यूएई के अहम ठिकानों के साथ साथ क्षेत्रीय डेटा सेंटर और इंटरनेट केबल भी निशाने पर हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने अपना चक्रव्यूह तैयार किया है, पहले ही होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है और लाल सागर के बड़े हिस्से पर हूतियों का कंट्रोल है, यही वजह है कि ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ट्रंप मानते हैं कि तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए हूती की तरफ से सऊदी अरब पर हमले किए जा रहे हैं जो मिड टर्म चुनाव तक चलेंगे, इसी बीच IRGC की तरफ से होर्मुज को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, अगर अमरीकियों को लगता है कि होर्मुज खुला है तो वो करीब आ जाएं। हम अमेरिकी युद्ध पोतों को डुबोने के लिए बेताब हैं। $13 अरब मूल्य का एक अमेरिकी युद्ध पोत अप्रभावी हो गया था और होर्मुज से 700 किलोमीटर दूर चला गया था क्योंकि उसने जलमार्ग के पास आने की हिम्मत नहीं की, हम अमेरिकी युद्ध पोतों के होर्मुज के प्रवेश द्वार के पास आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उन्हें डुबो सकें, हम इस घटना के होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल ईरान ये मानकर चल रहा है कि 27 अक्टूबर या फिर 3 नवंबर से पहले अमेरिका और इसराइल एक बार फिर हमले की हिमाकत कर सकते हैं, इस हमले को ईरान पर जीत के तौर पर ट्रंप और नेतन्याहू अपने मुल्क की जनता के सामने रख सकते हैं, इसी आशंका को देखते हुए IRGC की तरफ से अमेरिका में होने वाले मिड टर्म चुनाव को लेकर अमेरिकी जनता के नाम एक खत लिखा गया था, आप ही हैं जो अपने वोटों से सरकार को शक्ति देते हैं और उसे मनमानी करने की अनुमति देते हैं, हालांकि अमेरिकी राजनेता अक्सर धोखे और झूठे वादों के जरिए आपके वोट जीतते हैं जैसा कि ट्रंप ने किया, लेकिन अगर आप अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का चुनाव करते समय अच्छे नेतृत्व के मानदंडों को अपनाते हैं तो आप सरकार की संरचना को बदल सकते हैं, आपको अपनी सरकार को इसराइल से दूरी बनाने के लिए मजबूर करना होगा क्योंकि फिलिस्तीन पर कब्जा करने वालों को देर सवेर अपनी कब्जे वाली जमीन छोड़कर अपने मूल देशों में लौटना ही होगा, हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में एक साथ रह सकते हैं, अमेरिका की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार दुष्ट कपटी और हिंसक राजनेताओं को सत्ता से हटा दें, अपने मामलों को बुद्धिमानों को सौंपें न कि धूर्तों को।
1: और आइए अब हम आपको ये भी बताते हैं कि कैसे ईरान के माइंड गेम में अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है, एक तरफ हॉर्मुज पर अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी तो दूसरी तरफ ईरान के इशारे पर सऊदी अरब पर हूतियों का हमला जारी है, सऊदी अरब भले ही हूतियों के ठिकानों पर हवाई हमले का दावा करे, लेकिन सच्चाई यही है कि हूतियों को रोकने में सऊदी अरब पूरी तरह से नाकाम है। आखिर हूतियों से संघर्ष में, युद्ध में क्यों सऊदी अरब हार रहा है, आइए आपको दिखाते हैं।
0: रियाद में मिसाइल अलर्ट, सऊदी अरब में हड़कंप। अरामको की इमारत पर हमला, लगी आग। यमन में सऊदी की एयर स्ट्राइक। हूतियों की पलटवार की धमकी। हूती किसी के रोके नहीं रुक रहे, ना सऊदी अरब के हवाई हमलों से, ना सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन की सैन्य कार्रवाई से, और ना ही लगातार बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव से। उल्टे हूतियों के हमलों ने सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बेखौफ हूतियों के हमलों के बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मिसाइलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में भी खतरे की चेतावनी दी गई। इसी बीच तेहरान में सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी आरामको के परिसर में मौजूद एक प्रशासनिक इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद इमारत में सीमित आग लग गई। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन तेल ठिकानों के आसपास बढ़ते खतरे ने सऊदी अरब की चिंता बढ़ा दी है। सऊदी अरब के लिए चुनौती सिर्फ तेल ठिकानों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। रियाद से लेकर देश के पूर्वी हिस्से तक मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे ने हवाई सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका से मिले पेट्रियट और थाट जैसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद सवाल यही है कि आखिर कुछ हमले सुरक्षा कवच को भेदने में कैसे कामयाब हो रहे हैं। इस वक्त भी रियाद में मिसाइल हमलों को लेकर अलर्ट है। पूर्वी प्रांत में मिसाइल और ड्रोन हमलों की चेतावनी है। तेहरान में अरामको परिसर की प्रशासनिक इमारत पर हमला हुआ है। इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक कोई हताहत नहीं है। पेट्रियट और थाट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम कितने कारगर हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। उधर सऊदी अरब ने पलटवार करते हुए यमन की राजधानी सना और दूसरे इलाकों में हूतियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूतियों के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। गठबंधन ने सना में कुछ ठिकानों के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी भी दी थी। सऊदी अरब को तुर्की और पाकिस्तान से मिलने वाले समर्थन के बीच भी हूतियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन की कार्रवाई और हूतियों की जवाबी धमकियों ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। हूतियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। अब सवाल है कि क्या ये टकराव यमन की सीमा से निकलकर पूरे क्षेत्र में और बड़े संघर्ष का रूप लेगा। यमन में भीषण संघर्ष के बीच ताइज में लड़ाई तेज हो गई है। यमन के गृह मंत्रालय के मुताबिक हूतियों के हमलों में पिछले 24 घंटों के दौरान 6 लोगों की मौत हुई और 18 लोग घायल हुए। सऊदी समर्थित बलों और हूतियों के बीच ताइज पर कब्जे की लड़ाई भी तेज हो गई है। उधर सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूतियों के मिसाइल, ड्रोन और दूसरे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। सऊदी अरब के कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमलों के अलर्ट जारी होने से सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन हर किसी की नजर अब अमेरिका पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हूतियों के हमलों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने लिखा, हूती बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें एक साल पहले ही सबक मिल गया था जब हमने उन पर जबरदस्त बमबारी की थी और उनके कहने पर रुक गए थे। वो लंबे समय से शांत थे, लेकिन अब ये फिर से सामने आ गए हैं, शायद ईरान के कहने पर, जो एक नाकाम देश है जिसके पास ना तो नेवी है ना एयरफोर्स, जिसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे खराब है और जहां महंगाई दर 301% है। वो बहुत बुरे तरीके से सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं और जानबूझकर तेल की कीमतें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद अमेरिकी चुनावों से पहले। ये अच्छी बात नहीं है। हूतियों के हमलों ने सऊदी अरब की सुरक्षा, तेल प्रतिष्ठानों और समुद्री व्यापार के लिए खतरा बढ़ा दिया है। बाब अल मंदेब जल डब्लू मध्य पर नियंत्रण की लड़ाई और लाल सागर में बढ़ता तनाव वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए भी चिंता का विषय है। इसी बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रियाद, दमाम और जद्दा आने जाने वाली उड़ानें 17 अक्टूबर 2026 तक रद्द करने की घोषणा की है। रियाद से तेहरान तक सुरक्षा का संकट, यमन में सना से ताइस तक भीषण संघर्ष और लाल सागर से बाब अल मंदेब तक समुद्री रास्तों पर बढ़ता खतरा। सऊदी अरब के सामने हूतियों के हमलों को रोकने, अपने अहम ठिकानों की सुरक्षा और इस जंग को फैलने से रोकने की चुनौती है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब हम आपको पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में बता दें। इमरान की रिहाई की मांग को लेकर उनके समर्थक सड़कों पर हैं। समर्थकों को रोकने के लिए पाकिस्तानी शासन ने बर्बरता की, सभी हदों को पार कर दिया। तो क्या पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई को लेकर गृह युद्ध छिड़ सकता है?
2: इमरान खान की रिहाई को लेकर उनकी पार्टी के समर्थकों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुनीर की लाख कोशिशों के बावजूद आज खैबर पख्तूनख्वा उबल रहा है। सेना और पुलिस की बर्बरता के बावजूद इमरान खान के समर्थक पीछे हटने को तैयार नहीं। ये तब है जब इमरान खान की रिहाई को लेकर चल रहे आंदोलन से डरकर मुनीर एंड कंपनी खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगा चुकी है। इमरान की पार्टी के हुक्मरानों का तख्ता पलट कर चुकी है। मुख्यमंत्री को पूरी कैबिनेट के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की रिहाई की मांग की आवाज को दबाने के लिए मुनीर तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। इमरान के गढ़ में उनकी पार्टी की सरकार का तख्ता पलट करके भले ही पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इसे इमरान के खात्मे की कोशिश में अपनी जीत समझ रहा हो, लेकिन यही दांव उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पर अब नए सिरे से गृह युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इमरान के समर्थक ना तो रुकने को तैयार हैं और ना ही झुकने को। पीटीआई के समर्थक सड़कों पर हैं।
3: हम अभी रोजगार के लिए निकले, ये देखे इधर कोई कहता है कि गवर्नर राज लगा हुआ है, कोई कहता है क्या लगाए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हम कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ अमन चाहिए हमको।
4: कि आप कंटेनर लगा के सब रास्ते बंद किए, क्यों रास्ते बंद किए? अवाम ने इनको वोट दिया है ना, जमहूरियत के दर आइन पे कौन अमल नहीं कर रहा, ये देखे ना, जिधर आइन पे अमल नहीं हो रहा उसको देखे, आप उस पे अमल करें ना, क्यों अवाम को जलील कर रहे हैं आप लोग?
5: ये पैगाम क्या देना चाह रहे हैं अवाम को कि हम जहाँ चाहेंगे जो मर्जी कर सकते हैं, हम पावर में बैठे हैं, ऐसे नहीं होता है। अब जमहूरी निज़ाम है, आपको अवाम के साथ चलना चाहिए। मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप गवर्नर लगाएं।
2: पाकिस्तान के मौजूदा हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लिहाजा पाकिस्तानी सरकार सफाई पेश कर रही है और कह रही है कि उनके पास इमरजेंसी के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचा था।
6: आपके सामने है कि वहां पे हालात क्या हैं। 12 जिला ऐसे हैं जहां पे सिचुएशन बहुत खराब है। कुछ जिला में शाम पे आप लोग निकल भी नहीं सकते जो वहां के लोग रहने वाले हैं। उसके बाद जिस तरीके से कल या परसों इलेक्शन कमीशन के एक सीनियर ऑफिसर का वहाँ पे शहादत हुई है, पुलिस की टारगेट किलिंग हो रही है, हर दिन हमारे लिए एक नया दिन है जिस दिन हमारी शहादतें हो रही हैं, कस्टम्स की भी हुई, सारों की तकरीबन उन्होंने टारगेट करके सारा सिलसिला शुरू किया हुआ था। अब उसके ऊपर भी हम उनके साथ एक पेज पे आने की बहुत कोशिश कर रहे थे।
2: शहबाज सरकार का आरोप है कि पीटीआई की सरकार प्रांत में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जानबूझकर सहयोग नहीं कर रही है। पाकिस्तानी सरकार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरजेंसी लगाने का फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई आपात कैबिनेट बैठक में लिया गया था, लेकिन जानकार इस इमरजेंसी को घातक बता रहे हैं।
7: गेट इस वक्त जो है वो हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर है और रावलपिंडी में दफा 144 लगा दी गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज है सर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? इतना आसान काम है ये कि ये इमरजेंसी लगा देंगे और ये जो ट्रिपल वन ब्रिगेड का जो इस वक्त रावलपिंडी के अंदर इनकी क्यों इतनी ज्यादा जान जा रही है सर?
8: सर इशू इमरजेंसी का इतना ज्यादा नहीं है राय साहब, क्योंकि इमरजेंसी तो ऑलरेडी पूरे मुल्क में लगी हुई है। अब एक कागज का पता लगा देंगे इमरजेंसी का तो क्या फर्क पड़ता है? इमरजेंसी में क्या होता है? इमरजेंसी में आपके पास अदालत के पास जाने का इख्तियार खत्म हो जाता है, पुलिस रूल हो जाता है, फौज का रूल हो जाता है, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। जो ज्यादा खतरनाक चीज खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं वो दो हैं। एक तो मैं ये तकरीबन 2-3 हफ्तों से रिपोर्ट कर चुका हूँ, बार बार इसका जिक्र भी करता हूँ, नेशनल मीडिया तो खामोश है, डरता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितनी भी अभी हालिया इन्होंने अबडक्शंस की हैं, वो उसमें पुलिस का तो एवं एक आधा बंदा जो ISI के साथ लगा होता है वही होता है, अदरवाइज सारी की सारी अबडक्शन जो इन्होंने तालिबान एक्स तालिबान मर्सनरीज हायर किए हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ISI के बंदे साथ जाते हैं पॉइंटर्स के तौर पर, आगे वो तालिबान लंबे लंबे बालों वाले और वो जनाब हैं सारे के सारे जिनमें पंजाबी पठान सारे शामिल हैं, वो जाके बंदों को उठाते हैं और उनको डे वेजर्स के तौर पर रखा गया है ISI के अंदर।
7: बिल्कुल,
8: ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। दूसरी चीज, अब ये घरों के अंदर जा रहे हैं, इन्होंने पहले पंजाब में किया था, पंजाब में उसको इतनी रेजिस्टेंस नहीं मिली, लेकिन जो इन्होंने अब ये खैबर पख्तूनख्वा में किया है जहां घरों में औरतें होती हैं, ये ऐसा नहीं होता। देखें पश्तूनों के अंदर बड़ा वाजे है, एक तरफ आपका मर्दाना है जनाना है, ख्वातीन की तरफ अब ये जाके छापे मार रहे हैं, घरों की औरतें होती हैं, ये चीज रुकी नहीं रह सकती। ये आपने बहुत खतरनाक काम करना शुरू कर दिया है, इसके फिर रिपरकशंस होंगे।
2: आपको बता दें कि 73 साल के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। इमरान पर भ्रष्टाचार और हिंसा भड़काने से जुड़े आरोपों समेत 100 से ज्यादा मामले चल रहे हैं।
1: दस्तक में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
5: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायबिटीज जूस।
7: In association with Canara Bank, together we can.
8: Anmol biscuits, swad jo banaye har pal anmol. Signature finest cardamom seeds.
9: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
10: Aa gaya somvar aur aa gaye
11: chakmak chacha.
10: Aa chacha. अखबार बांच रहे हैं।
12: टेस्ट
10: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
12: अरे भैया पुत्र सुतस में हिस्सा हम ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा है, हम अपना मुद्दा उठा चुके पुराने।
10: अच्छा कब उठाए?
12: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
10: अच्छा
12: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन कर गया, ऐसा ये सब नहीं था अपना मामला
10: जी,
12: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
10: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है आपका।
12: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द बिता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन दिल बोलता रखे था एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
10: अच्छा
12: और क्या
10: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
12: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पुलिस सिटी नहीं बची उसमें भागने लगता।
10: बढ़िया आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही
12: है किधर?
10: चाचा हम खेल गए अब की।
13: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस और घबराइए मत।
14: कल जाहिर सी बात है आयशा की छात्र हैं नेहा बोरा, उनको खड़ा कर दिया था, अब उनको लगा कि भाई अपने ही स्टूडेंट विंग की छात्राओं का सामने रखे हैं, तो अब छात्रों का इस्तेमाल ना करें। आपकी जो सोच है, जो आपने दिखाया है सबके सामने अपना रवैया और अपना एटीट्यूड, अरे आपने तो अपने डीके शिव कुमार को नहीं छोड़ा और जितनी महिला वहां पे पुलिस कर्मी थी उनको आपने बख्शा नहीं, और ना ही आपके लोगों ने मदद भी की उन महिलाओं की, उन पत्रकारों की, तो अब उस सबसे बचने के लिए आप जिस तरह से छात्र और छात्राओं का इस्तेमाल कर रहे हैं ये सबको पता चल रहा है।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. AU
3: सोच बदलो और बैंक भी.
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर. सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप.
5: जिस वक्त CJP के संस्थापक अभिजीत दीप के हिंगोली में अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल थे, उस वक्त CJP के बाकी के नेता दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में धरने की परमिशन मांगने पहुंचे थे. उन्होंने पुलिस को अपनी चिट्ठी सौंप दी, लेकिन चिट्ठी सौंपने के बाद जब वो बाहर आए तो प्रशासन को सीधे सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया.
6: 24 घंटा टाइम ले लीजिए, लेकिन बॉल इज इन योर कोर्ट. आप बताइए किस दिन लोग डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर आ सकते हैं. फुल कोऑपरेशन के साथ पीसफुल तरीके से लोग गैदर होंगे एंड प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट तो जरूर होगा.
5: लेकिन अब मसला बदल गया है. CJP जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन जंतर मंतर को डिनोटिफाई कर दिया गया. मतलब अब जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल नहीं रहा, मतलब CJP वाले जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे. अलबत्ता सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए 3 जगह निर्धारित कर दी हैं. ये जगह हैं रामलीला मैदान, CBD ग्राउंड और पुराड़ी मैदान. अब मसला ये है कि इन तीनों ग्राउंड को प्रदर्शन ने स्थल तो बना दिया गया, मगर 2 मैदानों में कार्यक्रम चल रहा है. रामलीला मैदान में रामलीला की तैयारी चल रही है, CBD ग्राउंड में रामलीला की तैयारी हो रही है. बचा बुराड़ी का मैदान, जहां बारिश के बाद फिलहाल कहीं कहीं पानी भरा हुआ है. अब सवाल ये है कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कहां करेंगे. आज तक ब्यूरो.

0: दिल्ली के जंतर मंतर पर अब धरना नहीं, रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन मुश्किल। अगले ढाई महीने तक बुकिंग फुल और फीस भी लाखों पार। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर अब इतिहास बन गया है, क्योंकि जंतर मंतर को डी नोटिफाई कर दिया गया है, मतलब अब जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल नहीं रहा। सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए तीन जगह निर्धारित कर दी हैं। ये जगह हैं रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड, पुरानी मैदान। अब मसला यह है कि इन तीनों ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल तो बना दिया गया, मगर दो मैदानों में कार्यक्रम चल रहा है। रामलीला मैदान और सीबीडी ग्राउंड में भी रामलीला की तैयारी हो रही है। बचा भुराड़ी का मैदान, वहाँ बारिश के बाद फिलहाल कहीं कहीं पानी भरा हुआ है।
1: हम जिस रामलीला मैदान पर हैं, इस समय नवरात्रि के चलते आप देखेंगे कि यहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है। इस तरफ स्टेज लगा हुआ है और ठीक इसके पीछे यहाँ पर देखिए सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही मेला लगा हुआ है। कारोबार मेले का और लोगों के बचपन की यादें ताजा हो जाती है। इस रामलीला मैदान का अपना बहुत इतिहास रहा है। इस रामलीला मैदान ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, लेकिन अब इसे एक आंदोलन धरना प्रदर्शन स्थल घोषित किए जाने को लेकर के व्यापारी चिंता जता रहे हैं। स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है और ऊपर से जंतर मंतर को, जिसकी एक अपनी पहचान रही है कि वहां पर धरने प्रदर्शन होते थे जिसकी वजह से सरकार सत्ता तक आवाज पहुंचती थी, उसको लेकर के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते आवाज उठाते हैं, वो भी नाराज है।

0: दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
2: डोंट ट्विस्ट।
0: क्या हुआ?
2: डोंट ट्विस्ट लप से।
0: हर आदमी में
3: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
1: कितना घटिया था यार। लप
2: लप लप।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: आज से पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपसे कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: इंडिया गेट पर धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलने के बाद राहुल का पोस्ट, 4 साल से नहीं मिला इंसाफ। 22 में उत्तराखंड में अंकिता का हुआ था मर्डर। राहुल गांधी के साथ आकर एनएसयूआई छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर लगाए मारपीट के आरोप, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थाने, बदले में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का बदसलूकी का जारी किया वीडियो। दिल्ली पहुंचे अभिजीत दिपके का एयरपोर्ट पर लोगों ने किया विरोध, आंदोलन पर नाराजगी, दिपके ने की 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की अपील। वाराणसी से सीएम योगी ने अखिलेश पर बोला हमला, कहा समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या पराया धन अपना। और मेरठ नीले ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी की सजा, जज ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, सौरभ के शव के किए थे दोनों ने टुकड़े।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश सीधे मेरठ कोर्ट से। दंड ही धर्म है और इसीलिए मैं आप दोनों को मृत्यु दंड दे रहा हूं। मेरठ के जिला जज ने ठीक 14 अक्टूबर शाम 4:15 पर नीले ड्रम वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को यही कहते हुए मौत की सजा सुना दी। कोर्ट के अंदर मौजूद तमाम वकील और बाकी लोग यही मानकर चल रहे थे कि शायद उम्र कैद की सजा होगी, लेकिन जज साहब ने हर एक को गलत साबित कर दिया। असल में उससे पहले जब सजा पर बहस शुरू हुई तभी थोड़ा सा इशारा मिला था। जज साहब ने उस वक्त एक लाइन कही थी और वो ये कि ऐसे मामलों में फैसला सुनाने से पहले समाज और लोगों की राय जाननी या लेनी भी जरूरी है, और उसी वक्त लगा था कि शायद ये केस कहीं और जा रहा है। और ठीक शाम के 4:15 पर मेरठ जिला जज ने मुस्कान और साहिल को सजाए मौत सुना दी। ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये इसी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत है। 14 अक्टूबर की सुबह 10:10 पर जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। सरकारी वकील और बचाव पक्ष की वकीलों की टीम पहले से ही अदालत में मौजूद थी। कार्यवाही की शुरुआत टीवी स्क्रीन ऑन होने के साथ होती है। इस कोर्ट रूम से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर मेरठ जेल की वीसी रूम में तब तक दोनों आरोपी यानी मुस्कान और साहिल कैमरे के सामने बैठ चुके थे। कोर्ट रूम में सिर्फ जज साहब और कोर्ट का एक स्टाफ साहिल और मुस्कान को देख पा रहा था, क्योंकि टीवी स्क्रीन का रुख जज साहब की तरफ था। जज साहब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले वो मुस्कान से कहते हैं कि आज मैं आपको सजा सुनाने जा रहा हूँ, क्या आपको ये पता है? मुस्कान बिना कुछ बोले खामोशी से हाँ में सर हिला देती है। इसके बाद वो मुस्कान से पूछते हैं कि उसे कुछ कहना है, मुस्कान खामोश रहती है। मुस्कान से जज साहब फिर सजा के बारे में पूछते हैं कि उसे क्या लगता है, मुस्कान तब भी खामोश रहती है। मुस्कान की इस खामोशी के बाद अब जज साहब साहिल का

नाम लेकर उससे सवाल पूछते हैं। क्या आपको पता है कि मैं आपके खिलाफ आज सजा सुनाने जा रहा हूँ? साहिल हाँ में जवाब देता है। फिर साहिल से पूछते हैं, क्या आपको कोई बीमारी तो नहीं? वो ना में जवाब देता है। फिर साहिल से पूछते हैं कि परिवार में कौन कौन है? इस पर वो बताता है कि उसकी एक नानी है। जज साहब साहिल से फिर से पूछते हैं कि क्या वो पढ़ा लिखा है? साहिल जवाब

0: कि उसकी एक नानी है। जज साहब साहिल से फिर से पूछते हैं कि क्या वो पढ़ा लिखा है। साहिल जवाब देता है कि वो ग्रेजुएट है। जज साहब अब अगला सवाल पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता था और क्या बनना चाहता है। साहिल जवाब देता है कि वो सीए बनना चाहता था और अब भी सीए बनना चाहता है। इसी के साथ जज साहब मुस्कान और साहिल से कहते हैं कि फिलहाल आप दोनों जा सकते हैं। कुछ देर बाद सजा सुनाने से पहले आपसे फिर मिलेंगे। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हो जाती है और टीवी बंद। बेशक दोनों पक्षों के वकील साहिल और मुस्कान को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज जरूर सुन रहे थे। अब कोर्ट में सजा पर बहस शुरू होती है। पहला मौका बचाव पक्ष यानी मुस्कान और साहिल के वकीलों को दिया जाता है। बचाव पक्ष की शुरुआत ही इस बात से होती है कि दोनों की कम उम्र और पहले जुर्म को देखते हुए, साथ ही उनके सुधरने की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कम सजा दी जाए, यानी सजाए मौत की बजाय उम्र कैद दी जाए। बचाव पक्ष के वकीलों की दलील ये भी थी कि पिछले 1.5 सालों से जब से दोनों जेल में हैं, उनका बर्ताव अच्छा है। मुस्कान अपना ज्यादातर वक्त पूजा पाठ में लगाती है। इसके बाद बचाव पक्ष के वकील सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए फिर से कोर्ट से ये गुजारिश करते हैं कि मुस्कान और साहिल को मौत की सजा नहीं बल्कि कम सजा यानी उम्र कैद दी जाए। बचाव पक्ष की दलील खत्म होते ही अब सरकारी वकील अपना पक्ष रखते हैं। उनके दलील की शुरुआत ही इस बात से हुई कि मुस्कान और साहिल ने जिस तरह से सौरभ का कत्ल किया, लाश के टुकड़े किए, टुकड़ों को नीले ड्रम में रखा, ये सब कुछ अचानक किया गया कत्ल नहीं था बल्कि ये पूरी प्लानिंग और साजिश के तहत किया गया एक जुर्म था। सरकारी वकील की दलील ये भी थी कि सिर्फ किसी की कम उम्र या उसके अच्छे बर्ताव के आधार पर उसकी सजा कम नहीं की जानी चाहिए बल्कि उस जुर्म की क्रूरता को देखा जाना चाहिए।
1: तकरीबन 1.5 साल ये पूरा केस चला है। 1000 पन्नों की चार्जशीट पुलिस ने यहाँ पर फाइल की थी। 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। ये वो गवाह थे जो डायरेक्ट किसी न किसी तरीके से साहिल या मुस्कान को उन्होंने देखा था। इनमें एक गवाह वो था जिस दुकान से इन्होंने नशीला पदार्थ खरीदा था जो सब्जी में मिला करके खिला दी थी कत्ल वाली रात।
0: सरकारी वकील की ये भी दलील थी कि महज जेल में किसी के अच्छे बर्ताव या किसी के पूजा पाठ करने भर से अदालत को उसके साथ रहम नहीं दिखाना चाहिए। इस दौरान सरकारी वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया। अब तक जज साहब सिर्फ वकीलों की दलील सुन रहे थे, फिर तभी उन्होंने कहा कि ये सही है कि बाकी चीजों के साथ साथ समाज और जनता की ओपिनियन भी सुनी और देखी जानी चाहिए। सरकारी वकील ने अपनी बहस इस मांग के साथ खत्म की कि सौरभ मर्डर केस में मुस्कान और साहिल को अधिकतम सजा यानी सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। कोर्टरूम की घड़ी में तब दोपहर के 12:15 बजे थे, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सजा पर बहस पूरी होने में 2 घंटे 5 मिनट लग चुके थे। इसी के साथ जज साहब अपनी कुर्सी से उठते हैं और अपने चैम्बर में चले जाते हैं। दोपहर बाद अब फैसले की घड़ी थी। डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत के साथ साथ मेरठ की पूरी अदालत 14 अक्टूबर को बंद थी वकीलों की हड़ताल की वजह से। सिर्फ दो ही चीजों के लिए इस हड़ताल में भी सुनवाई की इजाजत थी, एक केस के फैसले की और दूसरी जमानत के मामलों की। लिहाजा बहस पूरी होने के बाद कोर्ट रूम खाली हो चुका था, अब कोई दूसरा केस नहीं था। दोपहर बाद शाम के ठीक 4:10 पर जज साहब कोर्ट रूम में दाखिल होते हैं। फैसला सुनने के लिए अब कोर्ट रूम खचाखच भर चुका था। एक बार फिर से मेरठ जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्कान और साहिल जुड़ चुके थे। कुर्सी पर बैठते ही जज साहब मुस्कुराते हुए मुस्कान और साहिल के वकील से कहते हैं कि आप परेशान क्यों दिख रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं। इसके बाद वो महाभारत का एक अंश पढ़ते हैं, फिर कहते हैं कि दंड भी धर्म है। इतना कहते ही उसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अब जज साहब उनके सामने रखे मॉनिटर पर मुस्कान और साहिल को देखते हुए सिर्फ एक लाइन कहते हैं, आपके किए जुर्म के लिए मैं आप दोनों को मृत्यु दंड देता हूं। इतना सुनते ही कोर्टरूम के अंदर ही अचानक भारत माता की जय के नारे गूंजने लगते हैं। फिर शोर के बीच जज साहब के आगे की कोई भी बातचीत सुनाई नहीं देती।

0: फैसले पर दस्तखत करते हैं और उसके साथ ही कुर्सी से उठ जाते हैं। उन्होंने दस्तखत बॉल पेन से किया था, इसीलिए शायद निप तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जिस वक्त जज साहब ने मुस्कान और साहिल की मौत के फैसले पर दस्तखत किया, तब कोर्ट रूम की घड़ी में शाम के ठीक 4:16 हुए थे। जैसे ही मुस्कान और साहिल को सजाए मौत सुनाई गई, मुस्कान और साहिल दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन बात कोई नहीं की क्योंकि दोनों रो रहे थे। इस फैसले के बाद इस जेल के जेलर साहब से मुस्कान ने एक सवाल पूछा और वो सवाल ये था कि ये जो फैसला आया है इसकी अपील कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। जेलर साहब ने तब जवाब दिया कि एक बार जजमेंट की पूरी कॉपी आ जाए फिर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा और इसके बाद कब अपील करनी है ये भी बताऊंगा और जल्दी अपील करवा देंगे। मुस्कान आज पीले रंग के सूट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठी थी, जबकि साहिल व्हाइट टी शर्ट और जीन्स में बैठा हुआ था। दोनों इस वक्त इसी जेल के अंदर अपनी अपनी बैरक में है, लेकिन अंदर से जो खबर मुझे मिली है वो ये है कि दोनों तन्हा है, किसी से बात करना नहीं चाहते। हाँ, मुस्कान के साथ उसकी बेटी है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, उस्मान चौधरी और हिमांशु मिश्रा के साथ शम्स ताहिर खान, मेरठ। आज तक आज मुस्कान और साहिल मेरठ की जिला अदालत में दो बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। पहली बार सुबह 10:10 पर, जब जज साहब ने उनसे सवाल पूछा और ये बताया कि आज मैं अब फैसला सुनाने जा रहा हूँ, आपको कुछ कहना है, मुस्कान ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद शाम 4:10 पर मेरठ जेल से दोबारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्कान और साहिल पेश हुए। जज साहब ने उनकी तरफ देखा, कुर्सी पर बैठे और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। फैसला सुनाने से पहले जज साहब ने मुस्कान और साहिल की वकील की तरफ भी देखा और कहा कि आप परेशान क्यों हैं, आप घबराई भी क्यों लग रही है, ऐसे परेशान मत होइए, सब अच्छा होगा। फिर लगा कि शायद कम सजा होगी, यानी उम्र कैद, क्योंकि यही मांग की थी बचाव पक्ष के वकील ने। लेकिन इसके बाद उसी मुस्कुराते चेहरे से जज साहब ने अचानक सिर्फ एक लाइन कही, मुस्कान और साहिल की तरफ देखते हुए उसी टीवी स्क्रीन पर जिस पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव थी, कि मैं आप दोनों को आपके जुर्म के लिए मृत्यु दंड देता हूं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दो बार आपकी जेल से मुस्कान और साहिल कोर्ट से जुड़े हुए थे। इन दोनों के बारे में बताएंगे कि आप जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह जुड़े, जब सजा पे बहस हुई, तब उनका रवैया या क्या था, और जब फैसला सुनाया गया तब उन दोनों का रवैया क्या था।
1: 30 तारीख को जब उनका दोष सिद्ध पाया गया था तो ये तो निश्चय था कि निश्चित हो गया था कि या तो उनको आजीवन कारावास की सजा पड़ेगी या मृत्युदंड की सजा मिलेगी। लेकिन सुबह जब पेश हुए, जैसा कि आपने प्रश्न किया, तो उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि मृत्युदंड तक की सजा मिलेगी। माननीय न्यायालय ने उनको जब शाम को पेश हुए तो उनको मृत्युदंड की सजा दी है, सुबह उम्मीद थी कि आजीवन की सजा मिलेगी, तो एक तो ये चेंज हुआ। इसकी वजह से वो जब जैसे ही ये सजा सुनी तो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था में ये सबसे बड़ी सजा है। अब इसके बाद अपीलों का दौर शुरू होता है। उनको बता दिया गया है कि उच्च न्यायालय में इसकी अपील होगी, यदि आप लोग प्राइवेट अपने अधिवक्ता से कराना चाहें तो प्राइवेट कराएं, अन्यथा जेल का ये कर्तव्य है कि हम लोग इसकी अपील स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से कराएंगे। तो जैसे ही निर्णय की प्रति मिल जाती है और इसका फैसला एक दो दिन में वो लोग कर लेंगे, उन्होंने कहा है हमें एक दो दिन में टाइम दीजिए, हम फैसला कर लेंगे कि अपील जेल से करानी है या प्राइवेट, तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
0: वीरेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस वक्त ये जजमेंट आया, शाम 4:15 की बात है, मैं उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद था और यहाँ दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थी, तो जब जज साहब ने कहा कि मैं आप दोनों को मृत्यु दंड दे रहा हूँ, ये सुनने के बाद इन दोनों का मतलब, इन दोनों के बारे में, उनके रिएक्शन के बारे में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं।
1: देखिए, जिस समय आप कोर्ट में मौजूद थे, मैं जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में मौजूद था और दोनों मेरे पास ही खड़े थे। जैसे ही ये सेंटेंस उन्होंने बोला कि मैं आप दोनों को मृत्युदंड की सजा देता हूं, तो दोनों सदमे में गए और एकदम जो है फूट कर रोने लगे, और उसके बाद उनको समझाया गया। बहुत ज्यादा समय देर तक उन्होंने अपना निर्णय नहीं सुनाया। उसके बाद हम लोगों ने उनकी काउंसलिंग की है, डॉक्टर से भी कह दिया है कि आप भी काउंसलिंग करें, लेकिन निश्चित रूप से अभी बहुत ही सदमे में, परेशानी में हैं। तो हम लोग निरंतर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, बंदी पहरेदारों के माध्यम से और स्टाफ के माध्यम से निगरानी कर रहे हैं।
0: जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह फैसला सुनाया गया, तब वो दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में क्या आमने सामने बैठे थे, अलग बैठे थे, क्या?
1: नहीं, खड़े होकर के पेशी होती है और आसपास ही खड़े थे दोनों के, दोनों में लगभग 3 फुट का डिफरेंस था। वो लोग खड़े थे और सामने की तरफ न्यायालय की तरफ देख रहे थे। जैसे ही ये सजा सुनाई तो उनके चेहरे के हाव भाव रंग जो एकदम उड़ गए और रोने लगे।
0: दोनों ने एक दूसरे से कुछ कहा, मुस्कान और साहिल ने, ये फैसला सुनने के बाद?
1: नहीं, कारागार के सभी अधिकारी और वीसी कॉन्फ्रेंस प्रभारी, में स्वयं और उधर जिला जज महोदय थे, दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं।
0: उन दोनों को बात करने की इजाजत थी कि आप कर सकते?
1: नहीं, इस तरह की कोई इजाजत नहीं थी, क्योंकि वीसी जब की जाती है तो केवल न्यायालय से ही बात की जा सकती है और जज साहब के अलावा किसी ने बात नहीं की उनसे।
0: काउंसलिंग के बाद फिर इन दोनों को क्या किया गया? बैरक में ले जाया गया? कौन लोग ले गए, कैसे ले गए? थोड़ा
1: काउंसिल के बाद जो महिला बंदी रक्षक थी और जो प्रधान महिला बंदी रक्षक थी, उनके साथ मुस्कान को उसकी बैरक में भेज दिया गया। उसकी कन्विक्ट के अब कपड़े वगैरह उनको दिए जाएंगे, जैसे ही ऑर्डर प्राप्त हो जाता है कन्विक्ट नंबर दिया जाएगा। ऐसे ही साहिल को जो है जो कन्विक्ट बंदियों का नंबर दिया जाएगा और जो कन्विक्ट बंदियों के लिए बैरक है उसमें से रखा जाएगा। मुस्कान की बैरक, चूंकि महिला, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि जिन महिलाओं के पास बच्चे हैं वो एक साथ ही एक बैरक में ही रहेंगी, तो उसी बैरक में रहेगी।
0: मुस्कान के अलावा ऐसी और भी कोई महिला कैदी है जिन्हें यहाँ डेथ पेनल्टी मिली हो?
1: नहीं, वर्तमान में आज अकेली महिला है जिसको डेथ पेनल्टी मिली है।
0: इस फैसले के बाद मुस्कान ने किसी भी जेल के स्टाफ से कोई ऐसी बात, अपने दिल की बात या कुछ कही?
1: हाँ, उसने मुझसे ये कहा, मुझसे निकलते वक्त ये कहा कि वो ये समझना चाहती है कि अपील कैसे होती है। उसको हमने बताया कि आर्डर की एक बार प्रति आ जाए, उसके बाद पढ़ के आपको गाइड पूरा किया जाएगा और विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
0: ऐसे कैदी जिनको सजाए मौत मिलती है, जैसे अभी आपने शुरू में कहा काउंसलिंग की जाती है, अब चूंकि उन्हें पता है कि सजाए मौत मिल चुकी है, दोनों बैरक में हैं, तो ऐसे फैसले आने के बाद जेल स्टाफ ऐसे कैदियों के लिए कुछ अलग से इंतजाम करता है कि उनके ऊपर निगरानी रखने या उनको मतलब नजरों से दूर नहीं रखना, इस तरह की कोई खास व्यवस्था होती है?
1: जी, प्रयास ये किया जाता है कि ऐसे बंदियों के ऊपर, एक तो लंबादारों के माध्यम से जो पुराने कन्विक्टेड प्रिजनर्स होते हैं जो जेल में सहायता करते हैं जेल स्टाफ की जेल संचालन में, उनके माध्यम से और जेल स्टाफ के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखते हैं, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, वो टॉयलेट भी जाएगा तो हमारे पर्यवेक्षण में जाएगा। ऐसे ही महिलाओं में चूंकि सीसीटीवी आदि हम लोग नहीं लगा सकते हैं, सीसीटीवी अलाउ नहीं है, तो वहां जो महिला बंदी रक्षक हैं उनके माध्यम से निगरानी रखी जाती है। पुरुष बैरक में सीसीटीवी भी है, उनके माध्यम से भी कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जाती है।
0: चूंकि उसकी एक बेटी है जो यहाँ रह रही है और ये शायद कानून में है कि 6 साल तक जेल में रख सकते हैं, तो अभी तक कभी उसने बात की है कि वो 6 साल तक यहीं रखेगी या कोई ऐसा उसने फैसला किया?
1: नहीं, वो तो ये उम्मीद रखती है कि बेटी उसके पास ही रहे, रादर वो तो दूसरी जो बेटी है उसके बारे में भी बार बार पूछती है तथा उससे मिलना चाहती है, तो 6 साल तक उसका, जब तक उसके साथ बेटी रह सकती है यहीं रखेगी, उसका कहना ये है।
0: दूसरी बेटी से जो बड़ी बेटी, उससे मिलने की बात आई थी, उसकी ख्वाहिश थी, तो क्या ऐसी वजह थी कि वो मिल नहीं पाई?
1: देखिए, कारागार की तरफ से कोई वजह नहीं थी, वो लेकर के उसके परिजन या जिसके पास भी है उसके माता पिता के पास बताते हैं, वो आए नहीं मुलाकात के लिए। यदि वो आएंगे तो नियमों के अंतर्गत हम जरूर मिलाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, उसने पूछा कि अगर वो नहीं आते हैं तो हम कैसे मिल सकते हैं, क्या प्रावधान है, तो उसको बता दिया गया कि वो एक पत्र लिख सकती है अपने परिजनों को, अपनी बेटी को, जिसमें वो उनसे कह सकती है जो भी उसे कहना है, बुलाने के लिए या अन्य कोई बात कहनी है, तो उसने पत्र लिखने की अनुमति मांगी थी, वो उसको दे दी गई है। अभी तक उसने पत्र लिख के नहीं दिया है, जैसे ही पत्र लिखती है उसको हम उसके परिजनों को भेजेंगे।
0: बेटी के अलावा आज तक मुस्कान से पिछले 1.5 सालों में कोई मिलने आया, उसका परिवार का कोई भी सदस्य?
1: नहीं, उसके कोई मिलने नहीं आया और बेटी भी नहीं आई। बेटी जो यहाँ हुई, जब वो आई थी तो प्रेग्नेंट थी, जब बेटी यहाँ हुई वही बेटी उसके साथ रहती है।
0: चूंकि अब वो एक कन्विक्टेड है, सजा हो चुकी है, तो ऐसे कैदियों से जेल में काम भी कराया जाता है, तो आप लोगों ने कुछ तय किया कि इन दोनों से, साहिल से और मुस्कान से, जेल के अंदर किस तरह का काम कराएंगे?
1: देखिए, अभी मैंने डिटेल्ड ऑर्डर तो देखा नहीं, लेकिन सश्रम कारावास जरूर होगा, तो हम इससे तो महिला बैरक में जो हमारे कौशल विकास के कार्य, सिलाई कढ़ाई और फैक्ट्री है जिसमें कि कपड़े आदि बनते हैं, वो काम कराएंगे, तथा साहिल बागवानी और खेती का काम पहले से ही कर रहा था, उसको उसी काम में लगाएंगे।
0: तो फैसला हो चुका है, मुस्कान और साहिल के हिस्से सजाए मौत आई है, दोनों मेरठ जेल में है। हालांकि उनके पास अभी कई रास्ते हैं, 90 दिनों के अंदर उन्हें इस फैसले को चुनौती देनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने का भी मौका मिलेगा, यानी लड़ाई अभी लंबी है। मौत की सजा बेशक सुना दी गई है, लेकिन इस सजा पर तामील कब होगी कहना मुश्किल है। तो वारदात की इस खास पेशकश में मेरठ कोर्ट से फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
3: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ। देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, लखनऊ के शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी श्रद्धा दुबे का एक वीडियो सामने आया। श्रद्धा ने वीडियो में कहा कि उसके नाम को किसी के साथ ना जोड़ा जाए। श्रद्धा दुबे ने कहा कि शिवा शर्मा की हत्या नहीं हुई, उसने आत्महत्या की है। श्रद्धा दुबे का दावा है कि पुलिस के सामने आकर वो सच बयान दर्ज कराने को तैयार है। मॉडर्न लड़की का नाम आया है, मॉडर्न लड़की का नाम आया है जिसका नाम श्रद्धा दुबे है, इन्फ्लुएंसर है, मॉडल है, और शिवा शर्मा हत्याकांड में इस पर आरोप लगे हैं। कई सारे और भी आरोप श्रद्धा दुबे पर लगे हैं कि उसके कई रसूखदार लोगों से संबंध हैं, माफिया से संबंध के आरोप उस पर लगे हैं। ये भी कहा गया कि वो ब्लैकमेल कर रही थी, ये भी कहा गया, ये भी आरोप श्रद्धा दुबे पर लग रहे हैं कि वो माफिया के साथ संबंध रखकर लोगों को ब्लैकमेल किया करती थी।

0: श्रद्धा अब्बा की आवाज हम आपको नहीं सुना पाए, लेकिन श्रद्धा ने यही कहा है कि मेरा नाम किसी के साथ जोड़ा ना जाए, क्योंकि श्रद्धा दुबे पर यह आरोप लग रहे थे कि उसके रसूखदार लोगों, उसके माफिया के साथ संबंध हैं और वो अपने संबंधों का गलत इस्तेमाल करती थी, वो धौंस दिखाती थी, लोगों को ब्लैकमेल करती थी। इस तरह के आरोप उस पर लग रहे हैं, कई लोगों के साथ, कई माफिया के साथ, कई रसूखदार लोगों के साथ श्रद्धा का नाम जोड़ा गया। तो श्रद्धा अब खुद ये कह रही है कि उसका नाम किसी के साथ ना जोड़ा जाए, वो खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दर्ज कराने को तैयार है। और शिवा शर्मा हत्याकांड में भी श्रद्धा पर इसी तरह के सारे आरोप लगे थे, ब्लैकमेल के आरोप लगे थे। और एक बार फिर से सुनवाने की कोशिश करते हैं।
1: बहुत बहुत रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से कि प्लीज़ मेरे नाम को ऐसे मत उछालिए, आप हर किसी के साथ मेरा नाम मत जोड़िए। आप लोगों ने कई नेताओं, कई अधिकारियों के साथ मेरा बेवजह का नाम जोड़ा है, क्योंकि हाँ, अगर वो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से कोई ऐड है तो आप मेरे बारे में ऐसी अफवाह मत फैलाइए। मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, ठीक है। मीडिया वाले से मेरा बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे बारे में अफवाह मत फैलाइए। मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मैं पुलिस में आके बयान देना चाहती हूँ। मैं उन्हें सब कुछ सच सच, जो कुछ भी है, मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी किसी लड़की के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि मेरा क्या गुनाह है, मैंने कुछ नहीं किया है। और जो कुछ भी सच है शिवा शर्मा कांड से रिलेटेड, कि उसकी कोई हत्या नहीं हुई थी, वो एक सुसाइड था, वो मैं आप लोगों से बताने वाली थी। लेकिन मेरी कंडीशन देखिए कि मैं किस कंडीशन में हूँ। मैं ठीक कंडीशन में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी इस समय फिजिकली फिट नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि किसी भी बड़े अधिकारी या नेताओं के साथ मेरा नाम मत जोड़िए जिसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरा
0: छोटा सा ब्रेक, तुरंत होते हैं उपस्थित।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

जम्मू में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूबे नजर आए। आरएसपुरा के धान के खेतों में बारिश से फसल को नुकसान पहुंचा है। कटाई से पहले फसल बर्बाद होने से किसान परेशान हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पंजाब के फाजिलका में अनाज मंडी में पानी भरने से धान की फसल भीग गई। पानी के बीच अपनी उपज बचाने के लिए किसान मशक्कत करते नजर आए। दिल्ली के किशनगढ़ में रामलीला मैदान में पानी भरने से मंच और कलाकारों का सामान भीग गया। वहीं नोएडा के सेक्टर 95 अंडरपास में पानी में फंसी कार से लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकलना पड़ा। सभी लोग सुरक्षित बताए गए। हिमाचल में बारिश के बाद मौसम साफ होने के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। बारिश ने किसानों की फसल से लेकर शहरों की व्यवस्थाओं तक को प्रभावित किया है। अब नजरें राहत मुआवजे और जल निकासी के इंतजामों पर हैं। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: पहाड़ी इलाका, आस्था का स्थल और उस पर कुदरत की बिखरती हुई सुंदरता, ये तीनों जब आपस में मिल जाएं तो नजारे ही अद्भुत हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आई हैं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब से, जहां मौसम ने अचानक करवट ली और शुरू हो गई शानदार बर्फबारी, जिसने पूरे नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया। देखते ही देखते हेमकुंड साहिब और आसपास का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां तक बस बर्फ ही बर्फ बिखरी पड़ी है। बर्फबारी होने की वजह से इलाके का तापमान भी कम हो गया है। हेमकुंड साहिब में करीब आधा फीट तक बर्फ जम चुकी है, लेकिन मौसम की ये करवट श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पा रही। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु मत्था टेकने हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। चमोली के निचले इलाकों में बारिश की फुहारे हैं और ऊंचाई पर पहुंचते ही यही बारिश बर्फ के फाहों में बदल रही है। बद्रीनाथ धाम के आसपास के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमालय की चोटियां धीरे धीरे सफेद रंग में रंगने लगी हैं। रुक करते हैं बद्रीनाथ का। यहाँ के संतो पंथ मार्ग चक्र तीर्थ में इस सीजन की पहली बर्फबारी ने इलाके की सुंदरता बढ़ा दी है और मौसम का ये बदलता अंदाज बेहद खूबसूरत भी नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब में बर्फ जम रही है, बद्रीनाथ के पहाड़ सफेद हो रहे हैं और संतो पंथ के रास्ते पर सर्दियों की पहली दस्तक दिखाई दे रही है। मौसम बदल जरूर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है, बल्कि कुदरत का ये खूबसूरत नजारा हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम तक मौसम की मेहरबानी देखने को मिल रही है। यहाँ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। सिक्किम में पिछले दो दिनों से बारिश जारी है, जिससे मौसम कूल कूल बना हुआ है। उधर श्रीनगर के पास मुगल रोड की पीर की गली में भी हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। बदलते हुए मौसम के मिजाज का असर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक दिख रहा है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर से ढकने लगी हैं और अभी से ही जाड़े के मौसम का एहसास होने लगा है। चमोली से कमल लेंसलोडी, दार्जिलिंग से कई संसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट

0: दिल्ली में अभिजीत दीपके पर एयरपोर्ट पर लोगों का विरोध, आंदोलन पर नाराज। कांग्रेस जनता पार्टी 16 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। दीपके बोले, जेल में डाल दो परवा नहीं। सौरभ आशुतोष 5 दिन के लिए तिहाड़ भेजे गए। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के खाते में दिवाली से पहले 5,000 रुपए डालने की घोषणा की। नागपुर में विपक्ष का सरकार पर हल्ला बोल। कांग्रेस नेता विजय वटेट्टीकार बोले, सरकार किसानों की भावनाओं के साथ खेल रही। महाराष्ट्र को नवरात्र का तोहफा, पुणे के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को 50 एमबीबीएस सीटों की स्वीकृति। शैक्षणिक सत्र 2027-28 से मिलेगा दाखिला। मेहुल चौकसी के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। गीतांजलि जेम्स से जुड़े धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई। फिल्म आज का महिषासुर का फर्स्ट लुक जारी। टेरेंस लुइस के साथ पद्मिनी कोल्हापुरी, चंदन रॉय, आयशा एवन आएंगे नजर। फिल्म खोसला का घोसला 2 की नई रिलीज डेट का ऐलान, अगले साल 5 मार्च को आएगी फिल्म। हनुमांश अंश पर पवन पुत्र की कृपा बरकरार। 68वें दिन 337 करोड़ से अधिक की कमाई। अजय देवगन की दृश्यम 3 ने रचा इतिहास, 12 दिन में 500 करोड़ पार। 2026 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म। सऊदी अरब के अरामको पर यमन के हुती विद्रोहियों के हमलों से दामों में तेजी आई। क्रूड ऑयल $160 प्रति बैरल के पार निकल गया। नवरात्र से दिवाली तक व्यापारी संगठन सीआईटी ने 7 लाख करोड़ के व्यापार का अनुमान लगाया। कपड़े, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सबसे अधिक रौनक। अप्रैल 2029 से नई कारों और एसयूवी पर यूरो 7 जैसे सख्त मानक होंगे लागू। इसके बाद अगले 2 से 3 वर्ष में अलग अलग फेज में बाकी वाहनों के लिए भी BS7 होगा लागू। 1 महीने में चने के दाम में 18% का उछाल। दिल्ली NCR में बेहतर क्वालिटी के प्याज के दाम 80 रुपए किलो तक पहुंचे। चीनी भी त्यौहार में महंगी हुई। मेट्रो शहरों के 45% के मुकाबले Tier 2 शहरों में 60% लोग बाय नाउ पे लेटर कर रहे हैं इस्तेमाल। डिजिटल उधारी बढ़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत आपका मुंबई मेट्रो में। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 16 तारीख को दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा लहराने का ऐलान किया। वीडियो जारी कर दीपके ने कहा कि उनके सहयोगियों को तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया और इसीलिए वो 16 तारीख को 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा लहराएंगे। जो लोग आना चाहें वो आए, जो नहीं आ सकते वो अपने घरों पर तिरंगा लहराएं।
1: जैसे कि आप लोगों को पता है, सौरभ और आशु को बस तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है। तो मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 16 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आप सब सेंट्रल पार्क कैनॉट प्लेस में आइए तिरंगे के साथ। वहां पर हम अपना तिरंगा लहराएंगे और हम बता देंगे कि वेविंग अ तिरंगा इज नॉट अ क्राइम। और जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते वो अपने अपने शहरों में शाम को तिरंगा मार्च निकालिए और बता दीजिए इन लोगों को, इन तानाशाह को, कि हमारा तिरंगा हमारा प्राइड है और उसे लहराना कोई क्राइम नहीं है। हो सकता है इसके बाद मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरा तिरंगा मेरा प्राइड है और उसे मैं लहरा कर ही रहूंगा।
0: जंतर मंतर पर सीजेपी नेताओं ने प्रतिबंध के बावजूद प्रदर्शन कर नारेबाजी की थी। इसके बाद सीजेपी के 3 नेताओं में से सौरभ दास और आशुतोष रंका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अजिंक्य शिंदे को जमानत मिल गई। अभी तक राहुल सीजेपी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन जंतर मंतर से जुड़े मामले में राहुल का समर्थन और फिर अभिजीत दीपके का थैंक यू कहना चर्चा का विषय बना है। अब अभिजीत दीपके, नेहा बोरा, कपिल सिब्बल कल करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस।
2: क्यों देश को खराब कर रहा है? क्यों से देश को खराब कर रहा है?
3: चोर है, चोर है।
4: देश को खराब है?
3: अरे देश को खराब कर।
2: क्यों देश को खराब कर रहा है? क्यों से देश को खराब कर रहा है?
3: चोर है, चोर है।
5: सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका स्वागत इस तरह से होगा। ऐसा दूसरी बार है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दीपके को सरप्राइज में विरोध मिलता है।
6: भारत माता की जय।
7: जो लगाना है लगा दो। आई एम नॉट अफ्रेड।
5: जंतर मंतर पर भी सीजेपी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने सरप्राइज दिया और मिनटों में पकड़ लिया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से रोकने के बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से दो को, सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।
1: जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो, ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया।
5: तिहाड़ जेल में सौरभ दास को जेल नंबर 2 में रखा गया है, वहीं आशुतोष रांका को जेल नंबर 4 में रखा गया है। दोनों को तिहाड़ जेल की अलग अलग बैरक में रखा गया है। अब सवाल ये है कि सीजेपी नेताओं को तिहाड़ क्यों भेजा गया? क्या इसकी वजह सख्त नाकेबंदी के बावजूद मंगलवार सुबह प्रतिबंधित क्षेत्र जंतर मंतर में घुसना है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तीनों के खिलाफ BNS की कई धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया, फिर तीनों को बुधवार संसद मार्ग की ACM कोर्ट के सामने पेश किया, जहां पर पिछली जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। दरअसल बेल बॉन्ड की शर्त का उल्लंघन करने पर जिन्हें अदालत जेल की सजा सुनाती है, इस तरह के मामले में तुरंत राहत के लिए किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, आरोपियों को सजा काटनी ही पड़ती है। जंतर मंतर को लेकर प्रशासन इसलिए भी सख्त है क्योंकि अब इसमें पाकिस्तानी साजिश के एंगल मिले हैं।
6: ऐसे हैंडल्स हैं जिनकी IP इंडिकेट करती है कि वो पाकिस्तान से क्रिएट किए हुए हैंडल्स हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है।
5: जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना मना है, फिर भी कनॉट प्लेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रदर्शन में घायल NSUI के छात्रों को लेकर राहुल गांधी हाजिर हुए, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए, जिसके बाद जंतर मंतर को लेकर सवाल और गहरा गया है।
7: ये हिंदुस्तान, अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए।
0: महाराष्ट्र में सूखे के संकट के बीच फडणवीस सरकार ने किसानों को दिवाली से पहले बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सरकार किसानों के खाते में 5,000 रुपए डालेगी। वहीं सरकार कृषि कर्ज माफी योजना लागू करने की भी तैयारी कर रही है, जिससे सूखे से परेशान किसानों को राहत मिलेगी।

0: आप किसानों को दिवाली गिफ्ट। सूखा संकट में हर किसान के खाते में आएंगे 5,000। सरकार कृषि कर्ज माफी योजना करेगी लागू। ₹12,68,00,000 की वीवीआईपी गाड़ियों पर विपक्ष ने घेरा। महाराष्ट्र का 75% हिस्सा सूखे से प्रभावित है। फडणवीस सरकार ने बाकायदा सूखे का ऐलान किया हुआ है। मानसून में कम बारिश की वजह से किसानों की लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। इसी वजह से महायुति सरकार ने दिवाली से पहले बड़ी सौगात और राहत देते हुए हर किसान को 5,000 की अंतरिम मदद देने का फैसला किया है। यह फैसला सूखा घोषित होने और दिवाली से पहले केंद्र से मदद मिलने की उम्मीद नहीं होने के बाद लिया गया है।
1: पहिल्यांदा आपण 265 जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला होता, त्यानंतर काही जिल्ह्यातनं तक्रारी देखील होत्या, तालुक्यातनं, जिल्ह्यातनं नाही, 265 तालुक्यांमध्ये काही तालुक्यातनं तक्रारी देखील होत्या। आता पुन्हा संपूर्ण ट्रिगर 1 आणि ट्रिगर 2 या दोन्हीचा आढावा घेऊन 305 तालुक्यांमध्ये आज आपण दुष्काळ जाहीर केलेला आहे। 40 तालुके आता या यादीमध्ये वाढलेले आहेत, त्यामुळे बहुतांश महाराष्ट्र ज्या ज्या भागामध्ये शेतकरी दुष्काळापासून होरपळलेला होता त्या त्या भागामध्ये आता त्या भागाला दुष्काळाच्या ज्या 12 सवलती आपण घोषित केलेल्या आहेत या सवलती देण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे।
0: कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सूखे की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार कृषि कर्ज माफी योजना भी लागू कर रही है, साथ ही बैंकों और क्रेडिट सोसाइटियों को किसानों से वसूली शुरू नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
2: महाराष्ट्र में सूखे की परिस्थिति बहुत भयानक है, चिंताजनक है और ये चिंता सरकार जानती है, इसलिए जब किसानों के खेत में, मैं खुद भी गया, मुख्यमंत्री भी गए, हमारे सभी मंत्रीगण गए, शेतकरी किसानों से संवाद भी किया, उनसे बातचीत भी की, उनका दुखड़ा भी सुना और उनकी डिमांड थी कि किसान का कहना था कि सूखा जाहिर करो। सूखा सरकार ने जाहिर कर दिया है, अभी 12 जो कलमी जो सहूलियत है उनको जरूर मिलेगी, जो कर्ज वसूली है वो रुकाई जाएगी, कर्ज का पुनर्गठन जो है रिस्ट्रक्चरिंग वो होगी, उसके साथ ही जो स्टूडेंट की फीस है वो भी पूरी तरह माफ हो जाएगी और पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था, जितनी भी व्यवस्था है, 12 सहूलियत जो है ये जब सूखा हम जाहिर करते हैं वो तो मिलेगी। लेकिन हमारी सरकार ने कहा था कि किसानों की दिवाली हम काली नहीं होने देंगे और दिया हुआ शब्द पूरा करने वाली हमारी सरकार है और आज ये 5,000 रुपया किसानों के खाते में अग्रिम रूप से देने का निर्णय लिया है और वो दिवाली से पहले उनके खाते में किसानों को मिल जाएंगे।
0: महाराष्ट्र कैबिनेट की मीटिंग के बाद सीएम फडणवीस ने बताया कि सूबे में कुल 358 तालुका हैं, जिनमें से 305 तालुका में सूखा घोषित किया गया है।
3: महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति काफी भीषण है, तकरीबन 360 तालुकाओं में से 305 तालुकाओं को सूखा ग्रस्त डिक्लेयर कर दिया गया है। अब केंद्र से जो मदद आनी है वो दिवाली से पहले नहीं आ पाएगी, इसलिए मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंस किया है कि दिवाली से पहले किसानों के अकाउंट में 5,000 रुपये राज्य सरकार जमा करेगी ताकि किसानों की आने वाली दिवाली एक तरह से काली दिवाली ना हो।
0: वहीं महाराष्ट्र में सूखे के बीच 12,68,00,000 की 44 नई वीवीआईपी गाड़ियों के बेड़े को मंजूरी देने के बाद विपक्ष हमलावर है।
4: महंगी गाड़ियां न खरीदे तो ये तो उन्होंने पहले कहा था, लेकिन बाद में हमने देखा कि 9,000 करोड़ के हवाई जहाज में स्वयं घूम रहे, करोड़ रुपया विदेश दौरों के ऊपर खर्च हो रहा है और करोड़ों रुपये की गाड़ियां घुमा रहे। अभी उन्होंने लोगों को सलाह दी थी कि नहीं, विदेश गमन नहीं करना चाहिए, ना कि सोना भी खरीदे आप, और अभी परिस्थिति यह है कि यह महाराष्ट्र की जो सरकार है करोड़ों रुपया गाड़ियों में खर्चा कर रही है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सूखा पड़ने जा रहा है, लोगों के हाल खराब है, आज जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का संकट भी वहां है, ऐसे वक्त में ये कितनी बड़ी असंवेदनशील सरकार है इसका ये प्रतीक दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर इनकी भूमिका स्पष्ट है, आग लगे बस्ती में अपन अपने बस्ती में। हम कड़े शब्दों में इस भूमिका की, भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति की हम निंदा करते हैं।
0: महाराष्ट्र सरकार ने आने वाले खास मेहमानों और राज्य के अतिथियों के लिए 12 करोड़ 68 लाख की कीमत वाली 44 नई गाड़ियों की खरीद को मंजूरी दी है। इस मंजूरी में सबसे बड़ा खर्च एक बख्तर बंद टोयोटा लैंड क्रूजर 300 पर है, जिसमें हाईग्रेड बैलिस्टिक सुरक्षा है और जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ 7 लाख रुपए है। 44 गाड़ियों के बाकी ऑर्डर में 32 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, जिसमें हर कार की कीमत 20,71,000 रुपए, 2 फॉर्च्यूनर 7 अर्टिगा, 1 बस समेत 1 टोइंग गाड़ी शामिल है। विपक्ष की आलोचना पर सरकार कह रही है कि जो जरूरी खर्च है वो तो करने ही पड़ते हैं।
5: देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप ताकत नहीं दोगे तो फिर प्रशासन चलेगा कैसे? तो मेरे ख्याल से देखिए, प्रायोरिटी तो हमने सेट की है। अगर मैं कहूंगा, अगर एक खादा मैं डिस्ट्रिक्ट के लीडर को कहूंगा, एक ऑफिसर को कहूंगा, नहीं आप डिस्ट्रिक्ट का दौरा कीजिए, उनके पास गाड़ी नहीं रहेगी या फिर अप्रोप्रिएट आपके उनके पास अगर कोई साधन नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से दोनों चीजें हैंड टू हैंड जरूरी होती है।
6: हम लोग के लिए तो पहला प्राधान्य दे रहे हैं, अब इनको कार्य दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, लेकिन इनको जो हम लोग अभी कर रहे हैं, अभी 5,000 रुपए अग्रिम देने का शुरू किया, सब जो हम लोग करें उसके जरा ध्यान दे दो।
0: आम लोग तो हर दिन ट्रैफिक में फंसते हैं, लेकिन कभी कभी वीवीआईपी भी जाम के जंजाल में फंस जाते हैं। आज कैबिनेट मीटिंग में जाते वक्त जाम की वजह से कई मंत्री अपनी गाड़ियां और सुरक्षा छोड़कर पैदल ही चल पड़े। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे और ग्रामीण विकास मंत्री जय कुमार गोरे अपनी गाड़ियों से बाहर निकले और बाकी का रास्ता पैदल तय किया।
7: महाराष्ट्र के कई गांव इस वक्त सूखे की चपेट में हैं, इसीलिए विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या करोड़ों रुपए सरकारी गाड़ियों पर खर्चा करना जरूरी है? वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि कई स्टेट हेड ऑफ स्टेट्स हैं, जो स्टेट में आते हैं उनके लिए एक अच्छी गाड़ी की जरूरत है, और महाराष्ट्र इतना गरीब भी नहीं है कि इतनी गाड़ियां ना खरीद सके। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
8: नाला सोपारा में गरबा खेलने वाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में जिम ट्रेनर आरिफ शेख को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरिफ के मोबाइल से 30 से अधिक अश्लील वीडियोस भी ढूंढे। 12 अक्टूबर को एक लड़की ने इस आरोपी के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। अब मोबाइल से डिजिटल सबूत डिलीट करने के आरोप भी इस पर हैं। बीजेपी नेता गिरीश सुमैया ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर जांच अधिकारियों से मुलाकात की, मामले में बड़े रैकेट की आशंका व्यक्त की।
9: 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियां, फिर कोई बोरीवली की है, कोई कांदीवली की है, कोई ठाणे की है, कोई नवी मुंबई की है, ये बहुत बड़ा रैकेट है। इनके वीडियो बनाए जाते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, शादी ब्याह की लालच दी जाती है, वो वीडियो फिर बाहर के देशों में बेचे जाते हैं। वसई विरार पुलिस आयुक्त से भी मैंने विनंती की है, उन्होंने मान्य किया है, वो स्वयं इसमें ध्यान देंगे, दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट नाला तोपारे के द्वारा उजागर हो रहा है।
8: महाराष्ट्र में गन्ने के दाम को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया। स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग रोको आंदोलन शुरू किया। कोल्हापुर में पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोगनोली टोल प्लाजा के पास किसान सड़कों पर उतरे, किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। किसानों की प्रमुख मांग है कि चीनी का न्यूनतम मूल्य बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलो किया जाए। इसके साथ ही एथेनॉल की खरीद दर 70 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने की मांग किसान कर रहे हैं।
10: राज्य में सूखे की वजह से तकलीफ में आए हुए सभी किसानों को महाराष्ट्र सरकार ने आज ही पर पर्सन 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दिवाली इस किसानों की अच्छी जाए, इसलिए सरकार ने कहा है कि और भी कुछ कदम है वो उठाए जाएंगे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो गन्ने की किसानी करते हैं, वह सभी किसानों का कहना है कि ये जितने मिल रहे हैं पैसे वो कम है, और अलग से FRP हो या फिर कुछ इसके लिए और प्रावधान करने हो, वो सभी करने अहम, ये उनका कहना है। और इसलिए पिछले 48 घंटों से मुंबई से बंगलुरु जाने वाला जो एक्सप्रेसवे है उस पर अलग अलग जगह ट्रैफिक जाम है। पुलिस कोशिश तो कर रही है कि किसानों को हटाया जाए, लेकिन फिर भी अभी तक किसान राजी नहीं हुए हैं। और राजू शेट्टी हो या फिर ये किसानों के और भी कोई नेता हो, इन सभी का कहना है जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये चक्का जाम कायम रहेगा। कैमरा पर्सन गोपाल हरदे के साथ ओमकार वाबले, आज तक कोल्हापुर।
8: ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने 80,000 करोड़ रुपए के महादेव बैटिंग सिंडिकेट मामले में एबिक्स ग्रुप के चेयरमैन विकास गर्ग, इज माई ट्रिप के फाउंडर निशांत पिट्टी, 40 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के रायपुर कोर्ट में अपनी चार्जशीट में बताया कि शेफाली बग्गा ने उस पैसे को सरेंडर कर दिया जो उसे इस गैर कानूनी ऐप के प्रमोशन के लिए सिंडिकेट के सदस्यों से मिले थे।
11: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हाल ही में महादेव ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट केस में छठी चार्जशीट फाइल की है। आपको बता दें कि यह चार्जशीट रायपुर में कोर्ट में फाइल की गई है और इसमें करीब 42 लोगों पर यह चार्जशीट फाइल की गई है। इसमें मुख्य नाम है विकास गर्ग, जिन्हें चार्जशीट किया गया है, जिन्हें जुलाई में दिल्ली से उनके घर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया था। उसी के एक महीने पहले उनकी करीब 940 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच कर ली थी। अब
8: छोटा सा ब्रेक, होते हैं उपस्थित, देखते रहिए मुंबई मेट्रो।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आ गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: हाँ चाचा, अखबार भाँच रहे हैं।
2: टेस्ट
0: चल रहा है, भैया के चले गए, दीदी पहुंच गई है, चिचा कब जाएंगे?
2: अरे भैया तो 10 में हिस्सा हम ले लेते हैं, ये सब तुम लोग का ऐसा, हम अपना मुद्दा उठा चुके
0: पुराने। अच्छा, कब उठाए?
2: जेपी के टाइम पे मुद्दा उठाए।
0: अच्छा
2: हाँ, तो जहाँ वो मुद्दा जब हम ऐसा रख देते थे तो फिर रख देते थे फिर मुद्दा। ये नहीं तुम लोग इधर आए तो मतलब पुलिस आई इधर भागने लगे दन दन दन दन कर गए, ऐसा नहीं, ये सब नहीं था अपना मामला
3: जी,
2: मुद्दा मजबूती से रखते थे।
0: हम तो सुने मुद्दा टूटा भी है आपका।
2: टूटा भी था, सही बात है, जब कभी ऐसे कार्रवाई चलती थी दर्द बिता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर मुद्दा रखे थे हाँ एकदम मुद्दा मजबूती के साथ रखे, सरकार हिला दिया एकदम।
0: अच्छा
2: और क्या
0: आपका मतलब, हम लोग डर जाते हैं?
2: और क्या डर जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पुलिस सिटी में बचे उसमें भागने लगते हो।
0: बढ़िया, आप डरते नहीं है, पुलिस आ रही है
2: किधर।
0: चाचा हम खेल गए अब की।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में भारत रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का विश्वास देता है। इस साल अप्रैल जून क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है और यह ग्रोथ मजबूत नींव पर खड़ी है। 12-13 साल पहले भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4% से भी अधिक था। पिछले साल यह घटकर लगभग 0.5% यानी 0.61% रह गया है। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $700 बिलियन से अधिक है। हमारा बैंकिंग सिस्टम अनेक देशों में सबसे मजबूत स्थिति में है। साथियों, इसी मजबूती का परिणाम है कि भारत की सॉवरेन रेटिंग्स अपग्रेड की जा रही है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: दिल्ली पुलिस तुम लट्ठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
2: पहले भरपेट भोजन, बाद में आंदोलन।
3: डोंट ट्विस्ट।
1: क्या हुआ?
3: डोंट ट्विस्ट लप से।
1: हर आदमी में
3: होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखियो गौर से देखियो।
2: कितना घटिया था यार तुम्हारा। घटिया तरीके से
3: लप लप लप।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

इंडिया गेट पर धरने पर बैठे अंकिता के माता पिता से मिलने के बाद राहुल का पोस्ट, चार साल से नहीं मिला इंसाफ। 2022 में अंकिता का हुआ था मर्डर, धामी सरकार का बयान, मामले की कराई हमने निष्पक्ष और तेज जांच। राहुल के साथ एनएसयूआई छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थाने, बदले में पुलिस ने बदसलूकी का जारी किया वीडियो। दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके का एयरपोर्ट पर लोगों ने किया विरोध, नाराजगी जताई, दीपके ने 16 अक्टूबर को नॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की अपील की। वाराणसी से सीएम ने अखिलेश पर बोला धावा, कहा समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या पराया धन अपना। और मेरठ नीले ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी, जज ने कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, सौरभ के शव के दोनों ने किए थे टुकड़े।

इंडिया गेट पहुंचे राहुल गांधी, धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता पिता से मिले। 2022 में उत्तराखंड में हुआ था अंकिता का मर्डर। दिल्ली में अभिजीत दिवके का एयरपोर्ट पर लोगों ने विरोध किया, आंदोलन पर नाराजगी जताई। कोकलूज जनता पार्टी 16 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। दिवके बोले, जेल में डाल दो परवाह नहीं। सौरभ आशुतोष 5 दिन के लिए तिहाड़ भेजे गए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अभिजीत दिवके, नेहरा बोरा और कपिल सिब्बल, सौरभ दास और आशुतोष टांका की गिरफ्तारी समेत कई मुद्दों पर फोकस रहेगा। राहुल

एनएसयूआई की लीगल टीम ने पुलिस को सौंपे आरोपों के सबूत एफआईआर दर्ज नहीं होने पर अदालत जाने की बात कही। परविंदर सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए आज पंजाब बंद का ऐलान। किसान संगठनों के साथ कांग्रेस बीजेपी अकाली सभी ने किया समर्थन। आज पीएम मोदी लद्दाख में 3,350 करोड़ की 5 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। लेह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल और जल संरक्षण तक की देंगे सौगात। लद्दाख को मिलेगी 298 किलोमीटर लंबी निमू पदुम दर्चा सड़क। सेना की रणनीतिक कनेक्टिविटी होगी मजबूत। 9 MV हाइड्रो प्रोजेक्ट। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क। 40 गांवों में जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे मोदी। वाराणसी शिक्षक सम्मेलन में सीएम योगी का बड़ा समाजवादी पर हमला। बोले, समाजवादी सरकार में युवाओं के भविष्य में होता था खिलवाड़। भर्ती आयोग में अयोग्य लोगों को दी गई थी जिम्मेदारी। यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सरकार के सामने 2 विकल्प। 3 महीने में चुनाव कराएं या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण सबसे बड़ा पेच। आयोग की रिपोर्ट और सर्वे के डेटा पर हाईकोर्ट की आपत्ति। 3 महीने में आरक्षण तय, चुनाव कराने की चुनौती। पंचायत चुनाव तक ग्राम प्रधान बने रहेंगे प्रशासक। चुनाव से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 4 घंटे की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट का निर्णय। रेलवे के 11,40,000 कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा। कैबिनेट ने 2,000 करोड़ की राशि को स्वीकृति दी। दिल्ली में दीपावली के दौरान ग्रीन पटाखों की मिली अनुमति। CTI का दावा, सुप्रीम कोर्ट भी पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में नहीं। अब गेंद दिल्ली सरकार के पाले में। 15 अक्टूबर को सुनवाई। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के खातों में दिवाली से पहले 5,000 रुपए डालने की घोषणा की। नागपुर में विपक्ष का सरकार पर हल्ला बोल। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार बोले, सरकार किसानों की भावनाओं के साथ खेल रही है। हमने 1,00,000 प्रति हेक्टेयर की मांग दी थी, सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की। महाराष्ट्र को नवरात्र का तोहफा। पुणे की ESIC मेडिकल कॉलेज को 50 MBBS सीटों की स्वीकृति। शैक्षणिक सत्र 27-28 से मिल जाएगा दाखिला। उत्तराखंड नीट UG फर्जी सर्टिफिकेट मामले में हाईकोर्ट की सख्ती। सरकार को 24 घंटे में जवाब देने का आदेश। स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों की आरक्षण पर उठाए सवाल। मेरठ नीले ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी की सजा। जज ने कहा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला। शव के किए थे दोनों ने टुकड़े। भुवनेश्वर में तेज रफ्तार कार का कहर, कई गाड़ियों को मारी टक्कर। 1 की मौत, 4 घायल, ड्राइवर गिरफ्तार। गुवाहाटी में महिला से बैग छीनने के प्रयास में बैग बचाने के लिए महिला करीब 50 मीटर तक सड़क पर घिसटती रही, CCTV में कैद। जयपुर में भूमि पूजन के दौरान जमकर चले लाठी डंडे, चाचा ताऊ के परिवार में झगड़े का वीडियो। गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद, आधी रात घर के बाहर खड़ी कार को चुरा लिया। दरभंगा DMCH इमरजेंसी में शराब पार्टी का वीडियो वायरल। 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की शराब पीने का आरोप। FIR दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में जमीन के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा। स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर। वडोदरा में ज्वेलर्स की दुकान से 8.5 करोड़ के सोने फिल्मी अंदाज में चोरी। व्यापारी वॉशरूम गया, 12 मिनट में 5 किलो से अधिक गहने गायब। जयपुर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, जांच के बाद फिर उड़ी। मुंबई से सटे नाला सुपारा की इंपीरियल हाइट्स इमारत में भीषण आग, 2 महिलाओं की मौत, 6 लोग अस्पताल में भर्ती। नागपुर में सरकारी महिला डॉक्टर के हॉस्टल में चोरी। महिला अलमारी का ताला तोड़कर 2 सोने की अंगूठी लेकर चोर फरार। भावनगर के रंगोली रिजॉर्ट में नवरात्र फेस्टिवल में हंगामा। असलम एंड असलम बैंड के विरोध में प्रदर्शन के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हिरासत में। सोनीपत में मुरथल में एक ढाबे से लौट रहे युवक और ममेरे भाई को कैंटर ने कुचला, दोनों की मौत। पीछे से तेज रफ्तार कैंटर ने मारी टक्कर। कानपुर के सदर बाजार में 80 वर्ष के बुजुर्ग पर सांड ने जानलेवा हमला कर दिया। गिर सोमनाथ में शेरनी के हमले में युवक की मौत, ग्रामीणों में गुस्सा। परिजनों ने शव स्वीकारने से इनकार किया। शेरनी को पकड़ने 40,00,000 रुपए की मुआवजे की मांग। दमन के खारीवाड़ इलाके में मारुति में अचानक लगी आग, इंजन जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 21वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत। पत्नी से विवाद चल रहा था, पत्नी के फ्लैट पहुंचते ही बालकनी से नीचे उतरने के दौरान पैर फिसला। सूरत में नकली घी बनाने के बड़े व्यापार का खुलासा। पुलिस ने 18,21,000 रुपए का माल जब्त किया, 3 गिरफ्तार। गाजियाबाद में हार्डवेयर व्यापारी की चाकू से हत्या। मंडूला के जंगल में मिला था शव, पैसे के लेन देन में हत्या, 3 गिरफ्तार। अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर पलटा सरसों से भरा टैंकर, लोगों ने तेल लूटा। डब्बे पतीले बर्तन बाल्टी में भर कर ले गए सरसों का तेल।

उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना, 15-16 अक्टूबर को कई जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार समेत कई इलाकों में बदले का मौसम, होगी जोरदार बारिश। थूथुकुड़ी में भारी बारिश, सड़कों पर पानी भरा, लोगों को परेशानी। जम्मू कश्मीर में मौसम मेहरबान, गुरेज समेत कई इलाकों में ताजा बर्फ। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानों में बारिश के चलते मौसम बदला, तापमान गिरा, बढ़ गई ठंड। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंचा, लोगों से सावधान रहने की अपील। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी होगी, एक दो दिन में जमकर गिरेगी बर्फ। नर्मदापुरम में सजा न्याय का दरबार, जज की कुर्सी पर विराजे भगवान गणेश, झांकी में गूंजा बेटियों को न्याय का संदेश। माँ भवानी के दरबार में अनोखी अदालत, जेल से फांसी तक के दिखे दृश्य, नारी सुरक्षा पर सवाल। गया जी में माँ दुर्गा का अनोखा भक्त शंकर भगत ने सीने पर स्थापित किए 9 कलश, अंगूठी भक्ति देखने उमड़े ग्रामीण। अयोध्या के श्रीराम जानकी मंदिर में हनुमान जी की 11 फीट ऊंची मूर्ति, लकड़ी से की जा रही है तैयार। सूरत में गरबे की धूम, पारंपरिक गुजराती परिधानों में किया गरबा। यूपी के महोबा में शक्ति उत्सव की धूम, गरबा डांडिया में 350 से अधिक महिलाओं की प्रस्तुति। सीकर में गरबा की रौनक, महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में जमकर किया डांडिया। नवसारी में पारंपरिक डोरी रास की अनूठी छटा, 120 साल से चली आ रही है परंपरा। जामनगर में नवरात्र के दौरान युवाओं ने जलते हुए अंगारों पर किया स्वास्तिक रास, लोग हुए शामिल। वडोदरा में गरबा के रंग में रंगी महिला पुलिसकर्मी, पारंपरिक पोशाक में आई नजर। वडोदरा में नवरात्र के उत्साह के बीच महिला पुलिसकर्मियों का पारंपरिक गरबा, गुजराती परिधानों ने बढ़ाई रौनक। राजकोट में अग्नि गरबा के दौरान 6 महिलाएं सर पर जलते हुए गरबा के बर्तन, हाथों में मशाले लेकर नृत्य करने के लिए आई, लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। राजकोट में बजरंगी गरबी मंडल पर अग्नि गरबा परंपरा लगातार 18वें वर्ष जारी, यह अनोखा आयोजन गुजराती संस्कृति और पारंपरिक गरबा का हिस्सा। दुर्गा पूजा के रंगों में कोलकाता, पुलों चौराहों घाटों भव्य रंगोलियों से खिल उठा पूरा का पूरा बंगाल। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में 221 फीट का सबसे ऊंचा रावण, 22 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई, दुनिया के सबसे बड़े रावण का दावा, वाटरप्रूफ कपड़े। 90 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण, 3 महीनों में बना विशाल काय पुतला, 40 लाख रुपए आई इसकी लागत। धर्मशाला में हिमाचल की अनूठी बास कला, लकड़ी से बने मंदिरों के हूबहू मॉडल, कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में प्रदर्शन। महाराष्ट्र के अमरावती में अंबिका माता मंदिर में नवरात्र पर 1441 दीपों से जगमगाया परिसर, मान्यता इसी मंदिर से भगवान श्री कृष्ण ने किया था रुक्मिणी का हरण। फिल्म आज का महिषासुर का फर्स्ट लुक जारी, टेरेंस लुईस के साथ पद्मिनी कोल्हापुरी, चंदन रॉय, आयशा ऐमान आएंगे नजर। फिल्म घोसला का घोसला 2 की नई रिलीज डेट का ऐलान, 5 मार्च को आएगी फिल्म। आयुष्मान खुराना, सारा अली खान की फिल्म उड़ता तीर का दूसरा ट्रेलर रिलीज, 23 अक्टूबर को होगी रिलीज। हनुमान अंश पर पवन पुत्र की कृपा बरकरार, 68वें दिन में 337 से अधिक की कमाई। अजय देवगन की दृश्यम 3 ने रचा इतिहास, 12 दिन में 500 करोड़ पार किए, 2026 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म। सऊदी अरब में अरामको की बिल्डिंग पर यमन के हुती विद्रोहियों के हमले से दामों में तेजी, क्रूड ऑयल $160 प्रति बैरल के पार निकला, भारत पर बड़ा खतरा। नवरात्र से दिवाली तक व्यापारिक संगठन CIT ने 7 लाख करोड़ के व्यापार का अनुमान लगाया, कपड़े ज्वेलरी इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे अधिक रौनक, मुनाफे पर दबाव। अप्रैल 2019-30 से नई कारों SUV पर Euro 7 जैसे सख्त मानक लागू होंगे, इसके बाद 2 से 3 वर्ष में अलग अलग फेस में बाकी वाहनों पर BS7 लागू होगा। 1 महीने में चने के दाम में 18% का उछाल, दिल्ली NCR में बेहतर क्वालिटी के प्याज के दाम 80 रुपए किलो पर पहुंचे, चीनी महंगी होने से मिठाई की लागत बढ़ी। मेट्रो में 45% के मुकाबले Tier 2 शहरों में 60% लोग बाय नाउ पे लेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटली उधारी बढ़ने के बावजूद चुनौती बरकरार। ट्रांस यूनियन सिविल के रिपोर्ट के अनुसार 2-व्हीलर लोन डिफॉल्टर 7 वर्ष के निचले स्तर पर, 1.4% पर, फोन की EMI ने युवाओं का क्रेडिट स्कोर सुधारा। कमजोर मानसून, कोयला स्टॉक गिरने से हाइड्रोथर्मल पावर उत्पादन में कमी, स्टील मिल्स कारखानों में बिजली की कमी से उत्पादन प्रभावित, बैकअप पर निर्भरता बढ़ी। 2026-27 में नेट टैक्स रेवेन्यू का 28.7 लाख करोड़ का लक्ष्य हासिल होने की उम्मीद, एक्साइज में कमी के बावजूद डायरेक्ट टैक्स, GST, कस्टम से भरोसा।
लखनऊ में सबसे अधिक 7 प्रोजेक्ट्स के साथ यूपी रेरा ने 15 नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति। रियल एस्टेट में रोजगार निवेश को बढ़ावा देने वाला कदम। जुलाई सितंबर तिमाही में भारत में करीब 37 अरब डॉलर की डील्स हुई। निवेश का दायरा बढ़ने के बीच रिटेल कंज्यूमर सेक्टर सबसे आगे। यमन के हूतियों का बड़ा दावा, सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी को हमने निशाना बनाया। किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे रियाद दरहन में मौजूद अरामको पर हमला किया। रूस यूक्रेन ने मंगलवार को एक दूसरे के भरपूर ठिकानों पर लंबी दूरी के हथियारों से भीषण हमले किए। जेलेंस्की का आरोप, रूस ने रात भर बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। जेलेंस्की का बयान, कहा रूस के हमले के बाद बिना बिजली के रहने को मजबूर हुए 6 लाख से अधिक लोग। यूक्रेन पर होने वाले हमले दिखाता है रूस ट्रंप के बयान से सहमत नहीं और ना ही उसे अहमियत देता है। रूसी सरकार ने यूरोप पर लगाया बड़ा आरोप, कहा यूरोपीय देश यूक्रेन में युद्ध जारी रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं जबकि ट्रंप और उनके वार्ताकार युद्ध खत्म करने की कोशिश में। नेटो महासचिव ने रूस की सैन्य नीति पर सवाल उठाए, कहा हाइब्रिड हमले उसकी कमजोरी का संकेत, नेटो देश के क्षेत्र में हर इंच की रक्षा करेंगे हम। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर कही बड़ी बात, बड़े पैमाने पर तेल गैस खनिजों की खोज जल्द शुरू करेगा अमेरिका। अल्बानिया में ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और पीएम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, जमकर हुई हिंसा। वेस्ट बैंक की इजरायली बस्तियों में रहने वाले लोगों ने मस्जिद में आग लगाई, दीवारों पर हिब्रू भाषा में लिखे नारे, फिलिस्तीनी लोगों ने लगाया आरोप। ग्रीन पीस के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को ब्रसल्स में यूरोपीय संसद की इमारत पर चढ़कर किया प्रदर्शन। गैस पर EU की बढ़ती निर्भरता से नाराज। रूस ने जासूसी के शक में जापान के पत्रकार को गिरफ्तार किया। FSB के अनुसार पत्रकार रूसी जानकारी जुटा रहा था।

0: ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको मेरठ में अपने पति को मारकर नीले ड्रम में दफ्न करने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को सुनाई गई सजाए मौत के बारे में बताएंगे। प्यार में धोखा, रिश्तों का कत्ल, फिर नीले ड्रम में दफनाए गए अरमान। मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आज कोर्ट ने वो फैसला सुना दिया है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल सिर्फ सजा का नहीं बल्कि उस सोच का है जो रिश्तों से भागने के लिए हत्या का रास्ता चुनती है। क्या रिश्तों को खत्म करने का तरीका सिर्फ खून खराबा है, कत्ल है? और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या राहुल गांधी कॉकरोच जनता पार्टी का उस तरह समर्थन करेंगे जैसे वो नेहा बोरा का समर्थन कर रहे हैं, और क्या जंतर मंतर पर गिरफ्तारी के बाद विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच की दूरियां मिटने लगी हैं? सौरभ दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने लिखा कि जंतर मंतर पर तिरंगा लहराना अपराध नहीं है। इस पर अभिजीत दीपके ने जवाब देते हुए राहुल गांधी का धन्यवाद किया। अगली खबर, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों के बीच राहुल गांधी और एनएसयूआई ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है कि मारपीट में एक छात्रा की सुनने की क्षमता चली गई। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देहरादून में छिपी एक मिस्ट्री लेडी का जिक्र करके इस मामले में नया सस्पेंस खड़ा कर दिया।
1: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक।
0: इधर सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस की मुश्किल लगातार बढ़ रही है। आलम यह है कि खुद को बचाने के लिए उन्हें बंकर वाले महल में शिफ्ट होना पड़ा है। अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की, ये तमाम देश जो बड़े बड़े मेका अकॉर्ड साइन कर रहे हैं उनके साथ कोई मदद के लिए नहीं आया है, सारे मदद से पीछे हट चुके हैं। ऐसे में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एमबीएस को कहा कि हुती के खिलाफ सीधे मदद हम करते हैं, आपको ऑफर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एमबीएस ने इस मदद को ठुकरा दिया, तो क्या अब वो इसराइल का खुलकर समर्थन या मदद लेने से इतने डर रहे हैं? सवाल यह है कि जब अपनी सुरक्षा दांव पर है तो फिर एमबीएस इसराइल की मदद लेने से क्यों कतरा रहे हैं? पूरी कहानी आपको बताएंगे। इधर अगली खबर, भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने भारत में स्टारलिंक की एंट्री पर एलॉन मस्क के आरोपों की हवा निकाल दी। एलॉन मस्क ने भारत सरकार और जियो पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या अंबानी भारत के असली बॉस है, जिस पर राहुल गांधी ने भी समर्थन किया। अब सुनील भारती मित्तल ने मस्क को करारा जवाब दिया है, वो पहले से लाइन में है और मस्क से काफी आगे हैं। मित्तल ने साफ किया कि एयरटेल का ग्राउंड नेटवर्क 3 साल से तैयार है और उनके सैटेलाइट भी 5 साल से भारत के ऊपर। और अगली खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई प्रेस सेक्रेटरी केडी जकारिया, जिनका पहला भाषण चर्चाओं में है क्योंकि उन्होंने इस भाषण में गलती से ट्रंप को अपना हस्बैंड बताया। हालांकि गलती का एहसास होते ही उन्होंने बात को संभाला, लेकिन ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ।
2: With my kid, kids are is completely unacceptable. So my president, or excuse me, my husband, that's a good one. My husband is out here.
0: फ्रांस से इसराइल जाने वाली फ्लाइट में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के पायलट्स पर बैन लगा दिया है। एयर फ्रांस और यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी बड़ी कंपनीज ने सख्त कदम उठाया। दरअसल पिछले दिनों फ्लाई दुबई की फ्लाइट में ओमानी पायलट के आतंकी हमले के बाद इसराइल ने करीब 30 देशों के जो नागरिक हैं उन पर शिकंजा कसा है जिनके साथ उसके राजनयिक संबंध नहीं है। अब इसराइल के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए तमाम एयरलाइंस ऐसे देशों के पायलट्स बैन कर रही हैं जिन पर इसराइल के लोगों को निशाना बनाने की आशंका है। और अगली खबर, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पायलट ने आसमान से हाईजैक अलर्ट यानी स्क्वॉक 7500 कोड एक्टिवेट कर दिया। घबराए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने आनन फानन में विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया। इसमें 293 यात्री सवार थे, लेकिन तमाम सुरक्षा जांच के बाद ये हाईजैक अलर्ट फॉल्स अलार्म निकला। अब डीजीसीए इस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर ये इमरजेंसी सिग्नल कैसे ट्रिगर हुआ और क्यों ट्रिगर हुआ। अगली खबर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के पुष्पा स्टाइल वाले इशारे को लेकर डीएमके ने उन पर सीधा हमला बोला है। एक तस्वीर शेयर करते हुए डीएमके ने विजय को आरएसएस का गोद लिया बच्चा करार दिया। विधानसभा में विजय जोसेफ ने पुष्पा स्टाइल के हाथ के स्टेप की तुलना सीधे आरएसएस के ध्वज प्रणाम से कर दी है। देखिए, लेकिन आज सबसे पहले इस मां की चीखें और उसके दर्द को सुनिए जिसने राघोपुर की घटना में अपने इकलौते बेटे को खो दिया। वो बेटा जो दिन रात यही कहता था कि मां मैं बड़ा होकर तेरे सारे दुख खत्म कर दूंगा।
3: मैम क्या बोले,
4: हम कुछ भेजा दिया है, बोला कि ठीक है मैम के पास एप्लीकेशन भिजवा देंगे। एप्लीकेशन
0: अधिकारियों को, पुलिस से जुड़ी महिलाओं को पकड़ कर बिलख बिलख कर रोती है मां। सोचिए राघोपुर में नाव पलटने से जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उनके घरों में आज कैसी बेबसी होगी। और आज की शाम जब हम सब अपना खाना खा रहे हैं उस घर में कैसे ये शाम बीत रही होगी। और ये सोचिए कि हमारी राजनीति कैसी है। और इसीलिए हमने सोचा कि आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत इस खबर के साथ कि क्या इस देश में आम इंसान की जिंदगी की कोई कीमत बची है, या फिर वो नाव पर सवार होगा, नाव पलटेगी और एक साथ इतने लोगों की मौत हो जाएगी, बच्चों की मौत हो जाएगी। राघोपुर, इस इलाके को हाई प्रोफाइल वीवीआईपी क्षेत्र बिहार का माना जाता है। सम्राट चौधरी की सरकार इस वक्त बिहार में चल रही है। 2015 से यहां पर तेजस्वी यादव खुद इस सीट से विधायक है, लेकिन इसी क्षेत्र से हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान सांसद है और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री है। यानी जो इलाका नेताओं के लिए हाई प्रोफाइल है, उनका गढ़ है, उनके लिए पारंपरिक सीट है, उसी इलाके के आम लोग बदतर हालात में जी रहे हैं और ये घटना भी इन्हीं हालातों का नतीजा है। ये पूछे ये घटना हुई, हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो देखिए, ये है नाव जिस नाव में पास के गांव से लगभग 25 से 30 बच्चे और ग्रामीण श्राद्ध के भोज में शामिल होने जा रहे थे। उस नाव में बहुत बड़ा छेद था और ये नाव इतनी जर्जर थी कि इसे इस्तेमाल करने की इजाजत होनी ही नहीं चाहिए। खुद गांव के लोग बता रहे हैं कि उन्होंने सर्कल ऑफिसर को इसके बारे में शिकायत की थी। ये बताया था कि प्रशासन ने सरकारी नाव की या तो मरम्मत कराए या नई नाव उन्हें उपलब्ध कराए, लेकिन इन शिकायतों की एक जू तक स्थानीय प्रशासन के कानों तक नहीं रहेंगी और गांव वालों को उन्हीं के हालात पर मरने के लिए छोड़ दिया। कितनी घटनाएं आपने बिहार से सुनी है, नाव पलट गई, इतने लोगों की मौत हो गई, कहीं पर सिंगल लाइन एक खबर बनकर रह जाती है। और इसीलिए हम बार बार पूछ रहे हैं कि क्या आम इंसान की जिंदगी की कीमत इस देश में कुछ है। कल रात ऐसी एक घटना में 14 बच्चे दर्दनाक तरीके से मारे गए और यहां यह बात भी याद रखिएगा कि इन बच्चों के पास लाइफ जैकेट भी होती तब भी शायद बचने की उम्मीद होती। लेकिन बिहार में आम आदमी की लाइफ और उनकी लाइफ जैकेट के बारे में सोचने वाला है कौन? कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दुनिया में पहली लाइफ जैकेट 1765 में बनी, आज से 261 साल पहले, लेकिन 261 साल पहले बनी लाइफ जैकेट आज भी बिहार तक नहीं पहुंची, बिहार के इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और कई कई लोग, बच्चे नदी में डूब कर मारे जा रहे हैं। तो क्यों ना कहा जाए कि बिहार को अब तक सरकारों ने पिछड़ा बनाकर रखा और बीजेपी की अब सरकार बनी है, 15 साल तक वहां पर नीतीश कुमार की सरकार रही। सम्राट चौधरी की सरकार क्या चीजों को बदलेगी या वही स्थिति बनी रहेगी? कहा जाता है कि बीमारू राज्यों से बिहार निकल गया है, लेकिन अगर 261 साल पहले बनी लाइफ जैकेट सरकारें आम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है, भाई कहीं भी आप जाइए, आप यहां पर यमुना में जाइए, आप किसी बोट पर सवार ही नहीं हो सकते लाइफ बोट के बिना, लेकिन वहां पर ये सब है ही नहीं। आज हम एक बड़ा मुद्दा ये उठाना चाहते हैं कि कोई भी इलाका या क्षेत्र वहां जीतने वाले नेताओं की वजह से हाई प्रोफाइल नहीं होनी चाहिए। वो सीट, वो इलाका सुविधाओं, बेहतर विकास के लिए हाई प्रोफाइल होना चाहिए। और हम तो कहेंगे राघोपुर में जो हुआ वो हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक हत्या है। और सरकार से भी हम कहेंगे, सम्राट चौधरी की सरकार से कि आज वो इन मौतों की सरकारी कीमत लगाकर मुआवजे का ऐलान कर रही है। लेकिन हकीकत में इन लोगों को मुआवजे की नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो इनकी जान ना ले, जो इनकी जिंदगियां खत्म ना करे, जो इनके बच्चों को ना मारे। अरे मुआवजे में पैसे के लिए आप इंतजाम कर रहे हैं, वो तो मरने के बाद है ना। अब ये बच्चे लौट के थोड़ी आएंगे। अगर मरने से पहले इन नाव पर सवार होने वाले यात्रियों को लाइफ जैकेट मिलता तो एक उम्मीद तो होती कि शायद बच जाते। देखिए,
5: किन परिस्थितियों में ये घटना घटी है वो बेहद कह सकते हैं वो परेशान करने वाली ये कह सकते हैं तस्वीर है। जब आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरे गांव में मातम छाया हुआ है, कितने लोग नाव पर सवार थे?
6: लगभग 20 के आसपास।
7: 20 के आसपास?
5: सभी के बच्चे ही थे उसमें?
6: हाँ, सभी बच्चे थे।
5: सिर्फ नाव चलाने वाला नाविक?
6: वो भी सब बच्चे थे। माइनर लोग नाव चलाता है यहाँ, सरकारी नाव माइनर चलाता है।
5: और देखिए, ये नाव बहुत बड़ा नाव नहीं है, ये छोटा नाव है। मुश्किल से 8-10 लोग इसमें जो है वही बैठ सकते हैं। लेकिन अभी आप परिस्थिति देखिए, जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 से 25 जो है वो नाबालिग बच्चे इस पर बैठे हुए थे। ये नाव किस हालत में जर्जर है ये आप देखिए। इस नाव में इतना बड़ा छेद आप देखिए, आप ये देख सकते हैं नाव में इतना बड़ा जो है दरार आप नजर आ रहा है। और क्योंकि जब ओवरलोडिंग हुई होगी तो जाहिर सी बात है नाव का ये हिस्सा जो है जो टूटा हुआ है, जो इतना बड़ा छेद है, तो पानी इसके जरिए भी नाव के अंदर प्रवेश किया।
8: ये जिला से पहले भी इस क्रम में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि सनसेट के बाद बोट का परिचालन नहीं करना है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। और उसके बावजूद ये हुआ है तो जिनकी नाव है और जो परिचालन कर रहे थे निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन जिनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी, जो पदाधिकारी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।
9: जैसे यहाँ के नेता, मंत्री, विधायक, हर लोग कोई काम होता है तो अपना क्रेडिट ले लेते हैं, अगर आज वही नेता, मंत्री, विधायक किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल से हो, अगर आपदा प्रबंधन विभाग इकाई बना देते, 5 मिनट की दूरी पे था, तो हमें लगता है ये कैजुअलिटी इतनी नहीं होती, हो सके एक भी मृत्यु नहीं हो।
0: क्या फर्क पड़ता है, सियासत वैसे ही चलेगी, फिर राजनीति भी वैसे चलेगी, फिर वैसे ही चुनावी मंच पर सब पहुंचेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, फिर कहीं नाव किसी नदी में पलटेगी, फिर बच्चों की मौत होगी, फिर उनके घर में मातम छाएगा, फिर नए सिरे से ये बात उभरेगी और फिर गहरी नींद सियासत की जारी रहेगी। अन्य खबरों का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंडिया गेट जाकर प्रदर्शन कर रहे अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की है और वो अब इंडिया गेट से वापस लौट चुके हैं। हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं उनमें ये दिख रहा है कि अंकिता भंडारी की मां ने रोते हुए अपनी बेटी की हत्या के बाद 4 साल से चल रहे इंसाफ के इंतजार का दर्द बयां किया। राहुल गांधी से इस मामले में मदद मांगी। देखिए,

0: बचाया जा रहा है वीआईपी को, जो डे वन से बचाया जा रहा है अभी भी वही हुआ है। और अब इस कितना बड़ा थप्पड़ है ऐसे माँ बाप के ऊपर जिनकी बेटी इस तरह से गई, और उसके बाद जो जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, उसको इम्यूनिटी मिल जाती है और वो राज्यपाल हो जाते हैं।
1: हम ये सिला दिया।

0: तो राहुल गांधी आज अचानक इंडिया गेट पहुंचे और वहां पर अंकिता भंडारी के माता पिता मौजूद थे जिन्होंने न्याय की गुहार लगाई। अब आप ये देखिए कि आखिर अंकिता भंडारी के माता पिता इंडिया गेट पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ये पूरा मामला आखिर है क्या। 19 साल की अंकिता भंडारी उत्तराखंड की रहने वाली थी जो ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। आरोप है कि सितंबर 2022 में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या और उसके साथियों ने अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले एक वीआईपी के कमरे में जाने के लिए दबाव बनाया। आरोप है कि जब अंकिता ने इसका विरोध किया तो उसे नहर में धक्का देकर मार दिया गया। इस घटना के बाद पूरे देश और खासकर उत्तराखंड में भारी जन आक्रोश भड़का, क्योंकि अंकिता जिस रिजॉर्ट में काम करती थी उसका मालिक एक पूर्व बीजेपी नेता का बेटा था। इसीलिए आरोप लगा कि जिस वीआईपी के कमरे में अंकिता को भेजने के लिए दबाव बनाया गया था वो वीआईपी भी कोई बीजेपी नेता ही था। हालांकि आरोप थे जो अब तक साबित नहीं हुए हैं, ना ही पुलिस ने ऐसे किसी नेता को अक्यूज्ड बनाया। और यही सवाल आज कांग्रेस पूछ रही है कि क्या जिस वीआईपी को ढूंढने की पूरी जांच होनी चाहिए थी वो की ही नहीं गई। अब भी इस मामले में मुख्य आरोपी जेल में है, लेकिन जिस वीआईपी को लेकर सवाल उठे उसका नाम अब तक बाहर नहीं आया है। इस मामले में पुलिस की जांच पर अंकिता भंडारी के परिवार को शुरुआत से कभी भरोसा नहीं था, जिसके बाद यह जांच इसी साल की शुरुआत में सीबीआई को सौंपी गई। अब इस सवाल पर आते हैं कि अचानक अंकिता भंडारी के माता पिता इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने क्यों आए, तो इसके पीछे बड़ा कारण है दुष्यंत कुमार गौतम जिन्हें सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। अंकिता भंडारी के माता पिता का कहना है कि जिस वीआईपी के कारण उनकी बेटी को मारा गया था उसके संदिग्धों में दुष्यंत कुमार गौतम का भी नाम था। ये उनकी तरफ से आरोप है जो उस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी के प्रभारी थे। हालांकि वो संदिग्ध थे और उन्हें कभी इस मामले में आरोपी पुलिस ने नहीं बनाया, लेकिन अब जब उन्हें सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो अंकिता भंडारी के माता पिता इस नियुक्ति का विरोध करते हुए आज इंडिया गेट पर आए हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक दुष्यंत कुमार गौतम इस मामले में संदिग्ध है तब तक उनकी राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। सुनिए, चलिए तो हम तस्वीरें आपको दिखा ही रहे थे वहां की। इससे पहले राहुल गांधी ने पहली बार खुलकर कांग्रेस जनता पार्टी के गिरफ्तार नेताओं का समर्थन किया। उन्होंने सौरभ दास आशुतोष शांका की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए लिखा कि जंतर मंतर पर तिरंगा लहराना अपराध नहीं, जंतर मंतर भारत के लोगों का और वो उसे वापस हासिल करके रहेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में सीधे तौर पर सीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन क्योंकि उनका यह बयान सीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में था, कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पहली बार राहुल गांधी को धन्यवाद पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि आशुतोष रांका और सौरवदास की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए धन्यवाद एलओपी राहुल गांधी सर। अभिजीत दिपके की यह प्रतिक्रिया जो है इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि महज कुछ दिनों पहले तक दीपके सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर राजनीतिक हमले कर रहे थे। सीजेपी के आंदोलन में ना तो राहुल गांधी आए ना विपक्ष के आंदोलन में सीजेपी के तरफ से कोई हिस्सा लेते दिखा। लेकिन आज के घटनाक्रम के बाद अब तीन बातों की चर्चा हो रही है। पहली बात, पिछले कुछ महीनों में पेपर लीक, एसआईआर जैसे कई राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस और सीजेपी एक ही तरफ खड़े नजर आए, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस अब तक दीपके के संगठन के साथ सीधे तौर पर नहीं मंच साझा करने गई। एक बार भी राहुल गांधी जब वो आंदोलन कर रहे थे तो जंतर मंतर पर नहीं गई और ना ही खुलकर समर्थन देने से वो बचते बल्कि राहुल गांधी नजर आए। लेकिन अब राहुल गांधी और दीपके का आज का इस हिचक के टूटने का पहला बड़ा संकेत हो सकता है। और यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या नेहा बोरा की तरह राहुल गांधी अभिजीत दीपके को विपक्ष के मंच पर लाएंगे और क्या दीपके इसके लिए तैयार होंगे। दूसरा, राहुल गांधी के अलावा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और विपक्षी इंडिया गठबंधन के कई दूसरे नेताओं ने कार्रवाई की निंदा की। इससे साफ है कि विपक्ष सीजेपी के इस मुद्दे को सरकार विरोधी आंदोलन की तरह देख रहा है। तीसरा, कुछ विश्लेषकों का ऐसा भी मानना है कि सीजेपी की अपनी एक सोशल मीडिया और जमीनी रीच जरूर है, लेकिन हालिया प्रदर्शनों के नाकाम होने और शीर्ष नेताओं के जेल जाने के बाद क्या अब अभिजीत दीपके ये चाहते हैं कि विपक्ष के साथ एक ऐसे वक्त पर हाथ मिलाना उनके लिए काम आएगा जब उनके नेताओं को बार बार जेल में डाला जा रहा है। खैर, तो ये है पूरी लंबी कहानी और ये लड़ाई लंबी है। हालांकि ये सिर्फ कयास है, अभी इस पर औपचारिक रूप से कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। अब आप ये देखिए कि आशुतोष रांका सौरभ दास को दिल्ली की एक अदालत ने 5 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए तिहाड़ जेल क्यों भेजा। आपको याद होगा 10 अक्टूबर को जब दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को हिरासत में लिया था, तीनों नेताओं को से एक बेल बॉन्ड भरवाया गया था। बेल बॉन्ड की सबसे बड़ी शर्त यह थी कि उन्हें दिल्ली में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखनी होगी और गलत पालन उसका उनके लिए दंडनीय होगा। अब जब इस बेल बॉन्ड को भरने के बाद 13 अक्टूबर को सौरभ दास, आशुतोष रांका, सीजेपी के बाकी कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर के बंद पड़े और प्रतिबंधित विरोध स्थलों के तालों को पार कर जबरन अंदर घुसने की कोशिश की, तो पुलिस के मुताबिक जो बेल बॉन्ड उन्होंने भरी थी उन्होंने उसको तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने यही कहा कि इन दोनों ने ही जंतर मंतर पर बिना अनुमति प्रवेश किया, सुरक्षा नियमों को तोड़ा, कानूनी वादे यानी बेल बॉन्ड का उल्लंघन किया है। क्योंकि अदालत 13 अक्टूबर की घटना को बेल बॉन्ड का गंभीर उल्लंघन मान रही थी, इसलिए मजिस्ट्रेट ने उनसे उनके जो पिछले बेल बॉन्ड है उसको तत्काल रद्द कर दिया और दोनों को 5 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए तिहाड़ जेल में भेजने का आदेश जारी कर दिया। तो अभी भी जब आप ये शो देख रहे हैं ये लोग तिहाड़ जेल में है। इन दोनों नेताओं पर मुख्य रूप से 4 बड़े आरोप लगाए गए हैं। पहला, बिना अनुमति किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसना। दूसरा, कानून का उल्लंघन करने की पहले से योजना बनाना। सरकारी काम में बाधा डालना, चुनौती देना। और चौथा, पुलिसकर्मियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या बल प्रयोग करना। सौरभ दास और रांका को जेल भेजने के बाद आज जब अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका विरोध हुआ। हालांकि विरोध करने वाले लोग किसी पार्टी से थे या नहीं अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि सीजेपी के समर्थक ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने लोगों को भेजकर ये किया है।
1: क्यों देश को खराब कर रहा है? क्यों से देश को खराब कर रहा है?
2: चोर है, चोर है।
1: देश को खराब है?
2: अरे देश को खराब कर।
1: क्यों देश को खराब कर रहा है? क्यों से देश को खराब कर रहा है?
2: चोर है, चोर है।
1: देश को खराब है?
2: अरे देश को खराब कर।
1: क्यों देश को खराब कर रहा है?
0: वोट चोरी के नाम पर आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ बेरहमी से मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली केरल की अथरा ने आरोप लगाया कि पुलिस बस के अंदर उनके साथ मारपीट की गई, उनके कान पर इतनी जोर से प्रहार किया कि कान में सुनाई देना बंद हो गया है। कई दूसरे छात्रों ने आरोप लगाया कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर और पुलिस वाहन में ले जाते वक्त उन्हें लाठियों से पीटा गया, प्राइवेट पार्ट्स पर लात मारी गई। तमाम ज्यादतियों पर भड़के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जुल्म करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो हर घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत अपने पास रखें। देखिए,
3: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए। इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक। नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत।
0: लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा सस्पेंस बना राहुल गांधी के उस रहस्यमय बयान को लेकर जिसमें उन्होंने देहरादून में छिपी एक महिला का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा था कि वोट चोरी के इस खेल में पीएम मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार के साथ साथ वो महिला भी शामिल है जो फिलहाल देहरादून में छिपी है। इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर राहुल गांधी का इशारा किस महिला की ओर है। सुनिए।
4: एंड इट इज आवर कमिटमेंट टू यू दैट द पीपल हु हैव डन दिस, मिस्टर मोदी, मिस्टर शाह, मिस्टर ज्ञानेश कुमार, द लेडी who's hiding right now in Dehradun, and others are going to be brought to justice.
0: जब विपक्ष के नेता जंतर मंतर पर आंदोलन के लिए अड़े हैं तब उन्हें बाजार में हुए नुकसान के आंकड़े भी देखने चाहिए। बीजेपी बार बार ये कह रही है कि चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री जिस तरह से सामने आ रही है, क्योंकि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिन से यह जानकारी सामने रखनी शुरू की है कि जब जब बंद होता है चांदनी चौक, इन तमाम इलाकों में किस तरह का व्यापार का नुकसान होता है। तो आइए आपको बताते हैं, सीटीआई के मुताबिक धरने प्रदर्शनों में ये जो बाजार बंद होता है, उनका ये दावा है इन ट्रेड यूनियन के लोगों का और जो चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी बिजनेस वाले हैं कि बाजार बंद होता है और करीब 2,000 करोड़ रुपए का उनका कारोबार ठप हो जाता है। प्रदर्शनों की वजह से व्यापारियों पर अपनी दुकानें बंद करने का दबाव था और इस पूरे इलाके में आपको याद होगा कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, खान मार्केट, जनपद, करोल बाग, चांदनी चौक, सदर बाजार, लाजपत नगर, देश के राजधानी के जो सबसे बड़े कमर्शियल हब्स हैं वो बिल्कुल ही बंद थे। असर सिर्फ दुकानों के शटर गिरने तक सीमित नहीं रहा और इसीलिए चेंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का कहना है कि दुकानें बंद रहती हैं तब भी किराया और कर्मचारियों का वेतन तो देना ही पड़ता है और भारी भरकम उनको खर्च हो रहा है, लेकिन सेल बिल्कुल नहीं क्योंकि दुकानें बंद कर दी गई। तो यही चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मुताबिक सदर बाजार और चांदनी चौक जैसे जो थोक बाजार वाले इलाके हैं उनमें दिल्ली के बाहर से रोजाना आने वाले 3 से 4 लाख खरीदार उस दिन राजधानी नहीं पहुंच सके। ये मार सिर्फ रिटेल दुकानों तक नहीं है या होलसेल नहीं, क्योंकि जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, सलोन है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उन सब पर मार पड़ती है। अब मुश्किल यह है कि नवरात्रि, दशहरा, दीपावली का यह दौर दिल्ली के करीब 20 लाख व्यापारियों के लिए साल भर की सबसे बड़ी कमाई का हफ्ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CTI यानी चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री और तमाम व्यापारिक संगठनों ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो कम से कम दिवाली तक दिल्ली के बाजारों में इस तरह की बड़ी रुकावट खड़ी करने से बचे। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों और विपक्षी दलों के भीतर भी अंदर खाने बड़ा मंथन शुरू हुआ। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या त्योहारों के समय में विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा में कोई बदलाव किया जाए। कई नेताओं का मानना है कि दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली के पर्वों पर आम जनता की खुशियों और बाजारों की रौनक में खलल डालने से एक गलत संदेश जा सकता है। वहीं कई ऐसे सांसद हैं जो त्योहार के सीजन में अभी तक दिल्ली में रुके हुए हैं विपक्ष की तरफ से आंदोलन में शामिल होने के लिए, या उनको रोका गया है, वो भी अब वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, अपने अपने चुनावी क्षेत्र में, अपने घरों में। इससे पहले कनॉट प्लेस और जनपद के पास स्थित जंतर मंतर को लेकर गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को एक बड़ा संदेश आदेश जारी किया। इसके तहत जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शनों के प्रोटेस्ट साइट की सूची से डीनोटिफाई कर दिया। अब इस पर भी खूब बवाल है। इस फैसले के बाद दिल्ली के व्यापारियों ने राहत की सांस ली। व्यापारियों के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं विपक्षी पार्टियां और खास तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो इसका थुर विरोध कर रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि आज मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को मेरठ की जिला अदालत ने मृत्यु दंड यानी मौत की सजा सुना दी है। ये वही मामला है जिसमें मुस्कान रस्तोगी ने मर्चेंट नेवी में काम करने वाले अपने पति की हत्या करके उसके शव के कई टुकड़े कर दिए थे और उन्हें एक नीले ड्रम में छिपा दिया था। इसके बाद यह घटना बहुत सारे लोगों के लिए एक मीम बनी। बहुत सारे लोग शादी के मामलों में नीले ड्रम का जिक्र करने लगे। लेकिन हमें लगता है कि आज इस मामले में जो फैसला आया है उसके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। और यहां हम सिर्फ अदालती फैसले की बात नहीं कर रहे, इस मामले में अदालत के अंदर बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारा समाज चाहे तो काफी कुछ सीख सकता है। जैसे इस फैसले के दौरान सौरभ राजपूत की मां, वही सौरभ राजपूत जो कि मर्चेंट नेवी में काम करते थे, जिन्हें उनकी पत्नी ने मार कर टुकड़े टुकड़े काट कर नीले ड्रम में सीमेंट में डाल दिया, तो वही सौरभ राजपूत की मां रेणु राजपूत ने एक बहुत बड़ी बात कोर्ट में कही। जब कोर्ट मुस्कान रस्तोगी और उसके बॉयफ्रेंड को मृत्यु दंड की सजा सुना रहा था तब उनकी मां बहुत भावुक हुई और उन्होंने शब्दशः यह कहा, किसी के बच्चे को तो मारो मत, अगर साथ नहीं रहना चाहते हो तो अलग हो जाओ, लेकिन मारो मत। यह महज एक अदालती बयान नहीं था, यह उस मां की आप बीती थी जिसने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उसकी पत्नी ने अलग होने के बजाय पति की हत्या का रास्ता चुना। मुस्कान चाहती तो वो अपने पति सौरभ राजपूत से अलग हो सकती थी, उनसे तालाक ले सकती थी, अपनी एक अलग दुनिया बसा सकती थी, लेकिन ऐसा किया नहीं। अदालत का कहना है कि इसकी जगह उसने अपने पति को जान से मारने की योजना बनाई। प्री मेडिटेटेड, प्री ऑर्गेनाइज मर्डर था और यह भी तब किया जब उसकी दो बेटियां थी, एक हंसता खेलता पूरा परिवार था। पुलिस खुद ऐसा मानती है कि मुस्कान के पास ऐसे कई मौके आए जब वो सचमुच सब कुछ सच सच बताकर सौरभ राजपूत से अलग हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसकी जगह उसने साहिल शुक्ला के साथ मिलकर ना सिर्फ सौरभ राजपूत को धोखे से मारा बल्कि उसके शव के कई टुकड़े किए, एक नीले ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया। और यही बातें आज जब सौरभ राजपूत की मां ने सुनी तो उनके मुंह से एक ही बात निकली कि भले ही अलग हो जाओ, शादी तोड़ दो, मत करो, लेकिन किसी को मारो तो मत। और यह बात हाल की कई घटनाओं पर लागू होती है, जैसे इसी साल पुणे के केतन हत्याकांड में आपने देखा, मंगेतर सिया चाहती तो यह घटना नहीं होती। सिया ने केतन को शादी के लिए ना कहने की जगह उसे मारना ज्यादा सही समझा। आरोप है कि इसमें उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी मदद की। इसी तरह इंदौर का आपको याद होगा राज रघुवंशी हत्याकांड, सोनम रघुवंशी चाहती तो वो शादी के लिए ना कह सकती थी और वो ये बात राजा रघुवंशी को बता सकती थी कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कराई जा रही है। लेकिन इस मामले में भी सोनम रघुवंशी ने सब कुछ सच बताने के बजाय शादी करके अपने पति को हनीमून पर मारना सही समझा। और आज राजा रघुवंशी भी हमारे बीच नहीं है। पिछले 2 सालों में इस तरह की 15 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं जिनमें अलग अलग होकर रिश्तों को खत्म किया जा सकता था, लेकिन फिर भी इन घटनाओं में हत्या और अपराध का रास्ता चुना गया। और इसीलिए आज हम भी इस बात को आप सबसे कहना चाहते हैं कि किसी भी रिश्ते से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जो लोग इसे नामुमकिन मान लेते हैं वही फिर अपने पति और पत्नी की हत्या का रास्ता चुनते हैं। और ये पिछले कुछ सालों में हमने कई घटनाओं में देखा है। दूसरा, इस पूरे मामले का सबसे अभूतपूर्व पहलू यह भी रहा कि खुद मुस्कान के सगे माता पिता ने अपनी अपराधी बेटी का साथ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ उसे नाता तोड़ दिया बल्कि कोर्ट में उसे सख्त सजा देने की मांग तक कर दी। ये इस बात का प्रमाण है कि जब समाज में रिश्तों की मर्यादाएं तार तार हो रही हों, तब भी न्याय का स्थान खून के रिश्तों से ऊपर हो सकता है। और यहां हमें यह भी लगता है कि मुस्कान के माता पिता का यह कदम और सौरभ राजपूत की मां की ये बिलखती हुई पुकार दोनों मिलकर आज की युवा पीढ़ी को ये चेतावनी देते हैं कि गलत फैसलों और अपराधों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। कोई रिश्ता पसंद नहीं आए ना कहिए, और उसके लिए अगर मेहनत करनी पड़े, कुछ परेशानियां झेलनी पड़े, सबको, परिवार वालों को उसमें शामिल कीजिए, संघर्ष करिए, लेकिन हत्या का रास्ता मत चुनिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे समाज पर गहरा असर डालती हैं। देखिए,

0: करके यहाँ की आप देखेंगे यहाँ पर तो कोर्ट रूम के अंदर गौरव भारत माता की जय के नारे लगे। जैसे ही सत्र न्यायाधीश यहाँ के अरविंद कुमार मिश्रा ने बोला कि साहिल शुक्ला और मुस्कान आप दोनों को मृत्यु दंड की सजा दी जाती है क्योंकि दोनों जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, तो उसके बाद तुरंत से ही जो कि पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा था लोग वहां पर नारे लगाने लगे कोर्ट रूम के अंदर ही।
1: साहिल और मुस्कान दोनों को अपराध के लिए मृत्यु दंड की सजा मुकर्रर की है, तय किया है, उनको सजा सुनाइए 302 के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना और 238A के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना तय किया है।
2: कितना एग्जाम्पल वाला जजमेंट आप मानते हैं?
1: ये ऐतिहासिक निर्णय है, पूरे देश की निगाहें थी, पूरे देश के जनता की निगाहें थी कि इस अपराध के अपराधी को क्या सजा मिलती है।
2: मुस्कान और साहिल की क्या बॉडी लैंग्वेज थी?
1: उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सदमे में एक तरीके से आए, झटका खाया उनको, सबको लगता है ये जिसको मृत्यु दंड की सजा होगी वो समझ सकते हैं मानसिक स्थिति कैसी होगी, होश फाकता हो गए
2: मुस्कान और साहिल को मृत्यु
1: दोनों।
3: आज जब मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई गई तब कोर्टरूम के अंदर भारत माता की जय के नारे लगे, लोगों ने खुशी मनाई। जबकि इसी दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने वाले मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की आंखों में आंसू थे और कई वकील ऐसा बता रहे हैं कि मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि उन्हें सौरभ राजपूत की हत्या के लिए दोषी मान लिया गया है। इसी महीने जब कोर्ट का फैसला आया था तब भी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला फूट फूट कर रोए थे और इसके बाद उन्हें उनकी बैरक में ले जाया गया। इसके पीछे बड़ा कारण यह हो सकता है कि जब मुस्कान और साहिल शुक्ला ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की और उनके शव के टुकड़े करके उन्हीं नीले ड्रम में छिपाया तब उन्होंने यही सोचा था कि इस हत्याकांड का रहस्य कभी नहीं खुलेगा। लेकिन अब जब अदालत ने अपराध को मान लिया, इसके लिए दोनों को मृत्यु दंड सुना दिया, तब ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्कान और साहिल दोनों फूट फूट कर रोए। हम आपको 5 पॉइंट्स में बताते हैं कि आज इस फैसले को कोर्ट ने महत्वपूर्ण क्यों बताया। सबसे पहले अदालत ने मौत की सजा सुनाते हुए महाभारत का जिक्र किया, ये कहा कि अपराधी को उसके अपराध के लिए सजा देना भी एक धर्म है और अदालत भी अपना कर्तव्य निभा रही है। दूसरा, अदालत ने इस हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया और यह माना कि जिस क्रूरता से सौरभ राजपूत की हत्या की गई, शव के 3 टुकड़े किए गए, सबूत छिपाने के लिए उसे सीमेंट और कंक्रीट से नीले ड्रम में जमा दिया गया, वो समाज को झकझोरने वाला जघन्य अपराध है, इसीलिए ये मामला मौत की सजा के योग्य है। तीसरा, इस केस में कोई सीधा चश्मदीद गवाह था नहीं जिससे ऐसा माना जा रहा था कि मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला कानूनी सजा से शायद बच ना जाए, लेकिन आज अदालत ने कहा कि इस मामले में पेश किए गए 22 गवाह, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और हत्या में इस्तेमाल हथियार से ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि मुस्कान और साहिल ने ही मिलकर सौरभ राजपूत को मारा था। चौथा, कोर्ट ने केवल फांसी की सजा ही नहीं सुनाई बल्कि अपराधियों पर आर्थिक दंड भी लगाया। इसमें हत्या के लिए 50,000 रुपए, सबूत छिपाने के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना लगा और अभी इस जुर्माने पर काफी बहस हो रही है। शोगी लिख रहे हैं कि जिस तरह मुस्कान ने अपने पति के टुकड़े करके उन्हें नीले ड्रम में छिपाया, इसके लिए 20,000 रुपए का जुर्माना क्या होता है। सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने आज ये भी कहा कि पिछले 1.5 साल के भीतर इस तरह की क्रूर हत्याओं और शवों को छिपाने की घटनाएं बहुत सामने आई हैं। समाज में ऐसी आपराधिक मानसिकता को रोकने, अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए एक सख्त नजीर पेश करना जरूरी था और इसलिए भी इस मामले में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। मुस्कान के वकील ने भी 5 बड़ी दलीलें दी जिनमें यह कहा गया कि इस मामले में कोई चश्मदीद नहीं है, मुस्कान की 2 छोटी बेटियां हैं, उसमें सुधार की गुंजाइश है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और अदालत को मुस्कान के बूढ़े माता पिता और परिवार की आर्थिक हालत भी देखनी चाहिए और कम से कम सजा सुनानी चाहिए, लेकिन अदालत ने इनमें से किसी भी दलील स्वीकार ही नहीं की।
4: हम संतुष्ट है न्यायालय से एकदम संतुष्ट है, बहुत सही फैसला आया है हमारे लिए, हम यही चाह रहे थे, 1.5 साल से जो हम चक्कर काट रहे थे इसी फैसले के लिए काट रहे थे।
5: ये लोग आगे जाएंगे तो हम भी जाएंगे, अगर इनको फांसी नहीं होती है तो हम आगे तक जाएंगे।
0: अभी कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसपे आप
5: अभी उन्होंने फांसी का ऐलान किया है, फांसी की डेट डिसाइड नहीं करी है, अगर फांसी जिस दिन हो जाएगी उस दिन हमको संतुष्टि मिलेगी।
0: ये बात तो सामने आ गई थी कि किस तरीके से।
3: और आखिर में हम फिर से यही कहेंगे, इस पूरे मामले में सबसे झकझोरने वाली जो गूंज है वो सौरभ राजपूत की मां रेनू राजपूत के उस बयान की है जिसमें अदालत परिसर में मौजूद हर शख्स की आंखें नम की। बिलखते हुए उन्होंने कहा था कि अगर साथ नहीं रहना तो अलग हो जाओ, लेकिन किसी के बच्चे को मारो मत। एक माँ के मुंह से निकला ये वाक्य आज की उस पीढ़ी के लिए सबक है, जो रिश्तों की उलझनों का समाधान आपसी बातचीत में तलाशने के बजाय, आप सोचिए ना कितनी घटनाएं आई हैं इसे, क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखकर मर्डर की साजिशों में तलाश रही, पति को मारना, मार के काट काट के टुकड़े करना, सीमेंट में उसको नीली ड्रम में जमा देना। ये बयान याद दिलाता है कि शादी कोई पिंजरा नहीं है, अगर प्यार खत्म हो चुका है तो रिश्ते में अलग होने का सम्मानजनक रास्ता खुला होना चाहिए। और माता पिता को भी समझना चाहिए कि अगर किसी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश हो रही है तो कहां पर जाकर उनको पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन अलग अलग तरह के संबंधों की अंधी चाहत और लालच में किसी की जान ले लेना वो बर्बरता है जिसकी माफी ना तो समाज दे सकता है ना कानून। आज कई लोग ये कह रहे हैं कि मुस्कान रस्तोगी भारत की पहली महिला है जिसे अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, जबकि ये दावा पूरी तरह गलत है। भारत में इस वक्त 21 महिला अपराधी जेल में बंद है जिन्हें कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। इसके अलावा भारत में अब तक एक ही महिला को मौत की सजा दी गई है, उनका नाम रतन बाई जैन, जिन्हें 3 लड़कियों की हत्या के लिए 1955 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस वक्त रतनबाई जैन को शक था कि इन लड़कियों की दोस्ती उनके पति से है और इसी के बाद उन्होंने इन लड़कियों को जहर देकर मार दिया था। यानी वो मामला भी रिश्तों में धोखे और अविश्वास का था और आज भी कई मामलों में यही धोखा रिश्तों को लहूलुहान कर रहा है। अब फ्रांस की बात करेंगे जहां सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों की शुरुआत शिक्षा व्यवस्था की बदहाली जैसे मुद्दे पर 17 सितंबर को हुई थी, लेकिन अक्टूबर ने इन प्रदर्शनों में अपना एक हिंसक रूप दिखा दिया है। फ्रांस 40 से ज्यादा शहरों में फ्रांस के इस वक्त प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, रोकना नामुमकिन है। लगभग लाठीचार्ज, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले सब नाकाफी साबित हो रहे हैं। अब ऐसे में कल इन प्रदर्शनों का सबसे भयंकर रूप दिखाई दिया। फ्रांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक कल 161,000 प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए थे, जिसमें अकेले पेरिस में लगभग 41,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों की संख्या को लेकर युवाओं के अलग अलग संगठनों ने दावा किया है कि कल के प्रदर्शन में 4,80,000 प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। तो पुलिस का दावा एक तरफ है, प्रदर्शनकारियों का एक तरफ है। इन प्रदर्शनों की वजह से फ्रांस के करीब 214 स्कूल्स को बंद रखा गया, देश की 90% यूनिवर्सिटीज बंद रही। फ्रांस में हो रहे प्रदर्शनों का सबसे बुरा असर राजधानी पेरिस के अलावा कुछ खास शहरों जैसे नॉन्ट, लियो, लॉन्स, स्ट्रासबर्ग, टुलूस, बॉर्डो और मर्सी में हुआ है। इन शहरों में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर है, जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। कल के प्रदर्शन में पेरिस के हालात ज्यादा खराब थे। फ्रांस सरकार के मुताबिक पेरिस में 11 पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर कांच की बॉटल्स, पटाखे, पत्थर खूब फेंके। प्रदर्शनकारियों की रोकने के लिए जो वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया उसका भी वीडियो देखिए। पिछले हफ्ते फ्रांस के गृह मंत्रालय ने दावा किया था कि प्रदर्शनों में करीब 71,000 प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे थे और अब यह संख्या दोगुनी हो चुकी है। दरअसल पिछले हफ्ते जो प्रदर्शन हुए थे उसके बाद फ्रांस की सरकार ने 3,000 शिक्षक बढ़ाने और 114 बदहाल स्कूल्स को ठीक कराने का वादा किया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इस वादे को झूठा बताया और खारिज कर दिया। 17 सितंबर से शुरू हुए प्रदर्शनों में अब तक करीब 7,000 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं और इसमें नाबालिगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन हिंसक प्रदर्शनों में 700 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी और सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। फ्रांस में होने वाले इन प्रदर्शनों को मुद्दे से भटकाने के भी आरोप लग रहे हैं। ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इन प्रदर्शनों में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। और इन्हें लहराने वालों ने फ्रांस की मैक्रो सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हिंसक प्रदर्शनों की शुरुआत के बाद से 3 ऐसे मौके आए हैं जब प्रदर्शनकारियों में शामिल हुए कुछ लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराकर हंगामा किया। सबसे पहले 6 अक्टूबर को स्ट्रासबर्ग में हुए और उसके बाद 7 और 8 अक्टूबर को पेरिस में फिलिस्तीन का झंडा लेकर प्रदर्शन हुआ। 8 अक्टूबर को तो फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने ट्रायम्फ डे ला रिपब्लिक स्मारक पर फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया। ये स्मारक फ्रांस के गणतंत्र की मजबूती को दिखाता है। फ्रांस में शिक्षा जैसे अहम मुद्दे को लेकर होने वाले प्रदर्शनों का इस्तेमाल, ये आरोप है फ्रांस की सरकार का कि कुछ ऐसी ताकतें इसका इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसी विदेशी ताकतें इस्तेमाल करने लगी हैं जो फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करती है, और इन लोगों ने जानबूझकर 6, 7, 8 अक्टूबर का दिन चुना है। क्योंकि आपको याद होगा कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ही इसराइल पर आतंकी हमला किया जिसमें 1200 से ज्यादा इसराइली लोगों को मार दिया गया और 250 से ज्यादा को बंधक बना लिया गया। आरोप लग रहे हैं कि फिलिस्तीन और हमास समर्थकों ने इन्हीं दिनों का इस्तेमाल फ्रांस के विरोध प्रदर्शनों में किया है। अब इस पूरे में नया बवाल और नया विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि फ्रांस के प्रदर्शनों में आखिर ग्रेटा थनबर्ग का क्या काम। तो कई लोग हैं जो उनके साथ भी इस मुद्दे पर खड़े हैं कि वो स्टूडेंट्स के साथ आज सामने विरोध में आ रही हैं, लेकिन कई लोग इस बात पर भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ग्रेटा थनबर्ग जो है वो फ्रांस में पेरिस में आखिर फिलिस्तीनी काफिये पहनकर क्या फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए आई है। तो ऐसे किसी भी बवाल के बीच और किसी भी विरोध प्रदर्शन के बीच आपको भी इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि दो गुट बन जाते हैं। एक तरफ से इस बात पर चर्चा होती है कि आखिर बच्चों की बात हो रही है और जब बच्चों के लिए उनकी शिक्षा व्यवस्था न्याय की बात हो रही है तो फिर कोई भी ह्यूमन जो राइट्स का एक्टिविस्ट है वो वहां पर क्यों ना आए। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा धड़ा इस बात को भी उठाता है कि क्या फिलिस्तीन के साथ समर्थन दिखाने के लिए, क्या फिलिस्तीन के मुद्दे को वहां प्रबल करने की जरूरत है। अगर बात शिक्षा की ही हो रही है तो ऐसे में फिलिस्तीन को आगे करने की जरूरत क्या है। अब सबसे बड़ा विवाद इस बात पर हो रहा है, कई सारे समर्थक तो साथ खड़े हैं ग्रेटा थनबर्ग के, लेकिन उनके विरोधी जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि फ्रांस के प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने ग्रेटा थनबर्ग क्यों पहुंचे। अब हम पूछेंगे कि क्या तकनीक इतनी आगे निकल चुकी है कि अब इंसान की गंदी सोच मशीनों के जरिए भी बाहर आने लगी है। ये खबर बहुत सचेत करती है। जानती है जर्मनी के कोलोन शहर में हैरान करने वाली घटना आई है, डरावनी खबर है, आंखें खोल देने वाला मामला सामने आया है। पूरी दुनिया की पुलिस और तकनीक के जानकारों को सख्ते में डाल दिया है। आरोप है कि एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक रोबोट ने छेड़छाड़ की। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पुरानी कड़वी यादों को दिल में बैकग्राउंड ऐप की तरह खुला मत छोड़िए। ये आपकी आज की शांति की बैटरी धीरे धीरे ड्रेन कर देती है। नमस्कार।

0: चुनाव आयोग के निर्णय और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आंदोलन लगातार चल रहा है। राहुल ने भले ही अपने अगले कदम की जानकारी अभी नहीं दी हो, लेकिन जंतर मंतर को लेकर राहुल की तरफ से सरकार को लगातार खबरदार किया जा रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस से जुड़े संगठनों का जंतर मंतर की तरफ मार्च करना हो या फिर राहुल का पुलिस की बदसलूकी के शिकार छात्रों के साथ पीसी करना, जंतर मंतर को लेकर लड़ाई धीरे धीरे तेज हो रही है।
1: उसके बारे में आप मत घबराइए, वो हमारा काम है। FIR होगा, प्रेशर करना है, क्या करना है। एक प्रोटेस्ट है, एक आवाज है, देश की आवाज है, और उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है।
2: SIR के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले NSUI के कार्यकर्ताओं के साथ

0: सबसे बड़ी बात, सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, जनतर मंत्र पर तिरंगा फहराने को अपराध नहीं बताते। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष का अगला प्रदर्शन जनतर मंत्र को लेकर ही होगा, जो अब विरोध प्रदर्शन की जगह नहीं रहा।
1: द वन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज जंतर मंतर, एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट जंतर मंतर कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड टू एक्सप्रेस डेमोक्रेटिक फीलिंग्स। वेल, वी आर गोइंग टू चैलेंज दैट आइडिया। इट इज नॉट गोइंग टू बी सो सिंपल फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड दैट द इंडियन पीपल विल नॉट फाइट फॉर देयर वॉइस।
0: राहुल इसका जवाब हाँ में दे चुके हैं। राहुल कह रहे हैं कि जनतर मंतर पर जाएंगे, वहीं दोबारा विरोध प्रदर्शन करेंगे, जहां सीजेपी के नेताओं को मिनट छोड़िए, कुछ ही सेकंडों में पुलिस ने पकड़ लिया। सवाल यह है कि अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो उसे क्या अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि राहुल के जंतर मंतर पर दिए बयान के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जंतर मंतर छोड़िए इन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने तक से रोक दिया, दो दो बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया।
2: वैसी अपना विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर दर्ज करवा रही। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, यहाँ आप देख सकते हैं कैसे जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंच गए। आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे आप पढ़ सकते होंगे संसद मार्ग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रायसेना रोड से जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं जो अपना मार्च शुरू करते हैं, जंतर मंतर जाते हैं और जंतर मंतर से यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट वो पहुंचते हैं। वहीं एक तरफ दिल्ली पुलिस की भी यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा भारी जो है तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं तैनात किए गए हैं, जगह जगह को बैरिकेड करके रखा ताकि जो आईवाईसी के कार्यकर्ता यहां से आगे ना बढ़ पाए, पर पहली लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर जो आईवाईसी के कार्यकर्ता यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए हैं अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने के लिए।
0: पुलिस की सख्ती के बावजूद SFI और DYFI जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने फिरोज शाह रोड से जंतर मंतर जाने की कोशिश की, जब पुलिस ने रोका तो नारेबाजी की। विपक्षी संगठन भले ही बार बार जंतर मंतर पर जाने की कोशिश कर रहे हों, राहुल इसे दोबारा वापस पाने के दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार और विपक्ष में टकराव की नई वजह बनती जा रही है। इस जगह पर अब पहले की तरह प्रदर्शन नहीं हो सकता, ऐसा करना अब गैरकानूनी हो गया है। अब सवाल ये है कि अगर कोई इसके बावजूद वहाँ प्रदर्शन करता है तो क्या होगा।
3: जंतर मंतर उन स्थानों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहाँ हमेशा के लिए हमेशा DNS की धारा 163 यानी कहें तो CRPC की धारा पहले जो 144 थी, निषेधाज्ञा जिसे कहते हैं भारतीय न्याय संहिता की, अब भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 163 का असर रहेगा, यानी उसके असर में आप वहां बिना किसी परमिशन के आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। और ऐसे भी वो धरना प्रदर्शन के लिए वहां अगर आप परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी डालेंगे तो मंजूर नहीं होगी, क्योंकि अब वो जगह धरना प्रदर्शन के लिए नामजद जगहों में नहीं रह गई है।
0: शुरुआत में दिल्ली का बोट क्लब बड़े आंदोलन का बड़ा केंद्र था, लोग बोट क्लब में जुटते और सरकार से मांगे करते या असहमति जताते। इंडिया गेट के पास स्थित बोट क्लब से भी संसद की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। राम मंदिर आंदोलन के वक्त केंद्र की कांग्रेस सरकार ने यहां प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। 1988 में पश्चिम यूपी के कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने यहां से एक आंदोलन किया था, जिससे तब की कांग्रेस सरकार हिल गई थी। साल 1993 में प्रदर्शन स्थल बनने के बाद जनतर मंतर भी कई आंदोलन का गवाह बना, इसमें अन्ना हजारे आंदोलन सबसे बड़ा है। जंतर मंतर निर्भया आंदोलन में भी चर्चा में रहा, CAA किसान आंदोलन भी यहां से हुए, लेकिन अब यहां पर प्रदर्शन करने से रोक लगा दी गई है।
3: जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में निषेधाज्ञा जब लगाई जाती है तो पूरा नई दिल्ली इलाका घुटने लगता है, यानी दम घुट जाता है, ट्रैफिक रेंगता रहता है और लोगों को परेशानियां होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार जंतर मंतर के बजाय किसी और खुली जगह पर प्रदर्शन के लिए इजाजत क्यों नहीं दे देती है, यही प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है।
0: जंतर मंतर का मामला अदालत पहुंच गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देने के दिल्ली पुलिस के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर को तय प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के आधार पर लिया गया है, जिसमें वैकल्पिक जगहों की पहचान करने की बात कही गई थी। पुलिस की ओर से ये भी दलील दी गई कि जब जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया जा चुका है तो इस फैसले

0: चुनौती देने वाली याचिका का अब कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की तो फिर उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
1: जैसा कि सीजेपी ने लगातार दोहराया कि हमारा अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, तो अब कानून की धाराओं में उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर आप वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, पांच या पांच से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके आगे भाषण करते हैं, तो आपको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। क्योंकि इसी में अगर आपके पास अवैध हथियार पाए जाते हैं, अगर आप पुलिस पर हमला करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं, तो अलग अलग धाराओं में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अधिकतम सजा 5 साल की सजा, 10,000 रुपए तक जुर्माना और चाहे अदालत चाहे तो दोनों चीजें एक साथ लगा सकती हैं। लिहाजा अब प्रदर्शन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है जहां निषेधाज्ञा यानी BNSS की धारा 163 लागू है, जिसे हम पुराने जमाने में 144 कहते थे, वो अगर लागू है तो आपको एक तो परमिशन नहीं मिलेगी और बिना परमिशन के अगर आप सिद्ध करेंगे कि हमने प्रदर्शन करना है तो इन सारी चीजों को भुगतने के लिए आप तैयार हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।
2: जंतर मंतर का मामला अदालत में है। अब अगर यहां प्रदर्शन को लेकर विपक्ष अड़ा तो उनके कार्यकर्ता, दिल्ली पुलिस के अफसर एक बार फिर से आमने सामने होंगे। राहुल ने NUCI कार्यकर्ताओं के साथ PC यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पुलिस ने भी जवाब दिया, बदसलूकी के अपने खिलाफ वीडियो जारी किए।
3: जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव
4: SIR पर अमित शाह की तरफ से पहले और बड़े हमले के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को छात्रों के बहाने घेरा।
5: ये हिंदुस्तान है, अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है। और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
4: राहुल गांधी ने सरकार ही नहीं दिल्ली पुलिस को भी चेतावनी दी, कहा प्यार से समझा रहा हूं।
5: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से। देखिए, मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत।
4: राहुल गांधी ने जिन लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सभी ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट और हिरासत में ज्यादती करने के आरोप लगाए। एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस RSS और भाजपा से जुड़े लोगों के कहने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही थी।
6: सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको इलीगली डिटेन नहीं करना है प्रोटेस्टर्स को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, पर मेरे को बजरंग दल और RSS के गुंडों के बोलने पे डिटेन किया गया और वो गुंडे वो थे जिनके पास मेरे पास उनका वीडियो है, सॉरी मेरे पास उनका वीडियो है जहां पर वो थ्रेटन कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में पत्थर है और वो सब होने के बावजूद वही सेम गुंडे जाके पुलिस को बोलते हैं और पुलिस सुप्रीम कोर्ट की ना सुनने के बजाय उन गुंडों की सुन के उन्होंने मेरे को ब्रूटली डिटेन किया।
4: राहुल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदिरा ने होठों के नीचे लगी चोटों को भी दिखाया।
7: चंचल यादव एंड अदर 3 or 4 पुलिस ऑफिसर्स वेंट इन द बस एंड ड्रैगन मी इन द रोड एंड आल्सो दे देयर इज SHO इन कैनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन। ही टोल्ड मी द लेडी पुलिस ऑफिसर taken away to basement, there is no CCTV, you can do anything, so they punch me here, mera live and continuously beaten my pura cheek।
4: इसी दौरान NSUI से जुड़ी रितु बराला ने बताया कि उनके चेहरे पर चोट लगने की वजह दिल्ली पुलिस है। रितु ने बस में चंचल यादव नाम की एक महिला पुलिस कांस्टेबल पर मारपीट के आरोप लगाए।
8: महिला पुलिसकर्मी होती है वो इतना अग्रेसिव हो जाती है, हम आगे आने की कोशिश करते तो वो मुझे इतनी जोर से धक्का मारती कि मैं पीछे जाके सीट पे, वो इतना जोर से पुश करती कि मैं पीछे सीट पे जाके गिरती हूँ, और फिर वो इतना जोर से अग्रेसिव हो जाती कि मेरा गला जोर से दबा लेती है। इधर
9: पीछे का विजुअल है वो,
8: जी जी जी, यहाँ से मतलब मेरा गला पूरा स्क्रेच हो जाता है पूरा, और फिर मतलब मैं गला कैसे छुड़ाने का प्रयास करती हूँ तो वो मेरे मुंह पे पंजा मार के मुक्का मारती है, और फिर यहाँ इतनी जोर से मतलब पूरा स्क्रेच कर देती है पूरे फेस को, और आंख के इधर भी लगता है। तो उसके बाद ये छुड़ाने का प्रयास करते हैं के लिए मैं धक्का मारती हूँ, तो वो मेरे जोर से इतना थप्पड़ मार के मेरे बालों पे मतलब पूरा कैप्चर कर लेती है, जूते रगड़ के, और मेरी जो इयररिंग होती है वो मेरे कान के अंदर चली जाती है। और उसके बाद हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा वो बाली मेरे साथियों के सामने निकाली जाती है।
4: अब 13 अक्टूबर की ये तस्वीर देखिए, जिसमें रितु और महिला पुलिसकर्मी के बीच झड़प हो रही है। पुलिसकर्मी पर रितु थप्पड़ मारती दिखती है। अब पुलिस पूछ रही है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का हक किसने दिया।
10: वायरल वीडियो में दिखाई दे रही महिला पुलिसकर्मी का नाम चंचल यादव है, वो नई दिल्ली जिले में तैनात है। उसने सीनियर अफसरों को शिकायत दी है, उसमें बताया है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दौरान महिला एनएसयूआई की कार्यकर्ता को उसने हिरासत में लिया और बस में बिठाया, जहां एनएसयूआई की महिला कार्यकर्ता ने बस ड्राइवर से चाबी छीनी और उसे जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। महिला कांस्टेबल चंचल यादव ने आरोप लगाया है कि एनएसयूआई की कार्यकर्ता ने उसके साथ मारपीट की, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने चंचल यादव का मेडिकल टेस्ट करवाया है और अगर लीगल एक्शन लिया जा रहा है।
11: डर गायब हो गया,
12: बिल्कुल हो गया सर।
4: तो भले ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की मारपीट के बावजूद शांतिपूर्ण संदेश दिए जाने की बात कही गई हो,

0: थैंक यू। नफरत का जवाब प्यार से ही दिया जाएगा बेसिकली।
1: लेकिन दिल्ली पुलिस इस तरह के वीडियो के आधार पर पुलिस कर्मियों के हक का सवाल उठा रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान छात्रों से मारपीट का वीडियो बनाने को कहा है, उससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों में वीडियो वॉर तेज होने की पूरी संभावना है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: जंतर मंतर में सीजेपी नेताओं ने प्रतिबंध के बावजूद प्रदर्शन कर नारेबाजी की, जिसके बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वहीं अजिंक्य शिंदे को रिहा कर दिया गया। अभी तक राहुल सीजेपी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन जंतर मंतर से जुड़े मामले में राहुल का समर्थन और फिर अभिजीत दीपके का थैंक यू कहना चर्चा का विषय है। अब दीपके, नेहा बोरा, कपिल सिब्बल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
1: सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका स्वागत इस तरह से होगा। ऐसा दूसरी बार है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दीपके को सरप्राइज में विरोध मिलता है।
3: भारत माता की जय।
4: राजस्थान के एनएसए यूएन में जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो। आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड।
5: कचरा सा स्वच्छ भारत अभियान।
1: जंतर मंतर पर भी सीजेपी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने सरप्राइज दिया और मिनटों में पकड़ लिया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से रोकने के बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से दो को, सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।
6: जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो? ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया।
1: तिहाड़ जेल में सौरभ दास को जेल नंबर 2 में रखा गया है, वहीं आशुतोष रांका को जेल नंबर 4 में रखा गया है। दोनों को तिहाड़ जेल की अलग अलग बैरक में रखा गया है। अब सवाल ये है कि सीजेपी नेताओं को तिहाड़ क्यों भेजा गया? क्या इसकी वजह सख्त नाकेबंदी के बावजूद मंगलवार सुबह प्रतिबंधित क्षेत्र जंतर मंतर में घुसना है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तीनों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया, फिर तीनों को बुधवार संसद मार्ग की एसीएम कोर्ट के सामने पेश किया, जहां पर पिछली जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। दरअसल बेल बॉन्ड की शर्त का उल्लंघन करने पर जिन्हें अदालत जेल की सजा सुनाती है, इस तरह के मामले में तुरंत राहत के लिए किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, आरोपियों को सजा काटनी ही पड़ती है। जंतर मंतर को लेकर प्रशासन इसलिए भी सख्त है क्योंकि अब इसमें पाकिस्तानी साजिश के एंगल मिले हैं।
7: ऐसे हैंडल्स हैं जिनकी आईपी इंडिकेट करती है कि वो पाकिस्तान से क्रिएट किए हुए हैंडल्स हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना मना है, फिर भी कनॉट प्लेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रदर्शन में घायल एनएसयूआई के छात्रों को लेकर राहुल गांधी हाजिर हुए, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए, जिसके बाद जंतर मंतर को लेकर सवाल और गहरा गया है।
8: अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए।
2: मेरठ के नीले ड्रम केस में कोर्ट ने मुस्कान साहिल को फांसी की सजा सुना दी। जज ने सौरभ हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए मौत की सजा सुनाई।
9: पहले हुआ हत्याकांड और करीब 1 साल से चल रहे ट्रायल के बाद आखिरकार नीला ड्रम कांड में कोर्ट का फैसला आ गया। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
3: वो कहाँ गया था, क्योंकि चश्मदीद गवाह नहीं है और उसके बच्चे हैं और इसके माँ बाप बुजुर्ग हैं, ये सारी तथ्य रखे गए थे, लेकिन वो कोर्ट ने कोई वो नहीं माना और इनको अपराध की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड की सजा मुकर्रर की है।
9: जिला जेल से दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। जज ने मुस्कान से पूछा, तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? मुस्कान ने जवाब दिया, मेरी बेटी छोटी है, उसका ख्याल रखा जाए। फिर वो खामोश हो गई। इसके बाद साहिल से यही सवाल पूछा गया तो वो भी चुप रहा।
10: जज ने आज ये भी कहा बहस के दौरान कि हमें फैसला देने से पहले ये भी देखना है कि समाज और जनता की ओपिनियन क्या है ऐसे केसेस में जिससे समाज पे असर पड़ता है। उनका इशारा ये था कि हाल के वक्त में बहुत सारी पत्नियां के हाथों पति का कत्ल हो रहा है, पति के हाथों पत्नियां का कत्ल हो रहा है, तो समाज में जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है तो एक ऐसा फैसला होना चाहिए जो जनता चाहती है उस हिसाब से ये फैसला, और जो समाज में सोच है उस हिसाब से भी एक मैसेज जाए।
9: सरकारी वकील ने कोर्ट से मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं मुस्कान साहिल के वकील ने कहा था, मुस्कान की दो बेटियां हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, कम से कम सजा होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फांसी की सजा पर मुहर लगाई।
11: अब इस पूरे मामले में जो साइंटिफिक एविडेंसेस थे, क्योंकि जो नशा दिया गया था खाने में सब्जी में, उस नशे को कहां से खरीदा गया था उसने भी आइडेंटिफाई किया, मुस्कान को आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से ये कत्ल के पहले खरीदी थी, सीसीटीवी फुटेज कत्ल के पहले और बाद का, कौन आया कौन गया, ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण थी और डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे काम किया, जिसके बाद आज ये दिन आया, 30 सितंबर को दोषी ठहराया गया था और आखिरकार आज जो मेरठ कोर्ट है वही ठीक मौजूद है, यहाँ पर अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है।
9: 30 सितंबर को कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी ठहराया था। सौरभ राजपूत के परिवार ने कोर्ट से दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई थी।
12: हम तो यही देना संदेश जाते भैया, किसी का भी बच्चे को मारो मत, नहीं रहना उनके साथ, अलग हो जा। अगर कोई लड़का नहीं चाहता लड़की को मार देता है तो वो भी अपने नई लड़की के साथ रहना तो वो भी अलग हो जाए, अगर ये ऐसा काम करेंगे तो उनको भी फांसी की ही सजा होगी।
9: अब सवाल ये है कि आखिर मुस्कान को फांसी कब और कैसे होगी, क्योंकि मुस्कान की दो छोटी बेटियां हैं, एक बेटी सौरभ राजपूत की है तो वहीं दूसरी बेटी साहिल की, जिसका जन्म जेल में हुआ था।
13: साहिल के घर वाले करेंगे, क्योंकि साहिल ने आगे आके बोला था कि भाई मैं, ये तुम चाचा बन गए हो जो उसके जेल बंदी थे, और उन्होंने बोला मैं बाहर आने के बाद जो है तुम्हें दावत दूंगा, उसने खुले में बोला था कि मेरी बच्ची
12: जो जेल वाली बेटी है उससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, और वो बड़ी वाली बेटी अगर उसके नाना नानी हमें बिना किसी उसके देंगे तो हम रखेंगे उसे अपने पास।
9: सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। शव को 5 टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया गया था। जुलाई 2025 में जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था, जिसके बाद आज कोर्ट ने फांसी की सजा देकर सौरभ राजपूत के परिवार को इंसाफ दिया। मेरठ से शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।
2: ईरान ने हूती विद्रोहियों के द्वारा अमेरिका और सऊदी अरब की नींद उड़ा रखी है। सऊदी पर हूतियों के हमले पर पहली बार ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान आया। ट्रंप ने दावा किया कि सऊदी पर हमले के पीछे तेल का खेल है, तेल का वही खेल जो मिड टर्म चुनाव को लेकर ईरानी साजिश का हिस्सा है।

0: सऊदी पर हमले के पीछे तेल का खेल, ईरान के इशारे पर निशाना बना रहे हूती, क्या ईरान का निशाना है मिड टर्म चुनाव, ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू में हुई बात, क्या हूतियों के हमलों का बदला लेंगे ट्रंप, तीन नवंबर से पहले ईरान पर होगा हमला, 27 अक्टूबर को इसराइल में चुनाव है तो 3 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है, चाहे इसराइल में चुनाव हो या फिर अमेरिका में मिड टर्म चुनाव, ट्रंप और नेतन्याहू के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, चुनाव में जीत मिली तो ईरान युद्ध पर जनता मोहर लगा देगी, लेकिन चुनाव में नेतन्याहू या फिर ट्रंप की पार्टी की हार हुई तो फैसला युद्ध छेड़ने के खिलाफ माना जाएगा। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी पर हूतियों के हमले के बीच ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर फोन पर बातचीत हुई है, बातचीत के दौरान ईरान पर नए सिरे से हमलों को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है, इसी बातचीत को लेकर ईरानी सेना की तरफ से अमेरिका को सीधी धमकी दी गई है, ईरान के खिलाफ नया युद्ध शुरू करना अमेरिका के लिए तर्कहीन होगा, लेकिन इस तरह के हमले की संभावना बनी हुई है क्योंकि ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले एक उपलब्धि हासिल करने की जरूरत है, ईरान किसी भी नए आक्रमण का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है, इस बार अमेरिका के लिए परिणाम कहीं अधिक गंभीर होंगे, ईरान ने 40 दिनों के युद्ध के दौरान मुख्य रूप से अपने पुराने हथियारों पर भरोसा किया था, लेकिन तब से उसे कहीं अधिक उन्नत हथियार प्राप्त हो गए हैं, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हमले के लिए पूरी तरह तैयार है, ईरान की तरफ से ये भी संकेत दिए गए हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया या फिर हूतियों के खिलाफ अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो खाड़ी देशों पर जमीनी स्तर पर ईरानी सेना घुसपैठ कर सकती है, अगर अमेरिका नए हमले शुरू करता है तो हम पड़ोसी देशों में सेना भेज सकते हैं, अब की बार ईरानी सेना की तैयारी कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने की है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी मुल्कों को भारी कीमत चुकानी होगी, सऊदी अरब के तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है, यूएई के अहम ठिकानों के साथ साथ क्षेत्रीय डेटा सेंटर और इंटरनेट केबल भी निशाने पर हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने अपना चक्रव्यूह तैयार किया है, पहले ही होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है और लाल सागर के बड़े हिस्से पर हूतियों का कंट्रोल है, यही वजह है कि ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ट्रंप मानते हैं कि तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए हूती की तरफ से सऊदी अरब पर हमले किए जा रहे हैं जो मिड टर्म चुनाव तक चलेंगे, इसी बीच IRGC की तरफ से होर्मुज को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, अगर अमरीकियों को लगता है कि होर्मुज खुला है तो वो करीब आ जाएं। हम अमेरिकी युद्ध पोतों को डुबोने के लिए बेताब हैं। $13 अरब मूल्य का एक अमेरिकी युद्ध पोत अप्रभावी हो गया था और होर्मुज से 700 किलोमीटर दूर चला गया था क्योंकि उसने जलमार्ग के पास आने की हिम्मत नहीं की, हम अमेरिकी युद्ध पोतों के होर्मुज के प्रवेश द्वार के पास आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उन्हें डुबो सकें, हम इस घटना के होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल ईरान ये मानकर चल रहा है कि 27 अक्टूबर या फिर 3 नवंबर से पहले अमेरिका और इसराइल एक बार फिर हमले की हिमाकत कर सकते हैं, इस हमले को ईरान पर जीत के तौर पर ट्रंप और नेतन्याहू अपने मुल्क की जनता के सामने रख सकते हैं, इसी आशंका को देखते हुए IRGC की तरफ से अमेरिका में होने वाले मिड टर्म चुनाव को लेकर अमेरिकी जनता के नाम एक खत लिखा गया था, आप ही हैं जो अपने वोटों से सरकार को शक्ति देते हैं और उसे मनमानी करने की अनुमति देते हैं, हालांकि अमेरिकी राजनेता अक्सर धोखे और झूठे वादों के जरिए आपके वोट जीतते हैं जैसा कि ट्रंप ने किया, लेकिन अगर आप अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का चुनाव करते समय अच्छे नेतृत्व के मानदंडों को अपनाते हैं तो आप सरकार की संरचना को बदल सकते हैं, आपको अपनी सरकार को इसराइल से दूरी बनाने के लिए मजबूर करना होगा क्योंकि फिलिस्तीन पर कब्जा करने वालों को देर सवेर अपनी कब्जे वाली जमीन छोड़कर अपने मूल देशों में लौटना ही होगा, हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में एक साथ रह सकते हैं, अमेरिका की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार दुष्ट कपटी और हिंसक राजनेताओं को सत्ता से हटा दें, अपने मामलों को बुद्धिमानों को सौंपें न कि धूर्तों को।
1: और छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए

0: इंडिया गेट पर धरने पर बैठे अंकिता के माता पिता से मिलने के बाद राहुल का पोस्ट, 4 साल से नहीं मिला इंसाफ। 2022 में अंकिता का हुआ था मर्डर, धामी सरकार का बयान, मामले की कराई हमने निष्पक्ष और तेज जांच। राहुल के साथ एनएसयूआई छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थाने, बदले में पुलिस ने बदसलूकी का जारी किया वीडियो। दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके का एयरपोर्ट पर लोगों ने किया विरोध, नाराजगी जताई, दीपके ने 16 अक्टूबर को नॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की अपील की। वाराणसी से सीएम ने अखिलेश पर बोला धावा, कहा समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या पराया धन अपना। और मेरठ नीले ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी, जज ने कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, सौरभ के शव के दोनों ने किए थे टुकड़े। चुनाव आयोग के निर्णय और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आंदोलन लगातार चल रहा है। राहुल ने भले ही अपने अगले कदम की जानकारी अभी नहीं दी हो, लेकिन जंतर मंतर को लेकर राहुल की तरफ से सरकार को लगातार खबरदार किया जा रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस से जुड़े संगठनों का जंतर मंतर की तरफ मार्च करना हो या फिर राहुल का पुलिस की बदसलूकी के शिकार छात्रों के साथ पीसी करना, जंतर मंतर को लेकर लड़ाई धीरे धीरे तेज हो रही है।
1: उसके बारे में आप मत घबराइए, वो हमारा काम है। एफआईआर होगा, प्रेशर करना है, क्या करना है, एक प्रोटेस्ट है, एक आवाज है, देश की आवाज है, और उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है।
2: एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी छात्रों को डरना मत वाला मंत्र देते हैं। जंतर मंतर को भारत के लोगों का बताकर इसे वापस लेने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, जंतर मंतर पर तिरंगा फहराने को अपराध नहीं बताते। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष का अगला प्रदर्शन जंतर मंतर को लेकर ही होगा, जो अब विरोध प्रदर्शन की जगह नहीं रहा।
3: द वन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज जंतर मंतर, एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट जंतर मंतर can no longer be used to express democratic feelings. Well, we are going to challenge that idea. It is not going to be so simple for the government to decide that the Indian people will not fight for their voice.
2: Rahul iska jawab haan mein de chuke hain. राहुल कह रहे हैं कि जनतर मंतर पर जाएंगे, वहीं दोबारा विरोध प्रदर्शन करेंगे, जहां सीजेपी के नेताओं को मिनट छोड़िए कुछ ही सेकंडों में पुलिस ने पकड़ लिया। सवाल यह है कि अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो उसे क्या अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि राहुल के जंतर मंतर पर दिए बयान के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जंतर मंतर छोड़िए इन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने तक से रोक दिया, दो दो बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया।
4: आईसी अपना विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर दर्ज करवा रही, आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। यहां आप देख सकते हैं कैसे जो आईसी के कार्यकर्ता हैं यहां पर पहुंच गए, आपको दिखाना चाहूंगा। पीछे आप पढ़ सकते होंगे संसद मार्ग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रायसेना रोड से जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं जो अपना मार्च शुरू करते हैं, जंतर मंतर जाते हैं और जंतर मंतर से यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट वो पहुंचते हैं। वहीं एक तरफ दिल्ली पुलिस की भी यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा भारी जो है तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं तैनात किए गए हैं, जगह जगह को बैरिकेड करके रखा ताकि जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं यहां से आगे ना बढ़ पाए, पर पहली लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए हैं अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने के लिए।
2: पुलिस की सख्ती के बावजूद एसएफआई और डीवाईएफआई जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने फिरोज शाह रोड से जंतर मंतर जाने की कोशिश की, जब पुलिस ने रोका तो नारेबाजी की। विपक्षी संगठन भले ही बार बार जंतर मंतर पर जाने की कोशिश कर रहे हों, राहुल इसे दोबारा वापस पाने के दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार और विपक्ष में टकराव की नई वजह बनती जा रही है। इस जगह पर अब पहले की तरह प्रदर्शन नहीं हो सकता, ऐसा करना अब गैर कानूनी हो गया है। अब सवाल ये है कि अगर कोई इसके बावजूद वहाँ प्रदर्शन करता है तो क्या होगा।
5: जंतर मंतर उन स्थानों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहाँ हमेशा के लिए हमेशा हमेशा DNS की धारा 163 यानी कहें तो सीआरपीसी की धारा पहले जो 144 थी निषेधाज्ञा जिसे कहते हैं भारतीय न्याय संहिता की, अब भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 163 का असर रहेगा, यानी उसके असर में आप वहां बिना किसी परमिशन के आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। और ऐसे भी वो धरना प्रदर्शन के लिए वहां अगर आप परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी डालेंगे तो मंजूर नहीं होगी, क्योंकि अब वो जगह धरना प्रदर्शन के लिए नामजद जगहों में नहीं रह गई है।
2: शुरुआत में दिल्ली का बोट क्लब बड़े आंदोलन का बड़ा केंद्र था। लोग बोट क्लब में जुटते और सरकार से मांगे करते या असहमति जताते। इंडिया गेट के पास स्थित बोट क्लब से भी संसद की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। राम मंदिर आंदोलन के वक्त केंद्र की कांग्रेस सरकार ने यहां प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। 1988 में पश्चिम यूपी के कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने यहां से एक आंदोलन किया था, जिससे तब की कांग्रेस सरकार हिल गई थी। साल 1993 में प्रदर्शन स्थल बनने के बाद जनतर मंतर भी कई आंदोलन का गवाह बना। इसमें अन्ना हजारे आंदोलन सबसे बड़ा है। जंतर मंतर निर्भया आंदोलन में भी चर्चा में रहा। CAA किसान आंदोलन भी यहां से हुए, लेकिन अब यहां पर प्रदर्शन करने से रोक लगा दी गई है।
5: जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में निषेधाज्ञा जब लगाई जाती है तो पूरा नई दिल्ली इलाका घुटने लगता है, यानी दम घुट जाता है, ट्रैफिक रेंगता रहता है और लोगों को परेशानियां होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार जंतर मंतर के बजाय किसी और खुली जगह पर प्रदर्शन के लिए इजाजत क्यों नहीं दे देती है, यही प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है।
2: जंतर मंतर का मामला अदालत पहुंच गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देने के दिल्ली पुलिस के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर को तय प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के आधार पर लिया गया है, जिसमें वैकल्पिक जगहों की पहचान करने की बात कही गई थी। पुलिस की ओर से ये भी दलील दी गई कि जब जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया जा चुका है तो इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का अब कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की तो फिर उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
5: जैसा कि CJP ने लगातार दोहराया कि हमारा अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, तो अब कानून की धाराओं में उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर आप वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, 5 या 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके आगे भाषण करते हैं, तो आपको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि इसी में अगर आपके पास अवैध हथियार पाए जाते हैं, अगर आप पुलिस पर हमला करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं, तो अलग अलग धाराओं में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अधिकतम सजा 5 साल की सजा, ₹10,000 तक जुर्माना और चाहे अदालत चाहे तो दोनों चीजें एक साथ लगा सकती हैं। लिहाजा अब प्रदर्शन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है जहां निषेधाज्ञा यानी BNSS की धारा 163 लागू है, जिसे हम पुराने जमाने में 144 कहते थे, वो अगर लागू है तो आपको एक तो परमिशन नहीं मिलेगी और बिना परमिशन के अगर आप सिद्ध करेंगे कि हमने प्रदर्शन करना है तो इन सारी चीजों को भुगतने के लिए आप तैयार हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।
0: जंतर मंतर का मामला अदालत में है। अब अगर यहां प्रदर्शन को लेकर विपक्ष अड़ा तो उनके कार्यकर्ता, दिल्ली पुलिस के अफसर एक बार फिर से आमने सामने होंगे। राहुल ने LUCI कार्यकर्ताओं के साथ PC यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पुलिस ने भी जवाब दिया, बदसलूकी के अपने खिलाफ वीडियो जारी किए।
6: जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव
2: SIR पर अमित शाह की तरफ से पहले और बड़े हमले के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को छात्रों के बहाने घेरा।
1: ये हिंदुस्तान है, अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
2: राहुल गांधी ने सरकार ही नहीं दिल्ली पुलिस को भी चेतावनी दी, कहा प्यार से समझा रहा हूं।
1: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से। देखिए, मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस और घबराइए मत।
2: राहुल गांधी ने जिन लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सभी ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट और हिरासत में ज्यादती करने के आरोप लगाए। एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों के कहने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही थी।
7: सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको इलीगली डिटेन नहीं करना है प्रोटेस्टर्स को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, पर मेरे को बजरंग दल और आरएसएस के गुंडों के बोलने पे डिटेन किया गया और वो गुंडे वो थे जिनके पास मेरे पास उनका वीडियो है, सॉरी मेरे पास उनका वीडियो है जहाँ पर वो थ्रेटन कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में पत्थर है और वो सब होने के बावजूद वही सेम गुंडे जाके पुलिस को बोलते हैं और पुलिस सुप्रीम कोर्ट की ना सुनने के बजाय उन गुंडों की सुन के उन्होंने मेरे को ब्रूटली डिटेन किया।
2: राहुल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदिरा ने होठों के नीचे लगी चोटों को भी दिखाया।
8: Chanchal Yadav and other 3 or 4 police officers went in the bus and dragged me in the road. And also there is a SHO in Cannot Place police station. He told me, the lady police officer, taken away to basement. There is no CCTV, you can do anything. So they punched me here. Mera live. And continuously beaten my pura cheek.
2: इसी दौरान NSUI से जुड़ी रितु बराला ने बताया कि उनके चेहरे पर चोट लगने की वजह दिल्ली पुलिस है। रितु ने बस में चंचल यादव नाम की एक महिला पुलिस कांस्टेबल पर मारपीट के आरोप लगाए।
9: महिला पुलिसकर्मी होती है वो इतना अग्रेसिव हो जाती है, हम आगे आने की कोशिश करते हैं तो वो मुझे इतनी जोर से धक्का मारती कि मैं पीछे जाके सीट पे, वो इतना जोर से पुश करती कि मैं पीछे सीट पे जाके गिरती हूँ और फिर वो इतना जोर से अग्रेसिव हो जाती कि मेरा गला जोर से दबा लेती है। इधर
10: पीछे का विजुअल है वो,
9: जी जी जी, यहाँ से मतलब मेरा गला पूरा स्क्रेच हो जाता है पूरा और फिर मतलब मैं गला कैसे छुड़ाने का प्रयास करती हूँ तो वो मेरे मुंह पे पंजा मार के मुक्का मारती है और फिर यहाँ इतनी जोर से मतलब पूरा स्क्रेच कर देती है पूरे फेस को और आंख के इधर भी लगता है। तो उसके बाद ये छुड़ाने का प्रयास करते हैं के लिए मैं धक्का मारती हूँ तो वो मेरे जोर से इतना थप्पड़ मार के मेरे बालों पे मतलब पूरा कैप्चर कर लेती है, जूते रगड़ के, और मेरी जो इयररिंग होती है वो मेरे कान के अंदर चली जाती है और उसके बाद हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा वो बाली मेरे साथियों के सामने निकाली जाती है।
2: अब 13 अक्टूबर की ये तस्वीर देखिए जिसमें रितु और महिला पुलिसकर्मी के बीच झड़प हो रही है। पुलिसकर्मी पर रितु थप्पड़ मारती दिखती है। अब पुलिस पूछ रही है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का हक किसने दिया।
11: वायरल वीडियो में दिखाई दे रही महिला पुलिसकर्मी का नाम चंचल यादव है, वो नई दिल्ली जिले में तैनात है। उसने सीनियर अफसरों को शिकायत दी है, उसमें बताया है कि NSUI के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दौरान महिला NSUI की कार्यकर्ता को उसने हिरासत में लिया और बस में बिठाया, जहां NSUI की महिला कार्यकर्ता ने बस ड्राइवर से चाबी छीनी और उसे जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। महिला कांस्टेबल चंचल यादव ने आरोप लगाया है कि NSUI की कार्यकर्ता ने उसके साथ मारपीट की जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने चंचल यादव का मेडिकल टेस्ट करवाया है और अगर लीगल एक्शन लिया जा रहा है।
12: सर गायब हो गया?
13: बिल्कुल हो गया सर।
2: तो भले ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की मारपीट के बावजूद शांतिपूर्ण संदेश दिए जाने की बात कही गई हो,

0: थैंक यू. नफरत का जवाब प्यार से ही दिया जाएगा बेसिकली.
1: लेकिन दिल्ली पुलिस इस तरह के वीडियो के आधार पर पुलिस कर्मियों के हक का सवाल उठा रही है. राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान छात्रों से मारपीट का वीडियो बनाने को कहा है, उससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों में वीडियो वॉर तेज होने की पूरी संभावना है. अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक.
2: जंतर मंतर में सीजेपी नेताओं ने प्रतिबंध के बावजूद प्रदर्शन कर नारेबाजी की, जिसके बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया. वहीं अजिंक्य शिंदे को रिहा कर दिया गया. अभी तक राहुल सीजेपी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन जंतर मंतर से जुड़े मामले में राहुल का समर्थन और फिर अभिजीत दीपके का थैंक यू कहना चर्चा का विषय है. अब दीपके, नेहा बोरा, कपिल सिब्बल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
1: सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका स्वागत इस तरह से होगा. ऐसा दूसरी बार है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दीपके को सरप्राइज में विरोध मिलता है.
3: भारत माता की जय.
4: राजस्थान के एनएसए यूएन में जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो. आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड.
1: स्वच्छ भारत अभियान. जंतर मंतर पर भी सीजेपी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने सरप्राइज दिया और मिनटों में पकड़ लिया. जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से रोकने के बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से दो को, सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है.
5: जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो? ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था. तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया.
1: तिहाड़ जेल में सौरभ दास को जेल नंबर 2 में रखा गया है, वहीं आशुतोष रांका को जेल नंबर 4 में रखा गया है. दोनों को तिहाड़ जेल की अलग अलग बैरक में रखा गया है. अब सवाल ये है कि सीजेपी नेताओं को तिहाड़ क्यों भेजा गया? क्या इसकी वजह सख्त नाकेबंदी के बावजूद मंगलवार सुबह प्रतिबंधित क्षेत्र जंतर मंतर में घुसना है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तीनों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया, फिर तीनों को बुधवार संसद मार्ग की एसीएम कोर्ट के सामने पेश किया, जहां पर पिछली जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया. दरअसल बेल बॉन्ड की शर्त का उल्लंघन करने पर जिन्हें अदालत जेल की सजा सुनाती है, इस तरह के मामले में तुरंत राहत के लिए किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है. आरोपियों को सजा काटनी ही पड़ती है. जंतर मंतर को लेकर प्रशासन इसलिए भी सख्त है क्योंकि अब इसमें पाकिस्तानी साजिश के एंगल मिले हैं.
6: ऐसे हैंडल्स हैं जिनकी आईपी इंडिकेट करती है कि वो पाकिस्तान से क्रिएट किए हुए हैंडल्स हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है.
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना मना है, फिर भी कनॉट प्लेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. इससे पहले प्रदर्शन में घायल एनएसयूआई के छात्रों को लेकर राहुल गांधी हाजिर हुए, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए, जिसके बाद जंतर मंतर को लेकर सवाल और गहरा गया है.
7: अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए.
2: पंजाब के मानसा में एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद से शहर में तनाव है. इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी अश्विनी को पुलिस ने राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया, लेकिन उसके खिलाफ गुस्सा नहीं थम रहा. अश्विनी के घर में पहले तोड़फोड़ की गई, उसकी दुकान में आग लगा दी गई. पंजाब सरकार ने घर पर बुलडोजर चला दिया.
8: पंजाब का एक उभरता बॉक्सर पहले खुद नशे का आदी बना और फिर उसी ने नशे को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया. एक लाइन में परविंदर सिंह झोटा की यही कहानी है. परविंदर सिंह झोटा को मानसा में बाबा बॉक्सर कहा जाता था। जालंधर के लायलपुर खालसा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान छोटा एक टैलेंटेड बॉक्सर थे, लेकिन किसी कारणवश वो इंटरनेशनल नहीं खेल पाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि परविंदर झोटा को खुद नशे की लत लग गई थी, लेकिन बाद में झोटा इस नशे की लत से बाहर आए और पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा। उन्होंने नशे को खत्म करना अपने जीवन का मिशन बना लिया, लेकिन अंत में इसी मिशन ने उनकी जिंदगी भी ले ली। लेकिन परविंदर झोटा की हत्या ने पूरे मानसा में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में तनाव पैदा कर दिया है। चुनाव नजदीक है, इसलिए राजनीति भी हो रही है। झोटा के घर वालों से मिलने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या अकाली दल, आम आदमी पार्टी, सब नेता पहुंच रहे हैं। और अब कल पंजाब बंद का भी ऐलान हो गया है।
3: श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने फैसला किया है कि नशियां के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए अपनी जान निशावर करने वाले सरदार परमिंदर सिंह झोटा के सत्कारयोग पिता जी ने जिहड़ी कल 15 तरीक नू पंजाब बंद की कॉल दिती है, श्रोमणी अकाली दल उस पीसफुल बंद का समर्थन करेगा, क्योंकि इस वेले जिहड़ा मुद्दा है वह पंजाब की जवानी नू बचाउण दा। श्रोमणी अकाली दल सारे पंजाबियों नू अपील करदा कि किसी नू कहन की जरूरत नहीं पैनी चाहिए, बिल्कुल पीसफुल तरीके दे नाल जिस तरह जेडे परविंदर सिंह झोटा के पिता जी ने बेनती की है कि एक सुनेहा जाना चाहिए सारे देश नू कि सारा पंजाब उस सोच दे नाल खड़ा जिदे वास्ते परविंदर सिंह झोटा ने अपनी शहादत दी।
8: पंजाब में भगवंत मान की सरकार भी दावा कर रही है कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो पंजाब में नशे के विरुद्ध युद्ध छेड़ा हुआ है।
9: पंजाब पुलिस वालों कोई भी कमी नहीं छड़ी जाऊगी, दोषियों को सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। जे यदि साजिश के पिछे कोई बंदा होया तो उन्होंने भी नहीं बख्शा जाऊगा। पूरे पंजाब दे विच जो भावें मेडिकल नशा है भावें वैसे चिट्टा बेचते हैं असी युद्ध छेड़िया होया ते उच किसी नू कोई लिबर्टी जा किसी नाल कोई लिहाज नहीं की जाऊगी। परविंदर सिंह झोटा के परिवार नाल हमदर्दी भी प्रगट करदा कि एक जवान पुत जिहड़ा वो दुनिया तो चला गया, पर इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए सी। पर जो भी कमियां भावें जिस पद्धर ते मर्जी होवे मैं DGP साहब नू सख्त निर्देश दिते ने कि इहदी जिहड़ी है पूरी जांच पड़ताल की जाए ते दुध दा दुध ते पानी दा पानी कीता।
8: पंजाब की विपक्षी पार्टियां सरकार के इसी अभियान को मुद्दा बना रही हैं। कांग्रेस के सांसद अमरिंदर राजा बड़े आज मृतक के परिवार से मिले, परविंदर झोटा के माता पिता उनके बच्चों से मिले, और जब मीडिया से बात करने की बारी आई तो राजा बड़िंग ने पंजाब सरकार के इसी अभियान पर सवाल उठा दिया।
10: भगवंत मान साहब कहंदे सी कि ये नशा असी 1.5 महीने दे विच खत्म कर देना, और इस नशा खत्म करन दे वास्ते बड़ियां मुहिमां चलाईयां गईयां विखावे दे वास्ते। एक ऐसी मुहिम जिहड़ा ना युद्ध नशा विरुद्ध सी, जेड़ा विखावा तो किया और करोड़ा रुपया लोगों का खर्च किया, लेकिन मैं समझना कि एदू महाड़ी मुहिम ते जान बुझ के लोगों नू जेड़ा बेवकूफ बनाया पंजाब सरकार ने कुछ हो नहीं सकता। पंजाब दी पुलिस दी, पंजाब दे मुख्यमंत्री दी और पंजाब दे सरकार दी पूरन करड़े शब्द च निंदा कर दी।
8: कांग्रेस से बीजेपी में आए रवनीत बिट्टू भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने भी पंजाब सरकार पर सवाल उठाए, कानून व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म बताया और परिवार की हर संभव सहायता की बात की।
11: ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ 27 ਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ केस भी जिहड़ा है वह सी बी आई नूं नहीं दिंदा उन्ना चिर बीजेपी पार्टी अपनी लड़ाई लड़ूगी। असी अपनी पोलिटिकल एक ओपोजिशन द पार्टी का जिहड़ा रोल आ वह अदा करांगे।
2: मेरठ के नीले ड्रम केस में कोर्ट ने मुस्कान साहिल को फांसी की सजा सुना दी। जज ने सौरभ हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए मौत की सजा सुनाई।
12: डेढ़ साल पहले हुआ हत्याकांड और करीब एक साल से चल रहे ट्रायल के बाद आखिरकार नीला ड्रम कांड में कोर्ट का फैसला आ गया। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
13: वो कहां गया था क्योंकि चश्मदीद गवाह नहीं है और उसके बच्चे हैं और इसके माँ बाप बुजुर्ग हैं, ये सारी तथ्य रखे गए थे, लेकिन वो कोर्ट ने कोई वो नहीं माना और इनको अपराध की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड की सजा मुकर्रर की है।
12: जिला जेल से दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। जज ने मुस्कान से पूछा, तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? मुस्कान ने जवाब दिया, मेरी बेटी छोटी है, उसका ख्याल रखा जाए। फिर वो खामोश हो गई। इसके बाद साहिल से यही सवाल पूछा गया तो वो भी चुप रहा।
14: जज ने आज ये भी कहा बहस के दौरान कि हमें फैसला देने से पहले ये भी देखना है कि समाज और जनता की ओपिनियन क्या है ऐसे केसेस में जिससे समाज पे असर पड़ता है। उनका इशारा ये था कि हाल के वक्त में बहुत सारी पत्नियां के हाथों पति का कत्ल हो रहा है, पति के हाथों पत्नियां का कत्ल हो रहा है, तो समाज में जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है तो एक ऐसा फैसला होना चाहिए जो जनता चाहती है उस हिसाब से ये फैसला और जो समाज में सोच है उस हिसाब से भी एक मैसेज जाए।
12: सरकारी वकील ने कोर्ट से मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं मुस्कान साहिल के वकील ने कहा था मुस्कान की दो बेटियां हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, कम से कम सजा होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फांसी की सजा पर मुहर लगाई।
15: अब इस पूरे मामले में जो साइंटिफिक एविडेंसेस थे, क्योंकि जो नशा दिया गया था खाने में सब्जी में, उस नशे को कहां से खरीदा गया था उसने भी आइडेंटिफाई किया, मुस्कान को आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से ये कत्ल के पहले खरीदी थी, सीसीटीवी फुटेज कत्ल के पहले और बाद का, कौन आया कौन गया, ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण थी और डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे काम किया, जिसके बाद आज ये दिन आया 30 सितंबर को दोषी ठहराया गया था और आखिरकार आज जो मेरठ कोर्ट है वही ठीक मौजूद है। यहाँ पर अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है।
12: 30 सितंबर को कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी ठहराया था। सौरभ राजपूत के परिवार ने कोर्ट से दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई थी।
16: हम तो यही देना संदेश जाते भैया, किसी का भी बच्चे को मारो मत, नहीं रहना उनके साथ, अलग हो जा। अगर कोई लड़का नहीं चाहता लड़की को मार देता है तो वो भी अपने नई लड़की के साथ रहना तो वो भी अलग हो जाए, तो अगर ये ऐसा काम करेंगे तो उनको भी फांसी की ही सजा होगी।
12: अब सवाल ये है कि आखिर मुस्कान को फांसी कब और कैसे होगी, क्योंकि मुस्कान की दो छोटी बेटियां हैं, एक बेटी सौरभ राजपूत की है तो वहीं दूसरी बेटी साहिल की, जिसका जन्म जेल में हुआ था।
17: साहिल के घर वाले करेंगे, क्योंकि साहिल ने आगे आके बोला था कि भाई मैं ये तुम चाचा बन गए हो, जो उसके जेल बंदी थे, और उन्होंने बोला मैं बाहर आने के बाद जो है तो मैं दावत दूंगा। उसने खुले में बोला था कि मेरी बच्ची
16: जो जेल वाली बेटी है उससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, और वो बड़ी वाली बेटी अगर उसके नाना नानी हमें बिना किसी उसके देंगे तो हम रखेंगे उसे अपने पास।
12: सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। शव को 5 टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया गया था। जुलाई 2025 में जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था, जिसके बाद आज कोर्ट ने फांसी की सजा देकर सौरभ राजपूत के परिवार को इंसाफ दिया। मेरठ से शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।
2: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: इंडिया गेट पर धरने पर बैठे अंकिता के माता पिता से मिलने के बाद राहुल का पोस्ट, चार साल से नहीं मिला इंसाफ। 2022 में अंकिता का हुआ था मर्डर, धामी सरकार का बयान, मामले की कराई हमने निष्पक्ष और तेज जांच। राहुल के साथ एनएसयूआई छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थाने, बदले में पुलिस ने बदसलूकी का जारी किया वीडियो। दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके का एयरपोर्ट पर लोगों ने किया विरोध, नाराजगी जताई, दीपके ने 16 अक्टूबर को नॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की अपील की। वाराणसी से सीएम ने अखिलेश पर बोला धावा, कहा समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या पराया धन अपना। और मेरठ नीले ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी, जज ने कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, सौरभ के शव के दोनों ने किए थे टुकड़े। चुनाव आयोग के निर्णय और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आंदोलन लगातार चल रहा है। राहुल ने भले ही अपने अगले कदम की जानकारी अभी नहीं दी हो, लेकिन जंतर मंतर को लेकर राहुल की तरफ से सरकार को लगातार खबरदार किया जा रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस से जुड़े संगठनों का जंतर मंतर की तरफ मार्च करना हो या फिर राहुल का पुलिस की बदसलूकी के शिकार छात्रों के साथ पीसी करना, जंतर मंतर को लेकर लड़ाई धीरे धीरे तेज हो रही है।
1: उसके बारे में आप मत घबराइए, वो हमारा काम है। एफआईआर होगा, प्रेशर करना है, क्या करना है, एक प्रोटेस्ट है, एक आवाज है, देश की आवाज है, और उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है।
2: एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी छात्रों को डरना मत वाला मंत्र देते हैं। जंतर मंतर को भारत के लोगों का बताकर इसे वापस लेने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, जंतर मंतर पर तिरंगा फहराने को अपराध नहीं बताते। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष का अगला प्रदर्शन जंतर मंतर को लेकर ही होगा, जो अब विरोध प्रदर्शन की जगह नहीं रहा।
3: The one method of expression of democracy was jantar mantar, and now the government has decided that jantar mantar can no longer be used to express democratic feelings. Well, we are going to challenge that idea. It is not going to be so simple for the government to decide that the Indian people will not fight for their voice.
2: राहुल इसका जवाब हां में दे चुके हैं। राहुल कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जाएंगे, वहीं दोबारा विरोध प्रदर्शन करेंगे, जहां सीजेपी के नेताओं को मिनट छोड़िए कुछ ही सेकंडों में पुलिस ने पकड़ लिया। सवाल यह है कि अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो उसे क्या अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि राहुल के जंतर मंतर पर दिए बयान के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जंतर मंतर छोड़िए इन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने तक से रोक दिया, दो दो बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया।
4: एवाईसी अपना विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर दर्ज करवा रही है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, यहां देख सकते हैं कैसे जो एवाईसी के कार्यकर्ता हैं यहां पर पहुंच गए। आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे आप पढ़ सकते होंगे संसद मार्ग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रायसेना रोड से जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं जो अपना मार्च शुरू करते हैं, जंतर मंतर जाते हैं और जंतर मंतर से यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट वो पहुंचते हैं।

0: प्रदर्शन दर्ज करवाने के लिए।
1: पुलिस की सख्ती के बावजूद SFI और DYFI जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने फिरोज शाह रोड से जंतर मंतर जाने की कोशिश की। जब पुलिस ने रोका तो नारेबाजी की। विपक्षी संगठन भले ही बार बार जंतर मंतर पर जाने की कोशिश कर रहे हो, राहुल इसे दोबारा वापस पाने के दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार और विपक्ष में टकराव की नई वजह बनती जा रही है। इस जगह पर अब पहले की तरह प्रदर्शन नहीं हो सकता, ऐसा करना अब गैर कानूनी हो गया है। अब सवाल ये है कि अगर कोई इसके बावजूद वहाँ प्रदर्शन करता है तो क्या होगा?
2: जंतर मंतर उन स्थानों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहाँ हमेशा के लिए हमेशा DNS की धारा 163 यानी कहें तो CRPC की धारा पहले जो 144 थी, निषेधाज्ञा जिसे कहते हैं भारतीय न्याय संहिता की, अब भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 163 का असर रहेगा, यानी उसके असर में आप वहां बिना किसी परमिशन के आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। और ऐसे भी वो धरना प्रदर्शन के लिए वहां अगर आप परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी डालेंगे तो मंजूर नहीं होगी, क्योंकि अब वो जगह धरना प्रदर्शन के लिए नामजद जगहों में नहीं रह गई है।
1: शुरुआत में दिल्ली का बोट क्लब बड़े आंदोलन का बड़ा केंद्र था। लोग बोट क्लब में जुटते और सरकार से मांगे करते या असहमति जताते। इंडिया गेट के पास स्थित बोट क्लब से भी संसद की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। राम मंदिर आंदोलन के वक्त केंद्र की कांग्रेस सरकार ने यहां प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। 1988 में पश्चिम यूपी के कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने यहां से एक आंदोलन किया था, जिससे तब की कांग्रेस सरकार हिल गई थी। साल 1993 में प्रदर्शन स्थल बनने के बाद जंतर मंतर भी कई आंदोलन का गवाह बना। इसमें अन्ना हजारे आंदोलन सबसे बड़ा है। जंतर मंतर निर्भया आंदोलन में भी चर्चा में रहा। CAA किसान आंदोलन भी यहां से हुए, लेकिन अब यहां पर प्रदर्शन करने से रोक लगा दी गई है।
2: जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में निषेधाज्ञा जब लगाई जाती है तो पूरा नई दिल्ली इलाका घुटने लगता है, यानी दम घुट जाता है, ट्रैफिक रेंगता रहता है और लोगों को परेशानियां होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार जंतर मंतर के बजाय किसी और खुली जगह पर प्रदर्शन के लिए इजाजत क्यों नहीं दे देती है, यही प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है।
1: जंतर मंतर का मामला अदालत पहुंच गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देने के दिल्ली पुलिस के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर को तय प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के आधार पर लिया गया है, जिसमें वैकल्पिक जगहों की पहचान करने की बात कही गई थी। पुलिस की ओर से ये भी दलील दी गई कि जब जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया जा चुका है तो इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का अब कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की तो फिर उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
2: जैसा कि CJP ने लगातार दोहराया कि हमारा अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, तो अब कानून की धाराओं में उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर आप वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, 5 या 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके आगे भाषण करते हैं, तो आपको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि इसी में अगर आपके पास अवैध हथियार पाए जाते हैं, अगर आप पुलिस पर हमला करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं, तो अलग अलग धाराओं में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अधिकतम सजा 5 साल की सजा, ₹10,000 तक जुर्माना, और चाहे अदालत चाहे तो दोनों चीजें एक साथ लगा सकती हैं। लिहाजा अब प्रदर्शन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है जहां निषेधाज्ञा यानी DNSS की धारा 163 लागू है, जिसे हम पुराने जमाने में 144 कहते थे, वो अगर लागू है तो आपको एक तो परमिशन नहीं मिलेगी और बिना परमिशन के अगर आप सिद्ध करेंगे कि हमने प्रदर्शन करना है तो इन सारी चीजों को भुगतने के लिए आप तैयार हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज का।
3: जंतर मंतर का मामला अदालत में है। अब अगर यहां प्रदर्शन को लेकर विपक्ष अड़ा तो उनके कार्यकर्ता, दिल्ली पुलिस के अफसर एक बार फिर से आमने सामने होंगे। राहुल ने NUCI कार्यकर्ताओं के साथ PC यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पुलिस ने भी जवाब दिया, बदसलूकी के अपने खिलाफ वीडियो जारी किए।
4: जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव है।
1: SIR पर अमित शाह की तरफ से पहले और बड़े हमले के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को छात्रों के बहाने घेरा।
5: ये हिंदुस्तान है, अमित शाह जी इसको अच्छी तरह

0: देख लीजिए, यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है। और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
1: राहुल गांधी ने सरकार ही नहीं दिल्ली पुलिस को भी चेतावनी दी, कहा प्यार से समझा रहा हूँ।
0: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से। देखिए, मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत।
1: राहुल गांधी ने जिन लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सभी ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट और हिरासत में ज्यादती करने के आरोप लगाए। एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों के कहने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही थी।
2: सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको इलीगली डिटेन नहीं करना है प्रोटेस्टर्स को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, पर मेरे को बजरंग दल और आरएसएस के गुंडों के बोलने पे डिटेन किया गया। और वो गुंडे वो थे जिनके पास मेरे पास उनका वीडियो है, सॉरी, मेरे पास उनका वीडियो है जहाँ पर वो थ्रेटन कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में पत्थर है। और वो सब होने के बावजूद वही सेम गुंडे जाके पुलिस को बोलते हैं और पुलिस सुप्रीम कोर्ट की ना सुनने के बजाय उन गुंडों की सुन के उन्होंने मेरे को ब्रूटली डिटेन किया।
1: राहुल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदिरा ने होठों के नीचे लगी चोटों को भी दिखाया।
3: Chanchal Yadav and other 3 or 4 police officers went in the bus and dragged me in the road. And also there is a SHO in Cannot Place police station. He told me, the lady police officer, taken away to basement. There is no CCTV, you can do anything. So they punched me here. Mera live. And continuously beaten my pura cheek.
1: इसी दौरान NSUI से जुड़ी रितु बराला ने बताया कि उनके चेहरे पर चोट लगने की वजह दिल्ली पुलिस है। रितु ने बस में चंचल यादव नाम की एक महिला पुलिस कांस्टेबल पर मारपीट के आरोप लगाए।
4: महिला पुलिसकर्मी होती है, वो इतना अग्रेसिव हो जाती है, हम आगे आने की कोशिश करते हैं तो वो मुझे इतनी जोर से धक्का मारती कि मैं पीछे जाके सीट पे, वो इतना जोर से पुश करती कि मैं पीछे सीट पे जाके गिरती हूँ, और फिर वो इतना जोर से अग्रेसिव हो जाती कि मेरा गला जोर से दबा लेती है। इधर
5: पीछे का विजुअल है वो,
4: जी जी जी, यहाँ से मतलब मेरा गला पूरा स्क्रेच हो जाता है पूरा, और फिर मतलब मैं गला कैसे छुड़ाने का प्रयास करती हूँ तो वो मेरे मुंह पे पंजा मार के मुक्का मारती है, और फिर यहाँ इतनी जोर से मतलब पूरा स्क्रेच कर देती है पूरे फेस को और आंख के इधर भी लगता है। तो उसके बाद ये छुटाने का प्रयास करते हैं के लिए मैं धक्का मारती हूँ, तो वो मेरे जोर से इतना थप्पड़ मार के मेरे बालों पे मतलब पूरा कैप्चर कर लेती है, जूते रगड़ के, और मेरी जो इयररिंग होती है वो मेरे कान के अंदर चली जाती है। और उसके बाद हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा वो बाली मेरे साथियों के सामने निकाली जाती है।
1: अब 13 अक्टूबर की ये तस्वीर देखिए जिसमें रितु और महिला पुलिसकर्मी के बीच झड़प हो रही है। पुलिसकर्मी पर रितु थप्पड़ मारती दिखती है। अब पुलिस पूछ रही है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का हक किसने दिया।
6: वायरल वीडियो में दिखाई दे रही महिला पुलिसकर्मी का नाम चंचल यादव है, वो नई दिल्ली जिले में तैनात है। उसने सीनियर अफसरों को शिकायत दी है, उसमें बताया है कि NSUI के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दौरान महिला NSUI की कार्यकर्ता को उसने हिरासत में लिया और बस में बिठाया, जहां NSUI की महिला कार्यकर्ता ने बस ड्राइवर से चाबी छीनी और उसे जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। महिला कांस्टेबल चंचल यादव ने आरोप लगाया है कि NSUI की कार्यकर्ता ने उसके साथ मारपीट की जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने चंचल यादव का मेडिकल टेस्ट करवाया है और अगर लीगल एक्शन लिया जा रहा है।
5: डर गायब हो गया?
7: बिल्कुल हो गया सर।
1: तो भले ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की मारपीट के बावजूद शांतिपूर्ण संदेश दिए जाने की बात कही गई हो,

0: थैंक यू। नफरत का जवाब प्यार से ही दिया जाएगा बेसिकली।
1: लेकिन दिल्ली पुलिस इस तरह के वीडियो के आधार पर पुलिस कर्मियों के हक का सवाल उठा रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान छात्रों से मारपीट का वीडियो बनाने को कहा है, उससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों में वीडियो वॉर तेज होने की पूरी संभावना है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: जंतर मंतर में सीजेपी नेताओं ने प्रतिबंध के बावजूद प्रदर्शन कर नारेबाजी की, जिसके बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वहीं अजिंक्य शिंदे को रिहा कर दिया गया। अभी तक राहुल सीजेपी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन जंतर मंतर से जुड़े मामले में राहुल का समर्थन और फिर अभिजीत दीपके का थैंक यू कहना चर्चा का विषय है। अब दीपके, नेहा बोरा, कपिल सिब्बल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
1: सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका स्वागत इस तरह से होगा। ऐसा दूसरी बार है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दीपके को सरप्राइज में विरोध मिलता है।
3: भारत माता की जय।
1: जंतर मंतर पर भी सीजेपी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने सरप्राइज दिया और मिनटों में पकड़ लिया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से रोकने के बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से दो को, सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।
4: जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो, ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया।
1: तिहाड़ जेल में सौरभ दास को जेल नंबर 2 में रखा गया है, वहीं आशुतोष रांका को जेल नंबर 4 में रखा गया है। दोनों को तिहाड़ जेल की अलग अलग बैरक में रखा गया है। अब सवाल ये है कि सीजेपी नेताओं को तिहाड़ क्यों भेजा गया? क्या इसकी वजह सख्त नाकेबंदी के बावजूद मंगलवार सुबह प्रतिबंधित क्षेत्र जंतर मंतर में घुसना है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तीनों के खिलाफ BNS की कई धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया, फिर तीनों को बुधवार संसद मार्ग की ACM कोर्ट के सामने पेश किया, जहां पर पिछली जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। दरअसल बेल बॉन्ड की शर्त का उल्लंघन करने पर जिन्हें अदालत जेल की सजा सुनाती है, इस तरह के मामले में तुरंत राहत के लिए किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, आरोपियों को सजा काटनी ही पड़ती है। जंतर मंतर को लेकर प्रशासन इसलिए भी सख्त है क्योंकि अब इसमें पाकिस्तानी साजिश के एंगल मिले हैं।
5: ऐसे हैंडल्स हैं जिनकी IP इंडिकेट करती है कि वो पाकिस्तान से क्रिएट किए हुए हैंडल्स हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना मना है, फिर भी कनॉट प्लेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रदर्शन में घायल NSUI के छात्रों को लेकर राहुल गांधी हाजिर हुए, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए, जिसके बाद जंतर मंतर को लेकर सवाल और गहरा गया है।
6: अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए।
2: पंजाब के मानसा में एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद से शहर में तनाव है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी अश्विनी को पुलिस ने राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया, लेकिन उसके खिलाफ गुस्सा नहीं थम रहा। अश्विनी के घर में पहले तोड़फोड़ की गई, उसकी दुकान में आग लगा दी गई। पंजाब सरकार ने घर पर बुलडोजर चला दिया।
7: पंजाब का एक उभरता बॉक्सर पहले खुद नशे का आदी बना और फिर उसी ने नशे को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। एक लाइन में परविंदर सिंह झोटा की यही कहानी है। परविंदर सिंह झोटा को मानसा में बाबा बॉक्सर कहा जाता था। जालंधर के लायलपुर खालसा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान छोटा एक टैलेंटेड बॉक्सर थे, लेकिन किसी कारणवश वो इंटरनेशनल नहीं खेल पाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि परविंदर झोटा को खुद नशे की लत लग गई थी, लेकिन बाद में झोटा इस नशे की लत से बाहर आए और पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा। उन्होंने नशे को खत्म करना अपने जीवन का मिशन बना लिया, लेकिन अंत में इसी मिशन ने उनकी जिंदगी भी ले ली। लेकिन परविंदर झोटा की हत्या ने पूरे मानसा में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में तनाव पैदा कर दिया है। चुनाव नजदीक है, इसलिए राजनीति भी हो रही है। झोटा के घर वालों से मिलने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या अकाली दल, आम आदमी पार्टी, सब नेता पहुंच रहे हैं। और अब कल पंजाब बंद का भी ऐलान हो गया है।
3: श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने फैसला किया है कि नशियां के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए अपनी जान निशावर करने वाले सरदार परमिंदर सिंह झोटा के सत्कारयोग पिता जी ने जेड़ी कल 15 तरीक नू पंजाब बंद की कॉल दिती है, श्रोमणी अकाली दल उस पीसफुल बंद का समर्थन करेगा, क्योंकि इस वेले जिहड़ा मुद्दा वो पंजाब की जवानी नू बचाउण दा। श्रोमणी अकाली दल सारे पंजाबियों नू अपील करदा कि किसी नू कहन की जरूरत नहीं पैनी चाहिए, बिल्कुल पीसफुल तरीके दे नाल जिस तरह जेडे परविंदर सिंह झोटा के पिता जी ने बेनती की है कि एक सुनेहा जाना चाहिए सारे देश नू कि सारा पंजाब उस सोच दे नाल खड़ा जिदे वास्ते परविंदर सिंह झोटा ने अपनी शहादत दी।
7: पंजाब में भगवंत मान की सरकार भी दावा कर रही है कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो पंजाब में नशे के विरुद्ध युद्ध छेड़ा हुआ है।
8: पंजाब पुलिस वालों कोई भी कमी नहीं छड़ी जाऊगी, दोषियों नूं सख्त तो सख्त सज़ा मिलेगी। जे इहदी साजिश के पिछे कोई बंदा होया तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाऊगा। पूरे पंजाब दे विच जो भावें मैडिकल नशा है भावें वैसे चिट्टा बेचते हैं असी युद्ध छेड़िया होया ते उच किसी नूं कोई लिबर्टी जा किसी नाल कोई लिहाज नहीं की जाऊगी। परविंदर सिंह झोटा के परिवार नाल हमदर्दी भी प्रगट करदा कि एक जवान पुत जिहड़ा वो दुनिया तो चला गया, पर इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए सी। पर जो भी कमियां भावें जिस पद्धर ते मर्जी होवे मैं DGP साहब नूं सख्त निर्देश दिते ने कि इहदी जिहड़ी है पूरी जांच पड़ताल की जाए ते दुध दा दुध ते पानी दा पानी कीता।
7: पंजाब की विपक्षी पार्टियां सरकार के इसी अभियान को मुद्दा बना रही हैं। कांग्रेस के सांसद अमरिंदर राजा बड़े आज मृतक के परिवार से मिले, परविंदर झोटा के माता पिता उनके बच्चों से मिले, और जब मीडिया से बात करने की बारी आई तो राजा बड़िंग ने पंजाब सरकार के इसी अभियान पर सवाल उठा दिया।
9: भगवंत मान साहब एक कहंदे सी कि ये नशा असी 1.5 महीने दे विच खत्म कर देना, और इस नशा खत्म करन दे वास्ते बड़ियां मुहिमां चलाईयां गईयां विखावे दे वास्ते। एक ऐसी मुहिम जिहड़ा ना युद्ध नशा विरुद्ध सी, जेड़ा विखावा तो किया और करोड़ा रुपया लोगों का खर्च किया, लेकिन मैं समझना कि एदू महाड़ी मुहिम ते जान बुझ के लोगों नू जेड़ा बेवकूफ बनाया पंजाब सरकार ने कुछ हो नहीं सकता। पंजाब दी पुलिस दी, पंजाब दे मुख्यमंत्री दी और पंजाब दे सरकार दी पूरन करड़े शब्द च निंदा कर दी।
7: कांग्रेस से बीजेपी में आए रवनीत बिट्टू भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने भी पंजाब सरकार पर सवाल उठाए, कानून व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म बताया और परिवार की हर संभव सहायता की बात की।
10: ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ 27 ਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ CBI ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।
2: मेरठ के नीले ड्रम केस में कोर्ट ने मुस्कान साहिल को फांसी की सजा सुना दी। जज ने सौरभ हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए मौत की सजा सुनाई।
11: डेढ़ साल पहले हुआ हत्याकांड और करीब एक साल से चल रहे ट्रायल के बाद आखिरकार नीला ड्रम कांड में कोर्ट का फैसला आ गया। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
12: वो कहां गया था क्योंकि चश्मदीद गवाह नहीं है और उसके बच्चे हैं और इसके माँ बाप बुजुर्ग हैं, ये सारी तथ्य रखे गए थे, लेकिन वो कोर्ट ने कोई वो नहीं माना और इनको अपराध की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड की सजा मुकर्रर की है।
11: जिला जेल से दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। जज ने मुस्कान से पूछा, तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? मुस्कान ने जवाब दिया, मेरी बेटी छोटी है, उसका ख्याल रखा जाए। फिर वो खामोश हो गई। इसके बाद साहिल से यही सवाल पूछा गया तो वो भी चुप रहा।
13: जज ने आज ये भी कहा बहस के दौरान कि हमें फैसला देने से पहले ये भी देखना है कि समाज और जनता की ओपिनियन क्या है ऐसे केसेस में जिससे समाज पे असर पड़ता है। उनका इशारा ये था कि हाल के वक्त में बहुत सारी पत्नियां के हाथों पति का कत्ल हो रहा है, पति के हाथों पत्नियां का कत्ल हो रहा है, तो समाज में जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है तो एक ऐसा फैसला होना चाहिए जो जनता चाहती है उस हिसाब से ये फैसला और जो समाज में सोच है उस हिसाब से भी एक मैसेज जाए।
11: सरकारी वकील ने कोर्ट से मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं मुस्कान साहिल के वकील ने कहा था, मुस्कान की दो बेटियां हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, कम से कम सजा होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फांसी की सजा पर मुहर लगाई।
14: अब इस पूरे मामले में जो साइंटिफिक एविडेंसेस थे, क्योंकि जो नशा दिया गया था खाने में सब्जी में, उस नशे को कहां से खरीदा गया था उसने भी आइडेंटिफाई किया, मुस्कान को आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से ये कत्ल के पहले खरीदी थी, सीसीटीवी फुटेज कत्ल के पहले और बाद का, कौन आया कौन गया, ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण थी और डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे काम किया, जिसके बाद आज ये दिन आया 30 सितंबर को दोषी ठहराया गया था और आखिरकार आज जो मेरठ कोर्ट है वही ठीक मौजूद है। यहाँ पर अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है।
11: 30 सितंबर को कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी ठहराया था। सौरभ राजपूत के परिवार ने कोर्ट से दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई थी।
15: हम तो यही देना संदेश जाते भैया, किसी का भी बच्चे को मारो मत, नहीं रहना उनके साथ, अलग हो जा। अगर कोई लड़का नहीं चाहता लड़की को मार देता है तो वो भी अपने नई लड़की के साथ रहना तो वो भी अलग हो जाए। अगर ये ऐसा काम करेंगे तो उनको भी फांसी की ही सजा होगी।
11: अब सवाल ये है कि आखिर मुस्कान को फांसी कब और कैसे होगी, क्योंकि मुस्कान की दो छोटी बेटियां हैं, एक बेटी सौरभ राजपूत की है तो वहीं दूसरी बेटी साहिल की, जिसका जन्म जेल में हुआ था।
16: साहिल के घर वाले करेंगे, क्योंकि साहिल ने आगे आके बोला था कि भाई मैं ये तुम चाचा बन गए हो, जो उसके जेल बंदी थे, और उन्होंने बोला मैं बाहर आने के बाद जो है तो मैं दावत दूंगा। उसने खुले में बोला था कि मेरी बच्ची
15: जो जेल वाली बेटी है उससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, और वो बड़ी वाली बेटी अगर उसके नाना नानी हमें बिना किसी उसके देंगे तो हम रखेंगे उसे अपने पास।
11: सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। शव को 5 टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया गया था। जुलाई 2025 में जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था, जिसके बाद आज कोर्ट ने फांसी की सजा देकर सौरभ राजपूत के परिवार को इंसाफ दिया। मेरठ से शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।
2: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: इंडिया गेट पर धरने पर बैठे अंकिता के माता पिता से मिलने के बाद राहुल का पोस्ट, चार साल से नहीं मिला इंसाफ। 2022 में अंकिता का हुआ था मर्डर, धामी सरकार का बयान, मामले की कराई हमने निष्पक्ष और तेज जांच। राहुल के साथ एनएसयूआई छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थाने, बदले में पुलिस ने बदसलूकी का जारी किया वीडियो। दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके का एयरपोर्ट पर लोगों ने किया विरोध, नाराजगी जताई, दीपके ने 16 अक्टूबर को नॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की अपील की। वाराणसी से सीएम ने अखिलेश पर बोला धावा, कहा समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या पराया धन अपना। और मेरठ नीले ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी, जज ने कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, सौरभ के शव के दोनों ने किए थे टुकड़े। चुनाव आयोग के निर्णय और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आंदोलन लगातार चल रहा है। राहुल ने भले ही अपने अगले कदम की जानकारी अभी नहीं दी हो, लेकिन जंतर मंतर को लेकर राहुल की तरफ से सरकार को लगातार खबरदार किया जा रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस से जुड़े संगठनों का जंतर मंतर की तरफ मार्च करना हो या फिर राहुल का पुलिस की बदसलूकी के शिकार छात्रों के साथ पीसी करना, जंतर मंतर को लेकर लड़ाई धीरे धीरे तेज हो रही है।
1: उसके बारे में आप मत घबराइए, वो हमारा काम है। एफआईआर होगा, प्रेशर करना है, क्या करना है, एक प्रोटेस्ट है, एक आवाज है, देश की आवाज है, और उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है।
2: एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी छात्रों को डरना मत वाला मंत्र देते हैं। जंतर मंतर को भारत के लोगों का बताकर इसे वापस लेने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, जंतर मंतर पर तिरंगा फहराने को अपराध नहीं बताते। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष का अगला प्रदर्शन जंतर मंतर को लेकर ही होगा, जो अब विरोध प्रदर्शन की जगह नहीं रहा।
3: The one method of expression of democracy was jantar mantar, and now the government has decided that jantar mantar can no longer be used to express democratic feelings. Well, we are going to challenge that idea. It is not going to be so simple for the government to decide that the Indian people will not fight for their voice.
2: राहुल इसका जवाब हां में दे चुके हैं। राहुल कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जाएंगे, वहीं दोबारा विरोध प्रदर्शन करेंगे, जहां सीजेपी के नेताओं को मिनट छोड़िए कुछ ही सेकंडों में पुलिस ने पकड़ लिया। सवाल यह है कि अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो उसे क्या अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि राहुल के जंतर मंतर पर दिए बयान के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जंतर मंतर छोड़िए इन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने तक से रोक दिया, दो दो बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया।
4: एवाईसी अपना विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर दर्ज करवा रही है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, यहाँ देख सकते हैं कैसे जो एवाईसी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंच गए। आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे आप पढ़ सकते होंगे संसद मार्ग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रायसेना रोड से जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं जो अपना मार्च शुरू करते हैं, जंतर मंतर जाते हैं और जंतर मंतर से यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट वो पहुंचते हैं। वहीं एक तरफ दिल्ली पुलिस की भी यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा भारी जो है तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं तैनात किए गए हैं, जगह जगह को बैरिकेड करके रखा ताकि जो आईवाईसी के कार्यकर्ता यहां से आगे ना बढ़ पाए, पर पहली लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर जो आईवाईसी के कार्यकर्ता यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए हैं अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने के लिए।
2: पुलिस की सख्ती के बावजूद एसएफआई और डीवाईएफआई जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने फिरोज शाह रोड से जंतर मंतर जाने की कोशिश की, जब पुलिस ने रोका तो नारेबाजी की। विपक्षी संगठन भले ही बार बार जंतर मंतर पर जाने की कोशिश कर रहे हों, राहुल इसे दोबारा वापस पाने के दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार और विपक्ष में टकराव की नई वजह बनती जा रही है। इस जगह पर अब पहले की तरह प्रदर्शन नहीं हो सकता, ऐसा करना अब गैर कानूनी हो गया है। अब सवाल ये है कि अगर कोई इसके बावजूद वहाँ प्रदर्शन करता है तो क्या होगा।
5: जंतर मंतर उन स्थानों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहाँ हमेशा के लिए हमेशा हमेशा DNS की धारा 163 यानी कहें तो सीआरपीसी की धारा पहले जो 144 थी, निषेधाज्ञा जिसे कहते हैं भारतीय न्याय संहिता की, अब भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 163 का असर रहेगा, यानी उसके असर में आप वहां बिना किसी परमिशन के आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। और ऐसे भी वो धरना प्रदर्शन के लिए वहां अगर आप परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी डालेंगे तो मंजूर नहीं होगी, क्योंकि अब वो जगह धरना प्रदर्शन के लिए नामजद जगहों में नहीं रह गई है।
2: शुरुआत में दिल्ली का बोट क्लब बड़े आंदोलन का बड़ा केंद्र था। लोग बोट क्लब में जुटते और सरकार से मांगे करते या असहमति जताते। इंडिया गेट के पास स्थित बोट क्लब से भी संसद की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। राम मंदिर आंदोलन के वक्त केंद्र की कांग्रेस सरकार ने यहां प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। 1988 में पश्चिम यूपी के कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने यहां से एक आंदोलन किया था, जिससे तब की कांग्रेस सरकार हिल गई थी। साल 1993 में प्रदर्शन स्थल बनने के बाद जनतर मंतर भी कई आंदोलन का गवाह बना। इसमें अन्ना हजारे आंदोलन सबसे बड़ा है। जंतर मंतर निर्भया आंदोलन में भी चर्चा में रहा। CAA किसान आंदोलन भी यहां से हुए, लेकिन अब यहां पर प्रदर्शन करने से रोक लगा दी गई है।
5: जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में निषेधाज्ञा जब लगाई जाती है तो पूरा नई दिल्ली इलाका घुटने लगता है, यानी दम घुट जाता है, ट्रैफिक रेंगता रहता है और लोगों को परेशानियां होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार जंतर मंतर के बजाय किसी और खुली जगह पर प्रदर्शन के लिए इजाजत क्यों नहीं दे देती है, यही प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है।
2: जंतर मंतर का मामला अदालत पहुंच गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देने के दिल्ली पुलिस के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर को तय प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के आधार पर लिया गया है, जिसमें वैकल्पिक जगहों की पहचान करने की बात कही गई थी। पुलिस की ओर से ये भी दलील दी गई कि जब जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया जा चुका है तो इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का अब कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की तो फिर उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
5: जैसा कि CJP ने लगातार दोहराया कि हमारा अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, तो अब कानून की धाराओं में उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर आप वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, 5 या 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके आगे भाषण करते हैं, तो आपको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि इसी में अगर आपके पास अवैध हथियार पाए जाते हैं, अगर आप पुलिस पर हमला करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं, तो अलग अलग धाराओं में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अधिकतम सजा 5 साल की सजा, ₹10,000 तक जुर्माना, और चाहे अदालत चाहे तो दोनों चीजें एक साथ लगा सकती हैं। लिहाजा अब प्रदर्शन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है जहां निषेधाज्ञा यानी BNSS की धारा 163 लागू है, जिसे हम पुराने जमाने में 144 कहते थे, वो अगर लागू है तो आपको एक तो परमिशन नहीं मिलेगी और बिना परमिशन के अगर आप सिद्ध करेंगे कि हमने प्रदर्शन करना है तो इन सारी चीजों को भुगतने के लिए आप तैयार हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज का।
0: जंतर मंतर का मामला अदालत में है। अब अगर यहां प्रदर्शन को लेकर विपक्ष अड़ा तो उनके कार्यकर्ता, दिल्ली पुलिस के अफसर एक बार फिर से आमने सामने होंगे। राहुल ने LUCI कार्यकर्ताओं के साथ PC यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पुलिस ने भी जवाब दिया, बदसलूकी के अपने खिलाफ वीडियो जारी किए।
6: जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव
2: SIR पर अमित शाह की तरफ से पहले और बड़े हमले के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को छात्रों के बहाने घेरा।
1: ये हिंदुस्तान है, अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है। और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
2: राहुल गांधी ने सरकार ही नहीं दिल्ली पुलिस को भी चेतावनी दी, कहा प्यार से समझा रहा हूं।
1: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से। देखिए, मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस और घबराइए मत।
2: राहुल गांधी ने जिन लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सभी ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट और हिरासत में ज्यादती करने के आरोप लगाए। एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों के कहने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही थी।
7: सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको इलीगली डिटेन नहीं करना है प्रोटेस्टर्स को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, पर मेरे को बजरंग दल और आरएसएस के गुंडों के बोलने पे डिटेन किया गया और वो गुंडे वो थे जिनके पास मेरे पास उनका वीडियो है, सॉरी मेरे पास उनका वीडियो है जहां पर वो थ्रेटन कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में पत्थर है और वो सब होने के बावजूद वही सेम गुंडे जाके पुलिस को बोलते हैं और पुलिस सुप्रीम कोर्ट की ना सुनने के बजाय उन गुंडों की सुन के उन्होंने मेरे को ब्रूटली डिटेन किया।
2: राहुल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदिरा ने होठों के नीचे लगी चोटों को भी दिखाया।
8: Chanchal Yadav and other 3 or 4 police officers went in the bus and dragged me in the road. And also there is a SHO in Cannot Place police station. He told me, the lady police officer, taken away to basement. There is no CCTV, you can do anything. So they punched me here. Mera live. And continuously beaten my pura cheek.
2: इसी दौरान NSUI से जुड़ी रितु बराला ने बताया कि उनके चेहरे पर चोट लगने की वजह दिल्ली पुलिस है। रितु ने बस में चंचल यादव नाम की एक महिला पुलिस कांस्टेबल पर मारपीट के आरोप लगाए।
9: महिला पुलिसकर्मी होती है वो इतना अग्रेसिव हो जाती है, हम आगे आने की कोशिश करते हैं तो वो मुझे इतनी जोर से धक्का मारती कि मैं पीछे जाके सीट पे, वो इतना जोर से पुश करती कि मैं पीछे सीट पे जाके गिरती हूँ और फिर वो इतना जोर से अग्रेसिव हो जाती कि मेरा गला जोर से दबा लेती है। इधर
10: पीछे का विजुअल है वो,
9: जी जी जी, यहाँ से मतलब मेरा गला पूरा स्क्रेच हो जाता है पूरा और फिर मतलब मैं गला कैसे छुड़ाने का प्रयास करती हूँ तो वो मेरे मुंह पे पंजा मार के मुक्का मारती है और फिर यहाँ इतनी जोर से मतलब पूरा स्क्रेच कर देती है पूरे फेस को और आंख के इधर भी लगता है। तो उसके बाद ये छुड़ाने का प्रयास करते हैं के लिए मैं धक्का मारती हूँ तो वो मेरे जोर से इतना थप्पड़ मार के मेरे बालों पे मतलब पूरा कैप्चर कर लेती है, जूते रगड़ के, और मेरी जो इयररिंग होती है वो मेरे कान के अंदर चली जाती है और उसके बाद हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा वो बाली मेरे साथियों के सामने निकाली जाती है।
2: अब 13 अक्टूबर की ये तस्वीर देखिए जिसमें रितु और महिला पुलिसकर्मी के बीच झड़प हो रही है। पुलिसकर्मी पर रितु थप्पड़ मारती दिखती है। अब पुलिस पूछ रही है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का हक किसने दिया।
11: वायरल वीडियो में दिखाई दे रही महिला पुलिसकर्मी का नाम चंचल यादव है, वो नई दिल्ली जिले में तैनात है। उसने सीनियर अफसरों को शिकायत दी है, उसमें बताया है कि NSUI के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दौरान महिला NSUI की कार्यकर्ता को उसने हिरासत में लिया और बस में बिठाया, जहां NSUI की महिला कार्यकर्ता ने बस ड्राइवर से चाबी छीनी और उसे जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। महिला कांस्टेबल चंचल यादव ने आरोप लगाया है कि NSUI की कार्यकर्ता ने उसके साथ मारपीट की जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने चंचल यादव का मेडिकल टेस्ट करवाया है और अगर लीगल एक्शन लिया जा रहा है।
12: डर गायब हो गया?
13: बिल्कुल हो गया सर।
2: तो भले ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की मारपीट के बावजूद शांतिपूर्ण संदेश दिए जाने की बात कही गई हो,

0: थैंक यू। नफरत का जवाब प्यार से ही दिया जाएगा बेसिकली।
1: लेकिन दिल्ली पुलिस इस तरह के वीडियो के आधार पर पुलिस कर्मियों के हक का सवाल उठा रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान छात्रों से मारपीट का वीडियो बनाने को कहा है, उससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों में वीडियो वॉर तेज होने की पूरी संभावना है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: जंतर मंतर में सीजेपी नेताओं ने प्रतिबंध के बावजूद प्रदर्शन कर नारेबाजी की, जिसके बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वहीं अजिंक्य शिंदे को रिहा कर दिया गया। अभी तक राहुल सीजेपी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन जंतर मंतर से जुड़े मामले में राहुल का समर्थन और फिर अभिजीत दीपके का थैंक यू कहना चर्चा का विषय है। अब दीपके, नेहा बोरा, कपिल सिब्बल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
1: सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका स्वागत इस तरह से होगा। ऐसा दूसरी बार है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दीपके को सरप्राइज में विरोध मिलता है।
3: भारत माता की जय।
4: राजस्थान के एनएसए यूएन में जो लगाना है लगा दो। आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड।
1: स्वच्छ भारत अभियान। जंतर मंतर पर भी सीजेपी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने सरप्राइज दिया और मिनटों में पकड़ लिया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से रोकने के बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से दो को, सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।
5: जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो? ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया?
1: तिहाड़ जेल में सौरभ दास को जेल नंबर 2 में रखा गया है, वहीं आशुतोष रांका को जेल नंबर 4 में रखा गया है। दोनों को तिहाड़ जेल की अलग अलग बैरक में रखा गया है। अब सवाल ये है कि सीजेपी नेताओं को तिहाड़ क्यों भेजा गया? क्या इसकी वजह सख्त नाकेबंदी के बावजूद मंगलवार सुबह प्रतिबंधित क्षेत्र जंतर मंतर में घुसना है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तीनों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया, फिर तीनों को बुधवार संसद मार्ग की एसीएम कोर्ट के सामने पेश किया, जहां पर पिछली जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। दरअसल बेल बॉन्ड की शर्त का उल्लंघन करने पर जिन्हें अदालत जेल की सजा सुनाती है, इस तरह के मामले में तुरंत राहत के लिए किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, आरोपियों को सजा काटनी ही पड़ती है। जंतर मंतर को लेकर प्रशासन इसलिए भी सख्त है क्योंकि अब इसमें पाकिस्तानी साजिश के एंगल मिले हैं।
6: ऐसे हैंडल्स हैं जिनकी आईपी इंडिकेट करती है कि वो पाकिस्तान से क्रिएट किए हुए हैंडल्स हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना मना है, फिर भी कनॉट प्लेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रदर्शन में घायल एनएसयूआई के छात्रों को लेकर राहुल गांधी हाजिर हुए, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए, जिसके बाद जंतर मंतर को लेकर सवाल और गहरा गया है।
7: अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए।
2: पंजाब के मानसा में एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद से शहर में तनाव है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी अश्विनी को पुलिस ने राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया, लेकिन उसके खिलाफ गुस्सा नहीं थम रहा। अश्विनी के घर में पहले तोड़फोड़ की गई, उसकी दुकान में आग लगा दी गई। पंजाब सरकार ने घर पर बुलडोजर चला दिया।
8: पंजाब का एक उभरता बॉक्सर पहले खुद नशे का आदि बना और फिर उसी ने नशे को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। एक लाइन में परविंदर सिंह झोटा की यही कहानी है। परविंदर सिंह झोटा को
3: मानसा में बाबा बॉक्सर कहा जाता था। जालंधर के लायलपुर खालसा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान छोटा एक टैलेंटेड बॉक्सर थे, लेकिन किसी कारणवश वो इंटरनेशनल नहीं खेल पाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि परविंदर झोटा को खुद नशे की लत लग गई थी, लेकिन बाद में झोटा इस नशे की लत से बाहर आए और पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा। उन्होंने नशे को खत्म करना अपने जीवन का मिशन बना लिया, लेकिन अंत में इसी मिशन ने उनकी जिंदगी भी ले ली। लेकिन परविंदर झोटा की हत्या ने पूरे मानसा में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में तनाव पैदा कर दिया है। चुनाव नजदीक है, इसलिए राजनीति भी हो रही है। झोटा के घर वालों से मिलने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या अकाली दल, आम आदमी पार्टी, सब नेता पहुंच रहे हैं। और अब कल पंजाब बंद का भी ऐलान हो गया है।
9: श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने फैसला किया कि नशियां के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए अपनी जान निशावर करने वाले सरदार परमिंदर सिंह झोटा के सत्कारयोग पिता जी ने जिहड़ी कल 15 तरीक नूं पंजाब बंद की कॉल दिती है, श्रोमणी अकाली दल उस पीसफुल बंद का समर्थन करेगा, क्योंकि इस वेले जिहड़ा मुद्दा वो पंजाब की जवानी नूं बचाउण दा। श्रोमणी अकाली दल सारे पंजाबियों नूं अपील करदा कि किसी नूं कहण की जरूरत नहीं पैनी चाहीदी, बिल्कुल पीसफुल तरीके दे नाल जिस तरह जिहड़े परविंदर सिंह झोटा के पिता जी ने बेनती की है कि एक सुनेहा जाना चाहिए सारे देश नूं कि सारा पंजाब उस सोच दे नाल खड़ा है जिहदे वास्ते परविंदर सिंह झोटा ने अपनी शहादत दी।
3: पंजाब में भगवंत मान की सरकार भी दावा कर रही है कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो पंजाब में नशे के विरुद्ध युद्ध छेड़ा हुआ है।
10: पंजाब पुलिस वालों कोई भी कमी नहीं छड़ी जाऊगी, दोषियों नूं सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। जे इहदी साजिश के पिछे कोई हो बंदा होया तो उन्हूं भी नहीं बख्शा जाऊगा। पूरे पंजाब दे विच जो भावें मेडिकल नशा है भावें वैसे चिट्टा बेचते हैं, असी युद्ध छेड़िया होया ते उच किसी नूं कोई लिबर्टी जा किसी नाल कोई लिहाज नहीं की जाऊगी। परविंदर सिंह झोटा के परिवार नाल हमदर्दी भी प्रगट करदा कि एक जवान पुत जिहड़ा वो दुनिया तो चला गया, पर इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए सी। पर जो भी कमियां भावें जिस पद्धर ते मर्जी होवे, मैं DGP साहब नूं सख्त निर्देश दिते ने कि इहदी जिहड़ी है पूरी जांच पड़ताल की जाए ते दुध दा दुध ते पानी दा पानी कीता।
3: पंजाब की विपक्षी पार्टियां सरकार के इसी अभियान को मुद्दा बना रही हैं। कांग्रेस के सांसद अमरिंदर राजा बड़े आज मृतक के परिवार से मिले, परविंदर झोटा के माता पिता उनके बच्चों से मिले, और जब मीडिया से बात करने की बारी आई तो राजा बड़िंग ने पंजाब सरकार के इसी अभियान पर सवाल उठा दिए।
11: भगवंत मान साहब ये कहंदे सी कि ये नशा असी 1.5 महीने दे विच खत्म कर देने, और इस नशा खत्म करने दे वास्ते बड़िया मुहिमां चलाईया गई विखावे दे वास्ते। एक ऐसी मुहिम जिहड़ा ना युद्ध नशा विरुद्ध सी, जेड़ा विखावा तो किया और करोड़ा रुपया लोगों का खर्च किया, लेकिन मैं समझना कि एदू महाड़ी मुहिम ते जान बुझ के लोगों जेड़ा बेवकूफ बनाया पंजाब सरकार ने कुछ हो नहीं सकता। पंजाब की पुलिस की, पंजाब के मुख्यमंत्री की और पंजाब के सरकार की पूरन करड़े शब्दों निंदा कर दी।
3: कांग्रेस से बीजेपी में आए रवनीत बिट्टू भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने भी पंजाब सरकार पर सवाल उठाए, कानून व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म बताया और परिवार की हर संभव सहायता की बात की।
12: ये ना तो नहीं हुआ, सीधा बुलडोजर चलावांगे आके जो साड़ी बारी आ गई 27 ते ओदों बाद ए जिन्ना चिर ए भगवंत मान, मैं समझदा इस्तीफा नहीं दिंदा, जिन्ना चिर भगवंत मान इन्हां दे कातलां नूं जल्दी तो जल्दी फड़ना तो हैगा ही आ, केस भी जड़ा है वो सीबीआई नू नहीं दिंदा उन्ना चर बीजेपी पार्टी अपनी लड़ाई लड़ूगी असी अपनी पोलिटिकल एक ओपोजिशन द पार्टी दा जड़ा रोल आ वो अदा करांगे।
2: ईरान ने हूती विद्रोहियों के द्वारा अमेरिका और सऊदी अरब की नींद उड़ा रखी है। सऊदी पर हूतियों के हमले पर पहली बार ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान आया। ट्रंप ने दावा किया कि सऊदी पर हमले के पीछे तेल का खेल है, तेल का वही खेल जो मिड टर्म चुनाव को लेकर ईरानी साजिश का हिस्सा है।

0: सऊदी पर हमले के पीछे तेल का खेल, ईरान के इशारे पर निशाना बना रहे हूती, क्या ईरान का निशाना है मिड टर्म चुनाव, ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू में हुई बात, क्या हूतियों के हमलों का बदला लेंगे ट्रंप, तीन नवंबर से पहले ईरान पर होगा हमला, 27 अक्टूबर को इसराइल में चुनाव है तो 3 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है, चाहे इसराइल में चुनाव हो या फिर अमेरिका में मिड टर्म चुनाव, ट्रंप और नेतन्याहू के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, चुनाव में जीत मिली तो ईरान युद्ध पर जनता मोहर लगा देगी, लेकिन चुनाव में नेतन्याहू या फिर ट्रंप की पार्टी की हार हुई तो फैसला युद्ध छेड़ने के खिलाफ माना जाएगा। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी पर हूतियों के हमले के बीच ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर फोन पर बातचीत हुई है, बातचीत के दौरान ईरान पर नए सिरे से हमलों को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है, इसी बातचीत को लेकर ईरानी सेना की तरफ से अमेरिका को सीधी धमकी दी गई है, ईरान के खिलाफ नया युद्ध शुरू करना अमेरिका के लिए तर्कहीन होगा, लेकिन इस तरह के हमले की संभावना बनी हुई है क्योंकि ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले एक उपलब्धि हासिल करने की जरूरत है, ईरान किसी भी नए आक्रमण का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है, इस बार अमेरिका के लिए परिणाम कहीं अधिक गंभीर होंगे, ईरान ने 40 दिनों के युद्ध के दौरान मुख्य रूप से अपने पुराने हथियारों पर भरोसा किया था, लेकिन तब से उसे कहीं अधिक उन्नत हथियार प्राप्त हो गए हैं, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हमले के लिए पूरी तरह तैयार है, ईरान की तरफ से ये भी संकेत दिए गए हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया या फिर हूतियों के खिलाफ अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो खाड़ी देशों पर जमीनी स्तर पर ईरानी सेना घुसपैठ कर सकती है, अगर अमेरिका नए हमले शुरू करता है तो हम पड़ोसी देशों में सेना भेज सकते हैं, अब की बार ईरानी सेना की तैयारी कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने की है, मिडल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी मुल्कों को भारी कीमत चुकानी होगी, सऊदी अरब के तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है, यूएई के अहम ठिकानों के साथ साथ क्षेत्रीय डेटा सेंटर और इंटरनेट केबल भी निशाने पर हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने अपना चक्रव्यूह तैयार किया है, पहले ही होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है और लाल सागर के बड़े हिस्से पर हूतियों का कंट्रोल है, यही वजह है कि ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ट्रंप मानते हैं कि तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए हूती की तरफ से सऊदी अरब पर हमले किए जा रहे हैं जो मिड टर्म चुनाव तक चलेंगे, इसी बीच IRGC की तरफ से होर्मुज को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, अगर अमरीकियों को लगता है कि होर्मुज खुला है तो वो करीब आ जाएं। हम अमेरिकी युद्ध पोतों को डुबोने के लिए बेताब हैं। $13 अरब मूल्य का एक अमेरिकी युद्ध पोत अप्रभावी हो गया था और होर्मुज से 700 किलोमीटर दूर चला गया था क्योंकि उसने जलमार्ग के पास आने की हिम्मत नहीं की, हम अमेरिकी युद्ध पोतों के होर्मुज के प्रवेश द्वार के पास आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उन्हें डुबो सकें, हम इस घटना के होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल ईरान ये मानकर चल रहा है कि 27 अक्टूबर या फिर 3 नवंबर से पहले अमेरिका और इसराइल एक बार फिर हमले की हिमाकत कर सकते हैं, इस हमले को ईरान पर जीत के तौर पर ट्रंप और नेतन्याहू अपने मुल्क की जनता के सामने रख सकते हैं, इसी आशंका को देखते हुए IRGC की तरफ से अमेरिका में होने वाले मिड टर्म चुनाव को लेकर अमेरिकी जनता के नाम एक खत लिखा गया था, आप ही हैं जो अपने वोटों से सरकार को शक्ति देते हैं और उसे मनमानी करने की अनुमति देते हैं, हालांकि अमेरिकी राजनेता अक्सर धोखे और झूठे वादों के जरिए आपके वोट जीतते हैं जैसा कि ट्रंप ने किया, लेकिन अगर आप अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का चुनाव करते समय अच्छे नेतृत्व के मानदंडों को अपनाते हैं तो आप सरकार की संरचना को बदल सकते हैं, आपको अपनी सरकार को इसराइल से दूरी बनाने के लिए मजबूर करना होगा क्योंकि फिलिस्तीन पर कब्जा करने वालों को देर सवेर अपनी कब्जे वाली जमीन छोड़कर अपने मूल देशों में लौटना ही होगा, हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में एक साथ रह सकते हैं, अमेरिका की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार दुष्ट कपटी और हिंसक राजनेताओं को सत्ता से हटा दें, अपने मामलों को बुद्धिमानों को सौंपें न कि धूर्तों को।
1: और छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए

0: इंडिया गेट पर धरने पर बैठे अंकिता के माता पिता से मिलने के बाद राहुल का पोस्ट, 4 साल से नहीं मिला इंसाफ। 2022 में अंकिता का हुआ था मर्डर, धामी सरकार का बयान, मामले की कराई हमने निष्पक्ष और तेज जांच। राहुल के साथ एनएसयूआई छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थाने, बदले में पुलिस ने बदसलूकी का जारी किया वीडियो। दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके का एयरपोर्ट पर लोगों ने किया विरोध, नाराजगी जताई, दीपके ने 16 अक्टूबर को नॉर्थ प्लेस में तिरंगा लहराने की अपील की। वाराणसी से सीएम ने अखिलेश पर बोला धावा, कहा समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या पराया धन अपना। और मेरठ नीले ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी, जज ने कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, सौरभ के शव के दोनों ने किए थे टुकड़े। चुनाव आयोग के निर्णय और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आंदोलन लगातार चल रहा है। राहुल ने भले ही अपने अगले कदम की जानकारी अभी नहीं दी हो, लेकिन जंतर मंतर को लेकर राहुल की तरफ से सरकार को लगातार खबरदार किया जा रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस से जुड़े संगठनों का जंतर मंतर की तरफ मार्च करना हो या फिर राहुल का पुलिस की बदसलूकी के शिकार छात्रों के साथ पीसी करना, जंतर मंतर को लेकर लड़ाई धीरे धीरे तेज हो रही है।
1: उसके बारे में आप मत घबराइए, वो हमारा काम है। FIR होगा, प्रेशर करना है, क्या करना है, एक प्रोटेस्ट है, एक आवाज है, देश की आवाज है, और उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही
2: है। SIR के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले NSUI के कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी छात्रों को डरना मत वाला मंत्र देते हैं। जंतर मंतर को भारत के लोगों का बताकर इसे वापस लेने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, CJP नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, जंतर मंतर पर तिरंगा फहराने को अपराध नहीं बताते। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष का अगला प्रदर्शन जंतर मंतर को लेकर ही होगा, जो अब विरोध प्रदर्शन की जगह नहीं रहा।
3: द वन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज जंतर मंतर, एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट जंतर मंतर can no longer be used to express democratic feelings. Well, we are going to challenge that idea. It is not going to be so simple for the government to decide that the Indian people will not fight for their voice.
2: Rahul iska jawab haan mein de chuke hain. राहुल कह रहे हैं कि जनतर मंतर पर जाएंगे, वहीं दोबारा विरोध प्रदर्शन करेंगे, जहां CJP के नेताओं को मिनट छोड़िए, कुछ ही सेकंडों में पुलिस ने पकड़ लिया। सवाल यह है कि अगर किसी ने जनतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो उसे क्या अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि राहुल के जनतर मंतर पर दिए बयान के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से जनतर मंतर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जंतर मंतर छोड़िए इन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने तक से रोक दिया, दो दो बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया।
4: अब ऐसी अपना विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर दर्ज करवा रही, आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे जो IYC के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंच गए, आपको दिखाना चाहूंगा। पीछे आप पढ़ सकते होंगे संसद मार्ग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रायसेना रोड से जो IYC के कार्यकर्ता हैं जो अपना मार्च शुरू करते हैं, जंतर मंतर जाते हैं और जंतर मंतर से यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट वो पहुंचते हैं। वहीं एक तरफ दिल्ली पुलिस की भी यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा भारी जो है तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, दिल्ली पुलिस के जो जवान है तैनात किए गए हैं, जगह जगह को बैरिकेड करके रखा ताकि

0: के लिए पुलिस की सख्ती के बावजूद एसएफआई और डीवाईएफआई जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने फिरोज शाह रोड से जंतर मंतर जाने की कोशिश की। जब पुलिस ने रोका तो नारेबाजी की। विपक्षी संगठन भले ही बार बार जंतर मंतर पर जाने की कोशिश कर रहे हों, राहुल इसे दोबारा वापस पाने के दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार और विपक्ष में टकराव की नई वजह बनती जा रही है। इस जगह पर अब पहले की तरह प्रदर्शन नहीं हो सकता, ऐसा करना अब गैरकानूनी हो गया है। अब सवाल ये है कि अगर कोई इसके बावजूद वहाँ प्रदर्शन करता है तो क्या होगा?
1: जंतर मंतर उन स्थानों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहाँ हमेशा के लिए हमेशा DNS की धारा 163 यानी कहें तो CRPC की धारा पहले जो 144 थी, निषेधाज्ञा जिसे कहते हैं भारतीय न्याय संहिता की, अब भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 163 का असर रहेगा, यानी उसके असर में आप वहां बिना किसी परमिशन के आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। और ऐसे भी वो धरना प्रदर्शन के लिए वहां अगर आप परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी डालेंगे तो मंजूर नहीं होगी, क्योंकि अब वो जगह धरना प्रदर्शन के लिए नामजद जगहों में नहीं रह गई है।
0: शुरुआत में दिल्ली का बोट क्लब बड़े आंदोलन का बड़ा केंद्र था। लोग बोट क्लब में जुटते और सरकार से मांगे करते या असहमति जताते। इंडिया गेट के पास स्थित बोट क्लब से भी संसद की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। राम मंदिर आंदोलन के वक्त केंद्र की कांग्रेस सरकार ने यहां प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। 1988 में पश्चिम यूपी के कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने यहां से एक आंदोलन किया था, जिससे तब की कांग्रेस सरकार हिल गई थी। साल 1993 में प्रदर्शन स्थल बनने के बाद जंतर मंतर भी कई आंदोलन का गवाह बना। इसमें अन्ना हजारे आंदोलन सबसे बड़ा है। जंतर मंतर निर्भया आंदोलन में भी चर्चा में रहा। CAA किसान आंदोलन भी यहां से हुए, लेकिन अब यहां पर प्रदर्शन करने से रोक लगा दी गई है।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में निषेधाज्ञा जब लगाई जाती है तो पूरा नई दिल्ली इलाका घुटने लगता है, यानी दम घुट जाता है, ट्रैफिक रेंगता रहता है और लोगों को परेशानियां होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार जंतर मंतर के बजाय किसी और खुली जगह पर प्रदर्शन के लिए इजाजत क्यों नहीं दे देती है, यहीं प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है।
0: जंतर मंतर का मामला अदालत पहुंच गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देने के दिल्ली पुलिस के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर को तय प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के आधार पर लिया गया है, जिसमें वैकल्पिक जगहों की पहचान करने की बात कही गई थी। पुलिस की ओर से ये भी दलील दी गई कि जब जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया जा चुका है तो इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का अब कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की तो फिर उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
1: जैसा कि CJP ने लगातार दोहराया कि हमारा अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, तो अब कानून की धाराओं में उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर आप वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, 5 या 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके आगे भाषण करते हैं, तो आपको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि इसी में अगर आपके पास अवैध हथियार पाए जाते हैं, अगर आप पुलिस पर हमला करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं, तो अलग अलग धाराओं में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अधिकतम सजा 5 साल की सजा, ₹10,000 तक जुर्माना और चाहे अदालत चाहे तो दोनों चीजें एक साथ लगा सकती हैं। लिहाजा अब प्रदर्शन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है जहां निषेधाज्ञा यानी DNSS की धारा 163 लागू है, जिसे हम पुराने जमाने में 144 कहते थे, वो अगर लागू है तो आपको एक तो परमिशन नहीं मिलेगी और बिना परमिशन के अगर आप सिद्ध करेंगे कि हमने प्रदर्शन करना है तो इन सारी चीजों को भुगतने के लिए आप तैयार हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।
2: जंतर मंतर का मामला अदालत में है। अब अगर यहां प्रदर्शन को लेकर विपक्ष अड़ा तो उनके कार्यकर्ता, दिल्ली पुलिस के अफसर एक बार फिर से आमने सामने होंगे। राहुल ने NUCI कार्यकर्ताओं के साथ PC यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पुलिस ने भी जवाब दिया, बदसलूकी के अपने खिलाफ वीडियो जारी किए।
3: जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव
0: SIR पर अमित शाह की तरफ से पहले और बड़े हमले के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को छात्रों के बहाने घेरा।
4: ये हिंदुस्तान है, अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए।

0: यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज़ है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज़ है, और आप इस आवाज़ के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज़ के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ, इस आवाज़ के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज़ के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
1: राहुल गांधी ने सरकार ही नहीं दिल्ली पुलिस को भी चेतावनी दी, कहा प्यार से समझा रहा हूँ।
0: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूँ, दिल से प्यार से। देखिए, मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है, और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे, और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह, और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत।
1: राहुल गांधी ने जिन लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सभी ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट और हिरासत में ज्यादती करने के आरोप लगाए। एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों के कहने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही थी।
2: सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको इलीगली डिटेन नहीं करना है प्रोटेस्टर्स को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, पर मेरे को बजरंग दल और आरएसएस के गुंडों के बोलने पे डिटेन किया गया, और वो गुंडे वो थे जिनके पास मेरे पास उनका वीडियो है, सॉरी मेरे पास उनका वीडियो है जहाँ पर वो थ्रेटन कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में पत्थर है, और वो सब होने के बावजूद वही सेम गुंडे जाके पुलिस को बोलते हैं, और पुलिस सुप्रीम कोर्ट की ना सुनने के बजाय उन गुंडों की सुन के उन्होंने मेरे को ब्रूटली डिटेन किया।
1: राहुल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदिरा ने होठों के नीचे लगी चोटों को भी दिखाया।
3: चंचल यादव एंड अदर 3 or 4 पुलिस ऑफिसर्स वेंट इन द बस एंड ड्रैगन मी इन द रोड एंड आल्सो दे देयर इज एसएचओ इन कैनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन, ही टोल्ड मी द लेडी पुलिस ऑफिसर टेकन अवे टू बेसमेंट, देयर इज नो सीसीटीवी, यू कैन डू एनीथिंग, सो दे पंच मी हियर, मेरा लिव एंड कंटिन्यूअसली बीटन माय पूरा चीक।
1: इसी दौरान एनएसयूआई से जुड़ी रितु बराला ने बताया कि उनके चेहरे पर चोट लगने की वजह दिल्ली पुलिस है। रितु ने बस में चंचल यादव नाम की एक महिला पुलिस कांस्टेबल पर मारपीट के आरोप लगाए।
4: महिला पुलिसकर्मी होती है वो इतना अग्रेसिव हो जाती है, हम आगे आने की कोशिश करते हैं तो वो मुझे इतनी जोर से धक्का मारती कि मैं पीछे जाके सीट पे, वो इतना जोर से पुश करती है कि मैं पीछे सीट पे जाके गिरती हूँ, और फिर वो इतना जोर से अग्रेसिव हो जाती है कि मेरा गला जोर से दबा लेती है, इधर
5: पीछे का विजुअल है वो,
4: जी यहाँ से मतलब मेरा गला पूरा स्क्रेच हो जाता है पूरा, और फिर मतलब मैं गला कैसे छुड़ाने का प्रयास करती हूँ तो वो मेरे मुंह पे पंजा मार के मुक्का मारती है, और फिर यहाँ इतनी जोर से मतलब पूरा स्क्रेच कर देती है पूरे फेस को, और आंख के इधर भी लगता है, तो उसके बाद ये छुटाने का प्रयास करते हैं के लिए मैं धक्का मारती हूँ, तो वो मेरे जोर से इतना थप्पड़ मार के मेरे बालों पे मतलब पूरा कैप्चर कर लेती है, जूते रगड़ के, और मेरी जो इयररिंग होती है वो मेरे कान के अंदर चली जाती है, और उसके बाद हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा वो बाली मेरे साथियों के सामने निकाली जाती है।
1: अब 13 अक्टूबर की ये तस्वीर देखिए जिसमें रितु और महिला पुलिसकर्मी के बीच झड़प हो रही है। पुलिसकर्मी पर रितु थप्पड़ मारती दिखती है। अब पुलिस पूछ रही है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का हक किसने दिया।
6: वायरल वीडियो में दिखाई दे रही महिला पुलिसकर्मी का नाम चंचल यादव है, वो नई दिल्ली जिले में तैनात है। उसने सीनियर अफसरों को शिकायत दी है, उसमें बताया है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दौरान महिला एनएसयूआई की कार्यकर्ता को उसने हिरासत में लिया और बस में बिठाया, जहाँ एनएसयूआई की महिला कार्यकर्ता ने बस ड्राइवर से चाबी छीनी और उसे जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। महिला कांस्टेबल चंचल यादव ने आरोप लगाया है कि एनएसयूआई की कार्यकर्ता ने उसके साथ मारपीट की जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने चंचल यादव का मेडिकल टेस्ट करवाया है और अगर लीगल एक्शन लिया जा रहा है।
7: सर गायब हो गया?
8: बिल्कुल हो गया सर।
1: तो भले ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की मारपीट के बावजूद शांतिपूर्ण संदेश दिए जाने की बात कही गई हो,

0: थैंक यू। नफरत का जवाब प्यार से ही दिया जाएगा बेसिकली।
1: लेकिन दिल्ली पुलिस इस तरह के वीडियो के आधार पर पुलिस कर्मियों के हक का सवाल उठा रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान छात्रों से मारपीट का वीडियो बनाने को कहा है, उससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों में वीडियो वॉर तेज होने की पूरी संभावना है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: जंतर मंतर में सीजेपी नेताओं ने प्रतिबंध के बावजूद प्रदर्शन कर नारेबाजी की, जिसके बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वहीं अजिंक्य शिंदे को रिहा कर दिया गया। अभी तक राहुल सीजेपी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन जंतर मंतर से जुड़े मामले में राहुल का समर्थन और फिर अभिजीत दीपके का थैंक यू कहना चर्चा का विषय है। अब दीपके, नेहा बोरा, कपिल सिब्बल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
1: सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका स्वागत इस तरह से होगा। ऐसा दूसरी बार है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दीपके को सरप्राइज में विरोध मिलता है।
3: भारत माता की जय।
4: राजस्थान के एनएसए यूएन में जो लगाना है लगा दो। आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड।
5: कचरा सा स्वच्छ भारत अभियान।
1: जंतर मंतर पर भी सीजेपी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने सरप्राइज दिया और मिनटों में पकड़ लिया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से रोकने के बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से दो को, सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।
6: जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो? ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया।
1: तिहाड़ जेल में सौरभ दास को जेल नंबर 2 में रखा गया है, वहीं आशुतोष रांका को जेल नंबर 4 में रखा गया है। दोनों को तिहाड़ जेल की अलग अलग बैरक में रखा गया है। अब सवाल ये है कि सीजेपी नेताओं को तिहाड़ क्यों भेजा गया? क्या इसकी वजह सख्त नाकेबंदी के बावजूद मंगलवार सुबह प्रतिबंधित क्षेत्र जंतर मंतर में घुसना है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तीनों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया, फिर तीनों को बुधवार संसद मार्ग की एसीएम कोर्ट के सामने पेश किया, जहां पर पिछली जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। दरअसल बेल बॉन्ड की शर्त का उल्लंघन करने पर जिन्हें अदालत जेल की सजा सुनाती है, इस तरह के मामले में तुरंत राहत के लिए किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, आरोपियों को सजा काटनी ही पड़ती है। जंतर मंतर को लेकर प्रशासन इसलिए भी सख्त है क्योंकि अब इसमें पाकिस्तानी साजिश के एंगल मिले हैं।
7: ऐसे हैंडल्स हैं जिनकी आईपी इंडिकेट करती है कि वो पाकिस्तान से क्रिएट किए हुए हैंडल्स हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना मना है, फिर भी कनॉट प्लेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रदर्शन में घायल एनएसयूआई के छात्रों को लेकर राहुल गांधी हाजिर हुए, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए, जिसके बाद जंतर मंतर को लेकर सवाल और गहरा गया है।
8: अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए।
2: मेरठ के नीले ड्रम केस में कोर्ट ने मुस्कान साहिल को फांसी की सजा सुना दी। जज ने सौरभ हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए मौत की सजा सुनाई।
9: पहले हुआ हत्याकांड और करीब 1 साल से चल रहे ट्रायल के बाद आखिरकार नीला ड्रम कांड में कोर्ट का फैसला आ गया। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
3: वो कहा गया था कि कुछ चश्मदीद गवाह नहीं है और उसके बच्चे हैं और इसके माँ बाप बुजुर्ग हैं, ये सारी तथ्य रखे गए थे, लेकिन वो कोर्ट ने कोई वो नहीं माना और इनको अपराध की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड की सजा मुकर्रर की है।
9: जिला जेल से दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। जज ने मुस्कान से पूछा, तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? मुस्कान ने जवाब दिया, मेरी बेटी छोटी है, उसका ख्याल रखा जाए। फिर वो खामोश हो गई। इसके बाद साहिल से यही सवाल पूछा गया तो वो भी चुप रहा।
10: जज ने आज ये भी कहा बहस के दौरान कि हमें फैसला देने से पहले ये भी देखना है कि समाज और जनता की ओपिनियन क्या है ऐसे केसेस में जिससे समाज पे असर पड़ता है। उनका इशारा ये था कि हाल के वक्त में बहुत सारी पत्नियां के हाथों पति का कत्ल हो रहा है, पति के हाथों पत्नियां का कत्ल हो रहा है, तो समाज में जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है तो एक ऐसा फैसला होना चाहिए जो जनता चाहती है उस हिसाब से ये फैसला, और जो समाज में सोच है उस हिसाब से भी एक मैसेज जाए।
9: सरकारी वकील ने कोर्ट से मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं मुस्कान साहिल के वकील ने कहा था, मुस्कान की दो बेटियां हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, कम से कम सजा होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फांसी की सजा पर मुहर लगाई।
11: अब इस पूरे मामले में जो साइंटिफिक एविडेंसेस थे, क्योंकि जो नशा दिया गया था खाने में सब्जी में, उस नशे को कहां से खरीदा गया था उसने भी आइडेंटिफाई किया, मुस्कान को आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से ये कत्ल के पहले खरीदी थी, सीसीटीवी फुटेज कत्ल के पहले और बाद का, कौन आया कौन गया, ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण थी और डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे काम किया, जिसके बाद आज ये दिन आया, 30 सितंबर को दोषी ठहराया गया था और आखिरकार आज जो मेरठ कोर्ट है वही ठीक मौजूद है। यहाँ पर अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है।
9: 30 सितंबर को कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी ठहराया था। सौरभ राजपूत के परिवार ने कोर्ट से दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई थी।
12: हम तो यही देना संदेश जाते भैया, किसी का भी बच्चे को मारो मत, नहीं रहना उनके साथ, अलग हो जा। अगर कोई लड़का नहीं चाहता लड़की को मार देता है तो वो भी अपने नई लड़की के साथ रहना तो वो भी अलग हो जाए। अगर ये ऐसा काम करेंगे तो उनको भी फांसी की ही सजा होगी।
9: अब सवाल ये है कि आखिर मुस्कान को फांसी कब और कैसे होगी, क्योंकि मुस्कान की दो छोटी बेटियां हैं, एक बेटी सौरभ राजपूत की है तो वहीं दूसरी बेटी साहिल की, जिसका जन्म जेल में हुआ था।
13: साहिल के घर वाले करेंगे, क्योंकि साहिल ने आगे आके बोला था कि भाई मैं ये तुम चाचा बन गए हो जो उसके जेल बंदी थे, और उन्होंने बोलता मैं बाहर आने के बाद जो है तुम्हें दावत दूंगा। उसने खुले में बोला था कि मेरी बच्ची
12: जो जेल वाली बेटी है उससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, और वो बड़ी वाली बेटी अगर उसके नाना नानी हमें बिना किसी उसके देंगे तो हम रखेंगे उसे अपने पास।
9: सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। शव को 5 टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया गया था। जुलाई 2025 में जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था, जिसके बाद आज कोर्ट ने फांसी की सजा देकर सौरभ राजपूत के परिवार को इंसाफ दिया। मेरठ से शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।
2: ईरान ने हूती विद्रोहियों के द्वारा अमेरिका और सऊदी अरब की नींद उड़ा रखी है। सऊदी पर हूतियों के हमले पर पहली बार ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान आया। ट्रंप ने दावा किया कि सऊदी पर हमले के पीछे तेल का खेल है, तेल का वही खेल जो मिड टर्म चुनाव को लेकर ईरानी साजिश का हिस्सा है।

0: सऊदी पर हमले के पीछे तेल का खेल, ईरान के इशारे पर निशाना बना रहे हूती, क्या ईरान का निशाना है मिड टर्म चुनाव, ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू में हुई बात, क्या हूतियों के हमलों का बदला लेंगे ट्रंप, तीन नवंबर से पहले ईरान पर होगा हमला, 27 अक्टूबर को इसराइल में चुनाव है तो 3 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है, चाहे इसराइल में चुनाव हो या फिर अमेरिका में मिड टर्म चुनाव, ट्रंप और नेतन्याहू के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, चुनाव में जीत मिली तो ईरान युद्ध पर जनता मोहर लगा देगी, लेकिन चुनाव में नेतन्याहू या फिर ट्रंप की पार्टी की हार हुई तो फैसला युद्ध छेड़ने के खिलाफ माना जाएगा। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी पर हूतियों के हमले के बीच ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर फोन पर बातचीत हुई है, बातचीत के दौरान ईरान पर नए सिरे से हमलों को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है, इसी बातचीत को लेकर ईरानी सेना की तरफ से अमेरिका को सीधी धमकी दी गई है, ईरान के खिलाफ नया युद्ध शुरू करना अमेरिका के लिए तर्कहीन होगा, लेकिन इस तरह के हमले की संभावना बनी हुई है क्योंकि ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले एक उपलब्धि हासिल करने की जरूरत है, ईरान किसी भी नए आक्रमण का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है, इस बार अमेरिका के लिए परिणाम कहीं अधिक गंभीर होंगे, ईरान ने 40 दिनों के युद्ध के दौरान मुख्य रूप से अपने पुराने हथियारों पर भरोसा किया था, लेकिन तब से उसे कहीं अधिक उन्नत हथियार प्राप्त हो गए हैं, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हमले के लिए पूरी तरह तैयार है, ईरान की तरफ से ये भी संकेत दिए गए हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया या फिर हूतियों के खिलाफ अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो खाड़ी देशों पर जमीनी स्तर पर ईरानी सेना घुसपैठ कर सकती है, अगर अमेरिका नए हमले शुरू करता है तो हम पड़ोसी देशों में सेना भेज सकते हैं, अब की बार ईरानी सेना की तैयारी कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने की है, मिडल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी मुल्कों को भारी कीमत चुकानी होगी, सऊदी अरब के तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है, यूएई के अहम ठिकानों के साथ साथ क्षेत्रीय डेटा सेंटर और इंटरनेट केबल भी निशाने पर हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने अपना चक्रव्यूह तैयार किया है, पहले ही होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है और लाल सागर के बड़े हिस्से पर हूतियों का कंट्रोल है, यही वजह है कि ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ट्रंप मानते हैं कि तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए हूती की तरफ से सऊदी अरब पर हमले किए जा रहे हैं जो मिड टर्म चुनाव तक चलेंगे, इसी बीच IRGC की तरफ से होर्मुज को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, अगर अमरीकियों को लगता है कि होर्मुज खुला है तो वो करीब आ जाएं। हम अमेरिकी युद्ध पोतों को डुबोने के लिए बेताब हैं। $13 अरब मूल्य का एक अमेरिकी युद्ध पोत अप्रभावी हो गया था और होर्मुज से 700 किलोमीटर दूर चला गया था क्योंकि उसने जलमार्ग के पास आने की हिम्मत नहीं की, हम अमेरिकी युद्ध पोतों के होर्मुज के प्रवेश द्वार के पास आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उन्हें डुबो सकें, हम इस घटना के होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल ईरान ये मानकर चल रहा है कि 27 अक्टूबर या फिर 3 नवंबर से पहले अमेरिका और इसराइल एक बार फिर हमले की हिमाकत कर सकते हैं, इस हमले को ईरान पर जीत के तौर पर ट्रंप और नेतन्याहू अपने मुल्क की जनता के सामने रख सकते हैं, इसी आशंका को देखते हुए एक खत लिखा गया था, आप ही हैं जो अपने वोटों से सरकार को शक्ति देते हैं और उसे मनमानी करने की अनुमति देते हैं, हालांकि अमेरिकी राजनेता अक्सर धोखे और झूठे वादों के जरिए आपके वोट जीतते हैं जैसा कि ट्रंप ने किया, लेकिन अगर आप अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का चुनाव करते समय अच्छे नेतृत्व के मानदंडों को अपनाते हैं तो आप सरकार की संरचना को बदल सकते हैं, आपको अपनी सरकार को इसराइल से दूरी बनाने के लिए मजबूर करना होगा क्योंकि फिलिस्तीन पर कब्जा करने वालों को देर सवेर अपनी कब्जे वाली जमीन छोड़कर अपने मूल देशों में लौटना ही होगा, हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में एक साथ रह सकते हैं, अमेरिका की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार दुष्ट कपटी और हिंसक राजनेताओं को सत्ता से हटा दें, अपने मामलों को बुद्धिमानों को सौंपें न कि धूर्तों को।
1: और छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: इंडिया गेट पर धरने पर बैठे अंकिता के माता पिता से मिलने के बाद राहुल का पोस्ट, चार साल से नहीं मिला इंसाफ। 2022 में अंकिता का हुआ था मर्डर, धामी सरकार का बयान, मामले की कराई हमने निष्पक्ष और तेज जांच। राहुल के साथ एनएसयूआई छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थाने, बदले में पुलिस ने बदसलूकी का जारी किया वीडियो। दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके का एयरपोर्ट पर लोगों ने किया विरोध, नाराजगी जताई। दीपके ने 16 अक्टूबर को नॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की अपील की। वाराणसी से सीएम ने अखिलेश पर बोला धावा, कहा समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या पराया धन अपना। और मेरठ नीले ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी, जज ने कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, सौरभ के शव के दोनों ने किए थे टुकड़े। चुनाव आयोग के निर्णय और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आंदोलन लगातार चल रहा है। राहुल ने भले ही अपने अगले कदम की जानकारी अभी नहीं दी हो, लेकिन जंतर मंतर को लेकर राहुल की तरफ से सरकार को लगातार खबरदार किया जा रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस से जुड़े संगठनों का जंतर मंतर की तरफ मार्च करना हो या फिर राहुल का पुलिस की बदसलूकी के शिकार छात्रों के साथ पीसी करना, जंतर मंतर को लेकर लड़ाई धीरे धीरे तेज हो रही है।
1: उसके बारे में आप मत घबराइए, वो हमारा काम है। एफआईआर होगा, प्रेशर करना है, क्या करना है। एक प्रोटेस्ट है, एक आवाज है, देश की आवाज है, और उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है।
2: एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी छात्रों को डरना मत वाला मंत्र देते हैं। जंतर मंतर को भारत के लोगों का बताकर इसे वापस लेने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, जंतर मंतर पर तिरंगा फहराने को अपराध नहीं बताते। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष का अगला प्रदर्शन जंतर मंतर को लेकर ही होगा, जो अब विरोध प्रदर्शन की जगह नहीं रहा।
3: द वन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज जंतर मंतर, एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट जंतर मंतर can no longer be used to express democratic feelings. Well, we are going to challenge that idea. It is not going to be so simple for the government to decide that the Indian people will not fight for their voice.
2: Rahul iska jawab haan mein de chuke hain. राहुल कह रहे हैं कि जनतर मंतर पर जाएंगे, वहीं दोबारा विरोध प्रदर्शन करेंगे, जहां सीजेपी के नेताओं को मिनट छोड़िए कुछ ही सेकंडों में पुलिस ने पकड़ लिया। सवाल यह है कि अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो उसे क्या अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि राहुल के जंतर मंतर पर दिए बयान के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जंतर मंतर छोड़िए इन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने तक से रोक दिया, दो दो बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया।
4: आईवाईसी अपना विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर दर्ज करवा रही है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, यहाँ देख सकते हैं कैसे जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंच गए। आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे आप पढ़ सकते होंगे संसद मार्ग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रायसेना रोड से जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं जो अपना मार्च शुरू करते हैं, जंतर मंतर जाते हैं और जंतर मंतर से यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट वो पहुंचते हैं। वहीं एक तरफ दिल्ली पुलिस की भी यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा भारी जो है तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं तैनात किए गए हैं, जगह जगह को बैरिकेड करके रखा ताकि जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं यहां से आगे ना बढ़ पाए, पर पहली लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए हैं अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने के लिए।
2: पुलिस की सख्ती के बावजूद एसएफआई और डीवाईएफआई जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने फिरोज शाह रोड से जंतर मंतर जाने की कोशिश की, जब पुलिस ने रोका तो नारेबाजी की। विपक्षी संगठन भले ही बार बार जंतर मंतर पर जाने की कोशिश कर रहे हों, राहुल इसे दोबारा वापस पाने के दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार और विपक्ष में टकराव की नई वजह बनती जा रही है। इस जगह पर अब पहले की तरह प्रदर्शन नहीं हो सकता, ऐसा करना अब गैर कानूनी हो गया है। अब सवाल ये है कि अगर कोई इसके बावजूद वहाँ प्रदर्शन करता है तो क्या होगा।
5: जंतर मंतर उन स्थानों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहाँ हमेशा के लिए हमेशा DNS की धारा 163 यानी कहें तो सीआरपीसी की धारा पहले जो 144 थी निषेधाज्ञा जिसे कहते हैं भारतीय न्याय संहिता की, अब भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 163 का असर रहेगा, यानी उसके असर में आप वहां बिना किसी परमिशन के आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। और ऐसे भी वो धरना प्रदर्शन के लिए वहां अगर आप परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी डालेंगे तो मंजूर नहीं होगी, क्योंकि अब वो जगह धरना प्रदर्शन के लिए नामजद जगहों में नहीं रह गई है।
2: शुरुआत में दिल्ली का बोट क्लब बड़े आंदोलन का बड़ा केंद्र था। लोग बोट क्लब में जुटते और सरकार से मांगे करते या असहमति जताते। इंडिया गेट के पास स्थित बोट क्लब से भी संसद की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। राम मंदिर आंदोलन के वक्त केंद्र की कांग्रेस सरकार ने यहां प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। 1988 में पश्चिम यूपी के कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने यहां से एक आंदोलन किया था, जिससे तब की कांग्रेस सरकार हिल गई थी। साल 1993 में प्रदर्शन स्थल बनने के बाद जनतर मंतर भी कई आंदोलन का गवाह बना। इसमें अन्ना हजारे आंदोलन सबसे बड़ा है। जंतर मंतर निर्भया आंदोलन में भी चर्चा में रहा। CAA किसान आंदोलन भी यहां से हुए, लेकिन अब यहां पर प्रदर्शन करने से रोक लगा दी गई है।
5: जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में निषेधाज्ञा जब लगाई जाती है तो पूरा नई दिल्ली इलाका घुटने लगता है, यानी दम घुट जाता है, ट्रैफिक रेंगता रहता है और लोगों को परेशानियां होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार जंतर मंतर के बजाय किसी और खुली जगह पर प्रदर्शन के लिए इजाजत क्यों नहीं दे देती है, यही प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है।
2: जंतर मंतर का मामला अदालत पहुंच गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देने के दिल्ली पुलिस के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर को तय प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के आधार पर लिया गया है, जिसमें वैकल्पिक जगहों की पहचान करने की बात कही गई थी। पुलिस की ओर से ये भी दलील दी गई कि जब जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया जा चुका है तो इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का अब कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की तो फिर उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
5: जैसा कि CJP ने लगातार दोहराया कि हमारा अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, तो अब कानून की धाराओं में उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर आप वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, 5 या 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके आगे भाषण करते हैं, तो आपको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि इसी में अगर आपके पास अवैध हथियार पाए जाते हैं, अगर आप पुलिस पर हमला करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं, तो अलग अलग धाराओं में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अधिकतम सजा 5 साल की सजा, ₹10,000 तक जुर्माना और चाहे अदालत चाहे तो दोनों चीजें एक साथ लगा सकती हैं। लिहाजा अब प्रदर्शन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है जहां निषेधाज्ञा यानी BNSS की धारा 163 लागू है, जिसे हम पुराने जमाने में 144 कहते थे, वो अगर लागू है तो आपको एक तो परमिशन नहीं मिलेगी और बिना परमिशन के अगर आप सिद्ध करेंगे कि हमें प्रदर्शन करना है तो इन सारी चीजों को भुगतने के लिए आप तैयार हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज का।
0: जंतर मंतर का मामला अदालत में है। अब अगर यहां प्रदर्शन को लेकर विपक्ष अड़ा तो उनके कार्यकर्ता, दिल्ली पुलिस के अफसर एक बार फिर से आमने सामने होंगे। राहुल ने LUCI कार्यकर्ताओं के साथ PC यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पुलिस ने भी जवाब दिया, बदसलूकी के अपने खिलाफ वीडियो जारी किए।
6: जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव
2: SIR पर अमित शाह की तरफ से पहले और बड़े हमले के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को छात्रों के बहाने घेरा।
1: ये हिंदुस्तान है, अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
2: राहुल गांधी ने सरकार ही नहीं दिल्ली पुलिस को भी चेतावनी दी, कहा प्यार से समझा रहा हूं।
1: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से। देखिए, मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस और घबराइए मत।
2: राहुल गांधी ने जिन लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सभी ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट और हिरासत में ज्यादती करने के आरोप लगाए। एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों के कहने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही थी।
7: सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको इलीगली डिटेन नहीं करना है प्रोटेस्टर्स को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, पर मेरे को बजरंग दल और आरएसएस के गुंडों के बोलने पे डिटेन किया गया और वो गुंडे वो थे जिनके पास मेरे पास उनका वीडियो है जहाँ पर वो थ्रेटन कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में पत्थर है और वो सब होने के बावजूद वही सेम गुंडे जाके पुलिस को बोलते हैं और पुलिस सुप्रीम कोर्ट की ना सुनने के बजाय उन गुंडों की सुन के उन्होंने मेरे को ब्रूटली डिटेन किया।
2: राहुल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदिरा ने होठों के नीचे लगी चोटों को भी दिखाया।
8: Chanchal Yadav and other 10 or 12 police officers went in the bus and dragged me in the road. And also there is a SHO in Cannot Place police station. He told me, the lady police officer, taken away to basement. There is no CCTV, you can do anything. So they punched me here. Mera live. And continuously beaten my pura cheek.
2: इसी दौरान NSUI से जुड़ी रितु बराला ने बताया कि उनके चेहरे पर चोट लगने की वजह दिल्ली पुलिस है। रितु ने बस में चंचल यादव नाम की एक महिला पुलिस कांस्टेबल पर मारपीट के आरोप लगाए।
9: महिला पुलिस कर्मी होती है वो इतना अग्रेसिव हो जाती है, हम आगे आने की कोशिश करते हैं तो वो मुझे इतनी जोर से धक्का मारती कि मैं पीछे जाके सीट पे, वो इतना जोर से पुश करती है कि मैं पीछे सीट पे जाके गिरती हूँ और फिर वो इतना जोर से अग्रेसिव हो जाती है कि मेरा गला जोर से दबा लेती है। इधर
10: पीछे का विजुअल है वो,
9: जी जी जी, यहाँ से मतलब मेरा गला पूरा स्क्रेच हो जाता है पूरा और फिर मतलब मैं गला कैसे छुड़ाने का प्रयास करती हूँ तो वो मेरे मुंह पे पंजा मार के मुक्का मारती है और फिर यहाँ इतनी जोर से मतलब पूरा स्क्रेच कर देती है पूरे फेस को और आंख के इधर भी लगता है। तो उसके बाद ये छुड़ाने का प्रयास करते हैं के लिए मैं धक्का मारती हूँ तो वो मेरे जोर से इतना थप्पड़ मार के मेरे बालों पे मतलब पूरा कैप्चर कर लेती है जूते रगड़ के और मेरी जो इयररिंग होती है वो मेरे कान के अंदर चली जाती है और उसके बाद हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा वो बाली मेरे साथियों के सामने निकाली जाती है।
2: अब 13 अक्टूबर की ये तस्वीर देखिए जिसमें रितु और महिला पुलिसकर्मी के बीच झड़प हो रही है। पुलिसकर्मी पर रितु थप्पड़ मारती दिखती है। अब पुलिस पूछ रही है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का हक किसने दिया।
11: वायरल वीडियो में दिखाई दे रही महिला पुलिसकर्मी का नाम चंचल यादव है, वो नई दिल्ली जिले में तैनात है। उसने सीनियर अफसरों को शिकायत दी है, उसमें बताया है कि NSUI के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी दौरान महिला NSUI की कार्यकर्ता को उसने हिरासत में लिया और बस में बिठाया, जहां NSUI की महिला कार्यकर्ता ने बस ड्राइवर से चाबी छीनी और उसे जमीन पर फेंक दिया जिसके बाद दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। महिला कांस्टेबल चंचल यादव ने आरोप लगाया है कि NSUI की कार्यकर्ता ने उसके साथ मारपीट की जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने चंचल यादव का मेडिकल टेस्ट करवाया है और अगर लीगल एक्शन लिया जा रहा है।
12: सर गायब हो गया?
13: बिल्कुल हो गया सर।
2: तो भले ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की मारपीट के बावजूद शांतिपूर्ण संदेश दिए जाने की बात कही गई हो,

0: थैंक यू. नफरत का जवाब प्यार से ही दिया जाएगा बेसिकली.
1: लेकिन दिल्ली पुलिस इस तरह के वीडियो के आधार पर पुलिस कर्मियों के हक का सवाल उठा रही है. राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान छात्रों से मारपीट का वीडियो बनाने को कहा है, उससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों में वीडियो वॉर तेज होने की पूरी संभावना है. अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक.
2: जंतर मंतर में सीजेपी नेताओं ने प्रतिबंध के बावजूद प्रदर्शन कर नारेबाजी की, जिसके बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया. वहीं अजिंक्य शिंदे को रिहा कर दिया गया. अभी तक राहुल सीजेपी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन जंतर मंतर से जुड़े मामले में राहुल का समर्थन और फिर अभिजीत दीपके का थैंक यू कहना चर्चा का विषय है. अब दीपके, नेहा बोरा, कपिल सिब्बल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
1: सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका स्वागत इस तरह से होगा. ऐसा दूसरी बार है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दीपके को सरप्राइज में विरोध मिलता है.
3: भारत माता की जय.
4: राजस्थान के एनएसए यूएन में जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो, जो लगाना है लगा दो. आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड.
1: जंतर मंतर पर भी सीजेपी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने सरप्राइज दिया और मिनटों में पकड़ लिया. जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से रोकने के बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से दो को, सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है.
5: जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो? ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था. तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया.
1: तिहाड़ जेल में सौरभ दास को जेल नंबर 2 में रखा गया है, वहीं आशुतोष रांका को जेल नंबर 4 में रखा गया है. दोनों को तिहाड़ जेल की अलग अलग बैरक में रखा गया है. अब सवाल ये है कि सीजेपी नेताओं को तिहाड़ क्यों भेजा गया? क्या इसकी वजह सख्त नाकेबंदी के बावजूद मंगलवार सुबह प्रतिबंधित क्षेत्र जंतर मंतर में घुसना है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तीनों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया, फिर तीनों को बुधवार संसद मार्ग की एसीएम कोर्ट के सामने पेश किया, जहां पर पिछली जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया. दरअसल बेल बॉन्ड की शर्त का उल्लंघन करने पर जिन्हें अदालत जेल की सजा सुनाती है, इस तरह के मामले में तुरंत राहत के लिए किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है. आरोपियों को सजा काटनी ही पड़ती है. जंतर मंतर को लेकर प्रशासन इसलिए भी सख्त है क्योंकि अब इसमें पाकिस्तानी साजिश के एंगल मिले हैं.
6: ऐसे हैंडल्स हैं जिनकी आईपी इंडिकेट करती है कि वो पाकिस्तान से क्रिएट किए हुए हैंडल्स हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है.
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना मना है, फिर भी कनॉट प्लेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. इससे पहले प्रदर्शन में घायल एनएसयूआई के छात्रों को लेकर राहुल गांधी हाजिर हुए, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए, जिसके बाद जंतर मंतर को लेकर सवाल और गहरा गया है.
7: अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए.
2: पंजाब की मानसा में एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद से शहर में तनाव है. इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी अश्विनी को पुलिस ने राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया, लेकिन उसके खिलाफ गुस्सा नहीं थम रहा. अश्विनी के घर में पहले तोड़फोड़ की गई, उसकी दुकान में आग लगा दी गई. पंजाब सरकार ने घर पर बुलडोजर चला दिया.
8: पंजाब का एक उभरता बॉक्सर पहले खुद नशे का आदी बना और फिर उसी ने नशे को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया. एक लाइन में परविंदर सिंह झोटा की यही कहानी है.
3: परविंदर सिंह झोटा को मानसा में बाबा बॉक्सर कहा जाता था। जालंधर के लायलपुर खालसा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान झोटा एक टैलेंटेड बॉक्सर थे, लेकिन किसी कारणवश वो इंटरनेशनल नहीं खेल पाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि परविंदर झोटा को खुद नशे की लत लग गई थी, लेकिन बाद में झोटा इस नशे की लत से बाहर आए और पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा। उन्होंने नशे को खत्म करना अपने जीवन का मिशन बना लिया, लेकिन अंत में इसी मिशन ने उनकी जिंदगी भी ले ली। लेकिन परविंदर झोटा की हत्या ने पूरे मानसा में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में तनाव पैदा कर दिया है। चुनाव नजदीक है, इसलिए राजनीति भी हो रही है। झोटा के घर वालों से मिलने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या अकाली दल, आम आदमी पार्टी, सब नेता पहुंच रहे हैं। और अब कल पंजाब बंद का भी ऐलान हो गया है।
9: श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने फैसला किया कि नशियां के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए अपनी जान निशावर करने वाले सरदार परमिंदर सिंह झोटा के सत्कारयोग पिता जी ने जिहड़ी कल 15 तरीक नूं पंजाब बंद की कॉल दिती है, श्रोमणी अकाली दल उस पीसफुल बंद का समर्थन करेगा, क्योंकि इस वेले जिहड़ा मुद्दा है वह पंजाब की जवानी नूं बचाउण दा। श्रोमणी अकाली दल सारे पंजाबियों नूं अपील करदा कि किसी नूं कहण की जरूरत नहीं पैनी चाहिए, बिल्कुल पीसफुल तरीके दे नाल जिस तरह जेडे परविंदर सिंह झोटा के पिता जी ने बेनती की है कि एक सुनेहा जाना चाहिए सारे देश नूं कि सारा पंजाब उस सोच दे नाल खड़ा जिदे वास्ते परविंदर सिंह झोटा ने अपनी शहादत दी।
3: पंजाब में भगवंत मान की सरकार भी दावा कर रही है कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो पंजाब में नशे के विरुद्ध युद्ध छेड़ा हुआ है।
10: पंजाब पुलिस वालों कोई भी कमी नहीं छड़ी जाऊगी, दोषियों को सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। जे दी साजिश के पिछे कोई बंदा होया तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाऊगा। पूरे पंजाब दे विच जो भावें मेडिकल नशा है भावें वैसे चिट्टा बेचते हैं, असी युद्ध छेड़िया होया ते उच किसी नूं कोई लिबर्टी जा किसी नाल कोई लिहाज नहीं की जाऊगी। परविंदर सिंह झोटा के परिवार नाल हमदर्दी भी प्रगट करदा कि एक जवान पुत जिहड़ा वह दुनिया तो चला गया, पर इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए सी। पर जो भी कमियां भावें जिस पद्धर ते मर्जी होवे, मैं DGP साहब नूं सख्त निर्देश दिते ने कि इहदी जिहड़ी है पूरी जांच पड़ताल की जाए ते दुध दा दुध ते पानी दा पानी कीता।
3: पंजाब की विपक्षी पार्टियां सरकार के इसी अभियान को मुद्दा बना रही हैं। कांग्रेस के सांसद अमरिंदर राजा बड़े आज मृतक के परिवार से मिले, परविंदर झोटा के माता पिता उनके बच्चों से मिले, और जब मीडिया से बात करने की बारी आई तो राजा बड़िंग ने पंजाब सरकार के इसी अभियान पर सवाल उठा दिया।
11: भगवंत मान साहब कहंदे सी कि ये नशा असी 1.5 महीने दे विच खत्म कर देना, और इस नशा खत्म करन दे वास्ते बड़ियां मुहिमां चलाईयां गईयां विखावे दे वास्ते। एक ऐसी मुहिम जिहड़ा नां युद्ध नशा विरुद्ध सी, जिहड़ा विखावा तां कीता और करोड़ां रुपया लोगां दा खर्च कीता, लेकिन मैं समझदा कि एदू महाड़ी मुहिम ते जान बुझ के लोकां नूं जिहड़ा बेवकूफ बनाया पंजाब सरकार ने, कुछ हो नहीं सकता। पंजाब दी पुलिस दी, पंजाब दे मुख्यमंत्री दी और पंजाब दे सरकार दी पूरन करड़े शब्द च निंदा कर दी।
3: कांग्रेस से बीजेपी में आए रवनीत बिट्टू भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने भी पंजाब सरकार पर सवाल उठाए, कानून व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म बताया और परिवार की हर संभव सहायता की बात की।
12: ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ 27 ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, केस भी जड़ा है वो सीबीआई नू नहीं दिंदा उन्ना चर बीजेपी पार्टी अपनी लड़ाई लड़ूगी असी अपनी पोलिटिकल एक ओपोजिशन द पार्टी का जड़ा रोल आ वो अदा करांगे।
2: ईरान ने हूती विद्रोहियों के द्वारा अमेरिका और सऊदी अरब की नींद उड़ा रखी है। सऊदी पर हूतियों के हमले पर पहली बार ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान आया। ट्रंप ने दावा किया कि सऊदी पर हमले के पीछे तेल का खेल है, तेल का वही खेल जो मिड टर्म चुनाव को लेकर ईरानी साजिश का हिस्सा है।

0: सऊदी पर हमले के पीछे तेल का खेल, ईरान के इशारे पर निशाना बना रहे हूती, क्या ईरान का निशाना है मिड टर्म चुनाव, ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू में हुई बात, क्या हूतियों के हमलों का बदला लेंगे ट्रंप, तीन नवंबर से पहले ईरान पर होगा हमला, 27 अक्टूबर को इसराइल में चुनाव है तो 3 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है, चाहे इसराइल में चुनाव हो या फिर अमेरिका में मिड टर्म चुनाव, ट्रंप और नेतन्याहू के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, चुनाव में जीत मिली तो ईरान युद्ध पर जनता मोहर लगा देगी, लेकिन चुनाव में नेतन्याहू या फिर ट्रंप की पार्टी की हार हुई तो फैसला युद्ध छेड़ने के खिलाफ माना जाएगा। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी पर हूतियों के हमले के बीच ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर फोन पर बातचीत हुई है, बातचीत के दौरान ईरान पर नए सिरे से हमलों को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है, इसी बातचीत को लेकर ईरानी सेना की तरफ से अमेरिका को सीधी धमकी दी गई है, ईरान के खिलाफ नया युद्ध शुरू करना अमेरिका के लिए तर्कहीन होगा, लेकिन इस तरह के हमले की संभावना बनी हुई है क्योंकि ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले एक उपलब्धि हासिल करने की जरूरत है, ईरान किसी भी नए आक्रमण का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है, इस बार अमेरिका के लिए परिणाम कहीं अधिक गंभीर होंगे, ईरान ने 40 दिनों के युद्ध के दौरान मुख्य रूप से अपने पुराने हथियारों पर भरोसा किया था, लेकिन तब से उसे कहीं अधिक उन्नत हथियार प्राप्त हो गए हैं, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हमले के लिए पूरी तरह तैयार है, ईरान की तरफ से ये भी संकेत दिए गए हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया या फिर हूतियों के खिलाफ अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो खाड़ी देशों पर जमीनी स्तर पर ईरानी सेना घुसपैठ कर सकती है, अगर अमेरिका नए हमले शुरू करता है तो हम पड़ोसी देशों में सेना भेज सकते हैं, अब की बार ईरानी सेना की तैयारी कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने की है, मिडल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी मुल्कों को भारी कीमत चुकानी होगी, सऊदी अरब के तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है, यूएई के अहम ठिकानों के साथ साथ क्षेत्रीय डेटा सेंटर और इंटरनेट केबल भी निशाने पर हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने अपना चक्रव्यूह तैयार किया है, पहले ही होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है और लाल सागर के बड़े हिस्से पर हूतियों का कंट्रोल है, यही वजह है कि ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ट्रंप मानते हैं कि तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए हूती की तरफ से सऊदी अरब पर हमले किए जा रहे हैं जो मिड टर्म चुनाव तक चलेंगे, इसी बीच IRGC की तरफ से होर्मुज को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, अगर अमरीकियों को लगता है कि होर्मुज खुला है तो वो करीब आ जाएं। हम अमेरिकी युद्ध पोतों को डुबोने के लिए बेताब हैं। $13 अरब मूल्य का एक अमेरिकी युद्ध पोत अप्रभावी हो गया था और होर्मुज से 700 किलोमीटर दूर चला गया था क्योंकि उसने जलमार्ग के पास आने की हिम्मत नहीं की, हम अमेरिकी युद्ध पोतों के होर्मुज के प्रवेश द्वार के पास आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उन्हें डुबो सकें, हम इस घटना के होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल ईरान ये मानकर चल रहा है कि 27 अक्टूबर या फिर 3 नवंबर से पहले अमेरिका और इसराइल एक बार फिर हमले की हिमाकत कर सकते हैं, इस हमले को ईरान पर जीत के तौर पर ट्रंप और नेतन्याहू अपने मुल्क की जनता के सामने रख सकते हैं, इसी आशंका को देखते हुए IRGC की तरफ से अमेरिका में होने वाले मिड टर्म चुनाव को लेकर अमेरिकी जनता के नाम एक खत लिखा गया था, आप ही हैं जो अपने वोटों से सरकार को शक्ति देते हैं और उसे मनमानी करने की अनुमति देते हैं, हालांकि अमेरिकी राजनेता अक्सर धोखे और झूठे वादों के जरिए आपके वोट जीतते हैं जैसा कि ट्रंप ने किया, लेकिन अगर आप अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का चुनाव करते समय अच्छे नेतृत्व के मानदंडों को अपनाते हैं तो आप सरकार की संरचना को बदल सकते हैं, आपको अपनी सरकार को इसराइल से दूरी बनाने के लिए मजबूर करना होगा क्योंकि फिलिस्तीन पर कब्जा करने वालों को देर सवेर अपनी कब्जे वाली जमीन छोड़कर अपने मूल देशों में लौटना ही होगा, हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में एक साथ रह सकते हैं, अमेरिका की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार दुष्ट कपटी और हिंसक राजनेताओं को सत्ता से हटा दें, अपने मामलों को बुद्धिमानों को सौंपें न कि धूर्तों को।
1: और छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए

0: इंडिया गेट पर धरने पर बैठे अंकिता के माता पिता से मिलने के बाद राहुल का पोस्ट, 4 साल से नहीं मिला इंसाफ। 2022 में अंकिता का हुआ था मर्डर, धामी सरकार का बयान, मामले की कराई हमने निष्पक्ष और तेज जांच। राहुल के साथ एनएसयूआई छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थाने, बदले में पुलिस ने बदसलूकी का जारी किया वीडियो। दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके का एयरपोर्ट पर लोगों ने किया विरोध, नाराजगी जताई, दीपके ने 16 अक्टूबर को नॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की अपील की। वाराणसी से सीएम ने अखिलेश पर बोला धावा, कहा समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या पराया धन अपना। और मेरठ नीले ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी, जज ने कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, सौरभ के शव के दोनों ने किए थे टुकड़े। चुनाव आयोग के निर्णय और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आंदोलन लगातार चल रहा है। राहुल ने भले ही अपने अगले कदम की जानकारी अभी नहीं दी हो, लेकिन जंतर मंतर को लेकर राहुल की तरफ से सरकार को लगातार खबरदार किया जा रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस से जुड़े संगठनों का जंतर मंतर की तरफ मार्च करना हो या फिर राहुल का पुलिस की बदसलूकी के शिकार छात्रों के साथ पीसी करना, जंतर मंतर को लेकर लड़ाई धीरे धीरे तेज हो रही है।
1: उसके बारे में आप मत घबराइए, वो हमारा काम है। FIR होगा, प्रेशर करना है, क्या करना है, एक प्रोटेस्ट है, एक आवाज है, देश की आवाज है, और उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही
2: है। SIR के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले NSUI के कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी छात्रों को डरना मत वाला मंत्र देते हैं। जंतर मंतर को भारत के लोगों का बताकर इसे वापस लेने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, CJP नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, जंतर मंतर पर तिरंगा फहराने को अपराध नहीं बताते। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष का अगला प्रदर्शन जंतर मंतर को लेकर ही होगा, जो अब विरोध प्रदर्शन की जगह नहीं रहा।
3: द वन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज जंतर मंतर, एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट जंतर मंतर can no longer be used to express democratic feelings. Well, we are going to challenge that idea. It is not going to be so simple for the government to decide that the Indian people will not fight for their voice.
2: Rahul iska jawab haan mein de chuke hain. Rahul keh rahe hain ki janatar mantar par jayenge, wahin dobara virodh pradarshan karenge, jahan CJP ke netaon ko minute chhodiye, कुछ ही सेकंडों में पुलिस ने पकड़ लिया। सवाल यह है कि अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो उसे क्या अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि राहुल के जंतर मंतर पर दिए बयान के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जंतर मंतर छोड़िए इन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने तक से रोक दिया, दो दो बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया।
4: ऐसी अपना विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर दर्ज करवा रही, आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे जो IYC के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंच गए, आपको दिखाना चाहूंगा। पीछे आप पढ़ सकते होंगे संसद मार्ग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रायसेना रोड से जो IYC के कार्यकर्ता हैं जो अपना मार्च शुरू करते हैं, जंतर मंतर जाते हैं और जंतर मंतर से यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट वो पहुंचते हैं। वहीं एक तरफ दिल्ली पुलिस की भी यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा भारी जो है तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं तैनात किए गए हैं, जगह जगह को बैरिकेड करके रखा ताकि जो IYC के कार्यकर्ता यहां से आगे ना बढ़ पाए, पर पहली लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर जो IYC के कार्यकर्ता यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए हैं अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने के लिए।
2: पुलिस की सख्ती के बावजूद SFI और TYFI जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने फिरोज शाह रोड से जंतर मंतर जाने की कोशिश की, जब पुलिस ने रोका तो नारेबाजी की। विपक्षी संगठन भले ही बार बार जंतर मंतर पर जाने की कोशिश कर रहे हों, राहुल इसे दोबारा वापस पाने के दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार और विपक्ष में टकराव की नई वजह बनती जा रही है। इस जगह पर अब पहले

0: स्थानों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां हमेशा के लिए हमेशा डीएनएस की धारा 163 यानी कहें तो सीआरपीसी की धारा पहले जो 144 थी, निषेधाज्ञा जिसे कहते हैं भारतीय न्याय संहिता की, अब भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 163 का असर रहेगा, यानी उसके असर में आप वहां बिना किसी परमिशन के आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। और ऐसे भी वो धरना प्रदर्शन के लिए वहां अगर आप परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी डालेंगे तो मंजूर नहीं होगी, क्योंकि अब वो जगह धरना प्रदर्शन के लिए नामजद जगहों में नहीं रह गई है।
1: शुरुआत में दिल्ली का वोट क्लब बड़े आंदोलन का बड़ा केंद्र था। लोग वोट क्लब में जुटते और सरकार से मांगे करते या असहमति जताते। इंडिया गेट के पास स्थित वोट क्लब से भी संसद की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। राम मंदिर आंदोलन के वक्त केंद्र की कांग्रेस सरकार ने यहां प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। 1988 में पश्चिम यूपी के कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने यहां से एक आंदोलन किया था जिससे तब की कांग्रेस सरकार हिल गई थी। साल 1993 में प्रदर्शन स्थल बनने के बाद जंतर मंतर भी कई आंदोलन का गवाह बना। इसमें अन्ना हजारे आंदोलन सबसे बड़ा है। जंतर मंतर निर्भया आंदोलन में भी चर्चा में रहा। CAA किसान आंदोलन भी यहां से हुए, लेकिन अब यहां पर प्रदर्शन करने से रोक लगा दी गई है।
0: जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में निषेधाज्ञा जब लगाई जाती है तो पूरा नई दिल्ली इलाका घुटने लगता है, यानी दम घुट जाता है, ट्रैफिक रेंगता रहता है और लोगों को परेशानियां होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार जंतर मंतर के बजाय किसी और खुली जगह पर प्रदर्शन के लिए इजाजत क्यों नहीं दे देती है, यही प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है।
1: जंतर मंतर का मामला अदालत पहुंच गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देने के दिल्ली पुलिस के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर को तय प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के आधार पर लिया गया है जिसमें वैकल्पिक जगहों की पहचान करने की बात कही गई थी। पुलिस की ओर से ये भी दलील दी गई कि जब जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया जा चुका है तो इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का अब कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की तो फिर उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
0: जैसा कि CJP ने लगातार दोहराया कि हमारा अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, तो अब कानून की धाराओं में उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर आप वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, 5 या 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके आगे भाषण करते हैं, तो आपको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि इसी में अगर आपके पास अवैध हथियार पाए जाते हैं, अगर आप पुलिस पर हमला करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं, तो अलग अलग धाराओं में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अधिकतम सजा 5 साल की सजा, ₹10,000 तक जुर्माना और चाहे अदालत चाहे तो दोनों चीजें एक साथ लगा सकती हैं। लिहाजा अब प्रदर्शन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है जहां निषेधाज्ञा यानी DNSS की धारा 163 लागू है, जिसे हम पुराने जमाने में 144 कहते थे, वो अगर लागू है तो आपको एक तो परमिशन नहीं मिलेगी और बिना परमिशन के अगर आप सिद्ध करेंगे कि हमने प्रदर्शन करना है तो इन सारी चीजों को भुगतने के लिए आप तैयार हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।
2: जंतर मंतर का मामला अदालत में है। अब अगर यहां प्रदर्शन को लेकर विपक्ष अड़ा तो उनके कार्यकर्ता, दिल्ली पुलिस के अफसर एक बार फिर से आमने सामने होंगे। राहुल ने LUCI कार्यकर्ताओं के साथ PC यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पुलिस ने भी जवाब दिया, बदसलूकी के अपने खिलाफ वीडियो जारी किए।
3: जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव
1: SIR पर अमित शाह की तरफ से पहले और बड़े हमले के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को छात्रों के बहाने घेरा।
4: ये हिंदुस्तान है, अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है। और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
1: राहुल गांधी ने सरकार ही नहीं दिल्ली पुलिस को भी चेतावनी दी, कहा प्यार से समझा रहा हूं।
4: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से। देखिए मैंने

0: सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए। इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक। नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत।
1: राहुल गांधी ने जिन लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सभी ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट और हिरासत में ज्यादती करने के आरोप लगाए। एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों के कहने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही थी।
2: सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको इलीगली डिटेन नहीं करना है प्रोटेस्टर्स को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, पर मेरे को बजरंग दल और आरएसएस के गुंडों के बोलने पे डिटेन किया गया। और वो गुंडे वो थे जिनके पास मेरे पास उनका वीडियो है, सॉरी मेरे पास उनका वीडियो है जहाँ पर वो थ्रेटन कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में पत्थर है। और वो सब होने के बावजूद वही सेम गुंडे जाके पुलिस को बोलते हैं और पुलिस सुप्रीम कोर्ट की ना सुनने के बजाय उन गुंडों की सुन के उन्होंने मेरे को ब्रूटली डिटेन किया।
1: राहुल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदिरा ने होठों के नीचे लगी चोटों को भी दिखाया।
3: Chanchal Yadav and other 3 or 4 police officers went in the bus and dragged me in the road. And also there is a SHO in Cannot Place police station. He told me, the lady police officer, taken away to basement. There is no CCTV, you can do anything. So they punched me here. Mera live. And continuously beaten my pura cheek.
1: इसी दौरान NSUI से जुड़ी रितु बराला ने बताया कि उनके चेहरे पर चोट लगने की वजह दिल्ली पुलिस है। रितु ने बस में चंचल यादव नाम की एक महिला पुलिस कांस्टेबल पर मारपीट के आरोप लगाए।
4: महिला पुलिसकर्मी होती है वो इतना अग्रेसिव हो जाती है, हम आगे आने की कोशिश करते तो वो मुझे इतनी जोर से धक्का मारती कि मैं पीछे जाके सीट पे, वो इतना जोर से पुश करती कि मैं पीछे सीट पे जाके गिरती हूँ और फिर वो इतना जोर से अग्रेसिव हो जाती कि मेरा गला जोर से दबा लेती है। इधर
5: पीछे का विजुअल है वो,
4: जी जी जी, यहाँ से मतलब मेरा गला पूरा स्क्रेच हो जाता है पूरा, और फिर मतलब मैं गला कैसे छुड़ाने का प्रयास करती हूँ तो वो मेरे मुंह पे पंजा मार के मुक्का मारती है और फिर यहाँ इतनी जोर से मतलब पूरा स्क्रेच कर देती है पूरे फेस को और आंख के इधर भी लगता है। तो उसके बाद ये छुड़ाने का प्रयास करते हैं के लिए मैं धक्का मारती हूँ तो वो मेरे जोर से इतना थप्पड़ मार के मेरे बालों पे मतलब पूरा कैप्चर कर लेती है, जूते रगड़ के, और मेरी जो इयरिंग होती है वो मेरे कान के अंदर चली जाती है। और उसके बाद हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा वो बाली मेरे साथियों के सामने निकाली जाती है।
1: अब 13 अक्टूबर की ये तस्वीर देखिए जिसमें रितु और महिला पुलिसकर्मी के बीच झड़प हो रही है। पुलिसकर्मी पर रितु थप्पड़ मारती दिखती है। अब पुलिस पूछ रही है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का हक किसने दिया।
6: वायरल वीडियो में दिखाई दे रही महिला पुलिसकर्मी का नाम चंचल यादव है, वो नई दिल्ली जिले में तैनात है। उसने सीनियर अफसरों को शिकायत दी है, उसमें बताया है कि NSUI के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दौरान महिला NSUI की कार्यकर्ता को उसने हिरासत में लिया और बस में बिठाया, जहां NSUI की महिला कार्यकर्ता ने बस ड्राइवर से चाबी छीनी और उसे जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। महिला कांस्टेबल चंचल यादव ने आरोप लगाया है कि NSUI की कार्यकर्ता ने उसके साथ मारपीट की जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने चंचल यादव का मेडिकल टेस्ट करवाया है और अगर लीगल एक्शन लिया जा रहा है।
7: डर गायब हो गया?
8: बिल्कुल हो गया सर।
1: तो भले ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की मारपीट के बावजूद शांतिपूर्ण संदेश दिए जाने की बात कही गई हो,

0: थैंक यू. नफरत का जवाब प्यार से ही दिया जाएगा बेसिकली.
1: लेकिन दिल्ली पुलिस इस तरह के वीडियो के आधार पर पुलिस कर्मियों के हक का सवाल उठा रही है. राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान छात्रों से मारपीट का वीडियो बनाने को कहा है, उससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों में वीडियो वॉर तेज होने की पूरी संभावना है. अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक.
2: जंतर मंतर में सीजेपी नेताओं ने प्रतिबंध के बावजूद प्रदर्शन कर नारेबाजी की, जिसके बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया. वहीं अजिंक्य शिंदे को रिहा कर दिया गया. अभी तक राहुल सीजेपी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन जंतर मंतर से जुड़े मामले में राहुल का समर्थन और फिर अभिजीत दीपके का थैंक यू कहना चर्चा का विषय है. अब दीपके, नेहा बोरा, कपिल सिब्बल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
1: सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका स्वागत इस तरह से होगा. ऐसा दूसरी बार है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दीपके को सरप्राइज में विरोध मिलता है.
3: भारत माता की जय.
4: राजस्थान के एनएसए यूएन में जो लगाना है लगा दो. आई एम नॉट अफ्रेड.
1: जंतर मंतर पर भी सीजेपी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने सरप्राइज दिया और मिनटों में पकड़ लिया. जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से रोकने के बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से दो को, सौरभ दास और आशुतोष रांका को, 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है.
5: जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो? ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था. तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया.
1: तिहाड़ जेल में सौरभ दास को जेल नंबर 2 में रखा गया है. वहीं आशुतोष रांका को जेल नंबर 4 में रखा गया है. दोनों को तिहाड़ जेल की अलग अलग बैरक में रखा गया है. अब सवाल ये है कि सीजेपी नेताओं को तिहाड़ क्यों भेजा गया? क्या इसकी वजह सख्त नाकेबंदी के बावजूद मंगलवार सुबह प्रतिबंधित क्षेत्र जंतर मंतर में घुसना है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तीनों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया, फिर तीनों को बुधवार संसद मार्ग की एसीएम कोर्ट के सामने पेश किया, जहां पर पिछली जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया. दरअसल बेल बॉन्ड की शर्त का उल्लंघन करने पर जिन्हें अदालत जेल की सजा सुनाती है, इस तरह के मामले में तुरंत राहत के लिए किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है. आरोपियों को सजा काटनी ही पड़ती है. जंतर मंतर को लेकर प्रशासन इसलिए भी सख्त है क्योंकि अब इसमें पाकिस्तानी साजिश के एंगल मिले हैं.
6: ऐसे हैंडल्स हैं जिनकी आईपी इंडिकेट करती है कि वो पाकिस्तान से क्रिएट किए हुए हैंडल्स हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है.
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना मना है, फिर भी कनॉट प्लेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. इससे पहले प्रदर्शन में घायल एनएसयूआई के छात्रों को लेकर राहुल गांधी हाजिर हुए, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए, जिसके बाद जंतर मंतर को लेकर सवाल और गहरा गया है.
7: अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए.
2: पंजाब की मानसा में एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद से शहर में तनाव है. इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी अश्विनी को पुलिस ने राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया, लेकिन उसके खिलाफ गुस्सा नहीं थम रहा. अश्विनी के घर में पहले तोड़फोड़ की गई, उसकी दुकान में आग लगा दी गई. पंजाब सरकार ने घर पर बुलडोजर चला दिया.
8: पंजाब का एक उभरता बॉक्सर पहले खुद नशे का आदी बना और फिर उसी ने नशे को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया. एक लाइन में परविंदर सिंह झोटा की यही कहानी है. परविंदर सिंह झोटा को मानसा में बाबा बॉक्सर कहा जाता था। जालंधर के लायलपुर खालसा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान छोटा एक टैलेंटेड बॉक्सर थे, लेकिन किसी कारणवश वो इंटरनेशनल नहीं खेल पाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि परविंदर झोटा को खुद नशे की लत लग गई थी, लेकिन बाद में झोटा इस नशे की लत से बाहर आए और पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा। उन्होंने नशे को खत्म करना अपने जीवन का मिशन बना लिया, लेकिन अंत में इसी मिशन ने उनकी जिंदगी भी ले ली। लेकिन परविंदर झोटा की हत्या ने पूरे मानसा में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में तनाव पैदा कर दिया है। चुनाव नजदीक है, इसलिए राजनीति भी हो रही है। झोटा के घर वालों से मिलने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या अकाली दल, आम आदमी पार्टी, सब नेता पहुंच रहे हैं। और अब कल पंजाब बंद का भी ऐलान हो गया है।
3: श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने फैसला किया है कि नशियां के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए अपनी जान निशावर करने वाले सरदार परमिंदर सिंह झोटा के सत्कारयोग पिता जी ने जिहड़ी कल 15 तरीक नूं पंजाब बंद की कॉल दिती है, श्रोमणी अकाली दल उस पीसफुल बंद का समर्थन करेगा, क्योंकि इस वेले जिहड़ा मुद्दा वह पंजाब की जवानी नूं बचाउण दा। श्रोमणी अकाली दल सारे पंजाबियों नूं अपील करदा कि किसी नूं कहण की जरूरत नहीं पैनी चाहीदी, बिल्कुल पीसफुल तरीके दे नाल जिस तरह जेडे परविंदर सिंह झोटा के पिता जी ने बेनती की है कि एक सुनेहा जाना चाहिए सारे देश नूं कि सारा पंजाब उस सोच दे नाल खड़ा है जिहदे वास्ते परविंदर सिंह झोटा ने अपनी शहादत दी।
8: पंजाब में भगवंत मान की सरकार भी दावा कर रही है कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो पंजाब में नशे के विरुद्ध युद्ध छेड़ा हुआ है।
9: पंजाब पुलिस वालों कोई भी कमी नहीं छड़ी जाऊगी, दोषियों नूं सख्त तो सख्त सज़ा मिलेगी। जे इहदी साजिश के पिछे कोई हो बंदा होया तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाऊगा। पूरे पंजाब दे विच जो भावें मैडिकल नशा है भावें वैसे चिट्टा बेचते हैं असी युद्ध छेड़िया होया ते उच किसी नूं कोई लिबर्टी जा किसी नाल कोई लिहाज नहीं की जाऊगी। परविंदर सिंह झोटा के परिवार नाल हमदर्दी भी प्रगट करदा कि एक जवान पुत जिहड़ा वह दुनिया तो चला गया, पर इस तरह की घटना होनी नहीं चाहीदी सी। पर जो भी कमियां भावें जिस पद्धर ते मर्जी होवे मैं DGP साहब नूं सख्त निर्देश दिते ने कि इहदी जिहड़ी है पूरी जांच पड़ताल की जाए ते दुध दा दुध ते पानी दा पानी कीता।
8: पंजाब की विपक्षी पार्टियां सरकार के इसी अभियान को मुद्दा बना रही हैं। कांग्रेस के सांसद अमरिंदर राजा वड़े आज मृतक के परिवार से मिले, परविंदर झोटा के माता पिता उनके बच्चों से मिले, और जब मीडिया से बात करने की बारी आई तो राजा वड़िंग ने पंजाब सरकार के इसी अभियान पर सवाल उठा दिया।
10: भगवंत मान साहब ये कहंदे सी कि ये नशा असी 1.5 महीने दे विच खत्म कर देना, और इस नशा खत्म करने दे वास्ते बड़िया मुहिमां चलाईया गई विखावे दे वास्ते। एक ऐसी मुहिम जिहड़ा ना युद्ध नशा विरुद्ध सी, जेड़ा विखावा तो किया और करोड़ा रुपया लोगों का खर्च किया, लेकिन मैं समझना कि एदू महाड़ी मुहिम ते जान बुझ के लोगों नू जेड़ा बेवकूफ बनाया पंजाब सरकार ने कुछ हो नहीं सकता। पंजाब दी पुलिस दी, पंजाब दे मुख्यमंत्री दी और पंजाब दे सरकार दी पूरन करड़े शब्द च निंदा कर दी।
8: कांग्रेस से बीजेपी में आए रवनीत बिट्टू भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने भी पंजाब सरकार पर सवाल उठाए, कानून व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म बताया और परिवार की हर संभव सहायता की बात की।
11: ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ 27 ਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ केस भी जिहड़ा है वो सीबीआई नूं नहीं दिंदा उन्ना चिर बीजेपी पार्टी अपनी लड़ाई लड़ूगी। असी अपनी पोलिटिकल एक ओपोजिशन दा पार्टी दा जिहड़ा रोल आ वह अदा करांगे।
2: मेरठ के नीले ड्रम केस में कोर्ट ने मुस्कान साहिल को फांसी की सजा सुना दी। जज ने सौरभ हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए मौत की सजा सुनाई।
12: डेढ़ साल पहले हुआ हत्याकांड और करीब एक साल से चल रहे ट्रायल के बाद आखिरकार नीला ड्रम कांड में कोर्ट का फैसला आ गया। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
13: वो कहां गया था क्योंकि चश्मदीद गवाह नहीं है और उसके बच्चे हैं और इसके माँ बाप बुजुर्ग हैं, ये सारी तथ्य रखे गए थे, लेकिन वो कोर्ट ने कोई वो नहीं माना और इनको अपराध की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड की सजा मुकर्रर की है।
12: जिला जेल से दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। जज ने मुस्कान से पूछा, तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? मुस्कान ने जवाब दिया, मेरी बेटी छोटी है, उसका ख्याल रखा जाए। फिर वो खामोश हो गई। इसके बाद साहिल से यही सवाल पूछा गया तो वो भी चुप रहा।
14: जज ने आज ये भी कहा बहस के दौरान कि हमें फैसला देने से पहले ये भी देखना है कि समाज और जनता की ओपिनियन क्या है ऐसे केसेस में जिससे समाज पे असर पड़ता है। उनका इशारा ये था कि हाल के वक्त में बहुत सारी पत्नियां के हाथों पति का कत्ल हो रहा है, पति के हाथों पत्नियां का कत्ल हो रहा है, तो समाज में जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है तो एक ऐसा फैसला होना चाहिए जो जनता चाहती है उस हिसाब से ये फैसला हो और जो समाज में सोच है उस हिसाब से भी एक मैसेज जाए।
12: सरकारी वकील ने कोर्ट से मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं मुस्कान साहिल के वकील ने कहा था मुस्कान की दो बेटियां हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, कम से कम सजा होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फांसी की सजा पर मुहर लगाई।
15: अब इस पूरे मामले में जो साइंटिफिक एविडेंसेस थे, क्योंकि जो नशा दिया गया था खाने में सब्जी में, उस नशे को कहां से खरीदा गया था उसने भी आइडेंटिफाई किया, मुस्कान को आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से ये कत्ल के पहले खरीदी थी, सीसीटीवी फुटेज कत्ल के पहले और बाद का, कौन आया कौन गया, ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण थी और डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे काम किया, जिसके बाद आज ये दिन आया 30 सितंबर को दोषी ठहराया गया था और आखिरकार आज जो मेरठ कोर्ट है मोइन ठीक मौजूद है यहाँ पर अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है।
12: 30 सितंबर को कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी ठहराया था। सौरभ राजपूत के परिवार ने कोर्ट से दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई थी।
16: हम तो यही देना संदेश जाते भैया, किसी का भी बच्चे को मारो मत, नहीं रहना उनके साथ, अलग हो जा। अगर कोई लड़का नहीं चाहता लड़की को मार देता है तो वो भी अपने नई लड़की के साथ रहना तो वो भी अलग हो जाए, तो अगर ये ऐसा काम करेंगे तो उनको भी फांसी की ही सजा होगी।
12: अब सवाल ये है कि आखिर मुस्कान को फांसी कब और कैसे होगी, क्योंकि मुस्कान की दो छोटी बेटियां हैं, एक बेटी सौरभ राजपूत की है तो वहीं दूसरी बेटी साहिल की, जिसका जन्म जेल में हुआ था।
17: साहिल के घर वाले करेंगे, क्योंकि साहिल ने आगे आके बोला था कि भाई मैं ये तुम चाचा बन गए हो जो उसके जेल बंदी थे, और उन्होंने बोला मैं बाहर आने के बाद जो है तुम्हें दावत दूंगा, उसने खुले में बोला था कि मेरी बच्ची
16: जो जेल वाली बेटी है उससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, और वो बड़ी वाली बेटी अगर उसके नाना नानी हमें बिना किसी उसके देंगे तो हम रखेंगे उसे अपने पास।
12: सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। शव को 5 टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया गया था। जुलाई 2025 में जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था, जिसके बाद आज कोर्ट ने फांसी की सजा देकर सौरभ राजपूत के परिवार को इंसाफ दिया। मेरठ से शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।
2: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: इंडिया गेट पर धरने पर बैठे अंकिता के माता पिता से मिलने के बाद राहुल का पोस्ट, चार साल से नहीं मिला इंसाफ। 2022 में अंकिता का हुआ था मर्डर, धामी सरकार का बयान, मामले की कराई हमने निष्पक्ष और तेज जांच। राहुल के साथ एनएसयूआई छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थाने, बदले में पुलिस ने बदसलूकी का जारी किया वीडियो। दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके का एयरपोर्ट पर लोगों ने किया विरोध, नाराजगी जताई, दीपके ने 16 अक्टूबर को नॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की अपील की। वाराणसी से सीएम ने अखिलेश पर बोला धावा, कहा समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या पराया धन अपना। और मेरठ नीले ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी, जज ने कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, सौरभ के शव के दोनों ने किए थे टुकड़े। चुनाव आयोग के निर्णय और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आंदोलन लगातार चल रहा है। राहुल ने भले ही अपने अगले कदम की जानकारी अभी नहीं दी हो, लेकिन जंतर मंतर को लेकर राहुल की तरफ से सरकार को लगातार खबरदार किया जा रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस से जुड़े संगठनों का जंतर मंतर की तरफ मार्च करना हो या फिर राहुल का पुलिस की बदसलूकी के शिकार छात्रों के साथ पीसी करना, जंतर मंतर को लेकर लड़ाई धीरे धीरे तेज हो रही है।
1: उसके बारे में आप मत घबराइए, वो हमारा काम है। एफआईआर होगा, प्रेशर करना है, क्या करना है, एक प्रोटेस्ट है, एक आवाज है, देश की आवाज है, और उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है।
2: एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी छात्रों को डरना मत वाला मंत्र देते हैं। जंतर मंतर को भारत के लोगों का बताकर इसे वापस लेने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, जंतर मंतर पर तिरंगा फहराने को अपराध नहीं बताते। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष का अगला प्रदर्शन जंतर मंतर को लेकर ही होगा, जो अब विरोध प्रदर्शन की जगह नहीं रहा।
3: द वन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज जंतर मंतर, एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट जंतर मंतर can no longer be used to express democratic feelings. Well, we are going to challenge that idea. It is not going to be so simple for the government to decide that the Indian people will not fight for their voice.
2: Rahul iska jawab haan mein de chuke hain. राहुल कह रहे हैं कि जनतर मंतर पर जाएंगे, वहीं दोबारा विरोध प्रदर्शन करेंगे, जहां सीजेपी के नेताओं को मिनट छोड़िए कुछ ही सेकंडों में पुलिस ने पकड़ लिया। सवाल यह है कि अगर किसी ने जनतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो उसे क्या अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि राहुल के जनतर मंतर पर दिए बयान के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से जनतर मंतर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जंतर मंतर छोड़िए इन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने तक से रोक दिया, दो दो बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया।
4: वैसी अपना विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर दर्ज करवा रही, आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंच गए, आपको दिखाना चाहूंगा। पीछे आप पढ़ सकते होंगे संसद मार्ग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रायसेना रोड से जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं जो अपना मार्च शुरू करते हैं, जंतर मंतर जाते हैं और जंतर मंतर से यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट वो पहुंचते हैं। वहीं एक तरफ दिल्ली पुलिस की भी यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा भारी जो है तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं तैनात किए गए हैं, जगह जगह को बैरिकेड करके रखा ताकि जो आईवाईसी के कार्यकर्ता यहां से आगे ना बढ़ पाए, पर पहली लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर जो आईवाईसी के कार्यकर्ता यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए हैं अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने के लिए।
2: पुलिस की सख्ती के बावजूद एसएफआई और डीवाईएफआई जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने फिरोज शाह रोड से जंतर मंतर जाने की कोशिश की, जब पुलिस ने रोका तो नारेबाजी की। विपक्षी संगठन भले ही बार बार जंतर मंतर पर जाने की कोशिश कर रहे हो, राहुल इसे दोबारा वापस पाने के दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार और विपक्ष में टकराव की नई वजह बनती जा रही है। इस जगह पर अब पहले की तरह प्रदर्शन नहीं हो सकता, ऐसा करना अब गैरकानूनी हो गया है। अब सवाल ये है कि अगर कोई इसके बावजूद वहाँ प्रदर्शन करता है तो क्या होगा।
5: जंतर मंतर उन स्थानों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहाँ हमेशा के लिए हमेशा DNS की धारा 163 यानी कहें तो सीआरपीसी की धारा पहले जो 144 थी, निषेधाज्ञा जिसे कहते हैं भारतीय न्याय संहिता की, अब भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 163 का असर रहेगा, यानी उसके असर में आप वहां बिना किसी परमिशन के आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। और ऐसे भी वो धरना प्रदर्शन के लिए वहां अगर आप परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी डालेंगे तो मंजूर नहीं होगी, क्योंकि अब वो जगह धरना प्रदर्शन के लिए नामजद जगहों में नहीं रह गई है।
2: शुरुआत में दिल्ली का बोट क्लब बड़े आंदोलन का बड़ा केंद्र था। लोग बोट क्लब में जुटते और सरकार से मांगे करते या असहमति जताते। इंडिया गेट के पास स्थित बोट क्लब से भी संसद की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। राम मंदिर आंदोलन के वक्त केंद्र की कांग्रेस सरकार ने यहां प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। 1988 में पश्चिम यूपी के कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने यहां से एक आंदोलन किया था, जिससे तब की कांग्रेस सरकार हिल गई थी। साल 1993 में प्रदर्शन स्थल बनने के बाद जंतर मंतर भी कई आंदोलन का गवाह बना। इसमें अन्ना हजारे आंदोलन सबसे बड़ा है। जंतर मंतर निर्भया आंदोलन में भी चर्चा में रहा। CAA किसान आंदोलन भी यहां से हुए, लेकिन अब यहां पर प्रदर्शन करने से रोक लगा दी गई है।
5: जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में निषेधाज्ञा जब लगाई जाती है तो पूरा नई दिल्ली इलाका घुटने लगता है, यानी दम घुट जाता है, ट्रैफिक रेंगता रहता है और लोगों को परेशानियां होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार जंतर मंतर के बजाय किसी और खुली जगह पर प्रदर्शन के लिए इजाजत क्यों नहीं दे देती है, यही प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है।
2: जंतर मंतर का मामला अदालत पहुंच गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देने के दिल्ली पुलिस के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर को तय प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के आधार पर लिया गया है, जिसमें वैकल्पिक जगहों की पहचान करने की बात कही गई थी। पुलिस की ओर से ये भी दलील दी गई कि जब जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया जा चुका है तो इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का अब कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की तो फिर उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
5: जैसा कि CJP ने लगातार दोहराया कि हमारा अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, तो अब कानून की धाराओं में उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर आप वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, 5 या 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके आगे भाषण करते हैं, तो आपको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि इसी में अगर आपके पास अवैध हथियार पाए जाते हैं, अगर आप पुलिस पर हमला करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं, तो अलग अलग धाराओं में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अधिकतम सजा 5 साल की सजा, ₹10,000 तक जुर्माना, और चाहे अदालत चाहे तो दोनों चीजें एक साथ लगा सकती हैं। लिहाजा अब प्रदर्शन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है जहां निषेधाज्ञा यानी BNSS की धारा 163 लागू है, जिसे हम पुराने जमाने में 144 कहते थे, वो अगर लागू है तो आपको एक तो परमिशन नहीं मिलेगी और बिना परमिशन के अगर आप सिद्ध करेंगे कि हमें प्रदर्शन करना है तो इन सारी चीजों को भुगतने के लिए आप तैयार हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज का।
0: जंतर मंतर का मामला अदालत में है। अब अगर यहां प्रदर्शन को लेकर विपक्ष अड़ा तो उनके कार्यकर्ता, दिल्ली पुलिस के अफसर एक बार फिर से आमने सामने होंगे। राहुल ने LUCI कार्यकर्ताओं के साथ PC यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पुलिस ने भी जवाब दिया, बदसलूकी के अपने खिलाफ वीडियो जारी किए।
6: जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव है।
2: SIR पर अमित शाह की तरफ से पहले और बड़े हमले के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को छात्रों के बहाने घेरा।
1: ये हिंदुस्तान है अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है, और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
2: राहुल गांधी ने सरकार ही नहीं दिल्ली पुलिस को भी चेतावनी दी, कहा प्यार से समझा रहा हूं।
1: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से। देखिए, मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है, और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस और घबराइए मत।
2: राहुल गांधी ने जिन लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सभी ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट और हिरासत में ज्यादती करने के आरोप लगाए। एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों के कहने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही थी।
7: सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको इलीगली डिटेन नहीं करना है प्रोटेस्टर्स को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, पर मेरे को बजरंग दल और आरएसएस के गुंडों के बोलने पे डिटेन किया गया और वो गुंडे वो थे जिनके पास मेरे पास उनका वीडियो है जहाँ पर वो थ्रेटन कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में पत्थर है और वो सब होने के बावजूद वही सेम गुंडे जाके पुलिस को बोलते हैं और पुलिस सुप्रीम कोर्ट की ना सुनने के बजाय उन गुंडों की सुन के उन्होंने मेरे को ब्रूटली डिटेन किया।
2: राहुल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदिरा ने होठों के नीचे लगी चोटों को भी दिखाया।
8: चंचल यादव एंड अदर तीन और चार पुलिस ऑफिसर्स वेंट इन द बस एंड ड्रैगन मी इन द रोड एंड आल्सो दे देयर इज एसएचओ इन कैनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन, ही टोल्ड मी द लेडी पुलिस ऑफिसर टेकन अवे टू बेसमेंट, देयर इज नो सीसीटीवी, यू कैन डू एनीथिंग, सो दे पंच मी हियर, मेरा लिव एंड कंटिन्यूअसली बीटन माय पूरा चीक।
2: इसी दौरान एनएसयूआई से जुड़ी रितु बराला ने बताया कि उनके चेहरे पर चोट लगने की वजह दिल्ली पुलिस है। रितु ने बस में चंचल यादव नाम की एक महिला पुलिस कांस्टेबल पर मारपीट के आरोप लगाए।
9: महिला पुलिसकर्मी होती है वो इतना अग्रेसिव हो जाती है, हम आगे आने की कोशिश करते हैं तो वो मुझे इतनी जोर से धक्का मारती कि मैं पीछे जाके सीट पे, वो इतना जोर से पुश करती कि मैं पीछे सीट पे जाके गिरती हूँ और फिर वो इतना जोर से अग्रेसिव हो जाती कि मेरा गला जोर से दबा लेती है। इधर
10: पीछे का विजुअल है वो,
9: जी जी जी, यहाँ से मतलब मेरा गला पूरा स्क्रेच हो जाता है पूरा, और फिर मतलब मैं गला कैसे छुड़ाने का प्रयास करती हूँ तो वो मेरे मुंह पे पंजा मार के मुक्का मारती है और फिर यहाँ इतनी जोर से मतलब पूरा स्क्रेच कर देती है पूरे फेस को और आंख के इधर भी लगता है, तो उसके बाद ये छुटाने का प्रयास करते हैं के लिए मैं धक्का मारती हूँ तो वो मेरे जोर से इतना थप्पड़ मार के मेरे बालों पे मतलब पूरा कैप्चर कर लेती है जूते रगड़ के और मेरी जो इयरिंग होती है वो मेरे कान के अंदर चली जाती है और उसके बाद हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा वो बाली मेरे साथियों के सामने निकाली जाती है।
2: अब 13 अक्टूबर की ये तस्वीर देखिए जिसमें रितु और महिला पुलिसकर्मी के बीच झड़प हो रही है। पुलिसकर्मी पर रितु थप्पड़ मारती दिखती है। अब पुलिस पूछ रही है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का हक किसने दिया।
11: वायरल वीडियो में दिखाई दे रही महिला पुलिसकर्मी का नाम चंचल यादव है, वो नई दिल्ली जिले में तैनात है। उसने सीनियर अफसरों को शिकायत दी है, उसमें बताया है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी दौरान महिला एनएसयूआई की कार्यकर्ता को उसने हिरासत में लिया और बस में बिठाया, जहाँ एनएसयूआई की महिला कार्यकर्ता ने बस ड्राइवर से चाबी छीनी और उसे जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। महिला कांस्टेबल चंचल यादव ने आरोप लगाया है कि एनएसयूआई की कार्यकर्ता ने उसके साथ मारपीट की जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने चंचल यादव का मेडिकल टेस्ट करवाया है और अगर लीगल एक्शन लिया जा रहा है।
12: सर गायब हो गया?
13: बिल्कुल हो गया सर।
2: तो भले ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की मारपीट के बावजूद शांतिपूर्ण संदेश दिए जाने की बात कही गई हो,
11: गुत्थम गुत्था होने लगी। महिला कांस्टेबल चंचल यादव ने आरोप लगाया है कि एनएसयूआई की कार्यकर्ता ने उसके साथ मारपीट की जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने चंचल यादव का मेडिकल टेस्ट करवाया है और अगर लीगल एक्शन लिया जा रहा है।
12: सर गायब हो गया?
13: बिल्कुल हो गया सर।
2: तो भले ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की मारपीट के बावजूद शांतिपूर्ण संदेश दिए जाने की बात कही गई हो,

0: जंतर मंतर में सीजेपी नेताओं ने प्रतिबंध के बावजूद प्रदर्शन कर नारेबाजी की, जिसके बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वहीं अजिंक्य शिंदे को रिहा कर दिया गया। अभी तक राहुल सीजेपी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन जंतर मंतर से जुड़े मामले में राहुल का समर्थन और फिर अभिजीत दीपके का थैंक यू कहना चर्चा का विषय है। अब दीपके, नेहा बोरा, कपिल सिब्बल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
1: सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका स्वागत इस तरह से होगा। ऐसा दूसरी बार है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दीपके को सरप्राइज में विरोध मिलता है।
2: भारत माता की जय।
3: राजस्थान के एनएसए यूएनए जो लगाना है लगा दो। आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड।
1: जंतर मंतर पर भी सीजेपी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने सरप्राइज दिया और मिनटों में पकड़ लिया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से रोकने के बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से दो को, सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।
4: जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो? ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया?
1: तिहाड़ जेल में सौरभ दास को जेल नंबर 2 में रखा गया है, वहीं आशुतोष रांका को जेल नंबर 4 में रखा गया है। दोनों को तिहाड़ जेल की अलग अलग बैरक में रखा गया है। अब सवाल ये है कि सीजेपी नेताओं को तिहाड़ क्यों भेजा गया? क्या इसकी वजह सख्त नाकेबंदी के बावजूद मंगलवार सुबह प्रतिबंधित क्षेत्र जंतर मंतर में घुसना है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तीनों के खिलाफ BNS की कई धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया, फिर तीनों को बुधवार संसद मार्ग की ACM कोर्ट के सामने पेश किया, जहां पर पिछली जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। दरअसल बेल बॉन्ड की शर्त का उल्लंघन करने पर जिन्हें अदालत जेल की सजा सुनाती है, इस तरह के मामले में तुरंत राहत के लिए किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, आरोपियों को सजा काटनी ही पड़ती है। जंतर मंतर को लेकर प्रशासन इसलिए भी सख्त है क्योंकि अब इसमें पाकिस्तानी साजिश के एंगल मिले हैं।
5: ऐसे हैंडल्स हैं जिनकी IP इंडिकेट करती है कि वो पाकिस्तान से क्रिएट किए हुए हैंडल्स हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है।
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना मना है, फिर भी कनॉट प्लेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रदर्शन में घायल NSUI के छात्रों को लेकर राहुल गांधी हाजिर हुए, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए, जिसके बाद जंतर मंतर को लेकर सवाल और गहरा गया है।
6: अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए।
0: मेरठ के नीले ड्रम केस में कोर्ट ने मुस्कान साहिल को फांसी की सजा सुना दी। जज ने सौरभ हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए मौत की सजा सुनाई।
7: पहले हुआ हत्याकांड और करीब 1 साल से चल रहे ट्रायल के बाद आखिरकार नीला ड्रम कांड में कोर्ट का फैसला आ गया। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
8: कहा गया था कि कुछ चश्मदीद गवाह नहीं है और उसके बच्चे हैं और इसके माँ बाप बुजुर्ग हैं, ये सारी तथ्य रखे गए थे, लेकिन वो कोर्ट ने कोई वो नहीं माना और इनको अपराध की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड की सजा मुकर्रर की है।
7: जिला जेल से दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। जज ने मुस्कान से पूछा, तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? मुस्कान ने जवाब दिया, मेरी बेटी छोटी है, उसका ख्याल रखा जाए। फिर वो खामोश हो गई। इसके बाद साहिल से यही सवाल पूछा गया तो वो भी चुप रहा।
9: जज
2: जज ने आज ये भी कहा बहस के दौरान कि हमें फैसला देने से पहले ये भी देखना है कि समाज और जनता की ओपिनियन क्या है ऐसे केसेस में जिससे समाज पे असर पड़ता है। उनका इशारा ये था कि हाल के वक्त में बहुत सारी पत्नियां के हाथों पति का कत्ल हो रहा है, पति के हाथों पत्नियां का कत्ल हो रहा है, तो समाज में जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है तो एक ऐसा फैसला होना चाहिए जो जनता चाहती है उस हिसाब से ये फैसला हो और जो समाज में सोच है उस हिसाब से भी एक मैसेज जाए।
7: सरकारी वकील ने कोर्ट से मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं मुस्कान साहिल के वकील ने कहा था मुस्कान की दो बेटियां हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, कम से कम सजा होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फांसी की सजा पर मुहर लगाई।
9: अब इस पूरे मामले में जो साइंटिफिक एविडेंसेस थे, क्योंकि जो नशा दिया गया था खाने में सब्जी में, उस नशे को कहां से खरीदा गया था उसने भी आइडेंटिफाई किया, मुस्कान को आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से ये कत्ल के पहले खरीदी थी, सीसीटीवी फुटेज कत्ल के पहले और बाद का, कौन आया कौन गया, ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण थी और डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे काम किया, जिसके बाद आज ये दिन आया 30 सितंबर को दोषी ठहराया गया था और आखिरकार आज जो मेरठ कोर्ट है वहीं ठीक मौजूद है। यहाँ पर अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है।
7: 30 सितंबर को कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी ठहराया था। सौरभ राजपूत के परिवार ने कोर्ट से दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई थी।
10: हम तो यही देना संदेश जाते भैया, किसी का भी बच्चे को मारो मत, नहीं रहना उनके साथ, अलग हो जा। अगर कोई लड़का नहीं चाहता लड़की को मार देता है तो वो भी अपने नई लड़की के साथ रहना तो वो भी अलग हो जाए, तो अगर ये ऐसा काम करेंगे तो उनको भी फांसी की ही सजा होगी।
7: अब सवाल ये है कि आखिर मुस्कान को फांसी कब और कैसे होगी, क्योंकि मुस्कान की दो छोटी बेटियां हैं, एक बेटी सौरभ राजपूत की है तो वहीं दूसरी बेटी साहिल की, जिसका जन्म जेल में हुआ था।
11: साहिल के घर वाले करेंगे, क्योंकि साहिल ने आगे आके बोला था कि भाई मैं ये तुम चाचा बन गए हो जो उसके जेल बंदी थे, और उन्होंने बोला मैं बाहर आने के बाद जो है तुम्हें दावत दूंगा। उसने खुले में बोला था कि मेरी बच्ची
10: जो जेल वाली बेटी है उससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, और वो बड़ी वाली बेटी अगर उसके नाना नानी हमें बिना किसी उसके देंगे तो हम रखेंगे उसे अपने पास।
7: सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। शव को 5 टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया गया था। जुलाई 2025 में जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था, जिसके बाद आज कोर्ट ने फांसी की सजा देकर सौरभ राजपूत के परिवार को इंसाफ दिया। मेरठ से शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।
0: ईरान ने हूती विद्रोहियों के द्वारा अमेरिका और सऊदी अरब की नींद उड़ा रखी है। सऊदी पर हूतियों के हमले पर पहली बार ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान आया। ट्रंप ने दावा किया कि सऊदी पर हमले के पीछे तेल का खेल है, तेल का वही खेल जो मिड टर्म चुनाव को लेकर ईरानी साजिश का हिस्सा है।

0: थैंक यू. नफरत का जवाब प्यार से ही दिया जाएगा बेसिकली.
1: लेकिन दिल्ली पुलिस इस तरह के वीडियो के आधार पर पुलिस कर्मियों के हक का सवाल उठा रही है. राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान छात्रों से मारपीट का वीडियो बनाने को कहा है, उससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों में वीडियो वॉर तेज होने की पूरी संभावना है. अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक.

0: सऊदी पर हमले के पीछे तेल का खेल, ईरान के इशारे पर निशाना बना रहे हूती, क्या ईरान का निशाना है मिड टर्म चुनाव, ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू में हुई बात, क्या हूतियों के हमलों का बदला लेंगे ट्रंप, तीन नवंबर से पहले ईरान पर होगा हमला, 27 अक्टूबर को इसराइल में चुनाव है तो 3 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है, चाहे इसराइल में चुनाव हो या फिर अमेरिका में मिड टर्म चुनाव, ट्रंप और नेतन्याहू के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, चुनाव में जीत मिली तो ईरान युद्ध पर जनता मोहर लगा देगी, लेकिन चुनाव में नेतन्याहू या फिर ट्रंप की पार्टी की हार हुई तो फैसला युद्ध छेड़ने के खिलाफ माना जाएगा। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी पर हूतियों के हमले के बीच ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर फोन पर बातचीत हुई है, बातचीत के दौरान ईरान पर नए सिरे से हमलों को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है, इसी बातचीत को लेकर ईरानी सेना की तरफ से अमेरिका को सीधी धमकी दी गई है, ईरान के खिलाफ नया युद्ध शुरू करना अमेरिका के लिए तर्कहीन होगा, लेकिन इस तरह के हमले की संभावना बनी हुई है क्योंकि ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले एक उपलब्धि हासिल करने की जरूरत है, ईरान किसी भी नए आक्रमण का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है, इस बार अमेरिका के लिए परिणाम कहीं अधिक गंभीर होंगे, ईरान ने 40 दिनों के युद्ध के दौरान मुख्य रूप से अपने पुराने हथियारों पर भरोसा किया था, लेकिन तब से उसे कहीं अधिक उन्नत हथियार प्राप्त हो गए हैं, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हमले के लिए पूरी तरह तैयार है, ईरान की तरफ से ये भी संकेत दिए गए हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया या फिर हूतियों के खिलाफ अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो खाड़ी देशों पर जमीनी स्तर पर ईरानी सेना घुसपैठ कर सकती है, अगर अमेरिका नए हमले शुरू करता है तो हम पड़ोसी देशों में सेना भेज सकते हैं, अब की बार ईरानी सेना की तैयारी कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने की है, मिडल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी मुल्कों को भारी कीमत चुकानी होगी, सऊदी अरब के तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है, यूएई के अहम ठिकानों के साथ साथ क्षेत्रीय डेटा सेंटर और इंटरनेट केबल भी निशाने पर हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने अपना चक्रव्यूह तैयार किया है, पहले ही होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है और लाल सागर के बड़े हिस्से पर हूतियों का कंट्रोल है, यही वजह है कि ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ट्रंप मानते हैं कि तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए हूती की तरफ से सऊदी अरब पर हमले किए जा रहे हैं जो मिड टर्म चुनाव तक चलेंगे, इसी बीच IRGC की तरफ से होर्मुज को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, अगर अमरीकियों को लगता है कि होर्मुज खुला है तो वो करीब आ जाएं। हम अमेरिकी युद्ध पोतों को डुबोने के लिए बेताब हैं। $13 अरब मूल्य का एक अमेरिकी युद्ध पोत अप्रभावी हो गया था और होर्मुज से 700 किलोमीटर दूर चला गया था क्योंकि उसने जलमार्ग के पास आने की हिम्मत नहीं की, हम अमेरिकी युद्ध पोतों के होर्मुज के प्रवेश द्वार के पास आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उन्हें डुबो सकें, हम इस घटना के होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल ईरान ये मानकर चल रहा है कि 27 अक्टूबर या फिर 3 नवंबर से पहले अमेरिका और इसराइल एक बार फिर हमले की हिमाकत कर सकते हैं, इस हमले को ईरान पर जीत के तौर पर ट्रंप और नेतन्याहू अपने मुल्क की जनता के सामने रख सकते हैं, इसी आशंका को देखते हुए IRGC की तरफ से अमेरिका में होने वाले मिड टर्म चुनाव को लेकर अमेरिकी जनता के नाम एक खत लिखा गया था, आप ही हैं जो अपने वोटों से सरकार को शक्ति देते हैं और उसे मनमानी करने की अनुमति देते हैं, हालांकि अमेरिकी राजनेता अक्सर धोखे और झूठे वादों के जरिए आपके वोट जीतते हैं जैसा कि ट्रंप ने किया, लेकिन अगर आप अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का चुनाव करते समय अच्छे नेतृत्व के मानदंडों को अपनाते हैं तो आप सरकार की संरचना को बदल सकते हैं, आपको अपनी सरकार को इसराइल से दूरी बनाने के लिए मजबूर करना होगा क्योंकि फिलिस्तीन पर कब्जा करने वालों को देर सवेर अपनी कब्जे वाली जमीन छोड़कर अपने मूल देशों में लौटना ही होगा, हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में एक साथ रह सकते हैं, अमेरिका की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार दुष्ट कपटी और हिंसक राजनेताओं को सत्ता से हटा दें, अपने मामलों को बुद्धिमानों को सौंपें न कि धूर्तों को।
1: और छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए

0: इंडिया गेट पर धरने पर बैठे अंकिता के माता पिता से मिलने के बाद राहुल का पोस्ट, 4 साल से नहीं मिला इंसाफ। 2022 में अंकिता का हुआ था मर्डर, धामी सरकार का बयान, मामले की कराई हमने निष्पक्ष और तेज जांच। राहुल के साथ एनएसयूआई छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थाने, बदले में पुलिस ने बदसलूकी का जारी किया वीडियो। दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके का एयरपोर्ट पर लोगों ने किया विरोध, नाराजगी जताई, दीपके ने 16 अक्टूबर को नॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की अपील की। वाराणसी से सीएम ने अखिलेश पर बोला धावा, कहा समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या पराया धन अपना। और मेरठ नीले ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी, जज ने कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, सौरभ के शव के दोनों ने किए थे टुकड़े। चुनाव आयोग के निर्णय और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आंदोलन लगातार चल रहा है। राहुल ने भले ही अपने अगले कदम की जानकारी अभी नहीं दी हो, लेकिन जंतर मंतर को लेकर राहुल की तरफ से सरकार को लगातार खबरदार किया जा रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस से जुड़े संगठनों का जंतर मंतर की तरफ मार्च करना हो या फिर राहुल का पुलिस की बदसलूकी के शिकार छात्रों के साथ पीसी करना, जंतर मंतर को लेकर लड़ाई धीरे धीरे तेज हो रही है।
1: उसके बारे में आप मत घबराइए, वो हमारा काम है। FIR होगा, प्रेशर करना है, क्या करना है, एक प्रोटेस्ट है, एक आवाज है, देश की आवाज है, और उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही
2: है। SIR के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले NSUI के कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी छात्रों को डरना मत वाला मंत्र देते हैं। जंतर मंतर को भारत के लोगों का बताकर इसे वापस लेने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, CJP नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, जंतर मंतर पर तिरंगा फहराने को अपराध नहीं बताते। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष का अगला प्रदर्शन जंतर मंतर को लेकर ही होगा, जो अब विरोध प्रदर्शन की जगह नहीं रहा।
3: द वन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज जंतर मंतर, एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट जंतर मंतर can no longer be used to express democratic feelings. Well, we are going to challenge that idea. It is not going to be so simple for the government to decide that the Indian people will not fight for their voice.
2: Rahul iska jawab haan mein de chuke hain. Rahul keh rahe hain ki janatar mantar par jayenge, wahi dobara virodh pradarshan karenge, jahan CJP ke netaon ko minute chhodiye, कुछ ही सेकंडों में पुलिस ने पकड़ लिया। सवाल यह है कि अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो उसे क्या अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि राहुल के जंतर मंतर पर दिए बयान के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जंतर मंतर छोड़िए इन्हें पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने तक से रोक दिया, दो दो बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया।
4: वैसी अपना विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर दर्ज करवा रही, आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे जो IYC के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंच गए, आपको दिखाना चाहूंगा। पीछे आप पढ़ सकते होंगे संसद मार्ग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रायसेना रोड से जो IYC के कार्यकर्ता हैं जो अपना मार्च शुरू करते हैं, जंतर मंतर जाते हैं और जंतर मंतर से यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट वो पहुंचते हैं। वहीं एक तरफ दिल्ली पुलिस की भी यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा भारी जो है तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं तैनात किए गए हैं, जगह जगह को बैरिकेड करके रखा ताकि जो IYC के कार्यकर्ता हैं यहां से आगे ना बढ़ पाए, पर पहली लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर जो IYC के कार्यकर्ता हैं यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए हैं अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने के लिए।
2: पुलिस की सख्ती के बावजूद SFI और DYFI जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने फिरोजशाह रोड से जंतर मंतर जाने की कोशिश की, जब पुलिस ने रोका तो नारेबाजी की। विपक्षी संगठन भले ही बार बार जंतर मंतर पर जाने की कोशिश कर रहे हों, राहुल इसे दोबारा वापस पाने के दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार और विपक्ष में टकराव की नई वजह बनती जा रही है। इस जगह पर अब पहले की तरह प्रदर्शन नहीं हो सकता, ऐसा करना अब गैरकानूनी हो गया है। अब सवाल ये है कि अगर कोई इसके बावजूद वहाँ प्रदर्शन करता है तो क्या होगा।
5: जंतर मंतर उन स्थानों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहाँ हमेशा के लिए हमेशा हमेशा DNS की धारा 163 यानी कहें तो सीआरपीसी की धारा पहले जो 144 थी, निषेधाज्ञा जिसे कहते हैं भारतीय न्याय संहिता की, अब भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 163 का असर रहेगा, यानी उसके असर में आप वहां बिना किसी परमिशन के आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। और ऐसे भी वो धरना प्रदर्शन के लिए वहां अगर आप परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी डालेंगे तो मंजूर नहीं होगी, क्योंकि अब वो जगह धरना प्रदर्शन के लिए नामजद जगहों में नहीं रह गई है।
2: शुरुआत में दिल्ली का वोट क्लब बड़े आंदोलन का बड़ा केंद्र था। लोग वोट क्लब में जुटते और सरकार से मांगे करते या असहमति जताते। इंडिया गेट के पास स्थित वोट क्लब से भी संसद की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। राम मंदिर आंदोलन के वक्त केंद्र की कांग्रेस सरकार ने यहां प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। 1988 में पश्चिम यूपी के कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने यहां से एक आंदोलन किया था, जिससे तब की कांग्रेस सरकार हिल गई थी। साल 1993 में प्रदर्शन स्थल बनने के बाद जनतर मंतर भी कई आंदोलन का गवाह बना। इसमें अन्ना हजारे आंदोलन सबसे बड़ा है। जंतर मंतर निर्भया आंदोलन में भी चर्चा में रहा। CAA किसान आंदोलन भी यहां से हुए, लेकिन अब यहां पर प्रदर्शन करने से रोक लगा दी गई है।
5: जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में निषेधाज्ञा जब लगाई जाती है तो पूरा नई दिल्ली इलाका घुटने लगता है, यानी दम घुट जाता है, ट्रैफिक रेंगता रहता है और लोगों को परेशानियां होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार जंतर मंतर के बजाय किसी और खुली जगह

0: दिल्ली पुलिस के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर को तय प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के आधार पर लिया गया है, जिसमें वैकल्पिक जगहों की पहचान करने की बात कही गई थी। पुलिस की ओर से ये भी दलील दी गई कि जब जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया जा चुका है तो इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का अब कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी अगर किसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की तो फिर उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
1: जैसा कि सीजेपी ने लगातार दोहराया कि हमारा अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, तो अब कानून की धाराओं में उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर आप वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, पांच या पांच से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके आगे भाषण करते हैं, तो आपको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। क्योंकि इसी में अगर आपके पास अवैध हथियार पाए जाते हैं, अगर आप पुलिस पर हमला करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं, तो अलग अलग धाराओं में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अधिकतम सजा 5 साल की सजा, 10,000 रुपए तक जुर्माना और चाहे अदालत चाहे तो दोनों चीजें एक साथ लगा सकती हैं। लिहाजा अब प्रदर्शन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कहीं भी प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है जहां निषेधाज्ञा यानी BNSS की धारा 163 लागू है, जिसे हम पुराने जमाने में 144 कहते थे, वो अगर लागू है तो आपको एक तो परमिशन नहीं मिलेगी और बिना परमिशन के अगर आप सिद्ध करेंगे कि हमें प्रदर्शन करना है तो इन सारी चीजों को भुगतने के लिए आप तैयार हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज का।
2: जंतर मंतर का मामला अदालत में है, अब अगर यहां प्रदर्शन को लेकर विपक्ष अड़ा तो उनके कार्यकर्ता, दिल्ली पुलिस के अफसर एक बार फिर से आमने सामने होंगे। राहुल ने NUCI कार्यकर्ताओं के साथ PC यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पुलिस ने भी जवाब दिया, बदसलूकी के अपने खिलाफ वीडियो जारी किए।
3: जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव
0: SIR पर अमित शाह की तरफ से पहले और बड़े हमले के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को छात्रों के बहाने घेरा।
4: ये हिंदुस्तान है अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
0: राहुल गांधी ने सरकार ही नहीं दिल्ली पुलिस को भी चेतावनी दी, कहा प्यार से समझा रहा हूं।
4: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से। देखिए, मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस और घबराइए मत।
0: राहुल गांधी ने जिन लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सभी ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट और हिरासत में ज्यादती करने के आरोप लगाए। एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस RSS और भाजपा से जुड़े लोगों के कहने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही थी।
5: सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको इलीगली डिटेन नहीं करना है प्रोटेस्टर्स को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, पर मेरे को बजरंग दल और RSS के गुंडों के बोलने पे डिटेन किया गया और वो गुंडे वो थे जिनके पास मेरे पास उनका वीडियो है, सॉरी मेरे पास उनका वीडियो है जहां पर वो थ्रेटन कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में पत्थर है और वो सब होने के बावजूद वही सेम गुंडे जाके पुलिस को बोलते हैं और पुलिस सुप्रीम कोर्ट की ना सुनने के बजाय उन गुंडों की सुन के उन्होंने मेरे को ब्रूटली डिटेन किया।
0: राहुल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदिरा ने होठों के नीचे लगी चोटों को भी दिखाया।
6: चंचल यादव एंड अदर 3 or 4 पुलिस ऑफिसर्स वेंट इन द बस एंड ड्रैगन मी इन द रोड एंड आल्सो दे देयर इज SHO इन कैनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन, ही टोल्ड मी द लेडी पुलिस ऑफिसर taken away to basement, there is no CCTV.

0: डू एनीथिंग. सो दे पंच मी हियर, मेरा लिव एंड कंटिन्यूअसली बीटन माय पूरा चीक.
1: इसी दौरान एनएसयूआई से जुड़ी रितु बराला ने बताया कि उनके चेहरे पर चोट लगने की वजह दिल्ली पुलिस है. रितु ने बस में चंचल यादव नाम की एक महिला पुलिस कांस्टेबल पर मारपीट के आरोप लगाए.
2: महिला पुलिसकर्मी होती है वो इतना अग्रेसिव हो जाती है, हम आगे आने की कोशिश करते हैं तो वो मुझे इतनी जोर से धक्का मारती कि मैं पीछे जाके सीट पे, वो इतना जोर से पुश करती कि मैं पीछे सीट पे जाके गिरती हूँ, और फिर वो इतना जोर से अग्रेसिव हो जाती कि मेरा गला जोर से दबा लेती है. इधर
3: पीछे का विजुअल है वो,
2: जी जी जी, यहाँ से मतलब मेरा गला पूरा स्क्रेच हो जाता है पूरा, और फिर मतलब मैं गला कैसे छुड़ाने का प्रयास करती हूँ तो वो मेरे मुंह पे पंजा मार के मुक्का मारती है, और फिर यहाँ इतनी जोर से मतलब पूरा स्क्रेच कर देती है पूरे फेस को, और आंख के इधर भी लगता है. तो उसके बाद ये छुटाने का प्रयास करते हैं के लिए मैं धक्का मारती हूँ, तो वो मेरे जोर से इतना थप्पड़ मार के मेरे बालों पे मतलब पूरा कैप्चर कर लेती है, जूते रगड़ के, और मेरी जो इयररिंग होती है वो मेरे कान के अंदर चली जाती है. और उसके बाद हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा वो बाली मेरे साथियों के सामने निकाली जाती है.
1: अब 13 अक्टूबर की ये तस्वीर देखिए जिसमें रितु और महिला पुलिसकर्मी के बीच झड़प हो रही है. पुलिसकर्मी पर रितु थप्पड़ मारती दिखती है. अब पुलिस पूछ रही है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का हक किसने दिया.
4: वायरल वीडियो में दिखाई दे रही महिला पुलिसकर्मी का नाम चंचल यादव है, वो नई दिल्ली जिले में तैनात है. उसने सीनियर अफसरों को शिकायत दी है, उसमें बताया है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दौरान महिला एनएसयूआई की कार्यकर्ता को उसने हिरासत में लिया और बस में बिठाया, जहां एनएसयूआई की महिला कार्यकर्ता ने बस ड्राइवर से चाबी छीनी और उसे जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी. महिला कांस्टेबल चंचल यादव ने आरोप लगाया है कि एनएसयूआई की कार्यकर्ता ने उसके साथ मारपीट की जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं. पुलिस ने चंचल यादव का मेडिकल टेस्ट करवाया है और अगर लीगल एक्शन लिया जा रहा है.
5: गायब हो गया,
6: बिल्कुल हो गया सर.
1: तो भले ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की मारपीट के बावजूद शांतिपूर्ण संदेश दिए जाने की बात कही गई हो,

0: थैंक यू. नफरत का जवाब प्यार से ही दिया जाएगा बेसिकली.
1: लेकिन दिल्ली पुलिस इस तरह के वीडियो के आधार पर पुलिस कर्मियों के हक का सवाल उठा रही है. राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान छात्रों से मारपीट का वीडियो बनाने को कहा है, उससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों में वीडियो वॉर तेज होने की पूरी संभावना है. अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक.
2: जंतर मंतर में सीजेपी नेताओं ने प्रतिबंध के बावजूद प्रदर्शन कर नारेबाजी की, जिसके बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया. वहीं अजिंक्य शिंदे को रिहा कर दिया गया. अभी तक राहुल सीजेपी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन जंतर मंतर से जुड़े मामले में राहुल का समर्थन और फिर अभिजीत दीपके का थैंक यू कहना चर्चा का विषय है. अब दीपके, नेहा बोरा, कपिल सिब्बल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
1: सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका स्वागत इस तरह से होगा. ऐसा दूसरी बार है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दीपके को सरप्राइज में विरोध मिलता है.
3: भारत माता की जय.
4: राजस्थान के एनएसए यूएनए जो लगाना है लगा दो. आई एम नॉट अफ्रेड.
1: जंतर मंतर पर भी सीजेपी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने सरप्राइज दिया और मिनटों में पकड़ लिया. जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से रोकने के बाद सीजेपी के तीन नेताओं में से दो को, सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है.
5: जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो? ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था. तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया?
1: तिहाड़ जेल में सौरभ दास को जेल नंबर 2 में रखा गया है. वहीं आशुतोष रांका को जेल नंबर 4 में रखा गया है. दोनों को तिहाड़ जेल की अलग अलग बैरक में रखा गया है. अब सवाल ये है कि सीजेपी नेताओं को तिहाड़ क्यों भेजा गया? क्या इसकी वजह सख्त नाकेबंदी के बावजूद मंगलवार सुबह प्रतिबंधित क्षेत्र जंतर मंतर में घुसना है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तीनों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया, फिर तीनों को बुधवार संसद मार्ग की एसीएम कोर्ट के सामने पेश किया, जहां पर पिछली जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया. दरअसल बेल बॉन्ड की शर्त का उल्लंघन करने पर जिन्हें अदालत जेल की सजा सुनाती है, इस तरह के मामले में तुरंत राहत के लिए किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है. आरोपियों को सजा काटनी ही पड़ती है. जंतर मंतर को लेकर प्रशासन इसलिए भी सख्त है क्योंकि अब इसमें पाकिस्तानी साजिश के एंगल मिले हैं.
6: ऐसे हैंडल्स हैं जिनकी आईपी इंडिकेट करती है कि वो पाकिस्तान से क्रिएट किए हुए हैंडल्स हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है.
1: जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना मना है, फिर भी कनॉट प्लेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. इससे पहले प्रदर्शन में घायल एनएसयूआई के छात्रों को लेकर राहुल गांधी हाजिर हुए, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए, जिसके बाद जंतर मंतर को लेकर सवाल और गहरा गया है.
7: अमित शाह जी, इसको अच्छी तरह देख लीजिए.
2: मेरठ के नीले ड्रम केस में कोर्ट ने मुस्कान साहिल को फांसी की सजा सुना दी. जज ने सौरभ हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए मौत की सजा सुनाई.
8: पहले हुआ हत्याकांड और करीब 1 साल से चल रहे ट्रायल के बाद आखिरकार नीला ड्रम कांड में कोर्ट का फैसला आ गया. मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.
3: कहा गया था कि कुछ चश्मदीद गवाह नहीं है और उसके बच्चे हैं और इसके माँ बाप बुजुर्ग हैं, ये सारी तथ्य रखे गए थे, लेकिन वो कोर्ट ने कोई वो नहीं माना और इनको अपराध की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड की सजा मुकर्रर की है।
8: जिला जेल से दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। जज ने मुस्कान से पूछा, तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? मुस्कान ने जवाब दिया, मेरी बेटी छोटी है, उसका ख्याल रखा जाए। फिर वो खामोश हो गई। इसके बाद साहिल से यही सवाल पूछा गया तो वो भी चुप रहा।
9: जज ने आज ये भी कहा बहस के दौरान कि हमें फैसला देने से पहले ये भी देखना है कि समाज और जनता की ओपिनियन क्या है ऐसे केसेस में जिससे समाज पे असर पड़ता है। उनका इशारा ये था कि हाल के वक्त में बहुत सारी पत्नियां के हाथों पति का कत्ल हो रहा है, पति के हाथों पत्नियां का कत्ल हो रहा है, तो समाज में जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है तो एक ऐसा फैसला होना चाहिए जो जनता चाहती है उस हिसाब से ये फैसला हो और जो समाज में सोच है उस हिसाब से भी एक मैसेज जाए।
8: सरकारी वकील ने कोर्ट से मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं मुस्कान साहिल के वकील ने कहा था, मुस्कान की दो बेटियां हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, कम से कम सजा होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फांसी की सजा पर मुहर लगाई।
10: अब इस पूरे मामले में जो साइंटिफिक एविडेंसेस थे, क्योंकि जो नशा दिया गया था खाने में सब्जी में, उस नशे को कहां से खरीदा गया था उसने भी आइडेंटिफाई किया, मुस्कान को आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से ये कत्ल के पहले खरीदी थी, सीसीटीवी फुटेज कत्ल के पहले और बाद का, कौन आया कौन गया, ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण थी और डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे काम किया, जिसके बाद आज ये दिन आया, 30 सितंबर को दोषी ठहराया गया था और आखिरकार आज जो मेरठ कोर्ट है वही ठीक मौजूद है। यहाँ पर अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है।
8: 30 सितंबर को कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी ठहराया था। सौरभ राजपूत के परिवार ने कोर्ट से दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई थी।
11: हम तो यही देना संदेश जाते भैया, किसी का भी बच्चे को मारो मत, नहीं रहना उनके साथ, अलग हो जा। अगर कोई लड़का नहीं चाहता लड़की को मार देता है तो वो भी अपने नई लड़की के साथ रहना तो वो भी अलग हो जाए, तो अगर ये ऐसा काम करेंगे तो उनको भी फांसी की सजा होगी।
8: अब सवाल ये है कि आखिर मुस्कान को फांसी कब और कैसे होगी, क्योंकि मुस्कान की दो छोटी बेटियां हैं, एक बेटी सौरभ राजपूत की है तो वहीं दूसरी बेटी साहिल की, जिसका जन्म जेल में हुआ था।
12: साहिल के घरवाले करेंगे, क्योंकि साहिल ने आगे आके बोला था कि भाई मैं ये तुम चाचा बन गए हो जो उसके जेल बंदी थे, और उन्होंने बोलता मैं बाहर आने के बाद जो है तुम्हें दावत दूंगा, उसने खुले में बोला था कि मेरी बच्ची
11: जो जेल वाली बेटी है उससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, और वो बड़ी वाली बेटी है, अगर उसके नाना नानी हमें बिना किसी उसके देंगे तो हम रखेंगे उसे अपने पास।
8: सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। शव को 5 टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया गया था। जुलाई 2025 में जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था, जिसके बाद आज कोर्ट ने फांसी की सजा देकर सौरभ राजपूत के परिवार को इंसाफ दिया। मेरठ से शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।
2: ईरान ने हूती विद्रोहियों के द्वारा अमेरिका और सऊदी अरब की नींद उड़ा रखी है। सऊदी पर हूतियों के हमले पर पहली बार ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान आया। ट्रंप ने दावा किया कि सऊदी पर हमले के पीछे तेल का खेल है, तेल का वही खेल जो मिड टर्म चुनाव को लेकर ईरानी साजिश का हिस्सा है।

0: सऊदी पर हमले के पीछे तेल का खेल, ईरान के इशारे पर निशाना बना रहे हूती, क्या ईरान का निशाना है मिड टर्म चुनाव, ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू में हुई बात, क्या हूतियों के हमलों का बदला लेंगे ट्रंप, तीन नवंबर से पहले ईरान पर होगा हमला, 27 अक्टूबर को इसराइल में चुनाव है तो 3 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है, चाहे इसराइल में चुनाव हो या फिर अमेरिका में मिड टर्म चुनाव, ट्रंप और नेतन्याहू के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, चुनाव में जीत मिली तो ईरान युद्ध पर जनता मोहर लगा देगी, लेकिन चुनाव में नेतन्याहू या फिर ट्रंप की पार्टी की हार हुई तो फैसला युद्ध छेड़ने के खिलाफ माना जाएगा। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी पर हूतियों के हमले के बीच ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर फोन पर बातचीत हुई है, बातचीत के दौरान ईरान पर नए सिरे से हमलों को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है, इसी बातचीत को लेकर ईरानी सेना की तरफ से अमेरिका को सीधी धमकी दी गई है, ईरान के खिलाफ नया युद्ध शुरू करना अमेरिका के लिए तर्कहीन होगा, लेकिन इस तरह के हमले की संभावना बनी हुई है क्योंकि ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले एक उपलब्धि हासिल करने की जरूरत है, ईरान किसी भी नए आक्रमण का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है, इस बार अमेरिका के लिए परिणाम कहीं अधिक गंभीर होंगे, ईरान ने 40 दिनों के युद्ध के दौरान मुख्य रूप से अपने पुराने हथियारों पर भरोसा किया था, लेकिन तब से उसे कहीं अधिक उन्नत हथियार प्राप्त हो गए हैं, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हमले के लिए पूरी तरह तैयार है, ईरान की तरफ से ये भी संकेत दिए गए हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया या फिर हूतियों के खिलाफ अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो खाड़ी देशों पर जमीनी स्तर पर ईरानी सेना घुसपैठ कर सकती है, अगर अमेरिका नए हमले शुरू करता है तो हम पड़ोसी देशों में सेना भेज सकते हैं, अब की बार ईरानी सेना की तैयारी कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने की है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी मुल्कों को भारी कीमत चुकानी होगी, सऊदी अरब के तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है, यूएई के अहम ठिकानों के साथ साथ क्षेत्रीय डेटा सेंटर और इंटरनेट केबल भी निशाने पर हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने अपना चक्रव्यूह तैयार किया है, पहले ही होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है और लाल सागर के बड़े हिस्से पर हूतियों का कंट्रोल है, यही वजह है कि ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ट्रंप मानते हैं कि तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए हूती की तरफ से सऊदी अरब पर हमले किए जा रहे हैं जो मिड टर्म चुनाव तक चलेंगे, इसी बीच IRGC की तरफ से होर्मुज को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, अगर अमरीकियों को लगता है कि होर्मुज खुला है तो वो करीब आ जाएं। हम अमेरिकी युद्ध पोतों को डुबोने के लिए बेताब हैं। $13 अरब मूल्य का एक अमेरिकी युद्ध पोत अप्रभावी हो गया था और होर्मुज से 700 किलोमीटर दूर चला गया था क्योंकि उसने जलमार्ग के पास आने की हिम्मत नहीं की, हम अमेरिकी युद्ध पोतों के होर्मुज के प्रवेश द्वार के पास आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उन्हें डुबो सकें, हम इस घटना के होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल ईरान ये मानकर चल रहा है कि 27
1: और छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए

0: राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मंच, जहां होगी युवाओं के मन की बात और मिलेगा युवाओं के हर सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ देखिए पंचायत राजस्थान 15 अक्टूबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
1: कौन है माता भैरवी, क्या है माता भैरवी की महिमा, माता भैरवी की पूजा का क्या है विधान, और माता भैरवी की पूजा से कैसे मिलेगा वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: इंडिया गेट पर धरने पर बैठे अंकिता के माता पिता से मिलने के बाद राहुल का पोस्ट, 4 साल से नहीं मिला इंसाफ। 2022 में अंकिता का हुआ था मर्डर, धामी सरकार का बयान, मामले की कराई हमने निष्पक्ष और तेज जांच। राहुल के साथ एनएसयूआई छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थाने, बदले में पुलिस ने बदसलूकी का जारी किया वीडियो। दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके का एयरपोर्ट पर लोगों ने किया विरोध, नाराजगी जताई, दीपके ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की अपील की। वाराणसी से सीएम ने अखिलेश पर बोला धावा, कहा समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या पराया धन अपना। और मेरठ नीले ड्रम केस में दोषी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी, जज ने कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, सौरभ के शव के दोनों ने किए थे टुकड़े। चुनाव आयोग के निर्णय और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आंदोलन लगातार चल रहा है। राहुल ने भले ही अपने अगले कदम की जानकारी अभी नहीं दी हो, लेकिन जंतर मंतर को लेकर राहुल की तरफ से सरकार को लगातार खबरदार किया जा रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस से जुड़े संगठनों का जंतर मंतर की तरफ मार्च करना हो या फिर राहुल का पुलिस की बदसलूकी के शिकार छात्रों के साथ पीसी करना, जंतर मंतर को लेकर लड़ाई धीरे धीरे तेज हो रही है।
1: उसके बारे में आप मत घबराइए, वो हमारा काम है। FIR होगा, प्रेशर करना है, क्या करना है, एक प्रोटेस्ट है, एक आवाज है, देश की आवाज है, और उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही
2: है। SIR के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले NSUI के कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी छात्रों को डरना मत वाला मंत्र देते हैं। जंतर मंतर को भारत के लोगों का बताकर इसे वापस लेने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, CJP नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, जंतर मंतर पर तिरंगा फहराने को अपराध नहीं बताते। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष का अगला प्रदर्शन जंतर मंतर को लेकर ही होगा, जो अब विरोध प्रदर्शन की जगह नहीं रहा।
3: द वन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज जंतर मंतर, एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट जंतर मंतर can no longer be used to express democratic